एक बात तुम याद रखना मेरे पागलो, कुछ भी स्थाई है नहीं। एक पल में कब कैसे क्या बदल जाए कोई ठिकाना नहीं है जिंदगी का। नेपाल से देखो, ना बारिश ना बादल, भयंकर धूप और 20 फुट ऊंची मलबे में घर दब गए, जिंदगियां दब गईं। परिवारों के परिवारों का आता पता नहीं है। जिंदगी कागज की पुड़िया की तरह है, कब ये गीली हो जाए कोई ठिकाना नहीं। जिंदगी पानी के बबूले की तरह है, कब फूट जाए कोई पक्का नहीं। जिंदगी धुआं के फुहार की तरह है, कब बिखर जाए कोई ठिकाना नहीं है। जिंदगी मिट्टी के ढेले की तरह है कि एक पानी की बूंद पड़ी नहीं कि बिखर गया। यहां कुछ भी पक्का नहीं है, इसलिए जो दिन है जो तुम्हें मिले हैं यार, वो मौज में जियो, मुस्कुरा के जियो। लड़के नहीं हंस के जियो, रोते तो सब हैं और रोके क्या जीना। एक बात तुम याद रखना, चाहे तुम रोके जियो या हमारी तरह हंस के, जिंदगी तो जीनी पड़ेगी चाहे जो हो जाए। उसको तुम मना ना कर पाओगे, उसको तुम ना ना कह पाओगे, जीनी तो पड़ेगी। तो रोने से बेहतर है हंस के जिए। रोना तो है ही है सबको, अपन रोने वाली लाइन में क्यों खड़े हो जब लाखों लोग बुरा कर रहे हो तो हम उनके लाइन में अच्छा करके खड़े हो जाएं। जब लाखों लोग झूठ बोल रहे हो तो हम अकेले ही सही सच बोल करके खड़े हो जाएं। तुम कभी अंदाजा लगाना, हम कभी कभी एयरपोर्ट पर जब जाते हैं, विदेश जाते हैं, बड़े बड़े महंगे पैंट पहनने वाले लोग, प्राडा लुबटिन का चश्मा लगाने वाले लोग, गुच्ची का चश्मा लगाने वाले लोग, 5-5 लाख का चश्मा और 2.5-2.5 लाख के पैंट पहनने वाले लोग हमारे 60 रुपया के कुर्ता की तरफ देखते रहते। इसी को जलाना कहते। बड़े बड़े महंगे जूते पहनने वाले लोग, बाटा के जूता, अन्य अन्य ब्रांड के जूता पहनने वाले लोग, जब लाखों लोग लाइन में खड़े होते हजारों और हम 250 रुपया की 200 रुपया की लकड़ी की चप्पल पहनकर जाते हैं तो उनके वो लाखों के जूते फीके पड़ जाते हैं, नजर हम पर टिक जाती है। ये उदाहरण देकर हम तुम्हें ये समझाना चाह रहे कि जब लाखों लोग झूठ बोलकर करोड़पति बन गए हो तो तुम सच बनकर के फकीर बन जाना। गलत काम करके जब लाखों लोग अमीर बन जाए तो तुम अच्छा काम करके गरीब जरूर बन जाना, पर अमीर ना बनना। कम से कम तुम्हें संतुष्टि तो रहेगी। तुम मरोगे तो भले ही दुनिया तुमसे ना पूछे, पर तुम्हारा जिगर तो तुमसे पूछेगा कि जिए भी तो जी भर कर जिए। और मेरे पागलो, जिंदगी में कुछ भी स्थाई नहीं है, ये पक्का है। आर्मी की जब परेड होती है उसमें लाइन से खड़ा किया जाता है, तब परेड कराने वाला जो मुखिया होता है
वो खड़ा होता है और इशारे करके कुछ बोलता है, क्रिया करने को कहता है। तो जो सबसे आगे खड़ा होता, उसको जो परेड कराने वाला व्यक्ति होता है, ऑफिसर एकदम पास होता है, जो सबसे आगे खड़ा होता लाइन में, 100 लोग लाइन में लगे हो, जो सबसे आगे होता है वो ऑफिसर के एकदम नजदीक होता है। लेकिन उसी वक्त ऑफिसर कहता है पीछे मुड़, तो जो सबसे आगे खड़ा होता है वो सबसे पीछे हो जाता है, और जो सबसे पीछे होता है वो सबसे आगे हो जाता है। एक इशारा पीछे मुड़, तो जितने भी यहां पीछे बैठे हैं, यहां बैठे हैं, या संसार में तुम पीछे की लाइन में लगे हो, घबराना नहीं, बस इंतजार करो कब तुम्हारा गुरु और कब तुम्हारा परमात्मा कह दे पीछे मुड़। और जिस दिन उसने ये कह दिया पीछे मुड़, देखना तुम आगे हो जाओगे, जमाना पीछे हो जाएगा, और फिर तुम फिल्मी गीत गाओगे, आज मैं ऊपर जमाना नीचे। इंग्लैंड का एक दार्शनिक हुआ, बड़ा ऊंचा आदमी। इंग्लैंड में एक जगह है लेस्टर, लेस्टर के आसपास एक गांव में उसका जन्म हुआ। फकीर था, शादीशुदा था, पर बड़ा प्रसिद्ध था। एक चर्च में उसको बुलाया गया कि तुमको प्रवचन करने, भाषण देने आना है चर्च में। तो प्रवचन देने के लिए जिन्होंने निमंत्रण दिया, उन्होंने कहा कि सुनो, तुम भूलने में बहुत माहिर हो, 2 बजे की कह के 4 बजे आते, 12 बजे की कह के 2 बजे आते, भूलने में बहुत माहिर हो, तो कृपा करो कि कल 4 बजे ही आना, क्योंकि कल बहुत बड़ा भाषण है और चर्च में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, पोप भी आ रहे हैं, इसलिए समय पे आ जाना। उसने कहा आप चिंता मत करो, हम समय पे आ जाएं। चर्च वालों ने फिर समझाया कि फिर सुनो, 4 बजे मतलब 4 बजे, 6 ना बजे। उसने कहा नहीं नहीं 4 बजे क्या, मैं 4:15 पे पहुंच जाऊंगा। चर्च वाले चले गए तैयारी करने। दूसरा दिन हुआ, पुराना जमाना था, घोड़े पर चर्च से एक घोड़ा आया, रात को ही रख दिया गया कि आप घोड़े से आए ताकि आप जल्दी आ सकें। वो फकीर उस घोड़े पर बैठा और चर्च की तरफ चला, और ठीक 2:30 बजे निकल भी गया कि लेट ना हो जाए, उन्होंने कहा था पक्के टाइम पे आना। बेचारा गया, चला, उसका मन हुआ कि घोड़ा चल ही रहा है, टाइम है ही है, जरा सिगरेट पी ली जाए, सिगरेट का मजा ले ले। उसने सिगरेट निकाली, लाइटर निकाला, तो बड़ी जोर की सामने से हवा आ रही थी, तो बार बार लाइटर बुझ जाए और सिगरेट जले ना। तो उसने सोचा कि ये तो बड़ा लफड़ा है, क्या किया जाए कि सिगरेट जल जाए। उसने देखा कि इस तरफ से हवा आ रही, पीछे की तरफ हवा नहीं आएगी, तो उसने घोड़ा मोड़ दिया, जिस तरफ से आया था उसी तरफ, और सिगरेट में इतना डूब गया, सिगरेट पीते पीते, कि उसे होश ही नहीं रहा कि घोड़ा मुड़ गया है और इस तरफ नहीं जाना, फिर से मोड़ना है। जिस तरफ मुड़ा था वो उसी तरफ चल पड़ा, घोड़ा लौटकर घर वापस आ गया। इधर 4 बज गए, चर्च वाले लोग भागे भागे घर गए कि हमने कल कहा था कि आप 4 बजे आ जाना। बोले हम तो 4 बजे पहुंच जाते, पर घोड़ा ही उल्टा है, ये कब मुड़ गया, कब इस तरफ आ गया, पता नहीं चला। मेरे पागलो, ये फकीर आज 4 बजे पहुंच जाता टाइम पर, यदि ये सिगरेट में ना फंसता, और सिगरेट में फंस भी गया था, यदि ये घोड़ा ना मोड़ता, और घोड़ा मोड़ भी लिया था तो वापस यदि मोड़ लेता तो 4 बजे चला जाता, लेकिन उसने घोड़ा मोड़ लिया तो वापस ना जा पाया, वापस उल्टा घर आ गया, चर्च ना पहुंच पाया। ऐसी ही जिंदगी है, जिंदगी में एक मोड़ तुम्हारी मंजिल बदल देती है। यदि तुम वापस घर की तरफ मुड़ना चाहते हो तो वापस घर जाओ, और यदि तुम जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो यहां से बालाजी की तरफ मुड़ जाओ। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें इस तरफ मुड़ना है या इस तरफ मुड़ना है। घर वापसी की तरफ मुड़ोगे कुछ ना पाओगे, और तुम हमारे तरफ भी मत मुड़ना,
मुड़ने का मतलब साइड बदलना नहीं होता, मुड़ने का मतलब मन का मुड़ना होता है। तुम भले ही घर चले जाओ पर मन बालाजी के पास हो जाए। और कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पास लोग आते हैं, हमें बताते हैं कि अब आजकल तो हम जब से घर गए हैं सपने में भी धाम दिखता है और 10-15 दिन से ज्यादा रह नहीं पाते, बार बार खुजली होती है और फिर लगता है कि चलो यार भाई बड़ी देर हो गई है, बड़े दिन हो गए हैं, मंगलवार शनिवार आता है तो फिर याद आती है, चाहे जो हो जाए चलो धाम। इसका मतलब है तुम मुड़ चुके हो, और तुम मुड़ चुके हो मतलब सही जगह मुड़ चुके हो। यदि तुम्हें बालाजी की बार बार याद आती है तो तुम मुड़ चुके हो, और ये याद बनी रहे, दुनिया की याद से तो बेहतर है परमात्मा की याद बनी रहे। अंत में एक बात और सुने तुम्हारे काम की, परमात्मा तब तक चमत्कार नहीं कर सकता जब तक तुम अपना चमत्कार खुद नहीं चाहते। और हम एक बात तुम्हें बहुत दावे के साथ कहना चाह रहे कि छोटे मोटे चमत्कारों से तुम प्रभावित ना हो, मन की बात बता देना, पर्चा बना लेना, पर्चे में नाम आ जाना या पर्चे में बिना बताए बातें आ जाना, ये बहुत छोटी बातें, इनसे तुम प्रभावित ना हो। ये कोई गहरे राज नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा गहरा रहस्य नहीं है, क्योंकि जो मन की बातें तुम जानते हो वही हम बता देते हैं, कोई खास बात नहीं है। हम तो तुम्हें जीवन की बात बताने बैठे हैं, मन की बात बताने नहीं बैठे। हम चाहते हैं तुम्हारे जीवन में हमेशा दुख आते ही रहना है। आज हम तुम्हारा पर्चा बना दें, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, कल सिर का दर्द तुम्हारा करेगा, सिर का दर्द ठीक होगा, परसों पड़ोसी दर्द करेगा, पड़ोसी का दर्द ठीक होगा, लुगाई दर्द करने लगेगी, लुगाई ठीक होगी तो पड़ोसन परेशान करेगी, एक ना एक तुम्हें झंझट बने ही रहना है, एक ना एक तुम्हें दिक्कत बनी रहनी है। तुम हमारे पास आए हो, हम तुम्हें ऐसी चाबी देना चाहते हैं कि तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाए, ताकि दर्द आते रहे, संकट आते रहे, पर संकट मोचन तुम्हारे बने रहे। भाई संकट तो आते रहना है, किसी ने जब छाता बनाया होगा बारिश से बचने के लिए तो पहले ऐसा छाता बनाया गया था कि एक बारिश में सिर्फ एक छाता काम आएगा, अब वो फट जाता था, ज्यादा तेज बारिश होती थी वो फट जाता था। तो छाता बनाने वालों ने शोध किया, रिसर्च किया, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे कि भाई एक बारिश छाता झेल पाता, आदमी ऐसे कितने छाता खरीदेगा, 4 महीने में बड़ी बारिशें होती हैं, हर रोज बारिश होती है, दिन में 2-2, 3-3 बार होती है, ऐसा छाता बनाया जाना चाहिए कि जो कई बारिश झेल पाए और फटे ना। और फिर बाद में धीरे धीरे अपग्रेड हुआ और ऐसा छाता बन गया आज कि अनेक बारिश होती है, छाता कई सालों तक चलता है। यही हम चाहते हैं कि तुम्हारे यहां संकट तो रोज आते ही जाते रहने हैं, हम चाहते हैं हम तुम्हें एक ऐसा छाता, छाता नहीं बालाजी की ऐसी छत्र छाया तुमको दे दी जाए, ऐसी छत्र छाया तुम्हें मिल जाए ताकि तुम्हारे जीवन में संकट आते रहेंगे, आने दो, आते रहेंगे, घबराओ मत। तुम कोई नए आदमी नहीं हो कि तुम पे दिक्कत है, तुम कोई अकेले आदमी नहीं हो कि तुम बहुत परेशान हो। यहां ये जितने भीड़ दिखाई पड़ रही है ये सब परेशान लोगों की दिखाई पड़ रही है। अरे तुम अपनी छोड़ो, हम तुम तो आम है। राम के जीवन में भी यही हुआ, मीरा को उसके देवर ने जहर दिया, सूरदास को गांव के लोगों ने धक्के दिए, तुम तो कुशल मनाओ कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जरा राम जी के जीवन में तो देखो, कल राजा बनना था, रात को ही वनवास मिल गया, तुम्हें तो घर से अभी निकाला भी नहीं गया। और उनके जीवन में तो देखो कि वो जंगल गए माता जानकी जी को लेके, लक्ष्मण जी को लेके, और घरवाली हर गई, चोरी हो गई, कम से कम तुम्हारी चोरी तो नहीं हुई, तुम्हारी अभी बची है। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हें ज्यादा कष्ट नहीं मिला, ज्यादा पीड़ा नहीं मिली। जब भगवान राम को भी इतनी पीड़ा सहनी पड़ी तो तुम सोचो तुम्हें कितनी सहनी पड़ेगी। पर हम इतना कहेंगे, समस्याओं के पास समस्या मिलेगी, संसार में समस्या होंगी, संसार में जन्म लिया है, समस्याएं आएंगी, तुम्हारे जीवन में भी आते, हमारे जीवन में भी आती, बस हमने जीने का तरीका बदल लिया। हम समस्याओं से डरते इसलिए नहीं है
इसलिए नहीं डरते क्योंकि जब भी समस्या आती है तो हम परमात्मा से नहीं कहते कि समस्या विकट है, हम परमात्मा के पास जाकर नहीं कहते कि समस्या बड़ी विकट है, समस्या के पास जाकर के कहते हैं कि बालाजी निकट है और काम हो जाता है। वो लाज रख देते हैं, वो कृपा कर देते हैं। हमारे अंदर भी चिंता आती है कभी कभी, गुरुकुलम कैसे चलेगा, कन्या विवाह कैसे होगा, कैंसर हॉस्पिटल कैसे बनेगा। अभी नेपाल में हजारों लोग घर बेघर हो गए तो 1000 लोगों को राशन भेजा बागेश्वर धाम से, 1000 परिवार। तो हमें भी कभी कभी विचार आता पर सोचते नहीं है, भगवान दया कर देते हैं। जिनके सहारे बैठे हैं वो हमारी चिंता करते हैं क्योंकि हम उनका काम करने आए हैं, तो हमारी चिंता वो करें। हम तुमसे भी यही कह देते, अब तक की तुम्हारी जितनी बकवास थी, जितने झंझट थे, आज के बाद उनको तुम इन पे छोड़ दो, हम पे छोड़ दो, आगे की तुम देख लेना। हम इतना कह सकते हैं आज के बाद तुम फ्री होकर के जीना सीख लो, जो भी समस्या है छोड़ दो, या तो तुम गुरु को छोड़ दो या गुरु पर छोड़ दो। एक बात बताओ, हनुमान जी को कौन कौन छोड़ना चाहता है?

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: शारदीय नवरात्र का आज पांचवा दिन, विधि विधान से हो रही मां स्कंद माता की आराधना। देश भर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा के पंडालों में सजा मां का दिव्य स्वरूप। स्वर्ण महल की तर्ज पर बना पूजा पंडाल अपनी चमक और खूबसूरती से खींच रहा है भक्तों का ध्यान। वडोदरा में वायुसेना प्रमुख गरबा की धुन पर तिरकते नजर आए वायुसेना प्रमुख एपी सिंह। माता रानी की आरती में भी हुए शामिल।

0: आज लद्दाख को विकास की सौगात, 3,350 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे पीएम। ले एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से लेकर जल संरक्षण तक का तोहफा। जम्मू कश्मीर में मौसम की मेहरबानी बरकरार, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में ताजा बर्फबारी, बड़ी संख्या में आ रहे हैं पर्यटक।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: शारदीय नवरात्रि का आज पांचवा दिन, मां स्कंद माता की आराधना का दिन, देशभर के मंदिरों में मां स्कंद माता के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। मां स्कंद माता की महिमा, ममता और करुणा का स्वरूप, नवरात्र में फल और नारियल अर्पित करने की परंपरा, श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्त करते हैं आराधना। मां स्कंद माता की पूजा में पीले सफेद फूल अर्पित करें, केले शहद और केसर की खीर का लगाएं भोग, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर करें पूजा अर्चना। ओम देवी स्कंद माताए नमः का करें जाप, देवी के स्वरूप में झलकती है वात्सल्य और शक्ति, वैदिक मंत्रों और भक्ति से गूंजता है पूजा पाठ।

0: दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब, पूजा पाठ और जयकारों से गूंज रहा मंदिर परिसर, मां दुर्गा की आराधना के लिए उमड़ी भीड़। भक्त मुकेश दास की अनोखी साधना बनी आकर्षण का केंद्र, सीने पर कलश रख मुकेश दास कर रहे हैं कठिन साधना, भक्ति और आस्था का अनूठा नजारा। श्रद्धालु पूजा अर्चना कर मांग रहे हैं सुख समृद्धि का आशीर्वाद, कोई फूल चढ़ा रहा है तो कोई कर रहा है पूजा पाठ, मां दुर्गा की श्रद्धा भक्ति में डूबे श्रद्धालु। मोतिहारी में केसरिया के फुलतकिया में मां दुर्गा का भव्य दरबार, दर्शन पूजन के लिए सुबह से पहुंच रहे श्रद्धालु, मां के भक्तों में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। मां दुर्गा के दरबार में श्रद्धा और आस्था का संगम, धूप दीप और मंत्रोच्चार से भक्तिमय हुआ माहौल। नवरात्र के फलाहार में चाट से कबाब तक का स्वाद, साबुदाना वड़ा, शकरगंदी चाट और राजगिरी कोफ्ते बने खास, पारंपरिक व्रत की थाली को मिलाना है अंदाज। श्रीखंड और साबुदाना खीर से बड़ा फलाहार का जायका, कुट्टू की पूड़ी के साथ काली मिर्च पनीर का जायका, आलू शकरगंदी कटलेट और दही वड़ा भी मेन्यू में शामिल। फलाहारी व्यंजन में दिख रहा है परंपरा और प्रयोग का मेल, नवरात्र में सात्विक खाने की बढ़ रही है डिमांड, परिवार और अकेले खाने वालों के लिए अलग अलग थालियां। व्रत के भोजन को स्वादिष्ट बनाने की खास पहल, मंदिर की थीम पर आधारित रेस्टोरेंट में खास फलाहार, कांसे की थाली और पत्तल में परोसे जा रहे हैं पकवान। करीब 95% भोजन बिना लहसुन प्याज के तैयार, सिर्फ नवरात्र नहीं साल भर मिलता है खास फलाहार, एकादशी सावन और दूसरे व्रतों के लिए भी विशेष थाली। अमरावती के अंबिका माता मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों दीपों से जगमगाया मंदिर परिसर। कृष्ण रुक्मणी की पौराणिक कथा से जुड़ा है मंदिर, यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने किया रुक्मणी का हरण। नवरात्र पर 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना, मनोकामना पूरी होने पर दीप जला रहे हैं भक्त। मां के दिव्य दरबार की भव्य सजावट, भक्त ऑनलाइन बुकिंग से भी जला रहे हैं अखंड दीप। महाराष्ट्र के प्राचीन मंदिर में भक्ति का अनूठा नजारा, अंबिका माता के तेजस्वी स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। झांसी में मां काली का अनोखा दरबार, न खड़ग न मुंडमाला, कन्या स्वरूप में मां काली, नवरात्र में दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। मां महाकाली का शांत और सौम्य स्वरूप, 5 गुड़हल के फूल चढ़ाने की मान्यता, 400 साल पुरानी परंपरा से जुड़ा है मंदिर। झांसी में मां काली का बालिका रूप बना आकर्षण का केंद्र, स्वयंभू विग्रह होने की धार्मिक मान्यता, भक्त श्रद्धा से चढ़ाते हैं लाल गुड़हल। ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव से जुड़ी है मान्यता, मां के दरबार में दर्शन पूजन को पहुंच रहे हैं भक्त, आरती में शामिल हो रहे हैं श्रद्धालु। लक्ष्मी तालाब के पास स्थित है विद्यापीठ मंदिर में चंडी पाठ और लक्ष चंडी यज्ञ की परंपरा, सदियों पुरानी आस्था की अनूठी कहानी। धनबाद में बनेगा आदिवासी शीश महल, 32 लाख से सजेगा दुर्गा पूजा पंडाल, प्राकृतिक सामग्रियों से होगा भव्य निर्माण। धनबाद में दिखेगी अंडमान निकोबार की झलक, झारखंड मैदान में बनेगा शीश महल, बांस और नारियल से सजेगा पंडाल। 23 अक्टूबर को निकलेगी भव्य शोभा यात्रा, बनारस की राधा कृष्ण मंडली करेगी धमाल, बंगाल के छऊ नर्तक बढ़ाएंगे शोभा। प्लास्टिक थर्माकोल को समिति ने कहा ना, इको फ्रेंडली होगा भव्य दुर्गा पूजा पंडाल, उत्सव में दिखेगा अनोखा कलात्मक संगम। दुर्गा पूजा में दिखेगा भव्य नजारा, ढोल छऊ और झांकियां बनेंगे आकर्षण का केंद्र, हाथी घोड़े संग निकलेगी विसर्जन यात्रा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय के पाठ से देवी की भक्ति मिलती है, दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ व्यापार में सफलता दिलाते।

0: है और दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय के पाठ से संकट कट जाते हैं? कौन से हैं दुर्गा सप्तशती के चमत्कारी अध्याय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के अध्यायों की और इसके महिमा की। हम आज आपको बता रहे हैं दुर्गा सप्तशती के अध्यायों के बारे में, अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है, इस बारे में आज बात करेंगे। दुर्गा सप्तशती है क्या और इसकी खास बातें क्या हैं? ऐसा माना जाता है कि वेदों की तरह दुर्गा सप्तशती भी अनादि है। कहां से प्रकट हुई, कहां से आई, ये अज्ञात है। मार्कंडेय पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य तक पहुंची है। माता दुर्गा की, देवी की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में देवी की उपासना के 700 श्लोक दिए गए हैं और ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय और बाकी सारे अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। दुर्गा सप्तशती तंत्र साधना की बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन 700 श्लोकों में तंत्र की शक्तियां हैं, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण और विद्वेषण। तंत्र की जो तमाम शक्तियां हैं वो दुर्गा सप्तशती के श्लोकों में दी गई हैं। और कौन से श्लोक में कौन सी ताकत है, ये बड़ा गोपनीय है। इसको जानने के लिए आपको किसी समर्थ गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अब जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है। पहले जानते हैं प्रथम अध्याय के बारे में। अगर आप दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय पढ़ते हैं तो इससे आपकी समस्त चिंताएं दूर होती हैं और इससे आपका शत्रु भय दूर होता है, शत्रुओं की बाधा शांत होती है, शत्रु और विरोधी आपको परेशान नहीं करेंगे। दूसरा और तीसरा अध्याय, दूसरे और तीसरे अध्याय के पाठ से मुकदमेबाजी में विजय मिलती है, सफलता मिलती है और झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। अगर किसी गलत चक्कर में फंस गए हैं तो उससे आपको छुटकारा मिलता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और चौथे अध्याय के पाठ से देवी की भक्ति भी, देवी की कृपा भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। पांचवा अध्याय, पांचवें अध्याय के पाठ से नकारात्मक ऊर्जा का, तंत्र मंत्र आदि का नाश होता है और पांचवें अध्याय का पाठ करने से भय दूर होता है, बुरे सपने दूर होते हैं और तंत्र मंत्र की बाधा का नाश होता है। अब दुर्गा सप्तशती के बाकी अध्याय को भी जानते हैं। अगर छठवें अध्याय की बात करें तो दुर्गा सप्तशती के छठवें अध्याय के पाठ से बड़ी बाधा का नाश किया जा सकता है। इसको पढ़ने से बड़ी बाधा दूर होती है। कितना भी बड़ा संकट हो, छठवें अध्याय का पाठ करने से वो दूर हो जाता है। सातवां अध्याय, सातवें अध्याय के पाठ से विशेष गुप्त कामनाओं की पूर्ति होती है। आपके मन में कोई गोपनीय इच्छा है जिसकी आप पूर्ति करना चाहते हैं तो सातवें अध्याय का पाठ आपको करना चाहिए। आठवां अध्याय, आठवें अध्याय के पाठ करने से वशीकरण की, दूसरों को अपने वश में करने की शक्ति मिलती है और नियमित रूप से धन का लाभ जीवन में होना शुरू हो जाता है। नवम अध्याय, नवा अध्याय, नवे अध्याय के पाठ से संपत्ति का लाभ होता है, प्रॉपर्टी मिलती है और खोए हुए व्यक्ति का पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति चला गया हो, कोई सूचना ना मिल रही हो तो नवम अध्याय का पाठ करना चाहिए। दसवां अध्याय, दशम अध्याय, दसवें अध्याय के पाठ से भी गुमशुदा की तलाश होती है, अपूर्व शक्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपको जीवन में ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए तो दुर्गा सप्तशती के दसवें अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं। अब जो दुर्गा सप्तशती के अन्य बचे हुए अध्याय हैं उनका महत्व भी जानते हैं। ग्यारहवें अध्याय की अगर बात करें तो ग्यारहवें अध्याय के पाठ से हर तरह की चिंता दूर हो जाती है, तनाव समाप्त होता है और ग्यारहवें अध्याय के पाठ से व्यापार में बहुत सारी सफलता मिलती है। बारहवां अध्याय, बारहवें अध्याय के पाठ से रोगों से छुटकारा मिलता है और नाम यश मिलता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तेरहवां अध्याय, जब आप तेरहवें अध्याय का पाठ करते हैं तो देवी की कृपा और भक्ति आपको मिलती है और व्यक्ति की हर तरह के संकट से रक्षा होती है। अचानक कोई बड़ा संकट जीवन में आ गया तो 13वें अध्याय का पाठ करिए, आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। अगर आपका कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम काफी समय से रुका हुआ है तो नवरात्रि में लगातार 3 दिनों तक देवी को लाल फूलों की माला अर्पित करिएगा। अगर लगातार 3 दिन तक आप देवी को लाल फूलों की माला अर्पित करें तो आपका बड़े से बड़ा काम बड़ी आसानी से बन जाएगा। कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, तो क्या करेंगे उसके लिए? रोज सुबह और शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे। हर शनिवार हनुमान मंदिर में नारियल अर्पित करेंगे। व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाए ये प्रार्थना करके नियमित रूप से सिक्कों का दान करेंगे, व्यक्ति जल्दी स्वस्थ होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही ला।
4: शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन, विधि विधान से हो रही मां स्कंद माता की आराधना, देश भर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा के पंडालों में सजा मां का दिव्य स्वरूप, स्वर्ण महल की तर्ज पर बना पूजा पंडाल अपनी चमक और खूबसूरती से खींच रहा है भक्तों का ध्यान। वडोदरा में वायुसेना प्रमुख गरबा की धुन पर थिरकते नजर आए वायुसेना प्रमुख एपी सिंह, माता रानी की आरती में भी हुए शामिल। आज लद्दाख को विकास की सौगात, 3,350 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ले एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से लेकर जल संरक्षण तक का तोहफा। जम्मू कश्मीर में मौसम की मेहरबानी बरकरार, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में ताजा बर्फबारी, बड़ी संख्या में आ रहे हैं पर्यटक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार।
4: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के बारे में। जी हाँ, दुर्गा सप्तशती में अलग अलग तरह के अध्याय दिए हुए हैं, तो इन अध्यायों का चमत्कारी महत्व क्या है, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।

0: से रुका हुआ है तो नवरात्रि में लगातार 3 दिनों तक देवी को लाल फूलों की माला अर्पित करिएगा। अगर लगातार 3 दिन तक आप देवी को लाल फूलों की माला अर्पित करें तो आपका बड़े से बड़ा काम बड़ी आसानी से बन जाएगा।
1: और आइए अब जान लेते हैं 15 अक्टूबर 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 15 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: और आइए अब जानेंगे पंडित जी से क्या है दुर्गा सप्तशती और इसकी खास बातें क्या हैं।
0: हम आज आपको बता रहे हैं दुर्गा सप्तशती के अध्यायों के बारे में, अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है इस बारे में आज बात करेंगे। दुर्गा सप्तशती है क्या और इसकी खास बातें क्या हैं? ऐसा माना जाता है कि वेदों की तरह दुर्गा सप्तशती भी अनादि है। कहां से प्रकट हुई, कहां से आई, ये अज्ञात है। मार्कंडेय पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य तक पहुंची है। माता दुर्गा की देवी की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में देवी की उपासना के 700 श्लोक दिए गए हैं और ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय और बाकी सारे अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। दुर्गा सप्तशती तंत्र साधना की बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन 700 श्लोकों में तंत्र की शक्तियां हैं, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण और विद्वेषण। तंत्र की जो तमाम शक्तियां हैं वो दुर्गा सप्तशती के श्लोकों में दी गई हैं। और कौन से श्लोक में कौन सी ताकत है ये बड़ा गोपनीय है, इसको जानने के लिए आपको किसी समर्थ गुरु की आवश्यकता पड़ेगी।
1: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष वृष और मिथुन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए जान लेते हैं दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्याय का महत्व क्या है।
0: अब जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है। पहले जानते हैं प्रथम अध्याय के बारे में। अगर आप दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय पढ़ते हैं तो इससे आपकी समस्त चिंताएं दूर होती हैं और इससे आपका शत्रु भय दूर होता है, शत्रुओं की बाधा शांत होती है, शत्रु और विरोधी आपको परेशान नहीं करेंगे। दूसरा और तीसरा अध्याय, दूसरे और तीसरे अध्याय के पाठ से मुकदमेबाजी में विजय मिलती है, सफलता मिलती है और झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। अगर किसी गलत चक्कर में फंस गए हैं तो उससे आपको छुटकारा मिलता है। चतुर्थ अध्याय, अगर आप दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और चौथे अध्याय के पाठ से देवी की भक्ति भी, देवी की कृपा भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। पांचवा अध्याय, पांचवें अध्याय के पाठ से नकारात्मक ऊर्जा का तंत्र मंत्र आदि का नाश होता है और पांचवें अध्याय का पाठ करने से भय दूर होता है, बुरे सपने दूर होते हैं और तंत्र मंत्र की बाधा का नाश होता है।
1: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में समस्या हो सकती है, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और गुडलक में वक्त हो गया है सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न मनीषा जी ने हमें लिखा है और मनीषा जी हमें मेल लिखती हैं रामपुर उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 7 दिसंबर 1986। जन्म का समय रात में 11:52। जन्म स्थान है रामपुर। मनीषा कह रही हैं कि मेरी एक शादी हुई थी जिसमें पिछले साल मेरा डिवोर्स हो चुका है, तो आगे मेरे दूसरे विवाह की क्या संभावना बनती है। मनीषा, आपकी कुंडली के हिसाब से 2027 में आपके दूसरे विवाह की संभावना बनती है और दूसरा विवाह आपका कुल मिला जुला कर बेहतर दिख रहा है, उसमें ज्यादा दिक्कत आने की संभावना नहीं बनती है। आपकी कुंडली के हिसाब से दूसरा विवाह सफल रहेगा। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिएगा, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमें सवाल भेजने के लिए हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानेंगे पंडित जी से आज के दूसरे सवाल के बारे में।
0: जी अगला प्रश्न अभिषेक जी ने हमें लिखा है, पुणे महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 मार्च 1994, जन्म का समय सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है नासिक महाराष्ट्र, और मेल लिखते हैं पुणे से। अभिषेक कह रहे हैं कि मैं नौकरी करने के लिए विदेश जाना चाहता हूं, तो मैं कब विदेश जा पाऊंगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अभिषेक, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी विदेश जाने की संभावना नहीं बनती है। साल 2028 में अगर दुनिया के हालात ठीक रहते हैं तो 2028 में अप्रैल के बाद कोशिश करिएगा। वर्तमान नौकरी आपकी बिल्कुल ठीक चल रही है, नौकरी में करियर में इस समय रिस्क ना लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो दुर्गा सप्तशती के 5 अध्यायों के बारे में तो हमने पंडित जी से जान लिया, बाकी अध्याय का महत्व क्या है चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही।
0: अब दुर्गा सप्तशती के बाकी अध्याय को भी जानते हैं। अगर छठवें अध्याय की बात करें तो दुर्गा सप्तशती के छठवें अध्याय के पाठ से बड़ी बाधा का नाश किया जा सकता है। इसको पढ़ने से बड़ी बाधा दूर होती है। कितना भी बड़ा संकट हो, छठवें अध्याय का पाठ करने से वो दूर हो जाता है। सातवां अध्याय, सातवें अध्याय के पाठ से विशेष गुप्त कामनाओं की पूर्ति होती है। आपके मन में कोई गोपनीय इच्छा है जिसकी आप पूर्ति करना चाहते हैं तो सातवें अध्याय का पाठ आपको करना चाहिए। आठवां अध्याय, आठवें अध्याय के पाठ करने से वशीकरण की, दूसरों को अपने वश में करने की शक्ति मिलती है और नियमित रूप से धन का लाभ जीवन में होना शुरू हो जाता है। नवम अध्याय, नवा अध्याय, नवे अध्याय के पाठ से संपत्ति का लाभ होता है, प्रॉपर्टी मिलती है और खोए हुए व्यक्ति का पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति चला गया हो, कोई सूचना ना मिल रही हो तो नवम अध्याय का पाठ करना चाहिए। दसवां अध्याय, दशम अध्याय, दसवें अध्याय के पाठ से भी गुमशुदा की तलाश होती है, अपूर्व शक्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपको जीवन में ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए तो दुर्गा सप्तशती के दसवें अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, धन की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, परिवार में अशांति से बचें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: तो दुर्गा सप्तशती के 10 अध्यायों के बारे में तो हमने जान लिया, आइए अब बाकी अन्य अध्यायों का महत्व क्या है वो भी समझ लेते हैं।
0: अब जो दुर्गा सप्तशती के अन्य बचे हुए अध्याय हैं, उनका महत्व भी जानते हैं। 11वें अध्याय की अगर बात करें तो 11वें अध्याय के पाठ से हर तरह की चिंता दूर हो जाती है, तनाव समाप्त होता है। और 11वें अध्याय के पाठ से व्यापार में बहुत सारी सफलता मिलती है। 12वां अध्याय, 12वें अध्याय के पाठ से रोगों से छुटकारा मिलता है और नाम यश मिलता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। 13वां अध्याय, जब आप 13वें अध्याय का पाठ करते हैं तो देवी की कृपा और भक्ति आपको मिलती है और व्यक्ति की हर तरह के संकट से रक्षा होती है। अचानक कोई बड़ा संकट जीवन में आ गया तो 13वें अध्याय का पाठ करिए, आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशियों के राशिफल को जानने का, तो आइए जानते हैं जिन लोगों की राशि है मकर, कुंभ और मीन, क्या कहता है उनका राशिफल।
0: मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चोट चपेट से सावधान रहें। देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जानेंगे पंडित जी से ही कि आज का तीसरा प्रश्न वो किसका और कहां से लेने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न चंद्रकला जी ने हमें लिखा है और चंद्रकला जी हमें मुंगेर से मेल लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री

0: रहेगा। चंद्रकला जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से उनके विवाह का समय चल रहा है साल 2027 के शुरुआती समय में। इनका विवाह अवश्य हो जाएगा और वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। आपकी पुत्री के साथ ज्यादातर संभावना ये बनती है कि उनका विवाह उनकी अपनी इच्छा से होगा, जाने पहचाने लड़के के साथ। फिलहाल आप ऐसा करें, अपनी पुत्री को एक मोती बनवा करके पहना दें, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती पहनाएं और रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए कहें तो काफी बेहतर होगा।
1: पंडित जी, अब वक्त हो गया आज के चौथे प्रश्न का। तो आज का चौथा प्रश्न आप किसका लेने वाले हैं?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न राजन जी ने हमें लिखा है और राजन जी हमें मेल लिखते हैं इंदौर से। इनकी जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर 1981, जन्म का समय शाम के 7 बजे, जन्म का स्थान है उज्जैन। मेल लिखते हैं इंदौर से। राजन जी कह रहे हैं कि व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया है, तो कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और भविष्य कैसा रहेगा? राजन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कर्ज से मुक्ति पाने में अभी 1-1.5 साल का समय लगेगा। लगभग 2028 में, मई के बाद, आप कर्ज से छुटकारा पा सकेंगे। आने वाले समय में आपके व्यापार के हालात बेहतर होंगे और आर्थिक स्थिति आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएगी। फिलहाल आप ऐसा करें, सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और एक पन्ना लगभग 6-8 रत्ती का चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करें तो आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती के बारे में। तो क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ कोई भी व्यक्ति कर सकता है या इसे करने के कुछ नियम होते हैं?
0: जी देखिए, वैसे तो ऐसी कोई वर्जना नहीं है कि कौन करेगा नहीं करेगा, कोई भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती को मंत्रों के माध्यम से कीलित कर दिया गया है, बांध दिया गया है। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले उसका उत्कीलन करना होता है, उसके मंत्रों को खोलना होता है। जब आप सप्तशती का उत्कीलन कर लेते हैं और उसके बाद पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का वास्तविक फायदा आपको होता है। बिना उत्कीलन के और पाठ के बाद बिना शाप विमोचन के दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण नहीं होता और तब फायदा होने की संभावना नहीं होती।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानेंगे पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।

0: की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, करियर में बड़ा बदलाव होगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, अविवाहितों के विवाह में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की उपासना करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि भगवान राम का माँ दुर्गा से, देवी से विशेष संबंध क्या है। देखिए, श्री राम के अंदर देवी का शक्ति स्वरूप विद्यमान है। चैत्र नवरात्रि में श्री राम का प्राकट्य हुआ था और आश्विन नवरात्रि में श्री राम ने शक्ति की पूजा करके रावण का वध किया था। बिना देवी की कृपा और शक्ति के श्री राम के अंदर शक्ति का अंश नहीं आ सकता।
1: और अब जानेंगे आज के शुभ पहर के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं 15 अक्टूबर 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 15 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में देवी को फूल अर्पित कर दीजिएगा। शिक्षा और एकाग्रता के मामले में लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 15 अक्टूबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो आइए जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा का हाल कैसा रहता है। आज की गुडलक राशि है कुंभ। इनकी शिक्षा साधारण रहती है, लेकिन आगे चल के कोई अलग तरह की शिक्षा लेट जीवन में ग्रहण करते हैं। शिक्षा में सफलता के लिए इनको गणेश जी की उपासना करने से लाभ होगा।
1: गुडलक में हम पहुंच गए हैं आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी

0: हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, तो क्या करेंगे उसके लिए? रोज सुबह और शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे। हर शनिवार हनुमान मंदिर में नारियल अर्पित करेंगे। व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाए ये प्रार्थना करके नियमित रूप से सिक्कों का दान करेंगे, व्यक्ति जल्दी स्वस्थ होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देशों दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है, दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय से कौन सा मिलता है वरदान, दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्या है विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: कश्मीर में सर्दियों की शुरुआत अभी से हो गई है। मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के कारण घाटी में तापमान काफी गिर गया है। हालांकि कुछ दिन पहले मौसम कुछ गर्म जरूर था, लेकिन अब सोनमर्ग, गुरेज घाटी समेत कई ऊंचे क्षेत्रों में सर्द मौसम हो गया है।

0: सीजन की पहली बर्फबारी के साथ ही पहाड़ों ने सफेदी की चादर ओढ़ ली है। हरी भरी पहाड़ियाँ अब बर्फ की सफेदी में समा गई हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित कुरेस घाटी की है, जहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई है, जबकि श्रीनगर समेत घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। अक्टूबर का भी आधा महीना ही गुजरा है और गुरेज में पारा शून्य तक लुढ़क चुका है, जबकि श्रीनगर में भी तापमान 15 डिग्री तक गिर चुका है। सैलानियों के साथ साथ स्थानीय किसानों के लिए भी ये बर्फबारी खुशियों की सौगात लेकर आई है। एक और जहां कश्मीर में पर्यटन में तेजी के आसार है, वहीं सूखे के मौसम से किसानों को राहत मिली है।
1: मंगलवार को 15 डिग्री सेंटीग्रेड श्रीनगर का अधिकतम तापमान रहा, जबकि पहाड़ी इलाकों में खासतौर से गुलमर्ग और गुरेज में तापमान शून्य के आसपास ही रिकॉर्ड किया गया, वो भी रात के बीच में। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल आने वाले 48 घंटे तक पहाड़ों पर और हल्की बर्फबारी हो सकती है, जिससे अब पूरी तरह से कश्मीर में ठंड की शुरुआत हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद मौसम फिर संभलेगा। लेकिन पहाड़ों पर हुई इस ताज़ा बर्फबारी से लोगों ने राहत भी ली है, क्योंकि कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से सूखे का मौसम चल रहा था, लेकिन अब इस बर्फबारी ने न सिर्फ किसानों के लिए जो है एक राहत लाई है, बल्कि साथ ही साथ अब कश्मीर में विंटर टूरिज्म की भी शुरुआत इस बर्फबारी के साथ होने लगी है।
0: आसमान से लगातार हो रही बर्फबारी आज और कल भी जारी रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों में जहां बारिश होगी, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। मौसम के इस बदले मिजाज ने कश्मीर की वादियों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। फिलहाल उत्तरी कश्मीर के इन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद कुदरत का मनमोहक नज़ारा देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में पूरी घाटी सफेद बर्फ की चादर से ढकी होगी। उत्तराखंड में भी मौसम ने करवट बदल ली है। पिछले दिनों हुई बारिश के आगे भी जारी रहने के आसार है। 15 और 16 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम में बदलाव के चलते पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ़ने और तापमान में गिरावट आने की संभावना है।
2: जो बर्फबारी है अगले अभी दो दिन तो हम 3800 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है, जबकि जो है 15-16 तारीख में 3500 मीटर तक के ऊंचाई वाले इलाकों में भी देखने को मिल सकती है। 16 तारीख के बाद एक्टिविटी काफ़ी कम रह जाएगी, सिर्फ नॉर्थ के कुछ जो है बहुत ही बिल्कुल नॉर्थ में हमारे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जनपद हैं, वहीं देखने को मिल सकती है बहुत हल्की से हल्की बारिश।
0: आने वाले दिनों में अच्छी बर्फबारी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। जाहिर है अक्टूबर में हालात जब ऐसे हैं, तो दिसंबर तक पहाड़ी इलाकों में बर्फ का साम्राज्य कायम हो चुका होगा। श्रीनगर से अशरफ वानी, देहरादून से की शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।

भाव चेहरे पर उतर आए तो शब्द मायने नहीं रखते। गीत बांग्ला भाषा में है, पर जो ये भाषा नहीं बोलते समझते हैं, यकीनन बात उन तक भी पहुंच रही है, और ना भी पहुंचे तो दिल को सुकून तो दे ही रहे हैं। छोटी बच्चे के पांव की थिरकन, आंखों के इशारे, हाथों का घुमाव, सब मिलजुल कर एक कहानी कह रहे हैं। उसका ये अंदाज लोगों का दिल छू रहा है।

0: रानी लक्ष्मीबाई को हमने नहीं देखा, पर उनकी वीरता और दृढ़ता की जितनी कहानियाँ सुनी हैं, उससे मेल खाती है ये बच्ची। बचपन में ऐसी ही रही होंगी शायद, आत्मविश्वास से भरी, निडर, निर्भीक, हर मुश्किल का सामना करने को तैयार। तलवारबाजी में तो कोई इन्हें हरा ही नहीं सकता, बराबरी की टक्कर दे रही है। बच्ची का रूप, रंग, अंदाज सब लोगों का ध्यान खींच रहा है। लोग उनके इस हुनर की तारीफ कर रहे हैं। बॉलीवुड के गानों की तो बात ही निराली है। क्लासिक सुनना हो तो ओल्ड इज गोल्ड, नहीं तो फिर 90 के दशक के सदाबहार नगमे दुनिया भर में आज भी गुनगुनाए जाते हैं। दीवानगी चीन में भी है। देखिए कैसे दो कलाकार गोविंदा और करिश्मा कपूर के गाने पर थिरक रहे हैं। वेशभूषा अपनी है पर अंदाज हिंदुस्तानी है। इस वीडियो को लोग बार बार देख रहे हैं। इस उम्र में ये जलवा है तो सोचिए जवानी में क्या अंदाज रहा होगा इनका। साथ में युवा चेहरे भी हैं, पर जो बात दादी अम्मा के डांस में है वो किसी और में कहा। पूरी महफिल लूट ली इन्होंने तो। इसे कहते हैं असली डांसर। ये बुजुर्ग जिस एनर्जी के साथ ताल से ताल मिला रही हैं, उसे देखकर आप डांस के प्रति इनकी दीवानगी समझ सकते हैं। खूबसूरती हो तो ऐसी कि कोई भी दो पल को ठहर जाए। इनकी खूबसूरती के भी चर्चे हैं, इंटरनेट पर वायरल हैं ये। इनके बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये बीजिंग की सबसे खूबसूरत महिला ट्रैफिक पुलिस हैं और एक इंटरनेट सेलिब्रिटी भी। ऐसे में लोग उन्हें देखने अलग अलग शहरों से पहुँचते हैं। इनके फैन फॉलोइंग का तो पता नहीं, पर खूबसूरत तो है ये।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है? दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय से कौन सा मिलता है वरदान? दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्या है विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
9: शारदीय नवरात्र का आज पांचवा दिन, विधि विधान से उरी मां स्कंद माता की आराधना, देश भर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। लद्दाख को मिलेगी विकास की सौगात, आज पीएम मोदी करेंगे करीब 3,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, ले एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी तोहफा देंगे। एशियन गेम्स में पदक वीरों से आज मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाम 4:30 बजे मुलाकात। भारत ने एशियन गेम्स में 21 गोल्ड समेत जीते थे कुल 85 पदक। जम्मू कश्मीर में मौसम की मेहरबानी बरकरार, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में ताजा बर्फबारी, बड़ी संख्या में आ रही हैं पर्यटक। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 का ग्रैंड रिलीज, चेन्नई में सिनेमा हॉल के बाहर फैंस का डांस, फिल्म हिंदी तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी होगी रिलीज।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख
9: उम्मीदों भरे पहर की खुशभरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पन, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
10: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
10: शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे शक्ति की आराधना के महापर्व शारदीय नवरात्र के साथ। आज नवरात्र का पांचवा दिन है। मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है। देश भर में देवी भक्ति की उमंग है। मंदिरों में शंखनाद गूंज रहा है। घंटियों की आवाज और मां के जयकारों से माहौल भक्तिमय है। मां के दर्शन पूजन और आशीर्वाद के लिए भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। आपको लेकर चलेंगे देश के प्रमुख देवी मंदिरों में, जहां मां के जयकारों के बीच हर तरफ शक्ति की महिमा और भक्ति का उल्लास नजर आ रहा है। तो वही नवरात्र में गुजरात से लेकर देश के कोने कोने तक गरबा और दांडिया की धूम देखने को मिल रही है। ढोल की थाप पर हर कोई थिरकना चाहता है। गरबा की अब गोल घूमती चाल हो या फिर दांडिया के जोशीले स्टेप्स, हर कोई इस भक्तिमय रंग में रंगना चाहता है। लेकिन सवाल है कि गरबा खेलना शुरू कैसे करें, स्टेप्स कौन से हैं और उन्हें आसानी से कैसे सीखें। तो आपकी इस मुश्किल को आसान बनाएंगे GNT स्टूडियो में मौजूद गरबा ट्रेनर के साथ, जो आपको सिखाएंगे गरबा के आसान और शानदार स्टेप्स।
11: तो आपको माँ दुर्गा के भव्य पंडालों में भी हम लिए चलेंगे। पश्चिम बंगाल के पंडालों में माँ के दिव्य स्वरूप के साथ शिल्प संस्कृति और कल्पनाओं का संगम हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। इसी भव्यता की झलक सिलीगुड़ी में भी दिख रही है। यहाँ स्वर्ण महल की तरह दमकता दुर्गा पूजा पंडाल अपनी चमक और खूबसूरती से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। पंडाल बाहर से जितना भव्य नजर आता है, अंदर से भी उतनी ही खूबसूरती और उतनी ही मनमोहकता इसमें नजर आती है।
10: तो वहीं आपको मंगलुरु के दशहरा उत्सव की रौनक भी दिखाएंगे। 10 दिनों से इस धार्मिक आयोजन में श्री गोकर्णनाथेश्वर मंदिर पूरी तरह से रंगा हुआ नजर आया। मंदिर परिसर शानदार लाइटों से जगमग है। तो वहीं मंदिर तक आने वाले सभी रास्तों पर दशहरा समारोह की भव्य सजावट की गई है। 10 दिनों के इस उत्सव में धार्मिक और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रंगों की भी अद्भुत झांकी देखने को मिलती है।
11: तो आपको हिमाचल की अनूठी बांस कला की झलक भी दिखाएंगे। अयोध्या का श्रीराम मंदिर, केदारनाथ महादेव मंदिर, आदि हिमानी चामुंडा मंदिर और कई प्रसिद्ध मंदिरों की रेप्लिका बांस कला से बनाई गई। बांस और लकड़ी से हिमाचल के ऐतिहासिक मंदिरों की आकर्षक प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में लगाई गई है। ये सब थोड़ी देर में होगा आपके सामने। फिलहाल वक्त हो गया फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
10: शारदीय नवरात्र के पावन पर्व का आज पांचवा दिन है। नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। मां का रूप बेहद शांत, सुंदर और तेजस्वी है। मां के चेहरे पर दिव्य आभा होती है और मां का वर्ण गौर है और इसलिए स्कंद माता को देवी गौरी और पार्वती भी कहा जाता है। देश भर में माता के मंदिरों में सुबह से ही दर्शन पूजन का दौर जारी है।
11: मोतिहारी में मां दुर्गा के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। इस दौरान पूजा पाठ और जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा है। मां दुर्गा की आराधना के लिए दूर दूर से भक्त यहां पहुंच रहे हैं।
10: गुजरात के अमरेली जिले में सावन कुंडला शहर में देशी रास गरबा की धूम देखने को मिल रही है। बालखोडिया रास मंडली में इस पारंपरिक विरासत को जीवंत रखा है। ये परंपरा पिछले 78 सालों से जारी है। आधुनिक डीजे और ऑर्केस्ट्रा के दौर भी यहां पर 3 पीढ़ियों से कलाकार विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। पारंपरिक वेशभूषा और देशी सुरों के साथ गरबा से माँ जगदम्बा की आराधना की जाती है।
11: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एशियन गेम्स के पदक वीरों से मुलाकात करेंगे। देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम ऊंचा करने वाले इन खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री मोदी सम्मानित करेंगे। आज शाम करीब 4 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में समारोह के दौरान ये मुलाकात होगी। एशियन गेम्स में भारत ने 21 गोल्ड समेत 85 पदक जीते हैं।
10: आज लद्दाख को विकास की मेगा सौगात मिलने जा रही है। बुनियादी ढांचा, सामरिक सुरक्षा और विकास को नई रफ्तार देने के लिहाज से आज का दिन खास है। पीएम मोदी करीब 3,500 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ये परियोजनाएं लद्दाख में हर मौसम में कनेक्टिविटी, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और गंभीर जल संकट के समाधान में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।
11: बरेली में भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने आसमान में ऐसा प्रदर्शन किया कि दर्शक देखते रह गए। 5 हेलीकॉप्टर्स ने एक साथ उड़ान भरकर हैरतअंगेज फॉर्मेशन बनाई। अभी हेलीकॉप्टर एक दूसरे के करीब से गुजरे तो कभी हवा में लूप लगाकर रोमांच उन्होंने बढ़ाया। एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद स्कूली बच्चे, युवाओं और शहरवासियों ने तालियां बजाकर पायलट्स का उत्साह बढ़ाया। साल 2018 के बाद सारंग टीम बरेली लौटी है। 17 अक्टूबर तक चलने वाले 5 दिवसीय शो में स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की ताकत और पायलट्स के सटीक तालमेल की झलक देखने को मिल रही है।
9: बिहार की सहरसा में महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक शामिल हुई। नगर निगम की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे और देश के अलग अलग हिस्सों से आई महिला पहलवानों ने अपने दांव पेच का प्रदर्शन किया। वहीं साक्षी मलिक ने महिला खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।
11: जम्मू कश्मीर में मौसम की मेहरबानी बरकरार है। गुलमर्ग समेत कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई। इसी हसीन मौसम में वादियों का दीदार करने बड़ी संख्या में सैलानी भी यहां पहुंच रहे हैं।
9: रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। चेन्नई से लेकर मुंबई तक फैंस में जोरदार उत्साह है। नाच गाकर फैंस अपने चहेते कलाकार की मूवी रिलीज का जश्न मना रहे हैं।

शुभ समाचार की शुभ शुरुआत शक्ति की आराधना के महापर्व नवरात्र से करते हैं। देश भर में आस्था के रंग बिखरे हुए हैं। देश का कोना कोना माँ दुर्गा की भक्ति में सराबोर है। आज नवरात्र का पांचवा दिन है और पांचवें दिन माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की आरती की जाती है, पूजा की जाती है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक भक्त माँ स्कंद माता की पूजा कर रहे हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध छतरपुर मंदिर में भक्तों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है और झंडेवालान मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं दुर्गा पूजा की परंपरा के लिए प्रसिद्ध पश्चिम बंगाल में एक से बढ़कर एक पंडाल सजे हुए हैं। यहां सजाए जाने वाले पूजा पंडाल मां दुर्गा की कलात्मक प्रतिमाएं, पारंपरिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं।

0: वैसे तो देवी के हर स्वरूप की पूजा मातृ शक्ति के रूप में ही होती है, लेकिन स्कंद माता के तौर पर माँ की सबसे करुणामय और कृपालु छवि की उपासना की जाती है। चैत्र नवरात्र में पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। मान्यता है कि वो भगवान कार्तिकेय की माता है। स्कंद का अर्थ होता है कार्तिकेय और माता यानी जन्म देने वाली माँ, इसी कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माना जाता है कि नवरात्र की पंचमी तिथि पर जो भक्त स्कंद माता की आराधना करते हैं, माता उन पर पुत्र के समान अपना स्नेह लुटाती हैं और उनके परिवार और वंश के फलने फूलने का आशीर्वाद देती हैं। आपको बताते हैं माता के स्वरूप के बारे में। स्कंद माता का रूप और सौंदर्य अद्वितीय है। माँ स्कंद माता चार भुजाओं वाली है। उनके गोद में बाल रूप में भगवान कार्तिकेय विराजते हैं। उनके एक हाथ में कमल पुष्प होता है, दूसरे हाथ में वरदान की मुद्रा दिखाई देती है। मान्यता है कि माँ स्कंद माता की आराधना लक्ष्य फलदायी है। कहते हैं कि देवी स्कंद माता की उपासना उनके लिए अत्यंत कल्याणकारी होती है जो संतान सुख से वंचित है।
1: जिनको संतान की कामना हो वह संतान के लिए कार्य कर सकती हैं, और जिनको विद्या बुद्धि में एकाग्रता नहीं आती है विद्या प्राप्ति करने में, ऐसे लोगों को भी अपने बच्चों को स्कंद माता का पूजन कराने से उन बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है और उनको लाभ मिलता है।
0: माँ स्कंद माता की पूजा से संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़े सभी कष्ट दूर होते हैं। संतान का भविष्य भी उज्जवल और सुरक्षित होता है। बुद्धि बल और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। माँ स्कंद माता की पूजा से बृहस्पति मजबूत होता है। बृहस्पति से जुड़ी तमाम तरह की समस्याएं दूर होती है। माना जाता है कि विधि विधान से स्कंद माता की आराधना से भक्तों की झोली खुशियों से भर जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कि माता के इस स्वरूप की उपासना कैसे करनी चाहिए। पूजन स्थल को शुद्ध कर माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ को पीले या सफेद पुष्प अर्पित करें। संतान की कुशलता और परिवार की मंगल कामना की प्रार्थना करें। स्कंद माता को विशेष रूप से केले का भोग लगाना शुभ माना जाता है। स्कंद माता को संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिशाषी देवी माना जाता है। उनके पूजन से भक्तों को यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। उनके ध्यान से हमेशा कल्याण होता है और आशीर्वाद मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो वहीं बिहार के सहरसा में मां उग्रतारा का ऐसा दिव्य धाम जहां पर नवरात्र के दौरान आस्था साधना और शक्ति की त्रिवेणी देखने को मिलती है। महिषी गांव में धर्ममूला नदी के तट पर स्थित वशिष्ठ आधारिता मां उग्रतारा शक्तिपीठ में दुर्गा पूजा के मौके पर खास अनुष्ठान किए जा रहे हैं और मान्यता है कि यहां पर मां सती का एक नेत्र गिरा था और यही वजह है कि इस धाम की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। नवरात्र की पहली पूजा से ही यहां श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों के साथ विदेशों से भी भक्त माँ के दर्शन और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पहुँच रहे हैं। सप्तमी की संध्या पर भव्य आरती और जागरण होता है तो वहीं मंदिर परिसर में बच्चे वेद मंत्रों के साथ दुर्गा पाठ कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ चिनाचार और षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना की जाती है। वहीं नवमी पर बलि की परंपरा और तंत्र साधना के लिए जुटने वाले साधक इस शक्तिपीठ को और भी खास बनाते हैं। आस्था ऐसी कि भक्तों को माँ के दरबार से खाली हाथ ना लौटने का विश्वास है।
3: लोग यहाँ बहुत दूर दराज के लोग आते हैं, माँ के नज़दीक में जो मन में रखते हैं वो पूरा होती है और उसके बदले में यहाँ पर अनेकानेक जो मन में उनको भगवती देती है बोलने के लिए या संकल्प लेने के लिए वो कार्य यहाँ करते रहते हैं, जैसे पाठा कटाना, पारा कटाना, भगवती की श्रृंगार करना, भगवती की भोग राग लगाना, ये सब होती रहती है। इस बीच में जो है सो इनकी तीन रूप मानी जाती है, काली, तारा, दुर्गा।
2: नवरात्रि में 9 दिन का व्रत, माँ दुर्गा की आराधना और फलाहार, लेकिन हर दिन एक जैसे पकवान खाते खाते अगर स्वाद बदलने का मन हो तो अब फलाहार की थाली में भी कई नए विकल्प मौजूद हैं, चाट कबाब से लेकर श्रीखंड तक। जयपुर में पारंपरिक फलाहार को नए अंदाज में पेश करने की एक खास पहल देखने को मिल रही है, जहां शेफ अभिषेक शर्मा ने व्रत के व्यंजनों में स्वाद और विविधता का अनूठा मेल तैयार किया है। ये स्पेशल थाली सिर्फ नवरात्रि ही नहीं बल्कि साल भर अलग अलग व्रत रखने वालों के लिए भी उपलब्ध है, यानी सात्विक भोजन की परंपरा बरकरार रखते हुए फलाहार को स्वाद और नए विकल्पों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
4: नवरात्रि चल रही है और काफी सारे ऐसे भारतीय हैं जो व्रत करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, और ऐसे में जब व्रत के खाने की बात करें तो कुछ चीजें हैं जैसे फलाहार कर लिया, कुट्टू की पूड़ी खा ली, आलू की सब्जी खा ली या फिर आलू के वेफर्स खा ली, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक फिक्स्ड मेन्यू बन चुका है। और कह सकते हैं कि 9 दिन लगातार ये चीजें खाना बोरिंग भी हो जाता है और हर किसी को सेम खाना तो रोज नहीं पसंद होता है, क्योंकि कहा जाता है कि दाल चावल कौन रोज खा सकता है, तो जब दाल चावल नहीं खा सकते तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप रोज खाएं और उससे बोर ना हो। तो आपकी वो बोरियत मिटाने के लिए गुड न्यूज टुडे पे हम ये गुड न्यूज भी लेके आ गए हैं कि नवरात्रे में अलग अलग थालियां हैं वो चलने लग गई है, जिसमें आपको ऐसा खाना मिलेगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, होगा सारा ऐसा खाना जो आप नवरात्र में बिल्कुल खा सकते हैं और वही सामग्री है जो आप अक्सर घर में इस्तेमाल करते हैं, पर उससे कुछ इनोवेशन ऐसी की गई है जिससे आपके जो टेस्ट बड्स हैं उनको भी मिलेगा एक सरप्राइज। और ये इनोवेशन है शेफ अभिषेक की, जो कि श्री मोटूराम प्रसादम के शेफ हैं, और इन्होंने ये ऐसी थाली क्यूरेट की है जो कि एक साथ 3 से 4 लोग भी इसको एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ आके अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हैं। तो सर, नवरात्रि की स्पेशल थाली आपने क्यूरेट की है, क्या थॉट है और कितने टाइम पहले इसको लॉन्च किया था?
5: सो इसको ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए, हम फर्स्ट है जिसने नवरात्रि थाली इंट्रोड्यूस करी जयपुर में। सो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कपल्स होते हैं, घर में 2 जनों के लिए क्या बनाएं, सो घर में बनता है कुट्टू की पूरी बनती है, आलू की सब्जी बनती है, रायता बनता है, साबुदाना वड़े बनते हैं, तो उसको एक थाली में क्यूरेट किया, एक छोटी थाली निकाली, धीरे धीरे करते हुए वो थालियां तो है ही, साथ में हर साल कुछ ना कुछ नया भी निकालते रहते हैं, नई थालियां बनाते हैं। तो इस नवरात्र 2026 में ये हमारा है नवरात्रि।
2: नवरात्र में दुर्गा पूजा के पंडाल अपनी अनूठी सजावट और खास थीम के चलते आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कहीं पर शाही महलों की झलक देखने को मिल रही है तो कहीं देश प्रेम की भावना, राधा कृष्ण के प्रेम से लेकर मां दुर्गा की आराधना तक हर पंडाल में कुछ नया नजर आ रहा है। आस्था और क्रिएटिविटी का यही मेल इस उत्सव को खास बना रहा है।

0: कहीं कला में आस्था के रंग है तो कहीं भव्यता में भक्ति का संसार। दुर्गा पूजा के पंडालों में मां के दिव्य स्वरूप के साथ शिल्प संस्कृति और कल्पनाओं का संगम हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। इस भव्यता की पहली झलक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में देखने को मिलती है, जहां स्वर्ण महल की तरह दमकता दुर्गा पूजा पंडाल अपनी चमक और खूबसूरती से हर किसी का ध्यान खींच रहा है। माँ दुर्गा के वैभव को दर्शाता ये पंडाल शिल्प और सजावट का शानदार नमूना है। पंडाल बाहर से जितना भव्य नजर आता है, अंदर की खूबसूरती भी उतनी ही मनमोहक है। शानदार झूमर इसकी चमक बढ़ाते हैं। भीतरी हिस्से में की गई बारीकी नक्काशी इसके शाही अंदाज को और निखारती है। और इस भव्यता के बीच विराजमान है मां भवानी। मां के दरबार में यह भव्यता अब देशभक्ति के रंगों से भी रूबरू कराती है। कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में भक्ति के साथ देश प्रेम की भावना को भी खूबसूरती से सजाया गया है।
1: बंगाल के सबसे बड़े उत्सव दुर्गा पूजा उसका शुभारंभ हो चुका है और इस समय हम पहुंच चुके हैं शहर कलकत्ता के एक नामी मंडप जो है सुरुचि संघ है वहां पर। इस साल सुरुचि संघ का 73वां साल है, 73 ईयर्स, और इस साल उन लोगों का ये जो मंडप है, ये मंडप का थीम है उच्च।
0: पंडाल में माँ की शक्ति और देशभक्ति का अनूठा संगम लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो यहाँ पर नहीं रहती हूँ, बट मेरा इधर मामा घर है तो मैं आई हूँ इधर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा पहला टाइम है पूजा के टाइम, मैं पहली बार कोलकाता घूमने आई हूँ पूजा के टाइम, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा फर्स्ट पैंडल है ये, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
3: बहुत अच्छा लगा ये पैंडल। सुरुचि संघ हर ईयर ही अच्छा करता है, इस ईयर को स्पेशल है, इसलिए बहुत अच्छा लगा।
0: भक्ति के इस उत्सव में महामिलन का संदेश देखने को मिल रहा है। पंडाल में राधा कृष्ण की मनमोहक प्रतिमाओं के साथ माँ दुर्गा का दिव्य स्वरूप आस्था और प्रेम के रंगों को एक साथ समेटे हुए है।
4: श्री कृष्णा एक हाथ में चक्र और एक हाथ में बांसुरी बजा के श्री राधा जी को लेके जो रास किए थे, जो संहार करके जो रास लीला में शामिल हुए थे, उसमें पूरा प्रकृति, पूरा जल, पूरा वायु, पूरा सब कुछ, गाय, भैर, बक्षी, सब एक साथ में शामिल होके, मनुष्य सब एक साथ में शामिल होके जो महामिलन करके शांति का वार्ता दिए थे, वही हम लोग डिपिक्ट किए हैं।
0: हर पंडाल की अपनी छटा, हर सजावट के पीछे एक कल्पना और हर दरबार में माँ के प्रति अटूट आस्था, यही रंग मिलकर दुर्गा पूजा को ऐसा उत्सव बनाते हैं जहाँ कला भी उत्सव मनाती है, संस्कृति अपने पूरे वैभव के साथ खिल उठती है। कोलकाता से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं और आज पांचवा दिन है जब पूरा देश मां स्कंद माता की पूजा अर्चना कर रहा है। सुबह से भक्त मंदिरों में पहुंचे हुए हैं माता की एक झलक पाने के लिए। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र दुबे जुड़ रहे हैं मुंबई से और हमारे साथ धनंजय साबले जुड़ रहे हैं अकोला से। तो चलिए सबसे पहले आपको अकोला लिए चलते हैं जहाँ धनंजय जी इस वक्त मौजूद हैं। धनंजय जी आज आप कहाँ पर हैं, किस मंदिर में, किस पंडाल में आपकी मौजूदगी है, जरा जीएनटी के दर्शकों को दर्शन करवाइए।
6: जी बिल्कुल गीतिका जी और दीपाली जी, कल हमने महाकाली का जो है सौम्य रूप देखा था, आज जो महाकाली का रियल रौद्र रूप है उस मंदिर में हम महाकाली के मंदिर में है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर माँ की ये सुंदर जो मूर्ति है वो किस तरह की है, और सबसे अहम बात यही है कि महाकाली के इस मंदिर में जो है वो माता का ये काली का रूप जो है ये बहुत सुंदर यहाँ पर दिखाई देता है, और भक्त भी जो है, और यहाँ पर जो है सात देवियों के जो पूरे उनके नाम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, भक्त भी भी जो है बड़ी खास के साथ जो है यहाँ पर माता के दर्शन के लिए माता किस तरीके से यहाँ पर भर करती है माँ से प्रार्थना करते हैं यहाँ पर चतुर्थी
5: जी। धनंजय आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, आपके पास लौटेंगे हम। इसी बीच धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुंबई में मौजूद हैं। धर्मेंद्र, किस तरह की तस्वीरें, कौन से पंडाल में, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, किस तरह की रौनक आज स्कंद माता की पूजा के दिन देखने को मिल रही है?
7: बिल्कुल आपने सही कहा है कि आज नवरात्रि का पांचवा दिन है और मुंबई लगातार नवरात्रि उत्सव में रंग चुका है। मैं इस समय मौजूद हूँ पटेल चौक की माता रानी के दरबार में। चूंकि रात भर यहाँ पर खूब गरबा खेला गया है, इस वजह से अभी सुबह के वक्त बहुत लोग यहाँ नहीं देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन 12:30 तक गुजराती समाज आसपास यहाँ रहता है, रहवासी हैं यहाँ के, वो सभी यहाँ पर गरबा खेलते हैं। एक से बढ़कर एक भजन कीर्तन भी रोज़ाना ही यहाँ होता है। पटेल चौक की ये जो माता रानी है, इनकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, इन्हें बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं और लगातार एक बड़ी संख्या में जो देवी भक्त हैं वो इनके दरबार में हमेशा पहुँचते रहते हैं। भले ही माता की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत इन्हें माना जाता है और यहाँ पर विराजमान है। रात भर यहाँ पर गरबा खेला जाता है। घाटकोपर इलाके में स्थित है ये पटेल चौक और घाटकोपर इलाका स्पेशली गुजराती समाज के लिए जाना जाता है। एक बड़ी संख्या में उनका गुट यहाँ पर रहता है।
5: और जब बात गरबे की, बहुत सुंदर और बहुत दिव्य माँ की तस्वीर लग रही है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। धन्यवाद आपका और धन्यवाद धनंजय जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए शहर शहर गरबा के रंग।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समान

0: खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन, विधि विधान से हो रहे माँ स्कंद माता की आराधना, देश भर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। लद्दाख को मिलेगी विकास की सौगात, आज पीएम मोदी करेंगे करीब 3,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, ले एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी तोहफा। एशियन गेम्स के पदक वीरों से आज मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, शाम 4:30 बजे मुलाकात। भारत ने एशियन गेम्स में 21 गोल्ड समेत जीते थे कुल 85 पदक। जम्मू कश्मीर में मौसम की मेहरबानी बरकरार, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में ताजा बर्फबारी, बड़ी संख्या में आ रहे हैं पर्यटक। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 का ग्रैंड रिलीज, चेन्नई में सिनेमा हॉल के बाहर फैंस का डांस, फिल्म हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: तो ब्रेक के बाद शुभ समाचार में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। दक्षिण भारत में भी शक्ति उत्सव की भव्य और मनमोहक झलक देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटका के तटीय शहर मैंगलुरु के विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव की, जहां पर भक्ति परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। माँ दुर्गा की आराधना के साथ मनाया जाने वाला ये 10 दिवसीय उत्सव अपनी भव्य सजावट, जगमगाती रोशनी, आकर्षक झांकियों और अनूठी धार्मिक परंपराओं के लिए खास पहचान रखता है। उत्सव के दौरान पूरा शहर मानो रोशनी और आस्था के रंगों में रंग जाता है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है, वहीं पारंपरिक लोक कलाएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस आयोजन की रौनक को और बढ़ा देती हैं। इस महापर्व में शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले पर्यटक भी इस उत्सव की भव्यता को करीब से देखने के लिए मैंगलुरु का रुख कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोकर्णनाथेश्वर मंदिर में किस तरह समारोह का आयोजन किया गया है, मैंगलुरु में दशहरा उत्सव कैसे मनाया जा रहा है। 10 दिनों का दशहरा उत्सव जारी है, लोग यहां पर दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

0: और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक के मैंगलुरु का दशहरा उत्सव आपको दिखाते हैं, जिसकी भव्यता और अनूठी परंपराओं की गूंज देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी सुनाई देती है। यही वजह है कि इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से लोग मैंगलुरु पहुंचते हैं और इन दिनों पूरी नगरी का नजारा देखते ही बन रहा है। सड़कें रोशनी से जगमगा रही हैं, रंग बिरंगी सजावट हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। लेकिन इस बार उत्सव की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की भव्य और आकर्षक झांकियां, जिन्हें आधुनिक टेक्निक और डिजिटल इफेक्ट के जरिए एक नया और शानदार रूप दिया गया है। और इसमें सबसे खास है महादेव की प्रतिमा, जिसने लोगों का दिल जीत लिया। महादेव की जटाओं से गंगा बह रही है, जो आते जाते सभी भक्तों का मन मोह रही है, आपको मंत्रमुग्ध कर रही है।
1: बेंगलुरु का दशहरा उत्सव हम आपको दिखा रहे हैं। शहर की सजावट ऐसी है कि नजरें हटाना मुश्किल है, पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ नजर आ रहा है।
0: ये दशहरा उत्सव देवी दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है, जो भक्ति, ज्ञान और समाज में शक्ति के अनेक स्वरूपों का प्रतीक है। इस उत्सव में धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रंगों की भी अद्भुत झांकी देखने को मिलती है।

0: ये मैंगलुरु के दशहरा उत्सव की रौनक है। 10 दिनों के इस धार्मिक आयोजन में श्री गोकर्णनाथेश्वर मंदिर पूरी तरह रंगा नजर आ रहा है। न सिर्फ मंदिर परिसर शानदार लाइटों से जगमगाया है, बल्कि मंदिर तक आने वाले सभी मार्गों पर दशहरा समारोह की भव्य सजावट है। ये उत्सव देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है, जो भक्ति, ज्ञान और समाज में शक्ति के अनेक स्वरूपों का प्रतीक है। 11 अक्टूबर से शुरू हुए इस 10 दिनों के उत्सव में धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रंगों के भी अद्भुत झांकी देखने को मिलती है। विशाल शोभा यात्रा के दौरान मंदिर में मां शारदा, नवदुर्गा और भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाएं स्थापित किए जाने से इस उत्सव का शुभारंभ हुआ। इस उत्सव की सबसे बड़ी पहचान पारंपरिक पीली पेशा है, जिसमें कलाकार शरीर पर बाघ की तरह पेंट करके ढोल की थाप पर शानदार नृत्य करते हैं। मंगलुरु के दशहरा उत्सव में शामिल होने के लिए पूरे देश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। नवरात्रि के दौरान आस्था, भक्ति, संस्कृति और खेल भावना के रंगों से भरा ये उत्सव श्रद्धालुओं को और यहाँ आए सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। वो भी क्यों ना, भारतीय धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की इससे अद्भुत वानगी भला और कहां देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं गरबा के रंग।

0: भगवान राम के व्यक्तित्व में सौम्यता है तो रावण के व्यक्तित्व में अभिमान। ये फर्क रामलीला के दौरान दोनों के संवाद से भी झलकता है और इसीलिए रावण की भूमिका निभा रहे कलाकारों के लिए संवाद अदायगी अब महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए आपको ऐसे ही संवादों की कुछ झलक दिखाते हैं।
1: उत्सव यानी कि गुड न्यूज टुडे, जैसा कि हमेशा से हम आपको कहते हैं, और इस बार चूंकि अब नवरात्र है, शक्ति उपासना का पर्व चल रहा है, ऐसे में आज गुड न्यूज टुडे पर स्टूडियो में ही हम आपको दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि दरअसल गरबा का महत्व क्या है, कब से गरबा की शुरुआत हुई और लास्ट मोमेंट में जिन लोगों ने अभी तक स्टेप्स नहीं सीखा है तो वो यहाँ पर सीख सकते हैं। ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं, तो दिव्या हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ भवनीत हमारे साथ मौजूद है। तो कौन सा वो सॉन्ग है और स्टेप कौन से?
2: बहुत ही प्यारा एक सॉन्ग है, गोरी राधा ने कालो कान।
1: अरे ये तो गुजरात का है।
2: हाँ। और
1: सभी तो इसको क्या गढ़वी जी ने गाया है वहाँ से?
2: हाँ जी उन्होंने गाया है। और ये अगेन कृष्ण और राधा के है, गोरी राधा निकालो कान, कान मतलब कृष्ण जी, उसके स्टेप सीखते हैं हम। सो इसे बहुत ही प्यारी सी कोरियोग्राफी है जो हम करेंगे। वी गो 1 and 2, सो वी आर वॉकिंग, हम सर्कल में जब होते हैं तो हम चलते हैं 1 2 एंड देन वी मेक बांसुरी और हम स्विंग करते हैं 3 4, वी क्लैप ऑन द लेफ्ट साइड 5, टेक सर्कल 6 7 and 8,
1: ओके
2: बस क्लैप 7 and 8, ठीक है। सो इट गोज 1 2 3 4 5 6 7 8,
1: फिर से एक बार करें ना?
2: सर्कल में करें,
1: चलिए सर्कल में करते हैं,
2: चलो रेडी 5 6 7 and 1 2 3 4 5 6,
1: यहाँ पर ये रुक गए कि हमें जो है जब हम बांसुरी वाला पोज कर रहे हैं तब हमें मूव नहीं करना है,
2: नहीं
1: हम जहाँ हैं हम वहीं पर रहेंगे। सुन लीजिए, मेरी तरफ से गलती मत करिएगा, जो आप सर्कल में कर रहे हो तो आप नहीं करिएगा। तो चलिए अभी सर्कल में हम नहीं, पहले हम एक बार ऐसे करते हैं देन फाइनली हम सर्कल करेंगे।
2: ओके 5 6 7 and 1 2 3 4 5 6 7 8,
1: अब सर्कल में।
2: हाँ, और जब हम बांसुरी करते हैं तो वैसे हम सेंटर की तरफ अपना बॉडी रखते हैं, जब हम बांसुरी करते हैं तो वी लुक टुवर्ड्स ईच अदर, तो हम सेंटर की तरफ आपको चेहरा
1: है, गरबा रहता है,
2: उनकी तरफ हम ये करेंगे एंड देन वी अगेन क्लैप, ये भी सेंटर।
1: लेकिन यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई मैं कर देती हूँ, चूंकि हमारे सामने कैमरा है तो हम कैमरा की तरफ टर्न करके ये करेंगे, ठीक है?
2: चलो
1: चलिए
2: 5 6 7 and 1 2 3 4 5 6 7 8,
1: आई थिंक इस बार परफेक्ट, बहुत ही अच्छा रहा। तो ये जो गोरी राधा ने इन्होंने बताया कि वो जो गाना है ये एक्चुअली गढ़वी जी का गाना है और बहुत फेमस वहाँ के वो फोक सिंगर हैं, उनके जितने भी गाने देख लीजिए आप, जितने भी गरबा ग्राउंड्स में जाएंगे आपको सुनने को वहाँ पर मिलेंगे। एंड आई थिंक हम यहाँ भी जो लोग आ रहे हैं वो आप बताइए, चूंकि आप ट्रेनर हैं तो किस तरह से लोग कहते हैं, बॉलीवुड वाले स्टेप्स बताइए या फिर कौन सा फोक बताइए?
2: नहीं नहीं, लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वहाँ के फोक सॉन्ग्स को लेकर, वहाँ के स्टेप्स को लेकर, सो बॉलीवुड से ज़्यादा इंटरेस्ट अब उनको वहाँ के रीजनल वो सीखने में, बस ये है कि हाँ भाषा समझ आती है तो वो और ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं।
1: ये बात तो है। भवनीत आप बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप तो कह रही हैं लगभग कितने, 1 साल से ज़्यादा से आप सीख रही हैं, तो ये जब आप करती हैं, क्योंकि डेली लाइफ जो आपकी होती है, हर कोई वर्किंग है, बिजी रहता है अपनी डेली लाइफ में, लेकिन जब आप उससे निकलकर टाइम निकालकर आप ये कर रही होती हो तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है उसको लेकर?
3: यस मैम, ऑफ कोर्स मैम, एक्चुअली डांस हॉबी है लेकिन पूरा दिन ये हमारी प्रैक्टिस जो होती है रात के समय होती है फ्रॉम 9 PM, तो पूरा दिन हम अपने जो हमारी रेगुलर रूटीन है उससे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, बट स्टिल जैसे ही 9 PM बजते हैं एक अलग ही एनर्जी आ जाती है कि नहीं जाना है, और वहाँ जाके सब भूल जाते हैं और उसी एनर्जी के साथ हम सब मिलके स्टेप सीखते हैं।
1: तो आपकी जो टीचर है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर ट्रेनर है या फिर क्या है? फिर आपको रियायत दे देती है कि कोई नहीं इस बार गलत किया, कोई बात नहीं फिर से सिखाएंगे इसको।
3: मैं हाँ जी जो जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टेप सीखने उनके साथ स्ट्रिक्ट होती है, बट अदरवाइज शी इज कूल,
1: इज शी गुड लर्नर?
2: डेफिनेटली बहुत ही अच्छी लर्नर है और अभी तो दूसरा साल तब कुछ टाइम में सिखाने भी लगेंगे।
1: अरे वाह क्या बात है। गरबा या फिर डांडिया, इसमें एनर्जी बहुत हाई होती है क्योंकि हर स्टेप ऐसा क्या होता है कि उसमें हाई एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए होती है।
2: पीछे मानो खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना।
1: और ये तो ये इतना प्यारा स्टेप है, ये तो आई थिंक किसी भी सॉन्ग के साथ जेल करेगा। नहीं
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो ये एक बहुत ही प्यारी कोरियोग्राफी अभी दिल्ली के बैचेस में हम सिखा रहे हैं अपने बैचेस में, क्योंकि यहाँ पे हिंदी सॉन्ग ज्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे। और फिर जैसे उन्होंने बताया था रास होता है, तो ये रास ही है जो अब हम सीख रहे हैं।
1: बिल्कुल, अभी जो आपने बताया सर्कल में करके बिल्कुल, तो बिल्कुल वो रास वाले स्टेप्स से सारे
2: हैं।
1: तो ये सब लगभग कर लेने में कितना वक्त लगता है, मतलब परफेक्शन पा लेने में कितना वक्त लगता है?
2: काफी समय लगता है, काफी समय लगता है, क्योंकि 2 महीने से तो प्रैक्टिस हम लगाता है। बहुत सारे लोग हैं, कई हैं जो नॉन डांसर्स भी होते हैं जिन जो पहली बार निकल रहे हैं। सो हमारे पास जो बैचेस में बच्चे हैं वो 10 साल से लेके 65 के ऊपर साल के भी लोग हैं, जो एक साथ साथ सब डांस कर रहे हैं, साथ माँ की आराधना करेंगे। जैसा उन्होंने बताया, हम भी एक गरबा रखते हैं, गरबा मतलब मटका जिसमें छेद होते हैं, उसमें दीपक होती है जिसको एक ज्योति और हमारे अंतरात्मा का प्रतीक मानते हैं,
1: शक्ति जो आत्मा है।
2: तो उसके ही
1: क्या बात है।
4: तो गुड न्यूज टुडे पर आप देख रहे थे कि कैसे आपको गरबा करना है, और गरबा की क्लास में हम आपको लिए चले थे। अब आपको लेकर चलते हैं फिल्मी दुनिया में, जहां सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। थलाइवा के चाहने वालों पर उनकी फिल्म का खुमार छाया हुआ है। कहीं थिएटर के बाहर जश्न का माहौल है, तो कहीं ढोल नगाड़ों के साथ फैंस अपने चहेते सुपरस्टार के लिए प्यार जाहिर कर रहे हैं। रजनीकांत की एक झलक और उनका खास अंदाज फैंस के लिए किसी उत्सव से कम नहीं। यही वजह है कि जेलर 2 को लेकर उनके चाहने वालों में खासा क्रेज नजर आ रहा है।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें नोएडा में पोलो के रोमांचक मुकाबले के साथ जिंदल पैंथर कप का समापन हो गया है। इस फाइनल में विमल अचीवर्स ने शानदार खेल दिखाते हुए मेजबान जिंदल पैंथर को 9-6 से शिकस्त दी और खिताब अपने नाम कर लिया। 6 महीने के ब्रेक के बाद जिंदल पोलो एस्टेट में प्रतिस्पर्धी पोलो की वापसी हुई। जिंदल पैंथर कप के साथ ही नोएडा में 1 महीने तक चलने वाले पोलो सीजन का आगाज भी हो गया है। 1 नवम्बर तक यहाँ पर 4 सप्ताह में 4 टूर्नामेंट खेले जाएंगे, और इस दौरान देश के शीर्ष पेशेवर खिलाड़ी घोड़ों पर सवार होकर अपने खेल का दमखम दिखाएंगे। वहीं सांसद नवीन जिंदल ने युवा पोलो खिलाड़ी सवीर गोदारा की तारीफ करते हुए वर्ल्ड कप में उनके खेलने की उम्मीद जताई है, और साथ ही उन्होंने ऐतिहासिक जयपुर पोलो ग्राउंड को लेकर भी उम्मीद जाहिर की कि सरकार देश में पोलो को बढ़ावा देने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
5: देखिए, सागर गोदारा बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, और ये भारत अभी वर्ल्ड कप में खेलने जा रहे हैं, उसके अंदर भी ये एक टीम मेंबर हैं। अल्टीमेटली क्या टीम डिसाइड होती है वो बाद में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन सागर गोदारा डेफिनेटली टीम के हिस्सा होंगे।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है इंस्टा स्टोरी का। अब आपको उन कलाकारों के इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं हैं। देखिए अल्पना बुच की फनी इंस्टा स्टोरी।
6: तुम कितना मेकअप लगाती हो?
7: क्यों, क्या हुआ?
6: अगर तुम इतने मेकअप के पैसे बचा लो तो तुम फरारी ले सकती हो।
7: तुम मेकअप लगाते हो?
6: नहीं।
7: फिर तुम्हारी फरारी कहाँ है?
8: पता है तुझे, कल मेरा फोन ही खराब हो गया।
9: अरे फिर?
8: फिर क्या, खाली थी तो पति के पास बैठ गई, पूरा 3 घंटा बात करी इनसे मैंने।
9: कॉफी बना लो।
8: हाँ, अच्छा आदमी है यार।
0: और इसी के साथ शुभ समाचार में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर
11: जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से लेकर कुपवाड़ा तक बिछी बर्फ की सफेद चादर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में भी छाए घने बादल, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट, बारिश के साथ आंधी की भी चेतावनी। एशियन गेम्स के पदक वीरों से आज मिलेंगे पीएम मोदी, शाम 4:30 बजे मुलाकात होगी। भारत ने एशियन गेम्स में 21 गोल्ड मेडल समेत कुल 85 पदक जीते थे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के अध्यायों की और इसके महिमा की। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। 15 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय 1:30 से लगभग 3 बजे तक दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं दुर्गा सप्तशती के अध्यायों के बारे में। अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है, इस बारे में आज बात करेंगे। दुर्गा सप्तशती है क्या और इसकी खास बातें क्या हैं? ऐसा माना जाता है कि वेदों की तरह दुर्गा सप्तशती भी अनादि है। कहां से प्रकट हुई, कहां से आई, ये अज्ञात है। मार्कंडे पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य तक पहुंची है। माता दुर्गा की, देवी की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में देवी की उपासना के 700 श्लोक दिए गए हैं और ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय और बाकी सारे अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। दुर्गा सप्तशती तंत्र साधना की बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन 700 श्लोकों में तंत्र की शक्तियां हैं, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण और विद्वेषण। तंत्र की जो तमाम शक्तियां हैं वो दुर्गा सप्तशती के श्लोकों में दी गई हैं। और कौन से श्लोक में कौन सी ताकत है ये बड़ा गोपनीय है। इसको जानने के लिए आपको किसी समर्थ गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का महत्व क्या है। पहले जानते हैं प्रथम अध्याय के बारे में। अगर आप दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय पढ़ते हैं तो इससे आपकी समस्त चिंताएं दूर होती हैं और इससे आपका शत्रु भय दूर होता है, शत्रुओं की बाधा शांत होती है, शत्रु और विरोधी आपको परेशान नहीं करेंगे। दूसरा और तीसरा अध्याय, दूसरे और तीसरे अध्याय के पाठ से मुकदमेबाजी में विजय मिलती है, सफलता मिलती है और झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। अगर किसी गलत चक्कर में फंस गए हैं तो उससे आपको छुटकारा मिलता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और चौथे अध्याय के पाठ से देवी की भक्ति भी, देवी की कृपा भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। पांचवा अध्याय, पांचवें अध्याय के पाठ से नकारात्मक ऊर्जा का तंत्र मंत्र आदि का नाश होता है और पांचवें अध्याय का पाठ करने से भय दूर होता है, बुरे सपने दूर होते हैं और तंत्र मंत्र की बाधा का नाश होता है। सिंह राशि, करियर में समस्या हो सकती है, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, धन की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब दुर्गा सप्तशती के बाकी अध्याय को भी जानते हैं। अगर छठवें अध्याय की बात करें तो दुर्गा सप्तशती के छठवें अध्याय के पाठ से बड़ी बाधा का नाश किया जा सकता है। इसको पढ़ने से बड़ी बाधा दूर होती है। कितना भी बड़ा संकट हो, छठवें अध्याय का पाठ करने से वो दूर हो जाता है। सातवां अध्याय, सातवें अध्याय के पाठ से विशेष गुप्त कामनाओं की पूर्ति होती है। आपके मन में कोई गोपनीय इच्छा है जिसकी आप पूर्ति करना चाहते हैं तो सातवें अध्याय का पाठ आपको करना चाहिए। आठवां अध्याय, आठवें अध्याय के पाठ करने से वशीकरण की, दूसरों को अपने वश में करने की शक्ति मिलती है और नियमित रूप से धन का लाभ जीवन में होना शुरू हो जाता है। नवम अध्याय, नवा अध्याय, नवे अध्याय के पाठ से संपत्ति का लाभ होता है, प्रॉपर्टी मिलती है और खोए हुए व्यक्ति का पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति चला गया हो, कोई सूचना ना मिल रही हो तो नवम अध्याय का पाठ करना चाहिए। दसवां अध्याय, दशम अध्याय, दसवें अध्याय के पाठ से भी गुमशुदा की तलाश होती है, अपूर्व शक्ति और संतान सुख की प्राप्ति शांति होती है। अगर आपको जीवन में ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, तो दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, परिवार में अशांति से बचें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चोट चपेट से सावधान रहें, देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जो दुर्गा सप्तशती के अन्य बचे हुए अध्याय हैं उनका महत्व भी जानते हैं। 11वें अध्याय की अगर बात करें तो 11वें अध्याय के पाठ से हर तरह की चिंता दूर हो जाती है, तनाव समाप्त होता है, और 11वें अध्याय के पाठ से व्यापार में बहुत सारी सफलता मिलती है। 12वां अध्याय, 12वें अध्याय के पाठ से रोगों से छुटकारा मिलता है और नाम यश मिलता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। 13वां अध्याय, जब आप 13वें अध्याय का पाठ करते हैं तो देवी की कृपा और भक्ति आपको मिलती है और व्यक्ति की हर तरह के संकट से रक्षा होती है। अचानक कोई बड़ा संकट जीवन में आ गया तो 13वें अध्याय का पाठ करिए, आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। अगर आपका कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम काफी समय से रुका हुआ है तो नवरात्रि में लगातार 3 दिनों तक देवी को लाल फूलों की माला अर्पित करिएगा। अगर लगातार 3 दिन तक आप देवी को लाल फूलों की माला अर्पित करें तो आपका बड़े से बड़ा काम बड़ी आसानी से बन जाएगा। कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, तो क्या करेंगे उसके लिए? रोज सुबह और शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, हर शनिवार हनुमान मंदिर में नारियल अर्पित करेंगे, व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाए, ये प्रार्थना करके नियमित रूप से सिक्कों का दान करेंगे, व्यक्ति जल्दी स्वस्थ होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

एक बात तुम याद रखना मेरे पागलो, कुछ भी स्थाई है नहीं, एक पल में कब कैसे क्या बदल जाए कोई ठिकाना नहीं है जिंदगी का। नेपाल से देखो, ना बारिश ना बादल, भयंकर धूप और 20 फुट ऊंची मलबे में घर दब गए, जिंदगियां दब गईं। परिवारों के परिवारों का आता पता नहीं है, जिंदगी कागज की पुड़िया की तरह है, कब ये गीली हो जाए कोई ठिकाना नहीं। जिंदगी पानी के बबूले की तरह है, कब फूट जाए कोई पक्का नहीं। जिंदगी धुआं के फुहार की तरह है, कब बिखर जाए कोई ठिकाना नहीं है। जिंदगी मिट्टी के ढेले की तरह है कि एक पानी की बूंद पड़ी नहीं कि बिखर गया। यहां कुछ भी पक्का नहीं है, इसलिए जो दिन है जो तुम्हें मिले हैं यार, वो मौज में जियो, मुस्कुरा के जियो। लड़के नहीं हंस के जियो, रोते तो सब हैं और रोके क्या जीना। एक बात तुम याद रखना, चाहे तुम रोके जियो या हमारी तरह हंस के, जिंदगी तो जीनी पड़ेगी चाहे जो हो जाए। उसको तुम मना ना कर पाओगे, उसको तुम ना ना कह पाओगे, जीनी तो पड़ेगी। तो रोने से बेहतर है हंस के जिए। रोना तो है ही है सबको, अपन रोने वाली लाइन में क्यों खड़े हो जब लाखों लोग बुरा कर रहे हो तो हम उनके लाइन में अच्छा करके खड़े हो जाएं। जब लाखों लोग झूठ बोल रहे हो तो हम अकेले ही सही सच बोल करके खड़े हो जाएं। तुम कभी अंदाजा लगाना, हम कभी कभी एयरपोर्ट पर जब जाते हैं, विदेश जाते हैं, बड़े बड़े महंगे पैंट पहनने वाले लोग, प्रादा लुबटिन का चश्मा लगाने वाले लोग, गुच्ची का चश्मा लगाने वाले लोग, 5-5 लाख का चश्मा और 2.5-2.5 लाख के पैंट पहनने वाले लोग हमारे 60 रुपया के कुर्ता की तरफ देखते रहते हैं। इसी को जलाना कहते हैं। बड़े बड़े महंगे जूते पहनने वाले लोग, बाटा के जूता, अन्य अन्य ब्रांड के जूता पहनने वाले लोग, जब लाखों लोग लाइन में खड़े होते हैं हजारों, और हम 250 रुपया की 200 रुपया की लकड़ी की चप्पल पहनकर जाते हैं तो उनके वो लाखों के जूते फीके पड़ जाते हैं, नजर हम पर टिक जाती है। ये उदाहरण देकर हम तुम्हें यह समझाना चाह रहे कि जब लाखों लोग झूठ बोलकर करोड़पति बन गए हो तो तुम सच बनकर के फकीर बन जाना। गलत काम करके जब लाखों लोग अमीर बन जाए तो तुम अच्छा काम करके गरीब जरूर बन जाना, पर अमीर ना बनना। कम से कम तुम्हें संतुष्टि तो रहेगी। तुम मरोगे तो भले ही दुनिया तुमसे ना पूछे, पर तुम्हारा जिगर तो तुमसे पूछेगा कि जिए भी तो जी भर कर जिए। और मेरे पागलो, जिंदगी में कुछ भी स्थाई नहीं है, ये पक्का है। आर्मी की जब परेड होती है उसमें लाइन से खड़ा किया जाता है, तब परेड कराने वाला जो मुखिया होता है
वो खड़ा होता है और इशारे करके कुछ बोलता है, क्रिया करने को कहता है। तो जो सबसे आगे खड़ा होता, उसको जो परेड कराने वाला व्यक्ति होता है, ऑफिसर एकदम पास होता है, जो सबसे आगे खड़ा होता लाइन में, 100 लोग लाइन में लगे हो, जो सबसे आगे होता है वो ऑफिसर के एकदम नजदीक होता है। लेकिन उसी वक्त ऑफिसर कहता है पीछे मुड़, तो जो सबसे आगे खड़ा होता है वो सबसे पीछे हो जाता है, और जो सबसे पीछे होता है वो सबसे आगे हो जाता है। एक इशारा पीछे मुड़, तो जितने भी यहां पीछे बैठे, यहां बैठे या संसार में तुम पीछे की लाइन में लगे हो, घबराना नहीं, बस इंतजार करो कब तुम्हारा गुरु और कब तुम्हारा परमात्मा कह दे पीछे मुड़। और जिस दिन उसने ये कह दिया पीछे मुड़, देखना

पहुंच जाऊंगा। चर्च वाले चले गए तैयारी करने। दूसरा दिन हुआ, पुराना जमाना था, घोड़े पर चर्च से एक घोड़ा आया। रात को ही रख दिया गया कि आप घोड़े से आए ताकि आप जल्दी आ सकें। वो फकीर उस घोड़े पर बैठा और चर्च की तरफ चला और ठीक 2:30 बजे निकल भी गया कि लेट ना हो जाए। उन्होंने कहा था पक्के टाइम पे आना। बेचारा गया, चला, उसका मन हुआ कि घोड़ा चल ही रहा है, टाइम है ही है, जरा सिगरेट पी ली जाए, सिगरेट का मजा ले ले। उसने सिगरेट निकाली, लाइटर निकाला तो बड़ी जोर की सामने से हवा आ रही थी, तो बार बार लाइटर बुझ जाए और सिगरेट जले ना। तो उसने सोचा कि ये तो बड़ा लफड़ा है, क्या किया जाए कि सिगरेट जल जाए। उसने देखा कि इस तरफ से हवा आ रही, पीछे की तरफ हवा नहीं आएगी, तो उसने घोड़ा मोड़ दिया, जिस तरफ से आया था उसी तरफ, और सिगरेट में इतना डूब गया सिगरेट पीते पीते कि उसे होश ही नहीं रहा कि घोड़ा मुड़ गया है और इस तरफ नहीं जाना, फिर से मोड़ना है। जिस तरफ मुड़ा था वो उसी तरफ चल पड़ा, घोड़ा लौट कर घर वापस आ गया। इधर 4 बज गए, चर्च वाले लोग भागे भागे घर गए कि हमने कल कहा था कि आप 4 बजे आ जाना। बोले हम तो 4 बजे पहुंच जाते पर घोड़ा ही उल्टा है, ये कब मुड़ गया, कब इस तरफ आ गया, पता नहीं चला। मेरे पागलो, ये फकीर आज 4 बजे पहुंच जाता टाइम पर यदि ये सिगरेट में ना फंसता, और सिगरेट में फंस भी गया था यदि ये घोड़ा ना मोड़ता, और घोड़ा मोड़ भी लिया था तो वापस यदि मोड़ लेता तो 4 बजे चला जाता, लेकिन उसने घोड़ा मोड़ लिया तो वापस ना जा पाया, वापस उल्टा घर आ गया, चर्च ना पहुंच पाया। ऐसे ही जिंदगी है, जिंदगी में एक मोड़ तुम्हारी मंजिल बदल देती है। यदि तुम वापस घर की तरफ मुड़ना चाहते हो तो वापस घर जाओ, और यदि तुम जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो यहां से बालाजी की तरफ मुड़ जाओ। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें इस तरफ मुड़ना है या इस तरफ मुड़ना है। घर वापसी की तरफ मुड़ोगे कुछ ना पाओगे, और तुम हमारे तरफ भी मत मुड़ना। मुड़ने का मतलब साइड बदलना नहीं होता, मुड़ने का मतलब मन का मुड़ना होता है। तुम भले ही घर चले जाओ पर मन बालाजी के पास हो जाए। और कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पास लोग आते हैं, हमें बताते हैं कि अब आजकल तो हम जब से घर गए हैं सपने में भी धाम दिखता है, और 10-15 दिन से ज्यादा रह नहीं पाते, बार बार खुजली होती है, और फिर लगता है कि चलो यार भाई बड़ी देर हो गई है, बड़े दिन हो गए हैं, मंगलवार शनिवार आता है तो फिर याद आती है, चाहे जो हो जाए चलो धाम। इसका मतलब है तुम मुड़ चुके हो, और तुम मुड़ चुके हो मतलब सही जगह मुड़ चुके हो। यदि तुम्हें बालाजी की बार बार याद आती है तो तुम मुड़ चुके हो, और ये याद बनी रहे, दुनिया की याद से तो बेहतर है परमात्मा की याद बनी रहे। अंत में एक बात और सुने तुम्हारे काम की। परमात्मा तब तक चमत्कार नहीं कर सकता जब तक तुम अपना चमत्कार खुद नहीं चाहते। और हम एक बात तुम्हें बहुत दावे के साथ कहना चाह रहे कि छोटे मोटे चमत्कारों से तुम प्रभावित ना हो। मन की बात बता देना, पर्चा बना लेना, पर्चे में नाम आ जाना, या पर्चे में बिना बताए बातें आ जाना, ये बहुत छोटी बातें, इनसे तुम प्रभावित ना हो। ये कोई गहरे राज नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा गहरा रहस्य नहीं है, क्योंकि जो मन की बातें तुम जानते हो वही हम बता देते हैं, कुछ खास बात नहीं है। हम तो तुम्हें जीवन की बात बताने बैठे हैं, मन की बात बताने नहीं बैठे। हम चाहते हैं तुम्हारे जीवन में हमेशा दुख आते ही रहना है। आज हम तुम्हारा पर्चा बना दें, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, कल सिर का दर्द तुम्हारा करेगा, सिर का दर्द ठीक होगा परसों पड़ोसी दर्द करेगा, पड़ोसी का दर्द ठीक होगा लुगाई दर्द करने लगेगी, लुगाई ठीक होगी तो पड़ोसन परेशान करेगी। एक ना एक तुम्हें झंझट बने ही रहना है, एक ना एक तुम्हें दिक्कत बनी रहनी है। तुम हमारे पास आए हो, हम तुम्हें ऐसी चाबी देना चाहते हैं कि तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाएं, ताकि दर्द आते रहें, संकट आते रहें, पर संकट मोचन तुम्हारे बने रहें।

भाई संकट तो आते रहना है। किसी ने जब छाता बनाया होगा बारिश से बचने के लिए, तो पहले ऐसा छाता बनाया गया था कि एक बारिश में सिर्फ एक छाता काम आएगा, अब वो फट जाता था, ज्यादा तेज बारिश होती थी वो फट जाता था। तो छाता बनाने वालों ने शोध किया, रिसर्च किया, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे कि भाई एक बारिश छाता झेल पाता, आदमी ऐसे कितने छाता खरीदेगा। चार महीने में बड़ी बारिशें होती हैं, हर रोज बारिश होती है, दिन में दो दो तीन तीन बार होती है, ऐसा छाता बनाया जाना चाहिए कि जो कई बारिश झेल पाए और फटे ना। और फिर बाद में धीरे धीरे अपग्रेड हुआ और ऐसा छाता बन गया आज कि अनेक बारिश होती है, छाता कई सालों तक चलता है। यही हम चाहते हैं कि तुम्हारे यहां संकट तो रोज आते ही जाते रहने हैं, हम चाहते हैं हम तुम्हें एक ऐसा छाता, छाता नहीं बालाजी की ऐसी छत्र छाया तुमको दे दी जाए, ऐसी छत्र छाया तुम्हें मिल जाए ताकि तुम्हारे जीवन में संकट आते रहेंगे, आने दो, आते रहेंगे, घबराओ मत। तुम कोई नए आदमी नहीं हो कि तुम पे दिक्कत है, तुम कोई अकेले आदमी नहीं हो कि तुम बहुत परेशान हो। यहां ये जितने भीड़ दिखाई पड़ रही है ये सब परेशान लोगों की दिखाई पड़ रही है। अरे तुम अपनी छोड़ो, हम तुम तो आम हैं। राम के जीवन में भी यही हुआ, मीरा को उसके देवर ने जहर दिया, सूरदास को गांव के लोगों ने धक्के दिए, तुम तो कुशल मनाओ कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जरा राम जी के जीवन में तो देखो, कल राजा बनना था, रात को ही वनवास मिल गया, तुम्हें तो घर से अभी निकाला भी नहीं गया। और उनके जीवन में तो देखो कि वो जंगल गए माता जानकी जी को लेके, लक्ष्मण जी को लेके, और घरवाली हर गई, चोरी हो गई, कम से कम तुम्हारी चोरी तो नहीं हुई, तुम्हारी अभी बची है। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हें ज्यादा कष्ट नहीं मिला, ज्यादा पीड़ा नहीं मिली। जब भगवान राम को भी इतनी पीड़ा सहनी पड़ी तो तुम सोचो तुम्हें कितनी सहनी पड़ेगी। पर हम इतना कहेंगे, समस्याओं के पास समस्या मिलेगी, संसार में समस्या होंगी, संसार में जन्म लिया है, समस्याएं आएंगी, तुम्हारे जीवन में भी आते, हमारे जीवन में भी आती, बस हमने जीने का तरीका बदल लिया। हम समस्याओं से डरते इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं डरते क्योंकि जब भी समस्या आती है तो हम परमात्मा से नहीं कहते कि समस्या विकट है, हम परमात्मा के पास जाके नहीं कहते कि समस्या बड़ी विकट है, समस्या के पास जाकर के कहते हैं कि बालाजी निकट है, और काम हो जाता है। वो लाज रख देते हैं, वो कृपा कर देते हैं। हमारे अंदर भी चिंता आती है कभी कभी, गुरुकुलम कैसे चलेगा, कन्या विवाह कैसे होगा, कैंसर हॉस्पिटल कैसे बनेगा। अभी नेपाल में हजारों लोग घर बेघर हो गए तो 1000 लोगों को राशन भेजा बागेश्वर धाम से, 1000 परिवार। तो हमें भी कभी कभी विचार आता पर सोचते नहीं है, भगवान दया कर देते हैं, जिनके सहारे बैठे हैं वो हमारी चिंता करते हैं।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
8: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
9: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
10: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
7: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
11: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
12: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
7: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
13: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
7: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
14: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
7: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
15: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
16: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
15: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आए हूं हॉस्पिटल में।
7: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
17: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
7: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
11: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
7: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
18: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
11: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
19: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में। फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
20: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
7: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
21: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
7: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
22: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा। आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
7: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
14: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है। और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
9: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
7: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
6: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
23: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
7: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
24: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
7: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
10: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
7: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
13: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
7: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
3: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
4: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
4: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से लेकर कुपवाड़ा तक बिछी बर्फ की सफेद चादर, हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में भी छाए घने बादल, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट, बारिश के साथ आंधी की चेतावनी। एशियन गेम्स के पदक वीरों से आज मिलेंगे पीएम मोदी, शाम 4:30 बजे मुलाकात। भारत ने एशियन गेम्स में 21 गोल्ड समेत जीते थे कुल 85 पदक। शारदीय नवरात्र का आज पांचवा दिन, विधि विधान से की जा रही है मां स्कंद माता की आराधना, देशभर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 का ग्रैंड रिलीज, चेन्नई में सिनेमा हॉल के बाहर फैंस का डांस, फिल्म हिंदी तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: हिमाचल के लाहौल स्पीति में शुरू हुआ बर्फबारी का दौर, केलांग समेत कई इलाके बर्फ की सफेद चादर में ढके। जिला मुख्यालय केलांग सहित दारचा, जिस्पा और सिसु में भी गिर रहे हैं बर्फ के फाहे, दिखा खूबसूरत नजारा। केलांग में इस सीजन की पहली बर्फबारी, ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ दिन पहले ही हो चुका है हिमपात। बर्फबारी से ठंड की चपेट में घाटी, दारचा से आगे वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक। जम्मू कश्मीर की वादियां बर्फबारी से गुलजार हुई, गुलमर्ग में हिमपात से बढ़ी पहाड़ों में खूबसूरती। गुलमर्ग में बर्फबारी से सैलानियों की बल्ले बल्ले, वादियों में बर्फबारी का आनंद लेते दिखे पर्यटक। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में इस मौसम की पहली बर्फबारी, घर रास्ते पहाड़ सब पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के कारण मुगल रोड बंद, सोनमर्ग लद्दाख हाईवे और बांदीपुरा गुरेज रोड पर भी आने जाने वालों की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली एनसीआर में छाए घने बादल, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट, बारिश के साथ आंधी की चेतावनी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदला मौसम, आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में कल भी बारिश की जताई संभावना। शारदीय नवरात्र का आज पांचवा दिन, मां स्कंद माता की आराधना का दिन, देशभर के मंदिरों में मां स्कंद माता के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। मां स्कंद माता की महिमा, ममता और करुणा का स्वरूप, नवरात्र में फल और नारियल अर्पित करने की परंपरा, श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्त करते हैं आराधना। मां स्कंद माता की पूजा में पीले सफेद फूल अर्पित करें, केले शहद और केसर की खीर का लगाएं भोग, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर करें पूजा अर्चना। ओम देवी स्कंद माताए नमः का करें जाप, देवी के स्वरूप में झलकती है वात्सल्य और शक्ति, वैदिक मंत्रों और भक्ति से गूंजता है पूजा पाठ। मां स्कंद माता की पूजा से कार्तिकेय की आराधना का भी मिलता है फल, संतान सुख और विद्या की कामना लेकर पहुंचते हैं भक्त। मुदिहारी में मां दुर्गा के दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब, पूजा पाठ और जयकारों से गूंज रहा है मंदिर परिसर, मां दुर्गा की आराधना के लिए उमड़ी भीड़। भक्त मुकेश दास की अनोखी साधना बनी आकर्षण का केंद्र, सीने पर कलश रखकर मुकेश दास कर रहे हैं कठिन साधना, भक्ति और आस्था का अनूठा नजारा। श्रद्धालु पूजा अर्चना कर मांग रहे हैं सुख समृद्धि का आशीर्वाद, कोई फूल चढ़ा रहा है तो कोई कर रहा है पूजा पाठ, मां दुर्गा की श्रद्धा में डूबे हैं भक्त। मोतिहारी में केसरिया के फुलतकिया में मां दुर्गा का भव्य दरबार सजा, दर्शन पूजन के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, मां के भक्तों में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। मां दुर्गा के दरबार में श्रद्धा आस्था का संगम, धूप दीप और मंत्रोच्चार से भक्तिमय माहौल। नवरात्र के फलाहार में चाट से कबाब तक का स्वाद, साबुदाना वड़ा, शकरकंदी चाट और राजगिरी कोफ्ते बने खास। श्रीखंड और साबुदाना खीर से बढ़ा फलाहार का जायका। कुट्टू की पूड़ी के साथ काली मिर्च पनीर का जायका। आलू शकरकंदी कटलेट और दही वड़ा भी मेन्यू में शामिल। फलाहारी व्यंजनों में दिख रहा है परंपरा प्रयोग का मेल। नवरात्र में सात्विक खाने की बढ़ी रंग बिरंगी रेंज। परिवार और अकेले खाने वालों के लिए अलग अलग थालियां। व्रत के भोजन को स्वादिष्ट बनाने का खास पहल। मंदिर की थीम पर आधारित रेस्टोरेंट में खास फलाहार। कांसे की थाली और पत्तल में परोसे जा रहे हैं पकवान। करीब 95% भोजन बिना लहसुन प्याज के तैयार। सिर्फ नवरात्र नहीं साल भर मिलता है खास फलाहार। अमरावती के अंबिका माता मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। हजारों दीपों से जगमगाया मंदिर परिसर। कृष्ण रुक्मणी की पौराणिक कथा से जुड़ा मंदिर। यहीं से भगवान कृष्ण ने किया रुक्मणी का हरण। नवरात्र पर 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना। मनोकामना पूरी होने पर दीप जला रहे हैं भक्त। मां के दिव्य दरबार की भव्य सजावट। भक्त ऑनलाइन बुकिंग से भी जलवा रहे हैं अखंड दीप। महाराष्ट्र के प्राचीन मंदिर में भक्ति का अनूठा नजारा। अंबिका माता के तेजस्वी स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। झांसी में मां काली का अनोखा दरबार। खड़ग ना मुंडमाला कन्या स्वरूप में मां काली दिखी। नवरात्र में दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। मां महाकाली का शांत और सौम्य स्वरूप। 5 गुड़हल के फूल चढ़ाने की मान्यता। 400 साल पुरानी परंपरा से जुड़ा मंदिर। झांसी में मां काली का बालिका रूप बना आकर्षण का केंद्र। स्वयंभू विग्रह होने की धार्मिक मान्यता। भक्त चढ़ा रहे हैं श्रद्धा। ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव से जुड़ी मान्यता। मां के दरबार में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। आरती में शामिल हो रहे हैं श्रद्धालु। लक्ष्मी तालाब के पास स्थित है विद्यापीठ मंदिर में चंडी पाठ और लक्ष चंडी यज्ञ की परंपरा। सदियों पुरानी आस्था की अनूठी कहानी। नर्मदापुरम में सजा न्याय का दरबार। जज की कुर्सी पर विराजे भगवान गणेश। झांकी में गूंजा बेटियों को न्याय का संदेश। मां भवानी के दरबार में अनोखी अदालत। जेल से फांसी तक के दिखे दृश्य। नारी सुरक्षा पर झांकी ने उठाए सवाल। दुर्गा पंडाल बना भव्य कोर्टरूम। आस्था के साथ न्याय की अनूठी पहल। बेटियों के गुनेगारों को सजा की संदेश। मां भवानी की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। नारी सम्मान और सुरक्षा का दिया संदेश। दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। मां भवानी के दरबार में उमड़ी भीड़। अनोखी अदालत देखने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। बेटी बचाओ का संदेश दे रही झांकी। रांची में उत्तरी द्वारका नगरी की भव्य झलक। 1 करोड़ से सजा दुर्गा पूजा पंडाल। पीएम मोदी की डुबकी वाली झांकी बनी आकर्षण। रांची में द्वारकाधीश मंदिर का भव्य और दिव्य रूप। अल्बर्ट एक्का चौक पर सजा खास पंडाल। दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। दुर्गा पूजा में प्राचीन द्वारका की झलक। पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने रचा कमाल। धार्मिक गलियारों के विकास का संदेश। रांची का थीम पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। द्वारका नगरी की हूबहू प्रतिकृति तैयार। भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रहा है पंडाल। रांची में भक्ति और भव्यता का संगम। द्वारकाधीश मंदिर की तर्ज पर सजा पंडाल। श्रद्धालुओं में दिख रहा है उत्साह। जी में मां दुर्गा का अनोखा भक्त। शंकर भगत ने सीने पर स्थापित किए 9 कलश। अनूठी भक्ति देखने के लिए उमड़े ग्रामीण।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में। कहीं है नच तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
0: गुंडी चुड़ी
4: देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है नच तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
0: गुंडी चुड़ी
5: 70 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर।

एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो 2-3 बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते

हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद। यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर
जनरल

0: अब आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में ये है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है, बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजात

0: का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से लेकर कुपवाड़ा तक बिछी बर्फ की सफेद चादर, हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में छाए घने बादल, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट, बारिश के साथ आंधी की चेतावनी। एशियन गेम्स के पदक वीरों से आज मिलेंगे पीएम मोदी, शाम 4:30 बजे मुलाकात। भारत ने एशियन गेम्स में 21 गोल्ड समेत जीते थे कुल 85 पदक। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन, विधि विधान से हो रही है मां स्कंद माता की आराधना, देश भर के मंदिरों में उमड़ रहे हैं भक्त। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 का ग्रैंड रिलीज, चेन्नई में सिनेमा हॉल के बाहर फैंस का डांस, फिल्म हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात शक्ति उत्सव की। नवरात्र के पावन दिनों में हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की साधना होती है। नवरात्र के 9 दिनों में देवी मां की साक्षात कृपा बरसती है। आज महिमा जानेंगे मां दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी देवी स्कंदमाता की, और वहीं इन्हें शास्त्रों में भगवान कार्तिकेय की माता भी माना जाता है। ये भी आपको बताएंगे। मान्यता है कि मां स्कंद माता की कृपा हो जाए तो संतान से जुड़ी हर समस्या दूर हो सकती है, संतान सुख मिलता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि मां स्कंद माता की पूजा करने

से आपकी सूनी गोद भर सकती है। तो चलिए जानते हैं नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंदमाता से जुड़े कौन से प्रयोग करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं।

नवरात्रि में पाना चाहते हैं संतान का वरदान, स्कंद माता की पूजा से होगा कल्याण, जिनकी कृपा से भर जाती है सोनी गोद, जिनकी कृपा से दूर हो जाते हैं रोग, वो है मां स्कंद माता।

0: देवी स्कंद माता की उपासना उनके लिए बेहद कल्याणकारी है जो संतान सुख से वंचित हैं। सच्चे मन से की गई देवी की आराधना और ज्योतिषीय उपायों को अगर आप अपनाएं तो नवरात्र का पांचवा दिन आपकी संतान की कामना के लिए विशेष फलदायी हो सकता है।
1: जिनको संतान की कामना हो वह संतान के लिए कार्य कर सकती हैं, और जिनको विद्या बुद्धि में एकाग्रता नहीं आती है विद्या प्राप्ति करने में, ऐसे लोगों को भी अपने बच्चों को स्कंद माता का पूजन कराने से उन बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है और उनको लाभ मिलता है।
0: स्कंद कुमार की माता यानी देवी पार्वती ने जब सृष्टि को सजा संवार दिया तो जग में हर तरफ बिखर गईं खुशियां। लेकिन इन खुशियों पर ग्रहण उस वक्त लग गया जब राक्षसों ने देवलोक से लेकर पृथ्वी तक हाहाकार मचा दिया। यहाँ तक कि असुरों की शक्ति के आगे देवराज इंद्र का सिंहासन भी डगमगाने लगा। उस समय दुष्ट राक्षसों से स्वर्ग लोक को बचाने के लिए जगत जननी ने सनत कुमार यानी कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया, जिन्होंने बाद में देवताओं का सेनापति बनकर अपनी वीरता और पराक्रम के बल पर देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। स्कंद की माता यानी भगवान कार्तिकेय की माता माँ स्कंद माता कहते हैं इनकी उपासना से सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। देवी के हर स्वरूप की पूजा से आपकी किसी न किसी समस्या का निवारण जरूर होता है। नवरात्रि के पांचवी तिथि पर जो भक्त स्कंद माता की आराधना करते हैं, माता उन पर अपनी संतान के समान स्नेह लुटाती हैं।
1: नवरात्रि के पांचवें दिन पंचमम स्कंद मातेति, स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह भगवती मातृत्व संतान एवं करुणा की शक्ति से भरी हुई हैं, और यह भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं, इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है, और नवदुर्गा के पांचवें स्वरूप में इनकी पूजा की जाती है।
0: अगर कई कारणों से आपको संतान सुख मिलने में बाधा आ रही है तो पहले समझिए इसके पीछे के ज्योतिषीय कारण क्या हो सकते हैं। कुंडली का पांचवा, नवा और ग्यारहवा भाव संतान से संबंध रखता है। इसके अलावा सप्तम भाव भी गर्भ का भाव है। इन भावों की स्थिति खराब होने पर संतान होने में समस्या आ जाती है। इसके अलावा बृहस्पति संतान कारक होता है, इसकी स्थिति पर विचार करना भी आवश्यक है। इन तमाम चीजों को देखकर ही संतान के बारे में जान सकते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा से ही बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी अपने आप हो जाती है। देवी की विधि विधान से पूजा कैसे करें, उससे पहले समझिए माँ स्कंद माता की महिमा।
1: देवी पार्वती ने देवसेना के पति के रूप में, जो षोडश मातृकाओं में देवसेना आती हैं, उनके पति के रूप में प्रसिद्ध स्कंद अर्थात कार्तिकेय को जन्म दिया। स्कंद माता का जो स्वरूप है उसी मातृशक्ति का स्वरूप है, जो अपने पुत्र की रक्षा और उसके विकास के लिए निरंतर तत्पर रहती हैं।
0: नौ दुर्गा का पांचवा स्वरूप स्कंद माता का है। कार्तिकेय की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। माता चार भुजाधारी कमल के पुष्प पर बैठती है, इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय भी बैठे हुए हैं। इनकी पूजा से कार्तिकेय की पूजा स्वयं हो जाती है। स्कंद माता की पूजा से बृहस्पति से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। संतान प्राप्ति की हर तरह की समस्या माँ की पूजा से दूर हो जाती है। पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियां माँ की कृपा से दूर होती हैं, गंभीर बीमारियां ठीक होती हैं।
1: कहा गया है कि यह सिंह पर विराजमान है, गोद में बालक स्कंद को धारण किए हैं, हाथों में कमल का पुष्प धारण किए हैं, ऐसे रूप में इनका ध्यान किया जाता है। उनका स्वरूप मातृत्व, करुणा और संरक्षण का प्रतीक है।
0: माँ स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ अपने भक्तों को अलौकिक तेज और कांति से संपन्न बनाती हैं। माँ स्कंद माता की पूजा उन लोगों के लिए विशेष कल्याणकारी है जिनकी गोद अभी तक सुनी है। तो आखिर माँ से कैसे मिलेगा संतान का वरदान, ये भी बताएंगे। माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने की क्या पूजा विधि है, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए।
2: देखिए, ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि माँ स्कंद माता की उपासना से बुद्धि यश की प्राप्ति होती है, साथ ही विशुद्ध चक्र जागृत होकर मन में शांति की अनुभूति होती है। कहते हैं नवरात्र में माँ से जो भी मांगो वो मुराद माँ पल भर में पूरी कर देती हैं। तो चलिए, ऐसे में हम आपको माँ स्कंद माता का विशेष मंत्र और पूजा विधि बताते हैं जिससे आपकी संतान की कामना देवी माँ की कृपा से पूरी हो सकती है।

0: पूरी करती हैं हर मुराद वो माता। ममता की मूरत हैं माँ स्कंद माता। संतान सुख किसे प्यारा नहीं होता, सभी अपनी संतान में अपनी झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। संतान सुख से कई दंपत्ति वंचित रह जाते हैं। नवरात्र का ये पावन समय माँ जगदम्बा की कृपा पाने के लिए बेहद फलदायी है। देवी की कृपा और उनकी साधना से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि अगर आप संतान सुख से वंचित हैं, तो स्कंद माता की पूजा आराधना से आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी।
1: संतान प्राप्ति के लिए भगवती स्कंद माता के मंदिर में जाकर के और वह जो एक मंत्र है, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः, यह जो मंत्र है वैजयंती की माला से इसका 108 बार जप करने से भगवती से प्रार्थना करें तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु स्वरूप हैं, उनको जिस शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है।
0: कहते हैं नवरात्र के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा से भक्तों को शक्ति संग कार्तिकेय की पूजा का भी फल प्राप्त होता है। माँ स्कंद माता की पूजा से बृहस्पति मजबूत होता है, बृहस्पति से जुड़ी तमाम तरह की समस्याएं दूर होती हैं, और जिन माताओं की गोद संतान की खुशियों से वंचित हैं, उन्हें वीर और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। तो कैसे करें देवी स्कंद माता की पूजा?
1: इन माता को, स्कंद माता को सफेद पुष्प, सफेद कमल का पुष्प, श्वेत अक्षत, धूप दीप, नैवेद्य, इनको केले का भोग लगाने का विशेष मान्यता दिया गया है कि केले का भोग लगावें तो ज़्यादा अच्छा होता है। कदली का जो नैवेद्य भगवती को लगता है वह विशेष, क्योंकि केला मनुष्य के लिए ऊर्जादायक होता है, और माता का जो भोग होता है वह बालक अगर खाएं उनके अंदर ऊर्जा शक्ति बढ़े, इसलिए भगवती को सभी नैवेद्य के साथ केले का भोग लगाना बहुत आवश्यक है।
0: स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। संतान से कोई कष्ट हो रहा हो तो उसका भी अंत हो जाएगा। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करें तथा पीली चीजों का भोग लगाएं। अगर पीले वस्त्र धारण किए जाएं तो पूजा के परिणाम अति शुभ होंगे। संतान संबंधी प्रार्थना करें। किसी भी पूजा को संपूर्ण तभी माना जाता है जब आप अपने आराध्य की कोई प्रिय वस्तु उन्हें भेंट करें या अर्पित करें। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो विशेष प्रसाद जिसके अर्पण से माँ स्कंद माता प्रसन्न होती हैं। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं, इसके बाद इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। संतान और स्वास्थ्य दोनों की बाधाएं दूर होंगी। स्कंद माता का रूप और सौंदर्य अद्वितीय है। माता को वात्सल्य और प्रेम की देवी कहा जाता है। तो आइए आपको बताते हैं माँ स्कंद माता का वो विशेष मंत्र जिससे आप माँ तक अपने संतान की मनोकामना को पहुंचा सकते हैं।
1: इनका जो प्रसिद्ध मंत्र है, सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया सुमद आशु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी, यह इनका मंत्र है कि जो सिंहासन पर बैठी हैं, हाथों में पद्म लिए हैं और शुभ हमेशा मनुष्य का शुभ करती स्कंद की जो माता हैं, यह हम मुझे यश प्रदान करें, यह भगवती का मंत्र है। देवी स्कंद माता यही नमः, या ऐम रीम क्लीम स्कंद मात्रे नमः, इनका विशेष मंत्र है।
0: संतान प्राप्ति का विशेष मंत्र, नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशी श्यामी विंध्याचल निवासिनी। तो आप भी बताए गए मंत्र का जाप करें, माँ स्कंद माता की आराधना करें, माँ आपकी मुरादे जरूर पूरी करेंगी।
2: संतान के होने में देरी या संतान का ना होना जीवन की एक बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन नवरात्र में एक ज्योतिषी महाप्रयोग से आपकी संतान संबंधी बाधा का निदान हो सकता है। संतान से जुड़ा अब एक महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है।

0: माँ जगदम्बा ममता की मूर्त हैं। आदिशक्ति कल्याणमयी हैं, प्रेममयी हैं। शक्ति की उपासना की ये दिन महाफलदायी हैं। माता के दर्शन करने, उनके चरणों में शीश झुकाने, दूर दूर से माता के दरबार में भक्त आते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने में हर भक्त लगे हैं। इसलिए यदि भक्त सच्चे मन से केवल देवी का नाम भी लें, यानी कि उनके नाम का जप करें, तो सभी संकट दूर हो सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो महा उपाय जो आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं।
1: जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति करनी है, उन लोगों के लिए उपाय है कि भगवती के यहाँ नित्य ले जा करके 5 फल, वो फल सड़े गले न हो, और उस फल में केला अमरूद निकाल दें, क्योंकि आशीर्वाद में महिलाओं को दिया नहीं जाता है। उसके अलावा जो भी फल है, वह 5 फल भगवती को नवरात्र में प्रतिदिन अर्पण करें, और कभी कभी ले जा करके मंगलवार के दिन भी भगवती को 5 फल अर्पण करते हैं तो उन्हें संतान लाभ होता है।
0: अगर संतान प्राप्त करने में समस्या हो रही हो तो नवरात्रि के किसी भी दिन देवी को एक नारियल अर्पित करें, नारियल के चारों ओर रक्षा सूत्र बांध दें। इसके बाद ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। नवरात्रि के बाद इस नारियल को पीले कपड़े में लपेटकर अपने शयन कक्ष में रख लें।
1: जो सरल मंत्र अगर कहा जाए तो देवी स्कंद मातायै नमः, या तो वही ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मात्रे नमः, यह करने से महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के साथ साथ स्कंद माता का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है।
0: साधक के लिए शक्ति, उन्नति, ध्यान, भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए नव दुर्गा के हर रूप की उपासना परम कल्याणकारी है। माँ की ममता का कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि माँ का आंचल तो ममता से भरा है। देवी माँ अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनती हैं। आदिशक्ति का ध्यान करें, फिर आपकी बिगड़ी बना देंगी माता रानी।

सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है नच तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: भगवान राम के व्यक्तित्व में सौम्यता है तो रावण के व्यक्तित्व में अभिमान, ये फर्क रामलीला के दौरान दोनों के संवाद से भी झलकता है, और इसलिए रावण की भूमिका निभा रहे कलाकारों के लिए संवाद अदायगी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए आपको ऐसे ही संवादों की कुछ झलक दिखाते हैं।

0: मैं हूं रावण, जगत नरेश रावण। मैं वह रावण हूं जिसकी गर्जना पर से गर्भवती स्त्रियों की कोख तक गिर जाती है। मैं हूं वह रावण।
1: कायर, शत्रु की महिमा का मंडन करके त्रिलोक विजेता रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो, वो भी उस त्रिलोक विजेता लंकापति रावण को, जिसके भय से भयभी भयभी होता है। रावण
0: ये बनवासी ठोक रहे लंकापति नरेश रावण से युद्ध करेंगे। वाह, हे राम, याद रख मेरे जीते जी तुम लंका में प्रवेश नहीं करवाओगे, ये रावण का वादा है। रावण का वादा है। राम, युद्ध करो राम, चलाओ अपने बाण। राम तो वन वन भटक रहा होगा, जंगल जंगल ढूंढ रहा होगा, मिग्र को, हिरण को ढूंढ रहा होगा, तेरा राम।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: शारदीय नवरात्रि का आज पांचवा दिन, विधि विधान से हो रही मां स्कंद माता की पूजा आराधना, देश भर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। शक्ति उत्सव पर सीएम योगी आदित्यनाथ की साधना, मिर्जापुर में किए मां विंध्यवासिनी के दर्शन, विधि विधान से पूजा अर्चना की। बिहार के खगड़िया में शक्ति उत्सव की दिखी रौनक, सनहौली दुर्गा मंदिर में की गई महाआरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दौरान शामिल हुए। लाखों फोन यूजर्स के लिए बदलने जा रहा है नियम, अब अनजान फोन कॉल पर भी दिखेगा असली नाम, 1 नवंबर से लागू होगा फैसला। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से लेकर कुपवाड़ा तक बिछी बर्फ की सफेद चादर, हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी।

0: सज गई है खबरों की प्लेट तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लंच टाइम में। मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन मां स्कंद माता की हो रही है आराधना। देश भर के मंदिरों में मां स्कंद माता के दर्शन के लिए उमड़ रहे भक्त। मां की उपासना से संतान सुख बुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होने की है मान्यता। गुजरात के अमरेली जिले के सावर कुंडला में पारंपरिक गरबा की धूम, पारंपरिक वेशभूषा और देशी सुरों के साथ मां जगदम्बा की आराधना। काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर सोना चोरी प्रकरण पर बोले मंदिर के सीईओ, खबर को बताया भ्रमा, कहा सोना है सुरक्षित। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर हाई पावर कमेटी की हुई बैठक, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने पर हुई चर्चा।
1: अब फोन की घंटी बजते ही पता चल जाएगा कौन कर रहा है कॉल। 1 नवंबर से नया नियम लागू होगा। कॉल आने पर मोबाइल नंबर के साथ कॉल करने वाले का नाम भी नजर आएगा। दूरसंचार विभाग ने फोन करने वाले की पहचान से जुड़े नियम का में बदलाव किया है। बिहार के सहरसा में महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नगर निगम की ओर से आयोजित प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक भी पहुंची सहरसा, महिला पहलवानों का बढ़ाया हौसला। आगरा में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने इंसानियत का फर्ज निभाया, झोपड़ी में जिंदगी गुजार रही बुजुर्ग विधवा की मदद की।
0: पीएम मोदी आज जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 के पदक वीरों से मिलेंगे। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शाम 4:30 बजे होगा यह कार्यक्रम। जापान में एशियाई खेलो मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खिलाड़ियों की उपलब्धियों और शानदार प्रदर्शन का होगा सम्मान। एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया था। भारत की झोली में आए थे 21 गोल्ड 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज। चेन्नई में 3108 करोड़ रुपए की वाटर पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री विजय ने शोलिंग नल्लूर में रखी परियोजना की आधारशिला। 98 किलोमीटर लंबी लोहे की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 9 प्रमुख जल स्रोतों को आपस में जोड़ेगी नई पाइपलाइन। जल संकट वाले इलाकों तक पहुंचेगा अतिरिक्त पेयजल।
1: हैदराबाद के हुसैन सागर झील में डूबती बच्ची को बचाने पर 3 लोगों को सम्मानित किया गया। पुलिस कमिश्नर बीसी सज्जानगर नकद पुरस्कार देकर 3 को सम्मानित किया। मुंबई में भारत कनाडा की कंपनियों के बीच कई अहम समझौते। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मैनिंदर सिद्धू के नेतृत्व में व्यापार मिशन चलाया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और विनिपेग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इंडो अल्बर्टा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ भी सहयोग समझौता। व्यापार निवेश और कारोबारी साझेदारी को बढ़ावा देने पर जोर। दोनों देशों में संस्थानों के बीच सहयोग के खुलेंगे नए अवसर। प्रयागराज में पद्मलोक आवास योजना की भूमि पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त जमीन पर बनेगी 14 मंजिला इमारत।
0: चकिया के कसारी मसारी में 602 फ्लैट बनाने की तैयारियां तेज। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सीएम योगी 556 फ्लैटों की चाबी लबर्तियों को सौंपेंगे।

0: फिल्म जेलर 2 आज सिनेमाघरों में हुई रिलीज। फिल्म को तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड की 500 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई। कॉफी विद करण अपने आखिरी सीजन के साथ ओटीटी पर लौट चुका है। शो के पहले एपिसोड में सलमान खान बतौर गेस्ट आए। यामी गौतम अपनी फिल्म नई नवेली के रिलीज से पहले पहुंचे अयोध्या। रामलला के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। फिल्म की सफलता के लिए प्रार्थना की। फिल्म रामायण का इंटरनेशनल ट्रेलर आज बेंगलुरु में किया जाएगा लॉन्च। मेकर्स ने फिल्म का ग्लोबल कैंपेन शुरू किया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
2: तो बच्चों से अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से आपके लिए। खबरों की प्लेट तैयार है
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
2: पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक जोरदार बर्फबारी जारी।
0: शारदीय नवरात्रि का आज पांचवा दिन, विधि विधान से हो रही मां स्कंद माता की पूजा आराधना।
2: वडोदरा में वायुसेना प्रमुख गरबा की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह माता रानी की आरती में भी शामिल हुए।
0: एशियन गेम्स के पदक वीरों से आज मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 4:30 बजे मुलाकात।
2: सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 का ग्रैंड रिलीज। चेन्नई में सिनेमा हॉल के बाहर फैंस का डांस।

0: तो पूरे देश में शक्ति उत्सव के रंग बिखरे हुए हैं। एक ओर मंदिरों में मां दुर्गा की अनुपम छवि भक्तों को भाव विभोर कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश भर में दुर्गा पंडाल में अनोखी छटा बिखरी हुई नजर आ रही है। इन पंडालों की रौनक देखते ही बन रही है। आकर्षक पंडालों में भव्य सजावट के बीच माँ के भक्त यहाँ पर उनकी आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं।
1: बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नवरात्रि का पांचवा दिन है, लेकिन भक्तों की लंबी कतारें जो हैं वो मंदिरों के बाहर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि आज यानी कि पांचवें दिन माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा उपासना की जाती है। दिल्ली के प्रसिद्ध छतरपुर मंदिर में भक्तों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं झंडे वालान मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं।
0: तो वहीं मंदिर के साथ साथ श्रद्धालु दुर्गा पंडालों में भी जाकर मां के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि हर पंडाल में किसी न किसी थीम पर इसे बनाया गया है, जो कि कोई न कोई सीख और संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। कोलकाता का एक पंडाल महामिलन की थीम पर बनाया गया है। इस थीम का मुख्य उद्देश्य भारत के विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के संघर्ष, यात्रा और सफलता की कहानी को दिखाना है। तो वहीं नर्मदापुरम के दुर्गा पंडाल को न्यायालय की थीम पर बनाया गया है, जहां कोर्टरूम, जेल और फांसी की सजा से जुड़े दृश्य नजर आ रहे हैं।
1: बिल्कुल, देखिए इस पूजा पंडाल के जरिए बेटियों के खिलाफ अत्याचार रोकने, दोषियों को सजा दिलाने और नारी सम्मान का संदेश देने की कोशिश जो है वो आयोजकों द्वारा की गई है। जबकि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक पंडाल की थीम मुक्ति का संदेश देने वाली अवधारणा यानी कि निर्वाण को बनाया है। तो लंच टाइम में हम आपको देश भर के दुर्गा मंदिरों और अलग अलग दुर्गा पंडालों के दर्शन कराएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं व्रत की थाली के साथ।

0: देखिए, माँ दुर्गा की पूजा आराधना के लिए पूजा की थाली जितनी ज्यादा अहम है उतना ही जरूरी है व्रतियों के लिए भोग की थाली, जो सात्विक भी हो और स्वाद वाली भी हो। ऐसे में हम आपको नवरात्र स्पेशल महाभोग वाली थाली के बारे में आज बताएंगे।
1: तो वहीं बिल्कुल शेफ बताएंगे कि व्रत के व्यंजनों में स्वाद और विविधता का अनूठा मेल कैसे तैयार किया जाए, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट।
2: नवरात्र यानी माँ की आस्था और भक्ति के पवित्र दिन, वो दिन जब भक्त उपवास कर माँ की आराधना करते हैं। कहते हैं नवरात्र के 9 दिन तक माँ के लिए हमारा समर्पण जितना पवित्र और निश्चल होता है, माँ का आशीर्वाद हम पर उतना ही बरसता है। लेकिन नवरात्र केवल शक्ति की उपासना तक सीमित नहीं है, उपवास भी नवरात्र की वो साधना है जो हमारे तन मन को पवित्र करती है। नवरात्र में सात्विक भोजन किया जाता है जो शरीर को केवल एनर्जी ही नहीं देते, बल्कि सात्विक भोजन मन को शांत करता है और शरीर को शुद्ध व स्वस्थ रखता है। सात्विक भोजन वो भोजन है जो आयुर्वेद और योग से जुड़ा एक आहार है, जो सत्व गुण से भरपूर है, जिससे मानसिक स्पष्टता, शांति और शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है। इसके तहत ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और मेवे शामिल होते हैं, जबकि प्याज, लहसुन, तली हुई चीजें और बासी भोजन का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपने 9 दिनों का व्रत रखा है तो फिक्र मत कीजिए, सात्विक भोजन के सहारे आपके व्रत के दिन खाते पीते आसानी से बीत जाएंगे, क्योंकि बाजार में फलहार में चटपटी चाट से लेकर स्पेशल थाली तक सब मौजूद है। कुल मिलाकर नवरात्र के पावन व्रत आप अपनी श्रद्धा और स्वाद दोनों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि बाजार और घरों में व्रत के लिए बनने वाले स्वादिष्ट फलाहार भोजन व्रत को और भी जायकेदार बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत, माँ दुर्गा की आराधना और फलाहार, लेकिन हर दिन एक ऐसे पकवान खाते खाते अगर स्वाद बदलने का मन हो तो अब फलाहार की थाली में भी कई नए विकल्प मौजूद हैं। चाट कबाब से लेकर श्रीखंड तक जयपुर में पारंपरिक फलाहार को नए अंदाज में पेश करने की एक खास पहल देखने को मिल रही है।
0: बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जहाँ शेफ अभिषेक शर्मा ने व्रत के व्यंजनों में स्वाद और विविधता का अनूठा मेल तैयार किया है, ये स्पेशल थाली सिर्फ नवरात्रि ही नहीं बल्कि साल भर अलग अलग व्रत रखने वालों के लिए भी उपलब्ध है। यानी सात्विक भोजन की परंपरा बरकरार रखते हुए फलाहार को स्वाद और नए विकल्पों से जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है।
3: नवरात्रि चल रही है और काफी सारे ऐसे भारतीय हैं जो व्रत करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, और ऐसे में जब व्रत के खाने की बात करें तो कुछ चीजें हैं जैसे फलहार कर लिया, कुट्टू की पूड़ी खा ली, आलू की सब्जी खा ली या फिर आलू के वेफर्स खा ली। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक फिक्स्ड मेन्यू बन चुका है, और कह सकते हैं कि 9 दिन लगातार ये चीजें खाना बोरिंग भी हो जाता है, और हर किसी को सेम खाना तो रोज नहीं पसंद होता है, क्योंकि कहा जाता है कि दाल चावल कौन रोज खा सकता है। तो जब दाल चावल नहीं खा सकते तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप रोज खाएं और उससे बोर ना हो। तो आपकी वो बोरियत मिटाने के लिए गुड न्यूज टुडे पे हम ये गुड न्यूज भी लेके आ गए हैं कि नवरात्रे में अलग अलग थालियां हैं वो चलने लग गई है, जिसमें आपको ऐसा खाना मिलेगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। होगा सारा ऐसा खाना जो आप नवरात्र में बिल्कुल खा सकते हैं, और वही सामग्री है जो आप अक्सर घर में इस्तेमाल करते हैं, पर उससे कुछ इनोवेशन ऐसी की गई है जिससे आपके जो टेस्ट बड्स हैं उनको भी मिलेगा एक सरप्राइज। और ये इनोवेशन है शेफ अभिषेक की, जो कि श्री मोटूराम प्रसादम के शेफ हैं, और इन्होंने ये ऐसी थाली क्यूरेट की है जो कि एक साथ 3 से 4 लोग भी इसको एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ आके अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हैं। तो सर, नवरात्रि की स्पेशल थाली आपने क्यूरेट की है, क्या थॉट है और कितने टाइम पहले इसको लॉन्च किया था?
4: सो इसको ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए। हम फर्स्ट है जिसने नवरात्रि थाली इंट्रोड्यूस करी जयपुर में। सो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कपल्स होते हैं, घर में 2 जनों के लिए क्या बनाएं। सो घर में बनता है कुट्टू की पूरी बनती है, आलू की सब्जी बनती है, रायता बनता है, साबुदाना वड़े बनते हैं। तो उसको एक थाली में क्यूरेट किया, एक छोटी थाली निकाली, धीरे धीरे करते हुए वो थालियां तो है ही, साथ में हर साल कुछ ना कुछ नया भी निकालते रहते हैं, नई थालियां बनाते हैं। तो इस नवरात्र 2026 में ये हमारा है नवरात्रि महाभोग।
3: ये महाभोग है क्योंकि इतनी बड़ी थाल है और सच में इसको आराम से 2-3 जने खा सकते हैं जिनका पूरा पेट इसमें भर जाएगा। बहुत सारी चीजें इसमें मौजूद हैं और आप ही बताइए कि कौन सी चीज क्या है, किस चीज से बनती है।
4: सो हम यहाँ से चालू करते हैं। ये रेगुलर साबुदाना खिचड़ी है बट इसमें थोड़ा सा राजस्थानी टच है, सो ग्रीन चिली थोड़ी ज्यादा मिलेगी। वहीं नेक्स्ट आते हैं तो हमारा नया चीज है ये आलू की और शकरकंदी की चाट है। ठीक है, सबको भुना है, आलू और शकरकंदी को भुना, उसकी एक चाट बनाई है, व्रत के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर हमारी पूरी के लिए पनीर की सब्जी आ गई, इधर आलू की सब्जी आ गई। ये हमने एक 3 मिनट से साबुदाना राजगिरी के आटे से हमने कोफ्ते बनाए हैं जिसे हम बड़ा कहते हैं, तो उसका दही बड़ा प्रिपेयर किया है। सेम आप देखेंगे तो कुट्टू की पूरी है यहाँ पे। कुट्टू की पूरी में भी हमारे सिर्फ कुट्टू नहीं होता, साथ में राजगिरा भी होता है, थोड़ा सा पोटैटो भी होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कर्नाटका में जब फास्ट होता है सो लोग सामी के चावल की एक खिचड़ी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं। सो ये एक लेमन राइस बनाया गया है हमारा जो कि सामी के चावल के साथ में है। यहाँ पे हमारा एक श्रीखंड है, साबुदाना की खीर है। ये हमने एक आलू शकरकंदी और 2 रूट्स के साथ में कटलेट बनाया है जो कि व्रत के लिए परफेक्ट है। इधर ये कोफ्ता है जो कि राजगिरी और आलू से बनाया हुआ है। इधर फलाहारी सेब है, इधर मिक्स असॉर्टेड फ्रूट्स हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिश है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो केरला के अंदर में जब भी फास्ट होता है सो वहां पे बनाना के साथ में रायता बनाया जाता है। सो ये सेम रेसिपी है जिसमें बहुत थोड़ा सा केरला इलायची का टेस्ट आता है, दही है, केला है और उसका एक रायता है।
3: तो ये तो है कि सिर्फ नवरात्र नहीं, आपको आपका पूरे साल में कोई भी व्रत उपवास हो, चाहे वो एकादशी का व्रत हो, अष्टमी या 14 का काफी लोग व्रत करते हैं वो व्रत हो, या फिर मंगल सोम का जो व्रत होता है, फलहारी आपको जो फलहार थाली है वो आपको हर समय यहाँ मिलेगी। हर स्टेट की छाप के लिए अलग अलग भोग आपको यहाँ मिलेगा और आप चाहें तो 56 भोग भी आपको यहाँ मिलेगा। ये खासियत है इस जगह की जो कि पहला भारत का ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि टेम्पल थीम बना हुआ है और यहाँ पे बहुत ही काम वाइब है, पीसफुल वाइब है और इस पीसफुल वाइब में अगर आप अपने नवरात्रि पे ये भोग लेंगे तो बहुत ही आनंद आपको आएगा। मैं आपको बता दूं कि अभी आपको इस भोग को दिखाते हुए, इस थाली को दिखाते हुए मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि वापस से दिखाऊंगी कैसे कलरफुल ये थाली सजाई गई है। कांस की ये बड़ी सी थाल है जिसमें ट्रेडिशंस को देखते हुए, उनका ध्यान रखते हुए दोनों में ये जो जितना भी खाना है वो सर्व किया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, इनका जितना भी फूड है वो नवरात्रा में हो चाहे दूसरे दिनों में हो, दोनों में सर्व किया जाता है क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि परंपराएं जो हैं वो हमेशा याद रखने की जरूरत है। और ग्रेवी फूड जो है वो हर रेस्टोरेंट में मिलता है, फैंसी फूड हर रेस्टोरेंट में मिलता है, पर जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर है, कल्चर से जुड़ा या फिर दादी नानी के हाथ का घर का जो खाना होता है वो एक ऐसा खाना है जो बाहर इजीली अवेलेबल नहीं होता, वो स्वाद ये लेके आए हैं। और इस नवरात्रि आप इजीली बाहर जाके ये जो थाली है वो टेस्ट कर सकते हैं, अपने व्रत का जो खाना है उसमें एक नई चीज ऐड कर सकते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे, जयपुर।
0: सर रिदम जो व्रत की थाली दिखा रही थी दीपाली, उसे देखकर मेरी बचपन की यादें जो है वो ताजा हो गई। मेरी दादी बनाया करती थी नवरात्र में कुट्टू की रोटी, आलू के गुटके जो कि उत्तराखंड में खाए जाते हैं। खैर बात हो रही है नवरात्रों की, नवरात्रों की थाली की, तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको जयपुर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे संवाददाता जो है हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ गए हैं और धनंजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम चलेंगे धनंजय के पास। तो धनंजय, आज नवरात्रि का 5वां दिन है, मां स्कंद माता की पूजा आराधना हो रही है। कल मैं मंदिर में गई, मंदिरों में तो पैर रखने की जगह नहीं है, चाहे पहला दिन हो, 4th दिन हो, 5वां दिन हो, लेकिन माता रानी में इतना विश्वास है, इतनी आस्था है लोगों की कि लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ खास लाए हैं? मैंने सुना है कुछ खास दिखाना भी चाह रहे थे आप, बताएं।
5: देखिए सरगम जी, मैं खास बताने को, मेरी जो चीप है ना, मेरी चीप लला है, वो पहले मेरे सामने जो थाली रखी है ना वो थाली पर जा रही है। देखिए थाली में जिस तरीके से उपवास के पूरे व्यंजन है और ये व्यंजनों में इतना खासियत ये है कि रेगुलर व्यंजन तो अपन खा ही लेते मिठाई वगैरह, लेकिन उपवास के लिए अगर खास व्यंजन हो जाए वो भी चटपटे हो जाए और इस तरीके के जिस तरीके से अभी के फिलहाल, पहले तो खाली ये जो साबुदाने की खिचड़ी है यही बचपन में हमें हम इसे देखा करते थे, उपवास के दिन हमने खाते थे, लेकिन अब व्यंजनों में जो है वेराइटीज हो गई है। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मेरे सामने जो थाली सजी है, मुझे मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ कि पहले मैं इसको खा लूँ क्योंकि मैं भी उपवास कर रहा हूँ। ठीक है, उपवास के लिए यहाँ पर जो है ये पूरी और सब्जी जो है, ये आलू और दही की सब्जी बनाई है, और जिस तरीके से ये जो है सिंगाड़े का आटा और राजगिरे आटे की पूरी भी बनाई है। इतना ही नहीं, देखिए अभी ट्रेंडिंग पर डोसा है, उत्तप्पा है, तो ये जो सिंगाड़े का आटे का डोसा है, उत्तप्पा है और साबूदाने का वड़ा है, और ये जो सब बनाया है अकोला में, ये राठी पेड़ वाला जो एक नामांकित होटल है, और ये इनके स्वाद के लिए ये पेड़ जाने जाते हैं क्योंकि ये इनकी पौष्टिकता इतनी बड़ी है, क्योंकि ये सबसे पहले जो कोई भी व्यंजन बनाने से पहले खुद होकर जो है उसको टेस्ट करवाते हैं। हमारे साथ है निपुण राठी, जिन्होंने जिनका ये रेस्टोरेंट है और इन्होंने खास ये थाली बनाई है। क्या है थाली में खास?
6: जी थाली में बिल्कुल जेंजी है, अभी जेंजी से जो चल रहा है उसके लिए हमने खास उत्तप्पा डोसा जो मिलता नहीं है रेगुलरली, उपवास में चलने वाले आइटम पूरी भाजी आलू की सब्जी रेगुलर में फीकी बनती है, मोस्ट कॉमन जो चलती है, लेकिन हमने दही की और फलीदाने मिला के जैसे आलू की सब्जी बनाई है जो टेस्ट में भी एक नया ट्विस्ट देती है, नए डिमांड के साथ में नई नई चीजें है, तो ये थाली में हम इसके अलावा भी और भी वैरायटी है जो थाली में हम सर्व करते हैं।
5: क्या क्या है जरा बताएं मेरे?
6: इसमें आलू के पराठे भी बना लेते हैं, पूरी तरह उपवास के है, यहाँ लाल मिर्ची का उपयोग नहीं होता है, महाराष्ट्र में थोड़ा सा लाल मिर्ची उपवास में नहीं खाते है, तो पाउडर न यूज करते हुए जिससे हरी मिर्ची से सब कुछ बना हुआ है,
5: काली मिर्ची
6: रहती है इसमें, हरी मिर्ची रहती है, सेंधा नमक, तीन चीजों से मिला के अलग अलग व्यंजन का स्वाद देना चाहते हैं।
5: देखिए इस तरीके से आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को जो उपवास जो है एक श्रद्धा का विषय होता है और किसी श्रद्धा को ठेस ना पहुंचे, इसलिए इनका किचन भी जो है इनके मुताबिक ये इन 9 दिनों के लिए बहुत ही अलग होता है, रेगुलर किचन से जो है इनका किचन ये अलग होता है, क्योंकि उपवास जो है एक श्रद्धा का विषय है, उपवास में किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुंचे है, इसलिए ये थाली जो है, सरगम जी मैं आपको यहाँ से भेज तो नहीं सकता लेकिन मैं यहाँ चक्कर तो बिल्कुल भी देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो ये उत्तप्पा बना है, ये उत्तप्पा कितना स्वादिष्ट है, क्योंकि मुझे भी उपवास है, मैंने भी सवेरे से कुछ नहीं कहा क्योंकि सवेरे 9 बजे से मैं लाइव में हूँ, ठीक है, थोड़ा सा चक्कर बिल्कुल बता देता हूँ और टेस्ट बता देता हूँ आपको, अपने दर्शकों को, ठीक है, वाह वाह बहुत ही अच्छा है। और आपके लिए देखो स्पाइसी अगर चाहिए तो इधर में और महाराष्ट्र में खासकर ये हरी मिर्ची चलती है, जो अगर आपको स्पाइसी अगर खाना है तो ये खाना पड़ेगा। और साथ ही देखिए मिठाइयां तो है ही है, यहाँ पर श्रीखंड है, रसमलाई है, यहाँ पर अलग अलग वेराइटीज की है। मानो सरगम जी एक बहुत, मेरी तो जीभ लम चला रही है कि मैं इसको
1: जी बिल्कुल, बहुत स्वादिष्ट भोजन आप दिखा रहे हैं, व्रत का खाना आप दिखा रहे हैं, आप इसका लुत्फ उठाइएगा
0: दीपाली, मुझे लगता है अगले नवरात्र में धनंजय हमको बुलाएंगे, हमें अकोला जाना चाहिए और व्रत रखना चाहिए और वहां जाके ये व्रत की थाली जो है ये जरूर खानी चाहिए।
1: बिल्कुल, दर्शन के साथ साथ ये थाली का लुत्फ भी आप उठाइएगा। इसी बीच हम मुंबई लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, जहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र मौजूद है, आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। धर्मेंद्र, धनंजय ने तो हमें वहां खासियत दिखा दी है, आप जिस मंदिर में मौजूद हैं वहां पर क्या खास देखने को मिल रहा है, खास तरह की सजावट है, लोगों में किस तरह का उत्साह है, जरा वो तस्वीरें दिखाइएगा और दर्शन करवाइएगा।
2: बिल्कुल, जिस तरीके से अकोला में देखा जा रहा है, एक उपवास की थाली बहुत ही ज्यादा प्यारी बताया है हमारे धनंजय जी ने, मेरे भी मुंह में पानी आ गया और मैं चाह रहा हूँ कि मैं जाके वो खाऊं, हालांकि उपवास रखा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय उस जगह मौजूद हूँ जो न केवल मुंबई, महाराष्ट्र, देश और पूरी दुनिया में फेमस है, लालबाग का राजा, हमेशा से आपने देखा है, साथ ही गणेश गली है, मुंबई के राजा में इस समय मैं लालबाग के राजा पे नहीं बल्कि रानी, लालबाग की रानी के नाम से बहुत ज्यादा, माता रानी के नाम से बहुत ज्यादा, आई के नाम से ज्यादा मशहूर हैं, उनके दरबार में हूँ। थोड़ा सा आप तस्वीरों से माता रानी का दर्शन करें, बेहद तेज जो है इस समय उनके चेहरे पे नजर आ रही हैं, चूंकि आज पीले कलर का दिन है और हर दिन जो है अलग अलग कलर की थीम पर चलता है, पीले कलर का दिन है, माता रानी को देखिए किस तरीके से भव्य तरीके से बिल्कुल यहाँ पर सजाया गया है, एक के बाद एक लगातार श्रद्धालु जो हैं वो माता रानी का दर्शन करने आ रहे हैं।
7: इस पंडाल की सबसे खास बात यह है कि इस बार 99 ईयर्स 99 साल मना रहा है, एक साल और उसके बाद सेंचुरी है। बहुत ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ इस समय स्वप्निल जी जुड़े हुए हैं, मंडल से पदाधिकारी हैं। साहब वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं माता रानी, आपने भी पीला वस्त्र धारण कर रखा है, नवरात्रि कितनी स्पेशल है, 99 साल चल रहा है, क्या कहेंगे?
8: बिल्कुल, एक स्पेशल उत्सव यहाँ मनाया जाता है, नवरात्रि का 99 ईयर है और मुंबई का राजा यहाँ विराजमान होता है और उसके बाद तुरंत 15 दिन में नवरात्रि भी शुरू होती है। लालबाग की माता करके ये जो भवानी माता है वो पहचानी जाती है, अष्टभुजा माता है, हर एक हाथ में
0: बिल्कुल
8: शस्त्र है।
0: लालबाग की माता आपने दर्शन कराए हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें तमाम जानकारी देने के लिए और साथ ही में नवरात्रि की थाली के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, देखिए नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रों में दुर्गा पूजा के जो पंडाल है अपनी अनूठी सजावट और खास थीम्स के चलते काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कहीं शाही महलों की झलक जो है वो देखने को मिल रही है, कहीं देश प्रेम की भावना, राधा कृष्ण के प्रेम से लेकर माँ दुर्गा की आराधना तक हर पंडाल में कुछ नया देखने को मिल रहा है। आस्था और रचनात्मकता का यही मेल इस उत्सव को और भी ज्यादा खास बना रहा है।

कहीं कला में आस्था के रंग है तो कहीं भव्यता में भक्ति का संसार। दुर्गा पूजा के पंडालों में मां के दिव्य स्वरूप के साथ शिल्प संस्कृति और कल्पनाओं का संगम हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। इस भव्यता की पहली झलक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में देखने को मिलती है, जहां स्वर्ण महल की तरह दमकता दुर्गा पूजा पंडाल अपनी चमक और खूबसूरती से हर किसी का ध्यान खींच रहा है। मां दुर्गा के

0: पर इस साल सूर्य संकट 73वां साल है, 73 इयर्स, और इस साल उन लोगों का ये जो मंडप है, ये मंडप का थीम है उच्च।
1: पंडाल में मां की शक्ति और देशभक्ति का अनूठा संगम लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो यहाँ पर नहीं रहती हूँ बट मेरा इधर मामा घर है तो मैं आई हूँ इधर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा पहला टाइम है पूजा के टाइम में, पहली बार कोलकाता घूमने आई हूँ पूजा के टाइम, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा फर्स्ट पैंडल है ये, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
3: बहुत अच्छा लगा ये पैंडल, सुरुचि संघ हर ईयर ही अच्छा करता है, इस ईयर को स्पेशल है इसलिए बहुत अच्छा लगा।
1: हर पंडाल की अपनी छटा, हर सजावट के पीछे एक कल्पना और हर दरबार में माँ के प्रति अटूट आस्था, यही रंग मिलकर दुर्गा पूजा को ऐसा उत्सव बनाते हैं जहाँ कला भी उत्सव मनाती है, संस्कृति अपने पूरे वैभव के साथ खिल उठती है। कोलकाता से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कोलकाता की ढाकुरिया शहीद नगर दुर्गा पूजा पंडाल में, जिसे महामिलन की थीम पर बनाया गया है। महामिलन थीम दो अलग अलग लेकिन बेहद खूबसूरत पहलुओं का एक अनूठा संगम है। ये पंडाल एक तरफ शरणार्थियों के ऐतिहासिक संघर्ष और उनकी एकता को दर्शाता है तो वहीं दूसरी तरफ राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक मिलन से प्रेरित है।
5: भव्य और दिव्य माँ दुर्गा की प्रतिमा है, उतना ही खूबसूरत और कलात्मक है माँ दुर्गा का ये पंडाल, जिसकी भव्य लाइटिंग और शानदार वास्तुकला श्रद्धालुओं को खूब रास आ रही है। ये पंडाल एक तरफ शरणार्थियों के ऐतिहासिक संघर्ष और उनकी एकता को दर्शाता है तो दूसरी ओर राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक मिलन से प्रेरित है। कोलकाता के डकोरिया शहीद नगर सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति का ये पंडाल जहाँ मौजूद है वो मूल रूप से भारत के विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी द्वारा बसाई गई कॉलोनी है। इस दुर्गा पंडाल की थीम महामिलन, शरणार्थियों के इतिहास और उनके संघर्षों को समर्पित की गई है। पंडाल के जरिए दिखाया गया है कि कैसे लोग अपना सब कुछ पीछे छोड़कर इस अनजान जगह पर आए और आपसी सहयोग और सद्भाव के साथ सामाजिक एकता स्थापित की।
6: रिफ्यूजी कॉलोनी है, यहाँ पे एक टाइम में ईस्ट पाकिस्तान से सब कुछ छोड़ के सब लोग जा गए थे। हम लोग का जो पूर्व पुरुष लोग थे, जो एंसेस्टर थे, जब यहाँ पे आए थे उन लोग ऐसे ही ये छन का, ये हुगला पत्ता के, ये बांस का, बम्बू का देकर उन लोग घर बनाते थे। अभी वो लाइफ वॉर में जीत गए हैं, जीत के ये सबका बड़ा बड़ा आपका मकान हो गया है, लेकिन हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है उन लोग को हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग का क्या युद्ध था, क्या था।
5: इस थीम को जीवंत करने के लिए पारंपरिक बंगाली शिल्प और आधुनिक सामग्री का बेहतरीन फ्यूजन इस्तेमाल किया गया है। पंडाल की दीवारें और सजावट विभाजन के दौर की यादों और आध्यात्मिक प्रतीकों को खूबसूरती से दर्शाती है। सामाजिक सद्भाव के साथ साथ महामिलन थीम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अलौकिक प्रेम से भी प्रेरित है। यह उनके अटूट प्रेम, भक्ति और मिलन के जरिए दुनिया को प्रेम, करुणा और सौहार्द का संदेश देती है। साथ ही पूरी सृष्टि की रक्षा करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप से भी प्रेरित है।
6: महामिलन हम श्री रामचंद्र और श्री राम कृष्ण के बिना नहीं होता है। श्री रामचंद्र जो अकल बोधन किए थे तब जो सीता माता को उद्धार करने के लिए गए थे तो उनको महामिलन करके कारबिलर से लेके बानरसेना तक, मनुष्य से लेके देवता तक पूरा प्रकृति उनका साथ दिया था, महामिलन घटवाया था। और सिर्फ सेम त्रेता युग में हम लोग का श्री कृष्ण एक हाथ में चक्र और एक हाथ में बांसी बजा के श्री राधा जी को लेके जो राश किए थे, जो संहार करके जो राश लीला में शामिल हुए थे उसमें पूरा प्रकृति, पूरा जल, पूरा वायु, पूरा सब कुछ, गाय, भैर, बक्षी सब एक साथ में शामिल होके, मनुष्य सब एक साथ में शामिल होके जो महामिलन करके शांति का वार्ता दिए थे वही हम लोग डिपिक्ट किए हैं।
5: पंडाल के केंद्र में विराजमान माँ दुर्गा की प्रतिमा को पूरी तरह से पारंपरिक साबे के रूप में तैयार किया गया है जिसे बंगाली समुदाय पीढ़ियों से देखता और पूछता आ रहा है। ये परंपरा और आधुनिक संदेश के सुंदर संतुलन को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त सोशल लाइक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गरबा क्लास।
7: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है नच तो कहीं ड्रामा।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जताई आंधी की भी आशंका।
8: पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से लेकर कुपवाड़ा तक बिछी बर्फ की सफेद चादर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी।
7: शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन, विधि विधान से हो रही मां स्कंद माता की पूजा आराधना, देशभर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब।
8: गुजरात में नवरात्र के साथ गरबा की भी धूम, मोरबी के न्यू पैलेस में तलवार रास का कार्यक्रम, बेटियों ने शानदार प्रस्तुति दी।
7: बिहार के खगड़िया में शक्ति उत्सव की दिखी रौनक, सनहौली दुर्गा मंदिर में की गई महाआरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल।
8: लाखों फोन यूजर्स के लिए बदलने जा रहा है नियम, अब अनजान फोन कॉल पर भी दिखेगा असली नाम, 1 नवंबर से लागू होगा फैसला।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: ब्रेक के बाद लंच टाइम में आपका बहुत स्वागत है। गुजरात में नवरात्रि का उत्सव में मां की भक्ति पारंपरिक गरबा रास के जरिए की जाती है और ये गुजरात की सदियों पुरानी संस्कृति, लोक परंपरा और मां जगदम्बा के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक भी है।
1: बिल्कुल देखिए, और इसी परंपरा की एक अनूठी तस्वीर जो है गुजरात के अमरेली जिले में देखने को मिल रही है। तीन तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि अमरेली के सावरकुंडला शहर में देवला गेट पर पिछले 78 वर्षों से बाल खेडियार रास मंडली अपनी अनूठी परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं।
0: तो वहीं आपको बता दें, आज के समय में जब आधुनिक संगीत और नए अंदाज ने त्योहारों की दुनिया में अपनी खास जगह बना ली है, वहीं ये रास मंडली अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है और यहाँ तीन तीन पीढ़ियां बदल गईं, वक्त बदला, दौर बदला, लेकिन मां की भक्ति और पारंपरिक देसी रास के प्रति कलाकारों की श्रद्धा अभी भी सदियों पुरानी है। इस मंडल की सबसे खास बात है इसका पारंपरिक अंदाज।
1: बिल्कुल देखिए, अंदाज जो है वो देखने लायक है। यहाँ आधुनिक संगीत की धुनों के बजाय माइक पर गूंजते हैं देसी सुर, दोहे और छंद, जिसके माध्यम से माँ जगदम्बा की स्तुति जो है वो की जाती है और फिर इन्हीं पारंपरिक सुरों के लय पर कलाकार रास खेलते हैं तो पूरा माहौल भक्तिमय हो उठता है।

0: तो देखिए, नवरात्र में गुजरात से लेकर देश के कोने कोने तक गरबा और डांडिया की जो धूम है वो देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि ढोल की थाप पर हर कोई थिरकना चाहता है। गरबा की गोल जो है घूमती चाल हो या डांडिया के जोशीले स्टेप्स, हर कोई इस भक्तिमय रंग में रंगना चाहता है। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि गरबा खेलना शुरू कैसे करें, स्टेप्स कौन से हैं और उन्हें आसानी से कैसे सीखा जाए। तो आपकी इस मुश्किल को आसान बना रहे हैं GNT स्टूडियो में मौजूद गरबा ट्रेनर्स, जो आपको सिखाएंगे गरबा के आसान और शानदार स्टेप्स। आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी श्वेता झा के पास GNT की गरबा क्लास में।
1: उत्सव यानी कि गुड न्यूज टुडे, जैसा कि हमेशा से हम आपको कहते हैं, और इस बार चूंकि अब नवरात्र है, शक्ति उपासना का पर्व चल रहा है, ऐसे में आज गुड न्यूज टुडे पर स्टूडियो में ही हम आपको दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि दरअसल गरबा का महत्व क्या है, कब से गरबा की शुरुआत हुई और लास्ट मोमेंट में जिन लोगों ने अभी तक स्टेप्स नहीं सीखा है तो वो यहाँ पर सीख सकते हैं। ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं, तो दिव्या हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ
2: भवनीत
1: हमारे साथ मौजूद है। तो कौन सा वो सॉन्ग है और स्टेप कौन से?
3: बहुत ही प्यारा एक सॉन्ग है, गोरी राधा ने कालो कान।
1: अरे वो तो गुजरात का है।
3: हाँ। है और
1: सभी तो इसको क्या गढ़वी जी ने गाया है वहां से?
3: हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने गाया है। और ये अगेन कृष्ण और राधा के है, गोरी राधा निकालो कान, कान मतलब कृष्ण जी, उसके स्टेप सीखते हैं हम। सो इसे बहुत ही प्यारी सी कोरियोग्राफी है जो हम करेंगे। वी गो 1 and 2, सो वी आर वॉकिंग, हम सर्कल में जब होते हैं तो हम चलते हैं 1 2 एंड देन वी मेक बांसुरी और हम स्विंग करते हैं 3 4, वी क्लैप ऑन द लेफ्ट साइड 5, टेक सर्कल 6 7 and 8,
1: ओके
3: बस क्लैप 7 and 8, ठीक है। सो इट गोज 1 2 3 4 5 6 7 8,
1: फिर से एक बार करें हम
3: सर्कल में करें,
1: चलिए सर्कल में करते हैं,
3: चलो रेडी 5 6 7 and 1 2 3 4 5 6,
1: यहाँ पर ये रुक गए कि हम हमें जो है जब हम बांसुरी वाला पोज कर रहे हैं तब हमें मूव नहीं करना है,
3: नहीं
1: हम जहाँ हैं हम वहीं पर रहेंगे। सुन लीजिए, मेरी तरफ से गलती मत करिएगा, जब आप सर्कल में कर रहे हो तो आप नहीं करिएगा। तो चलिए अभी सर्कल में हम नहीं, पहले हम एक बार ऐसे करते हैं, फाइनली हम सर्कल करेंगे।
3: ओके 5 6 7 and 1 2 3 4 5 6 7 8,
1: अब सर्कल में।
3: हाँ, और जब हम बांसुरी करते हैं तो वैसे हम सेंटर की तरफ अपना बॉडी रखते हैं, जब हम बांसुरी करते हैं तो वी लुक टुवर्ड्स ईच अदर, तो हम सेंटर की तरफ आपको चेहरा
1: है, गरबा रहता है,
3: उनकी तरफ हम ये करेंगे एंड देन वी अगेन क्लैप, ये भी सेंटर।
1: लेकिन यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई मैं कर देती हूँ, चूंकि हमारे सामने कैमरा है तो हम कैमरा की तरफ टर्न करके ये करेंगे, ठीक है?
3: चलो
1: चलिए
3: 5 6 7 and 1 2 3 4 5 6 7 8,
1: आई थिंक इस बार परफेक्ट, बहुत ही अच्छा रहा। तो ये जो गोरी राधा ने, इन्होंने बताया कि वो जो गाना है ये एक्चुअली गढ़वी जी का गाना है और बहुत फेमस वहां के वो फोक सिंगर हैं, उनके जितने भी गाने देख लीजिए आप, जितने भी गरबा ग्राउंड्स में जाएंगे आपको सुनने को वहां पर मिलेंगे। एंड आई थिंक हम यहाँ भी जो लोग आ रहे हैं वो आप बताइए, चूंकि आप ट्रेनर हैं तो किस तरह से लोग कहते हैं, बॉलीवुड वाले स्टेप्स बताइए या फिर कौन सा फोक बताइए?
3: नहीं नहीं, लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं अब वहाँ के फोक सॉन्ग्स को लेकर, वहाँ के स्टेप्स को लेकर। सो बॉलीवुड से ज्यादा इंटरेस्ट अब उनको वहाँ के रीजनल वो सीखने में, बस ये है कि हाँ भाषा समझ आती है तो वो और ज्यादा रिलेट कर पाते हैं।
1: ये बात तो है। भवनीत आप बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप तो कह रही हैं लगभग कितने, एक साल से ज्यादा से आप सीख रही हैं, तो ये जब आप करती हैं, क्योंकि डेली लाइफ जो आपकी होती है, हर कोई वर्किंग है, बिजी रहता है अपनी डेली लाइफ में, लेकिन जब आप उससे निकलकर टाइम निकालकर आप ये कर रही होती हो तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है उसको लेकर?
4: यस मैम, ऑफ कोर्स मैम, एक्चुअली डांस हॉबी है लेकिन पूरा दिन, ये हमारी प्रैक्टिस जो होती है रात के समय होती है फ्रॉम 9 PM, तो पूरा दिन हम अपने जो हमारी रेगुलर रूटीन है उससे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, बट स्टिल जैसे ही 9 PM बजते हैं एक अलग ही एनर्जी आ जाती है कि नहीं जाना है, और वहाँ जाके सब भूल जाते हैं और उसी एनर्जी के साथ हम सब मिलके स्टेप्स सीखते
1: हैं। तो आपकी जो टीचर है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर ट्रेनर है या फिर क्या है, फिर आपको रियायत दे देती है कि कोई नहीं इस बार गलत किया कोई बात नहीं फिर से सिखाएंगे उसको।
4: मैं हाँ जी, जो जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टेप सीखने उनके साथ स्ट्रिक्ट होती है, बट अदरवाइज शी इज कूल,
1: इज शी अ गुड लर्नर?
3: डेफिनेटली बहुत ही अच्छी लर्नर है और अभी तो दूसरा साल तब कुछ टाइम में सिखाने भी लगेंगे।
1: अरे वाह क्या बात है। गरबा या फिर डांडिया, इसमें एनर्जी बहुत हाई होती है क्योंकि हर स्टेप ऐसा होता है कि उसमें हाई एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए होती है।
3: पीछे मानो खारो खारो जब ना जीरो पानी लागे ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना।
1: और ये इतना प्यारा स्टेप है, ये तो आई थिंक किसी भी सॉन्ग के साथ जेल करेगा नहीं?
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही प्यारी कोरियोग्राफी अभी दिल्ली के बैचेस में हम सिखा रहे हैं अपने बैचेस में, क्योंकि यहाँ पे हिंदी सॉन्ग ज्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे। और फिर जैसे उन्होंने बताया था रास होता है, तो ये रास ही है जो अब हम सीख रहे हैं।
1: बिल्कुल, अभी जो आपने बताया सर्कल में करके बिल्कुल, बिल्कुल वो रास वाले स्टेप्स हैं सारे। तो ये सब लगभग कर लेने में कितना वक्त लगता है, मतलब परफेक्शन पा लेने में कितना वक्त लगता है?
3: काफी समय लगता है क्योंकि 2 महीने से तो प्रैक्टिस हम लगातार, बहुत सारे लोग हैं, कई हैं जो नॉन डांसर्स भी होते हैं जिन पहली बार निकल रहे हैं। सो हमारे पास जो बैचेस में बच्चे हैं वो 10 साल से लेके 65 के ऊपर साल के भी लोग हैं जो एक साथ साथ सब डांस कर रहे हैं, साथ माँ की आराधना करेंगे। जैसा उन्होंने बताया हम भी एक गरबा रखते हैं, गरबा मतलब मटका जिसमें छेद होते हैं, उसमें दीपक होती है जिसको एक ज्योति और हमारे अंतरात्मा का प्रतीक मानते हैं,
1: शक्ति जो आत्मा है।
3: तो उसके ही
1: चलिए क्या बात है। तो जीएनटी पर गरबा क्लास आपने देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने वडोदरा के गरबा मैदान में खिलाड़ियों के साथ गरबा खेला है। वायुसेना के प्रमुख इस दौरान पूरी तरह से मां की भक्ति में लीन नजर आए। पहले देवी मां की आरती की और फिर पारंपरिक नीले रंग के परिधान में गरबा की धुन पर जमकर कदम थिरकाते हुए दिखाई दिए और उत्सव का भरपूर आनंद लिया। इस दौरान वायुसेना प्रमुख ने कहा कि 30,000 लोगों को एक साथ गरबा खेलते हुए देखना बहुत खुशी की बात थी।
5: इवेंट्स कम्युनिकेशन मोबाइल वाला वीजा कंसल्टेंट पार्टनर प्रथम इंटरनेशनल और इवेंट पार्टनर सन आउटडोर्स।
0: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि लंच टाइम में ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे,
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: ब्रेक के बाद लंच टाइम में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। अब आपको लेकर चलते हैं फिल्मी दुनिया में, जहां पर सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। थलाइवा के चाहने वालों पर उनकी फिल्म का खुमार छाया हुआ है। कहीं थिएटर के बाहर जश्न का माहौल है, तो कहीं ढोल नगाड़ों के साथ फैंस अपने चहेते सुपरस्टार के लिए प्यार जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
10: बिल्कुल, देखिए तीन तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से लोग थलाइवा के पोस्टर्स पर यहाँ पर दूध चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए साउथ में दीवानगी स्टार्स के लिए कुछ ऐसी ही है कि वहाँ पर जब उनके फेवरेट स्टार की कोई फिल्म रिलीज होती है, और यहाँ पर तो बात थलाइवा यानी रजनीकांत की हो रही है, तो लोगों में जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। आपको बता दें कि फैंस के लिए ये किसी फेस्टिवल, किसी उत्सव से कम नहीं है, और यही वजह है कि जेलर 2 को लेकर उनके चाहने वालों में काफ़ी ज़्यादा क्रेज नज़र आ रहा है।
0: हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक वास्तुकला और लोक कला को सहेजने की दिशा में रिटायर्ड शिक्षक विनय अवस्थी तन मन धन से लगे हुए हैं। विनय अवस्थी बांस और लकड़ी से हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक मंदिरों और पारंपरिक स्लेट पोश मकानों की आकर्षक प्रतिकृतियां तैयार कर रहे हैं, जिसे देखकर लोग तारीफ करते नहीं थक रहे। उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में लगाई गई है, जिसे देखकर सैलानी भी मंत्रमुग्ध हो रहे हैं।
11: अयोध्या का श्री राम मंदिर, केदारनाथ महादेव मंदिर, आदि हिमानी चामुंडा मंदिर और कई प्रसिद्ध मंदिरों के रेप्लिका, ये हिमाचल की अनूठी बांस कला की देन है, जिसे साकार कर रहे हैं विनय अवस्थी। विनय अवस्थी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन लकड़ी और बांस से तैयार किए गए ये मॉडल इस बात के सबूत है उनके जुनून का। उनका मानना है कि बांस की अनूठी कला को दुनिया के सामने लाना है और हिमाचल की पारंपरिक वास्तुकला और लोक कला को सहेजने की जरूरत है, इसकी कोशिश वो कर रहे हैं।
12: ये आर्ट जो मैं 2019 से कर रहा हूँ, और मैडम मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी कलाकृतियां हैं उनको बनाने में 15 दिन से ज्यादा समय लगता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इनको बड़ी तन्मयता के साथ बनाऊं, ताकि देखने वाला जो है वो देख करके मतलब जो है वो उसको पसंद करे। लोकल बैम्बू यूज करता हूँ, उसको काट करके सुखा करके और अपने ही हाथों से सारा कुछ करता हूँ, और जब ये रेप्लिकास कोई अंतिम रूप दे लेती है तो मैं उसको ट्रीट करके फिर जो प्रदर्शनी में लगाता हूँ।
11: बांस और लकड़ी से हिमाचल के ऐतिहासिक मंदिरों और पारंपरिक स्लेट पोशा मकानों की आकर्षक प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी आजकल धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में लगाई गई है।
13: अभी टेंपल्स के रेप्लिकास हैं, पूरे हिमाचल को इन्होंने कवर किया हुआ है। रिज शिमला का भी है इसमें, मुंडा टेंपल और ये रिज शिमला, रिज जो है शिमला पे उसका, और भीमाकाली टेंपल, चौरासी टेंपल, इन सब के रेप्लिकास इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं।
14: ये टेंपल्स के ये भी काफ़ी अच्छा है, इट्स वेरी गुड। सो ओवरऑल आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस नोइंग अबाउट योर एंशियंट हिस्ट्री एंड ऑल दोस थिंग्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा।
11: हिमाचल की पारंपरिक कला और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे प्रदर्शनी का आयोजन वक्त वक्त पर किया जाता है। प्रशासन की कोशिश भी रहती है कि ऐसी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान मिल सके, ताकि हिमाचल और देश के युवा इस पारंपरिक कला को नया आयाम दे सकें।
15: ऐसे लोग हैं जो ऐसी आर्ट फॉर्म्स को जीवित रख रहे हैं, आप इनके देखेंगे जब, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी ये दिखाएं कि स्लेट पोस्ट मकान, डबल मंजिल, सिंगल मंजिल, जो हमारा शिमला का चर्च है, और जो इतने सारे हिमाचल के मंदिर हैं उनके रेप्लिका जिन्होंने बनाए हैं, बहुत बारीकी से काम किया है। और कहीं ना कहीं आजकल ऐसा हो रहा है कि ये प्रतिभा जो है, ऐसी आर्ट फॉर्म जो हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, तो अगर ऐसे में कोई ऐसे आर्टिस्ट सामने आते हैं तो हमें उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानना चाहिए।
11: विनय अवस्थी ऐसी प्रतिकृतियों को बनाने में बांस काटने से लेकर कलाकृतियों को अंतिम रूप देने तक का ज्यादातर काम खुद करते हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें इस काम का कुछ सहयोग मिले तो वो इस कला को देश और दुनिया तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और इसी के साथ लंच टाइम में फिलहाल इतना ही।
10: बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
16: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
10: लद्दाख को मिलेगी विकास की सौगात, पीएम मोदी ने किया करीब 3,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, ले एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी तोहफा मिला। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जताई आंधी की आशंका। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से लेकर कुपवाड़ा तक बिछी बर्फ की सफेद चादर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी। शारदीय नवरात्रि का आज पांचवा दिन विधि विधान से हो रही है मां स्कंद माता की आराधना, देश भर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। लाखों फोन यूजर्स के लिए बदलने जा रहा है नियम, अब अनजान फोन कॉल पर भी दिखेगा असली नाम, 1 नवंबर से लागू होगा फैसला।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
10: शारदीय नवरात्रि का आज पांचवा दिन मां स्कंद माता की हो रही है आराधना, देश भर के मंदिरों में मां स्कंद माता के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं भक्त, मां की उपासना से संतान सुख बुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। मां स्कंद माता को नवरात्र में फल और नारियल अर्पित करने की परंपरा है, श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्त कर रहे हैं मां की आराधना। मां स्कंद माता की पूजा में पीले सफेद फूल अर्पित करने की परंपरा है, केले शहद और केसर की खीर का भोग लगाया जाता है। भक्त करते हैं ओम देवी स्कंद माताए नमः का जाप, देवी के स्वरूप में झलकती है वात्सल्य और शक्ति। गुजरात के अमरेली जिले में सावरकुंडला में देसी गरबा की धूम, पारंपरिक वेशभूषा और देशी सुरों के साथ मां जगदम्बा की आराधना। बालखोडिया रास मंडली ने पारंपरिक विरासत को जीवंत रखा है, यह परंपरा पिछले 78 सालों से जारी है। काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर सोना चोरी प्रकरण पर बोले मंदिर के सीईओ, खबर को बताया भ्रामक, कहा सोना है सुरक्षित। मंदिर प्रशासन ने खबर को बताया निराधार, अधिकारियों के मुताबिक शिखर स्वर्ण को मंदिर के लॉकर में रखा गया है सुरक्षित। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर हाई पावर कमेटी की बैठक हुई, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने पर चर्चा हुई। साफ सफाई बिजली और मंदिर की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई, भोग प्रसाद की शुद्धता पर भी विचार किया गया। प्रयागराज में अलग अलग थीम के सजे दुर्गा पूजा पंडाल, कहीं नागलोक कहीं मिकी माउस तो कहीं बना केरला का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। बाइकाबाग इलाके में दुर्गा पूजा के 100 साल पूरे होने पर तैयार किया गया पद्मनाभ स्वामी मंदिर, भव्य द्वार, रत्न आभूषणों की सजावट आकर्षण का केंद्र। प्रयागराज में पश्चिम बंगाल के कलाकारों ने अपनी कारीगरी से अनोखे दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किए, भव्य सजावट देखने के लिए उमड़ रहे हैं लोग। प्रयागराज के माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालु कर रहे हैं गुफा वाली माता के दर्शन, ठंडे पानी से गुजरने के बाद भक्त करते हैं मां के दर्शन। मोतिहारी में मां दुर्गा के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब, पूजा पाठ और जयकारों से गूंज रहा है मंदिर परिसर, मां दुर्गा की आराधना के लिए उमड़ी भीड़। भक्त मुकेश दास की अनोखी साधना बनी आकर्षण का केंद्र। सीने पर कलश रखकर मुकेश दास कर रहे हैं कठिन साधना, भक्ति और आस्था का अनूठा नजारा। श्रद्धालु पूजा अर्चना कर मांग रहे हैं सुख समृद्धि का आशीर्वाद। कोई फूल चढ़ा रहा है तो कोई कर रहा है पूजा पाठ। मां दुर्गा की श्रद्धा, भक्ति में डूबे हैं श्रद्धालु। मोतिहारी में केसरिया के फुलतकिया में मां दुर्गा का भव्य दरबार सजाया गया। दर्शन पूजन के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मां के भक्तों में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। मां दुर्गा के दरबार में श्रद्धा और आस्था का संगम। धूप दीप और मंत्रोच्चार से भक्तिमय हुआ माहौल। नवरात्र के रंग में रंगा पूरा स्थल। नवरात्र के फलाहार में चाट से कबाब तक का स्वाद। साबूदाना, वड़ा, शकरकंदी चाट और राजगिरी कोफ्ते बने खास। पारंपरिक व्रत की थाली को मिला नया अंदाज। श्रीखंड और साबूदाना खीर से बढ़ा फलाहार का जायका। कुट्टू की पूड़ी के साथ काली मिर्च पनीर का जायका। आलू शकरकंदी कटलेट और दही वड़ा भी मेन्यू में शामिल। फलाहारी व्यंजनों में दिख रहा है परंपरा और प्रयोग का मेल। नवरात्र में सात्विक खाने की बढ़ी रंग बिरंगी रेंज। परिवार और अकेले खाने वालों के लिए अलग अलग थालियां। व्रत के भोजन को स्वादिष्ट बनाने की खास पहल। मंदिर की थीम पर आधारित रेस्टोरेंट में खास फलाहार, तो वहीं कांसे की थाली और पत्तल में परोसे जा रहे हैं पकवान। करीब 95% भोजन बिना लहसुन प्याज के तैयार किया गया है। सिर्फ नवरात्र नहीं, साल भर मिलता है खास फलाहार। एकादशी, सावन और दूसरे व्रतों के लिए भी विशेष थाली। अमरावती के अंबिका माता मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। हजारों दीपों से जगमगाया मंदिर परिसर। श्री कृष्ण और रुक्मिणी की पौराणिक कथा से जुड़ा मंदिर। यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने किया रुक्मिणी का हरण। नवरात्र पर 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना। मनोकामना पूरी होने पर दीप जला रहे हैं भक्त। मां के दिव्य दरबार की भव्य सजावट की गई। भक्त ऑनलाइन बुकिंग से भी जलवा रहे हैं अखंड दीप। महाराष्ट्र के प्राचीन मंदिर में भक्ति का अनूठा नजारा। अंबिका माता के तेजस्वी स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। झांसी में मां काली का अनोखा दरबार सजा। ना खड़ग ना मुंडमाला कन्या स्वरूप में मां काली नवरात्र में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। मां महाकाली का शांत और सौम्य स्वरूप। 5 गुड़हल के फूल चढ़ाने की मान्यता है। 400 साल पुरानी परंपरा से जुड़ा है मंदिर। झांसी में मां काली का बालिका रूप बना आकर्षण। स्वयंभू विग्रह होने की धार्मिक मान्यता। भक्त मुद्रा श्रद्धा से चढ़ाते हैं लाल गुड़हल। ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव से जुड़ी मान्यता। मां के दरबार में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। आरती में शामिल हो रहे हैं श्रद्धालु। लक्ष्मी तालाब के पास स्थित है विद्यापीठ मंदिर में चंडी पाठ और लक्षचंडी यज्ञ की परंपरा है। सदियों पुरानी आस्था की अनूठी कहानी। गयाजी में मां दुर्गा का अनोखा भक्त शंकर भगत ने सीने पर स्थापित किए 2 कलश, तो वहीं 9 कलश स्थापित किए हैं। अनूठी भक्ति देखने के लिए उमड़ रहे हैं ग्रामीण। सीने पर 9 कलश रखकर 9 दिन माता की कठिन साधना कर रहे हैं। नवरात्र में भक्ति बनी आकर्षण का केंद्र। भक्ति देखकर नतमस्तक हुए लोग। खगड़िया में भक्ति की अनोखी मिसाल। छाती पर कलश रखकर भक्त ने शुरू की मां की कठिन आराधना। मन्नत पूरी होने पर लिया संकल्प। शारदीय नवरात्रि में भक्ति की अनूठी तस्वीर। अंत्याग कर 10 दिनों तक मां की पूजा अर्चना। विजयदशमी पर होगा कलश विसर्जन। त्योहारी सीजन में रेलवे के कर्मचारियों के लिए आई गुड न्यूज। केंद्र ने प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का ऐलान किया। 78 दिन के वेतन के बराबर मिलेगा पैसा। दुर्गा पूजा के रंगों में नहाया कोलकाता। फूलों, चौराहों और घाटों की रंगीन सजावट, भव्य रंगोलियों से खिल उठी शहर की सड़कें। गरियाहाट ब्रिज गुलाबी नारंगी रंगों से सजा। अलग अलग समुदायों ने कलाकारों से बनाई, तो वहीं उत्सव के स्वागत में शहर का भव्य श्रृंगार। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में 221 फीट का रावण तैयार किया गया। 22 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई है दुनिया के सबसे बड़े रावण का दावा। तो वहीं वाटरप्रूफ वेलवेट से तैयार किए गए कपड़े। नब्बे फीट के मेघनाद और कुंभकर्ण के भी पुतले तैयार किए गए। 3 महीने में बना विशाल काय पुतला 40 लाख से ऊपर की है कीमत। तीनों पुतलों को तैयार किया गया। दशहरे पर उमड़ेगी दर्शकों की भीड़। 120 कारीगरों ने तैयार किया विशालकाय पुतला। निर्माण में लगा 7 टन लोहा। 25 फीट का मुकुट के साथ रावण की शाही सजावट। ग्रीन क्रैकर से जलेगा विराट पुतला। अब फोन की घंटी बजते ही पता चल जाएगा कौन कर रहा है कॉल। 1 नवंबर से नया नियम होगा लागू। कॉल आने पर मोबाइल नंबर के साथ कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने फोन करने वाले की पहचान से जुड़े नियम में बदलाव किया। बिहार के सहरसा में महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। नगर निगम की ओर से आयोजित प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक भी पहुंची सहरसा। महिला पहलवानों का बढ़ाया हौसला। आगरा में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने इंसानियत का फर्ज निभाया। झोपड़ी में जिंदगी गुजार रही बुजुर्ग विधवा की मदद की। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। कोलांग समेत कई इलाके बर्फ की सफेद चादर में ढके। जिला मुख्यालय केलांग सहित दारचा, जस्पा और सिस्सू में भी गिर रहे हैं बर्फ के फाहे। दिखा खूबसूरत नजारा। केलांग में सीजन की यह पहली बर्फबारी। ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ दिन पहले ही हो चुका है हिमपात। बर्फबारी से ठंड की चपेट में आई घाटी। दारचा के आगे वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक। जम्मू कश्मीर की वादियां भी बर्फबारी से गुलजार हुई। गुलमर्ग में हिमपात से बढ़ी पहाड़ों की खूबसूरती। गुलमर्ग में बर्फबारी से सैलानियों की बल्ले बल्ले। वादियों में बर्फबारी का आनंद लेते दिखे पर्यटक। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में इस मौसम की पहली बर्फबारी। घर, रास्ते, पहाड़ सब पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के कारण मुगल रोड बंद हुआ। सोनमर्ग, लद्दाख हाईवे और बांदीपुरा गुरेज रोड पर भी जाने वाले की मुश्किल बढ़ी। दिल्ली एनसीआर में छाए घने बादल, कई इलाकों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने बारिश के साथ आंधी की भी चेतावनी दी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदला मौसम। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में कल भी बारिश की जताई संभावना। पीएम मोदी आज जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 के पदक वीरों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शाम 4:30 बजे कार्यक्रम होगा। जापान में एशियन गेम्स मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। खिलाड़ियों की उपलब्धियों और शानदार प्रदर्शन का होगा सम्मान। एशियन गेम्स में भारत ने 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया था। भारत की झोली में आए थे 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल। चेन्नई में 3108 करोड़ की वाटर पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ। सीएम विजय ने शिलिंग नल्लूर में रखी थी परियोजना की आधारशिला।
1: 98 किलोमीटर लंबी लोहे की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 9 प्रमुख जल स्रोतों को आपस में जोड़ेगी नई पाइपलाइन। जल संकट वाले इलाकों तक पहुंचेगा अतिरिक्त पेयजल। हैदराबाद के हुसैन सागर झील में डूबती बच्ची को बचाने के लिए 3 लोगों को सम्मानित किया गया। पुलिस कमिश्नर VC सजानगर नकद पुरस्कार देकर सम्मानित करते दिखे। मुंबई में भारत और कनाडा की कंपनियों के बीच कई अहम समझौते हुए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और विनिपेग के बीच MOU पर हस्ताक्षर। इंडो अल्बर्टा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ भी सहयोग समझौता हुआ। व्यापार निवेश और कारोबारी साझेदारी को बढ़ावा देने पर जोर। प्रयागराज में पद्मलोक आवास योजना का भूमि पूजन करेंगे सीएम योगी। अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त जमीन पर बनेगी 14 मंजिला इमारत। चेकिया की कसारी मसारी में 602 फ्लैट बनाने की तैयारी हुई तेज। पीएम आवास योजना के तहत सीएम योगी 556 फ्लैट की चाबी लाभार्थियों को सौंपेंगे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
17: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है नच तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: लद्दाख को मिलेगी विकास की सौगात, पीएम मोदी ने किया करीब 3,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, ले एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी तोहफा। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जताई आंधी की आशंका। पहाड़ों पर मौसम की मेहरबानी बरकरार, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से लेकर कुपवाड़ा तक बिछी बर्फ की सफेद चादर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन, विधि विधान से हो रही है मां स्कंद माता की आराधना, देश भर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। लाखों फोन यूजर्स के लिए बदलने जा रहा है नियम, अब अनजान फोन कॉल पर भी दिखेगा असली नाम, 1 नवंबर से लागू होगा फैसला।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी।
9: हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिंकी, आप सबकी प्यारी रिंकी भाभी। सीरियल्स के ड्रामे से लेकर रियलिटी शोज और वेब सीरीज की सारी हलचल तक, यहाँ मिलेगी आपको मनोरंजन की हर न्यूज। लेकिन सबसे पहले देखिए आज की हेडलाइंस।
10: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए मायरा के फैसले से अरमान और अभीरा होंगे परेशान, आएगा कहानी में नया मोड़। शुरू होगी ईशा और सूरज की रस्सी वाली नोक झोंक।

0: दूसरे की ताल से ताल मिलाएंगे आरंभी और ध्रुव।
1: तुम पास आए यूं मुस्कुराए,
2: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
0: सीरियल महादेव एंड सन्स में एकजुट होगा परिवार। महादेव लेंगे अपने सर पर इल्जाम।
2: कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी?
0: सीरियल तू ही रे दिल में शुरू होगा खूनी खेल। घर छोड़ने का फैसला लेगी वृंदा। भेस बदलेगी जगधात्री। क्या होगा रुद्र का खुलासा? हमारी भाभी नंबर वन में होगा हाई वोल्टेज ड्रामा। देवरानी और जेठानी में लगेगा चैलेंज।
3: तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है।
0: और नवरात्रि के मौके पर श्रेय पारिक करेंगे माता रानी के दर्शन। करेंगे उनके साथ भक्ति भरा डे आउट सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: पति ब्रह्मचारी में शुरू हो गया है ईशा और सूरज का रस्सी रोमांस, साथ ही चल रही है दोनों के बीच नोकझोंक भी। तो क्या त्योहार पर बनेगी ईशा और सूरज की जोड़ी, आइए देखते हैं।
1: बंधी ईशा और सूरज की डोर। शुरू हुई रस्सी वाली नोकझोंक।

0: इस रस्सी से शुरू हुआ नया बवाल। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है और देखिए कैसे इस रस्सी के बीच फंस गए हैं ईशा और सूरज। कभी सूरज ईशा पर रस्सी फेंकता तो कभी ईशा सूरज पर। ऐसे में दोनों के बीच रस्साकशी जारी है। असल में ऐसा क्यों हो रहा है, आइए हम आपको बता दें। भाई घर में चल रही है नवरात्रि की तैयारियों की बातें, ऐसे में मोनिका पूछती है ईशा से सवाल कि आखिरकार रॉ क्या होता है। ऐसे में ईशा रॉ एजेंट की बढ़ाइयां घर वालों के सामने कर रही है और इस रस्सी के सहारे बता रही है कि कैसे उस रॉ एजेंट ने काली को पकड़ा है।
1: नवरात्रि पर काला चना पूरी और शुद्ध घी वाला हलवा, सुन के मुंह में मेरे।
2: काली की सुबह 9 बजे तक भोग बनाने की जिम्मेदारी तेरी है, समझी?
0: इस रस्सी के सहारे ईशा रॉ एजेंट के किस्से बता रही है कि तभी वहाँ सूरज आ जाते हैं और ये रस्सी जा गिरती है सूरज के गले में। बस फिर क्या, सूरज को आता है गुस्सा और वो भी ईशा पर रस्सी फेंकता है और उसे बांध देता है और फिर ऐसे ही चलता रहता है, जहाँ पर कभी ईशा सूरज के पैर बांधती है तो कभी सूरज ईशा की ओर ये रस्सी फेंकते हैं उसे बांधने के लिए, यानी कि इन दोनों की रस्सी वाली

0: भाई असल में नोकझोंक की वजह रस्सी नहीं बल्कि वो रॉ एजेंट है जिसकी तारीफों से सूरज जल रहे हैं और ईशा पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तभी तो इस रस्सी की वजह से ग्लास गिरा और शुरू हुई ईशा सूरज में ये नोकझोंक और ताई जी को बीच में आना पड़ा इन्हें शांत करने के लिए।
1: पूरा पानी फैला दिया ना।
2: मैंने फैलाया पानी?
1: तो किसने किया? ये रस्सी के साथ कौन खेल रहा है?
2: मैं खेल नहीं रही थी, बता रही थी कि वो रॉ एजेंट ने कालिया गैंग को पकड़ा कैसे।
1: हाँ बता रही थी लेकिन नुकसान तो कर दिया ना आपने।
2: सूरज तुम हिले इसलिए ग्लास गिरा है, तुम्हारी गलती है।
1: सजी
2: सूरज तुम्हारी गलती है,
1: आपकी गलती है। चुप हो जाओ तुम दोनों। कुछ बिहारी बिहारी दोनों की दोनों ने घर को अखाड़ा बना रखा है। मौका मिला लेकिन शुरू हो जाते हो। जाओ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों की दोनों चूहे बिल्ली जैसे जब देखो तब लड़ते रहते हो।
3: ईशा जी जो हैं मतलब कि वो एक रॉ एजेंट है कोई तो, एंड उसकी जानकारी दे रही हैं घर में सभी को कि मतलब कालिया गैंग के जो हेड थे कालिया, उसे पकड़ने के लिए मैं इतने दिनों से ट्राई कर रही थी बट नहीं पकड़ पा रही थी। एंड फाइनली मतलब कि वो आतंकवादियों से कांटेक्ट रखता था, गैंगस्टर था, तो कोई तो रॉ एजेंट है तो उसने उसे पकड़ लिया। अब ईशा जी उसकी सारी चालबाजी बता रही हैं कि उसने कैसे किया होगा, उसे रस्सी से कैसे बांधा, ये सारी चीज़ों एज ए डेमो डेमोन्स्ट्रेट करके वो दिखा रही हैं घर में। और वहीं पे सूरज घर में एंट्री मारता है और गलती से वो रस्सी सूरज के गले में आ जाता है, तो बोलती हैं कि ठीक है, तो वो एग्जाम्पल ले लेती है। सपोज टू बी सूरज इज कालिया और मतलब कि मैं जो हूँ रॉ एजेंट हूँ ईशा जी, और तो रॉ एजेंट ने कालिया को ऐसे ऐसे करके पकड़ा होगा, ये किया होगा। और सूरज को आ जाता है वहाँ पर गुस्सा कि यार ये इतना मतलब इतनी वाहवाही क्या कर रही है उसकी। ठीक है ना, है रॉ एजेंट होगा अपने जगह पे, लेकिन सूरज भी कम थोड़ी ना है। ये सूरज भी एक समय था आईएएस ऑफिसर था, कालिया उससे डरता था, और आज ईशा जी उसकी बड़प्पन कर मतलब बढ़ाई कर रही है, मेरे बारे में तो कभी बोलती नहीं है, तो वो थोड़ा सा जेलस फैक्टर है सूरज का। तो वो जल भी रहा है और एट द सेम टाइम एटीट्यूड भी दे रहा है ईशा जी को, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती है और भूल जाते हैं दोनों की पड़ोस मतलब कि साइड में ही घर वाले बैठे हुए हैं, ताई माँ मोनिका भाभी यू नो काव्या बैठी हुई है, ये सब भूल जाते हैं हम लोग और हम अपने टशन में यू नो चीज़ों को कैरी ऑन किए जा रहे हैं।
0: भाई एक ड्रामा खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया। देखिए कैसे आज बंटी पर भी अपना गुस्सा सूरज निकाल रहे हैं। असल में बंटी ने सूरज से कह जो दिया है कि वो उस रॉ एजेंट से जल रहे हैं, क्योंकि ईशा रॉ एजेंट की तारीफ जो करे जा रही है, ऐसे में पिट गया बंटी।

बंडी ऑफ कोर्स है, जीजा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो मतलब कि सूरज का बेस्ट फ्रेंड है, पहले दोस्त है बाद में जीजा है, वो हमेशा यही बोलता है और यही चीज ये सीन में भी बोला। एक्चुअली सूरज जो है ईशा जी से इसी सिलसिले में बात करते रहता है कि ईशा जी बताती है कि रॉ एजेंट है, ही इज लाइक शेर, वो ये किया वो किया ऐसे किया, पता है सूरज, सूरज को गुस्सा आता है, चिड़ आता है, जेलस होने लगता है। सूरज बोलता है हाँ तो ठीक है ना, रॉ एजेंट का तो काम ही होता है आतंकवादियों को पकड़ना, ये पकड़ना, कौन से बड़ा तीर मार दिया, वो अपना काम कर रहे हैं। और मत भूलिए मैं भी आईएएस ऑफिसर था, मतलब अपनी भी बेचारा बताता है कि आप तो कभी मुझे मतलब कि वो नहीं की, मतलब अप्रिशिएट नहीं किया, आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ये सारी चीज़ें करते ही रहता है। एट द सेम टाइम मतलब कि वो फ़ोन कट कर देता है गुस्से में, और वहीं पर बंटी और बंटी के साथ पंटर आ जाते हैं, और बंटी है चालाक होशियार, और वो सीधा बोलने लगता है कि भैया सब समझ रहा हूँ, मतलब कि ईशा भाभी से लगता है आपका अनबन हो गया। तो ये बोलता, फिर वो उसके बाद वो ये बोलता है कि सब समझ गया, ये बोलता है क्या समझ गया तू, तो वो बताता है कि वही वही कि मतलब आप जल रहे हैं ये, और तो बोलता है सुन तू भले मेरी बहन का पति है लेकिन उससे पहले तू मेरा दोस्त है, और मुझे दोस्तों को ना कूटने में बड़ा मजा आता है। और वो थाली उठाता है मारने के लिए बंटी को, और बंटी वहां से 9-2-11 हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ऑडियंस

0: मतलब कि जरूर ये सोचेगी कि यार जीजा है ऐसे कैसे, लेकिन नहीं जीजा वो जो बाद में, वो पहले दोस्त है, उसकी कुटाई कितना भी करे बाद में भले इज्जत दे वो ऐसे जीजा।
1: तो भाई अब देखना होगा कि ये रॉ एजेंट आखिर है कौन जिससे सूरज इतना जल रहे हैं, कहीं वो सूरज ही तो नहीं। पर यही तो है कहानी में आने वाला ट्विस्ट जो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: सीरियल हमारी भाभी नंबर वन में देवरानी और जेठानी के बीच लग गया है चैलेंज। जहां मुस्कान परिवार को खत्म करना चाहती है तो वहीं बंसरी परिवार को बचाना चाहती है। अब देखते हैं जीत किसकी होती है।
1: बंसरी पर हुआ हमला, अनंत को आया गुस्सा, मुस्कान ने चली चाल,
3: देश की जनता की सबूत चाहिए तो तू ना एक सीधा साधा सबूत दे दे।
1: बंसरी ने किए सवाल,
3: कामिनी जी और सुरेश जी तेरे असली माँ बाप, बोलते बंद क्यों हो गए तेरे।
1: दंगल टीवी के सीरियल हमारी भाभी नंबर वन में मुस्कान ने चली है ऐसी चाल कि महिला मोर्चा वाले पहुंच गए हैं बंसरी के ससुराल लगाने लक्ष्य के खिलाफ नारेबाजी, और तो और साथ में आई है मीडिया भी, जिसे देखकर बंसरी ही नहीं बल्कि बाकी घर वाले भी हो रहे हैं हैरान और कर रहे हैं कोशिश ये नारे रोकने की।
4: मेरे दरवाजे पर प्रोटेस्टर्स और जर्नलिस्ट की भीड़ जमा है, ये लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आप तुरंत पुलिस भेजिए इमीडिएटली। थैंक यू
1: भाई। अनंत ने पुलिस वालों को फोन करके तो बुला लिया, लेकिन नारेबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच वहां पर लक्ष्य भी आता है जो ये सब देखकर परेशान हो रहा है और तो डिप्रेशन में भी जा रहा है। हालांकि बंसरी नारेबाजी रोकने की कोशिश में लगी है कि तभी बंसरी की नज़र लक्ष्य पर पड़ती है और वो लक्ष्य को जाते हुए देख लेती है। ऐसे में वो लक्ष्य को समझाने के लिए चली जाती है और उधर अनंत पुलिस वालों से मुस्कान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की बात करता है। इसी बीच बंसरी के ऊपर पत्थर फेंक देता है, जिसके चलते बंसरी के सर पर चोट आ जाती है और अनंत का गुस्सा भड़क उठता है।
4: मेरे घर में घुसकर हंगामा करने का जवाब देना पड़ेगा सबको, छोड़ूंगा नहीं मैं। इंस्पेक्टर बाहर निकालिए इन लोगों
3: को। देखिए देखिए प्लीज शांत हो जाइए, कोऑपरेट कीजिए, घर में प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है, बाहर जाइए आप लोग, प्लीज बाहर जाइए, चलिए।
1: भाई पुलिस ने मिलकर सभी मोर्चे वालों को बाहर निकाल दिया, लेकिन मीडिया अब भी वहाँ मौजूद है। वहाँ पूरा परिवार बंसरी की देखरेख में लग जाता है। ये सब देखकर ना मुस्कान को पसंद आता है और ना ही मुस्कान के साथ आई महिला मोर्चा वाले को। ऐसे में देखिए कैसे वो महिला मोर्चा वाली पहुँच जाती है पुलिस के ऊपर बरसने के लिए, लेकिन तभी पुलिस उसकी बोलती बंद कर देती है। इसी बीच वहाँ पर आ जाती है मुस्कान देने महिला मोर्चा वाली का साथ और ये दिखाने कि उसके साथ ज्यादती हो रही है।
3: प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकते? देखिए अभी हम लाइव, पूरा देश हमें देख रहा है और अब जो भी फैसला होगा कैमरा के सामने, सच या झूठ इस देश की जनता डिसाइड करेगी। और कल जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले के से लगाए थे, बताइए क्या वो गलत थे? आप मुझे बताइए कि आप मेरी FIR दर्ज करेंगी या नहीं? और हमेशा बिल्डिंग भरे सवाल क्यों उठाए जाते हैं? गुनेगार पर क्यों नहीं?
1: मुस्कान तो मीडिया के सामने पॉइंट्स गेन करने के लिए इमोशनल ड्रामा कर रही है और ये चीज बंसरी को साफ साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में बंसरी भी अपने आप को रोक नहीं पाई और पहुंच गई मुस्कान का करारा जवाब देने के लिए। इतना ही नहीं, पुलिस की मदद से पूरी मीडिया को बंसरी ने अपने घर के अंदर बुला लिया। बस फिर क्या, ये देखकर मुस्कान ने एक और गेम खेला और शुरू कर दिया रोना, जिसकी वजह से पूरी मीडिया का रुख उसकी तरफ हो गया। बस फिर क्या, उसी वक्त बंसरी ने फेंक दिया अपना पासा।
5: अरे मुस्कान, अभी क्यों रो रही हो? ये ड्रामा बाद के लिए बचा के रखो। हाँ, तुम्हें बोली थी ना लाई बुलाई बुलाई। अब मैं लाइव बात करूंगी पूरी देश की जनता के साथ। आज सिर्फ एक औरत की आवाज नहीं सुनी जाएगी, आज सच की आवाज सुनी जाएगी। हमारे समाज में शादी जैसे पवित्र रिश्ते में भी घुस गई है। हमारे समाज में जब भी कोई रिश्ता टूटता है तो सबसे पहले लोग ना उंगली लड़के वाले पे उठाते हैं, उस पे इल्जाम लगाते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, दबाव डालते हैं पैसे का। हाँ, और सच को सामने आने से पहले ही लड़का और उसका पूरा परिवार उसको ऐसे खलनायक को आप लोग क्या बोलते हैं, विलेन विलेन साबित कर दिया जाता है। हा? हम सब ने वो ब्लू ड्रम वाला केस तो सुना ही है। हा? और वो बेंगलुरु केस, वो मामला भी हमने देखा है, सुना है। उसमें कैसे पति लगन के विवाद से और ये जबरन पैसे की वसूली से ऐसे पूरा गड्ढा कर उसने आत्महत्या कर ली थी। तो
1: अब बंसरी तो सभी मीडिया वालों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस घर में एक औरत नहीं बल्कि मर्द को पीड़ित किया गया है। इतना ही नहीं, बंसरी ने तो मीडिया के सामने इस बात का भी खुलासा कर दिया कि शादी से लेकर अब तक मुस्कान और लक्ष्य के बीच पति पत्नी का रिश्ता बना ही नहीं है। इस पर भी मुस्कान ने बंसरी पर ही इल्जाम लगा दिया और तो और बंसरी ने और भी कई बातों का खुलासा किया और वो सारी बातें सुनकर मुस्कान ने सबूत की बात कर दी। बस फिर क्या, बंसरी को मौका मिल गया अपना असली पासा फेंकने का।
3: एलिगेशन के कुछ प्रूफ नहीं होगा, कानून को सबूत प्रूफ। वाह मुस्कान, सबूत चाहिए? तुझे पता है अब तक तूने सबसे पते की बात अभी बोली है। हाँ, सबूत चाहिए ना? तो तू ना एक सीधा साधा सबूत दे दे। हाँ, बस ये साबित कर दे कि कामिनी जी और सुरेश जी तेरे असली माँ बाप। बोलते बन क्यों गई तेरी? मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर ये मत समझना कि मुझे कुछ आता जाता नहीं है। हाँ, बहुत तेज है और उससे भी ज्यादा तेज मेरी ये आंखें हैं। मैं अभी सबके सामने कहती हूँ, करवा लो डीएनए टेस्ट तेरा और तेरे माँ बाप का। जो भी खर्चा आएगा ये बंसरी का बढ़िया देगी।
1: वह पूरी मीडिया के सामने बंसरी ने मुस्कान को चैलेंज कर दिया है। अब देखना होगा क्या मुस्कान अपने नकली माँ बाप को सभी घर वालों के सामने और मीडिया के सामने अपने असली माँ बाप प्रूफ कर पाएगी या फिर उसका हो जाएगा खुलासा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: सीरियल तू ही रे दिल में नवरात्रि के मौके पर शगुन में लग गया है अपशगुन। जहां एक तरफ वृंदा ने घर छोड़कर जाने का फैसला लिया है तो वहीं दूसरी तरफ खतरे में पड़ गई है सविता की जान। और ये खेल कोई और नहीं बल्कि कविता खेल रही है। तो भाई सीधा चलते हैं सीरियल के सेट पर ये तमाशा देखने।
1: घर से भागी अम्मू, कविता ने चली चाल, सरिता का हुआ हाल बेहाल। जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में वृंदा किसी भी हालत में घर से भाग निकलना चाहती है, वो भी सभी की नजरों से बचते बचाते। और आज उसे वो मौका मिल गया है। तभी तो देखिए कैसे बैग लेकर वृंदा फटाफट निकलने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी सामने आ जाता है जीतू, जिसे वृंदा हाथ जोड़कर भागने में मदद करने के लिए कहती है। लेकिन जीतू कुछ पल की मोहलत मांगता है क्योंकि घर में कुछ लोग मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर कविता ने भी चली है चाल सरिता को अपने रास्ते से हटाने की। ऐसे में उसने सभी घर वालों को कहीं न कहीं भेज दिया है, और तो और सभी को कॉल कर वो कन्फर्म भी कर रही है सभी सही सलामत पहुँचे हैं या नहीं।

0: हाँ माँ पापा, पहुँच गए आप मंदिर? डेकोरेशन कैसा है? हाँ, हर साल की तरह अच्छा ही होगा ना। नीरू रूपल दांडिया खेलने गए, इनफैक्ट बाकी सब भी गए। जी जी, आप कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से आना। ड्राइवर को वहीं पर रुकने के लिए बोला है, और कुछ चाहिए होगा तो मुझे फ़ोन कर देना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके ओके। अच्छा, तुम्हें खाना है?
1: नहीं,
0: दो तीन घंटे लगेंगे तुझे, तो थोड़े से पैसे देती हूँ साथ में। बहुत अच्छे से खा पी, एक मिनट आई। ठीक है,
2: जैसे कि आपने देखा केक वाले सीन में, मैं बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हूँ कि अब सरिता का ओहदा जो है वो मुझसे ऊपर आ गया है। और एक चीज़ थी मेरी बिज़नेस, लेकिन अब वो बिज़नेस में भी उसका अपर हैंड हो गया है, तो वो बहुत हार्ट ब्रोकन है और उसने डिसाइड किया है कि वो सरिता को मार देगी। तो अब सरिता को मारने के लिए उसको घर खाली चाहिए, तो उसको सबको घर से बाहर भेजना है। सबको अपने अपने तरीक़ों से बाहर भेजती है।
3: यहाँ कविता जीतू को घर से बाहर भेजने की प्लानिंग करने के लिए चली जाती है, तो वहाँ जीतू मौके का फायदा उठाता है और फटाफट वृंदा के कमरे के पास जाकर दरवाजा खोलकर उसे भागने करने के लिए कहता है। ऐसे में वृंदा भागने की कोशिश करती तो है कि तभी सामने आ जाती है कविता, जिसे देखकर वृंदा डर जाती है, क्योंकि कविता को तो पता ही नहीं है कि वो भागना चाहती है।
0: अम्मू, यहाँ क्या कर रही है? अरे तू दाढ़ी भी नहीं लेगी, बहुत क्यों है तेरे पास में? बता कहाँ जा रही है? आपको कोई परेशानी? मैंने कुछ सुना भी नहीं था उसके नाम, हम तो जा रही किसी पास। भाभी, अमो डांडिया खेलने गई।
2: सरिता वैसे भी कविता को एक आंख नहीं भाती थी, तो फिर भी कविता उसको झेले जा रही थी। बट उसकी दुखती रह गया उसका बिजनेस। पहले तो सरिता का बेटा MD बन गया, बट ऑफकोर्स भाई का बेटा है, उससे प्यार करती है, तो उसको तो कुछ करेगी नहीं। बट जहाँ पे बात सरिता की आती है, वो रिवेंज मोड में चली जाती है।
3: भाई वाकई कविता के चेहरे की खुशी देखने लायक है, क्योंकि अब उसका असली प्लान एक्सक्यूट होगा। तभी तो देखिए कैसे उसने मौका पाते ही सरिता के कमरे में जाने का इंतजार किया। जाते के साथ ही उसने पूरे घर की लाइट्स बंद कर दी और फिर शुरू हुआ असली खेल, वो भी गौतम की मदद से। जरा देखिए कैसे सोती हुई सरिता बिजली की कड़कड़ाहट से जाग उठी। इसी के साथ सरिता को आ गया एक कॉल भी, जिसे सुनते ही सरिता डर गई।
4: सरिता पटेल बोल रही
0: है? हाँ जी।
4: जी, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई है।
0: कौन बोल रहे
4: हैं? अगर आपको जानकारी चाहिए तो टीवी में देखिए, न्यूज़ पे आ रही है सब।
0: बोल रहे आप ये? हेलो, एक मिनट।
2: प्लान ये है कि सरिता को डायरेक्टली मार के जेल नहीं जाना है। सरिता को वैसे भी अस्थमा है, तो उसको अगर एक उसकी जान बचती है अपने बच्चे में, तो उसको अगर एक ऐसी फेक न्यूज़ मिल जाए कि संजू का एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत सीरियस है, तो इसको अस्थमा अटैक आएगा और इसको घर में बचाने के लिए कोई नहीं होगा। तो लास्ट उसको मिलती है अम्मू, जो अम्मू खुद भागने की इसमें है, तैयारी में है। तो पहली बार जो कविता उसको रोक रही थी वो उसको कहती जा जा जा जा निकल जाए यहाँ से, और घर खाली करने के बाद में फिर सरिता को डराएंगे थोड़ा, देखेंगे। अम्मू है ना, ये भाग्य लक्ष्मी है और ये जहाँ जाती है वहाँ पे सब अच्छा ही करती है। तो जिस पल मुझे लगता है कि चलो ये निकल रही है तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो अब मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा।
3: एक फोन कॉल से सरिता इतना घबरा गई कि उसने टीवी ऑन करने की कोशिश की। जैसे तैसे टीवी ऑन हुई तो उसकी नजरों के सामने आ गई ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें उसके बेटे की मौत की खबर आती है और सरिता के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। बेचारी सरिता, रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा है। कभी अपने पति की तस्वीर के पास जाकर घंटियां बजाती है तो कभी डर के मारे जमीन पर गिर रही है, लेकिन जैसे तैसे अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी कविता ये सब सुनकर हंस रही है, लेकिन कविता को झटका तब लगता है जब उसे फिर से सरिता की आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करती है।

0: कविता तो वाकई बहुत खुश है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका प्लान कामयाब हो गया है, क्योंकि सरिता बेहोश हो गई है और उसे बचाने वाला, अस्पताल में ले जाने वाला कोई भी नहीं है। देखना होगा क्या वाकई कविता का ये षड्यंत्र काम कर जाएगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: सीरियल मन अति सुंदर में राध्या बन गई है मददगार। देखिए कैसे एक अनजान शख्स की मदद कर रही है राध्या। इसी के साथ चल रहा है रिश्तों का अनोखा खेल भी। आइए देखते हैं सीरियल में कौन सा नया ट्विस्ट आया है।
2: राध्या ने बचाई अनजान शख्स की जान, बनी राध्या मददगार।
3: हम आपको
2: दिखेगी रिश्तों की उलझने
3: के लिए छोड़कर जा रहे हैं।
2: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में राध्या किसी काम से बाहर जा रही होती है कि अचानक सड़क पर उसे ये शख्स दिखता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और वो बुरी तरह से घायल है। ऐसे में ये अनजान व्यक्ति की मदद करने आगे आ गई है राध्या, और देखिए कैसे वो उसे अस्पताल पहुंचा रही है और साथ ही रिक्शे में डालकर वो ले गई है इस अनजान शख्स को अस्पताल। वहीं दूसरी तरफ अंतरा अपनी चाल चलने में लगी है। ऐसे में अंतरा के लिए राध्या ने अहम फैसला भी ले लिया है।
4: या तो प्रथम मुझसे शादी करेगा वरना मैं ये बच्चा गिरा दूंगी।
5: उसे हमारा दिल नहीं मान रहा था कि अंतरा जी हमारे बच्चे को जन्म दे। हमें उस पर तक दिल की सुन लेनी चाहिए थी।
6: अगर शाम तक राध्या नहीं मिली तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा।
7: तुम्हारे पास 12 घंटे हैं।
8: प्रथम जी, अब से हम नहीं अंतरा जी होंगी आपकी सुनेदार। हमारे होने वाले बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए हम आपको और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं।
2: वैसे आगे चलकर कहानी में नया ट्विस्ट आएगा। आपको बता दें कि जिस शख्स की राध्या ने मदद की है और जिसे अस्पताल पहुंचाया है वो कोई और नहीं बल्कि अंतरा का बॉयफ्रेंड है। यानी कि राध्या के सामने बड़ा खुलासा होगा और अंतरा के सच का पर्दाफाश भी होने वाला है, जो देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: डॉक्टर श्रेय पारिक मना रहे हैं नवरात्रि का त्योहार। ऐसे में श्रेय पहुँचे हैं इस पंडाल में माता रानी का आशीर्वाद लेने। तो आइए करते हैं श्रेय के संग भक्ति भरा ये डे आउट।

0: मैया
1: श्रेय पारे की भक्ति
0: फेरे तो फेरे दुनिया नजरे
1: नवरात्रि पर लिया माता रानी का आशीर्वाद
0: मुझ पे तेरी नजर है मैया तेरी गोद में सर है मैया
1: श्रेय संग आस्था भरा डे आउट
0: मुझको क्या डर है मैया
1: और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं श्रेया पारेख जिन्हें आप कई सीरियल्स में देख चुके हैं जैसे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है झनक रजनी 2.0 और कई और सीरियल्स और फिलहाल वो नजर आ रहे हैं इनकी नई फिल्म छिलमार में और आज सास बहू और बेटिया में ये बने हैं खास मेहमान भाई नवरात्रि का मौका है और इस त्योहार के मौके पर श्रेया माता रानी के दर्शन लेने जाएंगे

0: देंगे फूल और नारियल। लेंगे माता रानी का आशीर्वाद। माता रानी की पूजा के बाद करेंगे पेट पूजा। साथ ही सफर में बताएंगे अपना सफरनामा और साथ होंगी ढेर सारी बातें। तो भाई बिना देरी किए शुरू करते हैं इस भक्ति भरे सफर को और सीधा चलते हैं श्रेया के पास।
1: हाय, मेरा नाम श्रेय पारेक है और आप सबको पता है कि नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं, तो इट्स बीन वेरी वेरी लॉन्ग आई एम स्टेइंग इन मलाड और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी जगदम्बा का एक वो लगता है पंडाल एंड इट्स देयर राइट इन फ्रंट ऑफ मी। जगदम्बा जी आए बोलते हैं यहाँ पे इसको और मैं काफ़ी सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आज यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया हूँ। अभी हम थोड़ा सा फूल लेंगे, कुछ भगवान के लिए प्रसाद लेंगे एंड विल गो एंड सी जगदम्बा माँ। मैं तो यार बहुत स्पिरिचुअल हूँ वैसे भी, तो मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ हमेशा करता हूँ। उसके चैप्टर्स जैसे आप करते हो, एक एक दो दो अध्याय आप करते हो, वो मैं हमेशा करता हूँ। और मंदिर ज़रूर जाता हूँ सुबह एक बार, कहीं पर भी जा पाऊँ ये मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ आज। और कोशिश करता हूँ कि छोटे बच्चों को कुछ खिला दूँ, उनको छोटे छोटे गिफ्ट दे दूँ, तो आई जस्ट ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल।
0: तो भाई मुंबई के मलाड में है ये फेमस माता रानी का पंडाल, जहाँ पर आज जाएंगे श्रेय देवी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन पंडाल में जाने से पहले कुछ जरूरी सामान की शॉपिंग भी कर ली जाए, जैसे कि माता रानी के लिए खास फूल और नारियल।
1: पहले हम नारियल लेते हैं। मुझे यहाँ पे फूल लेने वाली आंटी यहाँ पे बैठती है, मुझे सामने वो आज है नहीं, तो यहाँ पर छोटा सा शॉप है जहाँ पे होलसेल वाला टाइप फूल वाला कुछ है, तो वहाँ से फूल लेंगे, यहाँ से नारियल लेते हैं। वैसे यहाँ पे काफी भीड़ होती है, आज थोड़ा कम है तो इजीली दर्शन हो जाएंगे। तो हमने नारियल लिया, ये बहुत मैंडेटरी है, इसे बहुत शगुन वाली चीज मानते हैं।

0: ficou.
1: Ó, mistura de rimas. Mesmerizing
2: तो भाई हाथों में फूल और नारियल और दिल में भक्ति लिए इस पंडाल में पहुंच गए हैं श्रेय और देखिए कैसे वो माता रानी की पूजा कर रहे हैं और ले रहे हैं उनका आशीर्वाद। भाई आज तो श्रेय की भक्ति साफ देखने को जाहिर है और माता रानी से वो अपने दिल की बात कह रहे हैं और हो गए हैं देवी की

0: द्वार।
1: उसको बहुत अमेजिंग से दर्शन हुए हैं एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी पावरफुल। बड़ी अमेजिंग सी फीलिंग आती है जब आप मंदिर आते हो, पूरे एनर्जाइज हो जाते हो, अलाइन हो जाते हो लाइफ में। एंड आई ऑलवेज फील जब आप किसी भी मंदिर में जाते हो कि फील इन अ वेरी डिफरेंट वे, पॉजिटिविटी बहुत आ जाती है लाइफ में। एंड दिस इज अ वेरी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर मी टू कम दिस टेम्पल एवरी टाइम।

0: बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे मलाड चियाई जगदम्बा के, एंड आई एम श्योर कि हमें थोड़ी ब्लेसिंग्स मिलेगी उनसे, एंड ये साल अच्छा जाएगा, आने वाला साल अच्छा आएगा। तो अब एक काम और बचा है, लेट्स ईट समथिंग, थोड़ी पेट पूजा भी होनी ज़रूरी है ना, उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, है ना, लेट्स गो एंड ईट समथिंग।
1: तो भाई नवरात्रि के इस खास त्योहार के मौके पर श्रेया ने माता रानी के दर्शन किए और उनसे अपने दिल की बात कही। उम्मीद है माता रानी इनकी हर विश पूरी करे। खैर पूजा तो हो गई, अब बारी पेट पूजा की, और आज श्रेया जा रहे हैं अपने फेवरेट स्पॉट पर करने स्ट्रीट फूड वाला ब्रेकफास्ट।
0: नाउ वी हैव टू फाइंड अ प्लेस टू ईट समथिंग, कुछ अच्छा सा खाएंगे, ब्रेकफास्ट करना जरूरी है क्योंकि सुबह माता के दर्शन करने के बाद अब सोचा जाएगा कि क्या खाया जाए। इतने साल हो गए मुझे, छोटी छोटी गलियां भी याद है कहाँ से निकलना है। अमेजिंग इन मलाड़,

0: यहाँ पे सारी प्रिपरेशन शाम को डांडियास के लिए हो रही है। ये पूरा एरिया मनारचाई जगदम्बा का ही है, तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं सब इसी वाली डांडिया में आएंगे और अमेजिंग से सेलिब्रेशन करेंगे। प्लस हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जगह है, बंसी वड़ा पाव बहुत फेमस है, वहाँ जाएंगे और वहाँ का वड़ा पाव खाएंगे। आई एम श्योर आपको पता होगा बंसी वड़ा पाव, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट वड़ा पाव इन मनाड़ा, मजा आएगा। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा जंक फूड ना खाऊँ, लेकिन चलता है।
1: तो आज श्रेया खाने वाले हैं वड़ा पाव। हालांकि ये मुंबई के मलाड में ही है, काफी फेमस जगह, लेकिन जाने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो फाइनली श्रेया पहुंच गए हैं अपने इस फेवरेट स्पॉट पर, जहां वो अपना फेवरेट फूड खाएंगे।
0: तो हम फाइनली पहुंच गए हैं बंसी वड़ा पाव, जो मलाड का सबसे फेमस वड़ा पाव वाला है। आई एम श्योर आप सब लोगों ने खाया होगा, और नहीं खाया है तो प्लीज आइए खाइए और फिर मुझे बताइएगा कैसा है। इट्स देयर।
1: तो भाई श्रेया ने तो वड़ा पाव का मजा उठा लिया, साथ ही उन्होंने एक वड़ा पाव पैक भी करा लिया है किसी जरूरतमंद को देने के लिए। चलिए अब सफर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब श्रेया अपने घर जाएंगे। लेकिन इस सफर के दौरान श्रेया ने बताया अपना सफरनामा, बताया क्या कुछ उनके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और कैसे उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की। कई सारी चीजें श्रेया ने अपने फैंस, सास बहू और बेटियां के जरिए शेयर की।

0: एक्स्ट्रा लिया है ये, हम कोशिश करेंगे कि किसी को दे दें। जस्ट अच्छा मिल जाएगा, हम ट्राई करेंगे। प्लीज ना प्लीज ना अच्छा
1: जैसे कि मैंने आपको बोला था कि नवरात्र में आप अगर थोड़ा बहुत डोनेशन कर पाएं लाइफ में तो ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी वड़ा पाव लिया है, जो कोशिश करूँगा किसी छोटे बच्चे को या कोई मिल जाए मुझे जिनको मैं डोनेट कर पाऊँ, तो हम लोग अभी उनको ढूंढेंगे और उनको देंगे गिफ्ट। प्लस मेरी अभी फिल्म आई है रिसेंटली ओए चिलमार, इस 25 सितंबर को रिलीज़ हुई है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। 3.5 रेटिंग्स मिली है फिल्म को ऑल ओवर। इट्स बीन रनिंग इन बिहार एंड यूपी, स्टिल थर्ड ग्रैंड वीक चल रहा है उसका। बहुत मज़ा आया करने में, बड़ा अमेजिंग कैरेक्टर था मेरे लिए, वन ऑफ द बेस्ट रोल आई एवर डिड। मुझे सब कुछ करने के लिए मिला उसमें। मैं हमेशा से चाहता था, मैं स्टार्टेड माई करियर एज़ अ प्रोफेशनल डांसर, तो मैं हमेशा से चाहता था कि मुझे एक बॉलीवुड सॉन्ग मिले जिसमें मुझे डांस करने का मौका मिले, तो वो मुझे मिला, एक्शन करने को मिला, प्लस लॉट ऑफ लेयर्स इन द कैरेक्टर्स। थोड़ा सा डार्क भी था मेरा कैरेक्टर, तो मैंने सब कुछ एक ही फिल्म में करने का मुझे मौका मिला। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू माय डायरेक्टर नितिन नोकरे, ही हैज बीन वर्किंग विद डेविड धवन सिंस 20 इयर्स, ही वॉज एन एडिटर, नाउ दिस इज हिज फर्स्ट हिंदी फिल्म, तो बहुत मज़ा आया करने के लिए। एंड इट्स गोना कम ऑन सम OTT वेरी सून, तो आप लोग सब देखिएगा थिएटर्स में। अभी मुंबई में तो नहीं है, यूपी बिहार में इट्स स्टिल रनिंग और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसके अलावा मैंने टीवी में तो बहुत सारे शोज किए हैं यार, आई मीन आई थिंक आई हैव डन 10 to 12 शोज। आई स्टार्टेड विद 5 फॉर चैनल वी, उसके बाद में मैंने दिल की बातें दिल्ली जाने किया था विद राम कपूर ऑन सोनी, देन आई डिड देवांशी फॉर कलर्स, देन आई डिड कुर्बान हुआ फॉर ZTV, देन आई डिड ये रिश्ता क्या कहलाता है फॉर स्टार प्लस। दैट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स, बड़ा साइकोपैथ टाइप्स कैरेक्टर मिला था मुझे, जिसमें मैं नायरा के अपोजिट था और नायरा को बड़ा हॉन्ट किया है मैंने उसमें। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, लेकिन यू नो ऑल ओवर इंडिया से मुझे बड़ा ऐसा डिस्क्रिमिनेट करते थे लोग, क्या तूने क्या नेगेटिव, लेकिन करने में जो मुझे मज़ा आया है उफ। एंड राजन शाही सर ने मुझे इतना अच्छा पोर्ट्रे किया ना, इट्स लाइक डर ऑफ शाहरुख खान वैसा वाला फील मुझे दिया था, तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद में मैंने एक वेब सीरीज़ भी की थी फॉर बालाजी, 10 जून की रात में तुषार कपूर, बड़ा मज़ा आया उसको करने में भी, बड़ा इंटरेस्टिंग था। एंड देयर इज़ वन मोर प्रोजेक्ट विच इज़ अपकमिंग एंड इट्स गोना स्टार्ट इन दिसंबर, इट्स लाइक स्पाई फिल्म, धुरंधर टाइप फिल्म है, जिमी शेरगिल इज वन ऑफ द लीड इन द फिल्म एंड आई एम प्लेइंग एन ISIS का एजेंट, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट्स बेस्ड ऑन जयपुर ब्लास्ट, तो विच इज़ गोना कम ऑन जनवरी फरवरी, वो एक अमेजिंग प्रोजेक्ट मेरा आने वाला है, तो उसके लिए भी आई अपडेट यू। लेट्स गो, हम ढूंढते किसी को।
2: सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी।
3: तो भाई इस सफर के ही दौरान उन्हें मिल गया ये जरूरतमंद, जिसे श्रेय ने वड़ा पाव दिया।
1: तो हमें मिल गया कोई फाइनली, काफी ढूंढने के बाद में, इसको हमें दे रहा था वड़ा पाव।

भाई आज का दिन तो श्रेया के लिए काफी भक्ति भरा रहा। अब वक्त हो चला है इन्हें बाय बाय कहने का, लेकिन जाने से पहले एक डांस तो बनता ही है।

0: थोड़ा थोड़ा डांस मैं कर लेता हूँ। प्लस ये जो जगह है, अगर आपको शाम को मुझे ढूंढना हो और मैं शूट पर नहीं हूँ तो मैं आपका शाम को वॉक करता हुआ ज़रूर मिल जाऊँगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ माता के दर्शन करने के लिए, एंड आई विश कि आपकी सारी विशेज माता फुलफिल करे, एंड यू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, ऑल योर डिजायर्स कम ट्रू, सब आपको मिले। थैंक यू सो मच एंड आई सी यू ऑल।
1: भाई उम्मीद है कि इस नवरात्रि माता रानी सबके दिल की इच्छाएं पूरी करे और सभी को मिले माता रानी का आशीर्वाद। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: डैमर गॉसिप और हाई वोल्टेज ड्रामा मनोरंजन की दुनिया से हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी ही रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो आपके चेहरे पर ले आएंगी एक प्यारी सी मुस्कान। आइए आपको दिखाते हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें एक साथ।

पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी टू की। भाई शो का रैप अप हो चुका है और ऐसे में सितारों ने शेयर किए हैं ये वीडियोस लास्ट डे शूट के, जहां सभी इमोशनल भी हो रहे हैं और शो को कह रहे हैं अलविदा। देख लीजिए सेट से ये नज़ारे।

0: the last day for Kyunki and it's bittersweet. I'm a little emotional, but it's been a great run, and thank you all for the love. You will see me, not as Damini, but you will see me.
1: भाई नवरात्रि का त्योहार है, ऐसे में आप सभी के चहेते सितारे कुछ इस तरह मना रहे हैं नवरात्रि का त्योहार, जहां पर मुनमुन दत्ता माता रानी की आस्था में डूबी है।

Trinity Taylor. Dipshikha Nagpal. और बाकी सितारे पहुंचे हैं डांडिया रास करने के लिए।

जल्द आने वाला है फर्जी सीजन 2। ऐसे में शाहिद कपूर ने शेयर किया है ये पोस्ट, ये बताते हुए कि शूटिंग का रैप अप हो चुका है और जल्द ही आएगा फर्जी का सीजन 2।

0: कुर्मित और देबीना पहुंच गए हैं उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जहां उन्होंने अटेंड की भस्म आरती।
1: मनीष, आई होप आप बुरे इन्फ्लुएंस में नहीं डाल रहे हो उन्हें।
2: लेट के नहीं होता, मेडिटेशन बैठ के होता है।
0: बिग बॉस का नया प्रोमो देख लीजिए, जहां वाइल्ड कार्ड मनीष के साथ चल रही है घर वालों की मटर गश्ती।
3: बाबा जी की बूटी
4: आगे खोल के
3: बंद करके बे।
1: गुल्लू तो ऊपर उठने लगा है।
4: मनीष जी मैं आ गया।
3: रात को डेली सारा उल्टा पुल्टा करके भाग जाए।
4: बाबा जी की बूटी
3: ज्ञानी मनीष।
0: सलमान खान ने ये इमोशनल पोस्ट शेयर किया है अपने पापा सलीम खान के साथ। देख लीजिए पापा बेटे की ये तस्वीरें।

नट 2.0 के कास्ट को ज्वाइन किया है एक्टर योगेंद्र कुमेरिया ने। अब कहानी में कई बदलाव आएंगे। जी टीवी के आने वाले शो शुभ शगुन शहनाइया की कास्ट को ज्वाइन किया है यंग एक्ट्रेस रूपाली थापा ने।

0: अप्सरा का नया प्रोमो देख लीजिए, जहां पर अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करेगी सुनहरी।
1: अपनी बहन को निरति की कैद से आजाद करवा के रहूंगी, अब यही मेरा मकसद है।
2: अप्सरा
0: धुरंधर फेम उदयवीर संधू ने ज्वाइन की है कास्ट अजय देवगन की आने वाली फिल्म चौहान की। अब इसमें वो अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे।

0: एम्बुलेंस बुलाए?
1: हाँ जनाब।
2: क्या हाँ जनाब? मर मुरा गई तो थाने को पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा।
3: नेटफ्लिक्स पर जल्द आने वाला है नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है गजब रात। देख लीजिए इसका ट्रेलर। इसमें नजर आएंगे मनोज बाजपेयी।
4: आपके है कौन भाई?
5: आपका भी परिचय है मेरे पास।
6: मैडम हमारी ड्यूटी का तो ऐसा है कि चार दोस्त बनते हैं आठ दुश्मन।
7: अरे वो मधोक कह रहा है, रशियन है। करण गिल कह रहा है कि लड़की जो है हाफ इंडियन हाफ अंग्रेजन। कौन है ये लड़की?
8: अरे वो टेढ़ा आदमी है सर, तकलीफ देगा ये और फ्री में कुछ करेगा नहीं।
5: आपको स्टेटमेंट मिलेगा, फिर अक्यूज का पता चलेगा, फिर पैसा बोलने लगेगा।
2: नहीं नहीं नहीं मैडम मैडम मैडम मैडम मैडम पैसा तो कतई नहीं बोलेगा, बिल्कुल चुप रहेगा।
8: लड़की को मारना है क्या?
3: पॉप स्टार के शूट पर खास मेहमान बनकर आए हैं रवि किशन, नेहा कक्कर, आदित्य रिखारी और कई और सितारे जो सेट के बाहर नजर आए।

बीती शाम हुआ लेखा प्रजापति का बर्थडे बैश, जिसमें नजर आए कई सितारे जैसे की कुशारदा, विशाल कोटियन, वाभीज दोरापसी, शालीन बनौत और कई और सितारे जिन्होंने इस बर्थडे पार्टी को अटेंड किया।

सीरियल डॉक्टर आरंभी में आ गया है रोमांटिक ट्विस्ट, जहां ध्रुव और आरंभी डांस करते नजर आए। भाई, इतनी परेशानियों के बीच भी इन्हें मिला एक दूसरे के करीब आने का मौका। लेकिन देखिए, इनकी जासूसी कर रहे हैं विश्वास और अवंतिका, यानी चल रहा है रिश्तों का खेल।

0: बन गई ध्रुव और आरंभी की जोड़ी।
1: मुस्कुराए तुमने नचाने क्या,
0: शुरू हुआ दोनों का नच बलिए।
1: पास आए यूं मुस्कुराए,
0: चोरी चोरी चुपके चुपके हुआ सपनों में इजहार।

कलर्स टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आज सारी टेंशन भुलाकर आ गया है खुशियों का मौसम। असल में ध्रुव और आरंभी इस ढाबे पर बैठे हैं और यहाँ पर देखिए कैसे आरंभी का मूड चीयर अप करने के लिए ध्रुव ने डांस शुरू कर दिया, आंखों पर लगाया काला चश्मा और दिखी ध्रुव की टशन, और ऐसे में शुरू हो गया इनका डांस धमाल।

ध्रुव को तो आरंभी से प्यार है, ये तो साफ जाहिर है। लेकिन आरंभी ध्रुव को अपना दोस्त मानती है और अपने दोस्त के साथ ताल से ताल मिला रही है। देखिए कैसे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं।

भाई आरंभी काफी टेंशन से गुजर रही है और उसमें ध्रुव का ऐसे डांस करना माहौल ही बदल देता है। और आज कई दिनों बाद आरंभी के चेहरे पर भी खुशी दिखी है। हालांकि आरंभी को अब तक ये नहीं पता कि वो ध्रुव से प्यार करती है या नहीं, लेकिन ध्रुव तो आरंभी से प्यार करता ही है, तभी तो आरंभी के साथ वो डट कर खड़ा है।

वहीं दूसरी तरफ ये सारे नज़ारे छुप छुप कर देख रहे हैं विश्वास और अवंतिका। असल में विश्वास और अवंतिका आरंभी और ध्रुव का पीछा कर रहे हैं ताकि आरंभी अपने लिए कोई सबूत ना जुटा पाए और खुद की बेगुनाही साबित ना कर पाए। तभी तो जासूस की तरह अवंतिका और विश्वास आरंभी और ध्रुव के पीछे पीछे है। लेकिन आरंभी को लगता है सब कुछ पता है, तभी तो उसने विश्वास की गाड़ी में कर दी है गड़बड़ ताकि विश्वास और अवंतिका ये दोनों आरंभी और ध्रुव का पीछा ना कर सके।

0: लेट्स गो।
1: एक सेकेंड रिश्वत गाड़ी ऑलरेडी निकल चुकी है, हम उनको कैचअप भी नहीं कर पाए।
2: खैर आरंभ भी तो खुद के लिए बेगुनाही का सबूत ढूंढ कर ही रहेगी क्योंकि उसके साथ ध्रुव जो है, लेकिन परेशान कोई है तो वो है विश्वास और अवंतिका। भाई आज भी ये दोनों छुप छुप कर मिल रहे हैं। विश्वास अवंतिका के घर आया हुआ है, तभी वहाँ पहुँच जाती है विश्वास की माँ डिम्पल भी, लेकिन जैसे तैसे बहाना कर अवंतिका डिम्पल को वहाँ से 9-2-11 कर देती है और फिर शुरू होता है विश्वास और अवंतिका का रोमांस।
1: मैडम व्हाट क्या करें? नो, आज डिम्पल, आई मीन यू मैड हो? और अब मुझे सॉरी क्यों कह रही है? मैं तो आपसे गुस्सा भी नहीं हूँ।
3: एक बार सब चीजें सही हो जाएंगे, अगर मेरी जेल चली जाए तो मैं भी आई विल। डॉक्टर साहब
1: थोड़ा सा काम है, वायरल हो गया है।
4: मेडिसिन ली तुमने?
1: हाँ जी मैं।
4: प्लीज टेक

0: उसकी कंट्रोल ही कर सकते
1: क्या पता मैं इतनी दोस्त थी मच
2: विश्वास और अवंतिका का तो प्लान ही है आरंभी को जेल भेजकर खुद शादी करने का, लेकिन ध्रुव ऐसा होने नहीं देगा। अब देखना होगा ध्रुव और आरंभी मिलकर कैसे आरंभी की बेगुनाही को साबित कर पाते हैं या नहीं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज अरमान और अभिरा काफी परेशान है। असल में मायरा ने ले लिया है एक ऐसा फैसला जिससे अरमान और अभिरा की टेंशन बढ़ गई है। आइए देखते हैं रिश्तों की ये उलझने।
2: अरमान अभिरा की परेशानी। मायरा को तड़पता देख तड़पते माँ बाप। मनीषा ने कृष को पकड़ा रंगे हाथ।

एक्ट्रेस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों अरमान अभीरा का सिर्फ एक ही काम है और वो है मायरा के इर्द गिर्द रहना। ऐसे में जैसे ही मायरा के कमरे से आवाज आती है तो अरमान अभीरा घबरा जाते हैं और कमरे में जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मायरा के हाथों कप टूट गया है और उसमें उसके मम्मी पापा की तस्वीर है, जिसे देखकर वो इमोशनल हो रही है और उसे इमोशनल होता देख अरमान अभीरा भी इमोशनल हो रहे हैं।

0: वो प्रोमो था जिसमें कप गिर जाता है मायरा के हाथों से, उस पे मायरा की मम्मा पापा की फोटो है, तो मायरा वही कप जोड़ने की कोशिश कर रही है, जोड़ भी देती है, बट वही है कि मतलब मायरा कहती है कि ये दरारें तो मैं कभी नहीं मिटा पाऊंगी, पर हमारे रिश्ते को खूबसूरत बनाने की कोशिश जरूर करूंगी, ये सब।
1: अब मायरा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कबीर की यादें उसे सता रही है। इसलिए देखिए कैसे वो अकेली अपने बेडरूम में सिर्फ कबीर की यादों में खोई हुई है कि तभी वहाँ पर आ जाता है अरमान। इतना ही नहीं, अरमान तो मायरा को कपड़े भी निकाल कर देता है और उसे शॉपिंग पर जाने को कहता है। ये सुनकर मायरा और भी हैरान हो जाती है।
2: फोन नहीं उठा रहे तो उसने मुझे फोन कर लिया था।
3: मेरा जाने का मन नहीं कर रहा पापा।
2: फ्ली मार्केट जाने का मन नहीं कर रहा? पर आपको तो इतनी शॉपिंग पसंद है, तो हो क्या होना?
3: मुझे एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करनी
2: है। बाद में पढ़ लेना।
3: ये बाद ही है पापा, आपने बेस्ट कॉलेज रिकमेंड किया था पर मैंने वो रिजेक्ट कर दिया। फिर सेकंड बेस्ट कॉलेज का एग्जाम मैं मिस कर आई। अब ये जो बचे हुए कॉलेजेस हैं वो उतने अच्छे तो नहीं है, पर एटलीस्ट वहाँ लेट एडमिशन अलाउड है।
0: तो वही है, मतलब मायरा कोशिश कर रही है ट्रस्ट वापस, मतलब पेरेंट्स का ट्रस्ट वापस आए। वो बहुत एफर्ट्स कर रही है, फैमिली के लिए खाना बना रही है, सबके सामने हैप्पी दिखने की कोशिश कर रही है एंड ऑल, बहुत ट्राई कर रही है मायरा, बट वही डिफिकल्ट तो है वापस ट्रस्ट करना क्योंकि बहुत बड़ी गलती हुई थी।
1: यहाँ मायरा कोशिशें कर रही है तो वहाँ अरमान और अभीरा भी अपनी बेटी का भरोसा जीतने की पूरी कोशिश में लगे हैं, लेकिन क्रिश वो तो अब भी षड्यंत्र रच रहा है कि जैसे तैसे मायरा को उकसाया जाए। इसीलिए देखिए जैसे ही मायरा को अकेले पाया, क्रिश ने फिर से कबीर के बारे में उससे पूछना शुरू कर दिया।
3: मैं कबीर को इतना मिस करती हूँ कि कभी कभी आई फील कि मुझे स्ट्रेस में फीवर ही हो जाएगा। मैं फीवर झेल लूंगी चाचू, माय पेरेंट्स को सेकंड टाइम होल्ड करना नहीं झेल पाऊंगी। फीलिंग स्टोरी है, माय पेरेंट्स है, मेरा भला चाहते हैं, इसलिए मैं वही करूंगी जो वो कहे।
2: देखो मैं दो दिन बिना कबीर से मिला कही है, आप अपनी पूरी लाइफ उसके बिना कैसे बिताओगे? आपके और कबीर की कोर्ट में

0: पेरेंट्स की खुशी ना बच्चों की खुशी में ही होती है। भैया भाभी बस कुछ दिन आपसे नाराज रहेंगे, मैं आपको कबीर के साथ देखें वो मान जाएंगे। आप बस बोलो मैं कब कब की डेट निकलूँ, मैं कबीर से बात करूँ। देखो मैं सारे इंतजाम करने के लिए रेडी हूँ, आप बस बोलो मैं कोर्ट की डेट निकलवा दूँ।
1: बिल्कुल नहीं चाचू, थैंक यू सो मच। कबीर के मैटर में सिर्फ आपने मुझे सपोर्ट एडवाइस और हेल्प दी। उस टाइम बिल्कुल स्पॉइल ब्रैट की तरह बिहेव कर रही थी चाचू, नेवर अगेन।
2: अभी तो नहीं फंसी है मायरा, जैसे पिछली बार बातों में आ गई थी, बट इस बार तो अभी एक सीन हुआ उसमें तो मायरा नहीं आई है कृष चाचू की बातों में, अब आ गई है, देखते हैं।
3: वैसे कोशिश तो कृष ने खूब की थी लेकिन वो नाकाम रहा। वैसे उसकी सारी बातें मनीषा ने सुन ली है और अब मनीषा को आ रहा है कृष पर गुस्सा। अब मनीषा किसको बताएगी ये तो आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो अरमान और अभीरा दोनों ही परेशान हो रहे हैं क्योंकि जिस गरबा नाइट में वो लोग जा रहे हैं वहाँ पर दमानीज भी आने वाले हैं। ऐसे में अभीरा नहीं चाहती कि वो अपनी मायरा को लेकर वहाँ जाए, इसीलिए वो मना करने की कोशिश कर रही है लेकिन अरमान उसे मना रहा है क्योंकि उसे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास हो गया है।
4: जब से वो लौट के आए हमसे भरोसे की बात की, एक अभी तो शुरुआत करनी होगी। पर मायरा और कबीर एक ही शहर में रहते हैं, आज नहीं तो कल मिल ही देंगे, इसलिए देखते हैं मायरा कबीर से मिलके।
1: क्या देखते हैं अरमान, तुम खुद भी श्योर नहीं हो ना कि मंकी कबीर को मिलने के बाद किस तरह से रिएक्ट करेगी, फिर भी तुम चाहते हो हमसे बैठ में जाए।
4: अभीरा ने देखो एक बार एक फन इवेंट में बेटी के साथ जाने के नाम से हम सफेद पड़ गए, हम उसे सारी लाइफ तो बंद करके नहीं रख सकते ना इसे डरते रह सकते, इसलिए अपनी लाइफ में नॉर्मल सी लाने के लिए हमें करना ही होगा, हमें वहां जाना तो पड़ेगा,
5: जाना तो
4: पड़ेगा, इसलिए अपनी लाइफ में नॉर्मल सी लाने के लिए हमें जाना तो पड़ेगा भरोसे की फिनिश लाइन की तरफ, पहला कदम हमें लेना ही होगा।
2: डांडिया नाइट है तो मायरा सोचती है कि मतलब मायरा सोचती नहीं है, कृष चाचू ही मायरा को बोलते हैं कि इस डांडिया नाइट में जाओ, मायरा को तो पता भी नहीं है वहाँ दमानीज भी आने वाले हैं, तो वो बोलते हैं कि इस डांडिया नाइट में जाओ एंड सब बहुत सबको अच्छा लगेगा फैमिली वगैरह के लिए, तो मायरा मान जाती है एंड फैमिली को थोड़ा हाइप अप करने के लिए मायरा बोलती है कि चलो डांडिया नाइट में चलते हैं एंड ऑल। बट कृष चाचू पापा को बोलते हैं कि मायरा वहाँ इसलिए जा रही है क्योंकि कबीर वहाँ आ रहा है, तो पापा को थोड़ा सा फिर से डाउट हो जाता है, बट मायरा को जेन्युइनली नहीं पता है कि दमानीज वहाँ आने वाले हैं, वो बस एफर्ट करने की कोशिश कर रही है फैमिली के लिए।
3: अरमान ने कोशिश तो की लेकिन अभीरा अब भी असमंजस में है, वो चाहती ही नहीं है कि उसकी बेटी उस डांडिया नाइट में जाए। इसी बीच वहाँ पर आ जाती है मायरा भी जो उनकी बातें सुन लेती है, इसीलिए वो भी हिचकिचाने लगती है। ऐसे में अभीरा ये सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी बेटी मायरा के बाल संवारने लगती है। अब देखना होगा कि जब डांडिया नाइट में पुदार्स और दमानीस आमने सामने होंगे तो कहानी में और रिश्तों में क्या ट्विस्ट आएंगे। मुंबई से कामेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: सीरियल महादेव एंड सन्स में महादेव और उनका पूरा परिवार मुश्किलों का सामना करने के लिए एकजुट हो गया है, सभी सपना के सामने डटकर खड़े हैं। आइए देखते हैं ये पूरा ड्रामा।
1: चलो धीरज, धीरज प्लीज, धीरज।
7: मोंटी के मर्डर पर फिर शुरू हुआ बवाल,
1: सच छुपाने के लिए तुम कितने झूठ बोलोगे धीरज।
7: धीरज और रजी ने अपने सर लिया इल्जाम।
8: चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, इसलिए खेल को खत्म करने आए हैं हम।
7: रक्षक बन पहुंचे महादेव,
8: ऐसे हमारे साथ धक्का मुक्की में उसका पांव कहां फिसला कहां नहीं फिसला हमको नहीं पता, लेकिन सीधा वो जमीन पर अपने सर के बल गिरा।
7: कलर्स टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में आजकल हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है जहां पर मोंटी का मर्डर हो चुका है और महादेव और उनका पूरा परिवार घेरे में है। ऐसे में सपना ने सभी को अपने ऑफिस में बुलाया है, लेकिन यहां पर देखिए कैसे रज्जी और धीरज आपस में ही एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां धीरज मोंटी के मर्डर का इल्जाम अपने सर ले रहा है, तो वहीं रज्जी उसे ऐसा करने से मना कर रही है और स्वीकार रही है कि उसने ही मोंटी का मर्डर किया है। ऐसे में यहां तमाशा शुरू हो चुका है।
1: तो क्या कर रहे हो?
5: अरे मैडम जी, रज्जी और धीरज दोनों मिल के कुछ नाटक कर रहे हैं और कुछ नहीं है। दोनों की मिली भगत है ये, तो क्या करूँ, दोनों को जेल में डाल दूँ क्या? नहीं नहीं, सिर्फ धीरज को डालो, इसकी टांगे तोड़ो, सब सच बोलेगा।
1: नहीं, धीरज को कोई हाथ नहीं लगाएगा, धीरज ने कुछ नहीं किया। हम कह रहे हैं आपसे, धीरज कितने झूठ बोलोगे, सब कुछ सच बता दिया है। हमारा एक सच छुपाने के लिए तुम कितने झूठ बोलोगे धीरज, प्लीज।
7: भाई इससे पहले कि तमाशा और आगे बढ़ता, यहाँ महादेव पहुँच गए और देखिए कैसे उन्होंने अपने सर पर सारा इल्जाम ले लिया। सपना को वो बता रहे हैं कि उन्होंने ही मोंटी का मर्डर किया है।
1: जैसे धीरज हमारी गलतियों का इल्जाम अपने सर पे लेने की कोशिश कर रहा है, हम जानते हैं आप भी वही कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ही नहीं करने देंगे।
7: भाई सपना काफी गुस्से में आ गई है क्योंकि परिवार वाले एक एक कर सारा इल्जाम अपने अपने सर ले रहे हैं। अब सपना को समझ ही नहीं आ रहा कि असल में परिवार में से मोंटी का मर्डर किसने किया है। ऐसे में महादेव सपना का सामना तो करते ही हैं, साथ ही सभी के सामने स्वीकारते हैं कि उन्होंने ही मोंटी को मारा है। हालांकि मारने के इरादे से नहीं बल्कि गलती से ही पैर फिसल कर वो खुद ही मर गया। ऐसे में आज यहाँ पर परिवार की एकता देखने को मिली।
1: कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए हमारी बेटी है ना बाप की, तो बाप जेल जाएगा, हम डोली में बैठ के आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। बात करो,
9: कि क्या करना चल रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग? पहले तो सब लोग कहते थे कि इस केस के साथ तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, और अभी एक क्राइम में तीन लोग आगे इल्जाम लेने रेडी ही लेने अपने ऊपर, और तुम आते, तुम तो उस रात रिजॉर्ट में थे ही नहीं।
10: क्यों है बिल्ली का खेल चल रहा है, इसलिए खेल को खत्म करने आए हैं हम। और ये भी सच है कि आपके बेटे ने रज्जी के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसको अगवा करने की कोशिश की थी, वो भी गलत मंशा से। ये भी सच है, जब फोन पर हमें वाली बात पता चली तभी हमने अपने बेटे और भुवों से कहा कि बिना लड़े बिना किसी से झगड़ा किए सीधा घर वापस आओ, कोई तमाशा नहीं चाहिए वहां पर। और इन्होंने हमारी बात को माना, ये सीधा घर वापस आए। अपनी बेटी जैसी बहू के साथ में जिसने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी ना, हम उसको माफ नहीं कर पाए। पूरी रात हमारे दिमाग में ये बात चलती रही, हमको पागल करती रही, हमें नींद नहीं आई। जब हम सो नहीं पाए ना, तो हमने गाड़ी की चाबी ली और सीधा पहुंचे रिजॉर्ट। वहां हमने मोंटी को दर्द पहुंचा और उससे सवाल जवाब किए, बताए आपके बेटे को बिल्कुल तमीज नहीं थी औरतों के साथ पेश आने की और ना ही बड़ों के साथ पेश आने की। संस्कार नहीं दिए ठीक से, जैसे हमने अपने बच्चों को दिए। जानते उसने क्या किया?
8: हमारे सवाल जवाब सुन के हमसे झगड़ा करने लगा, हमसे हाथापाई करने लगा। हमने उसको रोकने की कोशिश की कि मत करो हमारे साथ में लड़ाई झगड़ा। हाथापाई, उसको रोका, धकेला हमने, लेकिन वो नहीं माना। ऐसे हमारे साथ धक्का मुक्की में उसका पांव कहां फिसला कहां नहीं फिसला हमको नहीं पता, लेकिन सीधा वो जमीन पर अपने सर के बल गिरा और मर गया।
7: भाई ये सब सुनने के बाद आज सपना अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही है। पहले तो सपना ने महादेव के मुंह पर पानी फेंका और फिर उनका कॉलर पकड़ लिया, लेकिन महादेव पीछे नहीं हटेंगे। अपने परिवार के लिए वो डट कर सपना का सामना करेंगे।
9: तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी हमारे पति की इंसल्ट करने की, हमारे परिवार की इंसल्ट करने की? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी?
1: पापा, अब आप कुछ नहीं बोले, अब जो बोले हम कोर्ट में बोलेंगे। एक अच्छा सा लॉयर हायर करेंगे और ये केस कोर्ट में लड़ेंगे।
11: इस वक्त तो मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि एक तो मुझे यकीन ही नहीं है कि मेरा बेटा मोंटी एक मोलेस्टर है, ऐसा काम, गंदा काम कर सकता है। उस बात पे तो यकीन ही नहीं है। तो इस वक्त वो ये भी बोल रहे हैं कि मेरे बेटे ने ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती की रज्जी के साथ, लेकिन मैं इस पे विश्वास नहीं कर रही हूँ और किसी पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि हर कोई आके बोल रहा है, फैमिली का मेम्बर आके बोल रहा है इसने नहीं मैंने किया है। तो वो इस बात को लेके भी बहुत इरिटेटेड है। पहले उन्होंने कहा था नहीं किया है, और आपको गलत फहमी हो गई है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस मर्डर के साथ, लेकिन अब आके एक एक करके सब बोल रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये सपना राजवंश बहुत फ्रस्ट्रेट तो हो गई है। तो हाँ, सुबह से बस यही हम हैवी सीन्स करते जा रहे हैं बस।
7: तो भाई अब देखना होगा कि महादेव और उसके परिवार के साथ आखिर क्या होगा और कैसे मोंटी के मर्डर की ये गुत्थी सुलझेगी। मुंबई से कामेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: नवरात्रि के मौके पर जहां सभी माता रानी की भक्ति में लीन है, तो वहीं तपस्या रच रही है षड्यंत्र। लेकिन जगतधात्री तपस्या के इरादों को पूरा नहीं होने देगी, तभी तो जगतधात्री ने बदल लिया है अपना भेष। आइए देखते हैं क्या चल रहा है सीरियल में।

0: जगधात्री ने पलटा तपस्या का खेल। हुआ जगधात्री और शिवाय का मेल। क्या अवरुद्ध जाएगा जेल? टीवी के सीरियल जगधात्री में तपस्या ने पूरी तैयारी कर ली है घर से भाग निकलने की, वो भी रुद्र के साथ। तभी तो देखिए कैसे उसने रूप बदल लिया है और रुद्र के साथ गरबा खेलने की तैयारी कर ली है। खुशी खुशी अपना साज श्रृंगार किया है, रुपयों से भरा बैग भी तैयार है। और देखिए कैसे उसने ओढ़ लिया है घूंघट और बैग को रुद्र तक पहुँचाने की तैयारी कर ली है। दूसरी ओर तपस्या को कमरे में ना पाकर जगधात्री उर्फ लिली पहुंच गई है छानबीन करने, और तभी उसे पता चलता है कि रुपयों से भरा बैग गायब है और तपस्या भी घर में है नहीं। बस फिर क्या, इससे पहले कि तपस्या घूंघट ओढ़े घर से बाहर निकल पाती, जगधात्री पहुंच जाती है उसे रोकने।
1: वो मैं तपस्या के रूम में आई थी ये पता करने के लिए कि तपस्या रूम में है कि नहीं, और फिर मुझे दिखाई देता है कि वो नहीं है। मैं उनके अलमिराज चेक करती हूँ तो वहाँ पर नजर आता है सारा कैश और ज्वेलरी तो यहाँ से गायब है, यानी कि तपस्या रुद्र के पास ही गई होगी इतना सारा पैसा लेके, क्योंकि ऑफकोर्स रुद्र को पैसे की सख्त ज़रूरत थी। तो हमें ये हिंट मिल जाता है और फिर तपस्या हम ठिकाने लगाते हैं एकदम और बेहोश कर देते हैं और उनको छुपा देते हैं एक स्टोर रूम में, और वहाँ से मैं तपस्या का जो भी कॉस्ट्यूम अटायर है वेशभूषा वो ले लेती हूँ और खुद पहन लेती हूँ। तपस्या बन के मैं रुद्र से मिलने जाती हूँ।
0: भाई शिवाय तो हमेशा जगधात्री के साथ ही रहेगा, और इस खेल में भी शिवाय देखिए कैसे जगधात्री के साथ बेहोश तपस्या को ले आता है, और अगले ही पल जगधात्री ले लेती है तपस्या का रूप, और देखिए वो तैयारी कर लेती है रुद्र से मिलने की। ऐसे में उसके जाने से पहले शिवाय उस पर अपना प्यार जता रहा है और पूरा भरोसा दिखा रहा है।
1: अरे घर पे कैसे रहेंगे जब बाहर इतना सब कुछ हो रहा है, रुद्र को पकड़ना है एंड अलग एक मिशन बाहर चल रहा है, तो एक इंसान घर पे रहेगा यहाँ पर पहरेदारी करने के लिए, थोड़ा बताने के लिए। यहाँ का मिशन अलग है, अगर शिवाय साथ नहीं हो जगधात्री के तो जो बाहर वाला मिशन है वो भी सक्सेसफुल ना हो पाए, राइट। तो मैं बाहर हूँ चीज़ें संभाल रही हूँ और ये घर के अंदर थोड़ा चीज़ें संभाल रहे हैं।
2: वही रोमांटिक सीन है क्योंकि हम दोनों उसमें साथ हैं, तपस्या कुछ छुपाया वगैरह, इन्होंने कपड़े पहन लिए और मैंने पहली बार अपने हाथों से सिंदूर लगाया, तो प्यार हमने दिखाया है। हाँ। कि ये हमेशा अपने हाथ से सिंदूर लगाती थी, इस बार हमने लगाया।
1: वो तो जैसे जैसे ऑडियंस को पता चलता है उससे एक दिन पहले ही हमें पता चलता है ट्विस्ट एंड टर्न।
2: बहुत कुछ है देखने की।
0: खैर यहाँ से जगधात्री निकल चुकी है और वहाँ रुद्र अपनी तपस्या का इंतजार कर रहा है। अब उसे क्या पता कि जल्द ही जगधात्री से उसका सामना होगा और जल्द ही सभी घरवालों के सामने रुद्र के जिंदा होने का खुलासा होगा। फिलहाल तो घरवालों के सामने इस नवरात्रि के मौके पर ये खुलासा हो गया है कि लिली ही जगधात्री है। ऐसे में देखिए कैसे सभी माता रानी की आरती तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लिली पर गुस्सा भी आ रहा है, और सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है जाह्नवी को, क्योंकि वो भी उसे पहचान नहीं पाई।
3: बहुत अच्छी है, वो कभी हम सबके साथ कुछ गलत होने ही नहीं दे सकते, वरना तो बहुत दूर की बात है।
2: सच सबके सामने लाने के लिए जगधात्री अपनी पूरी कोशिश कर रही है, सो जिसका था इंतज़ार आखिर वो पल आ ही गया है. आखिर हमारी ऑडियंस को पता चल जाएगा कि रुद्र अभी भी ज़िंदा है. उन सबको तो पता है लेकिन देशमुख हाउस के जो लोग हैं उनके सामने बात खुलनी है. आरती जी को भी पता है, महेश बाबा को भी पता है, तपस्या को भी पता है, लेकिन बाकी सब लोगों को उसके बारे में नहीं पता है. तो अभी जो मिशन है मेन वो यही है कि ये जाके पहले रुद्र को घर वालों के सामने लेके आए और हम सबको हम दोनों मिलके दिखा पाएं कि ये अभी तक जो भी कहानी थी सब झूठी थी और ये इंसान जिंदा है.
0: अब जानवी को क्या पता कि शिवाय भी जगधात्री के साथ मिला हुआ है. फिलहाल तो शिवाय माता रानी से सिर्फ यही आशीर्वाद चाहता है कि जगधात्री अपने मकसद में कामयाब हो. वहीं दूसरी ओर सोना पहुंच जाती है तपस्या को ढूंढने के लिए एक कमरे में, लेकिन उसे तपस्या नजर नहीं आती. ऐसे में सोना जैसे ही निकलने वाली होती है कि तभी उसे खांसने की आवाज़ सुनाई दे जाती है और वो पहुंच जाती है बेड के पीछे देखने के लिए और तभी उसके सामने होती है तपस्या, जिसे देखकर सोना परेशान हो जाती है और सभी घर वालों को बुला लेती है. फिलहाल तो तपस्या को होश तो आ गया है, लेकिन अब वो डरी हुई है क्योंकि रुपयों से भरा बैग गायब है और उसका रूप भी बदल चुका है. और अब तो आरती और महेश उन दोनों को भी डरना होगा क्योंकि तपस्या रुद्र से मिलने नहीं गई है बल्कि जगधात्री गई है. तो देखना होगा कि जगधात्री कामयाब हो पाएगी. मुंबई से कामेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
4: टेलीविजन की दुनिया की छटपटी खबरों और सीरियल्स के ड्रामे के साथ सास बहू और बेटियां में आज बस इतना ही. कल फिर होगी आपसे मुलाकात. तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और दीजिए हमको इजाजत. नमस्कार.

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
7: दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पहाड़ों पर जारी मौसम की मेहरबानी, केदारनाथ धाम में शुरू हुई बर्फबारी, हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक बिछी बर्फ की सफेद चादर। लद्दाख को मिलेगी विकास की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया करीब 3,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, ले एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी दिया तोहफा। लाखों फोन यूजर्स के लिए बदलने जा रहे नियम, अब अनजान फोन कॉल पर भी दिखेगा असली नाम, 1 नवंबर से लागू होगा ये फैसला। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन, विधि विधान से हो रही मां स्कंद माता की पूजा आराधना, देशभर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
7: दिल्ली NCR में भी छाए घने बादल, कई इलाकों में बारिश हुई, बरसात के साथ तेज आंधी ने किया लोगों को हैरान। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदला मौसम, IMD ने दिल्ली NCR में कल भी बारिश की जताई संभावना। तेज हवा की वजह से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों की धीमे हुई रफ्तार, गाड़ियों के रुकने से लगी लंबी कतार। हरियाणा के करनाल में भी मौसम ने ली करवट, काले बादलों के साथ छाया अंधेरा, जमकर हुई बारिश। मौसम विज्ञान के मुताबिक कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने का है अनुमान। जम्मू कश्मीर की वादियां बर्फबारी से हुई गुलजार, गुलमर्ग में हिमपात से बड़ी पहाड़ों की खूबसूरती। जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी में इस मौसम की पहली बर्फबारी, घर रास्ते पहाड़ सब पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के कारण मुगल रोड बंद, सोनमर्ग लद्दाख हाईवे और बांदीपुरा गुरेज रोड पर भी आने जाने वालों की मुश्किलें बढ़ी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने मुगल रोड और पीर की गली इलाके में बर्फ हटाने का काम शुरू किया, बर्फ हटाने वाली मशीनें काम पे लगाई गई। हिमाचल के लाहौल स्पीति में शुरू हुआ बर्फबारी का दौर, केलांग समेत कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके। जिला मुख्यालय केलांग सहित दारचा, जिस्पा और सिसू में भी गिर रही है बर्फ की फाहे, देखो खूबसूरत नजारा। केलांग में सीजन की ये पहली बर्फबारी, ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ दिन पहले ही हो चुका है हिमपात। बर्फबारी से ठंड की चपेट में घाटी, दारचा से आगे वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल लगी रोक। लद्दाख को मिले विकास की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ले एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी दिया तोहफा, 640 करोड़ रुपए से बने पैसेंजर टर्मिनल भवन यात्रियों को किया समर्पित। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में मां स्कंद माता की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, मां कालका के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। मैयर में शारदीय नवरात्र की पंचमी को स्कंद माता की पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। उज्जैन के भैरवगढ़ सेंट्रल जेल में हुआ गरबा का आयोजन, कैदियों ने गरबा खेलते हुए की मां की आराधना। पुरुष कैदियों ने महिलाओं की वेशभूषा धारण कर किया गरबा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुर्गा प्रतिमा स्थापित कर भजन और गरबा के जरिए कैदियों ने देवी मां की आराधना की, जेल के महिला वार्ड में भी पूजा और आराधना की हुई व्यवस्था। हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालु दर्शन कर सुख समृद्धि का मांग रहे हैं आशीर्वाद। खगड़िया में 200 साल पुराने दुर्गा मंदिर में हजारों घी के दीयों से हो रही है महाआरती, दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंचे, मां विंध्यवासिनी मंदिर का दर्शन पूजन कर लिया, माता का आशीर्वाद। वाराणसी में सफाई कर्मियों के सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सफाई कर्मियों को किया गया इस दौरान सम्मानित। गुजरात में मोरबी के न्यू पैलेस में नवरात्र उत्सव का आयोजन, बेटियों ने किया तलवार रास। शारदीय नवरात्र का आज पांचवा दिन, मां स्कंद माता की हो रही है पूजा आराधना। देशभर के मंदिरों में मां स्कंद माता के दर्शन के लिए उमड़ रहे भक्त, मां की उपासना से संतान, सुख, बुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होने की है मान्यता। मां स्कंद माता को नवरात्र में फल और नारियल अर्पित करने की है परंपरा, श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्त कर रहे हैं माता रानी की आराधना। मां स्कंद माता की पूजा में पीले सफेद फूल अर्पित करने की है परंपरा, केले, शहद और केसर की खीर का लगाया जाता है भोग। भक्त करते हैं ओम देवी स्कंद माताए नमः का जाप, देवी के स्वरूप में झलकती है वात्सल्य और शक्ति। गुजरात के अमरेली जिले के सावर कुंडला में देसी गरबा की धूम, पारंपरिक वेशभूषा और देशी सुरों के साथ मां जगदम्बा की आराधना। बाल खोड़िया रास मंडली ने पारंपरिक विरासत को जीवंत कर रखा है, ये परंपरा पिछले 78 सालों से जारी है। काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर सोना चोरी प्रकरण पर बोले मंदिर के सीईओ, खबर को बताया भ्रामक, कहा सोना है सुरक्षित। मंदिर प्रशासन ने खबर को बताया निराधार। अधिकारियों के मुताबिक शिखर स्वर्ण को मंदिर के लॉकर में रखा गया है सुरक्षित। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर हाई पावर कमेटी की हुई बैठक, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने पर हुई चर्चा। साफ सफाई, बिजली और मंदिर की व्यवस्थाओं पर की गई चर्चा, भोग प्रसाद की शुद्धता पर भी किया गया विचार। प्रयागराज में अलग अलग थीम के सजे दुर्गा पंडाल, कहीं नागलोक, कहीं मिक्की माउस, तो कहीं बना केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। बाईकबाग इलाके में दुर्गा पूजा के 100 वर्ष पूरा होने पर तैयार किया गया पद्मनाभ स्वामी मंदिर, भव्य द्वार, रत्न आभूषणों की सजावट बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। प्रयागराज में पश्चिम बंगाल के कलाकारों ने अपनी कारीगरी से अनोखे दुर्गा पूजा पंडाल की तैयार, भव्य सजावट देखने के लिए उमड़ रहे लोग। प्रयागराज के माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालु कर रहे गुफा वाली माता के दर्शन, ठंडे पानी से गुजरने के बाद भक्त करते हैं मां के दर्शन। मोतिहारी में मां दुर्गा के दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब, पूजा पाठ और जयकारों से गूंज रहा मंदिर परिसर, मां दुर्गा की आराधना के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। भक्त मुकेश दास की अनोखी साधना बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, सीने पे कलश रख मुकेश दास कर रहे कठिन साधना, भक्ति और आस्था का अनूठा नजारा। श्रद्धालु पूजा अर्चना कर मांग रहे सुख समृद्धि का आशीर्वाद, कोई फूल चढ़ा रहा तो कोई कर रहा पूजा पाठ, मां दुर्गा की श्रद्धा भक्ति में डूबे श्रद्धालु। मोतिहारी में केसरिया के फुलतकिया में मां दुर्गा का भव्य दरबार, दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही पहुंच रहे श्रद्धालु, मां के भक्तों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। मां दुर्गा के दरबार में श्रद्धा और आस्था का संगम, धूप दीप और मंत्रोच्चार से भक्तिमय हुआ पूरा माहौल, नवरात्र के रंग में रंगा पूरा पूजा स्थल। नवरात्र के फलाहार में चाट से कबाब तक का स्वाद, साबुदाना वड़ा, शकरकंदी चाट और राजगिरी कोफ्ते बने खास आकर्षण का केंद्र, पारंपरिक व्रत की थाली को मिला नया अंदाज। श्रीखंड और साबुदाना खीर से बड़ा फलाहार का जायका, कुट्टू की पूड़ी के साथ काली मिर्च पनीर का जायका, आलू शकरकंदी कटलेट और दही वड़ा भी मेन्यू में शामिल। फलाहारी व्यंजनों में दिख रहा परंपरा और प्रयोग का मेल, नवरात्र में सात्विक खाने की बड़ी रंग बिरंगी रेंज, परिवार और अकेले खाने वालों के लिए अलग अलग थालियां। व्रत के भोजन को स्वादिष्ट बनाने की खास पहल, मंदिर की थीम पर आधारित रेस्टोरेंट में खास फलाहार, कांसे की थाली और पत्तल में परोसा जा रहा है ये पकवान। करीब 95% भोजन बिना लहसुन प्याज के तैयार, सिर्फ नवरात्र नहीं साल भर मिलता है खास फलाहार, एकादशी, सावन और दूसरे व्रतों के लिए भी विशेष थाली उपलब्ध।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो यह है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाइयों और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें दो।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पहाड़ों पर जारी मौसम की मेहरबानी, केदारनाथ धाम में शुरू हुई बर्फबारी, हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक बिछी बर्फ की सफेद चादर। लद्दाख को मिलेगी विकास की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया करीब 3,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लेह एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी दिया तोहफा। लाखों फोन यूजर्स के लिए बदलने जा रहे नियम, अब अनजान फोन कॉल पर भी दिखेगा असली नाम, 1 नवंबर से लागू होगा ये फैसला। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन, विधि विधान से हो रही मां स्कंद माता की आराधना, देश भर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
7: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार, और मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। महिषासुर का वध करने वाली माँ कात्यायनी ही हैं। नवरात्र के 6वें दिन माँ कात्यायनी की आराधना का विधान है। कहते हैं माँ कात्यायनी की कृपा से विवाह में आ रही बड़ी से बड़ी बाधा भी बड़ी ही आसानी से दूर हो जाती है। किसी कारणवश आपके विवाह में अड़चने आ रही हों तो माँ कात्यायनी की विशेष पूजा उपासना करने से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मन चाहे विवाह के लिए कैसे करें माँ कात्यायनी की विशेष उपासना, और कौन से हैं वो अचूक महाप्रयोग जो दिलाएंगे आपको माँ का आशीर्वाद।

0: दूर करेंगी विवाह में आने वाले सारे व्यवधान। अगर आपके भी सफल नहीं हो रहे विवाह के प्रयास, लाख ढूंढने के बाद भी पूरी नहीं हो रही सुयोग्य जीवन साथी की तलाश, ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि विवाह से जुड़ी बाधा मुख्यतः बृहस्पति और शुक्र के कारण होती है। माना जाता है कि नवरात्र में विवाह संबंधी हर अड़चन का अमोघ अस्त्र है माँ कात्यायनी की आराधना।
1: बृहस्पति शुक्र विवाह कारक ग्रह माने जाते हैं और जिनका कात्यायनी जी का संबंध बृहस्पति की पीड़ा को निवारण के लिए बहुत ही अचूक इनकी आराधना रहती है। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति कहीं से कमजोर हो तो निश्चित रूप से कात्यायनी जी की आराधना करने से बृहस्पति बलवान होता है और शीघ्र विवाह संपन्न होता है।
0: हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, मनपसंद जीवन साथी का साथ हो। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जब कुंडली के ग्रहों में दोष होता है तो शादी के शुभ योग ही नहीं बनते, साथ ही शादी तय होकर बार बार रिश्ता टूट जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि किन वजहों से शादी विवाह में बाधा आती है। कुंडली के पांच तत्वों में अग्नि या वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होने पर, चंद्रमा शुक्र या बृहस्पति की स्थिति कमजोर होने पर, मंगल दोष या ग्रहण योग होने पर, अष्टम या द्वितीय भाव में पाप ग्रह होने पर, सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति पाप क्रांत होने पर। माना जाता है कि कुंडली में ये वो दशाएं हैं जो विवाह नहीं होने देते। अगर इन वजहों से आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं तो फिर रिश्ते बनते टूटते जाते हैं, तो आपको नवरात्र में माँ कात्यायनी देवी का ध्यान करने से आपको सुयोग जीवन साथी का वरदान मिल सकता है, क्योंकि नवरात्र का समय हर दृष्टि से पवित्र है। देवी की उपासना से हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में माँ कात्यायनी की उपासना की जा सकती है, साथ ही मन चाहे विवाह के लिए माँ गौरी की उपासना की जा सकती है। नवरात्रि में अगर माँ दुर्गा की उपासना विधि विधान के साथ की जाए, इससे विवाह की बाधा का अंत होता है, साथ ही वैवाहिक जीवन की बाधा भी दूर हो जाती है। नवरात्र में माँ कात्यायनी की उपासना को अमोघ माना गया है, साथ ही माँ के एक महामंत्र का नियमित 31 या 41 बार जाप करने से विवाह के शीघ्र योग बन जाते हैं। आप भी सुनिए माता रानी का वो दिव्य महामंत्र।
1: हाँ, माँ कात्यायनी से शीघ्र विवाह के उपाय में सबसे बेहतर षष्ठी वाले दिन या किसी भी शुक्रवार वाले दिन जो कुमारी कन्या है इनके लिए कलश का स्थापन करते हुए और घी का दीपक जला के इनका एक बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इसका जप लगभग 31 दिन या 41 दिन तक किया जाता है।
0: माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में शक्ति की आराधना जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर सकती है। माँ दुर्गा की उपासना से साधक को संसार का सारा वैभव मिल सकता है और साथ ही मिल सकता है शीघ्र विवाह का वरदान। ये आदिशक्ति ही है जो असंभव को भी संभव बना दें। कष्ट क्लेश दुख विपदा भय बाधा सभी कुछ माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से दूर हो जाते हैं। तो आइए आपको परम कल्याणकारी और अचूक उपाय बताते हैं जिससे आपको मिलेगा सुयोग्य जीवन साथी का वरदान। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि हर उम्र के साधक के लिए एक अलग महा उपाय है, तो गौर से देखिए ये महा उपाय। अगर आपकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच हो तो किसी उपाय से विवाह की बाधा का अंत हो सकता है। देखिए, नवरात्रि में किसी भी दिन लाल वस्त्र धारण करें, देवी को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करें, ओम दुम दुर्गाय नमः का यथाशक्ति जप करें, पूजा के बाद लौंग को अपने पास रख लें, इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहें।

0: ज्योतिषी मानते हैं कि ये प्रयोग अचूक हैं। ये आपकी विवाह संबंधी हर परेशानी का रामबाण उपाय है। इन उपायों को अपनाइए और देवी को मनाइए। आपकी हर बाधा, हर विपदा देवी कृपा से दूर हो जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं वो ज्योतिषीय महाप्रयोग। तब क्या करें जब आपकी उम्र 25 से 30 साल के बीच हो। नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके पूजा करें। देवी को 3 लाल फूल अर्पित करें। कात्यायनी मंत्र का यथाशक्ति जप करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन करें। माँ तो ममतामयी है, वो भक्तों की तकलीफों को क्षण में दूर कर देती हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई है और विवाह नहीं हो पाया है, तब कौन सा ज्योतिषीय उपाय करें, चलिए जानते हैं। नवरात्रि की अंतिम रात्रि को देवी के समक्ष बैठें। एक लाल रंग की चुनरी ले लें, उसमें हल्दी की 2 गांठ और चांदी का 1 सिक्का रखें। इसको देवी को समर्पित कर दें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। पाठ के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेटकर अपने शयन कक्ष में रख लें। आगे हम आपको बताएंगे माँ की कृपा से बृहस्पति की शुभता पाने के महा उपाय। साथ ही जानेंगे धर्म ग्रंथों में माता कात्यायनी की व्याख्या कैसे की गई है। ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
1: देवी माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है, लेकिन अगर आपके विवाह या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या है तो इस नवरात्र में माँ कात्यायनी की उपासना से विशेष लाभ आपको मिल सकता है। और आदि शक्ति जगदम्बा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा करने से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। नवरात्र में शीघ्र विवाह से जुड़े अछूत प्रयोग और कौन से हैं, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं।

0: नवरात्र में मिलेगा मनवांछित वर का वरदान। माँ कात्यायनी की कृपा से होगा आपका कल्याण। नवरात्र में देवी की उपासना भक्त अपार श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। देवी के दरबार में भक्त कतारबद्ध हैं। माना जाता है कि आदिशक्ति के ये वो पावन दिन हैं जब माँ अम्बे अपनी करुणा का सागर भक्तों पर लौटा देती हैं। नवरात्र में आदिशक्ति का नाम ही सारे बिगड़े काम बना देता है, आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। आज हम अपनी खास पेशकश में माँ कात्यायनी की महिमा आपको बता रहे हैं। चलिए आपको पहले बताते हैं कि पौराणिक ग्रंथों में माँ कात्यायनी से कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी है।
1: कात्यायनी जी का जो उद्गम या उद्भव हुआ है उसके पीछे कात्यायन ऋषि जी की तपस्या है। ये असुरों के संहार के लिए इनके भगवान कात्यायन ने इनका माँ से वरदान मांगा था। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद माँ दुर्गा से जो वरदान मांगा उसमें कात्यायनी स्वरूप का जन्म हुआ।
0: कथा मिलती है कि कत नाम के एक महर्षि हुआ करते थे, उनके पुत्र का नाम कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि की कीर्ति तप के कारण चारों तरफ फैल गई। कथा कहती है कि ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें, इसीलिए उन्होंने कई साल तक भगवती की कठोर तपस्या की थी। कथा कहती है कि ऋषि कात्यायन की एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाएं। जबकि दूसरी कथा जुड़ी है महिषासुर के वध से। कथा है कि शक्तियों के मद में चूर होकर महिषासुर ने तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया। कथा है कि इंद्रलोक के देवताओं के सिंहासन पर महिषासुर ने अधिपत्य स्थापित कर लिया। कथा है कि तब देवताओं के अनुरोध पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने तेज से एक तेजवान देवी को उत्पन्न किया। कथा है कि देवी कात्यायनी का स्वरूप अद्भुत था। उनकी 3 आंखें और 18 भुजाएं थीं और वो सूर्य की तरह चमक रही थी। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र से सुशोभित किया। कहते हैं कि तब महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की, इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना गया। कथा कहती है कि दशमी तिथि को देवी ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना गया। देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता ये भी है, ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यानी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी, इसलिए आज भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में ये उल्लेख भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के क्रोध से हुई थी। भागवत पुराण में वर्णन है कि गोकुल की युवा और विवाह योग्य कन्याओं ने मार्गशीर्ष महीने में देवी कात्यायनी का व्रत रखा, भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाई और उनकी पूजा की। ये परंपरा आज भी जारी है। दक्षिण भारत में देवी कन्याकुमारी को माँ कात्यायनी का ही रूप माना जाता है। पोंगल के दौरान माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि विवाह योग्य पुरुष भी माता से विवाह के वरदान पा सकते हैं।
1: कात्यायनी जी का स्वरूप बताया कि गौर वर्णा है और 4 भुजाएं हैं इनकी, जिसमें वर मुद्रा से लेके अस्त्र शस्त्र ये सब रहता है। और इनका आकर्षण के लिए कात्यायनी जी का बहुत ज्यादा महत्व मिलता है।
0: चलिए आपको बताते हैं शास्त्रों में भगवती के स्वरूप की कैसी व्याख्या की गई है। माता कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में दिखाई देता है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना से अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग शोक संताप और भय नष्ट हो जाते हैं।
1: विशेष तो देखिए माँ का जो विषय है वो समस्त आपको चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करने वाली हैं, जिसमें धन यश मान सम्मान परिवार सबका सुख मिलता है, लेकिन विशेष रूप से वर प्राप्ति के लिए कन्या लोग इनका पूजन करती हैं और पुरुष भी इनका जप और पूजन कर सकते हैं अच्छी पत्नी प्राप्ति के लिए।
0: ज्योतिष के जानकार भी ये मानते हैं कि अगर कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा तो विवाह और वैवाहिक जीवन में शुभता बनी रहेगी। अगर आप नवरात्र में ये प्रयोग ना भी कर पाएं, तो बृहस्पति को मजबूत करके कैसे वैवाहिक जीवन सुखी बनता है, कैसे वैवाहिक जीवन सुखी बना सकते हैं, आइए जानते हैं।
1: बृहस्पति बलवान करने के लिए एक तो पीला वस्त्र का धारण करना चाहिए, दूसरी चीज माँ के जप के संग बृहस्पति का भी जप करें और पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिसमें हल्दी है, चने की दाल है, पीला वस्त्र है एवं केला फल इत्यादि में केला इत्यादि का भी दान करने से बृहस्पति की जो तकलीफ होती है वो शीघ्र दूर होती है।
0: हर रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें, कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, खान पान में सात्विकता रखें, सलाह लेकर एक ओपल या पीला पुखराज धारण करें, रात को सोने से पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर करें।
1: जब के विधान में पीले वस्त्र को धारण करें या लाल वस्त्र भी इसमें पहना जा सकता है और पीले आसन पे आसन के नीचे केले के पत्ते को रख के इस अनुष्ठान को अगर किया जाए तो ये शीघ्र ही फलीभूत होता है और अपने इच्छानुकूल वर की प्राप्ति होती है।
0: तो सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ आदि शक्ति की भक्ति में लीन हो जाइए, माता के श्री चरणों में शीश झुकाइए, फिर आप हर बाधा और परेशानी से दूर हो जाएंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे करनी है माँ कात्यायनी की आराधना और किस भोग से प्रसन्न होंगी माँ कात्यायनी। आप बने रहिए हमारे साथ।
2: तो देखा आपने नवरात्र में कितनी कल्याणकारी है माँ कात्यायनी की आराधना। अभी आपने जाना नवरात्र में शीघ्र विवाह के उपाय। आइए अब आपको हम माँ कात्यायनी की दिव्य शक्तियों से परिचित कराते हैं, कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना। आइए चलिए उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं।
0: अमोघ फलदायिनी है नवरात्र में माँ कात्यायनी की उपासना। देवी के छठे स्वरूप की उपासना से पूर्ण होगी सभी कामना। अद्भुत है माँ कात्यायनी की प्रताप, जिनकी कृपा से घरों में बजती है शहनाइयां। वर वधु के हाथ होते हैं पीले और दंपति जीवन में मधुरता का मिलता है वरदान। साथ ही कुंडली की ग्रह दशा भी हो जाती है अनुकूल, लेकिन इसके लिए सही तरीके से करनी होगी आपको माता की उपासना, क्योंकि विधिवत की गई अर्चना से शीघ्र प्रसन्न होती है माँ कात्यायनी। तो आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि कैसे मिलेगी देवी के इस दिव्य स्वरूप की कृपा।
1: कात्यायनी जी के प्रिय वस्तुओं में शहद का भोग लगता है एवं हल्दी इनको चढ़ाई जाती है और इनका मुख्य विषय जो है कन्या के विवाह इत्यादि में भी अगर विलंब बाधा आ रही हो या किसी विशेष कार्य में रुकावट पैदा हो रहा हो तो निश्चित रूप से इनकी आराधना करने से वो कार्य सहर्ष पूरा हो जाता है।
0: कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा? पूजा के स्थान को लाल कपड़े से सजाएं। देवी कात्यायनी का संबंध लाल रंग से माना गया है। गोधूली वेला में पीले या लाल कपड़े पहनाकर इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीली मिठाइयां अर्पित करें। माँ के इस स्वरूप को शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और साथ ही प्रेम से जुड़ी बाधाएं भी दूर होंगी। इसके बाद माँ के सामने उनके मंत्रों का जाप करें। तो आप भी माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के महा उपाय कीजिए और नवरात्र के इन दिव्य दिनों का लाभ उठाइए। जिससे भगवती के कृपा से आप सबका कल्याण होगा और साथ ही आने वाली बाधाओं का भी सर्वनाश होगा।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा।
4: नवरात्रि में कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, नवरात्रि में क्या होगा देवी का पूजा विधान और कैसे होगा वैवाहिक समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ किस्मत कनेक्शन में।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: अगर आप बर्फ की दुनिया में डिज्नी का जादू देखना चाहते हैं तो चीन का हार्बिन आपको हैरान करने वाला है। यहाँ बर्फ के महलों के बीच अब दिखेंगे फ्रोजन के मशहूर किरदार। देखिए सर्दियों में नजारा किसी सपने से कम नहीं होता है, आप भी कीजिए इस नजारे का दीदार।
12: चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बर्फ से बने बड़े बड़े महल। चीन के हार्बिन शहर में हर साल बर्फ का एक शानदार पार्क बनाया जाता है, नाम है हार्बिन आइस स्नो वर्ल्ड, और इस बार यहाँ कुछ खास होने वाला है। इस सर्दी इस पार्क में डिज्नी चाइना के साथ मिलकर फ्रोजन की दुनिया बसाई जाएगी, यानी बर्फ से बनी इस दुनिया में एल्सा, एना और ओलाफ जैसे मशहूर किरदार नजर आएंगे। बर्फ की बड़ी बड़ी मूर्तियों के जरिए फिल्म के जादुई नजारे तैयार किए जाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ डिज्नी से जुड़ी चीजों की एक खास दुकान भी होगी, जहाँ लोग अपनी पसंद की चीजें खरीद सकेंगे। लेकिन इस बार सिर्फ फ्रोजन की दुनिया ही खास नहीं होगी, पार्क का आकार भी पहले से बड़ा होने जा रहा है। करीब 12,50,000 वर्ग मीटर में फैले इस पार्क को बनाने में 4,00,000 घन मीटर बर्फ और बर्फ की सिल्ली का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ बर्फ से बनी 1,000 से ज्यादा आकृतियाँ और ढांचे देखने को मिल सकते हैं, साथ ही रोमांचक झूले, रंगारंग कार्यक्रम और बर्फ से जुड़े खेल भी होंगे। पार्क के मुख्य गेट पर बड़े टावर को भी नया रूप दिया जाएगा, यानी इस सर्दी चीन के हार्बिन में घूमने आने वाले लोगों को बर्फ के बीच मस्ती, रोमांच और डिज्नी की जादुई दुनिया तीनों का मजा मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए अब चलते चलते आपको उन वीडियोस के साथ छोड़ जाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे।

भाव चेहरे पर उतर आए तो शब्द मायने नहीं रखते। गीत बांग्ला भाषा में है, पर जो ये भाषा नहीं बोलते समझते हैं, यकीनन बात उन तक भी पहुंच रही है, और ना भी पहुंचे तो दिल को सुकून तो दे ही रहे हैं। छोटी बच्चे के पांव की थिरकन, आंखों के इशारे, हाथों का घुमाव, सब मिलजुल कर एक कहानी कह रहे हैं। उसका ये अंदाज लोगों का दिल छू रहा है।

0: रानी लक्ष्मीबाई को हमने नहीं देखा, पर उनकी वीरता और दृढ़ता की जितनी कहानियाँ सुनी हैं, उससे मेल खाती है ये बच्ची। बचपन में ऐसी ही रही होंगी शायद, आत्मविश्वास से भरी, निडर, निर्भीक, हर मुश्किल का सामना करने को तैयार। तलवारबाजी में तो कोई इन्हें हरा ही नहीं सकता, बराबरी की टक्कर दे रही है। बच्ची का रूप, रंग, अंदाज सब लोगों का ध्यान खींच रहा है। लोग उनके इस हुनर की तारीफ कर रहे हैं। बॉलीवुड के गानों की तो बात ही निराली है। क्लासिक सुनना हो तो ओल्ड इज गोल्ड, नहीं तो फिर 90 के दशक के सदाबहार नगमे दुनिया भर में आज भी गुनगुनाए जाते हैं। दीवानगी चीन में भी है। देखिए कैसे दो कलाकार गोविंदा और करिश्मा कपूर के गाने पर थिरक रहे हैं। वेशभूषा अपनी है पर अंदाज हिंदुस्तानी है। इस वीडियो को लोग बार बार देख रहे हैं। इस उम्र में ये जलवा है तो सोचिए जवानी में क्या अंदाज रहा होगा इनका। साथ में युवा चेहरे भी हैं, पर जो बात दादी अम्मा के डांस में है वो किसी और में कहा। पूरी महफिल लूट ली इन्होंने तो। इसे कहते हैं असली डांसर। ये बुजुर्ग जिस एनर्जी के साथ ताल से ताल मिला रही हैं, उसे देखकर आप डांस के प्रति इनकी दीवानगी समझ सकते हैं। खूबसूरती हो तो ऐसी कि कोई भी दो पल को ठहर जाए। इनकी खूबसूरती के भी चर्चे हैं, इंटरनेट पर वायरल हैं ये। इनके बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये बीजिंग की सबसे खूबसूरत महिला ट्रैफिक पुलिस हैं और एक इंटरनेट सेलिब्रिटी भी। ऐसे में लोग उन्हें देखने अलग अलग शहरों से पहुँचते हैं। इनके फैन फॉलोइंग का तो पता नहीं, पर खूबसूरत तो है ये।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से गिरा पारा, तेज हवाओं के साथ बदला मौसम का मिजाज, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पहाड़ों पर भी मौसम की मेहरबानी, बाबा केदारनाथ धाम में शुरू हुआ स्नोफॉल, हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक बिछी बर्फ की सफेद चादर।

लद्दाख को मिलेगी विकास की सौगात। प्रधानमंत्री ने करीब 3,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। लेह एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी तोहफा। लाखों फोन यूजर्स के लिए बदलने जा रहा है नियम। अब अनजान फोन कॉल पर भी दिखेगा असली नाम। 1 नवंबर से लागू होगा फैसला। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन। विधि विधान से हो रही मां स्कंद माता की आराधना। देश भर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब।

कविता झा, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। हर ओर नवरात्र उत्सव की उमंग है, मां के भक्तों में भारी उत्साह है और उल्लास है। दुर्गा अष्टमी नवमी की तैयारी भी शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच अष्टमी नवमी तिथि को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई। अब सवाल ये है कि 18 या फिर 19 अक्टूबर किस दिन मनाएं दुर्गा अष्टमी? क्या इस बार अष्टमी नवमी एक ही दिन है? अगले एक घंटे अष्टमी नवमी तिथि के कंफ्यूजन से जुड़े हर सवाल का जवाब आपके सामने होगा। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे आप किस दिन मनाएं दुर्गा अष्टमी, कन्या पूजन के अबूझ मुहूर्त क्या हैं, राशि अनुसार मां को प्रसन्न करने के क्या उपाय करें। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे।

0: आइए तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बार तिथि का कंफ्यूजन क्यों है। 18 अक्टूबर या फिर 19 अक्टूबर की तारीख, किस दिन दुर्गा अष्टमी मनाना उचित होगा आपके लिए। दरअसल आपको बता दें कि नवरात्र में अष्टमी नवमी का विशेष महत्व होता है। अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन का भी विधान है। क्या इस बार अष्टमी नवमी पूजन एक ही दिन पड़ रहे हैं? कुछ ज्योतिष के जानकारों के अनुसार 19 अक्टूबर को अष्टमी नवमी का कन्या पूजन एक साथ किया जा सकता है, क्योंकि 18 अक्टूबर को सूर्योदय के समय सप्तमी तिथि है। उदया तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी 19 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर को सुबह 8:27 से 19 अक्टूबर को सुबह 10:51 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 19 अक्टूबर सोमवार को महाअष्टमी का कन्या पूजन करना उचित है। 19 अक्टूबर को कन्या पूजन के 3 अबूझ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से सुबह 5:40 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:28 से सुबह 9:16 तक। अभिजीत मुहूर्त आपको बता दें सुबह 11:49 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। और आपको बता दें इससे पहले कि हम चर्चा की अपनी शुरुआत करें, आपको नवरात्र की रौनक हम चलिए दिखाते हैं। आज नवरात्र का 5वां दिन है और 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की आराधना की जाती है। सुबह से ही मां के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक भक्त मां स्कंद माता की पूजा कर रहे हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध छतरपुर मंदिर में भी भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और झंडेवालान मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं दुर्गा पूजा की परंपरा के लिए प्रसिद्ध पश्चिम बंगाल में मां के एक से बढ़कर एक पंडाल सजे हैं। यहां अलग अलग थीम पर बने पूजा पंडाल मां दुर्गा की सुंदर प्रतिमाएं लोक संस्कृति और परंपरा के रंग भक्तों को खूब लुभा रहे हैं और यहां पर नवरात्र की रौनक देखते ही बन रही है। चलिए तो हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें उनसे। श्रुति खरबंदा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज्योतिष आचार्य। श्रुति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ वाण्या आर्या जी जुड़ चुके हैं, ज्योतिष आचार्य। वाण्या जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य राज मिश्रा जी ज्योतिष आचार्य वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संजय शर्मा जी ज्योतिष आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए, एक जो ये कंफ्यूजन है जिसको लेकर जैसे ही और हर बार पता नहीं क्यों लेकिन हर बार पिछले जितने भी वर्ष में पुराने याद कर लूं, सप्तमी अष्टमी या अष्टमी नवमी को लेकर ये कंफ्यूजन की स्थिति जो है, ये भ्रम की स्थिति बनी रहती है। अब इस बार भी जो लोगों के मन में संशय है, जो ये संशय की स्थिति बनी है वो है अष्टमी और नवमी को लेकर के। आखिर ऐसा क्यों और क्या है वो तिथि जिस दिन लोग अष्टमी मनाएं, या फिर क्या है वो स्थिति जिस दिन कन्या पूजन करें?
1: सबसे पहले श्रद्धा जी आपका बहुत धन्यवाद और मैं आप सबका जीएनटी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम स्क्रीन पर बैठ करके फिर से सौभाग्य मिला है कि देवी के दर्शन को करते हुए हम शास्त्रोक्त चर्चा को कर पाए। और मैं इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद दूं कि बहुत सारे ऐसे जो विदेशों के अंतर्गत बैठे हुए श्रद्धालु हैं या घरों में जो ऐसे लोग बैठे हैं जो आज की डे टू डे की जो बिजी लाइफ है उसमें होते हुए भी आपके चैनल के माध्यम से अपने घर में बैठ करके देवी के अलग अलग स्वरूपों का श्रद्धा पूर्वक दर्शन कर पाते हैं। मुझे लगता है, मैं दोबारा इस बात को कहूं, मुझे कहते हुए कोई भी झिझक नहीं होती है कि यदि हम जीएनटी अपने घर में लगा ले तो हमें लगता है कि मंदिर घर के अंदर बना हुआ है और घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब श्वेता जी आपके प्रश्न पर आता हूं कि आखिर ये कंफ्यूजन बार बार क्यों रहता है, ये डेट्स का जो कंफ्यूजन है वो क्यों आखिर इस प्रकार का होता है? एक बहुत स्पष्ट मत है कि पिज्जा को आप दाल के साथ नहीं खा सकते। दाल हिंदुस्तानी भोजन है और पिज्जा विदेशी भोजन है। जब दोनों को मिक्स करने का प्रयास करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जब हम जो तिथियां शास्त्रोक्त विधि की हैं, सनातन विधि की हैं, जो कि चंद्रमा और सूर्य के द्वारा बाकायदा स्थापित की जाती हैं, उनके द्वारा बाकायदा उसको बताया जाता है कि ये तिथि इस दिन है, उसको जब हम पश्चिमी कैलेंडर से मैच करने का प्रयास करते हैं तो दिक्कत उत्पन्न होती है। शास्त्र एक शब्द कहता है कन्या पूजन किस दिन करना चाहिए, बहुत क्लियरिटी से आपको बता रहा हूं। अष्टमी का जो कन्या पूजन है वो 19 को ही किया जाएगा। कभी भी शास्त्र ने यह कहा है और हेमेंद्र पुराण इत्यादि के अंतर्गत बाकायदा वर्णन है, शास्त्र ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कभी भी जो अष्टमी है शरद अष्टमी पूज नवमी सई उगता सदा सप्तमी सई उगता नित्यम शोक संताप कारणी। कभी भी अष्टमी तिथि जो है शरद नवरात्र की स्पेशली, उसको सप्तमी तिथि से युक्त नहीं लेनी चाहिए, उसको नवमी तिथि से युक्त ही लेना चाहिए। अब अगर मैं 18 तारीख की बात करता हूं तो 18 तारीख को जो अष्टमी तिथि 8:29 पर शुरू हो जाएगी और 19 तारीख को करीब 10:00 तक का समय जो है, 19 तारीख को ये रहने वाली जो है 10:52 तक अष्टमी तिथि रहेगी। अब अष्टमी तिथि नौमी तिथि युक्ता लेने का नियम है, अगर सप्तमी युक्ता कहा जाए तो शास्त्र कहता है, हेमेंद्र इत्यादि ने कहा है कि शोक संताप कारणी यानी शोक प्रदान करने वाली होती है यदि उसको सप्तमी युक्ता किया जाए। तो इस दृष्टि से अष्टमी को, अष्टमी 19th को ही मनाया जाएगा, अष्टमी का कन्या पूजन इत्यादि 19th को ही किया जाएगा। अब बात आ गई तो क्या नौमी जो है वो फिर हम 20 को करेंगे, नौमी की क्या परिस्थिति है? उसके लिए स्कंद पुराण इत्यादि ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि महानवमी पूर्वाइता ग्रहया नवमी दुर्गा व्रते, यानी जो दुर्गा जी का जो लोग नवमी का व्रत इत्यादि करते हैं या जो नवमी का जागरण इत्यादि करते हैं उसको पूर्व युता लेनी चाहिए। उस नवमी को दसवीं युता, जो दसवीं के साथ हो उस नवमी को दसवीं युता कभी नहीं लेनी चाहिए, उस नवमी को अष्टमी युता लेनी चाहिए। यानी अगर कोई भी दर्शक नवमी का व्रत करता है तो उसको 19th को ही नवमी का व्रत करना होगा। लेकिन अगले श्लोक के अंतर्गत उन्होंने बहुत क्लियर रूप से इस बात को स्पष्ट किया कि होम कन्या पूजनम अश्वयुक्त शुक्ला नवमी मुहूर्ते वा कला यदि सतिथि सकला गेयम। कन्या पूजन के लिए जो नवमी है उस नवमी को आपको जिस दिन वो सूर्य उदय के अंदर है उसी को लेनी चाहिए। तो जो लोग नवरात्र का फास्ट रखते हैं, जो लोग नवमी कन्या पूजन करते हैं उनको 20 तारीख को सुबह करना होगा। और ये जो कुछ मैं कह रहा हूं ये प्रॉपर शास्त्र का प्रमाण है, अगर कोई कहे तो मैं उसको क्लियर कर सकता हूं।
0: बिल्कुल।
1: अब बात आगे विजयादशमी को लेकर।
0: विजयादशमी की हम बात करेंगे राजमिश्रा जी, लेकिन उससे पहले वानिया जी के पास चलते हुए, वानिया जी आपसे भी हम आपका मत यहां पर ले लेना चाहते हैं, क्योंकि वाकई जो पंडित राजमिश्रा जी ने बात कही उसको लेकर के वाकई एक बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि दो वर्ग है। वो लोग जो वेस्ट बंगाल से आते हैं उनका ये कहना है कि वो दशमी यानी कि विजयादशमी जिस दिन सिंदूर खेला होता है वो 21 तारीख को कर रहे हैं, और गुजरात में जहां तक हम जान रहे हैं 20 तारीख को ही विजयादशमी भी हो जा रही है। तो उस हिसाब से चूंकि आज हम अष्टमी और नवमी तिथि की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 18 अक्टूबर अष्टमी तिथि आपकी शुरू हो जा रही है, अष्टमी आपको मनाना है, लेकिन 19 तारीख को इसीलिए अष्टमी कह रहे हैं क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से 19 को आपकी अष्टमी पड़ रही है, तो इसे जरा सा पहले आप क्लियर करें तब हम दशमी पर जाएंगे।
2: जी थैंक यू श्वेता जी, सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं राज्य की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, यहाँ पर जो है अष्टमी तिथि आपकी 18 अक्टूबर 8:29 से लेकर 19 अक्टूबर 10:52 तक रहेगी। तो नेक्स्ट डे 19 अक्टूबर 10:52, यानी कि अगर हम इफ वी टॉक अबाउट उदया तिथि तो उदया तिथि के हिसाब से जो है हमें इसको 19 तारीख को ही मनाना चाहिए, 19 अक्टूबर को। तो जो आपका कन्या पूजन है वो आपका 19 तारीख को होगा। और वहीं अगर मैं नवमी की बात करती हूँ तो 19 अक्टूबर को 10:53 से आपकी नवमी तिथि जो है उस दिन शुरू हो जाएगी।
0: आपको रोकते हुए वान्या जी, यानी कि आपके अनुसार आप कह रही हैं कि अष्टमी भी हम 19 तारीख को मनाएंगे उदया तिथि के हिसाब से क्योंकि उस दिन पड़ता है, और साथ ही साथ नवमी भी हम उसी दिन शुरू करेंगे, उसी दिन हम मनाएंगे।
2: जो अष्टमी तिथि है आइडली आपको जो वो पूजनी चाहिए उदया तिथि के हिसाब से तो वो आपको 19 अक्टूबर को पूजनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर जो नवमी तिथि है वो शुरू हो रही है 19 अक्टूबर को 10:53 से और ये रहेगी 20 अक्टूबर को 12:50 से। अब कुछ फैमिलीज में जो है अष्टमी पूजने का रिचुअल होता है और कुछ में नवमी, तो जो व्रत है वो आप 18 अक्टूबर को ही रखेंगे। कन्या पूजन आइडियल प्रेफरेंस जो है वो आप 19 अक्टूबर को करेंगे। जो नवमी का व्रत है वो आप 19 अक्टूबर, अगर आपके घर में नवमी पूजते हैं तो वो व्रत जो है आप वो 19 तारीख को ही जो है अपना व्रत जो है करेंगे। और मेरे अकॉर्डिंग दशहरा जो है वो 20th अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। अब इसमें जो मुहूर्त की बात करते हैं तो अगर आप अष्टमी नवमी एक मिश्रित रूप से पूज रहे हैं तो ये तीन मुहूर्त जो है वो सबसे ज्यादा शुभ है। तो इसमें जो पहला आपका आ जाता है ये आ रहा है 19 अक्टूबर को 7:45 से लेकर 9:10 तक। जो दूसरा आ रहा है वो 11:42 से लेकर 12:48 तक, यानी कि 11:42 से 12:48, जो कि अभिजीत मुहूर्त भी जो है आपका यहाँ पर आएगा। एक और जो है यहाँ पर एक और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है जो 19 अक्टूबर को 8:29 से लेकर 10:16, और एक और बेस्ट मुहूर्त आपका है 19 अक्टूबर को 10:27 से लेकर 11:15 तक। तो या तो अगर आप जिन्होंने नवमी का व्रत रखा है वो 20 तारीख को पूजेंगे, जिन्होंने अष्टमी पूजनी है मुझे लगता है कि वो अगर 19 तारीख को पूजते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 19 तारीख को हमें और ज्यादा ऑस्पिशियस मुहूर्त मिल रहे हैं और साथ में हमें उदया तिथि भी मिल रही है, और जो है आप प्रॉपर अभिजीत मुहूर्त में जो है आप इसका पूजन कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं कहती हूँ कि अष्टमी आप 19 तारीख को पूजें।
0: बिल्कुल श्रुति जी, यहाँ पर ये बताइए कि जो पंचांग है और पूजा की अलग अलग पद्धति है और विधि है, उसके अनुसार देखिए मत भी अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से और इन पंचांगों को पढ़ने जानने के बाद और आप लोग जिस तरह से इसको देखते हैं ज्योतिषीय नजर से आप जब समझते हैं इसको, तो एक गृहस्थ जो है वो क्या समझे और वो क्या माने?
3: ये बहुत अच्छा सवाल मुझे हमेशा लगता है, क्योंकि हम मून की कैलकुलेशंस के हिसाब से तिथि का निर्णय करते हैं, तो इसका सारा कंफ्यूजन आज दूर कर देते हैं। देखें, सनातन धर्म कहें वो एक समाज को साथ लेकर चलने वाला है, तो हमारा जहाँ पे सहमति सबकी बन जाती है रूल्स को देखते हुए उसको हम फॉलो करते हैं। तो निर्णय सिंधु जो धर्मशास्त्र है वो तो ये निर्णय, मतलब हमारे जितने भी धर्म से जुड़े हुए कृत्य हैं उनके लिए सब रूल्स एंड रेगुलेशंस वही बताते हैं कि सूर्य उदय पे 2 घटी यानी कि 48 मिनट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो वो तिथि उस दिन मान्य होती है, प्रमाणित हो जाती है उस दिन के लिए। तो इसके अनुसार तो देखें फिर हमको वो 18 तारीख को मिल नहीं रही है। व्रत आप जरूर रख सकते हैं क्योंकि 18 तारीख को 8:27 पे जो है वो अष्टमी तिथि लग रही है। अष्टमी तिथि हमें 19 की सुबह ही मिल रही है जो कि 10:51 तक है। तो जितने भी शक्तिपीठ हैं, जो प्रसिद्ध मंदिर है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश के जो हरसिद्ध मंदिर है, या जितने शक्ति सॉरी मैं उज्जैन के मंदिर और मध्य प्रदेश के मंदिर को जो है मिक्स कर गई माँ शारदा के, जितने भी प्रमुख शक्तिपीठ है उन सबका यही मत है कि 19 तारीख को अगर आपको कन्या पूजन करना है तो अष्टमी आपको मिल रही है। अष्टमी नवमी उसी दिन सारे विधि विधान और जो हवन पूजन है वो उस दिन किया जाएगा। व्रत जो है
0: तो यानी कि आपसे यहाँ पर क्लैरिटी चाहूंगी मैं, यानी कि जो अष्टमी की कन्या पूजन करते हैं और जो नवमी की भी कन्या पूजन करते हैं वो दोनों ही लोग 19 तारीख को कन्या पूजन कर सकते हैं?
3: बिल्कुल कर सकते हैं। साथ में देखिए श्वेता जी, मैं हमेशा एक चीज बीच में डाल देती हूँ, ऑप्शन जिसे होती है, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो जो रूल फॉलो करते हैं, एक दूसरे होते हैं डिफॉल्टर, मतलब जो जॉब में होते हैं जिनको समय नहीं मिल पाता तो वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, क्या करें समय ऐसा है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उनसे ना हो पा रहा हो तो वो 18 तारीख को जो है 8:57 से कर लें। देवी तो सबके भाव और तपस्या का वो देखती है, तो इस हिसाब से तो कर सकते हैं। एक चीज है कि कंफ्यूजन जो हो रही थी मैं उस पर भी कहना चाहती हूँ, दशहरा यानी विजयदशमी और दुर्गा विसर्जन ये दोनों अलग चीजें, दशहरा शाम को होता है इसलिए 20 तारीख को हमें वो मिल रहा है, तो हम 20 तारीख की शाम जो है हमें 20 तारीख को मिल रही है वो कर रहे हैं, और दुर्गा का जो विसर्जन है क्योंकि कोलकाता में वहां बेटी के रूप में उमा आती है, पार्वती आती है, तो वो 21 को मेरे ख्याल में दुर्गा विसर्जन कर रहे हैं जहां तक मैं जान पाई।
0: नहीं, यहाँ पर संजय शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि दुर्गा विसर्जन की बात इन्होंने की, हर बार ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन विजयादशमी होती है तो विजयादशमी में जो शाम का कार्यक्रम होता है रावण दहन का जो होता है वो तो शाम में ही होता है हर बार, और सुबह जो है सिंदूर खेला होता है और माँ की विदाई भी सुबह ही होती है, इस बार दशमी तिथि को लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन इस बार जो कन्फ्यूजन है वही हम अष्टमी और नवमी की बात कर रहे हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के योग का बनना क्या ये दुर्लभ योग माना जाए, या फिर क्यों हर बार इस तरह का होता है कि अष्टमी नवमी या सप्तमी अष्टमी इस तरह के योग बनते हैं?
4: जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। माँ के नवरात्रे चल रहे हैं और मंत्र उच्चारण बहुत जरूरी है। इससे पहले सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ शादी के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देखो आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, क्या है कि नवरात्रों का बढ़ना, सप्तमी तिथि जो है दो हो गई है, जिस कारण से नवरात्रों में सप्तमी का बढ़ना जो है बड़ा शुभ होता है। सप्तमी अर्थात सरस्वती माँ की जो है आराधना बढ़ गई कि आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि हो गई। अष्टमी जो तिथि है और नवमी का एक होना, ये भी बड़ा शुभ संयोग है, क्योंकि इस दिन बड़े अच्छे संयोग भी बन रहे हैं, क्योंकि धृति योग जो है उस दिन बन रहा है, गजकेश्वरी योग बन रहा है, उस दिन जो है सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग है। और कहा जाता है कि जब सूर्य उदय और सूर्य अस्त की जो तिथियां होती हैं, कि सूर्य उदय से लेकर के और उदय तिथि में जब अष्टमी आ रही है, वो जो 10:51 तक 19 तारीख को तक रहेगी, और उसके बाद 10:51 से लेकर 12:51 तक आपको नवमी का, अष्टमी और नवमी का पूजन जो है कर लेना चाहिए। और 12:51 के बाद से आप जो है दसवीं मान करके, जो लोग दसवीं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि अखंड पाठ होता है इसमें 9 दिन का नवरात्रों में, तो दसवीं का पाठ आप अष्टमी नवमी और दसवीं का पाठ जो है आप कर सकते हैं। और सूर्य उदय आप देखें कि उस दिन 6:28 पे हो रहा है, और अस्त जो है वो 17:45 पे हो रहा है। तो वो क्या है कि टाइमिंग का जो है देखना बहुत जरूरी है, उदय और अंत जो है तिथि का कब हो रहा है, और अगले दिन सुबह का समय जो है उदय तिथि में ही अष्टमी आ रही है, और नवमी जो है उदय तिथि में नहीं आ रही, उदय तिथि के बाद आ रही है। पर अष्टमी और नवमी का जो संयोग है, कहा जाता है कि जब दो तिथियां एक साथ मिलती हैं, तो महागौरी और महाकाली महासरस्वती, तो ये क्या है कि देवियां हैं, और इस स्वरूप की जब आप तीनों की पूजा करते हैं, और दसवीं का जो दिन होता है विशेष करके विजयश्री देने वाला है, एक ऐसा शुभ दिन होता है जब आप कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। और जो विसर्जन की बात की, वो आप 12:51 के बाद दसवीं मना करके और शाम को 4 बजे तक जो है विसर्जन कर सकते हैं, और इसमें बड़े अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि अष्टमी में आपने जैसे अभी बताया कि बड़ा अच्छा टाइम बताया कि जो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा है वो सुबह 4:43 पर जो है मुहूर्त है, उसमें अगर प्रारंभ करें तो उससे अच्छा मुहूर्त कोई नहीं है। और दूसरा अभिजित मुहूर्त जो है वो 11:43 से 12:29 तक है, उसमें आप कन्या पूजन जो है कर सकते हैं। और संधि काल जो है 10:27 से 11:15 तक का जो समय है वो संधि काल का है। तो ये सारे जो समय है अष्टमी नवमी और दसवीं में, जो ये समय है ये अमृत काल है, क्योंकि अमृत तत्व सोदयामी नमः स्वाहा, शिव तत्व सोदयामी नमः स्वाहा। तो ये क्या है कि जो हमारे अमृत तत्व की प्राप्ति इसी समय में हमें होती है। और इसमें क्या है कि आप 9 कन्याओं का पूजन, कहा जाता है 9 कन्या और 1 लांगुरिया का पूजन इसलिए किया जाता है कि बटुक भैरव का जो रूप है, वो जो 10वां स्वरूप है, वो बटुक भैरव माना जाता है। 9 कन्याओं की पूजा होती है, और उनका पूरे विधि विधान से जो है पूजन करने से आपको 9 सिद्धियां अपने जीवन में प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार से माँ के जो स्वरूप है शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, क्योंकि आपको शैलपुत्री जो है आपके जीवन में शांति प्रदान करती है, और जो उसमें योग भी बन रहा है धरती योग है। धरती का अर्थ है कि आपके अंदर धैर्य हमेशा होना चाहिए। तो ये क्या है कि इस तरह की जो पूजा पाठ है उनको हमें उस वक्त पे करना चाहिए, और कन्याओं का पूजन करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में शक्ति की पूजा मिले, आपको शक्ति का वास हो, और ये समय शक्ति प्रदान करने वाला है, जिससे माँ दुर्गा की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहे।
0: बिल्कुल माँ दुर्गा की पूर्ण कृपा, बिल्कुल माँ दुर्गा की पूर्ण कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ पूरे 9 दिन तक विधि विधान से तमाम भक्त जो हैं श्रद्धालु अपने घरों में भी पूजा कर रहे हैं और मंदिरों में भी शक्तिपीठों में भी जा रहे हैं। राजमिश्रा जी, आपके पास आते हुए आपसे ये जानना चाहूंगी कि खास करके देखिए हमारे यहाँ शारदीय नवरात्र में पूरे जितने भी 9 दिन हैं वो सभी बेहद शुभ माने जाते हैं, और माँ के अलग अलग स्वरूपों की हम इन दिनों पूजा करते हैं, लेकिन महाअष्टमी और नवमी विशेष करके इसे एक अलग दर्जा दिया गया है। एक तो इसकी महत्ता के बारे में बताएं, और दूसरा ये बताएं कि जो कन्या पूजन हम करते हैं, जो अब ये संजय शर्मा जी बता भी रहे थे, तो उसमें जब हम कन्या पूजन करते हैं तो उसमें भी 2, 5, 7 या फिर 9 कन्याओं को ही बुलाया जाए, उनकी पूजन की जाए, उन्हें प्रसाद खिलाया जाए, इसके बारे में भी बताएं।
1: दो चीजें ध्यान रखिएगा, दोनों का अपना एक बहुत महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अष्टमी का महत्व है, जो महागौरी जो स्वरूप होता है, जब पहले दिन अगर श्वेता जी आप देखेंगे तो तो धर्म का जो स्वरूप है, जो पहले माँ की सवारी है ना, वो वृख की है, यानी बैल की सवारी है, जिसको धर्म कहा गया है शास्त्र के अंतर्गत, शैलपुत्री माता की। तो यानी धर्म से प्रारंभ करके और महागौरी जो है वो धर्म, उनकी भी सवारी वृख की है। तो यहां तक पहुंच करके आपको जो जीवन की अपनी कामनाएं हैं, जब उस देवी की आराधना की जाती है, जब महागौरी की आराधना की जाती है, तो आप लोगों ने अभी संजय शर्मा जी मंत्र कर रहे थे, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधि की शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वो शक्ति का वो स्वरूप है जो वास्तविकता में सभी अमंगल को दूर करके और अपने भक्त के मन को मंगल प्रदान करने वाला है। ये वो समय है जब ब्रह्म प्राप्ति की तरफ या अपने कामनाओं की पूर्ति की बिल्कुल नजदीक जब भक्त पहुंच जाता है, ये वास्तविकता में वो वाला समय है। ये वो वाला समय देवी का है जो देवी ने तप करके शिवत्व प्राप्ति के लिए अपने आप को बिल्कुल पहुंचा दिया था, जहां देवी को वास्तविकता में श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जब पढ़ेंगे, जब आदिशक्ति ने जब प्रार्थना किया और वो श्री रामचरितमानस की चौपाई है कि संबत सास मूल फल खाए साग खाए सग बरस गाए अस्तों का अस्तप काहू न कीन भवानी भये अनेक धीर मुनिज्ञानी। जब सप्त ऋषियों ने आकर के उनको कहा कि जब आपके आपका जो तप है वो पूर्ण हो चुका है, आपके पिता जब बुलाने आएंगे तो अब आप अपने घर चले जाइएगा और जो आपकी इच्छा हो उसको ग्रहण कीजिएगा। इसीलिए अष्टमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। उस दिन आदिशक्ति ने सबसे पहले उस दिन आदिशक्ति अपने घर गई, महाराज हिमांचल के पास गई और वहां जो भी उन्होंने श्रद्धा से स्वीकार किया, जो पिता ने प्रदान किया उसको स्वीकार किया। तो ये दिन वो दिन है जिस दिन हम अपने जीवन के समस्त अमंगल को नष्ट करके देवी की आराधना से और मंगल को प्राप्त करते हैं। सिद्ध दात्री जो नौवां दिन है वो श्री रामचरित मानस के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर चौपाई आता था कि योग सिद्ध फल समय जिम जति अविद्याना। लाइक नौवां दिन इतना इंपॉर्टेंट दिन है कि उस दिन गड़बड़ करने से, ये उन लोगों के लिए बहुत स्पष्ट है, बहुत शायद चेतावनी वाला है, जो लोग 8 दिन या 9 दिन नवरात्र का व्रत रखते हैं, अष्टमी को जैसे ही कन्या पूजन कर लिया वह संसार की जितनी वस्तुएं हैं मांसाहार या इत्यादि सब कुछ सेवन स्टार्ट हो जाता है और नवमी को हम उसको ग्रहण करते हैं, शायद सबसे पेनफुल है क्योंकि आपने जो इतने दिन व्रत किया है वो फल जो है वो नष्ट हो जाता है। नौवां दिन वास्तविकता में आपके सिद्धि प्राप्ति का दिवस है। शायद मुझे लगता है आप जब भी, और कन्या पूजन को लेकर के अगर आपके पास समय है तो मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। अगर आप जैसे
0: बिल्कुल आती हूँ आपके पास राज मिश्रा जी, कन्या पूजन को लेकर भी पूछूंगी। वान्य जी आपसे यहाँ पर सवाल करना चाहूंगी कि देखिए हम बात, ये तो कम से कम क्लैरिटी हो गई, दर्शकों को भी हो गई और हमें भी क्लैरिटी हो गई कि भाई 19 तारीख को हम अष्टमी और नवमी दोनों की कन्या पूजन हम कर सकते हैं उस दिन तिथि के अनुसार। लेकिन यहां पर मैं आपसे समझना चाहूंगी जो मुहूर्त है उस हिसाब से, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत काल, अभिजीत मुहूर्त, इसमें कौन सा वो समय है, कौन सा वो मुहूर्त है जब सबसे उत्तम माना जाता है कि आप कन्या पूजन करें?
2: जी थैंक यू श्वेता जी। तो 19 तारीख को जब आप मुहूर्त की बात करते हैं तो ये तीन मुहूर्त जो हैं वो निकल के आ रहे हैं। पहला है 7:45 से लेकर 9:10 यानी कि 7:45 AM से 9:10 जो है AM। सेकेंड मुहूर्त जो है महानवमी का और महाअष्टमी, अगर आप मिश्रित कन्या पूजन भी कर रहे हैं तो वो पोस्ट 10:51 AM जो है वो आपको मिलेगा। इसमें 10:27 से लेकर 11:15 तक का एक मुहूर्त, वो भी आपका बहुत शुभ है। एक मॉर्निंग का मुहूर्त है 8:29 से लेकर 10:16, ये मुहूर्त भी आपका शुभ है। एक आपका अभिजीत मुहूर्त आ जाएगा यहाँ पर 11:42 से लेकर 12:48 तक का। देखिए ये जो अष्टमी और नवमी होता है ये बहुत ही ज्यादा अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि इन दोनों तिथियों पर बहुत घरों में अष्टमी पूजी जाती है और बहुत घरों में नवमी पूजी जाती है। तो ये जो टाइम है ये कंप्लीशन का टाइम होता है, जब आप अपने 8 डेज के या 7 डेज के नवरात्रि जो है वो आप पूरे करते हो। तो लास्ट में जब माता महागौरी आती है और माता सिद्धिदात्री आती है, माता महागौरी का कनेक्शन राहु देव से होता है और वही माता सिद्धिदात्री का कनेक्शन जो होता है वो केतु देव से होता है और हमारे क्राउन चक्रा से होता है, और महागौरी का कनेक्शन हमारे सोम चक्रा से होता है। सोम चक्रा हमारे जो हमारे 7 चक्रास है उससे आउटसाइड होता है। अब यहाँ पर आप माता महागौरी का जो हमने रूप देखा है वो बहुत ही ज्यादा एक सौम्य रूप है, बहुत ही ज्यादा एक कामिंग एनर्जी है जो देवी की है। और वहीं जो माता सिद्धिदात्री है, जो आपने 8 दिन कन्या पूजन किया, उसमें जो आपने साधनाएं की, अब ये टाइम है उसके फ्रूटिशन का, यानी कि उसके रिजल्ट का जो है ये फाइनल टाइम होता है। यहाँ पर हमारे सारे चक्रा यहाँ तक पूजा करते करते जब हम आते हैं तो चक्रा बैलेंस हो जाते हैं, पंच तत्व हमारे बैलेंस हो जाते हैं। आप देखिए जब हम ऑड नंबर्स में कन्या पूजन जो है जब हम करते हैं तो विषम नंबर का हमारे सनातन धर्म
0: बिल्कुल
2: में
0: इसका इसका इसका भी जवाब जो मैंने आचार्य राज मिश्रा जी से पूछा था, वाना जी इसका भी जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि कन्या पूजन की बात हो रही है तो उसमें नंबर्स की बात होती है कि भाई 2, 5, 7 या फिर 9, क्या क्या सही माना जाता है, शुभ माना जाता है?
2: जी, थैंक यू सो मच श्वेता जी। तो यहाँ पर जो है जो विषम संख्या होती है, जो ऑड नंबर्स होते हैं, हर नंबर का एक मीनिंग होता है। हमारे सनातन धर्म में जो विषम नंबर्स होते हैं, जो ऑड नंबर सीरीज होती है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सौभाग्यता और शुभता की सीरीज होती है। अब यहीं पर अगर आप सिंपल एक नंबर, एक कन्या यानी कि एक सिंगल कन्या बिठाते हैं तो वो आपकी ऐश्वर्य और सौभाग्य की जो है आपको प्रदान करती है। वहीं अगर आप थ्री कन्या जो है, अगर तीन कन्याएं जो है अगर आप बिठाते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेव को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप 5 कन्याएं बिठाते हैं तो ये हमारे पंच तत्व को जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं, जो हमारे अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। वहीं अगर आप 7 कन्याएं बिठाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके 7 चक्रास को भी रिप्रेजेंट करती हैं, और बहुत सारा हमारे जीवन में 7 ब्लेसिंग्स को जो है साथ में लेके आती है। वहीं अगर 9 का नंबर है वो आपका पूरा कंप्लीशन का नंबर है, तो ये आपकी
0: बिल्कुल वाना जी। तो आपने आपने वो नंबर्स बताए कि किस तरह से आप जितने कन्याओं को आप बिठाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो उससे क्या आपको लाभ मिलेगा। श्रुति जी के पास भी आएंगे और शायद संजय शर्मा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कन्या पूजन में भी खास करके क्या प्रसाद उनको लगाना चाहिए, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
7: नवरात्रि में कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, नवरात्रि में क्या होगा देवी का पूजा विधान, और कैसे होगा वैवाहिक समस्याओं का

0: लेकर कन्या पूजन को लेकर जो भी आपके मन में संशय है वो तमाम संशय दूर करने के लिए हमारे साथ तमाम ज्योतिषाचार्य बने हुए हैं और मुझे लगता है अब तक आपके तमाम जो कंफ्यूजन होंगे वो लगभग दूर हो चुके होंगे। तिथियों को लेकर तो दूर हो गए हैं। श्रुति जी आपके पास आते हुए देखिए, चूंकि हम कन्या पूजन की बात कर रहे थे तो हमने संख्या तो जान लिया कि भाई हमें कितनी कन्याओं का पूजन करना चाहिए, अपने सामर्थ्य के हिसाब से लोग बुला सकते हैं और कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन आपसे दो चीजें इसमें जानना चाहूंगी। जो कन्याओं को हम खिलाते हैं जिसे हम प्रसाद भी कहते हैं, जो प्रसाद उनके लिए खास करके बनता है, तो यूजुअली किस तरह का प्रसाद बनना चाहिए? क्योंकि यहाँ दिल्ली वगैरह में जो मैंने देखा है यहाँ पर पूरी खिलाते हैं, हलवा होता है, चना होता है, इस तरह की चीजें होती है, लेकिन कई घरों में मैंने ये भी देखा है कि अपने हिसाब से वो चीजें बनाते हैं और खिलाते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि सिर्फ नंबर्स पूरे कर लेना और पूजा करके उन्हें किसी तरह से भेज देना वो सही है, आप मानती हैं, या फिर भाव भी उनके प्रति वैसे ही होने चाहिए जब आप कन्या पूजन कर रहे हैं?
1: श्वेता जी, देखें, भाव तो सबसे ज्यादा प्रमुख है, क्योंकि अगर मेंटल आपके माइंड और एनर्जी की इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो वो रिटर्न आपको कैसे आएगा। मतलब प्रैक्टिकल, बड़ी यथार्थवादी भाषा में मैं ये बात करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी चीज में उसमें इंडल्ज नहीं है, पूरी तरह है नहीं, तो वो आएगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और ये देवी की कृपा होती है कि वो कितना आपसे करवा लेती है। तो जो जिनको एक उम्र के बाद कहते हैं ना कि एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जो नियति खुद देती है, खासतौर पे जैसे हमारे जितने सेजेस हैं, सीयर्स हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उनको एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो उन्हें एक ये आभास रहता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं मुझसे वो करवाया जा रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कॉन्शियस रहना, सनातन धर्म तो है भी, कॉन्शियसनेस की बात है ना, कि आप हाई सबसे हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रहेंगे, मकसद भी वही है, मोक्ष की प्राप्ति भी का जो मार्ग है वो भी वहीं से निकल कर आता है। अब बात आती है, देखिए, भोग की और भोजन की। तो जो भी हम माता को भोग लगाते हैं, सबसे प्रमुख रूप में तो उसको सात्विक रखा जाता है, और चूंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रहों का, एक पंच तत्व का और बाकी सब चीजों का इन्वॉल्वमेंट आता है, तो शुक्र से उसको जो है जोड़ के देखा जाता है कि घी हो, हलवा हो, जैसे कश्मीरियों में लेकिन देखा जाता है कि वो फिरनी या खीर जो होती है एक प्रकार की दूध की, वो खिलाते हैं। दिल्ली में बहुत लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि फलाहारी फल ही बांट देते हैं, सेब, केला, आजकल तो फ्रूटी चॉकलेट्स बच्चियों को, जो
0: बिल्कुल
1: लड़कियों को पसंद आए, क्योंकि लड़कियां भी हमारी थोड़ी मॉडर्न हो गई, तो उनको खुश करने का एक उपहार देने का तरीका है कि माँ जो आ रही है हमारे घर में, नौ कन्याएं जो आ रही हैं, उनको हम खुश करके भेजें तो माँ का आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो इसलिए भी जो है उनको यह सब दिया जाता है कि कई लोग बहुत नाना प्रकार के गिफ्ट देते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, थाली है, टॉयज हैं, जिसकी जैसी सक्षमता होती है उस प्रकार से जो है वो माँ को भोग लगाते हैं, श्रृंगार अर्पित करते हैं, उनके चरण धोते हैं और दक्षिणा देके आशीर्वाद लिया जाता है। और हमारा जो मुख्य, जैसे कहते हैं ना, मोटिव है, वो भी यही रहता है कि जो कन्याएं आ रही हैं वो खुश होके जाएंगी तो माँ की कृपा हमको मिलेगी, क्योंकि माँ, वो ऊर्जा माँ तक कहीं ना कहीं पहुंच रही है, वो बड़ा सात्विक भाव एक रहता है, तो
0: बिल्कुल
1: यही मेन है जो
0: बिल्कुल संजय जी
1: बनाया गया है।
0: बिल्कुल संजय जी आपके पास आते हुए ये बताइए कि खास करके महानगरों में, क्योंकि अब सप्तमी अष्टमी वाले दिन छुट्टी तो होती नहीं है, लोगों को काम पर भी जाना होता है और उसके बाद मुहूर्त के हिसाब से हम कोशिश भी करते हैं कि भाई सुबह सुबह हम पहले कन्या पूजन कर लें, घर में पूजा कर लें और उसके बाद अपने अपने अपने काम के लिए निकले, तो ऐसे में कन्याओं को भी बुलाना और 5 के नंबर में या फिर 9 के नंबर में बुलाना ये भी बड़ा एक चैलेंज की तरह होता है। तो मान लीजिए कभी नहीं मिले, क्योंकि हम देखते हैं कि बालकनीज में कई लोग बाहर खड़े सुबह से बाहर आपको नजर आएंगे और वो ये बोलेंगे भाई आपके घर में आए तो हमारे घर भी भेज दीजिएगा, कुछ इस तरह से चलता रहता है, हमने ये देखा है। और कई बार ये है कि आप इंतजार करते रह जाते हैं और वो आ नहीं रही होती है क्योंकि कोई और ले जाता है, तो इस तरह की चीजें होती है। तो मान लीजिए किसी भी वजह से लोग अगर कन्या को घर में ला करके उनको भोजन नहीं करा पाए या फिर उनको उनकी पूजा नहीं कर पाए, तो ऐसे में क्या करें? क्योंकि भाई 9 दिन तो लोगों ने पूजा की ही है और माता की आराधना की है, तो फिर वो क्या करें?
2: जी, माँ का देखो एक ही स्वरूप है, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव, तीनों के तेज से माँ की शक्ति बनी। तो एक कन्या की अगर आप पूजा भी करते हैं, वैसे तो देखो माँ के 9 स्वरूपों की पूजा, 9 कन्याओं का पूजन होना जरूर है, क्योंकि हम 9 रात्रि बोलते हैं, 9 का अर्थ होता है नया और 9 दिन, और जीवन में क्या है कि 9 माँ की शक्तियां हैं, उन शक्तियों का आवाहन करते हैं, उसी रूप में उनको पूजा जाता है। और 10वां जो है हम जो है बटुक भैरव की पूजा करते हैं, जो कि

0: माँ के साथ रहता है। तो ये सारी चीजें जो है कहा जाता है शास्त्रों में कि 9 कन्या और एक की बटुक की पूजा होनी चाहिए। अगर कोई कन्या नहीं मिल रही, अगर आप एक कन्या का पूजन भी पूरे विधि विधान से उसके चरण धो करके और पूरे तरीके से आशीर्वाद ग्रहण करें और उनको जो है संतुष्ट करें और तृप्त होकर के माँ से आशीष लें, माँ का जो स्वरूप है उन सभी स्वरूपों की आराधना एक ही कन्या के अंदर आप कर सकते हैं। और कन्याएं अगर आपके घर पर नहीं आ पा रही तो 9 प्लेट्स जो है बना करके और कहीं ऐसे स्थान पर मंदिर में या किसी भी पवित्र स्थान पर रख दें जिससे कि उन तक वो पहुंच जाए और आप 9 स्वरूपों का आराधना करके और उनका ध्यान करके प्रणाम करके 9 स्वरूपों की और बटुक भैरव का ध्यान करके प्रणाम कर लें और पूरी श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के साथ जो है ये सारी चीजें करें। और आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया था कि भोग की बात की आपने, क्योंकि माँ को जो भोग लगता है जैसे हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है, चने का भोग लगाया जाता है, पर मेन जो भोग है माता का वो नारियल का भोग है, क्योंकि नारियल की जो है बलि दी जाती है, नारियल का जो भोग है वो सबसे जो है प्रिय माना जाता है माँ को। तो उस भोग को देना अत्यंत आवश्यक है और माँ को अनार जो है चढ़ाना चाहिए। सबसे बड़े बड़ा जो फल है वो अनार का फल है, लाल फल जो है माँ को अर्पित करने चाहिए, माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। और बच्चे जिस रूप में आते हैं, 12 साल से छोटे बच्चे होते हैं जो रजस्वला नहीं होते, उनको जो है आप उनको टिफिन दे सकते हैं, जो जो उनकी चीज है पढ़ाई की पठन पाठन की सामग्री दे सकते हैं, किताब कॉपी दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, जो बच्चे चाव से खाते हैं। आजकल बच्चे जो है चाव से बहुत सारी चीजें खाते हैं और क्या है कि सिर्फ हलवा पूरी ना देकर के जो जो वस्तुएं बच्चों को पसंद है वो सब देना चाहिए, जिससे कि माँ का वो स्वरूप जो आपके सामने प्रत्यक्ष हुआ है उस प्रत्यक्ष स्वरूप अगर संतुष्ट होगा तो माता आपसे जो है अपने आप संतुष्ट हो जाएंगी।
1: जी
0: और उन स्वरूपों को मन में ध्यान करके और माँ का ध्यान करते जाएं। और पाठ तो मैं जरूर कहूंगा कि माँ के जो है जितने भी नाम है, जैसे 32 नाम है, उनका पाठ कर लें, ध्यान कर लें। अगर जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र का पाठ जो है उच्च स्वर में करें जिससे कि माँ संतुष्ट हो। और कहा जाता है कि 10 पाठ जो है नवरात्रों में जरूर कर लेने चाहिए
1: जी
0: और यज्ञ भी अवश्य करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में, क्योंकि यज्ञ का अर्थ ही होता है संपूर्णता, आपके जीवन में संपूर्णता तभी आएगी जब आप सब कुछ जो है अर्पित कर देंगे माँ को पूरे तन मन और धन से, और माँ के मंत्रों का ओम नमः चंडिकाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करें। और कहा जाता है दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधि के मम सिद्धिम सिद्धिम सिद्धिम व स्वप्ने सर्व प्रदर्शा, जो भी स्वरूप है वो हमें सब सुख दें, आनंद दें, हमारे
1: जी
0: जीवन में सुखता संपन्नता देते जाएं, जिससे कि माँ के ये नवरात्रे संपूर्ण हो और हम उनके चरणों में सदा रहें, और जिससे कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को माँ का आशीर्वाद मिले, सभी की आराधना करें
1: बिल्कुल
0: जिससे कि आपके जीवन में बहुत संतुष्टि हो। इस प्रकार से माँ की आराधना करें
1: इस
0: जिससे कि
1: प्रकार से
0: आपका
1: बिल्कुल माँ
0: जीवन
1: की आराधना करनी चाहिए।
0: वैभव में रहे।
1: बिल्कुल राजमिश्रा जी, हमने कन्या पूजन की बात कर ली, उससे पहले हम विधि विधान की बात कर रहे थे, देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की बात कर रहे थे, लेकिन कन्या पूजन की बात करते करते आपको नहीं लगता है कि आज का वो दिन होता है यानी कि अष्टमी नवमी जिस दिन हम बुलाते हैं और कन्या पूजन करते हैं पूरे विधि विधान से, उस दिन हर एक घर में ये संकल्प भी लेना चाहिए बेटियों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके सम्मान की रक्षा और सुरक्षा को लेकर भी, कि हम उतने ही अहम प्रण लें और हम अडिग हों कि हम उनकी रक्षा भी करें?
2: प्रता जी, कन्या पूजन का शब्दार्थ ही वही है। अगर आप समाज के महिलाओं के प्रति, एक्चुअली ये बहुत स्पष्ट कहा गया था, किसी ने पूछा कि धर्म का लक्षण क्या है, श्री रामचरित मानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म का तात्पर्य है कि आत्मना प्रतिकूलेन प्रसारेण समाचरे, जो बिहेवियर आपको अच्छा ना लगे उस बिहेवियर को दूसरे के साथ ना करें, वो धर्म है। अगर आप अपने घर में अपनी माता का, अपनी पुत्री का, अपनी पत्नी का, अपने सिस्टर का, अपनी बहन का, समाज में जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, आप उनका सम्मान नहीं कर सकते हैं, वो यदि आपको देख करके सुरक्षित नहीं फील कर रही हैं, तो ऐसे परिस्थिति में देवी आपके पूजन को स्वीकार कर ही नहीं सकती है। तो कन्या पूजन का सबसे बड़ा अवसर, यो किसी ने कहा था कि बेटियों का कोई घर नहीं होता, लेकिन ये भी सत्य है कि बिना बेटियों के कोई घर नहीं होता। तो जब तक आप महिलाओं का अगर सम्मान नहीं करने आएंगे, आप माता के सामने जाकर के पुष्प की बड़ी सी टोकरी ले लीजिए, फल ले लीजिए, एवरीथिंग ले जाकर के और उनको कीजिए कि मां मैं आपका बहुत श्रद्धा से आराधना करता हूं, तो मां को भी लगेगा अच्छा समाज में जो माँ है उनका तो तू सम्मान कर नहीं पा रहा है, सम्मान में जो बेटी है उनका तो सम्मान कर नहीं पा रहा है, घर में जो माँ है उनका तो सम्मान नहीं कर पा रहा है, जो घर में नहीं कर पा रहा तो मेरा क्या सम्मान करे। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत हमको ये संकल्प वास्तविकता में लेनी चाहिए कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, माँ सबके अंतर्गत व्याप्त है, समाज में बेटियां सुरक्षित रहें, महिलाएं सुरक्षित रहें और हमको देख करके उनको सुरक्षित भावना महसूस हो तो ही वास्तविकता में देवी का पूजन का महत्व होगा। अगर वो नहीं किया जा सका, रावण की कुल देवी थी देवी निकुंभला, ध्यान रखिएगा रावण की कुल देवी थी देवी निकुंभला, लेकिन क्योंकि उसने सीता जी का हरण किया इसलिए देवी निकुंभला ने उसका सपोर्ट नहीं किया, रावण उनका यज्ञ करने के बाद भी मारा गया, बध को प्राप्त हुआ, मेघनाथ ने उनका यज्ञ किया फिर भी बध को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने एक स्त्री का हरण किया है। और फिर अगर स्त्री का हरण करके आप ये सोच सकते हैं कि मैं देवी की आराधना करूं, या स्त्री के प्रति दुराचार करके आप ये सोच सकते हैं कि मैं देवी की आराधना करूं और उसका फल प्राप्त हो जाए, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस परिस्थिति के अंतर्गत हमको वास्तविकता में आपका शायद ये बहुत सुंदर प्रश्न भी था और आपकी जो ये भावना थी बहुत अच्छी थी कि यदि समाज में हमें देवी की वास्तविक कृपा प्राप्त करनी है तो हमें समाज की देवियों का सम्मान निश्चित रूप से करना होगा, समाज में वास्तविकता में ये संकल्प लेना होगा कि जितने हमारे देश की बेटियां, जितनी समाज की बेटियां आगे बढ़ सके, सुरक्षित हो सकेंगी, उतना वास्तविकता में ये देश आगे बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं श्वेता जी, कि एक पुरुष जब पढ़ता है आगे बढ़ता है तो अपने घर को बेहतर बनाता है, एक लड़की यदि पढ़ती है और आगे बढ़ती है तो पूरे समाज को आगे बढ़ाती है, पूरा वंश वृद्धि करता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ही उत्तम आपने जवाब दिया है, बहुत ही प्यारा आपने जवाब दिया। मुझे लगता है कि हम सभी जो यहाँ पर महिलाएं हैं मौजूद सुनकर के, हम ऐसा ही चाहते हैं कि हमारा समाज इसी तरह का हो, हमारा परिवार ऐसा ही हो, सुरक्षित हो, हम बाहर अगर समाज में भी जाएं तो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें, यही भावना रहती है। वाणी जी, यहाँ पर चूंकि अब वक्त की भी कमी है तो आपसे बस अब जल्दी में एक आध सवाल आपसे पूछ लेना चाहूंगी कि यहाँ पर आखिर अष्टमी और नवमी वाली तिथि के दिन ऐसे कोई विशेष चीज जो मान लीजिए पूरे आप 9 दिनों में नहीं कर पाए हो और माँ से आप क्षमा मांग रहे हो और एक आखिरी बार विदाई से पहले आपको कर लेना चाहिए तो आप क्या करेंगे?
3: जी थैंक यू श्वेता जी। तो अष्टमी और नवमी तिथि के दिन अगर किसी भी कारणवश आप बहुत ज्यादा पूजा में टाइम नहीं इन्वेस्ट कर पाए हैं तो अष्टमी के दिन भी जो है आप पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं और लास्ट में आपको क्षमा याचना जरूर करनी है कि जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई है तो आप हमारी सिर्फ इंटेंशंस को देखना माँ और हमें माफी देना। दूसरी बात, आप नवमी के दिन जो है हवन भी कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ होता है और लास्ट में जो है जब दशहरा आएगा तो यहाँ पर जो भी चीजें आप अपनी लाइफ से रिलीज करना चाहते हो, जो लोग आपकी लाइफ में कुछ भी काम नहीं आते हैं और जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है तो उन क्वालिटीज को, उन लोगों को आप अपनी लाइफ से जो है आप उस दिन रिलीज भी कीजिए। और अष्टमी के दिन जो है आप थोड़ी देर आप मेडिटेशन करें, अपना चक्र बैलेंसिंग जो है वो जरूर करें, कन्या पूजन करें और एक एक कन्या से आप आशीर्वाद अगर आप लेते हैं, और जैसे कि अभी श्वेता जी आपने राज्य से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, उनका आंसर भी बहुत अच्छा था, तो विमेन सेफ्टी, अगर फीमेल्स चाहे वो छोटी कन्याएं हो चाहे वो बड़ी एज की लेडी हो, अगर हम सेफ फील करेंगे तभी हम लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, तभी हम पढ़ाई में ध्यान दे पाएंगे या तभी हम अपने घरों को अच्छा रख पाएंगे। तो इसीलिए विमेन सेफ्टी पर अगर हम सारे ही मिल के जो है समाज की सभी महिलाओं की सेफ्टी पर वर्क करेंगे तो ये हमारा देश बहुत ऊपर जाएगा और बहुत तरक्की करेगा।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है कि यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं वो सभी इस बात से सहमत होंगे। चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की थोड़ी कमी है, हालांकि माँ के बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम ही है और समय भी कम पड़ता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक वास्तुकला और लोक कला को सहेजने की दिशा में रटार शिक्षक विनय अवस्थी तन मन धन से लगे हुए हैं। विनय अवस्थी बांस और लकड़ी से हिमाचल के ऐतिहासिक मंदिरों और पारंपरिक स्लेट पोश मकानों की आकर्षक प्रतिकृतियां तैयार कर रहे हैं, जिसे देख लोग तारीफ करते नहीं थकते। उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में लगाई गई है, जिसे देख सैलानी भी मंत्रमुग्ध हो रहे हैं।
2: अयोध्या का श्री राम मंदिर, केदारनाथ महादेव मंदिर, आदि हिमानी चामुंडा मंदिर और कई प्रसिद्ध मंदिरों के रेप्लिका, ये हिमाचल की अनूठी बांस कला की देन है, जिसे साकार कर रहे हैं विनय अवस्थी। विनय अवस्थी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन लकड़ी और बांस से तैयार किए गए ये मॉडल इस बात के सबूत हैं उनके जुनून का। उनका मानना है कि बांस की अनूठी कला को दुनिया के सामने लाना है और हिमाचल की पारंपरिक वास्तुकला और लोक कला को सहेजने की जरूरत है। इसकी कोशिश वो कर रहे हैं।
3: ये आर्ट जो मैं 2019 से कर रहा हूँ, और मैडम मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी कलाकृतियां हैं उनको बनाने में 15 दिन से ज्यादा समय लगता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इनको बड़ी तन्मयता के साथ बनाऊं, ताकि देखने वाला जो है वो देख करके मतलब जो है वो उसको पसंद करे। लोकल बैम्बू यूज करता हूँ, उसको काट करके सुखा करके और अपने ही हाथों से सारा कुछ करता हूँ, और जब ये रेप्लिकास कोई अंतिम रूप दे लेती है तो मैं उसको ट्रीट करके फिर जो प्रदर्शनी में लगाता हूँ।
2: बांस और लकड़ी से हिमाचल के ऐतिहासिक मंदिरों और पारंपरिक सलेट पोशा मकानों की आकर्षक प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी आजकल धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में लगाई गई है।
4: काफी टेंपल्स के रेप्लिकास हैं, पूरे हिमाचल को इन्होंने कवर किया हुआ है। रिज शिमला का भी है इसमें, मुंडा टेंपल और ये रिज शिमला, रिज जो है शिमला पे उसका, और भीमाकाली टेंपल, चौरासी टेंपल, इन सब के रेप्लिकास इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं।
5: ये टेंपल्स के ये भी काफ़ी अच्छा है, इट्स वेरी गुड। सो ओवरऑल आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस नोइंग अबाउट योर एंशियंट हिस्ट्री एंड ऑल दोस थिंग्स, प्रीटी गुड, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा।
2: हिमाचल की पारंपरिक कला और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे प्रदर्शनी का आयोजन वक्त वक्त पर किया जाता है। प्रशासन की कोशिश भी रहती है कि ऐसी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान मिल सके, ताकि हिमाचल और देश के युवा इस पारंपरिक कला को नया आयाम दे सकें।
6: ऐसे लोग हैं जो ऐसी आर्ट फॉर्म्स को जीवित रख रहे हैं, आप इनके देखेंगे जब, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी ये दिखाएं कि स्लेट पोस्ट मकान, डबल मंजिल, सिंगल मंजिल, जो हमारा शिमला का चर्च है और जो इतने सारे हिमाचल के मंदिर हैं उनके रेप्लिका जिन्होंने बनाए हैं, बहुत बारीकी से काम किया है। और कहीं ना कहीं आजकल ऐसा हो रहा है कि ये प्रतिभा जो है, ऐसी आर्ट फॉर्म जो हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, तो अगर ऐसे में कोई ऐसे आर्टिस्ट सामने आते हैं तो हमें उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानना चाहिए।
2: विनय अवस्थी ऐसी प्रतिकृतियों को बनाने में बांस काटने से लेकर कलाकृतियों को अंतिम रूप देने तक का ज्यादातर काम खुद करते हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें इस काम का कुछ सहयोग मिले तो वो इस कला को देश और दुनिया तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: और अब बात विश्व सफेद छड़ी दिवस की। जी हाँ, ये दिन दृष्टि बाधित लोगों की आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और उनके अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। सफेद छड़ी केवल चलने का साधन नहीं है, बल्कि दृष्टि बाधित दिव्यांग लोगों के आजादी और पहचान का प्रतीक है। इस विश्व सफेद छड़ी दिवस के लिए जरिए लोगों को ये समझाया जाता है कि दृष्टि बाधित व्यक्ति भी समाज का एक स्वतंत्र और सक्षम हिस्सा है। इसी कड़ी में सक्षम रिसोर्स सेंटर ने नोएडा में जागरूकता मार्च का आयोजन किया। मेरी छड़ी मेरा आत्मविश्वास मेरी स्वतंत्रता की थीम पर यह जागरूकता मार्च निकाली गई, जिसमें सक्षम के कई दृष्टि बाधित बच्चों ने अपने शिक्षकों के साथ श्वेत छड़ियों का उपयोग करते हुए उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मार्च में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बीएड विशेष शिक्षा के इंटर्न छात्र छात्राओं ने भी सहभागिता की। सक्षम की प्राचार्य श्रीमती ब्रिज बर्तवाल और एमएसआई के निदेशक श्रीमती बिपाशा सेन गुप्ता ने मार्च का नेतृत्व किया और सभी सहभागियों का उत्साहवर्धन किया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: नवरात्रि में कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, नवरात्रि में क्या होगा देवी का पूजा विधान और कैसे होगा वैवाहिक समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा, चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है और दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। देखिए, चाय पर चर्चा में बहुत कुछ आपको हम बताने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली में अक्टूबर की बारिश का भी अंदाज क्या खूब है। कल तक गर्मी का राज था और आज ठंड का आगाज है, इसलिए शाम में थोड़ा शाम है क्योंकि थोड़ा यहाँ सर्द, तो चाय पर चर्चा तो बनती है, जाहिर सी बात है क्योंकि शाम का समय है, सुबह से ही यहाँ बारिश हो रही है, तो चाय पर चर्चा हम ऐसे भी करेंगे। इसलिए सबसे पहले आज बर्फीले पहाड़ों से लेकर मैदानों में जो ये बदलता हुआ मौसम है ना, उसके अंदाजे बयां हम आपको बयां करेंगे।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए, मौसम जो है बड़ा खुशनुमा हो गया है, तो उसकी बात तो करनी ही पड़ेगी। और आपको बता दें कि सर्द मौसम के साथ ही त्योहारी मौसम भी रफ्तार पकड़ रहा है। नवरात्रि पूजन के दौरान शक्ति उपासना के रूप पारंपरिक गरबा डांडिया और दुर्गा पूजा पंडालों की एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो दक्षिण भारत में भी शक्ति उत्सव और दशहरा उत्सव की भव्यता आपको हम दिखाने वाले हैं, मजा बने रही हमारे साथ।
3: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। ले चलेंगे आपको फिल्मी दुनिया में भी, जहां फिलहाल तो सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 को लेकर जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। खासतौर से साउथ इंडिया में थिएटर्स के बाहर जश्न और नाचते गाते फैंस को सुपरस्टार के लिए प्यार दिखाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक की बड़ी खबरें।
5: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
3: नवरात्र के पावन अवसर पर महाराष्ट्र की भीड़ में लगा श्रद्धालुओं का तांता। बेलगांव के रेणुका माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हजारों भक्त। शारदीय नवरात्र के मौके पर देशभर में गरबा डांडिया की धूम। चित्रकूट के सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट परिसर में भव्य आयोजन, समारोह में हजारों लोग कर रहे शिरकत। पहाड़ों पर भी मौसम मेहरबान, बाबा केदारनाथ धाम में शुरू हुआ स्नोफॉल। हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक बिछी बर्फ की सफेद चादर। लद्दाख को मिलेगी विकास की सौगात, प्रधानमंत्री ने करीब 3,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। ले एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी तोहफा। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से गिरा पारा, तेज हवाओं के साथ बदला मौसम का मिजाज, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट।

0: तो देखिए बुलेटिन की शुरुआत तो आज मौसम के बदले बदले मिजाज से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए बारिश की बूंदे, ठंडी हवाएं और चाय का प्याला,
1: चाय।
0: और क्या चाहिए आपको शाम को। और मुझे लगता है कि आज जो दिल्ली एनसीआर वाले हैं ना, वो खुश हो गए होंगे, क्योंकि बड़े टाइम से हम दिखा रहे हैं कि बर्फबारी शुरू हो गई है, पहाड़ी इलाकों में पर्यटन को नई रफ्तार मिल गई है, लेकिन दिल्ली एनसीआर वालों को लग रहा था कि यहाँ पर कब मौसम करवट लेगा, तो फाइनली करवट ले ली है मौसम ने। और अब लग रहा है, अगर ये हमारे मैनेजर्स ना सुन रहे हो, कि छुट्टी लेने का मन कर रहा है इस मौसम में।
1: देखिए हम तो मतलब मैं तो यही कहूंगी कि अगर हम न्यूज की दुनिया में नहीं होते तो शायद हमें पता नहीं होता कि एकदम से ऐसे इस समय यानी अक्टूबर में मौसम बदलेगा, क्योंकि यूजुअली इस समय ना गर्मी ही रहती है और हम इंतजार करते रहते हैं कि भाई हल्की वो ठंड जो पहले हुआ करती थी जब हम छोटे थे वो कब होगी। लेकिन चूंकि हमें पता है, मौसम विभाग ने प्रिडिक्ट भी किया था, उसी हिसाब से मौसम बदला। लेकिन अभी मैं ये कहूं कि एकदम से जो मौसम का ये मिजाज बदला है ना, बहुत फ्रेश, बहुत अच्छा एंड बहुत ही वेलकमिंग मौसम है, बहुत बहुत ही अच्छा मौसम है। सुबह उठते ही बारिश की हल्की हल्की बूंदें और उसके साथ गर्मा गर्म चाय, घर पर भी और यहाँ पर भी।
2: मैं तो सुबह से 3-4 बार चाय पी चुकी हूँ, क्योंकि सुबह से ही मौसम इतना अच्छा हो रहा है। जब आप घर से मैं निकली थी तभी भी बारिश हो रही थी, मौसम तब बन रहा था कि बारिश होने वाली है, होने वाली
1: बादल,
2: और जब तक मैं ऑफिस तक पहुंचती हूँ तब तक बारिश हो जाती है, अभी भी हो रही है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब ऐसा लगेगा थोड़ी थोड़ी ठंड आने वाली है।
0: बिल्कुल, तो देखिए ना बड़ा अच्छा अच्छा सा मौसम हो गया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हल्की हल्की फुहारे और हाथों में चाय की प्याली, इससे अलावा और क्या चाहिए दिल्ली एनसीआर वालों को। तो देखिए दिल्ली एनसीआर का मौसम जो है, कम से कम आज जो है दिल को सुकून जरूर दे रहा है। अक्टूबर की इस बारिश ने मौसम को थोड़ा सर्द जरूर बना दिया है, हालांकि अब समय वैसे सर्दी का होने ही वाला है शुरू, लेकिन दिल्ली और एनसीआर में सर्दी का जो पैटर्न है बीते कुछ सालों में काफी ज्यादा बदल गया है, जिसके बारे में अभी हम बात भी कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, देखिए सर्दी का मौसम कम से कम दिल्ली और आसपास दिसंबर तक ही शुरू होता है। ऐसे में मौसम में ये बदलाव आखिर अचानक क्यों आया है, क्या इसके पीछे वजह है और क्यों आगे कब तक ऐसा मौसम देखने वाला है, क्या क्या बदलाव होंगे, चलिए जानते हैं।

0: हवाओं ने रुख बदला और देखते ही देखते पूरे दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली। दिन की शुरुआत भले ही खिली धूप के साथ हुई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद आसमान में बादलों ने डेरा जमा लिया। दिल्ली ही नहीं, आसपास के तमाम इलाकों में तेज हवाएं चलने लगी। कुछ ही देर बाद बारिश की बूंदों ने मौसम को और सुहाना बना दिया। थोड़ी देर में आंधी के साथ कई इलाकों में बारिश की शुरुआत हो गई और फिर देखते ही देखते पूरे दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया।
1: दोस्तों, ये है कि मौसम ठंडा हो जाएगा ज्यादा, जैसी प्रकृति हो रही है वैसी भगवान, सब एक जैसे हो गए।
2: मैं आपका ये लोनी चौहान पट्टी से आ रहा था और मयूर विहार मुझे फेस वन जाना था और ये भयंकर बारिश और तूफान आ रहा है, जिसके कारण मुझे यहाँ एक पंडित जी मेडिकल स्टोर पर रुकना पड़ रहा है। ये गीता कॉलोनी की जगह है और बारिश जो है बहुत भयानक हो रही है, यहाँ पे तूफान भी है।
0: मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में भी मौसम की आंख मिचौली जारी रहेगी। दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दिन के साथ साथ रात में भी बारिश और आंधी तूफान आ सकते हैं। मौसम में ये बदलाव दरअसल उत्तरी भारत में बने एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान के साथ साथ ओले गिरने की भी संभावना है।
3: बीच अक्टूबर में मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। दिल्ली एनसीआर में आज दोपहर से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है और बारिश से अच्छी बात यह हुई कि जो दिल्ली एनसीआर का आसमान आपको हमेशा पोल्यूटेड दिखाई पड़ता है, वो फिलहाल स्काईलाइन पूरी तरह से साफ दिखाई देगी। आप दूर दूर तक साफ देख पा रहे हैं, इतनी बारिश दिल्ली एनसीआर में फिलहाल हो चुकी है। अक्षरधाम पे हम मौजूद हैं और मौसम विभाग ने ये घोषणा की है और कहा है कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में, चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो और हरियाणा के कई हिस्से में तेज बारिश हो सकती है। इस बारिश के बीच कई जगह ओला भी गिर सकते हैं और कई जगह बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने यह साफ किया है कि इस बीच तेज हवाएं भी रफ्तार पकड़ेंगी और अगर ये हवाएं बारिश के साथ चलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि तापमान में किस तरह से गिरावट दर्ज की जाएगी और ये कह सकते हैं कि अगर ये बारिश लगातार होती रही तो दिल्ली काफी हद तक ठंड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी।
0: अक्टूबर के महीने में इस बारिश के साथ चल रही ठंड हवाएं सर्द मौसम की आहट भी देने लगी हैं। लोगों को लगने लगा है कि इस बार अक्टूबर के अंत तक ही गुलाबी ठंड दस्तक देने लगेगी। मौसम विभाग का भी अनुमान है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का न्यूनतम तापमान सामान्य से कम ही रहेगा। दिल्ली एनसीआर में अचानक आई बारिश का असर शहर के ट्रैफिक के साथ साथ हाईवे पर भी देखने को मिला। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलवर के पास घने बादलों की वजह से दिन में ही रात जैसा नजारा हो गया। यहां तेज बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। बारिश में विजिबिलिटी कम होने की वजह से तमाम गाड़ियां एक्सप्रेसवे पर साइड में खड़ी हो गईं। बारिश थमने के बाद ही इन गाड़ियों ने आगे का सफर शुरू किया। अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो दिल्ली एनसीआर में आपने देखा कि किस तरह से गाड़ियों की रफ्तार तक रुक गई, मतलब ब्रेक लगाना पड़ गया लोगों को, क्योंकि सुबह से ही यहां पर बारिश हो रही थी और इसके पीछे की वजह है बहुत पहले से लगभग स्नोफॉल पहाड़ों पर शुरू हो गया था। नहीं, हम खबरें दिखा रहे थे।
5: हाँ, बहुत पहले से हम इस बारे में बात कर रहे हैं और आपने भी बोला कि नहीं समझ आ रहा है, अल नीनो बोल रहे हैं, कुछ लोग ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं कि इस बार जो मौसम है वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल सा नजर आ रहा है। यानी बेमौसम बरसात होना, जब मानसून का मौसम है तो मानसून के बादल नजर ना आना और फिर ऐसा सा मौसम होना कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है ऐसे समय में जब होती नहीं है।
4: एग्जैक्टली, इस समय देखिए भले ही हमारे लिए या फिर सो कॉल्ड जो पर्यटक हैं, बैकपैकर्स, उनके लिए बड़ा अच्छा मौसम हो गया। जैसे आपका हो गया डिसाइड कहाँ जा रही है?
6: नहीं, ये नहीं डिसाइड हुआ है कि जगह कौन से जा रहे, डिपेंड करता है कहाँ पर स्नोफॉल ज्यादा मिलेगी।
4: अच्छा, इस बार तो भाई इनकी प्लानिंग है कि जहाँ स्नोफॉल होगा वहीं जाएंगे।
5: त्रिउंड मत जाना,
6: गुड न्यूज आ रही है कि स्नोफॉल हो रही है, मौसम बदल रहा है, क्योंकि अभी तो टाइम आया है ना घूमने फिरने का। इससे पहले तो गर्मियां थी, गर्मी में कुछ वहां पर भी हिल स्टेशन पे भी ज्यादा अच्छा कुछ लगता नहीं है इतना, थोड़ा बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत चेंज मिलता है, लेकिन अब जरूर मिलने वाला है क्योंकि बर्फबारी शुरू हो गई है।
4: एकदम बर्फबारी शुरू हो गई है। तो जैसा हमने आपको बताया कि मैदानी राज्यों में बारिश का जो ये खुशनुमा मौसम आपको देखने को मिल रहा है, पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद से ही बना हुआ है, और ऐसे में जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाके तो फिलहाल सीजन की पहली बर्फबारी से सफेद नजर आ रहे हैं।
5: बिल्कुल, देखिए जहां पर सोनमर्ग, गुलमर्ग, पंजाल समेत तमाम ऊंची चोटियों पर स्नोफॉल जो है वो जबरदस्त पड़ रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों को भी सीजन की पहली बर्फबारी की सौगात जो है वो मिल चुकी है। और मौसम का ये जो मिजाज है, इस बार घाटी में जोरदार सर्दी पड़ने के आसार जता रहा है।

0: धरती की जन्नत कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर सीजन की पहली बर्फबारी से ही सफेदी के सागर में समा गया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत तमाम ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, तो मैदानी इलाकों में भी सीजन की पहली बर्फबारी की सौगात मिल चुकी है। डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इसके साथ ही बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी और पीर पंजाल रेंज की प्रसिद्ध पीर की गली भी बर्फ की चादर ओढ़ चुकी है। उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी से पूरा पहाड़ी इलाका सफेद नजर आ रहा है। मैदानी क्षेत्र में करीब 2 इंच और ऊंचाई वाले इलाकों में 4 से 5 इंच बर्फ दर्ज की गई है। पीर पंजाल रेंज में सीजन की पहली बर्फबारी से ही श्रीनगर को पुंछ से मिलाने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फ से पट गई। आलम यह हुआ कि रोड को कुछ समय के लिए आवाजाही के लिए बंद करना पड़ गया, लेकिन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने तत्काल कमान संभाली और सड़कों पर बिछी बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया। कुछ घंटों के बाद आखिरकार सड़क को फिर से खोल दिया गया ताकि पुंछ और कश्मीर के बीच यातायात सुचारू रूप से चलती रहे।
1: दक्षिण कश्मीर शोपियां के पीर गली इलाके में अभी हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बर्फ ही बर्फ जो है इसमें पड़ी हुई है कल शाम से। दरअसल आपको बता दें कि ये एक बालाई इलाका माना जाता है और साथ में ही इसके जो है एक हिस्टोरिकल मगर रोड जिसको कहा जाता है वो चल रहा है। आपको बता दें कि BRO ने एहतियातन उस रोड को सुबह सवेरे कुछ जो है पल के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि पीर की गली या दर्जन इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी और जिसके कारण जो है रोड को एहतियाती तौर पर बंद करना पड़ा। लेकिन अभी जो है स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन ओवर हो चुका है, यानी बर्फ जो है इस रोड पे हटाई गई है और गाड़ियों की जो है आमद रफ्त इस पे फिर से चलने लगी। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे गुरेज हो, कुपवारा हो या गुलमर्ग हो, गुलमर्ग के साथ साथ जो है पीर गली इलाकों में भी जो है बर्फबारी हो रही है। लगभग कम से कम 5 से 6 इंच बर्फ एक्यूमुलेट की जा चुकी है।
0: बारामूला जिले में मौजूद मशहूर हिल स्टेशन गुलमर्ग का सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक हिल स्टेशन है अफरवाट। आमतौर पर अफरवाट में ऐसा बर्फीला नजारा नवंबर के आखिरी दिनों में दिखाई देता है। सर्दियों में ये इलाका दुनिया भर के स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है, लेकिन कुदरत की मेहरबानी से ये सौगात पर्यटकों को अभी मिल गई है।
2: बहुत अमेजिंग, सबको आना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगी, इंडिया में, वर्ल्ड में सबको आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। इतनी स्नो देखी, लेकिन ये अमेजिंग प्लेस, वी आर सो लकी दैट वी केम टुडे।
3: अच्छा मजा आ रहा है, दिस मतलब सबको आना चाहिए यहाँ पे घूमने को।
4: इतनी बर्फ कभी नहीं देखी थी, आज पहली बार देखी है। काफी कम स्नोफॉल देखी थी, बर्फ होते हुए देखी थी।
0: जम्मू कश्मीर में मौसम का ये बदलाव महज चंद दिनों में ही नजर आया है। अक्टूबर की शुरुआत में मौसम कुछ हद तक गर्म था, लेकिन अक्टूबर का महीना आधा खत्म होते होते घाटी सर्दी के आगोश में लिपटने लगी है। कश्मीर, चेनाब घाटी और पीर पंजाल इलाके में दिन का तापमान भी काफी हद तक गिरने लगा है।
5: जहाँ तक जम्मू का डिवीजन की बात है, वहाँ इंटेंसिटी कम होगी, एरिया भी कम होगा इससे, और ये 2 दिन का स्पेल है। इसके बाद 16 तारीख में आइसोलेटेड प्लेसेस पर कहीं कहीं बहुत कम बारिश हो सकती है, और उसके बाद तो फिर आ गए आने वाले टाइम में 24 तारीख तक करीब करीब ड्राई ही वेदर है।
0: मौसम विभाग के मुताबिक अभी 1-2 दिन और बारिश और बर्फबारी का दौर चलेगा, उसके बाद 1 हफ्ते तक बारिश और बर्फबारी दोनों से राहत मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से भले ही थोड़े दिनों की राहत मिले, लेकिन मौसम का ये मिजाज इस बात का संकेत दे रहा है कि इस बार सर्दी जल्दी और जोरदार पड़ने के आसार हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और मीर फरीद के साथ शोपियां से एजाज डार, गुड न्यूज टुडे।
6: तो देखिए, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें तो आपने देख ही ली, वहीं बर्फबारी और बारिश का सिलसिला हिमाचल प्रदेश में भी जारी है। यहां लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर जैसे ऊंचे इलाकों में बर्फबारी ने तापमान गिरा दिया है, तो वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश ने मौसम सर्द बना दिया है।
7: बिल्कुल, आपको बता दें यही नहीं, उत्तराखंड में भी ऊंचे इलाकों में पड़ रही बर्फबारी नीचे के क्षेत्रों को सर्दी की आहट का एहसास दे रही है। हालांकि इस वक्त चारधाम यात्रा भी जारी है, बावजूद इसके केदारनाथ का सर्द होता मौसम श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई खास असर नहीं डाल पा रहा।

0: पहाड़ों की फिजा अब सर्द हो चली है। कश्मीर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हौले हौले मौसम बदल रहा है। खासकर बर्फबारी से ऊंचे पहाड़ सफेद हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो बर्फबारी के आगोश में समा रहा है। यहाँ सुबह सवेरे जब केलांग, दारचा, जिस्पा और सिसु जैसे इलाकों में बर्फ के फाहे गिरने शुरू हुए तो दिन होते होते इन तमाम इलाकों में बर्फ की सफेद चादर से बिछी नजर आई। अक्टूबर का आधा महीना बीत गया है, ऐसे में जिस तरह से पारा लगातार गिर रहा है उससे आने वाले दिनों में लाहौल स्पीति में सर्द मौसम का अंदाजा लगाया जा सकता है। हिमाचल के चंबा की पांगी घाटी में भी मौसम ने अचानक करवट बदली, जिसके चलते घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। यहाँ के मशहूर साच पास और सुराल घाटी में इतनी बर्फबारी हुई कि पहाड़ों ने सफेद चादर ही ओढ़ ली है। लोगों को अक्टूबर के महीने में ही दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अचानक आया मौसमी बदलाव वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से हुआ, जिससे शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति जैसी कई और ऊंची जगहों पर कहीं बारिश तो कहीं भारी बर्फबारी हुई। जिससे शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति जैसी कई और जगहों पर कहीं बारिश तो कहीं भारी बर्फबारी हुई।
1: देखिए पहले ये जो WD सक्रिय था जो एडजॉइनिंग जम्मू के आसपास अभी परसिस्ट कर रहा है, ये वेदर एक्टिविटी और जो स्नोफॉल है इसके प्रभाव से हुई है। फिर कल 16 अक्टूबर से वेदर में काफी रिडक्शन आएगा। 16 और 17 अक्टूबर को केवल जो मध्य डिस्ट्रिक्ट जिसमें मुख्यतः कांगड़ा का क्षेत्र है तथा कुल्लू और मंडी के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पे क्लाउडिंग के साथ एक दो स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है।
0: केवल हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के ऊंचे क्षेत्रों में भी बर्फबारी रह कर हो रही है। खासकर चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में स्नोफॉल की तस्वीरें पिछले दिनों यहां देखने को भी मिली। अब ये ताजा तस्वीरें केदारनाथ धाम से आई हैं, जहां चारधाम यात्रा के बीच बाबा के इस धाम में भी मौसम सर्द है। बावजूद इसके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी है। फिलहाल तो बर्फ से ढके हिमाचल और उत्तराखंड के ये ऊंचे पहाड़ और यहाँ का बदलता मौसम खुशनुमा जरूर है, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी बरतने का संकेत जरूर दे रहा है। शिमला से विकास शर्मा, चंबा से विशाल आनंद, लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा और केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए हिमाचल में बर्फबारी से मौसम तो बदल गया है, लेकिन ये बर्फबारी कई जगहों पर चुनौतियां लेकर भी आई है। लाहौल स्पीति में आज सुबह से ही हो रही बर्फबारी के चलते चंद्र घाटी के पास करीब 100 वाहन जो है बर्फ में फंस गए थे। इन वाहनों में पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी शामिल थे। सड़क पर बर्फ जमने से फिसलन बढ़ गई, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही काफी ज्यादा प्रभावित हुई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फंसे वाहनों को निकालने का काम जो है वो शुरू किया। तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं किस तरीके से जो वाहन है वो तेज बर्फबारी में फंस गए।
3: बिल्कुल, देखिए काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने सभी वाहनों को बर्फ से बाहर निकाल लिया। बर्फबारी के बीच सड़क पर फिसलन को देखते हुए वाहनों को सावधानी से निकाला गया। इस दौरान पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। वहीं हिमाचल में मौसम विभाग ने पहले ही खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया था। हालांकि इतनी भारी बर्फबारी होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। चलिए अब बात कर लेते हैं नवरात्र के उत्सव की।

0: चलिए अब बात कर लेते हैं दुर्गा पूजा की, और दुर्गा पूजा यानी कि दुर्गा पूजा के पंडालों की, खास करके जो तस्वीरें आ रही हैं ना लगातार, हालांकि ये चर्चा हम कुछ दिनों से कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो निकल कर तस्वीरें आ रही, क्योंकि समय देखिए अब आ गया, और मैंने कहा ना वेस्ट बंगाल में खास करके षष्ठी से पूजा की शुरुआत होती है, तो आप कंप्लीशन लगभग जो है ना वो लगभग कंप्लीशन आपको पंडालों का भी दिख रहा है, एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल देखने को मिल रहे हैं, लाखों में तैयार हो रहे हैं, और तमाम कारीगर अभी भी लास्ट मिनट का जो उनका काम है वो टचअप कर रहे हैं, लेकिन अमेजिंग,
1: क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है अब ना, ये भी देखा जाता है कि किसका पंडाल कितना खूबसूरत है, और दुर्गा माँ का पंडाल इतने भव्य तरीके से बनाया जा रहा है, और सिर्फ बंगाल में नहीं है, अब तो गुजरात में, दिल्ली में, नोएडा में, इतनी जगह पर पंडाल बन रहे हैं, क्योंकि पंडाल हॉपिंग उसमें कोई एज बैरियर नहीं है, सब लोग जाते हैं, सबको पसंद है कि वो लोग अपनी फैमिली के साथ जाएं, देखें वहां पर, और अब तो रामलीला भी शुरू हो चुकी है, तो सारी चीजें एक साथ इतनी आ गई, तो पंडालों का भव्य होना तो लोगों को आकर्षित कर
0: बिल्कुल है। और आप लोगों को ये भी बता दें, ये जो दीपिका बता रही थी कि अब ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल में ही आपको देखने को मिलेगा, इवन दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, नोएडा की हम बात करें, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर पूरे रोड में रंगोली बनाई गई है, बहुत बड़ी रंगोली।
2: अच्छा, ये कौन सी साइड की बात आप कर रहे हैं, एक्सटेंशन नोएडा एक्सटेंशन,
0: मैं आपको बताऊंगी उस सेक्टर
2: के बारे में बात करते
0: हैं, 137 में, वैसे मैं आपको बता दूं
2: रंगोली बनी है,
0: बिल्कुल पूरे रोड पे रंगोली बनी हुई है, और वो अमेजिंग है, ब्लॉगर्स वहां पर जा रहे हैं, पहले से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और इतनी अद्भुत है ना, मतलब वो अमेजिंग है, मतलब जो यंगस्टर्स हैं वो भी अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं उस चीज से, और वो जा जाकर वहां पर फोटोग्राफी हो रही है, तो आपको बता दें कि रौनक जो है इस वक्त दुर्गा पूजा की वो देखते ही बन रही है, पंडालों की रौनक। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के पंडाल अपनी अनूठी सजावट और खास थीम के चलते आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, कहीं शाही महलों की झलक देखने को मिल रही है, तो कहीं देश प्रेम की भावना,
2: बिल्कुल, यानी पंडालों के जरिए अलग अलग तरीके के संदेश भी देने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है, और आपको बता दें कि राधा कृष्ण के प्रेम से लेकर आदिशक्ति की आराधना तक हर पंडाल में कुछ नया और कुछ अलग नजर आ रहा है, यानी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी की जो झलक है वो आस्था और भक्ति के साथ साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और यही संगम इस दुर्गोत्सव को और भी ज्यादा खास बना रहा है।

0: नवरात्रि में वैसे तो दुर्गा पूजा की रौनक देश भर में अलग-अलग रहती है, लेकिन यही पूजा शक्ति उपासना के रूप में बंगाल की आत्मा में मानो बसती है। ऐसे में कोलकाता भी इन दिनों बदला बदला नजर आ रहा है। नवरात्रि में कोलकाता चमक रहा है। शहर के चिंडीघाटा और गरियाहाट फ्लाईओवर समेत ज्यादातर सड़कें लाल, नीले, पीले, नारंगी, गुलाबी और हरे रंगों की आभा में दमक रहे हैं। नीले सफेद किनारों से लेकर चमकीली सड़कों तक सूरत बदली हुई है। दरअसल दुर्गा पूजा के दौरान शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए राज्य सरकार ने ये कैंपेन शुरू किया है, जो दुर्गा पूजा की रौनक को बढ़ाने में अपनी खास भूमिका अदा कर रहा है।
1: फ्लाईओवर से लेकर चिंगरीघाटा फ्लाईओवर तक, यहाँ तक बड़े क्रॉसिंग में भी जो सड़क है उन्हें अलग अलग तरीकों से सजाया जा रहा है। म्यूनिसिपल बॉडीज का ये कहना है कि दुर्गा पूजा से पहले ये सरकार के तरफ से कोलकाता वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा है।
0: पार्क सर्कस के सात रास्तों वाले चौराहे और गरियाहाट फ्लाईओवर के पास पारंपरिक बंगाली अल्पना भी बनाई गई है। हालांकि ये इंद्रधनुषी रंग यहाँ परमानेंट लगाए नहीं गए हैं, लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान शहर की इंद्रधनुषी आभा कोलकाता वासी को पसंद आ रही है।
2: अच्छा लग रहा है, मैंने रंगीन दिखा रहा है चारों तरफ, यही है।
3: अच्छा है, रंग अच्छा क्या है।
4: और बाकी जो जगहों पे कैसा दुर्गा पूजा से पहले कैसा लग रहा है?
3: हाँ, अच्छा ही लग रहा है।
0: दरअसल ये चिंडीघाटा और गरियाहाट जैसे फ्लाईओवर्स कोलकाता शहर के सबसे बिजी रास्ते हैं और रोजाना ही हजारों वाहन इनसे होकर गुजरते हैं। सरकार मानती है कि सड़कों को रंग बिरंगा करने की पहल दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता की सुंदरता को नया आयाम दे रही है और लोगों को भी दुर्गोत्सव का खास अनुभव मिलेगा। वहीं कोलकाता शहर में दुर्गा पंडालों की आभा के तो कहने ही क्या, एक से बढ़कर एक थीम बेस्ड पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसे में सुरुचि संघ ने भी शहर में इस बार की दुर्गा पूजा थीम रखी उत्स। पंडाल में देश के महान नेता और विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और विरासत को बखूबी दर्शाया गया है।
5: दुर्गा पूजा उसका शुभारंभ हो चुका है और इस समय हम पहुंच चुके हैं शहर कलकत्ता के एक नामी मंडप जो है सुरुचि संघ है वहाँ पर। इस साल सुरुचि संघ का 73वां साल है, 73 ईयर्स, और इस साल उन लोगों का ये जो मंडप है, ये मंडप का थीम है उच्च। ये उच्च है कि जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि भाजपा का प्रतिष्ठाता भी है, उनके ऊपर ये पूरा मंडप बनाया गया है और कैसे देश स्वाधीन होने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उनका जो अत्य बलिदान था उसको याद करके ये पूरा मंडप सजाया गया है।
0: इस दुर्गा पंडाल को देखने के लिए लोग भी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। जाहिर है कोलकाता वासी इस पंडाल के माध्यम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में काफी जानकारी हासिल कर रहे हैं।
6: इतना मैसेज नहीं था, लेकिन इस पंडाल में आकर बहुत सारा मैसेज मिल गया है, इसलिए बहुत अच्छा लगा। इतना सारा काम किया है बंगाल के लिए, ये तो हमको बंगाली लोग होकर भी हमको मालूम नहीं था, लेकिन इस बार मालूम हो गया, बहुत अच्छा लगा।
7: बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो यहाँ पर नहीं रहती हूँ बट मेरा इधर मामा घर है तो मैं आई हूँ इधर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा पहला टाइम है पूजा के टाइम में, पहली बार कोलकाता घूमने आई हूँ पूजा के टाइम, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट पैंडल है ये।
0: वही पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी दुर्गा पूजा की रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ सेंट्रल कॉलोनी में बनाए गए दुर्गा पंडाल की इस बार गोल्डन थीम रखी गई है। पंडाल का 64वां साल है, जिसमें माँ दुर्गा की प्रतिमा पर 100 किलो सोने के आभूषण चढ़ाए गए हैं। माँ दुर्गा के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन करने के लिए काफी संख्या में आस्थावान पहुँच भी रहे हैं। तो नवरात्रि में षष्ठी से पहले दुर्गा पूजा की कुछ ऐसी ही छटा छोटे बड़े पंडालों में बिखरी हुई है और इस बीच श्रद्धालुओं की भक्ति, आस्था और उल्लास को दर्शाती ये खूबसूरत तस्वीरें ही इस त्योहार की रौनक को दर्शाने के लिए काफी हैं। कोलकाता से राही हल्दर और तपस सिंह गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: तो चलिए इसी के साथ आपको लेकर चलते हैं कोलकाता के ठाकुरिया शहीद नगर दुर्गा पूजा पंडाल में, जिसे महामिलन की थीम पर बनाया गया है। महामिलन थीम को दो अलग अलग लेकिन बेहद खूबसूरत पहलुओं का एक अनूठा संगम है।
9: आपको बता दें, ये पंडाल एक तरफ शरणार्थियों के ऐतिहासिक संघर्ष और उनकी एकता को दर्शाता है तो दूसरी तरफ राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक मिलन से प्रेरित है।
10: भव्य और दिव्य माँ दुर्गा की प्रतिमा है, उतना ही खूबसूरत और कलात्मक है माँ दुर्गा का ये पंडाल, जिसकी भव्य लाइटिंग और शानदार वास्तुकला श्रद्धालुओं को खूब रास आ रही है। ये पंडाल एक तरफ शरणार्थियों के ऐतिहासिक संघर्ष और उनकी एकता को दर्शाता है तो दूसरी ओर राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक मिलन से प्रेरित है। कोलकाता के डकोरिया शहीद नगर सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति का ये पंडाल जहां मौजूद है वो मूल रूप से भारत के विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी द्वारा बसाई गई कॉलोनी है। इस दुर्गा पंडाल की थीम महामिलन शरणार्थियों के इतिहास और उनके संघर्षों को समर्पित की गई है। पंडाल के जरिए दिखाया गया है कि कैसे लोग अपना सब कुछ पीछे छोड़कर इस अनजान जगह पर आए और आपसी सहयोग और सद्भाव के साथ सामाजिक एकता स्थापित की।
11: रिफ्यूजी कॉलोनी है, यहाँ पे एक टाइम में ईस्ट पाकिस्तान से सब कुछ छोड़ के सब लोग जा गए थे। हम लोग का जो पूर्व पुरुष लोग थे, जो एंसेस्टर थे, जब यहाँ पे आए थे उन लोग ऐसे ही ये छन का, ये हुगला पत्ता का, ये बांस का, बम्बू का देकर उन लोग घर बनाते थे। अभी वो लाइफ वॉर में जीत गए हैं, जीत के ये सबका बड़ा बड़ा आपका मकान हो गया है। लेकिन हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है उन लोग को हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग का क्या जूता क्या था।
10: इस थीम को जीवंत करने के लिए पारंपरिक बंगाली शिल्प और आधुनिक सामग्री का बेहतरीन फ्यूजन इस्तेमाल किया गया है। पंडाल की दीवारें और सजावट विभाजन के दौर की यादों और आध्यात्मिक प्रतीकों को खूबसूरती से दर्शाती है। सामाजिक सद्भाव के साथ साथ महामिलन थीम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अलौकिक प्रेम से भी प्रेरित है। यह उनके अटूट प्रेम, भक्ति और मिलन के जरिए दुनिया को प्रेम, करुणा और सौहार्द का संदेश देती है। साथ ही पूरी सृष्टि की रक्षा करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप से भी प्रेरित है।
11: महामिलन अब श्री रामचंद्र और श्री राम कृष्ण के बिना नहीं होता है। श्री रामचंद्र जो अकल बोधन किए थे, तब जो सीता माता को उद्धार करने के लिए गए थे, तो उनको महामिलन करके कारबिलरी से लेके बानरसेना तक, मनुष्य से लेके देवता तक पूरा प्रकृति उनका साथ दिया था, महामिलन घटवाया था। और सिर्फ सेम त्रेता युग में हम लोग का श्री कृष्ण एक हाथ में चक्र और एक हाथ में बांसुरी बजा के श्री राधा जी को लेके जो राश किए थे, जो संहार करके जो राश लीला में शामिल हुए थे, उसमें पूरा प्रकृति, पूरा जल, पूरा वायु, पूरा सब कुछ, गाय, भैर, बक्षी सब एक साथ में शामिल होके, मनुष्य सब एक साथ में शामिल होके जो महामिलन करके शांति का वार्ता दिए थे, वही हम लोग डिपिक्ट किए हैं।
10: पंडाल के केंद्र में विराजमान माँ दुर्गा की प्रतिमा को पूरी तरह से पारंपरिक साबे के रूप में तैयार किया गया है, जिसे बंगाली समुदाय पीढ़ियों से देखता और पूछता आ रहा है। ये परंपरा और आधुनिक संदेश के सुंदर संतुलन को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
12: तो देखिए, अलग अलग तरीके के जो पंडाल हैं सच करके पूरी तरीके से तैयार हैं, और ऐसे में अब आपको कुछ और थीम्ड पंडाल दिखाते हैं जिसके बारे में अभी हम जिक्र भी कर रहे थे और जिनकी खूब चर्चा भी हो रही है। इनमें पश्चिम बर्दवान के दुर्गापुर में बना निर्माण पंडाल बहुत ज्यादा खास है। दो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप इसके साथ ये भी देख सकते हैं कि इस बार जो क्रिएटिविटी है यानी रचनात्मकता का किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस दुर्गा पंडाल को विधाननगर स्थित क्लब सेंटोस ने थीम बेस्ड बनाया है, जिसको जीवंत रूप देने के लिए इसमें लोहे के स्ट्रक्चर और फाइबर का खास तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही लाइव परफॉर्मेंस, मुखौटा अभिनय और प्रोजेक्टर के जरिए शैडो वर्क को भी इसमें शामिल किया गया है, जो इसे और भी ज्यादा खास बनाता है। आयोजकों के मुताबिक इन सभी माध्यमों के जरिए दर्शकों के सामने निर्वाण और मुक्ति की सोच को पेश करने की कोशिश की गई है।
8: और वहीं देखिए, झारखंड के रांची में भी बंगाल की ही तर्ज पर दुर्गा पूजा के भव्य और थीम बेस्ड पंडाल बनाए जाते हैं। ये तस्वीर यहाँ के अल्बर्ट एका चौक की है, जहाँ इस बार द्वारका नगरी का रेप्लिका हुबहू उतारा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री पीएम मोदी को भी सागर में पवित्र डुबकी लगाते हुए दिखाया गया है। दरअसल पंडाल के जरिए जागरूकता फैलाई जा रही है कि धार्मिक कॉरिडोर को विकसित करने के लिए देश में क्या क्या प्रयास हो रहे हैं। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नवरात्र में शक्ति साधना और मैंगलुरु दशहरा उत्सव की रौनक।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: अब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चैंपियंस ने शेयर किए अपने अनुभव। नवरात्र के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के बीड में लगा श्रद्धालुओं का तांता। बेलगांव के रेणुका माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र के मौके पर देश भर में गरबा डांडिया की दिखी धूम। चित्रकूट के सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट परिसर में भव्य आयोजन, समारोह में हजारों लोग कर रहे शिरकत। पहाड़ों पर भी मौसम मेहरबान, बाबा केदारनाथ धाम में शुरू हुआ स्नोफॉल। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक बिछी बर्फ की सफेद चादर। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से गिरा पारा, तेज हवाओं के साथ बदला मौसम का मिजाज। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट।
1: नवरात्र का पर्व हो और मां के जयकारे ना गूंजे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। कहीं मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं तो कहीं मां के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर मंदिर की अपनी मान्यता है, अपनी परंपरा और अपनी एक अनूठी कहानी।
5: बिल्कुल देखिए, लेकिन इन मंदिरों की खासियत सिर्फ यहाँ उमड़ने वाली भीड़ नहीं है या भव्य सजावट तक ये सब सीमित नहीं है। हर दरबार की अपनी एक कहानी है जो पीढ़ियों से लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। कई सदियों पुरानी मान्यताएं आज भी यहाँ पर निभाई जा रही हैं, तो कई ऐसी परंपराएं हैं जिसमें भक्त नवरात्र के इन पावन दिनों में रंगे हुए नजर आ रहे हैं।

0: नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और देश भर के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। कहीं माँ की जयकारे गूंज रहे हैं तो कहीं पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भक्त माँ की आराधना में लीन हैं। आस्था के इन दंगों में कोई सदियों पुरानी परंपरा निभा रहा है तो कोई माँ के अनोखे स्वरूप के दर्शन कर रहा है। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले के कोनेपुर स्थित प्राचीन अंबिका माता मंदिर की। नवरात्रि के मौके पर यहाँ भक्तों की आस्था देखते ही बन रही है। मंदिर में पूजा अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान और दीप प्रज्वलन के जरिए श्रद्धालु माँ की आराधना कर रहे हैं। लेकिन इस मंदिर की खास पहचान सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी से जुड़ी पौराणिक कथा भी है।
1: हम उसी जगह पर खड़े हैं, इस खिड़की पर, जहाँ पर रुक्मिणी का हरण जो है भगवान श्री कृष्ण ने किया था, वही ये खिड़की है उस वक्त की माता अंबिका माता के मंदिर की, जो भगवान श्री कृष्ण ने जो है माता रुक्मिणी को यहीं से हर ले गए थे। माँ

0: का विवाह उनके पिता ने जो है उनके मनचाहे जगह पर नहीं रखा, नहीं किया या कर रहे थे, तो रुक्मिणी ने संदेशा भेजकर जो है भगवान श्री कृष्ण को इसी माता अम्बी के माता के मंदिर में उन्हें बुलाया।
1: अब रुख करते हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नर का, जहां माँ तुलजा भवानी के पवित्र पलंग की परंपरा आज भी पूरे श्रद्धा भाव के साथ निभाई जा रही है। घोड़गांव से तैयार होकर आने वाला ये पलंग जुन्नर में कुछ दिन ठहरता है और फिर तुलजापुर की ओर रवाना होता है। रास्ते में माँ के जयकारे गूंजते हैं और श्रद्धालु दर्शन कर पुणे लाभ लेते हैं।
2: ये 12वीं सदियों से आई हुई परंपरा है। हमारा घर जो पलंगे परिवार है, ये उसको हमारी तरफ से माता को दिया जाता है। सदियों से आई परंपरा है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व 3.5 शक्तिपीठ में जो तुलजा भवानी जो महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी है उसके लिए ये शयासन बनाया जाता है।
1: माँ की भक्ति के रंग अलग अलग हैं और हर दरबार की अपनी खास पहचान है। अब आपको दिखाते हैं बुंदेलखंड की ऐतिहासिक नगरी झांसी की तस्वीरें। माँ महाकाली का स्वरूप आम मान्यताओं से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर माँ काली का नाम सुनते ही आंखों के सामने उनका रौद्र रूप उभरता है, लेकिन इस पीठ पर माँ कन्या स्वरूप में सौम्य और शांत भाव से विराजमान है।
3: यह महाकाली माँ मंदिर एक अपना इतिहास में एक अनूठा स्थान रखता है, जो कितना पुराना है यह बता पाना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह स्वयं प्रतिष्ठित मूर्ति है।
1: अब चलते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार, जहां सिद्धपीठ माँ माया देवी मंदिर में नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। माँ माया को हरिद्वार की अधिशास्त्री देवी माना जाता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इसी स्थान पर माता सती का हृदय और नाभि गिरे थे, इसी वजह से इस मंदिर का विशेष धार्मिक महत्व है।
4: कि माँ नवरात्रि में अपने 10 महाविद्या रूप में 9 दुर्गे रूप में यहाँ विराजमान होती है, 64 योगिनी के रूप में विराजमान होती है। यहाँ लोग आते हैं, विशेष अनुष्ठान चलता रहता है भक्तों के लिए सुबह से लेकर रात तक, पूरी रात। इसलिए लोग यहाँ आते हैं, उस अनुष्ठान के कारण यहाँ जो ऊर्जा है वो माँ का आशीर्वाद रूपी सभी के अंदर समाहित होता है।
1: माँ के दरबार में आस्था है, विश्वास है और मन में अनगिनत कामनाएं हैं। कहीं जयकारों की गूंज है तो कहीं दीपों से जगमगाते मंदिर और भजनों की मधुर तान है। नवरात्रि के ये 9 दिन माँ की भक्ति, शक्ति और श्रद्धा का संदेश देते हैं। माँ की कृपा सब पर बनी रहे, हर घर में सुख शांति हो और हर मन में भक्ति का दीप यूं ही जलता रहे। झांसी से अजय झा, अमरावती से धनंजय साबले, हरिद्वार से अमृत कुमार के साथ भी रिपोर्ट, कुल न्यूज़ टुडे।
5: देखिए, एक तरफ ढोल ताशों की गूंज तो दूसरी तरफ हजारों भक्तों की भीड़ और बीच सड़क पर माँ काली का रौद्र रूप, हाथ में भुजाली, कदमों में तूफानी रफ्तार और हर तरफ गूंजता जयकारा। ये सीन किसी फिल्म का नहीं है बल्कि प्रयागराज की उस परंपरा का है जिसका इंतजार भक्त पूरे साल करते हैं।
6: यहाँ माँ काली के दर्शन के लिए भक्त मंदिर नहीं जाते बल्कि माँ काली खुद सड़कों पर निकलकर अपने भक्तों के बीच पहुंचकर उन्हें दर्शन देते हुए शुभता का आशीर्वाद देती है।
7: हाथ में भुजाली, चेहरे पर गुस्से का भाव और ढोल की थाप पर ऐसे नृत्य कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाए, यह है माँ काली, या कहें माँ काली का ऐसा रूप जिसे देखने के लिए सड़कें भर जाती हैं। जैसे जैसे माँ काली आगे बढ़ती हैं, वैसे वैसे पीछे भक्तों का कारवा भी बढ़ता जाता है, लेकिन इस भव्य रूप के पीछे की तैयारी भी कम खास नहीं है। सड़कों पर उतरने से पहले शुरू होता है माँ काली का श्रृंगार, चेहरे पर रंग, सिर पर मुकुट और पारंपरिक वेशभूषा। धीरे धीरे एक कलाकार का रूप बदलता है और तैयार होता है माँ काली का पात्र। श्रृंगार होने के बाद होती है पूजा, फिर आरती, इसके बाद शुरू होती है माँ काली की प्राकट्य यात्रा। ये सिर्फ एक जुलूस नहीं, प्रयागराज के दारागंज की 100 साल से भी पुरानी बताई जाने वाली परंपरा है, जिससे लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है। ढोल की थाप तेज होती है, ताशों की आवाज गूंजती है और मां काली का नृत्य शुरू हो जाता है। कभी तेज कदम, कभी घूमकर नृत्य, तो कभी हाथ में भुजाली लहराते हुए आगे बढ़ना। हर अंदाज अपने आप में खास और हर कदम के साथ बढ़ता है रोमांच। ये वही पल है जिनका इंतजार दारागंज के लोग हर साल करते हैं। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग, हर तरफ बजती तालियां और मां काली के स्वागत में उठते हाथ। कोई दूर से ही सिर झुकाता है तो कोई करीब जाकर आशीर्वाद लेना चाहता है। लोगों के चेहरों पर खुशी है, आंखों में श्रद्धा और मन में मां के दर्शन की आस। इस भीड़ में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी और पूरा परिवार लेकर पहुंचे लोग भी। किसी बच्चे को अपने पिता के कंधे पर बैठकर मां काली के दर्शन करने हैं तो कोई इस अनोखे नजारे को अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहता है, क्योंकि यहां सिर्फ यात्रा नहीं निकलती, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचती परंपरा दिखाई देती है। लेकिन इस यात्रा की कहानी सिर्फ नृत्य और श्रृंगार तक सीमित नहीं है, इसका संबंध रामायण के एक प्रसंग से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि जब खर और दूषण अपनी सेना के साथ भगवान राम से युद्ध करने पहुंचे, तब माता सीता ने मां काली का रूप धारण किया और भगवान राम के रथ के आगे चलकर युद्ध में उनकी सहायता की। इस प्रसंग को यहां पारंपरिक अभिनय के जरिए जीवंत किया जाता है। इस रूप को निभाने वाले कलाकार के लिए भी कई नियम बताए जाते हैं। पात्र बनने की तैयारी, संयम और परंपरा का पालन, क्योंकि यहाँ सिर्फ माँ काली जैसा दिखना ही काफी नहीं, इस पात्र की जिम्मेदारी को निभाना भी जरूरी माना जाता है। कई सालों से सचिन इस रूप में यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं।
8: इसके लिए कम से कम 2 महीने पहले से हम लोग रनिंग वगैरह करते रहते हैं, फिजिकल फिटनेस प्रॉपर वे पे, डाइट अच्छी लेनी पड़ती है। कम से कम 2 से 2.5 घंटे सुबह शाम फिजिकल करना पड़ता है, तब जाके ये सारी रात हम लोग चल पाते हैं माता रानी के आशीर्वाद से।
7: सचिन जैसे कलाकारों के जरिए ये परंपरा आज भी आगे बढ़ रही है। हर साल वही इंतजार, वही ढोल ताशे, वही भव्य श्रृंगार और मां काली के दर्शन के लिए उमड़ता जन सैलाब। मां काली का ये रूप लोगों को रोमांचित भी करता है और उन्हें अपनी आस्था से जोड़ता भी है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार आपको दिखाएंगे नवरात्र के मौके पर गरबा के रंग।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: तो गुजरात में नवरात्रि के उत्सव में मां की भक्ति पारंपरिक गरबा रास के जरिए की जाती है। ये गुजरात की सदियों पुरानी संस्कृति, लोक परंपरा और मां जगदम्बा के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक माना जाता है। और इसी परंपरा की एक अनूठी तस्वीर गुजरात के अमरेली जिले में देखने को मिल रही है। तीन तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमरेली के सावरकुंडला शहर में देवला गेट पर पिछले 78 वर्षों से बाल खोड़िया रास मंडली अपनी अनूठी परंपरा को अभी भी जीवंत बनाए हुए हैं।
7: बिल्कुल, देखिए आज के समय में जब आधुनिक संगीत और नए अंदाज ने त्योहारों की दुनिया में अपनी खास जगह बना ली है, वहीं ये रास मंडली अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। यहाँ तीन तीन पीढ़ियां बदल गई हैं, वक्त बदला है, दौर भी बदला, लेकिन माँ की भक्ति और पारंपरिक देशी रास के प्रति कलाकारों की श्रद्धा अभी भी सदियों पुरानी है। इस मंडल की सबसे खास बात यह है कि इसका जो अंदाज है वो पारंपरिक है। यहाँ आधुनिक संगीत की धुनों के बजाय माइक पर गूंजते हैं देसी सुर, दोहे और छंद, जिनके माध्यम से माँ जगदम्बा की स्तुति की जाती है और फिर इन्हीं पारंपरिक सुरों की लय पर कलाकार रास खेलते हैं, तो पूरा माहौल भक्ति में होता है।
8: दक्षिण भारत में भी शक्ति उत्सव की भव्य और मनमोहक झलक देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के तटीय शहर मैंगलुरु के विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव की, जहां भक्ति, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मां दुर्गा की आराधना के साथ मनाया जाने वाला ये 10 दिवसीय उत्सव अपनी भव्य सजावट, जगमगाती रोशनी, आकर्षक झांकियों और अनूठी धार्मिक परंपराओं के लिए खास पहचान रखता है।
6: बिल्कुल, देखिए तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से 10 दिनों का दशहरा उत्सव जो है उसकी जो रौनक है वो देखने को मिल रही है। उत्सव के दौरान पूरा शहर मानो रोशनी और आस्था के रंगों में रंग जाता है, मंदिरों में पूजा भी होती है।

0: ये मैंगलुरु के दशहरा उत्सव की रौनक है। 10 दिनों के इस धार्मिक आयोजन में श्री गोकर्णनाथेश्वर मंदिर पूरी तरह रंगा नजर आ रहा है। न सिर्फ मंदिर परिसर शानदार लाइटों से जगमगाया है, बल्कि मंदिर तक आने वाले सभी मार्गों पर दशहरा समारोह की भव्य सजावट है। ये उत्सव देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है, जो भक्ति, ज्ञान और समाज में शक्ति के अनेक स्वरूपों का प्रतीक है। 11 अक्टूबर से शुरू हुए इस 10 दिनों के उत्सव में धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रंगों की भी अद्भुत झांकी देखने को मिलती है। विशाल शोभा यात्रा के दौरान मंदिर में मां शारदा, नवदुर्गा और भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाएं स्थापित किए जाने से इस उत्सव का शुभारंभ हुआ। इस उत्सव की सबसे बड़ी पहचान पारंपरिक पीली पेशा है, जिसमें कलाकार शरीर पर बाघ की तरह पेंट करके ढोल की थाप पर शानदार नृत्य करते हैं। मंगलुरु के दशहरा उत्सव में शामिल होने के लिए पूरे देश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। नवरात्रि के दौरान आस्था, भक्ति, संस्कृति और खेल भावना के रंगों से भरा ये उत्सव श्रद्धालुओं को और यहाँ आए सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। वो भी क्यों ना, भारतीय धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की इससे अद्भुत वानगी भला और कहां देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: अगर आप बर्फ की दुनिया में डिज्नी का जादू देखना चाहते हैं तो चीन का हार्बिन आपको हैरान करने वाला है। यहाँ बर्फ के महलों के बीच अब दिखेंगे फ्रोजन के मशहूर किरदार। सर्दियों में ये नजारा किसी सपने से कम नहीं होगा।
2: चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बर्फ से बने बड़े बड़े महल। चीन के हार्बिन शहर में हर साल बर्फ का एक शानदार पार्क बनाया जाता है, नाम है हार्बिन आइस स्नो वर्ल्ड, और इस बार यहाँ कुछ खास होने वाला है। इस सर्दी इस पार्क में डिज्नी चाइना के साथ मिलकर फ्रोजन की दुनिया बसाई जाएगी, यानी बर्फ से बनी इस दुनिया में एल्सा, एना और ओलाफ जैसे मशहूर किरदार नजर आएंगे। बर्फ की बड़ी बड़ी मूर्तियों के जरिए फिल्म के जादुई नजारे तैयार किए जाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ डिज्नी से जुड़ी चीजों की एक खास दुकान भी होगी, जहाँ लोग अपनी पसंद की चीजें खरीद सकेंगे। लेकिन इस बार सिर्फ फ्रोजन की दुनिया ही खास नहीं होगी, पार्क का आकार भी पहले से बड़ा होने जा रहा है। करीब 12,50,000 वर्ग मीटर में फैले इस पार्क को बनाने में 4,00,000 घन मीटर बर्फ और बर्फ की सिल्ली का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ बर्फ से बनी 1,000 से ज्यादा आकृतियाँ और ढांचे देखने को मिल सकते हैं, साथ ही रोमांचक झूले, रंगारंग कार्यक्रम और बर्फ से जुड़े खेल भी होंगे। पार्क के मुख्य गेट पर बड़े टावर को भी नया रूप दिया जाएगा, यानी इस सर्दी चीन के हार्बिन में घूमने आने वाले लोगों को बर्फ के बीच मस्ती, रोमांच और डिज्नी की जादुई दुनिया तीनों का मजा मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ चाय पर चर्चा में आज फिलहाल इतना ही। कल शाम 5 बजे फिर मुलाकात होगी गर्मा गर्म चाय और ढेर सारी खबरों के साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लात।
3: एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चैंपियंस ने शेयर किए अपने अनुभव। नवरात्र के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के बीड में लगा श्रद्धालुओं का तांता, बेलगांव के रेणुका माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हजारों भक्त। शारदीय नवरात्र के मौके पर देश भर में गरबा डांडिया की धूम, चित्रकूट के सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट परिसर में भव्य आयोजन, समारोह में हजारों लोग कर रहे शिरकत। पहाड़ों पर भी मौसम की मेहरबानी, बाबा केदारनाथ धाम में शुरू हुआ स्नोफॉल, हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक बिछी बर्फ की सफेद चादर। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से गिरा पारा, तेज हवाओं के साथ बदला मौसम का मिजाज, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात शक्ति उत्सव की। आज नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंद माता के दर्शन पूजन का विधान है। सुबह से ही देश के तमाम मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है और श्रद्धालु मां आदि शक्ति से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। मां स्कंद माता दुख और रोगों से मुक्ति प्रदान करती है। मान्यता है कि मां के इस स्वरूप की प्रार्थना करने से शांति और सुख का अनुभव होता है। मान्यता ये भी है कि नवरात्र के दौरान शक्ति के प्रमुख स्थानों में दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। इसी के चलते जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको देवी के कुछ अनोखे धामों के दर्शन करवाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में देवी का एक ऐसा अद्भुत मंदिर मौजूद है जिसके इतिहास की डोर मराठा साम्राज्य की गौरवशाली विरासत से जुड़ी है। शक्ति उत्सव में आज चलेंगे उन देवी के धाम जो वीर शिवाजी की कुल देवी मानी जाती हैं। वो देवी जिनका आशीर्वाद वीर शिवाजी के माथे का विजय तिलक बन गया। पहाड़ों पर बना एक ऐसा अद्भुत मंदिर जिसका एक द्वार 70 किलोमीटर दूर बसे उज्जैन में खुलता है।

0: जिनके आशीर्वाद ने किया वीर शिवाजी का विजय तिलक, जिनकी कृपा से वीर शिवाजी को मिली भवानी तलवार, जिस मंदिर से जुड़ी है मराठा शौर्य की विरासत, जिस दर पर शीश झुकाते थे सम्राट विक्रमादित्य, वो मंदिर जिसे उज्जैन से जोड़ती है एक रहस्यमयी गुफा, वो मंदिर जहां तुलजा भवानी स्वरूप में विराजी हैं शक्ति, मध्य प्रदेश में उज्जैन से लगभग 70 किलोमीटर दूर आगर मालवा में पहाड़ों के बीच प्राचीन गुफा में शान से विराजी हैं माँ तुलजा भवानी। ये मंदिर मध्य प्रदेश में मौजूद देवी के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्थानों में से एक है। इस मंदिर में मौजूद माँ भवानी की मूर्ति स्वयं भू मानी जाती है। बताया जाता है कि ये मूर्ति यहाँ पहाड़ों के बीच स्वतः प्रकट हुई थी। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं।
1: मेरे पीछे जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये गुफा है यहाँ पर, और ये यहाँ भारी भरकम पत्थरों की शिलाएं हैं बड़ी बड़ी, और ये पहाड़ है। इसी पहाड़ के बीच में यहाँ पर एक गुफा आपको दिखाई दे रही है, और ये वही गुफा है जिससे कहा जाता है कि माँ तुलजा भवानी ने उज्जैन से यहाँ पर अपना स्थान लिया था और यहाँ पर प्रकट हुई थी।
0: तुलजा भवानी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये मराठा इतिहास की गौरवशाली विरासत का भी प्रतीक है। दरअसल माँ तुलजा भवानी मराठा साम्राज्य के शौर्य तिलक छत्रपति शिवाजी की कुल देवी हैं। इनका मुख्य स्थान महाराष्ट्र के तुलजापुर में मौजूद है।
2: माँ तुलजा भवानी का बहुत पुराना स्थान है, भगवती का प्रथम स्थान महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से माता रानी चले उज्जैन पधारे, उज्जैन से भर्तृहरि गुफा में प्रवेश हुए, तो यहाँ पर आगर में एक सुरंग है जो वहाँ से यहाँ तक उज्जैन जाती है। इसी गुफा द्वारा माँ आकर के यहाँ पहाड़ों में प्रकट हुई देवी।
0: छत्रपति शिवाजी माँ तुलजा भवानी के अनन्य भक्त थे। बताया जाता है कि जब शिवाजी महाराज ने मुगलों और आदिलशाही सुल्तानों के खिलाफ स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया, तब उन्होंने अपनी कुलदेवी माँ भवानी की विशेष साधना की थी। किंवदंतियों में वर्णन मिलता है कि एक बार जब शिवाजी महाराज अपने शत्रुओं से घिरे हुए थे और उनके पास कोई उपाय नहीं बचा था, तब उन्होंने माँ तुलजा भवानी का आह्वान किया। माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वे विजय प्राप्त करेंगे। बताया जाता है कि माँ भवानी के आशीर्वाद से उन्हें एक दिव्य तलवार प्राप्त हुई थी, जिसे भवानी तलवार कहा जाता है। इस तलवार के साथ शिवाजी ने कई ऐतिहासिक युद्ध जीते और मराठा साम्राज्य का किला मजबूत किया। बताया जाता है कि माँ तुलजा भवानी महाराष्ट्र से उज्जैन आई और फिर वहाँ से पहाड़ों में मौजूद सुरंग और गुफा के रास्ते इस स्थान पर प्रकट हुई थी। मंदिर में आज भी वो गुफा मौजूद है जिसके जरिए माँ तुलजा भवानी के आगर मालवा में प्रकट होने का दावा किया जाता है। इस गुफा को भृतहरि गुफा के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि ये गुफा वास्तव में पहाड़ों में मौजूद उस प्राकृतिक सुरंग का द्वार है जो आगर मालवा को उज्जैन से जोड़ती है।
2: सुरंग कहीं वर्षों से है माता रानी की, और ये राजा महाराजाओं के समय की है सुरंग भरते गुफा, और इसी सुरंग का काफी राजा विक्रमादित्य जी द्वारा आवागमन हुआ, आना जाना हुआ, माँ का पूजन अर्चना करते हुए।
0: पीढ़ियों से मंदिर में सेवा पूजा करते आ रहे पुजारी परिवार के वंशज बताते हैं कि ये गुफा सीधे उज्जैन तक जाती है। बताया जाता है कि किसी दौर में सम्राट विक्रमादित्य इसी गुफा के रास्ते माँ तुलजा भवानी के दर्शन करने उज्जैन से आगर मालवा आया करते थे। मंदिर और आसपास के इलाकों से वर्षों से परिचित लोग बताते हैं कि मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ियों में मौजूद जिस गुफा से माँ तुलजा भवानी आई थी, उसी गुफा से बाद में आम लोग भी उज्जैन आया जाया करते थे, लेकिन बाद के सालों में सुरंग और गुफा में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया।
2: सुरंग तो धीरे धीरे विलुप्त हो चुकी है, करीब यहाँ से आज के 30-40 साल पहले चालू थी सुरंग, और कुछ लोग अंदर जाकर के भी देखा भी है उन्होंने, लेकिन अब विलुप्त तो हो चुकी है। सिर्फ यह ऐतिहासिक है कि उसको हम बता सकते हैं कि भगवती का यह मेन स्थान है जो यहाँ से पधारे।
0: मंदिर के पुजारी बताते हैं कि किसी जमाने में मंदिर के आसपास पहाड़ियों पर दुर्गम वन क्षेत्र था। मंदिर के आसपास गुफा और सुरंग तक शेर आया जाया करते थे। खास तौर पर देवी की आरती के समय वहाँ शेर मौजूद रहता था। इन शेरों को देवी की मौजूदगी का प्रतीक माना जाता था। लेकिन समय के साथ इस क्षेत्र में पहले वन कम हुए और फिर धीरे धीरे वनराज का आना भी बंद हो गया। माँ जगदम्बा के इस दरबार में पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना लेकर माँ के दरबार में पहुँचते हैं। नवरात्र के दौरान यहाँ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। माना जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, विशेषकर वे जो शक्ति और विजय की कामना रखते हैं। वास्तव में वीर शिवाजी की कुलदेवी माँ तुलजा भवानी का ये मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि ये शौर्य, भक्ति और मराठा गौरव का प्रतीक भी है। जो भी व्यक्ति शक्ति, साहस और सफलता की प्रार्थना लेकर यहाँ आता है, उसे माँ भवानी की कृपा जरूर मिलती है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो नवरात्र के इस मौके पर जीएनटी पर हम आपको देश के सबसे अनोखे देवी मंदिरों के दर्शन करवा रहे हैं। इसी क्रम में अब आपको लेकर चलेंगे झांसी में मौजूद एक और अद्भुत देवी मंदिर में, जहां स्वयं जगत की जननी बाल रूप में विराजमान है। संसार में मां काली का ऐसा अनोखा रूप और कहीं देखने को नहीं मिलता।

0: वो मंदिर जहाँ बाल रूप में विराजी हैं जगत जननी, वो मंदिर जहाँ इंदिरा गांधी को मिला जीत का आशीर्वाद, वो मंदिर जहाँ रौद्र नहीं बल्कि सौम्य रूप में विराजमान है महाकाली, वो मंदिर जहाँ स्वयं प्रकट हुई माँ भवानी। नवरात्रि के पावन दिनों में भक्त 9 दिनों तक माँ भगवती के अलग अलग रूपों की साधना करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के झांसी में माँ के ऐसे अनोखे स्वरूप की आराधना होती है जिसे देखकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। झांसी के इस मंदिर में माँ काली कन्या के रूप में विराजमान है। जरा सोचिए, जो स्वयं जगत जननी है, जो स्वयं चराचर जगत और संपूर्ण सृष्टि का आधार आदि शक्ति मानी जाती है, वो भक्तों को बाल स्वरूप में दर्शन देने को विराजी है।
1: ये सौम्य रूप में विराजमान, आपने महाकाली को देखा होगा कि उनकी लंबी लंबी जिह्वा होती है, बड़ा ही विकराल स्वरूप होता है, लेकिन ये सौम्य रूप है, ये कन्या रूप इनको बोलते हैं। ये दिन में आप देखेंगे, कभी भी आप आके दर्शन करेंगे, आपको दर्शन परिवर्तित होते हुए मिलेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ।
0: न केवल बाल रूप बल्कि ये दुनिया का ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ माँ काली के सौम्य रूप के दर्शन होते हैं। आमतौर पर माँ काली के हाथों में खड़ग, खप्पर और गले में मुंडों की माला रहती है, दुनिया में उनका यही स्वरूप पूजा जाता है, लेकिन बुंदेलखंड के इस मंदिर में माँ काली का ये अनोखा सौम्य स्वरूप पूजा जाता है। यानी जिन महाकाली के रौद्र रूप के सामने ब्रह्मांड की समग्र आसुरी शक्तियाँ नतमस्तक हैं, वो माँ काली यहाँ अपने क्रोध को त्याग भक्तों को सौम्य स्वरूप में दर्शन देती है।
2: काली जी जो है वो सौम्य रूप में है। पूरे भारत वर्ष में केवल दो ही जगह सौम्य रूप में काली जी हैं, एक तो कलकत्ता में है और एक यहाँ पर है, बाकी कहीं पे भी आप देंगे सब रौद्र रूप में रहती हैं।
0: बताया जाता है कि बुंदेलखंड के इस मंदिर का इतिहास शताब्दियों पुराना है और ये इतिहास जुड़ा है ओरछा के राज परिवार से। बताया जाता है कि कभी मंदिर के स्थान पर एक पहाड़ हुआ करता था जहाँ एक गुफा में माँ की मूर्ति इस स्वरूप में प्रकट हुई थी। बरसों तक माँ उस गुफा में गुप्त रूप से विराजमान रही, लेकिन लगभग 500 साल पहले ये रहस्य उस दिन खुला जब ओरछा वंश के शासक राजा जुदेव सिंह इस इलाके में शिकार करने आए।
2: जब यहाँ पे ओरछा के महाराज जुदेव जी शिकार खेलने आए, तब उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पे कुछ है, वहाँ पे उनको कुछ बाती जलती हुई दिखाई दी। जब वो आए, उन्होंने देखा यहाँ पे काली जी की प्रतिमा थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना चालू करवाई और तब से लेके आज तक हम लोग यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, हमारा पूरा परिवार।
0: बताया जाता है कि ओरछा राज परिवार ने ही मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया। समय के साथ इस मंदिर की महिमा, मान्यता और ख्याति दूर दूर तक फैल गयी। 70 के दशक में इस मंदिर की चर्चा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कानों में भी पड़ी। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने जीत का आशीर्वाद पाने के लिए माँ काली के इस मंदिर में अनुष्ठान करवाया था।
1: 1977 में इधर आए, तब वह प्रधानमंत्री पद पे नहीं थे, तो उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी हम पुनः प्रधानमंत्री पद कब प्राप्त करेंगे? बोले हमारी माँ जो आज्ञा देगी वो। तो बोले माँ बोलती है ये मैं कैसे मानूं? तो बोले हसत माल मूरत मुस्कानी, बोले जब मूर्ति बोलती है तो फूल झड़ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि माँ बोली है। बोले फिर मेरे को कैसे मालूम चलेगा? तो इतनी देर में 3 घंटे बाद उनका माई के हृदय का पुष्प गिरा, बोले आप 3 साल बाद आप जो है पुनः प्रधानमंत्री पद। तो मैं चिकमंगलूर से चुनाव जीती, चिकमंगलूर से चुनाव जीतने के बाद पुनः प्रधानमंत्री बनी, तो उनके सलाहकार फिर उनको लेके आए 1983 में। उन्होंने कहा पंडित जी मांगिए, आपको जो मांगना है वो मांगिए। बोले हम क्या मांगे साधु बैरागी आदमी, आप क्या हम मांगे? बोले हम तो एक यज्ञ करना चाहते हैं, अगर आप सहयोग करना चाहती हैं तो करिए। बोले कौन सा यज्ञ करना है मेरे को बोलो, मैं कराता हूँ। बोले मैं लखचंडी यज्ञ करना चाहता हूँ। बोले कराइए आप संकल्प, कराइए। संकल्प किया, संकल्प करने के बाद 1983 में उन्होंने जो नीचे यज्ञशाला है उसमें उन्होंने लखचंडी यज्ञ कराया।
0: तो साल भर झांसी के इस मंदिर में माँ के बाल स्वरूप करने भक्त देश और दुनिया भर से पहुंचते हैं, लेकिन खास तौर पर नवरात्र के पावन दिनों में यहां मां काली की कन्या रूप को पूजने भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। नवरात्र के 9 दिनों में बाल स्वरूपा मां काली के धाम में विशेष अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस बार भी नवरात्र के दौरान मां भगवती के लिए मन में अगाध आस्था लिए भक्त देश के कोने कोने से यहां पहुंच रहे हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।
3: और अब आपको लिए चलते हैं गुजरात और दर्शन करवाते हैं मां अंबा की। गुजरात के बनासकांठा में मौजूद अंबाजी धाम में इन दिनों नवरात्र उत्सव की धूम है। अंबाजी शक्तिपीठ देश के प्रमुख शक्ति स्थलों में गिना जाता है। आज दुनिया भर के श्रद्धालु इस शक्तिपीठ में दर्शन को पहुंचते हैं, लेकिन पौराणिक इतिहास बताता है कि त्रेता युग में यहां श्री राम भी दर्शन के लिए पहुंचे थे, तो वहीं द्वापर युग में नंद बाबा और यशोदा मैया छोटे से कान्हा को लेकर अंबाजी के धाम गए थे। आखिर क्यों इतना खास है अंबाजी शक्तिपीठ और क्या है इसकी कहानी, चलिए आपको बताते हैं।

0: माँ चाहे अपनी हो या फिर सारे जगत की, माँ का हृदय वो स्थान है जहाँ हमेशा जगह होती है उसके बच्चों के लिए। और आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा संसार का ये वो स्थान है जहाँ स्वयं माँ का हृदय रहता है। संसार के कोने कोने से पहुँचते हैं श्रद्धालु माँ के हृदय भाग के दर्शन करने। ये दिव्य स्थान है गुजरात का अंबाजी शक्तिपीठ। गुजरात राजस्थान सीमा पर बसे बनासकांठा में अरावली पर्वत पर शांत से विराजी है माँ अंबा। माँ अंबा का यह अद्वितीय धाम देवी के 51 शक्ति पीठों में गिना जाता है। तंत्र चूड़ामणि में उल्लेख मिलता है कि इसी स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था।
1: भगवान विष्णु जगत की सृष्टि का पालन करने हेतु उनके सुदर्शन चक्र से माँ भगवती सती का शरीर था उनके टुकड़े किए और वो जो टुकड़े थे जहाँ जहाँ पर गिरे वहाँ पर 51 शक्तिपीठ निर्माण हुई और वहाँ से ये शक्तिपीठ मानी जाती है। कारण के वहाँ जो देव टुकड़े गिरे वहाँ से जो सबसे श्रेष्ठ जो टुकड़ा था वो हृदय का जो टुकड़ा था वो हृदय का टुकड़ा जो है माँ भगवती का यहाँ अरावली पर्वत के गोद में आकर गिरा और यहाँ पर माँ भगवती की शक्तिपीठ निर्माण हुई। इसलिए यहाँ महाभारत के सभी तीर्थों में से सबसे श्रेष्ठ तीर्थ यहाँ माना जाता है।
0: आज पूरा गुजरात अम्बाजी की भक्ति में डूबा है। क्या आम क्या खास सब पर माँ जगदम्बे के उत्सव का रंग चढ़ा है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ गर्भगृह में माँ की मूर्ति की नहीं बल्कि शक्ति के स्वरूप यंत्र की पूजा होती है। अम्बा देवी का यंत्र गुप्त रखा जाता है जिसे खुले में देखना भी निषेध है। यहाँ तक कि पुजारी भी इसकी पूजा आंखों पर पट्टी बांध कर करते हैं।
1: न मातुर पर देवता, इस जगत के अंदर माँ के समान कोई बड़ा देव नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर जो माँ भगवती का जो दिव्य स्वरूप है तो इस स्वरूप के अंदर यहाँ पर माँ भगवती के जो गर्भगृह के अंदर कोई मूर्ति या कोई ऐसा प्रतीक की पूजा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर सभी शक्तिपीठों में से सबसे श्रेष्ठ शक्तिपीठ इसलिए माना गया है कि यहाँ पर गर्भगृह के अंदर माँ भगवती के श्री यंत्र की पूजा होती है, यंत्र की पूजा होती है जिसका नाम विषा यंत्र बताया गया है। और इस यंत्र के अंदर माँ भगवती की अभूत शक्ति जो है इस यंत्र के अंदर मानी जाती है और इस यंत्र की ब्राह्मणों के द्वारा पूजा होती है। और यहाँ पर आने वाले सभी जो भक्तगण है यहाँ पर आते तो खाली हाथ आते हैं लेकिन इस यंत्र की दर्शन मात्र से, इस भक्ति के दर्शन मात्र से, इस शक्ति के दर्शन मात्र से सभी भक्तगण यहाँ से कुछ ना कुछ श्रद्धा शक्ति और नई ऊर्जा लेकर अपने घर जाते हैं।
0: आपको बता दें कि माँ अम्बा का ये दिव्य धाम लगभग 1200 साल पुराना है। कालांतर में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। आज माँ भवानी के हृदय स्थान पर बना ये मंदिर भव्य रूप को प्राप्त कर चुका है। मंदिर के शिखर को 141 किलो सोने से मढ़ा गया है। 61 फीट ऊंचे शिखर पर 358 छोटे बड़े स्वर्ण कलश लगाए गए हैं। बताया जाता है कि यहाँ मंदिर तो बेहद बाद में बना लेकिन माँ आद्याशक्ति यहाँ हमेशा से विराजमान है। कई पौराणिक कहानियों में इस दिव्य स्थान का उल्लेख मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि माँ जगदम्बा के इसी धाम में नंद बाबा और माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का मुंडन करवाया था तो वहीं भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए यहाँ से गुजरे थे और माँ अम्बा का आशीर्वाद लिया था। इसके साथ ही मान्यता ये भी है कि वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखने की शुरुआत इसी तपोभूमि से की थी। अंबाजी धाम में मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर गब्बर नाम का पहाड़ मौजूद है जहां देवी का एक और प्राचीन मंदिर स्थापित है। अम्बा जी के दर्शन के बाद श्रद्धालु गब्बर पहाड़ी पर मौजूद इस मंदिर में जरूर जाते हैं। आज माँ अम्बा का ये धाम गुजरात ही नहीं बल्कि देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु माँ अम्बा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ देवी के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्र के दिनों में मंदिर प्रांगण में गरबा करके शक्ति की आराधना की जाती है। सप्तशती के पाठ से पूरा मंदिर प्रांगण गूंज उठता है। पर गुजरात के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले किसान माँ के दर्शन के लिए यहाँ सब परिवार इकट्ठा होते हैं। बड़े स्तर पर मनाए जाने वाले इस समारोह में गरबा और घवाई जैसे पारंपरिक नृत्यों का आयोजन भी किया जाता है। 9 दिनों तक अम्बे धाम में भक्ति के गीत गूंजते हैं।
2: पंखीड़ा तू उड़ के जाना अम्बे धाम रे, अम्बा जी को कहना हम भी द्वारे आए हैं, अम्बा जी से कहना हम भी द्वारे आए हैं। पंखीड़ा तू उड़ी ने जाजे पावागढ़ रे, महाकाली से मिलके कह जो गर्भ रमे रे, मारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, अम्बा जी से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, अम्बा जी से मिलके कहना गरबा खेलेंगे।
0: इस बार भी नवरात्र के पावन अवसर पर माँ भवानी के इस धाम में खूब रौनक है। मन में भावना की जोत जलाए हजारों भक्त जगदम्बा के दरबार में शीश झुकाने पहुंचे हैं। बरासकाठा में अंबाजी शक्तिपीठ से शक्ति सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चैंपियंस ने शेयर किए अपने अनुभव। नवरात्र के पावन अवसर पर महाराष्ट्र की भीड़ में लगा श्रद्धालुओं का तांता। बेलगांव के रेणुका माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हजारों भक्त। शारदीय नवरात्र के मौके पर देश भर में गरबा डांडिया की धूम। चित्रकूट के सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट परिसर में भव्य आयोजन समारोह में हजारों लोग कर रहे हैं शिरकत। पहाड़ों पर भी मौसम मेहरबान। बाबा केदारनाथ धाम में शुरू हुआ स्नोफॉल। हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक बिछी बर्फ की मोटी चादर। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से गिर गया तापमान। तेज हवाओं के साथ बदल गया मौसम का मिजाज। एमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुई मुलाकात। इस दौरान कोई हॉकी स्टिक लेकर पहुंचा तो किसी ने प्रधानमंत्री को अपनी जर्सी। आर्चरी के खिलाड़ियों ने दिया धनुष बाण। प्रधानमंत्री मोदी के साथ खिलाड़ियों ने खिंचवाई ग्रुप फोटो। प्रधानमंत्री से मिलकर उत्साहित नजर आए खिलाड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग और कुश्ती में बड़ी सफलता और एथलेटिक्स में नए रिकॉर्ड बने। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सराहा जिन्होंने देश के लिए 11 स्वर्ण सहित 38 पदक जीते। चंबा में देख रहा है बदले मौसम का असर। पांगी घाटी में हुई तेज बर्फबारी। चंबा के निचले इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज। पूरे इलाकों में बढ़ी ठिठुरन। आसपास और आसपास की ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कों पर बढ़ी फिसलन। सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील। रुद्रप्रयाग केदारनाथ में भी बर्फबारी का दौर। तापमान में गिरावट। मौसम में बड़े बदलाव के बावजूद धाम में भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी। श्रद्धालुओं से बदले मौसम में एहतियात बरतने की अपील। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में होगी बर्फबारी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी।

रूपसंग नाला के पास सड़क पर फिसलन से प्रभावित हुई थी आवाजाही। रूपसंग नाला के पास पुलिस जवान मौके पर थे मौजूद। जम्मू कश्मीर की वादियां बर्फबारी से पूरी गुलजार। गुलमर्ग में हिमपात से बढ़ी पहाड़ों में खूबसूरती। जम्मू कश्मीर की कुरेज घाटी में इस मौसम की पहली बर्फबारी। घर, रास्ते, पहाड़ सब कुछ सफेद। बर्फबारी के कारण मुगल रोड बंद। सोनमर्ग, लद्दाख हाईवे और बांदीपुरा गुरेज रोड में भी आने जाने वालों को हो रही है परेशानी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने मुगल रोड और पीर की गली इलाके में बर्फ हटाने का काम तेज किया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। केलांग समेत कई इलाकों में बर्फबारी। जिला मुख्यालय केलांग सहित दारचा, जिस्पा और सिस्सू में गिर रहा है बर्फ के फाहे। केलांग में सीजन की पहली बर्फबारी। ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ दिन पहले ही हो चुका है हिमपात। बर्फबारी से ठंड की चपेट में पूरा इलाका। चार से आगे वाहनों की आवाजाही में फिलहाल रोक। लद्दाख को मिले विकास की स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लेह एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी तोहफा। 640 करोड़ रुपए से बने पैसेंजर टर्मिनल भवन यात्रियों को समर्पित। अजमेर में बंगाली हिंदू समाज इस वर्ष मना रहा अपना 99वां दुर्गा पूजा महोत्सव। इस वर्ष कार्यक्रमों की शुरुआत 16 अक्टूबर को कल्पारंभ और आनंद मेले के साथ होगी। 17 अक्टूबर को नव पत्रिका प्रवेश और मां दुर्गा की स्थापना की जाएगी। सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन विशेष पूजा। पंचमी पर कोलकाता के पंडालों में दिख रही है भक्तों की भारी भीड़। चोर बागान सर्वजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में दिखी भीड़। पंडाल में देवी दुर्गा और उनके बच्चे गहरी ध्यान मुद्रा में नजर आए। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। मां कालका के दर्शन करने के लिए आशीर्वाद। मैहर में शारदीय नवरात्रि की पंचमी को स्कंद माता की पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। उज्जैन के भैरवगढ़ सेंट्रल जेल में हुआ गरबा का आयोजन। कैदियों ने गरबा खेलते हुए देवी मां की आराधना की। पुरुष कैदियों ने महिलाओं की वेशभूषा धारण की। दुर्गा प्रतिमा स्थापित करके भजन और गरबा के जरिए कैदियों ने देवी मां की आराधना की। हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर में मौड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालु दर्शन पूजन करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं। खगड़िया में 200 साल पुरानी दुर्गा मंदिर में हजारों की संख्या में घी के दीपक जलाए गए। महाआरती हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर पहुंचे और मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन करके आशीर्वाद लिया। वाराणसी में सफाई कर्मियों के सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। गुजरात में मोरबी के न्यू पैलेस नवरात्र उत्सव का आयोजन हुआ। बेटियों ने तलवार रास किया। गुजरात के अमरेली जिले के सावरकुंडला में देसी गरबे की धूम। मां पारंपरिक वेशभूषा और देशी सुरों के साथ मां जगदम्बा की आराधना। बाल कोडियार रास मंडली ने पारंपरिक विरासत जीवंत किया। काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण मंदिर शिखर रा सोना चोरी प्रकरण पर बोले मंदिर के सीईओ। खबर को बताया भ्रामक, कहा सोना सुरक्षित। मंदिर प्रशासन ने खबर को बताया निराधार। अधिकारियों के मुताबिक शिखर स्वर्ण मंदिर के लॉकर में रखा हुआ है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में हाई पावर कमेटी की हुई बैठक। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देना मकसद। साफ सफाई, बिजली और मंदिर की व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। भोग प्रसाद की शुद्धता पर भी विचार विमर्श। प्रयागराज में अलग अलग थीम पर सजे दुर्गा पंडाल। कहीं पर नागलोक तो कहीं पर मिकी माउस के नजारे। बाई के बाग इलाके में दुर्गा पूजा के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर तैयार किया गया पद्मा भस्म स्वामी मंदिर। भव्य द्वार रत्न आभूषण की सजावट। प्रयागराज में पश्चिम बंगाल के कलाकारों ने अपनी कारीगरी से अनोखी दुर्गा पूजा पंडाल तैयार की। भव्य सजावट। प्रयागराज

0: माता वैष्णो देवी के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, ठंडे पानी से गुजरने के बाद भक्त करते हैं मां के दर्शन। मोतिहारी में मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं भक्तों की भीड़। पूजा पाठ और जयकारों से गुंजायमान हो रहा है मंदिर परिसर। मां दुर्गा की आराधना के लिए उमड़ रही है भीड़। भक्त मुकेश दास की अनोखी साधना बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। सीने पर कलश रख के मुकेश दास कर रहे हैं कठिन साधना। श्रद्धालु पूजा अर्चना करके मांग रहे हैं सुख समृद्धि का आशीर्वाद। कोई फूल चढ़ा रहा है तो कोई कर रहा है पूजा पाठ। मोतिहारी में केसरिया के पुल तकिया में मां दुर्गा का भव्य दरबार। दर्शन पूजन करने के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मां दुर्गा के दरबार में श्रद्धा और आस्था का संगम। धूप दीप और मंत्रोच्चार। नवरात्र के फलाहार में चाट से कबाब तक का स्वाद। साबुदाना वड़ा, शकरकंदी चाट और राजगिरी कोफ्ते। श्रीखंड और साबुदाना खीर से बड़ा फलाहार का जायका। कुट्टू की पूड़ी के साथ काली मिर्च पनीर का जायका। फलाहारी व्यंजनों में दिख रहा है परंपरा और प्रयोग का मेल। नवरात्र में सात्विक खाने की बढ़ी डिमांड। व्रत के भोजन को स्वादिष्ट बनाने की खास पहल। मंदिर की थीम पर आधारित रेस्टोरेंट्स में खास फलाहार। कांसे की थाली और पत्तल में परोसे जा रहे हैं पकवान। करीब 95% भोजन बिना लहसुन प्याज के तौर तैयार किया जा रहा है। सिर्फ नवरात्र नहीं बल्कि साल भर मिलता है खास फलाहार। सिद्धार्थनगर से गुजरा महाबली ट्रक। अब अयोध्या में तैयार किए जा रहे हैं रामलला के वस्त्र। वस्त्र बनाने के लिए सूरत में मंगाया जा रहा है मखमल, रेशम और वस्त्र बनाने का अन्य सामान। भगवान राम को पहले मशहूर डिजाइनर मनीष के डिजाइनर कपड़े पहनाए जाते थे और दिल्ली से अयोध्या पहुंचाए जाते थे, लेकिन ट्रस्ट ने अब यह व्यवस्था कर दी है बंद। त्योहारी सीजन के बीच अहमदाबाद नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। बहरामपुर इलाके में एक फैक्ट्री से करीब 2000 किलो संदिग्ध केचप बरामद। आलू के पाउडर, स्टार्च, पानी, रंग, एसिड और अन्य रसायन पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के आतरस में एक रेस्टोरेंट को 18 रुपए की पानी की बोतल 20 में बेचना पड़ा भारी। उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट पर लगाया 1,00,000 का जुर्माना। ग्रेटर नोएडा के सिटी मॉल पर खाद्य विभाग की छापेमारी। 6 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए, 240 लीटर घी और 18 किलो मिर्च पाउडर सीज। तमिलनाडु की जीपी ने फिल्म जेलर 2 के आइकॉनिक सॉन्ग का बनाया एआई वीडियो। एक्स अकाउंट पर लिखा वन नेम वन लेगेसी वन लीडर टू रूल द नेशन। प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके में बदल गया नाम, नया नाम होगा कृष्णपुरी। गुरुग्राम की सोसाइटी में बिजली बिल की मनमानी लूट पर लगेगी लगाम। मुख्यमंत्री ने दिए ऑडिट के निर्देश। अब फोन की घंटी बजते ही पता चल जाएगा कौन कर रहा है कॉल। 1 नवंबर से नया नियम होगा लागू। कॉल आने पर मोबाइल नंबर के साथ कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने फोन करने वाले की पहचान से जुड़े नियम बदल दिया। बिहार के सहरसा में महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नगर निगम की ओर से आयोजन किया गया। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक भी पहुंची सहरसा। महिला पहलवान को बढ़ाया हौसला। आगरा में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने इंसानियत का फर्ज निभाया। झोपड़ी में जिंदगी गुजार रही बुजुर्ग विधवा की मदद की। फिल्म जेलर 2 आज सिनेमाघरों में हुई रिलीज। फिल्म का तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज होगी। रिलीज होने के बाद जेलर 2 को लेकर लोगों की आने लगी प्रतिक्रिया। फिल्म को बताया जा रहा है ब्लॉकबस्टर। कच्ची में रजनीकांत के फैंस ने मनाया फिल्म की रिलीज पर जश्न। ढोल की थाप पर नाचते नजर आए फैंस। सिनेमा घरों के बाहर बड़ी संख्या में रजनीकांत के फैंस बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर पहुंचे। थलाइवा के फैंस हाउसफुल थिएटर्स के अंदर रजनी के फैंस ने जमकर किया डांस। सभी थिएटर्स हाउसफुल। अभिनेता धनुष भी रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 देखने के लिए पहुंचे थिएटर। फैंस का बढ़ाया हौसला। दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यह फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ का आंकड़ा पार किया। कॉफी विद करण अपने आखिरी सीजन के साथ ओटीटी पर लौट चुके हैं। शो के पहले एपिसोड में सलमान खान बतौर गेस्ट नजर आए। यामी गौतम अपनी फिल्म नई नवेली की रिलीज से पहले पहुंची अयोध्या। रामलला के दर्शन करके आशीर्वाद लिया। फिल्म की सफलता के लिए प्रार्थना की। रश्मिका मंदना अपनी फिल्म रणबाली के किरदार जयम्मा से हुई प्रेरित। 400 परिवारों को गोद लेने का किया फैसला। रोहित जैन ने 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ नया ओटीटी प्लेटफॉर्म टाइगर टीवी किया लॉन्च। प्लेटफॉर्म पर आज से हिंदी और पंजाबी कंटेंट। सिनेमा प्रेमियों के लिए आज से और कल का दिन बहुत अहम। कई बड़ी फिल्में की सौगात मिलने जा रही है। जेलर 2, प्रहार, नई नवेली और रणबाली समेत 5 बड़ी फिल्में। कृति सेनन की मैडॉक फिल्म्स की नई हॉरर फिल्म में हुई एंट्री। फिल्म को स्त्री से भी ज्यादा डरावना बताया जा रहा है। फिल्म रामायण का इंटरनेशनल ट्रेलर बेंगलुरु में किया जाएगा लॉन्च। मेकर्स ने फिल्म ग्लोबल कैंपेन शुरू किया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोग
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
0: हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक वास्तुकला और लोक कला को सहेजने की दिशा में रिटायर शिक्षक विनय अवस्थी तन मन धन से लगे हुए हैं। विनय अवस्थी बांस और लकड़ी से हिमाचल के ऐतिहासिक मंदिरों और पारंपरिक स्लैट पोश मकानों की आकर्षक प्रतिकृतियां तैयार कर रहे हैं, जिसे देखकर लोग तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में लगाई गई है, जिसे देखकर सैलानी भी मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं।
6: अयोध्या का श्री राम मंदिर, केदारनाथ महादेव मंदिर, आदि हिमानी चामुंडा मंदिर और कई प्रसिद्ध मंदिरों के रेप्लिका, ये हिमाचल की अनूठी बांस कला की देन है, जिसे साकार कर रहे हैं विनय अवस्थी। विनय अवस्थी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन लकड़ी और बांस से तैयार किए गए ये मॉडल इस बात के सबूत हैं उनके जुनून का। उनका मानना है कि बांस की अनूठी कला को दुनिया के सामने लाना है और हिमाचल की पारंपरिक वास्तुकला और लोक कला को सहेजने की जरूरत है, इसकी कोशिश वो कर रहे हैं।
8: ये आर्ट जो मैं 2019 से कर रहा हूँ, और मैडम मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी कलाकृतियां हैं उनको बनाने में 15 दिन से ज्यादा समय लगता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इनको बड़ी तन्मयता के साथ बनाऊं, ताकि देखने वाला जो है वो देख करके मतलब जो है वो उसको पसंद करे। लोकल बैम्बू यूज करता हूँ, उसको काट करके सुखा करके और अपने ही हाथों से सारा कुछ करता हूँ, और जब ये रेप्लिकास कोई अंतिम रूप दे लेती है तो मैं उसको ट्रीट करके फिर जो प्रदर्शनी में लगाता हूँ।
6: बांस और लकड़ी से हिमाचल के ऐतिहासिक मंदिरों और पारंपरिक स्लेट पोशा मकानों की आकर्षक प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी आजकल धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में लगाई गई है।
9: अभी टेंपल्स के रेप्लिकास हैं, पूरे हिमाचल को इन्होंने कवर किया हुआ है। रिज शिमला का भी है इसमें, मुंडा टेंपल और ये रिज शिमला, रिज जो है शिमला पे उसका, और भीमाकाली टेंपल, 84 टेंपल, इन सब के रेप्लिकास इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं।
10: ये टेंपल्स के ये भी काफ़ी अच्छा है, इट्स वेरी गुड। सो ओवरऑल आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस नोइंग अबाउट योर एंशिएंट हिस्ट्री एंड ऑल दोस थिंग्स, प्रीटी गुड, बहुत अच्छा है, काफी अच्छा लगा।
6: हिमाचल की पारंपरिक कला और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे प्रदर्शनी का आयोजन वक्त वक्त पर किया जाता है। प्रशासन की कोशिश भी रहती है कि ऐसी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान मिल सके, ताकि हिमाचल और देश के युवा इस पारंपरिक कला को नया आयाम दे सकें।
11: ऐसे लोग हैं जो ऐसी आर्ट फॉर्म्स को जीवित रख रहे हैं, आप इनके देखेंगे जब, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी ये दिखाएं कि स्लेट पोस्ट मकान, डबल मंजिल, सिंगल मंजिल, जो हमारा शिमला का चर्च है और जो इतने सारे हिमाचल के मंदिर हैं उनके रेप्लिका जिन्होंने बनाए हैं, बहुत बारीकी से काम किया है। और कहीं ना कहीं आजकल ऐसा हो रहा है कि ये प्रतिभा जो है, ऐसी आर्ट फॉर्म जो हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, तो अगर ऐसे में कोई ऐसे आर्टिस्ट सामने आते हैं तो हमें उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानना चाहिए।
6: विनय अवस्थी ऐसी प्रतिकृतियों को बनाने में बांस काटने से लेकर कलाकृतियों को अंतिम रूप देने तक का ज्यादातर काम खुद करते हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें इस काम का कुछ सहयोग मिले तो वो इस कला को देश और दुनिया तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों
12: नवरात्रि में कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, नवरात्रि में क्या होगा देवी का पूजा विधान और कैसे होगा वैवाहिक समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ किस्मत कनेक्शन में।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
13: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
2: एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चैंपियंस ने शेयर किए अपने अनुभव। अब अयोध्या में ही तैयार हो रहे हैं रामलला के वस्त्र, सूरत से मंगाया जा रहा रेशम मखमल सहित दूसरे सामान, मंदिर ट्रस्ट ने वस्त्र निर्माण के लिए किए इंतजाम। नवरात्र के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के बीड में लगा श्रद्धालुओं का तांता। बेलगांव के रेणुका माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हजारों भक्त।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। नवरात्र का महापर्व देश भर में पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। हर शहर में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। आज नवरात्र का 5वां दिन है और भक्त मां स्कंद माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है मां दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता की आराधना। आपको बता दें कि नवरात्र के पावन दिनों में हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की साधना होती है। नवरात्र के 9 दिनों में देवी मां की साक्षात कृपा बरसती है। आज मां दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी कि देवी स्कंद माता की पूजा हो रही है, जिन्हें शास्त्रों में भगवान कार्तिकेय की माता माना गया है। मान्यता है कि मां स्कंद माता की कृपा हो जाए तो संतान से जुड़ी हर समस्या दूर हो सकती है और संतान सुख मिल सकता है। मां की वंदना के लिए दिल्ली से लेकर बिहार तक भक्तों का सैलाब उमड़ा है। मां के मंदिरों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ दर्शन पूजन के लिए पहुंच रही है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भक्त माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान भक्तों में खूब उत्साह नजर आया और बिहार के खगड़िया शहर के सनहौली दुर्गा मंदिर में दिव्य और अलौकिक नजारा देखने को मिल रहा है। देश भर में शक्ति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर शहर दुर्गा पंडाल अनोखी छटा बिखेर रहा है। इन पंडालों की रौनक देखते ही बन रही है। आकर्षक पंडालों में भव्य सजावट के बीच भक्त मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं और खास बात यह है कि हर पंडाल एक नई कहानी बयां कर रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है शहर शहर भव्य दिव्य पंडालों में विराजमान मां अम्बे। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक और धनबाद से लेकर प्रयागराज तक हर पंडाल किसी ना किसी खास थीम पर तैयार किया गया है, जो कि कोई ना कोई सीख और संदेश देता नजर आ रहा है।

0: नवरात्र उत्सव अपने चरम पर है। कोलकाता से लेकर प्रयागराज तक भव्य दिव्य पंडाल सज गए हैं। कोलकाता की सड़कों पर रौनक ऐसी है कि हर गली उत्सव के रंग में रंग गई है। हर पंडाल माँ दुर्गा में आस्था की कहानी बयां कर रहा है। कहीं माँ दुर्गा के दिव्य दर्शन के लिए भक्तों की कतारें हैं, तो कहीं अनूठी थीम और अद्भुत कलाकारी से सजे पंडाल लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। कोलकाता में दुर्गा पूजा की रौनक देखते ही बन रही है। ढाक की गूंज, रोशनी से जगमगाती पंडाल और मां के जयकारे हर तरफ गूंज रहे हैं। कोलकाता के ढाकुरिया शहीद नगर में महामिलन थीम पर पंडाल तैयार कराए जा रहे हैं। इस पंडाल का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि के हाथों किया गया। दरअसल महामिलन थीम इस क्षेत्र के समुदाय, संघर्ष, उनके इतिहास और जीवन यात्रा को दर्शाती है। आयोजक के मुताबिक पंडाल की महामिलन थीम का उद्देश्य है कि जब सामूहिक होती है तभी शक्ति पूजा संभव हो पाती है।
1: सेम सिस्टम है और महामिलन हम श्री रामचंद्र और श्री राम कृष्ण के बिना नहीं होता है। श्री रामचंद्र जो अकल बोधन किए थे, तब जो सीता माता को उद्धार करने के लिए गए थे, तो उनको महामिलन करके कार्बिलरी से लेके बानरसेना तक, मनुष्य से लेके देवता तक पूरा प्रकृति उनका साथ दिया था, महामिलन घटवाया था।
0: आस्था के ऐसे ही अद्भुत रंग प्रयागराज में देखने को मिल रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में इस बार दुर्गा पूजा सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि कला और कल्पना का भी अद्भुत संगम बन गई है। शहर के कटघर इलाके में बनाया गया नागलोक थीम का पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल में सांपों और नागलोक की भव्य सजावट श्रद्धालुओं को एक अलग ही दुनिया का एहसास करा रहा है।
2: जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, माता के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। अब माँ की मूर्ति के पास हम चलेंगे, जो कि बेहद सुंदर तरीके से माँ की इस मूर्ति को यहाँ लाया गया है। जो भक्त हैं उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं और पूरा जो थीम है इस केरल के पद्मनाथन मंदिर की तरह है। और जो दरवाजे भी हम दिखाएंगे आपको, और ये दरवाजे देखिए जिस तरह से वहाँ तमाम दरवाजे हैं, और इन दरवाजों में जो भी आभूषण या जो जो भी चीज़ें रखी गई हैं वो दरवाजों पर दिखाया गया है।
0: वहीं प्रयागराज के नेता नगर में बच्चों के लिए मिक्की माउस थीम का पंडाल तैयार किया गया है। रंग बिरंगी सजावट और कार्टून किरदारों के बीच माँ दुर्गा के दर्शन करने का अनुभव बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी खूब पसंद आ रहा है। भव्य दिव्य पंडाल की ऐसी ही रौनक झारखंड के धनबाद में देखने को मिल रही है। धनबाद में स्टील गेट दुर्गा पूजा समिति की ओर से करीब 40 लाख रुपए की लागत से एक अनूठा पंडाल तैयार किया गया है। तीन मोर पंखों की आकर्षक थीम और उसके भीतर अंडमान निकोबार की जनजाति संस्कृति की झलक इस पंडाल को खास बना रही है। आयोजकों के मुताबिक मोर पंखों की मनमोहक बनावट के बीच जहां पंडाल की भव्यता श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगी, वहीं इसके अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनजातियों की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने का अवसर भी मिलेगा। जाहिर है आने वाले कुछ दिनों तक देश भर में आस्था और उत्सव की ऐसी ही रौनक देखने को मिलने वाली है। ऐसे में अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं तो ये मौका आपके लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं। भव्य पंडालों की खूबसूरती से लेकर रंग बिरंगी रोशनी, पारंपरिक नृत्य संगीत और लजीज पकवानों का स्वाद चखने के लिए ये किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और धनबाद से सुथन मोदक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुजरात में नवरात्र उत्सव में मां की भक्ति पारंपरिक गरबा रास के जरिए की जाती है। ये गुजरात की सदियों पुरानी संस्कृति, लोक परंपरा और मां जगदम्बा के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक भी है। गुजरात के अलग अलग शहरों में गरबा रास की धूम है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। गुजरात के गरबा में आस्था और संस्कृति का संगम। आपको बता दें कि अमरेली के सावरकुंडला शहर में देवला गेट पर पिछले 78 वर्षों से बाल खोड़िया रास मंडली अपनी अनूठी परंपरा को जीवंत बनाए हुए है। आज के समय में जब आधुनिक संगीत और नए अंदाज के त्योहारों की दुनिया में अपनी खास जगह बन रही है, वहीं ये रास मंडली अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है।
0: नव नवरात्रि के रंग इस बार कई रूपों में नजर आ रहे हैं। गुजरात से लेकर उज्जैन तक आस्था, परंपरा और तकनीक का ऐसा मेल दिखाई दे रहा है, जहां गरबा के साथ संस्कृति को सहेजने और समाज के लिए कुछ करने का संदेश भी दिया जा रहा है। गुजरात के अमरेली जिले के सावरकुंडला शहर में 78 वर्षों से बाल खोड़िया रास मंडली पारंपरिक देशी रास गरबा की विरासत को जीवंत रखे हुए हैं। आधुनिक डीजे और ऑर्केस्ट्रा के दौर में भी यहां 3 पीढ़ियों से कलाकार पारंपरिक वेशभूषा और देसी सुरों के साथ मां जगदम्बा की आराधना करते हुए रास की प्रस्तुति दे रहे हैं। यहां बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक कलाकार पारंपरिक अंदाज में मां जगदम्बा की आराधना करते हैं। यहां आधुनिक संगीत के बजाय माइक पर देशी सुरों, दोहों और छंदों के माध्यम से मां की स्तुति की जाती है और उन्हीं सुरों पर पारंपरिक रास खेला जाता है। गुजरात के जामनगर में नवरात्रि के दौरान एक ऐसी अनोखी गरबी का आयोजन होता है, जहां भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, गणपति बप्पा और श्री कृष्ण सहित अनेक धार्मिक पात्र एक साथ पारंपरिक रास गरबा करते नजर आते हैं।
4: ये गरबी 66 साल पुरानी है और ऐसी गरबी पूरे भारत में वो कम ही जगह आपको दिखने मिलेगी। जामनगर में ऐसी गरबी एक ही जगह माता इधर होती है। इसमें अलग अलग भगवान के रूप होते हैं, गणपति, फिर शंकर भगवान, कृष्ण जी, राम जी, ऐसे अलग अलग पात्र इधर निभा रहे हैं।
0: गुजरात के ही मोरबी में क्षत्रिय समाज द्वारा राजपूत समाज की बहनों और बेटियों के लिए गरबा रास का आयोजन किया गया। इस गरबा में महिलाओं ने तलवार रास पेश किया। मोरबी राजपरिवार की सहमति से मोरबी के न्यू पैलेस के आंगन में रासोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें क्षत्रिय समाज की 70 से ज्यादा बेटियों ने हिस्सा लिया। नवरात्रि के दौरान नवसारी में वृहद अनावल समाज के गरबा में पारंपरिक संस्कृति का रंग देखने को मिल रहा है। पारंपरिक परिधानों में सजी महिला पुरुष में पारंपरिक गरबा नृत्य के जरिए माँ अम्बे की आराधना करते हैं। आधुनिकता के दौर में भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखने का ये प्रयास नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का काम करता है। इस महोत्सव की सबसे खास बात यह है कि यहाँ गरबा केवल मनोरंजन या धार्मिक उत्सव का माध्यम नहीं, बल्कि समाज सेवा से जुड़ी पहल भी है।
5: हम पिछले 11 साल से नवरात्रि का आयोजन कर रहे हैं। इस बार हम एक नई तरह की नवरात्रि लेके आए हैं। इस बार माता जी के जो 9 स्वरूप है, जो 9 दिन अलग अलग माता जी की आराधना की जाती है, वो माता जी के रंगों के ऊपर हमने पूरा डेकोरेशन किया है।
0: नवरात्रि के ये रंग अलग अलग जरूर हैं, लेकिन माँ की आराधना का ये भाव जो उत्सव से आगे बढ़कर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने वाला होता है। जामनगर से दर्शन ठक्कर, नवसारी से रौनक जानी, अमरेली से फारूक भाई, मोरबी से राजेश अंबालिया और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, गुड न्यूज टुडे।
3: दक्षिण भारत में भी शक्ति उत्सव की भव्य और मनमोहक झलक देखने को मिल रही है। कर्नाटक के तटीय शहर मैंगलुरु के विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव बड़े धूमधाम से यहां मनाया जा रहा है। भक्ति, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है दशहरा उत्सव में रंग बिरंगी रोशनी से जगमग मंदिर। आपको बता दें कि मैंगलुरु में मां दुर्गा की आराधना के साथ मनाया जाने वाला ये 10 दिवसीय उत्सव अपनी भव्य सजावट, जगमगाती रोशनी और आकर्षक झांकियों और अनूठी धार्मिक परंपराओं के लिए खास पहचान रखता है। उत्सव के दौरान पूरा शहर मानो रोशनी और आस्था के रंगों में रंग जाता है।

0: ये मैंगलुरु के दशहरा उत्सव की रौनक है। 10 दिनों के इस धार्मिक आयोजन में श्री गोकर्णनाथेश्वर मंदिर पूरी तरह रंगा नजर आ रहा है। न सिर्फ मंदिर परिसर शानदार लाइटों से जगमगाया है, बल्कि मंदिर तक आने वाले सभी मार्गों पर दशहरा समारोह की भव्य सजावट है। ये उत्सव देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है, जो भक्ति, ज्ञान और समाज में शक्ति के अनेक स्वरूपों का प्रतीक है। 11 अक्टूबर से शुरू हुए इस 10 दिनों के उत्सव में धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रंगों की भी अद्भुत झांकी देखने को मिलती है। विशाल शोभा यात्रा के दौरान मंदिर में मां शारदा, नवदुर्गा और भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाएं स्थापित किए जाने से इस उत्सव का शुभारंभ हुआ। इस उत्सव की सबसे बड़ी पहचान पारंपरिक पीली पेशा है, जिसमें कलाकार शरीर पर बाघ की तरह पेंट करके ढोल की थाप पर शानदार नृत्य करते हैं। मंगलुरु के दशहरा उत्सव में शामिल होने के लिए पूरे देश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। नवरात्रि के दौरान आस्था, भक्ति, संस्कृति और खेल भावना के रंगों से भरा ये उत्सव श्रद्धालुओं को और यहाँ आए सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। वो भी क्यों ना, भारतीय धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की इससे अद्भुत वानगी भला और कहां देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: माँ दुर्गे की भक्ति के लिए लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं, लेकिन जब बात खाने की आती है तो हर दिन फल, साबूदाना खिचड़ी, आलू की सब्जी और कुट्टू की पूरी खाते खाते मन ऊब जाता है। ऐसे में अगर व्रत की थाली में चटपटी चाट से लेकर कबाब, कोफ्ते मिल जाए तो फलाहार का मजा दोगुना हो जाता है। इसी तरह की व्रत की मजेदार थाली जयपुर में मिल रही है। ऐसे में हमारी आज की जो 5वीं गुड न्यूज है वो है नवरात्र पर फलाहार में चाट से कबाब तक का स्वाद। जी हाँ, इसको तैयार किया है शेफ अभिषेक शर्मा ने, जिनसे बात की हमारे संवाददाता रिदम जैन ने।
2: तो आपकी वो बोरियत मिटाने के लिए गुड न्यूज टुडे पे हम ये गुड न्यूज भी लेके आ गए हैं कि नवरात्र में अलग अलग थालियां हैं वो चलने लग गई है, जिसमें आपको ऐसा खाना मिलेगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। होगा सारा ऐसा खाना जो आप नवरात्र में बिल्कुल खा सकते हैं और वही सामग्री है जो आप अक्सर घर में इस्तेमाल करते हैं, पर उससे कुछ इनोवेशन ऐसी की गई है जिससे आपके जो टेस्ट बड्स हैं उनको भी मिलेगा एक सरप्राइज। और ये इनोवेशन है शेफ अभिषेक की, जो कि श्री मोटूराम प्रसादम के शेफ हैं, और इन्होंने ये ऐसी थाली क्यूरेट की है जो कि एक साथ 3 से 4 लोग भी इसको एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ आके अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हैं। तो सर, नवरात्रि की स्पेशल थाली आपने क्यूरेट की है, क्या थॉट है और कितने टाइम पहले इसको लॉन्च किया था?
3: सो इसको ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए। हम फर्स्ट है जिसने नवरात्रि थाली इंट्रोड्यूस करी जयपुर में। सो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कपल्स होते हैं, घर में 2 जनों के लिए क्या बनाएं। सो घर में बनता है कुट्टू की पूरी बनती है, आलू की सब्जी बनती है, रायता बनता है, साबूदाना वड़े बनते हैं। तो उसको एक थाली में क्यूरेट किया, एक छोटी थाली निकाली, धीरे धीरे करते हुए वो थालियां तो है ही, साथ में हर साल कुछ ना कुछ नया भी निकालते रहते हैं, नई थालियां बनाते हैं। तो इस नवरात्र 2026 में ये हमारा है।
2: बहुत सारी चीजें इसमें मौजूद हैं और आप ही बताइए कि कौन सी चीज क्या है, किस चीज से बनती है।
3: सो हम यहाँ से चालू करते हैं। ये रेगुलर साबूदाना खिचड़ी है, बट इसमें थोड़ा सा राजस्थानी टच है, सो ग्रीन चिली थोड़ी ज्यादा मिलेगी। वहीं नेक्स्ट आते हैं तो हमारा नया चीज है ये आलू की और शकरकंदी की चाट है। ठीक है, सबको भुना है, आलू और शकरकंदी को भुना, उसकी एक चाट बनाई है, व्रत के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर हमारी पूरी के लिए पनीर की सब्जी आ गई, इधर आलू की सब्जी आ गई। ये हमने एक 3 मिनट से साबूदाना राजगिरी के आटे से हमने कोफ्ते बनाए हैं, जिसे हम बड़ा कहते हैं, तो उसका दही बड़ा प्रिपेयर किया है। सेम आप देखेंगे तो कुट्टू की पूरी है यहाँ पे। कुट्टू की पूरी में भी हमारे सिर्फ कुट्टू नहीं होता, साथ में राजगिरा भी होता है, थोड़ा सा पोटैटो भी होता है।
1: टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क यानी कि टाटा जू में बाघों के कुनबे में 3 नए मेहमानों का आगमन हुआ है। यहां पर बाघिन सुनैना ने 2 मादा और 1 नर शावक को जन्म दिया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 6वीं गुड न्यूज है वो है जमशेदपुर चिड़ियाघर में आए 3 नन्हे मेहमान। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड के जमशेदपुर में स्थित टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में इन दिनों खुशियों का माहौल है। यहां पर बाघिन सुनैना ने तीन नन्हे शावकों को जन्म दिया है। शावकों में दो मादा और एक नर शावक शामिल है। शावकों की किलकारियों के साथ चिड़ियाघर में रौनक बढ़ गई है। बाघिन सुनैना पहली बार मां बनी है, जबकि इनके पिता का नाम रुद्र है। रुद्र को महाराष्ट्र के नागपुर स्थित गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर से जमशेदपुर लाया गया था। चिड़ियाघर प्रबंधन ने शुरुआती देखभाल और निगरानी के बाद अब इनके जन्म की जानकारी साझा की है। तीन नए सदस्यों के आने से चिड़ियाघर में बाघों का परिवार और बड़ा हो गया है। पहली बार मां बनी सुनैना से अनजाने में एक मादा शावक को चोट लग गई थी। इसके बाद चिड़ियाघर के डॉक्टर्स ने तुरंत इलाज किया और घाव पर टांके लगाए। फिलहाल उस शावक की हालत में सुधार हो रहा है और वो खतरे से बाहर है और उसका वजन लगभग 1.8 किलोग्राम है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। कहीं बर्फ की सफेद चादर में लिपटी पहाड़ों की चोटियां जन्नत का एहसास करा रही है, तो कहीं बारिश की बूंदे मौसम को सुहाना बना रही है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम ने ली करवट। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की वादियों में सीजन की पहली बर्फबारी ने खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। गुरेज घाटी से लेकर सोनमर्ग की ऊंची पहाड़ियों तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और इन दिलकश नजारों के बीच कश्मीर की वादियां सैलानियों को अपनी ओर बुला रही है।
4: बर्फबारी के बाद हरे भरे पहाड़ एक बार फिर सफेद चादर से ढके हुए हैं। कश्मीर की ऊंची पहाड़ियां इन दिनों बर्फ की खूबसूरत चादर ओढ़े किसी जन्नत से कम नजर नहीं आ रही। वादियों की खूबसूरती और सैलानियों की बहार कुदरत के इस नजारे को और भी दिलकश बना दे रही है। उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी से पूरा पहाड़ी इलाका ही सफेद नजर आ रहा है। मैदानी क्षेत्रों में तो करीब 2 इंच और ऊंचाई वाले इलाकों में 4 से 5 इंच बर्फ दर्ज की गई है। पीर पंजाल रेंज में सीजन की पहली बर्फबारी से ही श्रीनगर को पुंछ से मिलाने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फ से ढकी हुई है।
5: दक्षिण कश्मीर शोपियां के पीर गली इलाके में अभी हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बर्फ ही बर्फ जो है इसमें पड़ी हुई है कल शाम से। दरअसल आपको बता दें कि ये एक बालाई इलाका माना जाता है और साथ में ही इसके जो है एक हिस्टोरिकल मगर रोड जिसको कहा जाता है वो चल रहा है। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे गुरेज हो, कुपवारा हो या गुलमर्ग हो, गुलमर्ग के साथ साथ जो है पीर गली इलाकों में भी जो है बर्फबारी हो रही है। लगभग कम से कम 5 से 6 इंच बर्फ एक्यूमुलेट की जा चुकी है। यहाँ पे लोग जो है अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं और यहाँ पे मजे कर रहे हैं।
4: वहीं गुलमर्ग के अफरवाट में भी बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। आमतौर पर अफरवाट में ऐसा बर्फीला नजारा नवंबर के आखिरी दिनों में ही नजर आता है, लेकिन इस साल अक्टूबर महीने में ही दिलकश नजारा देखने के लिए मिल गया। और इस वक्त यहाँ पहुँचे सैलानियों के लिए तो मानो ये खूबसूरत वादियाँ किसी सपने से कम नहीं है। राज्य का लाहौल स्पीति बर्फबारी के आगोश में समा रहा है। यहाँ सुबह सवेरे जब केलांग, दारचा, जिस्पा और सिस्सू जैसे इलाकों में बर्फ के फाहे गिरने शुरू हुए, तो दिन होते होते इन तमाम क्षेत्रों में बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। वहीं हिमाचल के चंबा की पांगी घाटी में भी मौसम ने करवट ले ली है। घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। यहाँ के मशहूर साचपास और सुराल घाटी में तो इतनी बर्फबारी हुई कि पहाड़ चांदी से सफेद चमक रहे हैं। लोगों को अक्टूबर महीने में ही दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास होने लगा है। पहाड़ों पर बदले मौसम का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी नजर आने लगा है। दिल्ली NCR में हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज एकदम बदल कर रख दिया है। तापमान में गिरावट के साथ सुबह और शाम के समय गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। शिमला से विकास शर्मा, चंबा से विशाल आनंद, लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा, श्रीनगर से अशरफ वानी, मीर फरीद और शोपियान से एजाज डार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें
7: गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चैंपियंस ने शेयर किया अपने अनुभव। अब अयोध्या में ही तैयार हो रहे हैं रामलला के वस्त्र, सूरत से मंगाया जा रहा रेशम मखमल सहित दूसरे सामान, मंदिर ट्रस्ट ने वस्त्र निर्माण के लिए किए इंतजाम। नवरात्र के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के बीड़ में लगा श्रद्धालुओं का तांता, बेलगांव के रेणुका माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हजारों भक्त।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और।
7: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैल जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है, और लोग बिना जांचे पर कहना सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाते हैं, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहाँ वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम करते हैं बेनकाब। तो देखिए आज फैक्ट चेक में सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो दिल्ली का है, जहां पर सीजेपी के प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए सड़क पर कूड़ा फेंका जा रहा है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो 10 अक्टूबर को दिल्ली में हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है और ट्रेनों को रद्द कर दिया गया तो लोगों ने मालगाड़ी की छत पर बैठकर यात्रा की। क्या है वायरल वीडियो के दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं चलिए फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
7: क्या कांग्रेस जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं? सीजेपी विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाए इसके लिए सड़क पर कूड़ा फेंका जा रहा है। दरअसल एक खबर के जरिए ऐसा ही दावा किया जा रहा है। ये खबर इन दिनों खूब चर्चा में बनी हुई है, हमने भी इस खबर की पड़ताल की, आइए देखते हैं।

एफआईआर को लेकर विपक्षी दल और कांग्रेस जनता पार्टी हमलावर हैं। विपक्षी पार्टियां वोट चोरी का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी भी इसी विवाद पर प्रदर्शन कर रही है। एफआईआर विवाद को लेकर दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सबके बीच सड़क पर कचरा फेंकते लोगों का ये वीडियो इस वक्त काफी चर्चा में है। इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो दिल्ली का है, जहां सीजेपी के प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए सरकार सड़क पर कूड़ा फेंक रही है। वीडियो में कुछ लोग एक कचरा उठाने वाली गाड़ी से सड़क पर कूड़ा फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। कूड़ा रोड पर फैलते देख आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है।

0: देखिए, एसआईआर के लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी दल और कांग्रेस जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना लगातार साध रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी लगातार की जा रही है। इन सबके बीच ये वीडियो जो है अचानक सुर्खियां बटोर रहा है। इसमें कुछ लोग एक कचरा उठाने वाली गाड़ी से सड़क पर कूड़ा फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। कूड़ा रोड पर फैलते देखकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। दावा यह किया जा रहा है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। वीडियो को दिल्ली का बताकर लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो हमारे सामने भी आया, हमने इस वीडियो की जांच की। गलत और सही पता करने के लिए हमने फैक्ट चेक भी किया। वीडियो को लेकर जो चौंकाने वाला दावा किया जा रहा था, वीडियो में साफ साफ देखने को मिल रहा है कि नगर निगम की गाड़ी एक फ्लाईओवर के नीचे पहुंचती है और वहां पर कूड़ा फैला दिया जाता है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अरे ये क्या कर रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें कुछ चीजें ऐसी नजर आई जिससे हमें दावे पर थोड़ा शक हुआ। वीडियो में कुछ लोग एक बैनर को लेकर आते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये लोग हमारी मांगे पूरी करो के नारे भी लगा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि किसी विरोध प्रदर्शन के दौरान का वीडियो हो सकता है। एसआईआर और सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हाल फिलहाल में दिल्ली में कई प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों के लगातार तस्वीरें और वीडियोस भी निकलकर सामने आते हैं, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो जैसा कोई दृश्य अभी तक सामने निकलकर नहीं आया। वीडियो में एक और बात गौर करने वाली बात नजर आई कि फ्लाईओवर के ठीक नीचे एक बोर्ड पर प्रेम मंदिर बचरंगा बाजार लिखा हुआ है। जब हमने गूगल मैप्स के जरिए इसकी लोकेशन ढूंढी तो ये सामने आया कि ये प्रेम मंदिर पानीपत में है। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही उठता है जाहिर तौर पर कि क्या पानीपत के वीडियो को जानबूझकर दिल्ली का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। वीडियो में एक पुलिस का जवान भी नजर आ रहा है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल भी यही उठता है कि पुलिस ने सड़क पर लोगों को कूड़ा फैलाने से क्यों नहीं रोका। सोशल मीडिया पर ही ये वीडियो सामने आया, ये खबर हमें किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को क्यों नहीं मिली। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल ये उठता है कि अगर सीजेपी के प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिशें की गई हैं तो उनके समर्थन ने स्कूल लेकर हंगामा क्यों नहीं किया। क्या रिपोर्ट निकलकर सामने आई देखिए।
1: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब ये वीडियो सामने आया तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। जांच के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो एक फेसबुक अकाउंट पर मिला। इस वीडियो को 17 अगस्त 2026 को शेयर किया गया था। यहाँ मौजूद जानकारी के मुताबिक पानीपत में सफाई कर्मचारियों का गुस्सा देखिए, बीच सड़क पर फैलाया कूड़ा। यहाँ ये तो साफ हो गया कि इस वीडियो का 10 अक्टूबर के आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। सर्च के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट एक वेबसाइट पर मिली। इस रिपोर्ट को 17 अगस्त 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक नगरपालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले 17 अगस्त को बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी एकजुट हुए। विरोध प्रदर्शन करते हुए ये कर्मचारी कूड़े से भरा एक बड़ा डंपर लेकर सीधे पानीपत के संविधान चौक पहुंच गए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोशित कर्मचारियों ने डंपर में भरा सारा कूड़ा बीच सड़क पर उड़ेल दिया। एक और वेबसाइट पर 17 अगस्त 2026 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में नगरपालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई, सीवर और फायर कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। ये हड़ताल 6 अगस्त से शुरू हुई थी और इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को 18 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। रिपोर्ट में वायरल वीडियो भी देखने को मिला। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो न तो दिल्ली के जंतर मंतर का है और न ही सीजेपी के आंदोलन से इसका कोई लेना देना है। असल में ये वीडियो हरियाणा के पानीपत का है, जहां 17 अगस्त को नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल के दौरान सड़कों पर कूड़ा फैलाया था। जगदीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: बात करेंगे दूसरी खबर की। 10 अक्टूबर को सीजेपी ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान दिल्ली आने वाले और जाने वाली कुल 245 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। इसी से जोड़ते हुए यह दावा किया जा रहा है कि ये दृश्य 10 अक्टूबर को दिल्ली में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से पहले का है। ट्रेनों को रद्द कर दिया गया तो लोगों ने मालगाड़ी की छत पर बैठकर यात्रा की। हमने इस खबर की पड़ताल की, आइए देखते हैं।

0: कैसा नजारा देख लोग हैरान हैं। ट्रेन में लोगों की इतनी भीड़ देख लोग दंग हैं। लोगों के जुबान पर सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो ऐसे सफर करने के लिए लोग मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो सामने आया, लोग ये कहने लगे कि जान जोखिम में डालकर यात्रा करना कहां से सही है। ये वीडियो धड़ाधड़ शेयर हो रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि ये दृश्य 10 अक्टूबर को दिल्ली में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से पहले का है। ट्रेनों को रद्द कर दिया गया तो लोगों ने मालगाड़ी में सवार होकर यात्रा की। इस वीडियो को दिल्ली का बताया जा रहा है और रेलवे के इंतजाम और यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
1: देखिए, ये वीडियो जैसे ही निकलकर सामने आया, सुर्खियां बटोर लेता है। दावा यह किया गया कि 10 अक्टूबर को सीजेपी के प्रोटेस्ट से पहले कई ट्रेन रद्द होने से यात्रियों की काफी मुश्किलें बढ़ गई, उनको सामना करना पड़ा। आने जाने के लिए लोगों ने मालगाड़ी की छत पर सवार होकर सफर किया। ये दावा हमारे सामने भी निकल कर आया। हमने इस खबर की तहकीकात की। सबसे पहले हमने वीडियो को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये बांग्ला लैंग्वेज हमको समझ में आई। मतलब ये हुआ कि वीडियो पश्चिम बंगाल का हो सकता है। 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली या वहां से चलने वाली प्रमुख ट्रेनों को उनके प्रारंभिक स्टेशनों से ही रद्द किया गया था। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ। ये इशारा मिला कि ये वीडियो 10 अक्टूबर का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो ये खबर सुर्खियों में जरूर होता। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही ये देखने को नहीं मिलता, मेनस्ट्रीम मीडिया में भी हमें जरूर देखने को मिलता। ट्रेन की छत पर सफर करने का जो पूरी तरीके से गैर कानूनी और दंडनीय अपराध है, भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जब तक ट्रेन गार्ड से इस बात से संतुष्ट ना हो जाए कि कोई भी व्यक्ति छत पर नहीं है, तब तक ट्रेन को आगे बढ़ाने का संकेत नहीं दिया जा सकता। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये उठता है कि ट्रेन की छत पर इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे बैठ गए? रेल प्रशासन ने इसे रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? ऑडियो में सिर्फ बांग्ला आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमको देखने को नहीं मिली जिससे ये साबित हो सके कि ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या ट्रेन की छत पर सफर कर रहे यात्रियों ने इस वीडियो के जरिए जानबूझकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है? क्या कुछ सच?
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, द फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई। वीडियो के पीछे की कहानी को सामने लाने के लिए पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये इंस्टाग्राम पेज पर इससे मिलता जुलता एक वीडियो मिला जिस पर लिखा था, चेतावनी, ट्रेन की छत पर या इंजन पर यात्रा करना गैर कानूनी और बहुत खतरनाक है। वीडियो में एक जगह टेक्स्ट में RRBD लिखा हुआ नजर आया। हमने इसे ढूंढा। लगातार खोजबीन करने के बाद रेल एंड रोड बांग्लादेश नाम का एक फेसबुक पेज मिला। पेज पर दी गई जानकारी के मुताबिक इसे बांग्लादेश के ढाका से संचालित किया जाता है। इस पेज पर क्षेत्र के रेलवे नेटवर्क से जुड़े कई वीडियो मौजूद हैं। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि ये वीडियो RRBD के फेसबुक पेज पर 5 सितंबर 2026 को ही साझा किया जा चुका था। इसके अलावा यही वीडियो रेल एंड रोड बांग्लादेश के इंस्टाग्राम पेज पर भी मिला। इससे स्पष्ट है कि वायरल वीडियो बांग्लादेश का है और इसे 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रस्तावित सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से जोड़ना गलत है। RRBD ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट साझा कर वायरल वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक दावों का खंडन किया है। पोस्ट में स्पष्ट किया गया कि RRBD का उद्देश्य केवल बांग्लादेश के रेलवे और परिवहन नेटवर्क में जोखिम भरे सफर के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा है। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से जोड़कर झूठा दावा किया जा रहा है। ये वीडियो बांग्लादेश का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
1: फिलहाल लेना छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला इफेक्टिव चेस सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
6: छोटी हैं पर कमाल के हैं, शरीर में ऐसी फुर्ती ऐसी ऊर्जा, चेहरे पर ऐसे भाव जैसे हर पल नया शब्द लिख रहे हैं। नजरें नहीं हटा पाएंगे आप, भाव भंगिमा से लेकर उसका गेटअप तक सब लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। लोग इस बच्ची में देवी दुर्गा की झलक देख रहे हैं।

लोगों से खचाखच भरी ट्रेन, ट्रेन के अंदर नहीं मिली जगह तो ट्रेन के ऊपर चढ़ गए, एक इंच जगह भी नहीं, फिर ऐसे जाना क्यों है जरूरी।

नवरात्र है तो डांडिया और गरबे की धूम भी है। इनसे त्योहार की रौनक में चार चांद लग जाते हैं और रंगोली माँ के स्वागत में मन के उत्साह को बयां करती है। इस तस्वीर में दोनों साथ आ गए हैं। रंगोली के जरिए डांडिया की झलक पेश की गई है, पर रंगों का चुनाव इतना प्यारा है कि लोग इस रंगोली को बार बार देख रहे हैं।

बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो जो देखते हैं सुनते हैं उसी को फॉलो करते हैं। अब नोटबुक के इस पन्ने को देखें, जिसमें एक स्कूली बच्चे ने परिवार के बारे में ऐसा अनोखा उत्तर लिखा है जिसे पढ़कर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। दरअसल स्कूल में मैडम ने बच्चे को होमवर्क में एक सीधा सा प्रश्न दिया था, जिसमें बच्चे को अपने परिवार के बारे में लिखना था। इस बच्चे ने अपनी घरेलू सच्चाई को बड़ी ही मजेदार अंदाज में पन्ने पर उतार दिया। बच्चे ने जवाब में लिखा, मेरा परिवार खतरों का खिलाड़ी है। मेरे पापा शक्तिमान का रूप है, माँ घर की लक्ष्मी बाई है, बहन मेरी बकरी का रूप है जो दिन भर में मुंह चलाती है। मैं घर का सबसे नालायक हूँ। बच्चे का ये मासूम और मजेदार जवाब लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

पांव छूटे हैं पर संगीत की धुन खूब परखते हैं। अभ्यास लगता नहीं कि बहुत ज्यादा हुआ है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का कोई मंच भी नहीं और ना ही दर्शकों की भीड़ है, फिर भी इन चेहरों पर मुस्कान देखिए और कमर में लचक देखिए, मानो आज तो स्कूल में दिन

तस्वीरें बिहार के एक सरकारी स्कूल की बताई जा रही है, जहां इनकी शिक्षिका ने इन्हें यहां के लोक नृत्य झिझिया से परिचय कराया है, ताकि बच्चे अपनी लोक कला, परंपरा और संस्कृति को जान सके, उससे जुड़ सके।

पल भर में खुशी का माहौल आंसुओं में कैसे बदल जाता है वो इस वीडियो को देखकर बखूबी समझा जा सकता है। वीडियो में एक कजाखस्तानी फाइनेंशियल ब्लॉगर खुली केबल कार की सवारी का आनंद लेती नजर आ रही हैं। एक्साइटमेंट में ये लड़की अपनी सहेली के सामने अपने नए नवेले बरगंडी कलर वाले आईफोन 18 प्रो की अनबॉक्सिंग करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो फोन को डिब्बे से बाहर निकाल कर प्लांट करने की कोशिश करती है तभी अचानक वो डिवाइस उसके हाथों से फिसल जाता है। फोन सीधे पहाड़ के नीचे मौजूद खड़ी और पथरीली खाई में जा गिरता है। फोन की खाई में गिरते ही लड़की का चेहरा देखने लायक था। वो सदमे में आ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। साथ बैठी सहेली भी चीख पड़ती है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: नवरात्रि में कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, नवरात्रि में क्या होगा देवी का पूजा विधान और कैसे होगा वैवाहिक समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ किस्मत कनेक्शन में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए। ऐसी अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तो आपको बता दें कि शक्ति उपासना पर्व के पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा में कहां हुई महाआरती, दिखाएंगे आपको तस्वीरें। साथ ही कोलकाता के किस दुर्गा पूजा पंडाल में कृष्ण के विराट स्वरूप के हुए दर्शन। इसके अलावा पहाड़ों से मैदान तक क्यों बदला मौसम का मिजाज, ये भी खबरें होंगी। लेकिन पहले हेडलाइंस।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
2: एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चैंपियंस ने शेयर किए अपने अनुभव। अब अयोध्या में ही तैयार हो रहे हैं रामलला के वस्त्र। सूरत से मंगाए जा रहे हैं रेशम मखमल सहित दूसरे सामान। मंदिर ट्रस्ट ने वस्त्र निर्माण के लिए किए इंतजाम। नवरात्र के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के बीड में लगा श्रद्धालुओं का तांता। बेलगांव के रेणुका माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हजारों भक्त। शारदीय नवरात्र के मौके पर देशभर में गरबा डांडिया की धूम। चित्रकूट के सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट परिसर में भव्य आयोजन। समारोह में हजारों लोग कर रहे शिरकत। पहाड़ों पर भी मौसम मेहरबान। बाबा केदारनाथ धाम में शुरू हुआ स्नोफॉल। हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक बिछी बर्फ की सफेद चादर। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से गिरा पारा। तेज हवाओं के साथ बदला मौसम का मिजाज। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट।

अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात शारदीय नवरात्र की, जिसका आज पांचवा दिन है। आज देवी दुर्गा के पांचवें स्वरूप यानी कि मां स्कंद माता की पूजा अर्चना घरों और मंदिरों में की गई। सुबह से ही देश के तमाम देवी मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। प्रेम और ममता की प्रतीक मां स्कंद माता को विद्यावाहिनी, माहेश्वरी और गौरी भी कहा जाता है। मान्यता है कि मां स्कंद माता की पूजा से भक्त को ज्ञान की प्राप्ति होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है।

0: प्यारा सजा है देवी माँ का दरबार, मंदिरों में हो रही है जय जयकार, मंत्रोच्चार और भजनों से गूंज रहे हैं माँ के दरबार। आस्था और भक्ति ये माहौल देश के तमाम देवी मंदिरों में नवरात्र के पांचवें दिन भी देखने को मिला। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई माँ के दरबार में पूजा अर्चना के लिए दौड़ता चला आया। कोई माँ को मनाने के लिए फल फूल और मिठाइयाँ लाया है और कोई चुनरी नारियल लाया है, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसी भेंट माँ को अर्पित करने के लिए अपने साथ लाया है। ये तस्वीर दिल्ली के प्राचीन कालकाजी मंदिर की है, जहाँ नवरात्रि के पांचवे दिन माँ स्कंद माता की पूजा के लिए दिन भर आस्थावान भक्तों का रेला लगा रहा।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, मैं रोज आती हूँ माता के दरबार में, बहुत अच्छा लगा। मेरी माँ बहुत ही अच्छी है, माँ की बड़ी शक्ति है, बहुत ही अच्छी है मेरी माँ। जय माता दी।
2: माता रानी सबकी मुरादें पूरी करे, जो भी आ रहा है इस मंदिर में, जो भी कोई आया है, सबकी झोली भरी है माता रानी ने, देर सही पर अंधेर नहीं है, सब सुनती है।
0: प्रेम और ममता की प्रतीक देवी दुर्गा के इस स्वरूप को विद्या वाहिनी, माहेश्वरी और गौरी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माँ है। मान्यता है कि माँ स्कंद माता की पूजा से भक्त को ज्ञान की प्राप्ति होती है और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, माँ अपने भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली भी लाती है।
3: पंचम नवरात्र के दिन भगवत की स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देव सेनापति स्कंद, जिसका नाम कार्तिकेय भी है, उनको जन्म देने के कारण भगवती स्कंद माता के रूप में सुविख्यात हुई। भगवती सिंह माता, तो सिंह पर भगवती स्कंद माता सिंह पर सवार हैं, जिनकी चार भुजाएं, जिनके अंदर दो भुजाओं के अंदर उन्होंने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है और एक एक एक, एक भुजा के अंदर जो है देव सेनापति कार्तिकेय को वोट में लिए हुए हैं और एक भुजा से जो सबको अभय प्रदान करते हुए भगवती जो है करुणा वात्सल्य की साक्षात प्रतिमूर्ति है, उनकी पूजा अर्चना करने से उसियों की जो संतान की प्राप्ति होती है उनका।
0: देश के दूसरे प्राचीन देवी मंदिरों में भी नवरात्रि के मौके पर ऐसा ही भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है, चाहे सतना का मेहर माता का मंदिर हो या खगड़िया का 200 साल पुराना सनहौली दुर्गा मंदिर हो या फिर कोई और देवी मंदिर। माँ के धामों में आस्था का अनंत सैलाब उमड़ रहा है।

0: खगड़िया में तो नवरात्रि के मौके पर देवी मां की महा आरती भी हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने हाथों में दिए लेकर मां की आराधना की। मान्यता है कि सनहौली दुर्गा मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, इसीलिए नवरात्रि में यहां दूर दूर से श्रद्धालु पूजा करने आते हैं।
1: और सन्नि संतानों को संतान, निर्धनों को धन और कष्ट हरण कर कर मैया, यह कष्ट हरने वाली मैया माता जो श्री दुर्गा स्थान सनहौली के नाम मनोकामना सिद्धपीठ के नाम से विख्यात है।
0: शारदीय नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ भवानी की उपासना की थी और उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनकी बेटी के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए ये देवी माँ कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी का प्रिय भोग शहद है, इसीलिए माँ को शहद और शहद से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा से साधक के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है।
2: कात्यायनी जी के प्रिय वस्तुओं में शहद का भोग लगता है एवं हल्दी इनको चढ़ाई जाती है और इनका मुख्य विषय जो है कन्या के विवाह इत्यादि में भी अगर विलंब बाधा आ रही हो या किसी विशेष कार्य में रुकावट पैदा हो रहा हो तो निश्चित रूप से इनकी आराधना करने से वो कार्य सहर्ष पूरा हो जाता है।
0: शक्ति उपासना के इस पावन पर्व में देवी दुर्गा के 9 स्वरूप भक्तों को शक्ति, संयम, साहस, सृजन और ज्ञान का संदेश देते हैं। इसी कड़ी में मां कात्यायनी स्वरूप अन्याय के खिलाफ खड़े होने का संदेश भी देती है। दिल्ली से आशुतोष कुमार, सतना से वेंकटेश द्विवेदी, खगड़िया से स्वतंत्र कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड यस्टरडे।
3: नवरात्र में दुर्गा पूजा के पंडाल अपनी थीम और सजावट के चलते आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कहीं भक्ति के साथ देशभक्ति की झलक है तो कहीं संस्कृति और परंपरा की भावना। देवी दुर्गा और कृष्ण का विराट स्वरूप पंडालों में नजर आ रहा है। कुल मिलाकर मां दुर्गा के हर पंडाल में कुछ नया देखने को मिल रहा है। आस्था और रचनात्मकता का यही संगम इस उत्सव को खास बना रहा है। कोलकाता समेत पूरा पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा के रंग में रंग गया है।

0: आंखों में लगा के वो काजल भाग्य वो जगाने वाली काली माँ महाकाली।
1: कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, यानी खुशियों का शहर। यहाँ के लोगों की खुशियाँ दुर्गा पूजा के दौरान उल्लास का रूप ले लेती हैं। उत्साह और उमंग का माहौल चरम पर होता है। कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान मानो पूरा शहर माँ दुर्गा के आगमन की खुशियाँ मनाने लगता है, क्योंकि यहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार माँ दुर्गा नवरात्र के दौरान अपने घर आती है। और बंगाल के लोग ये मानते हैं कि बेटी घर आई है, इसलिए यहाँ पर दुर्गा पूजा की भव्य तैयारी की जाती है। इसलिए आजकल पूरा शहर महोत्सव के रंग में पूरी तरह से रंग गया है। कोलकाता के चेतला अग्रणी दुर्गा पूजा समिति ने विश्व रूपे विश्व रूपिणी थीम पर पंडाल में भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप और देवी दुर्गा की ब्रह्मांडीय शक्ति को दर्शाया है। यानी माँ दुर्गा जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं, एक माँ अपने जीवन का बलिदान देती है, उन्हीं के स्वरूप को गढ़ा गया है। इसमें भगवान कृष्ण के भी रूपों को दिखाया गया है, क्योंकि मेकर्स का मानना है कि विष्णु जी अपने विश्व रूप से विश्व की रक्षा करते हैं।
2: इस बार का थीम है हमारा विश्व रूपे विश्व रूपिणी, विच मीन्स वन यूनिवर्स, मीन्स यूनिवर्स लाइफ यूनिवर्स, उसमें ये है रिवर्स सब मिलकर जो विश्व रूप होता है उसके ही सृष्टिकर्ता जो है वो ही है हमारा माँ लॉर्ड मीन्स माँ दुर्गा। तो उसके तरफ मैंने वो जो प्रोटेक्ट करता है माँ मैंने पूरा यूनिवर्स को वही है पूरा।
1: ये पंडाल भी कोलकाता की है। तस्वीरें धापुरिया शहीद नगर सर्वोजनीन दुर्गोत्सव समिति के पंडाल की है। यहाँ के पंडाल में माँ दुर्गा पधार चुकी हैं। पंडाल का थीम है महामिलन, यानी भगवान राम भगवान कृष्ण और माँ दुर्गा के स्वरूप का मिलन, यानी भक्ति के लिए शक्ति को जरूरी बताया गया है।
3: महामिलन अब श्री रामचंद्र और श्री राम कृष्ण के बिना नहीं होता है। श्री रामचंद्र जो अकल बोधन किए थे, तब जो सीता माता को उद्धार करने के लिए गए थे, तो उनको महामिलन करके कारबिलरी से लेके बानरसेना तक, मनुष्य से लेके देवता तक पूरा प्रकृति उनका साथ दिया था, महामिलन घटवाया था। और सिर्फ सेम त्रेता युग में हम लोग का श्री कृष्ण एक हाथ में चक्र और एक हाथ में बांसुरी बजा के श्री राधा जी को लेके जो रास किए थे, जो संहार करके जो रासलीला में शामिल हुए थे, उसमें पूरा प्रकृति पूरा जल पूरा वायु पूरा सब कुछ गाय वैर बक्षी सब एक साथ में शामिल होके मनुष्य सब एक साथ में शामिल होके जो महामिलन करके शांति का वार्ता दिए थे, वही हम लोग डिपिट किए हैं। और ये तब भी संभव होता है जब हम लोग भक्ति भर के शक्ति का पूजा करते हैं। शक्ति अगर रहेगा तो ऑटोमेटिक भक्ति आएगा।
1: कोलकाता में देवी दुर्गा पधार चुकी है, महोत्सव का माहौल है, सभी इलाकों के पंडालों की खूबसूरती शानदार नजर आ रही है। दक्षिण कोलकाता में सुरुचि संघ की बात करें तो ये संघ अपने 73वें साल में प्रवेश कर चुका है और थीम है उत्साह। ये पंडाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और देश के लिए उनके बलिदान पर बेस्ड है। पंडाल के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक प्रतिमा लगाई गई है। यहाँ के पंडाल की सजावट और सुंदरता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। पूरे देश में माँ दुर्गा की आराधना का उत्साह बना हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज भी भक्ति और आस्था के रंग में सराबोर है। शहर के अलग अलग इलाकों में अनोखे अनोखे थीम पर दुर्गा पंडालों को सजाया संवारा गया है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु आकर्षित हो रहे हैं। कहीं केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर की भव्य झलक है, तो कहीं नागलोक की रहस्यमय दुनिया और बच्चों के लिए मिक्की माउस थीम पर आकर्षक पंडाल। इस बार संगम नगरी की दुर्गा पूजा सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि कला और कल्पना का भी अद्भुत संगम बन गई है। पश्चिम बंगाल से आए कुशल कलाकारों ने महीनों की मेहनत के बाद इन सुंदर सुंदर पंडालों को तैयार किया है। बारीक कारीगरी, आकर्षक लाइटिंग और भव्य सजावट ने मानो इन पंडालों की शोभा और बढ़ा दी है।
4: कहीं पर डिज्नीलैंड, बाइका बाग डिज्नीलैंड, नेता नगर, अल्लापुर, हर जगह अलग अलग थीम पे पंडाल बनाया गया है जो ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर सजा हुआ है। यहाँ पर पद्माथन मंदिर केरल का थीम पे बना हुआ है और हम है खुल्दाबासी, वहाँ पर प्रेमानंद मंदिर बनाया गया है पंडाल, वो भी बहुत ही भव्य बनाया गया है,
5: बहुत ज्यादा सुंदर है, इतना सोचा नहीं था जितना सुंदर दिख रहा है यहाँ पे आके।
6: ये हमारा केरल में मंदिर है पद्मनाथ मंदिर, उसके थीम पर बना हुआ है जो कि पूरा गोल्डन कलर से बना हुआ है और जो माता रानी की मूर्ति है वो बहुत ही मोहक है और ये हमें लगता है कि प्रयागराज का सबसे बेस्ट दुर्गा पंडाल यही होना चाहिए।
1: दुर्गा पूजा की ये तस्वीरें झारखंड के धनबाद की है, यहाँ की दुर्गा पूजा की अपनी ही रौनक होती है। शहर के अलग अलग पूजा पंडालों में भव्यता और आकर्षण का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। धनबाद के स्टील गेट दुर्गा पूजा समिति की ओर से इस बार करीब 40 लाख रुपए की लागत से एक भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। 3 मोर पंखों की आकर्षक थीम पर आधारित ये पंडाल अपनी अनूठी बनावट के साथ श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनजातियों की परंपराओं और संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया गया है।
7: खासियत यही है कि इस बार जो हमारे राष्ट्रीय पंछी मोर है उसी थीम पर पंडाल का निर्माण कराया गया है और अंदर का डेकोरेशन जो है वो एक अंडमान निकोबार जनजाति आदिवासी क्षेत्र उनका कल्चर को दर्शाया गया है, उसका रहन सहन का स्तर कैसा होता इसी बात पर फोकस किया गया है।
1: यहाँ के पंडाल की अनूठी बनावट और कलात्मक प्रस्तुति और शानदार सजावट इसे खास बना रही है। पूजा समिति की थीम में धार्मिक आस्था के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता की झलक भी देखने को मिल रही है।
8: बहुत अच्छा लगा भैया, सब कुछ खास ही है इसमें, देखो पूरा लकड़ी से बनाया हुआ है तो खास ही है ना।
1: हर पंडाल का अपना सौंदर्य है, अपनी छटा है, हर सजावट के पीछे एक कल्पना है, तो हर पंडाल में माँ के प्रति अटूट आस्था भी है। यही रंग मिलकर दुर्गा पूजा महोत्सव को खास बनाते हैं। जहाँ कला भी उत्सव के रंग में रंग जाती है तो परंपरा और संस्कृति अपने पूरे वैभव के साथ आस्था के रूप में नजर आती है। धनबाद से सिथुन मोदक, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, कोलकाता से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: और अब बात मौसम की, जिसका मिजाज देश के कई राज्यों में बदल चुका है, खास करके उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में, जहां के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। मौसम के मिजाज में आए इस बदलाव की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2-3 दिन मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है।

0: अक्टूबर का तीसरा हफ्ता और इस तीसरे हफ्ते में उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हर तरफ बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी की ये ताज़ा तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आई हैं। चाहे पीर की गली हो, कैलाश रेंज हो, आशापति ग्लेशियर हो या फिर मुगल रोड, घाटी के कई क्षेत्र बर्फबारी की जद में हैं। नौबत ये है कि पहाड़, मैदान, रास्ते और पेड़ पौधे सब बर्फ की सफेद चादर में लिपट चुके हैं।
1: कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे गुरेज हो, कुपवारा हो या गुलमर्ग हो, गुलमर्ग के साथ साथ जो है पीर गली इलाकों में भी जो है बर्फबारी हो रही है। लगभग कम से कम 5 से 6 इंच बर्फ एक्यूमुलेट की जा चुकी है। यहाँ पे लोग जो है अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं और यहाँ पे मजे कर रहे हैं।
0: कश्मीर के कई इलाकों में हुई सीजन की इस पहली बर्फबारी की वजह से कुछ अहम रास्ते भी बंद हो गए थे, जिन्हें खोलने के लिए प्रशासन की टीमों ने फौरन मोर्चा संभाल लिया ताकि गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा प्रभावित न हो। बर्फबारी के बीच राज्य के पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार हो उठे हैं, जो कुदरत की इस खूबसूरत कारीगरी को देखकर काफी खुश हैं।
2: बहुत अमेजिंग, सबको आना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगी, इंडिया में, वर्ल्ड में सबको आना चाहिए। बहुत अच्छी जगह है, इतनी स्नो देखी, लेकिन ये अमेजिंग प्लेस, वी आर सो लकी दैट वी केम टुडे।
3: इतनी बर्फ कभी नहीं देखी थी, आज पहली बार देखी है। काफी कम स्नोफॉल देखी थी, बर्फ होते हुए देखी थी, तो अच्छा लग रहा है।
0: मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिन कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है, जिसे देखते हुए किसानों को सलाह दी गई है कि वो कटाई के बाद रखे गए सेब और धान की फसल को सुरक्षित रखें।
4: कश्मीर में स्पेशली लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रह सकता है ज्यादातर जगहों पर, और कहीं कहीं जगहों पर हैवी रेनफॉल भी कश्मीर में देखे जा सकते हैं। जहाँ तक जम्मू का डिवीज़न की बात है, वहाँ इंटेंसिटी कम होगी, एरिया भी कम होगा इससे, और ये 2 दिन का स्पेल है। इसके बाद 16 तारीख में आइसोलेटेड प्लेसेस पर कहीं कहीं बहुत कम बारिश हो सकती है, और उसके बाद तो फिर आ गए आने वाले टाइम में 24 तारीख तक करीब करीब ड्राई ही वेदर है। ये लाइट टू मॉडरेट ही इंटेंसिटी हाई, जो भी हाई अल्टीट्यूड है उन पर रहेगी, जैसे गुलमर्ग हो गया या पहलगांव है या सोनमर्ग है या गुरेज है, इन जगहों पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसी रेंज में रहेगी जैसे हुई है पीछे, और अभी आगे 2 दिन में भी इसी तरीके की रह सकती है।
0: जम्मू कश्मीर जैसा ही मौसम का मिजाज हिमाचल के भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। लाहौल स्पीति, चंबा, मनाली और धर्मशाला जैसे इलाकों में बर्फबारी ने वहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। जहाँ देखो, जिधर देखो, सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। अक्टूबर में ही बर्फबारी शुरू होने से ठंड का असर बढ़ गया है। तापमान में अचानक गिरावट की वजह से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम में आए इस बदलाव का असर आसपास के निचले इलाकों में भी महसूस किया जा रहा है, यानी लगातार बर्फबारी के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दियों जैसे हालात बनने लगे हैं।
5: बर्फ पड़ चुकी है, अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको बर्फ भी मिलेगी, आप घूमने जाओगे तो वहाँ काफी एंजॉय कर सकते हो, अगर आप स्नो एंजॉय करते हो।
6: बीते 24 घंटों की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से आज अर्ली मॉर्निंग से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और शिमला के आसपास के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ, तथा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में 1-2 स्टेशन में स्नोफॉल है, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और जो कुल्लू के हारिजेज में बर्फबारी रिपोर्ट की गई है। और अगर अमाउंट वाइज बात करें, सबसे हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट शिमला में 81 mm बारिश रिपोर्ट की गई थी। स्नोफॉल अमाउंट की बात करें तो किलोंग में 3 सेंटीमीटर, गोंडला में 5 सेंटीमीटर, तथा जो हमारे जो पासिस हैं जिसमें दारचा वगैरह या बारलाचा है, वहाँ पे भी स्नोफॉल का क्रम अभी भी जारी है।
0: मौजूदा वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर सिर्फ पहाड़ी राज्यों में ही देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में तो दोपहर में अचानक ये बदलाव दिखाई दिया, जहां दिन में ही अंधेरा सा छा गया, तेज हवाएं चलने लगी और फिर झमाझम बारिश भी हुई। इस बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
7: शाम को तो कोई नहीं था, लेकिन इतनी तेज हो जाएगी, कोई अनुमान ही नहीं था इतनी तेज बारिश हो जाएगी। हल्की फुल्की बारिश हो चलो ठीक है, हो जाता है, लेकिन ये तो बहुत ही तेज, बरसात के मौसम से ज्यादा तेज बारिश हो रही है।
8: भयंकर बारिश और तूफान आ रहा है, जिसके कारण मुझे यहाँ एक पंडित जी मेडिकल स्टोर पर रुकना पड़ रहा है और बारिश जो है बहुत भयानक हो रही है, यहाँ पे तूफान भी है।
0: मौसम विभाग का अनुमान है कि 16 अक्टूबर को भी बारिश के कुछ दौर आ सकते हैं। ऐसे में IMD ने लोगों से ऐसे मौसम में खुले स्थानों पर रहने, पेड़ों के नीचे रुकने और बिजली से अशरफ़वानी, शोपियान से एजाज डार, मनाली से मनमिंदर अरोड़ा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
11: नवरात्रि में कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, नवरात्रि में क्या होगा देवी का पूजा विधान और कैसे होगा वैवाहिक समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ किस्मत कनेक्शन में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
14: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
11: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे शीघ्र विवाह के चमत्कारी उपायों की, आपके राशियों के राशि फल की, और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 अक्टूबर 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, प्रातः 6:47 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातः 6:47 तक राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, वैसे तो सावन के महीने में, कार्तिक के महीने में आपको शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है। नवरात्रि में किस तरीके से शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है, आइए जानते हैं। देखिए, नवरात्रि का समय हर दृष्टि से काफी पवित्र माना जाता है। नवरात्रि का समय पवित्र समय है। देवी की अगर आप नवरात्रि में उपासना करते हैं तो इस समय में आप अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में माता कात्यायनी की और माता गौरी की उपासना की जा सकती है। शीघ्र विवाह के लिए माता कात्यायनी और मनचाहे विवाह के लिए माता गौरी की उपासना कर सकते हैं। नवरात्रि में अगर माँ दुर्गा की उपासना विधि विधान से की जाए, नियमों के साथ की जाए, तो विवाह तो जल्दी होगा ही। अगर वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है, कोई बाधा है, तो वो बाधा दूर हो जाएगी।

जीवन में किसी तरह की बाधा है तो वो बाधा आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपकी उम्र 18 से 24 साल के बीच की है और आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? नवरात्रि में किसी भी दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करिएगा, देवी को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करिएगा और इसके बाद ओम दुं दुर्गाय नमः, ओम दुं दुर्गाय नमः इस मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला जप करिएगा और देवी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। पूजा हो जाने के बाद लौंग को अपने पास रख लीजिएगा और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहिएगा। नवरात्रि में किसी भी रात को अगर आप एक बार ये उपाय कर दें तो आपका विवाह शीघ्र होगा। सिंह राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, धन का लाभ होगा, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में समस्या हो सकती है, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, धन की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन

मान रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। जिन लोगों की उम्र 25 साल से लेकर के 30 साल के बीच की है, उनको शीघ्र विवाह के लिए क्या करना चाहिए? नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके पूजा करिएगा। देवी को 3 लाल फूल अर्पित करिए और इसके बाद कम से कम 3 माला या 11 माला कात्यायनी मंत्र का जप करिएगा। कात्यायनी महामाए महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मे कुरुते नमः। कात्यायनी मंत्र का 3 या 11 माला जप करें और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिनों तक अगर आप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, परिवार में अशांति से बचें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा। देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो और विवाह ना हो पा रहा हो तो शीघ्र विवाह के लिए क्या करेंगे? नवरात्रि के अंतिम रात को देवी के समक्ष बैठिएगा। नवमी की रात को एक लाल रंग की चुनरी ले लीजिएगा और उसमें हल्दी की 2 गांठ और चांदी का 1 सिक्का रखिएगा। इसको देवी को समर्पित कर दीजिएगा, उनके चरणों में रख दीजिएगा और इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का 4th अध्याय का पाठ करिएगा और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। पाठ करने के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेट करके अपने बेडरूम में रख दीजिएगा और जब विवाह आपका हो जाए
तो चांदी का सिक्का दान कर दीजिएगा और हल्दी की गांठ जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो तो नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और नवरात्रि के अवसर पर माता गौरी की अगर आप पूजा करें, हर और गौरी यानी शिव और पार्वती जी की अगर आप नवरात्रि के अवसर पर पूजा करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। अगर आप नवरात्रि के पावन अवसर पर अपनी बड़ी से बड़ी बाधा को दूर करना चाहते हैं, अपनी बड़ी समस्या को सुलझाना चाहते हैं, तो नवरात्रि में कम से कम 3 रातों को लगातार रात्रि सूक्त का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कि अगर आप नकारात्मक ऊर्जा को, निगेटिव एनर्जी को दूर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, चांदी की 2 लौंग लेकर आइए, इसको नवरात्रि की किसी भी रात को देवी को अर्पित कर दीजिएगा और अगले दिन इसको घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में बांधकर लटका दीजिएगा। आपका घर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहेगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आए।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।
3: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
2: असम के चिरांग जिले में माता की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण, स्वर्ण जयंती वर्ष पर दुर्गा पूजा समिति की भव्य तैयारी, पंडाल में सजावट का काम जारी। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की होगी पूजा अर्चना, श्रद्धा और भक्ति के साथ सजा मां का दरबार, मंदिरों में हर रोज उमड़ रहा भक्तों का जन समंदर। शारदीय नवरात्र के मौके पर देशभर में गरबा डांडिया की धूम, चित्रकूट के सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट परिसर में भव्य आयोजन, समारोह में हजारों लोग कर रहे शिरकत। नवरात्र के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के बीड में लगा श्रद्धालुओं का तांता, बेलगांव के रेणुका माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हजारों भक्त। अब अयोध्या में ही तैयार हो रहे हैं रामलला के वस्त्र, सूरत से मंगाया जा रहा रेशम मखमल सहित दूसरे सामान, मंदिर ट्रस्ट ने वस्त्र निर्माण के लिए किए इंतजाम। एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चैंपियंस ने शेयर किए अपने अनुभव।

0: चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना भी है जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा गुजरात के अमरेली में पारंपरिक देसी रास गरबा की भी है। देखिए
1: रजनीकांत साउथ सिनेमा के भगवान यूं ही नहीं कहलाते हैं, उनके प्रति लोगों की दीवानगी देखिए। ये नजारा उनकी नई फिल्म जेलर 2 की रिलीज का है। थलाइवा की बड़े पर्दे पर वापसी उनके फैंस के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। सो थिएटर्स के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और अपने प्रिय अभिनेता के लिए अपना प्यार जता रहे हैं। फिल्म की रिलीज का पहला दिन था तो उनका परिवार भी फिल्म देखने थिएटर पहुंचा। पत्नी ने थिएटर में दर्शकों के बीच एक केक काटकर जश्न मनाया तो वहीं अभिनेता धनुष भी फिल्म देखने थिएटर पहुंचे। पति पत्नी में तकरार और रूठने मनाने का पुराने अंदाज वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। पत्नी गहरे कुएं से बाहर आने का नाम नहीं ले रही और पति बेचारा हाथ पांव जोड़कर लगातार माफी मांगे जा रहा है। मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सहरिया गांव का बताया जा रहा है, जहां इन दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पत्नी ने कुएं में छलांग लगाने की धमकी दी और निकल पड़ी और आगे जाकर कुएं में कूद भी गए। पति हड़बड़ाकर पीछे पीछे रस्सी लेकर दौड़ा और उसे बचाने के लिए रस्सी कुएं में डाल भी दी। मजेदार बात ये कि पत्नी ने बचाव के लिए रस्सी तो थाम ली लेकिन बाहर नहीं आई। शर्त ये कि पहले पति माफी मांगे। मरता क्या ना करता, पति ने वहाँ मौजूद गांव के लोगों के सामने बार बार गिड़गिड़ा कर माफी मांगी, तब कहीं जाकर पत्नी बाहर आई। यूपी पुलिस के मिशन शक्ति अभियान के तहत आगरा में पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने वर्दी के साथ इंसानियत का फर्ज भी निभाया। अभियान के तहत एसीपी इमरान अहमद की अगुवाई में जब पुलिस की टीम नरी गांव में महिलाओं का हाल जानने पहुंची, तो उनकी मुलाकात 4 साल से टूटी फूटी झोपड़ी में जिंदगी गुजार रही बुजुर्ग विधवा भूरी देवी से हुई। उन्होंने जब अपना हाल बताया तो पुलिस कर्मियों का दिल पिघल गया। उनके घर में आटा तक नहीं था और बासी रोटी खाकर गुजारा कर रही थी। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले तो उन्हें राशन, फल, सब्जियां और घरेलू जरूरत का सामान दिया और फिर उन्हें बुजुर्गों और महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं को लेकर जागरूक किया। पुलिस की इस मानवीय पहल की लोग सराहना कर रहे हैं, वहीं भूरी देवी पुलिस की मदद पाकर भावुक हो गयी। बस्तर के सुकमा में बदलाव की एक सुंदर तस्वीर सामने आई है। कभी धुर नक्सल प्रभावित रहे इस इलाके में अब शिक्षा और बच्चों के भविष्य पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सुकमा के एसपी मयंक की एक पहल भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये तस्वीरें यहां दोरनापाल के छात्रावास की हैं, जहां सुकमा के एसपी मयंक खुद एक शिक्षक की तरह छात्रों को पढ़ाते और अभिभावक की तरह दुनियादारी समझाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि एसपी मयंक जब औचक निरीक्षण के लिए रात में लड़कों के इस हॉस्टल में पहुंचे, तो मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे ये छात्र विज्ञान पढ़ रहे थे। ऐसे में उन्होंने छात्रों को न सिर्फ विज्ञान पढ़ाया बल्कि प्रयोग करके समझाया भी। पुलिस अधीक्षक ने मोमबत्ती जलाकर विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को सरल तरीके से समझाया। उन्होंने यहाँ छात्रों के साथ रात का खाना भी खाया और उनसे बातचीत करके उनकी पढ़ाई और भविष्य को लेकर मार्गदर्शन भी किया। ये तस्वीरें गुजरात के अमरेली जिले के सावरकुंडला शहर की है, जहां बाल खोड़ियार रास मंडली पिछले 78 सालों से पारंपरिक देसी रास गरबा की विरासत को यूं ही जीवंत रखे हुए है। आधुनिक डीजे और ऑर्केस्ट्रा के दौर में भी यहां नवरात्र में कलाकार पारंपरिक वेशभूषा और देसी सुरों के साथ माँ जगदम्बा की आराधना में रास और गरबा करते हैं। बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक कलाकार पारंपरिक अंदाज में माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं। यहाँ आधुनिक संगीत के बजाय माइक पर देसी सुरों, दोहों और छंदों के जरिए माँ की स्तुति की जाती है और उन्हीं सुरों पर पारंपरिक रास खेला जाता है। मकसद यही कि परंपराएं बची रहें, संस्कृति से जुड़ाव बना रहे।
0: और अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में अचानक से मौसम बदला और अंधेरा जैसा छा गया। इसके बाद शुरू हो गई बारिश। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को भी बारिश का अनुमान है, वहीं पहाड़ों में बर्फबारी का दौर भी जारी है। इस सब से ठंड बढ़ गई है, हालांकि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं।

0: एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में मौसम में अचानक बदलाव आया। आसमान में काले बादल छाए और देखते ही देखते हवाओं के झोंकों के साथ बारिश शुरू हो गई। देश के मैदानी इलाकों में बारिश तो पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिल रही है। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें देखिए, जहां मौसम के करवट लेने के साथ ही झमाझम बारिश देखने को मिली। सुबह के समय घर से कहीं जाने के लिए बाहर निकले लोग इस बारिश में फंसे तो फिर बचाव के लिए सुरक्षित जगह पर रुक गए।
1: ये गीता कॉलोनी की जगह है और बारिश जो है बहुत भयानक हो रही है। यहाँ पे तूफान भी है। मौसम में गर्मी तो थी, लेकिन क्या है कि बिन मौसम बरसात ये होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे जो है बीमारियां काफी और बढ़ेंगी।
0: दिल्ली एनसीआर में मौसम का ये बदला मिजाज शुक्रवार तक देखने को मिल सकता है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके बाद वीकेंड पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। दिल्ली में अक्टूबर के दौरान बारिश के कई दौर देखने को मिले हैं। 12 अक्टूबर को हुई बारिश को पिछले 4 साल में अक्टूबर का सबसे अधिक बारिश वाला दिन बताया गया था। मौसम में इस बदलाव के पीछे उत्तरी पाकिस्तान के आसपास एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और हरियाणा के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन को बताया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाएं भी बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रही हैं। इन वेदर सिस्टम के असर से दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों में बादल, बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक देखने को मिल रही है।
2: बारिश से अच्छी बात ये हुई कि जो दिल्ली एनसीआर का आसमान आपको हमेशा पोल्यूटेड दिखाई पड़ता है, वो फिलहाल स्काईलाइन पूरी तरह से साफ दिखाई देगी। आप दूर दूर तक साफ देख पा रहे हैं। मौसम विभाग ने ये घोषणा की है और कहा है कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में, चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो और हरियाणा के कई हिस्से में तेज बारिश हो सकती है। इस बारिश के बीच कई जगह ओला भी गिर सकते हैं और कई जगह बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने यह साफ किया है कि इस बीच तेज हवाएं भी रफ्तार पकड़ेंगी। IMD ने यह कहा है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से ये बारिश हो रही है।
0: हरियाणा में भी सुबह सुबह काले बादलों ने डेरा जमा लिया और फिर यहाँ भी बारिश शुरू हो गई। ये तस्वीरें करनाल की हैं, जहाँ झमाझम बारिश हुई।
3: सुबह सुबह मौसम बदला है, बाकी ये जो बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। बारिश भी तेज हो रही है,
4: हल्की फुल्की बारिश हो चलो ठीक है हो जाता है, लेकिन ये तो बहुत ही तेज है। बरसात के मौसम से ज्यादा तेज बारिश हो रही है।
0: अब राजस्थान के अलवर की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ भी तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। इससे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई। मौसम विभाग ने जयपुर सहित राजस्थान के 13 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया। अब देश के पहाड़ी हिस्सों की ये रंगत देखिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिछा नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक में अच्छी बर्फबारी हुई है। पहले जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें देखिए, जहां बर्फबारी के बाद पहाड़ों की रंगत पूरी तरह सफेद हो गई है। सोनमार्ग, गुलमर्ग, शोपियां, गुरेज, हर जगह बर्फबारी से पहाड़ों की खूबसूरती और चमक उठी है। पर्यटकों के लिए ये बर्फबारी तो जैसे मुहमांगे मुराद के पूरी होनी जैसी है। वो यहां बर्फबारी का पूरा लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं।
5: बहुत ठंड है, अच्छा मजा आ रहा है। मतलब सबको आना चाहिए यहाँ पे घूमने को।
6: इतनी बर्फ कभी नहीं देखी थी, आज पहली बार देखी है। काफी कम स्नोफॉल देखी थी, बर्फ होते हुए देखी थी, तो अच्छा लग रहा है।
0: शोपियां से होकर मुगल रोड के रास्ते पीर गली तक जाने वाले रास्ते में हर जगह बर्फी बर्फ बिछी नजर आ रही है।
7: आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बर्फ ही बर्फ जो है इसमें पड़ी हुई है कल शाम से। दरअसल आपको बता दें कि ये एक बालाई इलाका माना जाता है और साथ में ही इसके जो है एक हिस्टोरिकल मगर रोड जिसको कहा जाता है वो चल रहा है। आपको बता दें कि BRO ने एहतियातन उस रोड को सुबह सवेरे कुछ जो है पल के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि पीर की गली या दर्जन इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी और जिसके कारण जो है रोड को एहतियाती तौर पर बंद करना पड़ा। लेकिन अभी जो है स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन ओवर हो चुका है, यानी बर्फ जो है इस रोड पे हटाई गई है और गाड़ियों की जो है आमद रफ्त इस पे फिर से चलने लगी। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे गुरेज हो, कुपवारा हो या गुलमर्ग हो, गुलमर्ग के साथ साथ जो है पीरगली इलाकों में भी जो है बर्फबारी हो रही है। लगभग कम से कम 5 से 6 इंच बर्फ एक्यूमुलेट की जा चुकी है। यहाँ पे लोग जो है अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं और यहाँ पे मजे कर रहे हैं।
0: जम्मू कश्मीर में कठुआ से लेकर भद्रवाह तक आसमान से जिस तरह बर्फ की फुहारें बरस रही हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे देखते ही रहें। इन दोनों ही जगह पर हुई ताजा बर्फबारी की ये तस्वीरें हैं जो मंत्रमुग्ध करने वाली हैं।
8: बुधवार देर शाम से कश्मीर के पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग हो, गुरेज हो या फिर मुगल रोड, हर जगह पर जमकर बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आएगी और साथ ही साथ अब मौसम धीरे धीरे सुधरेगा।
0: बर्फबारी से तापमान में अच्छी खासी गिरावट आई है, जिससे अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही है। यहाँ तक कि लोग अलाव भी तापने लगे हैं।
9: मिनिमम में कोई ज़्यादा ऐसा डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, 1-8 डिग्री का डिफरेंस आ सकता है, बट आफ्टर दिस स्पेल तो मिनिमम टेम्परेचर कम हो सकते हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़े राइज कर सकते हैं 1-8 डिग्री।
0: हिमाचल प्रदेश में मनाली से लेकर चंबा तक में बर्फबारी हुई है, जिससे जगह जगह बर्फी बर्फ दिखाई पड़ रही है। रोहतांग पास, लाहौल, श्रृंखला से लेकर बारालाचा पास तक ऊंचाई वाले इलाकों में ताज़ा बर्फबारी भी हुई है। मनाली में बारिश भी देखने को मिल रही है। पर्यटकों को यहाँ का मौसम खूब भा रहा है।
10: बहुत ही ठंड शुरू हो गई है यहाँ पे और बहुत प्यारा प्लेजेंट सा वेदर है। रेन भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं सब यहाँ पे, उसके साथ खाना पीना भी बहुत मजा आ रहा है। मॉल रोड पे बहुत अच्छा एटमोसफेयर है यहाँ पे।
0: अब चंबा जिले के दुर्गम पांगी घाटी के मनोरम छटा देखिए। यहाँ भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। साच पास से लेकर सुराल घाटी तक को जैसे बर्फ ने पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया है। रास्तों से लेकर पेड़ पौधे सब कुछ बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं।
11: 16 अक्टूबर से वेदर में काफी रिडक्शन आएगा। 16 और 17 अक्टूबर को केवल जो मध्य डिस्ट्रिक्ट जिसमें मुख्यतः कांगड़ा का क्षेत्र है तथा कुल्लू और मंडी के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पे क्लाउडिंग के साथ एक दो स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है और फिर उसके बाद 18 अक्टूबर से लगभग पूरे प्रदेश में मौसम साफ बनने की संभावना है।
0: जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा बर्फ देखने को नहीं मिली है, लेकिन आसमान से बरस रही फुहारों ने यहां ठंड बढ़ा दी है।
12: श्री केदारनाथ धाम में आज हल्की बर्फबारी प्रारंभ हो गई है और साथ ही साथ जो मौसम का मिजाज है वह पूर्ण रूप से बदल चुका है और जितने भी श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम में आ रहे हैं, मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, आप यदि आप लोग धाम में आ रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े और जितने भी यहाँ पे आवश्यक जो भी सामग्री है, चाहे आपकी दवाई से लेकर या खान पान से लेके हो, समस्त सामग्री को रखने के पश्चात ही आप लोग अपनी यात्रा को प्रारंभ करें।
0: कुल मिलाकर मैदान से लेकर पहाड़ों तक में मौसम का ये बदलाव फिलहाल तो ठंड के आने का संकेत जैसा लग रहा है। हालांकि मौसम की अभी दूसरी तरफ करवट लेने का अनुमान भी जताया जा रहा है, जिससे स्थिति बदली हुई भी नजर आ सकती है। करनाल से कमलजीत संधु, अलवर से हिमांशु शर्मा, शोपियां से एजाज अहमद डार, श्रीनगर से अशरफ वानी और चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
13: लद्दाख को मिला 3,350 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। इसी दिन आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही है आपका इंतजार।
0: पीएम मोदी ने आज लद्दाख को 5 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने आज लेह में सिंधु घाट पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर करीब 3,350 करोड़ रुपए की इन विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में सबसे प्रमुख 298 किलोमीटर लंबी निम्मू पदुम दारचा सड़क है। इससे अब 12 घंटे का सफर महज 3 घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा पीएम ने लेह के कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट पर 640 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नई यात्री टर्मिनल बिल्डिंग, 9 मेगावाट क्षमता वाली हनु लघु जल विद्युत परियोजना, 66 किलोवोल्ट की डबल सर्किट दा हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन और देश के पहले पेट्रोग्लिफ्स संरक्षण पार्क का भी उद्घाटन और लोकार्पण किया। यूपी में सीएम योगी ने गांव की सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले ग्राम प्रहरियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ग्राम प्रहरियों का मासिक मानदेय 2500 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्हें और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी। सरकार के इस फैसले का लाभ राज्य के करीब 68,000 ग्राम प्रहरियों को मिलेगा। सरकार के इस फैसले का ग्राम प्रहरियों ने स्वागत किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में करीब 140.95 करोड़ से बने मेगा लेदर फुटवेयर एंड एक्सेसरीज क्लस्टर का शुभारंभ हो गया। सीएम सम्राट चौधरी ने आज इसका उद्घाटन किया। ये फुटवेयर पार्क मुजफ्फरपुर के महवल औद्योगिक क्षेत्र में शुरू किया गया है। इससे करीब 3,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। साथ ही युवाओं और महिलाओं को डिजाइनिंग की ट्रेनिंग के साथ साथ छोटे उद्यमियों को आधुनिक मशीनों की सुविधा भी मिलेगी। उत्तराखंड पुलिस साइबर ठगी के शिकार लोगों को जल्द राहत पहुंचाने के लिए एआई बेस्ड सिस्टम का ट्रायल कर रही है, ताकि लोगों को राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम पुलिस अब ऐसी व्यवस्था बनाने पर काम कर रही है, जिससे एक साथ आने वाली ज्यादा से ज्यादा कॉल को अटेंड किया जा सके, जल्द शिकायत दर्ज हो सके। शिकायत दर्ज और ठगी की रकम को बैंक खातों में जल्द होल्ड कराने की कार्रवाई के लिए पुलिस को अधिक समय उपलब्ध कराया जा सके। रामलला के वस्त्र अब अयोध्या में ही तैयार किए जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निर्देश के बाद सूरत से मखमल रेशम समेत अन्य कपड़ों को मंगाया गया है और सप्ताह के सातों दिन के लिए अलग अलग रंगों के वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पहाड़ी ट्रेलर्स के द्वारा ही रामलला के वस्त्र तैयार किए जाते रहे हैं। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बदलाव कर दिया था और रामलला के वस्त्र दिल्ली में तैयार होकर रोज अयोध्या पहुँचाए जाते थे।
13: और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां अब आपको खुली मिठाइयों पर भी यूज बाय डेट लिखा मिलेगा। इसका फायदा यह है कि आप ये जान सकेंगे कि आप जो मिठाई खरीद रहे हैं उसे आप कब तक इस्तेमाल कर सकेंगे। 15 अक्टूबर से यूज बाय डेट का निर्देश लागू हो चुका है। क्या इस पर अमल भी शुरू हो चुका है? हमने ये जानने की कोशिश की, तो क्या कुछ सामने आया आप खुद देखिए।

0: मिठाई की दुकानों से लोग अक्सर अपनी पसंद की मिठाई खरीदकर या खाकर चल देते हैं। बहुत हुआ तो दुकानदार से इतना पूछ लेते हैं कि मिठाइयाँ ताजी है ना। अब भला कोई दुकानदार अपनी मिठाइयों को खराब क्यों बताएगा, लेकिन यूपी में अब ऐसा नहीं चलेगा। दुकानदारों को अब डिब्बा बंद मिठाइयों के साथ ही खुली मिठाइयों पर यूज बाय डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका असर अब साफ साफ दिखने भी लगा है। त्योहारी मौसम से पहले प्रदेश भर की मिठाई की दुकानों को 15 अक्टूबर से बिक्री के लिए रखे गए सभी उत्पादों पर उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग यानी FSDA ने दुकानदारों को इस व्यवस्था का पालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में मिठाई की दुकानों पर इस निर्देश का कितना असर है, उसके बारे में GNT संवाददाता ने जानने की कोशिश की।
1: जो जागरूक दुकानदार हैं, उन्होंने इसका फॉलो करना भी शुरू कर दिया है और इन्होंने जो मिठाइयां हैं यहां पर लिखना इन्होंने शुरू किया है कि ये मिठाई कब बनी है और कब तक ये चलेंगी।
2: विभाग ने जो निर्देश दिए हैं ये तो सही है और ग्राहक के हित में है, लेकिन इसमें मुझे एक चीज थोड़ी सी आशंका ये है कि मिठाई बनाने के बाद ये जो स्टिकर्स लगे हैं इस पे हाथ से इन्होंने डेट लिख दिया है कि अगले आज से 4 दिन आगे का, जैसे इस पे 17 तारीख लिखी है, इस पे 17, आज 15 तारीख है, 16 तारीख तक है। कल को ये स्लिप हटा करके अगर ये मिठाई मान लीजिए नहीं बिकती है और इसी स्लिप पे हाथ से दूसरा 2 दिन आगे बढ़ा करके भी ये लिख दें तो ग्राहक को कैसे पता।
1: पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब
2: कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अब ये है कि इनको एक लिख करके रिकॉर्ड में दिखाना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी हमें फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं लगती है।
3: डेट लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा, उससे इनकी एक्सपायरी क्लियर हो जाएगी, नहीं मिठाइयाँ खराब नहीं मिलेंगी, सेहत भी ठीक रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा।
1: इन दुकानदारों ने भी अपनी मिठाइयों पर डेट लिख दी है, अब उनको ग्राहकों को बताना होगा कि मिठाइयाँ कब बनी है और कब तक इसकी जो एक्सपायरी डेट है।
0: यूज बाय डेट पहल का खास मकसद ग्राहकों को मिठाई की ताजगी और उसे इस्तेमाल करने की समय सीमा की जानकारी देना है। ये नियम छोटे बड़े सभी दुकानदारों पर लागू हो गया है, जिसका दुकानदार भी स्वागत कर रहे हैं।
4: ये बहुत अच्छी पहल है और इसमें एटलीस्ट हर कस्टमर को ये पता रहेगा कि कौन सी मिठाई कब तक चल सकती है, तो वो उसी आवश्यकता अनुसार खरीदेंगे उसको और उसी हिसाब से खरीदेंगे कि जितना दिन तक वो चल जाए।
1: तो तमाम मिठाइयों पर आपने डेट लिख रखी है?
4: जी, जितनी भी खुली मिठाई है उन सभी पर डेट डालना अनिवार्य है और इसको हमने अपने एसोसिएशन के माध्यम से सभी अपने मेंबर्स को भी जागरूक कर रखा है और सभी को सूचित किया गया है कि आज से ये नियम बहुत सख्ती से लागू होगा और इसका पालन भी उतना ही सख्ती से करना है हम लोगों को।
0: चंदौली में भी दुकानदार अब मिठाइयों पर यूज बाय डेट लिखने लगे हैं।
5: इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली के दीनदयाल नगर में स्थित एक मशहूर मिठाई की दुकान पर। आप देख सकते हैं तमाम जो काउंटर में मिठाइयां लगी हुई हैं उसमें जो है वो स्टिकर्स लगा दिए गए हैं, यूज बाई डेट लिखा गया है, पहले तो मिठाई का नाम है उसके बाद यूज बाई डेट लिखा गया है। साथ ही साथ इन्होंने तो यह भी लिखा है कि आप देख सकते हैं वी यूज ओनली नेचुरल कलर्स इन ऑल अवर प्रोडक्ट्स, यानी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो या खाद्य पदार्थ है उस पे यूज बाई डेट लिखा हुआ है। सरकार ने ये लागू कर दिया है और मैंडेटरी कर दिया है, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप?
6: इस सरकार का बहुत ही प्रशंसनीय फैसला है, इसमें यूज बाई का डेट अगर यूज किया जाएगा तो हम देख करके समझ सकते हैं कि नहीं, हम मिठाई जो खरीद रहे हैं वो अच्छी खरीद रहे हैं, सही खरीद रहे हैं, उससे हमारा एक विश्वास बढ़ेगा।
7: इससे हर लोग प्रसन्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो सरकार ने फैसला किया है बहुत बढ़िया फैसला किया है।
8: ये सरकार का बहुत ही अच्छा सराहनीय फैसला है और हर सभी लोगों को ऐसा करना चाहिए, जितनी भी मिठाई दुकानें हैं सब पे होना चाहिए ताकि लोग जो है खराब चीज खाने से बच सके।
9: आज के इनके ये लग जाने से क्लियर हो गया कि कितने दिन चलेगा, अब उतने दिन के अंदर अगर महकती है तो जवाबदेही भी भाई, फिर आदमी शिकायत कर सकता है।
0: आदेश के मुताबिक मिठाई की एक्सपायरी डेट उत्पाद के आधार पर 1 से 30 दिनों तक हो सकती है।
10: सर, हम लोग के निर्देश मिला है कि जिस जो जो मिठाइयां उस पे यूज बाय डेट लिखने का, तो उसके अकॉर्डिंग ये सरकार का निर्देश का हम लोग पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, आज से वो सारा चीज हो रहा है पूरा।
0: यूपी में मिठाई दुकानदारों ने यूज बाय डेट नियम का पालन करना शुरू कर दिया है। सहारनपुर के दुकानों में भी ये साफ साफ देखने को मिल रहा है।
11: सहारनपुर के कोर्ट रोड VIP एरिया में पड़ने वाली ये मिठाई की दुकान है और यहाँ पर जब हम पहुँचे तो यहाँ पर जो मिठाई की जो काउंटर है इनमें जो ट्रे लगी हुई थी इस पर जिस तरीके से इन्होंने एक ये इस्टेब्लिश जो ये कार्ड है, विजिटिंग कार्ड जो इन्होंने यहाँ पर लगाया है, जिस पर साफ तौर से जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और जो यूजिंग डेट है वो देखी जा रही है। इसके साथ साथ जो मिठाई की गुणवत्ता की अगर हम बात करें, यानी कि अगर हाइजीनिक की बात करें, उसको लेकर भी पूरा ध्यान जो है यहाँ पर रखा गया है। ट्रे के साथ साथ इस पर ट्रे के ऊपर व्हाइट कलर की जो ट्रांसपेरेंट पन्नी होती है उससे भी इसे पूरी तरीके से यहाँ पर कवर किया गया है।
12: तो बहुत ठीक है, कस्टमर्स के लिए अवेयरनेस है और उनको मालूम होना चाहिए कि मिठाई कब की बनी है और कब तक हमें यूज करनी है, उसमें दोनों का ही फायदा है।
11: आदेश आया है अब खुली मिठाइयों पर भी इस तरीके के एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य हो चुका है।
0: दुकानदार से लेकर ग्राहक तक मिठाई की दुकानों को लेकर दिए गए आदेश का स्वागत कर रहे हैं।
13: बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए ऐसे ही, क्योंकि हेल्थ के लिए तो फिर देखना पड़ता है ना सब कुछ, बच्चों ने भी खानी होती है तो फिर इसलिए लगता है कि ठीक है जो भी है सबके भले के लिए ही है।
14: बहुत अच्छी चीज है सरकार की तरफ से ये कि एक्सपायरी डेट अब खुले वाले में तमाम भी मेंशन कर गई है। बहुत फायदा होगा सर, पता चलेगा कि कितने दिन तक हम इसे घर भी रख सकते हैं, हर चीज का पता चलेगा, बहुत अच्छी चीज है ये।
0: मिठाई खाने वाली चीज है, जाहिर है इसका वास्ता सीधा सेहत से है। खराब मिठाई से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे में यूज बाय डेट का फैसला हर किसी के लिए फायदेमंद है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, चंदौली से उदय गुप्ता और सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
15: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और बैंकों, आईटी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भारी खरीदारी के चलते आज शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिली। कारोबार के आखिर में बाजार तीन सप्ताह के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। गुरुवार 15 अक्टूबर को सेंसेक्स 1534 अंक उछलकर 74,316 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 375 अंक ऊपर चढ़ा, ये बढ़कर 22,997 पर पहुंच गया। सोने की कीमतों में लगातार चौथे सत्र में गिरावट आई। स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में सोना 900 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,49,900 रुपए हो गई। चांदी की स्थिति और भी खराब रही, चांदी 6,000 रुपए फिसली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 2,15,000 रुपए पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली, रुपया 12 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95.05 रुपए हो गई।
15: मनोज वाजपेयी की नई फिल्म गजब रात का ट्रेलर जारी हो गया है। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड पर।
0: आयुष्मान खुराना और शर्वरी की आने वाली फिल्म ये प्रेम मोल्लिया का तीसरा गाना झुमका पटोला जारी हो गया है। पिछले दोनों गानों की तरह इस गाने ने आते ही YouTube पर धमाल मचा दिया है। हिमेश रेशमिया के संगीत और श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज में आया ये गाना संगीत समारोह वाली अनुभूति देता है, जिस पर लोग अपना बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं। फिल्म ये प्रेम मोल्लिया सिनेमाघरों में 27 नवंबर को रिलीज होगी। मनोज वाजपेयी की नई फिल्म गजब रात का ट्रेलर जारी हुआ। फैंस को इस फिल्म में भी मनोज वाजपेयी की शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। गजब रात एक मल्टी स्टारर फिल्म है, जिसमें दिव्या दत्ता, अक्षय ओबेरॉय, साकिब सलीम और नुसरत भरूचा भी नजर आएंगी। गजब रात को नीरज पांडे ने प्रोड्यूस किया है और रितेश शाह ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 23 अक्टूबर को स्ट्रीम होगी।
16: न कांड का पता है न लड़की का, कुछ पता लगेगा तो बताओगे।
0: म्यूजिकल लव स्टोरी वाली फिल्म तुम मेरे हो का टाइटल ट्रैक रिलीज हो गया है। इस फिल्म से गुरमीत चौधरी और रेशा मालवीय बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म में दर्शकों को प्यार, जिंदगी के उतार चढ़ाव, धोखा और जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। गुरमीत और रेशा की जोड़ी को लेकर फैंस के बीच भी काफी उत्साह बना हुआ है। ये फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। हाल ही में बेस्ट एक्ट्रेस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली यामी गौतम अब अपनी अपकमिंग फिल्म नई नवेली को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म के रिलीज से पहले यामी गौतम अयोध्या में राम मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में भी दर्शन किए। यामी गौतम की फिल्म नई नवेली हॉरर कॉमेडी है, जो 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
15: न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
15: असम के चिरांग जिले में माता की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण, स्वर्ण जयंती वर्ष पर दुर्गा पूजा समिति की भव्य तैयारी, पंडाल में सजावट का काम जारी। नवरात्र के छठे दिन कल माँ कात्यायनी की होगी पूजा अर्चना, श्रद्धा और भक्ति के साथ सजा माँ का दरबार, मंदिरों में हर रोज उमड़ रहा है भक्तों का जनसमंदर। शारदीय नवरात्र के मौके पर देशभर में गरबा डांडिया की धूम, चित्रकूट के सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट परिसर में भव्य आयोजन, समारोह में हजारों लोग कर रहे शिरकत। न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, ले उससे पहले हमें रुकना होगा यहां, यानी कि वायरल चौक पर। यहां देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
18: छोटी छोटी बच्चियां, शानदार डांस और चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस, नरहन गणेश मेले में बच्चियों की प्रस्तुति ने लोगों का दिल जीत लिया। एक साथ कदम मिलाकर डांस करती बच्चियों का हर स्टेप बेहद शानदार नजर आया। उनके एक्सप्रेशन और डांस में गजब का तालमेल देखने को मिला। वहां मौजूद लोग भी बच्चियों की प्रतिभा देखकर हैरान रह गए। अब उनकी इस प्रस्तुति की खूब तारीफ हो रही है। नौ दिन नौ रातें और माँ दुर्गा की भक्ति के बीच ये नन्ही बच्ची माँ के स्वरूप में नजर आई। माथे पर कुमकुम, हरी साड़ी और पारंपरिक श्रृंगार में सजी बच्ची की छवि बेहद मनमोहक है। उसे इस रूप में देखकर घर के लोगों की आंखें नम हो गईं। मासूम चेहरे और सुंदर वेशभूषा ने सभी का ध्यान खींच लिया। लोग बच्ची को माँ का स्वरूप मानकर खूब स्नेह लुटा रहे हैं। डांस का जुनून हो तो उम्र मायने नहीं रखती, ये नन्ही बच्ची अपने शानदार स्टेप्स से यही साबित कर रही है। डांस क्लास में गाने की धुन पर थिरकते उसके कदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कभी स्टेप्स पर ध्यान तो कभी खुद को देखकर गलतियों में सुधार। बच्ची पूरे जोश के साथ डांस करती नजर आती है। सोशल मीडिया पर उसका ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग उसे फ्यूचर डांसर बता रहे हैं। बच्चों की मासूमियत कभी चेहरे पर मुस्कान ले आती है तो कभी हंसा देती है। इस छोटी बच्ची के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लंच बॉक्स खोलते वक्त उसे उम्मीद थी कि अंदर सैंडविच मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि डिब्बे में आलू की सब्जी है, उसका चेहरा उतर गया। फिर बच्ची रोने लगी। उसका ये प्यारा सा रिएक्शन अब लोगों का ध्यान खींच रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स उसकी क्यूटनेस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।
19: मम्मा को पूछेंगे कि दूसरा वाला दे देना चलो।
18: कला, संतुलन और शानदार तालमेल, चीन की पारंपरिक हुप कला का ये प्रदर्शन देखते ही बनता है। दो घूमते हुए हुप के साथ कलाकार जिस सटीकता से कर्तव्य दिखाते हैं, वो उनकी मेहनत और हुनर को बयां करता है। हर घुमाव में शरीर का संतुलन और चालों की खूबसूरती नजर आती है। ताकत और शालीनता का ये मेल चीन की पारंपरिक कलाबाजी को खास बनाता है। सदियों पुरानी विरासत आज भी अपने अनूठे अंदाज से लोगों को आकर्षित कर रही है।
15: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी पनीर की। घर हो या फिर रेस्टोरेंट, होटल, सभी जगह खाना बनाने में पनीर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ गया है। लेकिन पनीर की बढ़ती खपत के बीच नकली पनीर की बिक्री भी खूब हो रही है। ऐसे में नकली पनीर को लेकर देश के कई राज्यों में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अब देश की राजधानी में भी नकली पनीर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में खाने पीने की चीजों पर निगरानी रखने वाली संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों को 6 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत में दायर याचिका में मांग की गई है कि पनीर के नाम पर बेचे जा रहे गैर डेयरी उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट में ये जनहित याचिका कानून की छात्रा रिद्वा सिंह और वकील अवलोकितेश्वर सिद्धार्थ ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि जब कोई ग्राहक किसी पनीर डिश का ऑर्डर करता है तो वो आम तौर पर यही उम्मीद करता है कि उसे खाने में दूध से बना पनीर परोसा जाएगा, लेकिन खाने में अगर दूध से बने पनीर की जगह किसी नॉन डेयरी विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है तो ग्राहक को इसकी जानकारी भी नहीं होती। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि ग्राहकों के लिए ये पहचानना आसान नहीं होता कि उनकी प्लेट में परोसा गया खाना असली डेयरी पनीर है या फिर उसका कोई सिंथेटिक विकल्प। याचिका में ये भी साफ किया गया है कि मांग सभी तरह के प्लांट बेस्ड या फिर डेयरी के विकल्प वाले उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का नहीं है। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि नॉन डेयरी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के बजाय उन्हें पनीर बताकर बेचने या फिर परोसने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई हो। याचिका के मुताबिक ग्राहकों को ये पता होना चाहिए कि वे जो उत्पाद खरीद रहे हैं या फिर खा रहे हैं वो वास्तव में किस चीज से बना है, ताकि ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार फैसला कर सके। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग करते हुए कहा है कि त्योहारों के मौसम को देखते हुए ऐसे उत्पादों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए जांच अभियान चलाना जरूरी है। हाईकोर्ट ने फिलहाल खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तत्काल छापेमारी या फिर विशेष अभियान चलाने का निर्देश नहीं दिया है और मामले में संबंधित पक्षों के जवाब आने के बाद आगे की सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं ने महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से उठाए गए कदमों का भी हवाला दिया है। इस मुद्दे पर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
20: सभी लोगों के साथ लगभग जो जागरूक नहीं है इस चीज को लेकर उनके साथ तो अधिकतर होता है, और जो कम आय जिनकी है वो इस चीज का ज्यादा मतलब शिकार होते हैं सस्ती पनीर पाने की वजह से। सरकार को हर जगह पे मतलब इसकी जांच करवानी चाहिए और नकली पनीर को जितना हो बंद करा दे हर जगह से।
21: समस्या तो ये बहुत बड़ी है, ठीक है। वैसे हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो कंजप्शन तो बहुत ज्यादा है, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से शायद ये नकली पनीर का थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है। इसको सरकार के ऊपर कुछ काम तो करना चाहिए, इसका रोकथाम करना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे शायद वो काम नहीं कर पा रही है, वो पेपर पे लग रहा है वो काम कर रही है, ग्राउंड लेवल पे कुछ काम करना चाहिए।
20: ग्राउंड लेवल के लिए क्या काम करना चाहिए ग्राउंड में इम्प्लीमेंट?
21: ज्यादा से ज्यादा ये अगर मैं बताऊँ तो दुकानों से जाके चेक करना चाहिए या फिर जहाँ पे ये सोर्सेस आ रहे हैं और कनेक्शन बैठा है कि जहाँ से सप्लाई हो रहा है और जहाँ से वो उनको मिल रहा है, दुकानों वालों को जहाँ से मिल रहा है वो थोड़ा सा ट्रेस करे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन रहा है।
22: दिक्कत तो बहुत होती है और ना केवल पनीर, नमक हर जगह कल जहाँ पे हम देखते हैं हर जगह मिलावट है। और इसी तरह बुरा लगता है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि सारे टेस्ट प्रूफ हो रखी होते थे, लेकिन जब हम चीज खरीदते हैं तो फिर पता चलता है कि वो तो खराब है। ऐसा होता है ना कि पता नहीं चलता टेस्ट से, हमें लगता है हम तो सही चीज खा रहे हैं, बाद में जब तबीयत खराब होती तब पता चलता है। दिल्ली में अगर कहें तो काफी हद तक जब ऐसे कारखाने पकड़े जाते हैं उसे दिखता है कि हाँ भाई नकली पनीर था। अब गरीब आदमी जाए तो जाएगा, अमीर आदमी एक तो पता नहीं चलता ना कौन सी चीज सही कौन सी चीज खराब है, तो वहाँ पे ज्यादा दिक्कत हो जाती है। सरकार को बेसिकली जैसे मुंबई में हमने देखा कि सरकार फूड को लेकर इतने ज्यादा अलर्ट पे है, तो मतलब कि अगर दिल्ली में अगर मुंबई जैसे शहर में चीजें हो सकती है तो दिल्ली जो पूरे देश की राजधानी है वहाँ पे तो होना ही चाहिए। और मतलब की हर जगह ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, मतलब की बच्चे आपके भी है, अगर हम किसी के बच्चे तो आप भी तो बच्चे होंगे ना, आप अपने बच्चों के लिए ये नहीं चाहोगे तो आप दूसरे बच्चों के लिए क्यों अच्छा करना चाहोगे?
23: ये तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें बिकेंगी तो लोगों की जो शरीर है उसको नुकसान रहेगा, लोगों में बीमारियां पैदा होंगी। तो ये मिलावटी पनीर जो बिक रहा है उसको बिल्कुल रोक लगानी चाहिए उसके ऊपर सरकार की तरफ से। मेरे को लगता है जो सरकार का फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल निष्क्रिय है, तो उसको देखना चाहिए, जगह जगह आके छापे मारने चाहिए, चेकिंग करनी चाहिए ताकि ये जिस तरह से जो चीजें हो रही है वो रुके।
24: मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अभी भी करप्शन है ग्राउंड लेवल पर, इसी वजह से ये बैन होने के बाद भी इतना मिलावटी पनीर इतने खुलेआम बिक रहा है। और बात तो सबसे ज्यादा सोचने वाली ये है कि जैसे हमको नहीं पता कि ये मिलावटी है नहीं है और हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पर। अब जैसे कि कोई जिम जाता है तो अपना प्रोटीन टेक तो पूरा करता ही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें वो पनीर तो होगा ही, और अब उसको नहीं मालूम कि वो ओरिजिनल है या फेक है और वो उसको हम वही तो बोल रहा हूँ कि आम आदमी को तो पता ही नहीं है जो डे टू डे लाइफ में अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, उनको तो क्या मालूम कि क्या फेक पनीर है क्या वो है। अब ज्यादा फेक है तो आप टेस्ट से पहचान सकते हो स्मेल से, लेकिन अब आपको पता है ऑर्डरलेस पनीर आ रहा है, आप नहीं पता कर सकते कि वो फेक है या रियल है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आप पता ही नहीं लग पा रहे और आप कंज्यूम कर रहे हो उसको, आप सोच रहे कि वो आपके लिए हेल्दी है लेकिन आप कहीं ना कहीं जहरी ले रहे हो ये सोच कर कि मेरी बॉडी बन जाएगी हो जाएगा।
25: 200 रुपए किलो पनीर, 160 रुपए किलो पनीर कहाँ मिल रहा है, फिर भी बिक रहा है, लोग ले रहे हैं खा रहे हैं, मजबूरी है लोगों को, नहीं तो सही पनीर लेके चले तो 600 रुपए से नीचे तो पनीर ही नहीं।
20: लेकिन दिल्ली में
25: 160 रुपए किलो बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है,
20: 200 रुपए भी बिक रहा है,
25: खुलेआम बिक रहा है,
20: रोग का कोई असर नहीं।
25: वो सब जगह पैसे की बनौती है, पैसे ले रहे हैं बिकवा रहे हैं।
20: अच्छा, तो इसके कितना स्वास्थ्य को कितना

कतारें लगी हैं तो कहीं मां के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर मंदिर की अपनी मान्यता है, अपनी परंपरा और अपनी एक अनूठी कहानी है जो पीढ़ियों से लोगों की आस्था से जुड़ी है। कहीं सदियों पुरानी मान्यताएं आज भी निभाई जा रही हैं, तो कहीं ऐसी परंपराएं हैं जिनमें भक्त नवरात्र के इन पावन दिनों में रंगे नजर आ रहे हैं।

0: नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और देश भर के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। कहीं माँ की जयकारे गूंज रहे हैं तो कहीं पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भक्त माँ की आराधना में लीन है। आस्था के इन दंगों में कोई सदियों पुरानी परंपरा निभा रहा है तो कोई माँ के अनोखे स्वरूप के दर्शन कर रहा है। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले के कोनेपुर स्थित प्राचीन अंबिका माता मंदिर की। नवरात्रि के मौके पर यहाँ भक्तों की आस्था देखते ही बन रही है। मंदिर में पूजा अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान और दीप प्रज्वलन के जरिए श्रद्धालु माँ की आराधना कर रहे हैं। लेकिन इस मंदिर की खास पहचान सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी से जुड़ी पौराणिक कथा भी है।
1: हम उसी जगह पर खड़े हैं, इस खिड़की पर, जहाँ पर रुक्मिणी का हरण जो है भगवान श्री कृष्ण ने किया था, वही ये खिड़की है उस वक्त की माता अंबिका माता के मंदिर की, जो भगवान श्री कृष्ण ने जो है माता रुक्मिणी को यहीं से हर ले गए थे। माँ रुक्मिणी का विवाह उनके पिता ने जो है उनके मनचाहे जगह पर नहीं रखा, नहीं किया या कर रहे थे, तो रुक्मिणी ने संदेशा भेज कर जो है भगवान श्री कृष्ण को इसी माता अंबी के माता के मंदिर में उन्हें बुलाया।
0: अब रुक करते हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नर का, जहां माँ तुलजा भवानी के पवित्र पलंग की परंपरा आज भी पूरे श्रद्धा भाव के साथ निभाई जा रही है। घोड़गांव से तैयार होकर आने वाला ये पलंग जुन्नर में कुछ दिन ठहरता है और फिर तुलजापुर की ओर रवाना होता है। रास्ते में माँ के जयकारे गूंजते हैं और श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य लाभ लेते हैं।
2: ये 12वीं सदियों से आई हुई परंपरा है। हमारा घर जो पलंगे परिवार है, ये उसको हमारी तरफ से माता को दिया जाता है। सदियों से आई परंपरा है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व 3.5 शक्तिपीठ में जो तुलजा भवानी जो महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी है उसके लिए ये शयासन बनाया जाता है।
0: माँ की भक्ति के रंग अलग अलग हैं और हर दरबार के
3: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी ये चलेंगे खेल चक्कर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका

0: पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
0: एशियन गेम्स के भारतीय दल से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खेल जगत से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर।
6: दिल्ली के ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियन गेम्स 2026 के भारतीय दल से मिले। इस दौरान उन्होंने एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कई मायनों में यादगार बताया, जिसमें खास तौर से भारतीय महिला हॉकी टीम का जिक्र किया, जिसने 44 साल का इंतजार खत्म कर इस बार गोल्ड मेडल जीता है। महिला खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कुल 85 पदकों में 38 पदक बेटियों के जीतने का जिक्र भी किया। साथ ही वैसे खिलाड़ियों की भी सराहना की जिन्होंने 15 या 17 साल की उम्र में देश का गौरव बढ़ाया। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए और मजबूती से तैयारी करने के लिए भी कहा है। टीम इंडिया के साथ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड दौरे पर वनडे सीरीज खेलते शायद ही नजर आए। हालांकि इसके पीछे कारण चोट नहीं बल्कि टीम मैनेजमेंट की खास रणनीति बताई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बुमराह पूरी तरह फिट है, लेकिन टीम मैनेजमेंट चाहता है कि बुमराह वनडे सीरीज में खेलने के बजाय रेड बॉल क्रिकेट यानी टेस्ट फॉर्मेट की तैयारी पर ध्यान दें। भारत और वेस्टइंडीज के बीच शनिवार 17 अक्टूबर को होगा टी20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज का यह आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज में दोनों ही टीमें 2-2 की बराबरी पर हैं और अब सीरीज के 5वें और आखिरी मुकाबले से सीरीज जीतने का फैसला होगा।
7: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
8: क्या आपके विवाह होने में विलंब हो रहा है? क्या आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं? शीघ्र विवाह का क्या होगा समाधान और नवरात्रि में कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: असम के चिरांग जिले में माता की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण, स्वर्ण जयंती वर्ष पर दुर्गा पूजा समिति की भव्य तैयारी, पंडाल में सजावट का काम जारी। नवरात्र के छठे दिन कल मां कात्यायनी की होगी पूजा अर्चना, श्रद्धालु और भक्ति के साथ सजा मां का दरबार, मंदिरों में हर रोज उमड़ रहे हैं भक्त। शारदीय नवरात्र के मौके पर देश भर में गरबा डांडिया की धूम, चित्रकूट के सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट परिसर में भव्य आयोजन, समारोह में हजारों लोग कर रहे हैं शिरकत। नवरात्र के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के बीड़ में लगा श्रद्धालुओं का तांता, बेलगांव के रेणुका माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं हजारों भक्त। अयोध्या में ही तैयार हो रहे हैं रामलला के वस्त्र, सूरत से मंगाए जा रहे रेशम मखमल सहित दूसरे सामान, मंदिर ट्रस्ट ने वस्त्र निर्माण के लिए किए इंतजाम। एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चैंपियंस ने शेयर किया अनुभव।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: नमस्कार, गुड न्यूज स्टूडियो देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं बारिश की। बारिश जिसने दिल्ली एनसीआर का मौसम पूरी तरीके से बदल दिया है और समय से पहले ही सर्दी का एहसास करा दिया है। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि राजस्थान से लेकर अगर आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक झमाझम बारिश हो रही है। सवाल यह है कि अक्टूबर में ये बादल कहां से आ गए और अभी कितने दिनों तक बरसने जा रहे हैं। आज आपको बादलों की मनमर्जी के साथ उनका रुख भी समझाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि क्या इस बारिश के साथ ही दिल्ली और मैदानी इलाकों में ठंड की एंट्री होने जा रही है। इसके अलावा आपको लिए चलेंगे हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, जहां पर बारिश के साथ जमकर बर्फबारी हो रही है, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रास्ते बंद करने पड़े हैं और प्रशासन सैलानियों को सावधानी की सलाह दे रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर से, जहां पर बादलों ने मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल दिया है। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश ने कुछ देर के लिए रफ्तार पर तो ब्रेक लगाई, पर मौसम सुहाना हो गया, गर्मी से निजात मिली और प्रदूषण भी कुछ कंट्रोल नजर आया। लेकिन इसके साथ गुलाबी ठंड का भी एहसास है और चर्चा हो रही है कि क्या इस साल सर्दी अक्टूबर में ही एंट्री मारने वाली है। तो चलिए समझते हैं कि इस वक्त ये बारिश क्यों हो रही है और आगे कब तक होने जा रही है और क्या हमें गर्म कपड़े अभी से निकाल लेने चाहिए।
4: अक्टूबर का महीना और सावन भादो जैसा नजारा यकीन नहीं होता। तेज हवा, आंधी तूफान और झमाझम बारिश। असर ये हुआ कि कुछ देर के लिए दिल्ली एनसीआर की रफ्तार ही थम गई। दिल्ली में बादल ऐसे बरसे कि गलियों में, सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक जाम हो गया। वैसे तो पिछले कुछ दिनों से ही दिल्ली एनसीआर में ठंड का एहसास है, लेकिन बादलों की मनमर्जी ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर में इस बारिश की वजह पश्चिमी विक्षोभ है, साथ ही हरियाणा के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी वजह है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाएं भी बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रही हैं।
5: बीच अक्टूबर में मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। दिल्ली एनसीआर में आज दोपहर से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है और बारिश से अच्छी बात यह हुई कि जो दिल्ली एनसीआर का आसमान आपको हमेशा पोल्यूटेड दिखाई पड़ता है, वो फिलहाल स्काई लाइन पूरी तरह से साफ दिखाई देगी। आप दूर दूर तक साफ देख पा रहे हैं, इतनी बारिश दिल्ली एनसीआर में फिलहाल हो चुकी है। अक्षरधाम पे हम मौजूद हैं और मौसम विभाग ने ये घोषणा की है और कहा है कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में, चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो और हरियाणा के कई हिस्से में तेज बारिश हो सकती है। इस बारिश के बीच कई जगह ओला भी गिर सकते हैं और कई जगह बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने यह साफ किया है कि इस बीच तेज हवाएं भी रफ्तार पकड़ेंगी और अगर ये हवाएं बारिश के साथ चलेंगी तो आप समझ सकते हैं कि तापमान में किस तरह से गिरावट दर्ज की जाएगी। और ये कह सकते हैं कि अगर ये बारिश लगातार होती रही तो दिल्ली काफी हद तक ठंड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी।
4: अक्टूबर में अभी तक बारिश दिल्ली एनसीआर पर मेहरबान रही है। 12 अक्टूबर को भी बादल बरसे थे और ये पिछले 4 वर्षों में अक्टूबर का सबसे अधिक बारिश वाला दिन रहा। हालांकि जानकार मानते हैं कि ये मानसून के बाद मौसम का एक सामान्य चक्र है, यानी बारिश होना कोई हैरानी की बात नहीं। हाँ, लेकिन इसकी वजह से नवंबर से पहले ही सर्दी का एहसास होने लगा है क्योंकि इस दौरान पारा लुढ़क कर 27 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। और अभी इसमें ज्यादा बदलाव की उम्मीद भी नहीं क्योंकि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम की आंख मिचौली आगे भी जारी रहने वाली है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में अगले 24 घंटों के अंदर बारिश के एक या दो दौर देखने को मिल सकते हैं। कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में शुक्रवार को भी गरज चमक और बारिश की संभावना है।
5: आंधी ने कहा है कि एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है जिसकी वजह से ये बारिश हो रही है और इसके साथ साथ लोगों से भी सावधान रहने के लिए कहा गया है क्योंकि ये बारिश लगातार रहने वाली है। बीच में जरूर छोटे छोटे स्टॉप ये ले सकती है, छोटी छोटी रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद मध्यम से लेकर तेज बारिश के बहुत सारे स्पेल हैं अभी से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह के बीच में भी बारिश का एक तेज झोंका आ सकता है। हवाएं इस बीच लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, लेकिन लोगों को खास तौर पर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि वो खुले में ना खड़े हों क्योंकि बिजली गिरने की संभावना भी इस मौसम में बेहद जताई जा रही है। फिलहाल बारिश होने से दिल्ली एनसीआर का मौसम बेहद सुहावना हो गया है और जो लोग पिछले एक दो दिन से कड़ी धूप से परेशान हो रहे थे उन्हें जरूर थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही।
4: मौसम विभाग का अंदाजा है कि बारिश के साथ तेज हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं, खासकर इसलिए कि कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसलिए लोगों को ऐसे मौसम में खुले स्थानों पर नहीं रहने या पेड़ों के नीचे नहीं रुकने की सलाह दी गई है। तेज हवा और बारिश का असर क्या हो सकता है इसे अलवर की तस्वीरों से समझिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलवर के पास घने बादलों की वजह से दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया। यहाँ तेज बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। बारिश में विजिबिलिटी कम होने के कारण तमाम गाड़ियां एक्सप्रेसवे पर साइड में खड़ी हो गई। बारिश थमने के बाद ही इन गाड़ियों ने आगे का सफर शुरू किया। पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर है। मेरठ, आगरा और सहारनपुर समेत 15 शहरों में तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बात सिर्फ बरसात की नहीं, मौसम विभाग ने 23 जिलों में आंधी बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट दिया है, साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आ रही हवाओं का असर शुक्रवार को पूर्वी और मध्य यूपी में दिख सकता है क्योंकि तेज हवा के साथ झमाझम बारिश होने का अनुमान है। जहां तक दिल्ली एनसीआर की बात है, बारिश का ये फायदा तो हुआ है कि गर्मी से राहत मिली है, तापमान गिरने से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन याद रहे कि ये ठंड का सिर्फ ट्रेलर भर है, पिक्चर आने में अभी कुछ देर है। हाँ, पर आंधी तूफान और बारिश से दिल्ली एनसीआर की हवा साफ हो गई है। एक्यूआई की स्थिति संतोषजनक हो गई है। दिल्ली से मनीष चौरसिया और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: ये बर्फबारी और बारिश का सिलसिला हिमाचल प्रदेश में भी जारी है। लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर जैसे ऊंचे इलाकों में बर्फबारी ने जहां पर तापमान गिरा दिया है, तो वहीं पर निचले क्षेत्रों में बारिश ने मौसम सर्द बना दिया है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में भी ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो रही है। हालांकि मौसम के इस रुख ने चारधाम यात्रा पर असर नहीं डाला। बड़ी तादाद में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने के लिए जुट रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।

जैसा अनुमान था वैसा ही नजारा है। पश्चिम से आई हवा ने पहाड़ों का नजारा बदल दिया है। बादल जमकर बरसे हैं और वादी में खूब बर्फ गिरी है, इतनी कि पहाड़ों ने सफेद दोशाला ओढ़ लिया है।

0: ये तस्वीरें हिमाचल के लाहौल स्पीति की हैं। काले बादल और सफेद बर्फ ने माहौल को जैसे पुराने जमाने की श्वेत श्याम तस्वीर में बदल दिया है। पेड़ों पर, घरों की छतों पर और सड़कों पर बर्फ की परत जम चुकी है और बारिश के बूंदों की तरह लगातार बरसती बर्फ ने पूरी वादी को एक अद्भुत नजारे में तब्दील कर दिया है। केलांग, दारचा, जस्पा और सिस्सू जैसे इलाकों में बर्फ के फाहे गिरने शुरू हुए तो तमाम इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछती चली गई। अक्टूबर का आधा महीना बीत गया है और जिस तरह से पारा लगातार गिर रहा है उससे आने वाले दिनों में लाहौल स्पीति में तस्वीर क्या होगी, मौसम का रुख क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जरा हिमाचल के चंबा की पांगी घाटी का नजारा देख लीजिए। पहले दौर की बर्फबारी से ही पूरी घाटी में सफेद चादर बिछी है। मशहूर साच पास और सुराल घाटी में इतनी बर्फबारी हुई है कि पहाड़ सफेद रंग में रंग गए और लोगों को अक्टूबर के महीने में ही दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास होने लगा है। ये खूबसूरत तस्वीर धर्मशाला की है जहां धौलाधार की पहाड़ियां चांदी सी चमक रही हैं। लगातार बारिश और बर्फबारी से रास्तों पर, घरों की छतों पर बर्फ जम गई है और तापमान इतना गिरा है कि लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। जो लोग घूमने फिरने के इरादे से हिमाचल पहुंचे हैं उन्हें मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन जाहिर है इस मौसम की अपनी परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं। लाहौल स्पीति में बर्फबारी के चलते सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। शिंकुला टॉप, वारालाचा टॉप, कुंजुम टॉप समेत दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, इसलिए इन तीनों दर्रों की ओर सभी तरह की गाड़ियों की आवाजाही एहतियातन बंद कर दी गई है। लेह मनाली नेशनल हाईवे को भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है और प्रशासन ने जनता और पर्यटकों को ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की हिदायत दी है और खुद भी सतर्क है। ये तस्वीरें चंद्रा घाटी के रूपसंग नाला के पास की हैं, जहां बर्फबारी की वजह से करीब 100 वाहन फंस गए। सूचना मिलते ही लाहौल स्पीति पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फंसे वाहनों को निकालने का काम शुरू किया गया और सभी वाहनों को निकाल लिया गया। मौसम विभाग के अनुसार अचानक आया मौसमी बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ, जिससे न सिर्फ लाहौल स्पीति और चंबा बल्कि शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और कई जगहों पर कहीं बारिश तो कहीं भारी बर्फबारी हुई है।
1: ये जो WD सक्रिय था जो एडजॉइनिंग जम्मू के आसपास अभी परसिस्ट कर रहा है, ये वेदर एक्टिविटी और जो स्नोफॉल है इसके प्रभाव से हुई है। और अगर आप आंकड़ों की बात करें तो जैसे कि लॉन्ग में स्नोफॉल रिपोर्ट की, तो इसके पूर्व भी वर्ष 2018-19 में सितंबर माह में भी स्नोफॉल रिपोर्ट की गई थी। और बाकी जो क्षेत्र हैं जिसमें हम बात करें, सुमदो है, हंसा है, उदयपुर है, तो वहां पे भी देखिए अक्टूबर के समय में लगभग इसी समय मतलब इसी वीक में थर्ड वीक के आसपास बीते कुछ वर्षों जैसे वर्ष 2023-24 में स्नोफॉल देखी गई थी। तो जैसे देखिए ये अभी जो पोस्ट मानसून सीजन है इसमें जैसे हमारे जो हिमाचल रीजन है यहाँ पे जैसे अगर सक्रिय WD आता है तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा स्पेशली है, लाहौल स्पीति हाई रिचेज हैं और कुल्लू, तो यहाँ पे उसके प्रभाव से जो स्नोफॉल होना स्वाभाविक रहता है। 16 अक्टूबर से वेदर में काफी रिडक्शन आएगा। 16 और 17 अक्टूबर को केवल जो मध्य डिस्ट्रिक्ट जिसमें मुख्यतः कांगड़ा का क्षेत्र है तथा कुल्लू और मंडी के आसपास जो क्षेत्र है वहां पे क्लाउडिंग के साथ एक दो स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है और फिर उसके बाद 18 अक्टूबर से लगभग पूरे प्रदेश में मौसम साफ बनने की संभावना है। वर्तमान में अभी जो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा जो हर चीज वहां के लिए सचेत पोर्टल के थ्रू अलर्ट जारी है, जहां पे अभी भी स्नोफॉल का क्रम जारी है और ये जो वेदर एक्टिविटी आज देर शाम तक सक्रिय रहेगा, उसके बाद देर रात से काफी कमी हो जाएगी। तो ओवरऑल स्नोफॉल का जो लाइट टू मॉडरेट का जो फोरकास्ट है वो अभी बताया गया है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्पेशली, और जो मध्य डिस्ट्रिक्ट जिसमें कांगड़ा है, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, यहां पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है लेट आफ्टरनून और दिन के समय, उसके लिए लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया गया है।
0: केवल हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के ऊंचे क्षेत्रों में भी बर्फबारी रह रहकर हो रही है। खासकर चमोली और रुद्रप्रयाग में स्नोफॉल की तस्वीरें पिछले दिनों देखने को भी मिली। अब ये तस्वीरें केदारनाथ की हैं। चारधाम यात्रा के बीच बाबा के इस धाम में भी मौसम सर्द हो गया है, बावजूद इसके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी है।
1: देखिए आज जो वेदर एक्टिविटी जो अर्ली मॉर्निंग से सक्रिय हुई, इसके प्रभाव से स्पेशली डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला कुछ एक जो हाई रिचेज वहां पे जो दिन के तापमान है वो सामान्य से कम रह सकते हैं, और परंतु जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं और जो उसके आसपास के जो मध्य व डिस्ट्रिक्ट वहां पे आज भी दिन के तापमान लगभग सामान्य के आसपास रहेंगे। और आगामी कमिंग डेज की बात करें तो हाई रिचेज में जो तापमान है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है 1 से 2 डिग्री, परंतु जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य व डिस्ट्रिक्ट वहां पे लगभग सामान्य के आसपास ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। फिर 18 अक्टूबर से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है, कुल्लू, लाहौल स्पीति, वहां पे दिन के तापमान सामान्य के आसपास रहेंगे।
0: फिलहाल तो बर्फ की सफेद चादर से ढके हिमाचल और उत्तराखंड की जगहों पर बदलता मौसम यहाँ यात्रा के दौरान सावधानी बरतने का संकेत जरूर दे रहा है। शिमला से विकास शर्मा, चंबा से विशाल आनंद, लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा और केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाके सीजन की पहली बर्फबारी से सफेद नजर आ रहे हैं, जहां पर गुलमर्ग, सोनमर्ग, पीर पंजाल समेत तमाम ऊंची चोटियों पर स्नोफॉल जबरदस्त हुआ है। तो वहीं पर नीचे के इलाकों में भी सीजन की पहली बर्फबारी की सौगात मिल चुकी है। मौसम का ये मिजाज इस बार घाटी में जोरदार सर्दी पकड़ने के आसार जता रहा है। रिपोर्ट देखिए।

0: धरती की जन्नत कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर सीजन की पहली बर्फबारी से ही सफेदी के सागर में समा गया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत तमाम ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, तो मैदानी इलाकों में भी सीजन की पहली बर्फबारी की सौगात मिल चुकी है। डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इसके साथ ही बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी और पीर पंजाल रेंज की प्रसिद्ध पीर की गली भी बर्फ की चादर ओढ़ चुकी है। उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी से पूरा पहाड़ी इलाका सफेद नजर आ रहा है। मैदानी क्षेत्र में करीब 2 इंच और ऊंचाई वाले इलाकों में 4 से 5 इंच बर्फ दर्ज की गई है। पीर पंजाल रेंज में सीजन की पहली बर्फबारी से ही श्रीनगर को पुंछ से मिलाने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फ से पट गई।
1: कश्मीर के पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग हो, गुरेज हो या फिर मुगल रोड, हर जगह पर जमकर बर्फबारी हुई है। हालत इस हद तक पहुंची कि श्रीनगर को पुंछ से मिलाने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड यातायात के लिए फिलहाल बर्फबारी के कारण बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आएगी और साथ ही साथ अब मौसम धीरे धीरे सुधरेगा।
0: आलम यह हुआ कि रोड को कुछ समय के लिए आवाजाही के लिए बंद करना पड़ गया, लेकिन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने तत्काल कमान संभाली और सड़कों पर बिछी बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया। कुछ घंटों के बाद आखिरकार सड़क को फिर से खोल दिया गया ताकि पुंछ और कश्मीर के बीच यातायात सुचारू रूप से चलती रहे।
2: दक्षिण कश्मीर शोपियां के पीर गली इलाके में अभी हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बर्फ ही बर्फ जो है इसमें पड़ी हुई है कल शाम से। दरअसल आपको बता दें कि ये एक बालाई इलाका माना जाता है और साथ में ही इसके जो है एक हिस्टोरिकल मगर रोड जिसको कहा जाता है वो चल रहा है। आपको बता दें कि BRO ने एहतियातन उस रोड को सुबह सवेरे कुछ जो है पल के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि पीर की गली या दर्जन इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी और जिसके कारण जो है रोड को एहतियाती तौर पर बंद करना पड़ा। लेकिन अभी जो है स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन ओवर हो चुका है, यानी बर्फ जो है इस रोड पे हटाई गई है और गाड़ियों की जो है आमद रफ्त इस पे फिर से चलने लगी। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे गुरेज हो, कुपवारा हो या गुलमर्ग हो, गुलमर्ग के साथ साथ जो है पीर गली इलाकों में भी जो है बर्फबारी हो रही है। लगभग कम से कम 5 से 6 इंच बर्फ एक्यूमुलेट की जा चुकी है।
0: बारामूला जिले में मौजूद मशहूर हिल स्टेशन गुलमर्ग का सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक हिल स्टेशन है अफरवाट। आमतौर पर अफरवाट में ऐसा बर्फीला नजारा नवंबर के आखिरी दिनों में दिखाई देता है। सर्दियों में ये इलाका दुनिया भर के स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है, लेकिन कुदरत की मेहरबानी से ये सौगात पर्यटकों को अभी मिल गई है।
3: बहुत अमेजिंग, सबको आना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगी, इंडिया में, वर्ल्ड में सबको आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। इतनी स्नो देखी लेकिन ये अमेजिंग प्लेस, वी आर सो लकी दैट वी केम टुडे।
4: अच्छा मजा आ रहा है, मतलब सबको आना चाहिए यहाँ पे घूमने को।
5: इतनी बर्फ कभी नहीं देखी थी, आज पहली बार देखी है। काफी कम स्नोफॉल देखी थी, बर्फ होते हुए देखी थी।
0: जम्मू कश्मीर में मौसम का ये बदलाव महज चंद दिनों में ही नजर आया है। अक्टूबर की शुरुआत में मौसम कुछ हद तक गर्म था, लेकिन अक्टूबर का महीना आधा खत्म होते होते घाटी सर्दी के आगोश में लिपटने लगी है। कश्मीर, चेनाब घाटी और पीर पंजाल इलाके में दिन का तापमान भी काफी हद तक गिरने लगा है।
6: जहाँ तक जम्मू का डिवीजन की बात है, वहाँ इंटेंसिटी कम होगी, एरिया भी कम होगा इससे, और ये 2 दिन का स्पेल है। इसके बाद 16 तारीख में आइसोलेटेड प्लेसेस पर कहीं कहीं बहुत कम बारिश हो सकती है, और उसके बाद तो फिर आ गए आने वाले टाइम में 24 तारीख तक करीब करीब ड्राई ही वेदर है।
0: मौसम विभाग के मुताबिक अभी 1-2 दिन और बारिश और बर्फबारी का दौर चलेगा, उसके बाद 1 हफ्ते तक बारिश और बर्फबारी दोनों से राहत मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से भले ही थोड़े दिनों की राहत मिले, लेकिन मौसम का ये मिजाज इस बात का संकेत दे रहा है कि इस बार सर्दी जल्दी और जोरदार पड़ने के आसार हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और मीर फरीद के साथ शोपियां से एजाज डार, गुड न्यूज़ टुडे।
7: आज कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: क्या आपके विवाह होने में विलंब हो रहा है? क्या आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं? शीघ्र विवाह का क्या होगा समाधान और नवरात्रि में कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: असम के चिरांग जिले में माता की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण। स्वर्ण जयंती वर्ष पर दुर्गा पूजा समिति की भव्य तैयारी। पंडाल में सजावट का काम जारी। नवरात्र के छठे दिन कल मां कात्यायनी की होगी पूजा अर्चना। श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिरों में उमड़ रहे हैं भक्त। हर रोज माता का अनुपम श्रृंगार। शारदीय नवरात्र के मौके पर देश भर में गरबा। डांडिया की धूम। चित्रकूट के सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट परिसर में भव्य आयोजन समारोह में हजारों लोग कर रहे हैं शिरकत। नवरात्र के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के बीड़ में लगा श्रद्धालुओं का तांता। बेलगांव के रेणुका माता मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं हजारों श्रद्धालु। अब अयोध्या में ही तैयार हो रहे हैं रामलला के वस्त्र। सूरत से मंगाए जा रहे हैं रेशम मखमल सहित दूसरे सामान। मंदिर ट्रस्ट ने वस्त्र निर्माण के लिए किए इंतजाम। एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चैंपियंस ने शेयर किए अपने अनुभव।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
9: छत्तीसगढ़ के भिलाई में साकार हुआ मां दुर्गा के भव्य पंडाल में मैसूर पैलेस 70 दिन की मेहनत से बनकर तैयार हुआ। कर्नाटक के ऐतिहासिक मैसूर पैलेस की तर्ज पर पंडाल को हूबहू राजसी रूप दिया गया। रात में देखते ही बन रही है रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाते हुए राजसी महल की सुंदरता। पंडाल देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। पंडाल में स्थापित मां का स्वरूप है अद्भुत। मां दुर्गा की अष्टभुजाएं असली शस्त्र और मां के गले में असली सोने का मंगलसूत्र। मनोहारी दृश्य को अपनी सुनहरी यादों को सजोने के लिए लोग सेल्फीज ले रहे हैं। भारी भीड़ के बावजूद देखने को मिल रहा है अनुशासन। असम में 51 फीट ऊंची मां की प्रतिमा बनी चर्चा का मुख्य विषय। दुर्गा पूजा समिति अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष पर बना रही है विशाल प्रतिमा। गुजरात के अमरेली में भगत सिंह युवा मंडल ने किया मां दुर्गा की प्रतिमा और भूत बंगले का बहुत ही सुंदर आयोजन। विशाल गोरिल्ला बड़ा आकर्षण का मुख्य केंद्र। तरह तरह के करतब दिखाते हुए नजर आया बच्चों को किया मनोरंजन। पंडाल के बाहर भी लगाए गए तरह तरह के मास्क वाले पुतले। पंडाल के अंदर भूत प्रेतों ने किया सभी का मनोरंजन। धर्म के साथ साथ लोगों को उनके कामों कर्मों का महत्व समझाने के लिए रखी गई थी यह भूत बंगले वाली थी। शारदीय नवरात्र पर महाराष्ट्र पीड़ित जिले के बेलगांव में रेणुका माता मंदिर में विशेष सजावट। रोशनी में नहाया मंदिर। नवरात्र में माता के दर्शन करने के लिए उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। महिलाओं के साथ बच्चे भी नजर आए। बेलगांव की कुलदेव रेणुका माता भक्तों को उनकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आशीर्वाद दे रही है। नवरात्रि की शुरुआत में बेलगांव के युवा पिछले 15 सालों से माहूरगढ़ से पैदल ज्योति लेकर जाते हैं। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है यह मंदिर। अजमेर में बंगाली हिंदू समाज इस वर्ष मना रहा है अपना 99वां दुर्गा पूजा महोत्सव। प्रतिमा निर्माण से लेकर पूजा अर्चना तक बंगाल की परंपराओं का होता है पालन। इस वर्ष कार्यक्रमों की शुरुआत 16 अक्टूबर को कल्पारंभ और आनंद मेले के साथ होगी। 17 अक्टूबर को नव पत्रिका प्रवेश और मां दुर्गा की स्थापना की जाएगी। पंचमी पर कोलकाता के पंडालों में देख रही है भक्तों की भारी भीड़। चोर बागन सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में देखी भारी भीड़। पंडाल में देवी दुर्गा और उनके बच्चे गहरी ध्यान मुद्रा में नजर आए। चित्रकूट में सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट परिसर के देवी पंडाल में आयोजित हुआ 9 दिवसीय भव्य गरबा महोत्सव। युवा लड़के और लड़कियों ने जमकर डांडिया किया और गरबा भी किया। मराठी वेशभूषा में छोटी बच्चियों ने भी किया नृत्य, अपने अंदाज में मां की आराधना की। अलग अलग टोलियां बुंदेलखंडी लोक नृत्य, देशभक्ति गीतों और गुजराती गरबा की मनमोहक प्रस्तुतियां कर रही हैं पेश। महोत्सव का उद्देश्य जाति धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर आपसी भाईचारे और प्रेम को बढ़ाना। चित्रकूट के राघव प्रयाग घाट पर 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का मंचन। 7 दिवसीय उत्सव में भारत सहित विदेशों की रामलीला और पारंपरिक कला शैलियों के जरिए प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र आदर्शों और रामकथा का हो रहा है मंचन। मंदाकिनी तट पर आयोजित

दल रावण वध और श्री राम राज्य के प्रसंग करेगा पेश। चंबा में दिख रहा है बदले मौसम का मिजाज, पांगी घाटी में हुई तेज बर्फबारी। चंबा के निचले इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट, पूरे इलाके में बढ़ी ठिठुरन। साच पास और आसपास की ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कों पर बढ़ी फिसलन, सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील। रुद्रप्रयाग केदारनाथ में भी भारी बर्फबारी का दौर, तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। मौसम में बड़े बदलाव के बावजूद धाम में भक्तों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी, श्रद्धालुओं से बदले मौसम में एहतियात बरतने की अपील। जम्मू कश्मीर की ऊंचाई वाले इलाकों समेत सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में होगी भारी बर्फबारी, मौसम की चेतावनी। कठुआ में भी हो रही है तेज बारिश और बर्फबारी, ऊंचाई वाले इलाकों में छाई धुंध। बारिश के बाद सड़कों पर फिसलन, सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील। हिमाचल पे भी मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, पूरे राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में तेज बर्फबारी की जताई संभावना। करनाल में भी अचानक बदल गया मौसम का मिजाज, आंधी के साथ हिमाचल बारिश, दिन में छाया अंधेरा। हिमाचल की ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही है जमकर बर्फबारी, हर तरफ दिख रहा सफेद बर्फ की मोटी चादर। लाहौल स्पीति, रोहतांग पास, बारालाचा पास और शिमला में करीब 6 इंच मोटी बर्फ की चादर। मनाली के मैदानों इलाकों में भी हो रही है जबरदस्त बर्फबारी और बारिश, तापमान में अचानक आई तेज गिरावट। लाहौल की चंद्रा घाटी में बर्फबारी के बीच फंसे करीब 100 वाहन रेस्क्यू हुए, रूप संग नाला के पास सड़क पर फिसलन के चलते हुआ आई। रूपसंग नाला के पास पुलिस जवान मौके पर मौजूद हैं, फंसे वाहनों सुरक्षित निकाल रहे हैं बाहर। एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई मुलाकात, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मुलाकात। इस दौरान न कोई हॉकी स्टिक लेकर पहुंचा तो किसी ने प्रधानमंत्री को अपनी जर्सी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ खिलाड़ियों ने खिंचवाई ग्रुप फोटो, प्रधानमंत्री से मिलकर उत्साहित नजर आए खिलाड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग और कुश्ती में बड़ी सफलता और एथलेटिक्स में नए रिकॉर्ड्स। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की जिन्होंने देश के लिए 11 स्वर्ण सहित कुल 38 पदक जीते। राजस्थान के टोंक जिले में 20 फीट गहरे कुएं में गिरे पायथन सांप का हुआ रेस्क्यू। हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियां हो चुकी हैं शुरू, समीक्षा बैठक हुई मुख्यमंत्री सतपाल महाराज की बैठक। कुंभ 2027 में भगदड़ रोकने के लिए बनेगी विशेष योजना, ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने पर भी नजर। प्रयागराज में अब खुली मिठाइयों पर भी यूज बाय डेट लिखना अनिवार्य, नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में 140 करोड़ से ज्यादा की बनी मेगा लेदर क्लस्टर का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया। बागेश्वर धाम सरकार की हिंदू एकता रथ यात्रा का असर, कई गांवों ने लिया नशा मुक्ति का संकल्प। 5 जिलों से गुजरी इस यात्रा में सामाजिक समानता, हिंदू एकता और नशे से दूर रहने का दिया संदेश, बड़ी संख्या में जुटे लोग। आगरा में ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचे जापान के पूर्व पेशेवर सुमो पहलवान, ताजमहल के सामने खिंचवाई तस्वीर। सुमो पहलवान योशिनोरी ताशिरो के साथ तस्वीर खिंचाते हुए नजर आए पर्यटक। ताशिरो का आगरा दौरे का एक जापानीज टेलीविजन शो की शूटिंग से भी जुड़ा हुआ है बताया जा रहा है। सुकमा के पुलिस अधीक्षक आईपीएस मयंक दोरनापाल स्थित प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास पहुंचे। सूखे के बीच गेंदे के फूलों से महक रहा विदर्भ, मनमोहक दृश्य। सहारनपुर की महिला जिला अस्पताल में नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल करने के लिए लैक्टेटिंग मैनेजमेंट यूनिट शुरू। अब फ्रिज में सुरक्षित होगा मां का दूध, एसएनसीयू में भर्ती नवजातों की भी मिलेगी

0: बागपत में चोरी और गुम हुए मोबाइलों की हुई बरामद की 179 मोबाइल मालिकों को वापस लौटाए गए। सिद्धार्थनगर से गुजरा महाबली ट्रक, बेल्जियम से लाए गए 41 मीटर लंबे औद्योगिक संयंत्र को ले जा रहा है लखीमपुर। अब अयोध्या में ही तैयार किए जा रहे हैं रामलला के वस्त्र, वस्त्र बनाने के लिए सूरत से मंगाया जा रहा है मखमल। भगवान राम को पहले मशहूर डिजाइनर मनीष के डिजाइनर कपड़े बनाए जाते थे और दिल्ली से अयोध्या पहुंचाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। त्योहारी सीजन के बीच अहमदाबाद नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, या बहरामपुर इलाके में एक फैक्ट्री से करीब 2000 किलो संदिग्ध कैचअप बरामद। आलू पाउडर, स्टार्च, पानी, रंग, एसिड समेत तमाम चीजें बरामद की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक रेस्टोरेंट को 18 रुपए की पानी की बोतल 20 रुपए में बेचना पड़ गया भारी। उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट पर लगाया 1,00,000 का जुर्माना। ग्रेटर नोएडा को सिटी मॉल पर खाद्य विभाग की छापेमारी, 6 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए, 240 लीटर घी और 18 किलो मिर्च पाउडर पर। तमिलनाडु बीजेपी ने फिल्म जेलर 2 के आइकॉनिक सॉन्ग का बनाया नया वीडियो, एक्स अकाउंट पर लिखा वन नेम वन लेगेसी वन लीडर टू रूल द नेशन। प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके का बदल गया नाम, अब नया नाम होगा कृष्णपुरी। गुरुग्राम की सोसाइटियों में बिजली बिल की मनमानी, लूट पर लगेगी लगाम, मुख्यमंत्री ने दिए ऑडिट के आदेश। अब फोन की घंटी बजते ही पता चल जाएगा कि कौन कर रहा है फोन, 1 नवंबर से नया नियम लागू। कॉल आने पर मोबाइल नंबर के साथ कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा, दूरसंचार विभाग ने फोन करने वाले की पहचान से जुड़े नियम बदलाव किए। बिहार के सहरसा में महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, नगर निगम की ओर से आयोजित प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक भी पहुंची सहरसा। आगरा मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने इंसानियत का फर्ज निभाया, झोपड़ी में जिंदगी गुजार रही बुजुर्ग विधवा की मदद की। फिल्म जेलर 2 का आज सिनेमाघरों में हुई रिलीज, फिल्म को तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज किया गया। रिलीज होने के बाद जेलर 2 को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, फिल्म को बताया जा रहा ब्लॉकबस्टर। त्रिची में रजनीकांत के फैंस ने मनाया फिल्म की रिलीज का जश्न, ढोल की थाप पर नाचते हुए नजर आए फैंस। सिनेमा घर के बाहर बड़ी संख्या में रजनीकांत के फैंस बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर थलागा के पहुंचे। हाउसफुल थिएटर्स के अंदर रजनी के फैंस ने जमकर किया डांस, सभी थिएटर्स हाउसफुल। अभिनेता धनुष भी रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 देखने के लिए पहुंचे, थिएटर फैंस का बढ़ाया हौसला। दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर, फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ का आंकड़ा पार किया। कॉफी विद करण अपने आखिरी सीजन के साथ ओटीटी पर लौट चुका है, शो के पहले एपिसोड में सलमान खान बतौर गेस्ट नजर आए। यामी गौतम अपनी फिल्म नई नवेली की रिलीज से पहले पहुंचे अयोध्या, रामलला के दर्शन करके आशीर्वाद दिया, फिल्म की सफलता के लिए प्रार्थना की। मसूरी के एक होटल में अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री राशि खन्ना नजर आए, सूत्रों के हवाले से खबर, होटल परिसर में फिल्म से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया गया। रश्मिका मंदाना अपनी फिल्म रणबाली के किरदार जयम्मा से हुई प्रेरित, 400 परिवारों को गोद लेने का फैसला किया, जरूरतमंद परिवारों की मदद करेंगी। रोहित जैन ने 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ नया ओटीटी प्लेटफॉर्म टाइगर टीवी किया लॉन्च, प्लेटफॉर्म पर आज से हिंदी और पंजाबी कंटेंट। सिने प्रेमियों के लिए आज और कल का दिन बहुत अहम, बड़ी फिल्में आ रही हैं, जेलर टू, प्रहार, नई नवेली और रणपाली। कृति सैनन की मैडॉक फिल्म्स से नई हॉरर फिल्म में हुई एंट्री, फिल्म को स्त्री से भी भयंकर बताया जा रहा। फिल्म रामायण का इंटरनेशनल ट्रेलर बेंगलुरु में किया जाएगा लॉन्च, मेकर्स ने फिल्म तो ग्लोबल कैंपेन किया शुरू। आयुष्मान खुराना और शर्वरी की आने वाली फिल्म ये प्रेम मोल लिया का तीसरा गाना हुआ रिलीज। मनोज वाजपेयी की नई फिल्म गजब रात का ट्रेलर हुआ आउट, फैंस को फिल्म में मनोज वाजपेयी की शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। गजब रात एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें दिव्या दत्ता, अक्षय ओबेरॉय, साकिब सलीम और नुसरत नजर आएंगे। ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 23 अक्टूबर को स्ट्रीम होने जा रही है। म्यूजिकल लव स्टोरी वाली फिल्म तुम मेरे हो का टाइटल ट्रैक हुआ रिलीज।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग
0: देखिए, समंदर के किनारे कन्याकुमारी से शुरू हुई कथावाचक मुरारी बापू की भारत स्वास्थ्य यात्रा अब मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर धाम पहुंच चुकी है। आध्यात्मिक चेतना, राष्ट्रीय एकता, सनातन संस्कृति के संरक्षण और सर्व कल्याण की भावना से निकली ये यात्रा ओंकारेश्वर इसका छठा पड़ाव है और यहां मुरारी बापू ने भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन पूजन करने के बाद ममलेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया। इसके बाद देखिए, मुरारी बापू ने ओंकार पर्वत स्थित आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा के दर्शन किए और ये वही पावन धाम है जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य बाल्यावस्था में पहुंचे थे और यहां जो है तपस्यारत गोविंद पादाचार्य से दीक्षा प्राप्त की और संन्यास ग्रहण किया। मां नर्मदा के किनारे स्थित भगवान महादेव के धाम में मुरारी बापू ने भक्तों को राम कथा का रसपान कराया। बापू की अमृत वाणी से रामचरितमानस की चौपाई सुनकर भक्त भाव विभोर हो उठे और कथा के दौरान शिव भक्ति के भजनों के जरिए मुरारी बापू ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक संदेश दिया।
6: ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बार है, ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, हजारों हजार लोग दिन भर में यहाँ पहुँचते हैं। बहुत ही खूबसूरत नदी यानी कि नर्मदा के किनारे विशेष स्थान है ये और इस पवित्र नदी के तट पर है मध्य प्रदेश का ओंकारेश्वर धाम। बार है ज्योतिर्लिंग में से एक है ये और आपको बता दें कि स्थान की खास बात यह है कि मांधाता द्वीप के ऊपर ओम के आकार जैसा एक चिन्ह दिखाई देता है और इसी वजह से ओंकारेश्वर केवल एक तीर्थ नहीं है बल्कि आस्था, प्रकृति और भारतीय संस्कृति के अद्भुत संगमों का भी एक प्रतीक माना जाता है। और राजा मंधाता यहाँ के जो राजा थे उन्होंने कठोर तपस्या की थी इसी पर्वत पर, भगवान शिव को उन्होंने तपस्या से प्रसन्न किया था और ओंकारेश्वर धाम ये कहलाता है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
7: क्या आपके विवाह होने में विलंब हो रहा है? क्या आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं? शीघ्र विवाह का क्या होगा समाधान और नवरात्रि में कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम। लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम। लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है
13: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
0: असम के चिरांग जिले में माता की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण, स्वर्ण जयंती वर्ष पर दुर्गा पूजा समिति की भव्य तैयारी, पंडाल में सजावट का काम जारी। नवरात्र के छठे दिन कल माँ कात्यायनी की होगी पूजा अर्चना। श्रद्धालु और भक्ति के साथ सजा माँ का दरबार। मंदिरों में हर रोज उमड़ रहे हैं भक्त। शारदीय नवरात्र के मौके पर देश भर में गरबा डांडिया की धूम। चित्रकूट के सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट परिसर में भव्य आयोजन। समारोह में हजारों लोग कर रहे हैं शिरकत। नवरात्र के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के बीड़ में लगा श्रद्धालुओं का तांता। बेलगांव के रेणुका माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हजारों भक्त। अब अयोध्या में ही तैयार हो रहे हैं रामलला के वस्त्र। सूरत से मंगाए जा रहे रेशम मखमल सहित दूसरे सामान मंदिर ट्रस्ट ने वस्त्र निर्माण के लिए किए इंतजाम। एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चैंपियंस ने शेयर किया अनुभव।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आपके शीघ्र विवाह के बारे में। जी हाँ, शारदीय नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं और ऐसे में हम रोज पूजा आराधना करते हैं, तो क्या हमें पूजा करनी चाहिए जिससे हमारे विवाह में आ रही बाधा जो है वो दूर हो जाए और हमारा विवाह शीघ्र अति शीघ्र हो जाए। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आप नवरात्रि के पावन अवसर पर अपनी बड़ी से बड़ी बाधा को दूर करना चाहते हैं, अपनी बड़ी समस्या को सुलझाना चाहते हैं, तो नवरात्रि में कम से कम 3 रातों को लगातार रात्रि सूक्त का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और आइए जान लेते हैं 16 अक्टूबर 2026 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 16 अक्टूबर 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, प्रातः 6:47 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 6:47 तक राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं शीघ्र विवाह के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि किस प्रकार नवरात्रि में शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है।
1: देखिए, वैसे तो सावन के महीने में, कार्तिक के महीने में आपको शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है। नवरात्रि में किस तरीके से शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है, आइए जानते हैं। देखिए, नवरात्रि का समय हर दृष्टि से काफी पवित्र माना जाता है। नवरात्रि का समय पवित्र समय है। देवी की अगर आप नवरात्रि में उपासना करते हैं तो इस समय में आप अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में माता कात्यायनी की और माता गौरी की उपासना की जा सकती है। शीघ्र विवाह के लिए माता कात्यायनी और मनचाहे विवाह के लिए माता गौरी की उपासना कर सकते हैं। नवरात्रि में अगर मां दुर्गा की उपासना विधि विधान से की जाए, नियमों के साथ की जाए, तो विवाह तो जल्दी होगा ही। अगर वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है, कोई बाधा है, तो वो बाधा दूर हो जाएगी। यानी नवरात्रि में अगर आप देवी की उपासना करें तो आपका विवाह शीघ्र होगा, और अगर वैवाहिक जीवन में किसी तरह की बाधा है तो वो बाधा आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जान लेते हैं जिन लोगों की राशि है मेष, वृष और मिथुन, क्या कहता है उनका राशिफल।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए अब जान लेते हैं कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में हो तो आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए ताकि आपका शीघ्र विवाह हो सके।
1: अगर आपकी उम्र 18 से 24 साल के बीच की है और आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? नवरात्रि में किसी भी दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करिएगा, देवी को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करिएगा और इसके बाद ओम दुं दुर्गाय नमः, ओम दुं दुर्गाय नमः इस मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला जप करिएगा और देवी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। पूजा हो जाने के बाद लौंग को अपने पास रख लीजिएगा और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहिएगा। नवरात्रि में किसी भी रात को अगर आप एक बार ये उपाय कर दें तो आपका विवाह शीघ्र होगा।
0: और चलिए अब जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल के बारे में।
1: कर्क राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, धन का लाभ होगा, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में समस्या हो सकती है, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: और अब वक्त हो गया आज के सवालों को और उनके जवाब देने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही आज का पहला सवाल, उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
1: जी आज का पहला प्रश्न आंचल ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखती हैं, 30 जुलाई 1997 का जन्म है, शाम के 6:10 जन्म स्थान है कानपुर। आंचल कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल सकेगी। आंचल, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की तैयारी करें या शिक्षा क्षेत्र की नौकरी की तैयारी करें तो उसमें आपके सफलता की संभावनाएं जरूर बनती हैं। इस क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, थोड़ी मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है। एक मूंगा लगभग 10-12 रत्ती का तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः मूंगा पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा।
0: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और इसी के साथ अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो पंडित जी आज का दूसरा प्रश्न आप किसका ले रहे हैं।
1: जी अगला प्रश्न गोपाल दास जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं, बेटी की जन्म की तारीख है 3 जनवरी 2000, जन्म का समय सुबह के 11:05, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी का विवाह मैं करना चाहता हूं और मेरी बेटी विवाह के लिए तैयार नहीं हो रही है, तो उसका विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। गोपाल जी, अभी आपकी पुत्री की कुल उम्र 26 साल हुई है, 2 साल थोड़ा सब्र करिए, 28 साल की उम्र होने के बाद इनके विवाह के योग बन रहे हैं, तो साल 2028 में इनका विवाह होगा, इनकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए, थोड़ा सा इंतजार करिए। आपकी बेटी का विवाह बेहतर हो, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, उसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए, 8-9 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण कराएं और अपनी पुत्री से बोलें कि वो सुबह के समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो काफी बेहतर होगा।
0: अगर आपकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच में है तो आपको ऐसे कौन से उपाय करने हैं ताकि आपका विवाह शीघ्र अति शीघ्र हो सके?
1: जिन लोगों की उम्र 25 साल से लेकर के 30 साल के बीच की है उनको शीघ्र विवाह के लिए क्या करना चाहिए? नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके पूजा करिएगा, देवी को 3 लाल फूल अर्पित करिए और इसके बाद कम से कम 3 माला या 11 माला कात्यायनी मंत्र का जप करिएगा। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी मंत्र का 3 या 11 माला जप करें और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिनों तक अगर आप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
1: तुला राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, धन की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो हमने 18 से 25 वर्ष के बीच की आयु वालों के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब वक्त हो गया है अगर आपकी उम्र है 30 वर्ष से ज्यादा तो आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए ताकि आपका विवाह शीघ्र हो सके।
1: अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो और विवाह ना हो पा रहा हो तो शीघ्र विवाह के लिए क्या करेंगे? नवरात्रि के अंतिम रात को देवी के समक्ष बैठिएगा, नवमी की रात को एक लाल रंग की चुनरी ले लीजिएगा और उसमें हल्दी की दो गांठ और चांदी का एक सिक्का रखिएगा, इसको देवी को समर्पित कर दीजिएगा, उनके चरणों में रख दीजिएगा और इसके बाद दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का चौथे अध्याय का पाठ करिएगा और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। पाठ करने के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेट करके अपने बेडरूम में रख दीजिएगा और जब विवाह आपका हो जाए तो चांदी का सिक्का दान कर दीजिएगा और हल्दी की गांठ जल में प्रवाहित कर दीजिएगा।
0: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं जिन लोगों की राशि है मकर, कुंभ और मीन, क्या कहता है उनका राशिफल।
1: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, परिवार में अशांति से बचें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ

0: रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा, देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: गुड लक में अब जानेंगे कि आज का तीसरा प्रश्न पंडित जी किसका लेने वाले हैं और उन्हें कहां से और किसने ये प्रश्न भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न दिलीप कुमार जी ने हमें लिखा है और दिलीप कुमार जी पटना बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 अक्टूबर 1965। जन्म का समय दोपहर के 11 बजे और जन्म का स्थान है बेगूसराय बिहार। दिलीप जी कह रहे हैं कि काफी समय से मैं अपना एक मकान बनवाना चाहता हूं लेकिन मकान मेरा नहीं बन पा रहा है, तो मुझे प्रॉपर्टी का लाभ कब तक होगा, कब तक मैं अपना मकान बनवा पाऊंगा। दिलीप जी आपकी कुंडली के हिसाब से इस बात की ज्यादातर संभावना बनती है कि आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट अगले साल खरीद पाएंगे मई के महीने के बाद। अगले साल के मध्य में आपको प्रॉपर्टी का लाभ होगा, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। आप ऐसा करिए, रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का दान करिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एक और दर्शक का प्रश्न लेते हैं। अश्विनी जी ने हमें मेल लिखा है और अश्विनी जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 दिसंबर 1990। जन्म का समय रात में 10 बजे, जन्म का स्थान है मऊ उत्तर प्रदेश। अश्विनी जी कह रहे हैं कि इतनी उम्र मेरी हो गई है, मेरा अब तक विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अश्विनी जी आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2027 के जनवरी से अप्रैल का जो समय है, उस समय आपके विवाह होने की संभावना बनती है। चटमंगनी पट ब्याह जैसी स्थिति आपके लिए दिखाई दे रही है। विवाह का जब भी निर्णय लीजिएगा एक बार कुंडली जरूर मिला लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और इसी के साथ वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जान लेते हैं आज का अंतिम और चौथा प्रश्न पंडित जी किसका लेंगे।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न सौम्या जी ने हमें लिखा है और सौम्या हमें मेल लिखती हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 22 नवंबर 1993। जन्म का समय रात के 9 बजे, जन्म का स्थान है अहमदाबाद। सौम्या कह रही हैं कि मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी, उसका मुकदमा चल रहा है, तो मुकदमे से छुटकारा कब तक मिलेगा और आगे दूसरे विवाह की मेरे लिए क्या संभावना बनती है। सौम्या, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपने वैवाहिक मुकदमे से छुटकारा अगले 6 से 8 महीने में मिल जाएगा। आपसी सुलह समझौते से पहले विवाह में डिवोर्स हो जाएगा अगस्त 2027 के पहले। 2027 के अंत में या 2028 के आरंभ में स्वयं की इच्छा से आपके विवाह के योग दिखाई दे रहे हैं और वैवाहिक जीवन दूसरे विवाह में कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, एक प्रश्न था, नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं और ऐसे में आज के एपिसोड में हमने जाना कि कैसे हम कौन सा उपाय करें ताकि हमारा विवाह जो है वो शीघ्र हो जाए, लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, वैवाहिक जीवन सही रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: जी देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो तो नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और नवरात्रि के अवसर पर माता गौरी की अगर आप पूजा करें, हर और गौरी यानी शिव और पार्वती जी की अगर आप नवरात्रि के अवसर पर पूजा करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 16 अक्टूबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में बदलाव होगा, धन का लाभ और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है और अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर गणेश जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: इसी के साथ वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से क्या है आज की जिज्ञासा।
0: आज की जिज्ञासा है कि देवी की उपासना में सफलता के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। देवी की उपासना में लाल आसन का प्रयोग करें, देवी को लाल फूल और लौंग बताशा अर्पित करें और उपासना में देवी के सामने घी का दीपक जलाएं तो काफी बेहतर होगा।
1: और अब जानेंगे शुभ पहर के बारे में, तो आइए जानते हैं 16 अक्टूबर 2026 यानी कि शुक्रवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 16 अक्टूबर 2026 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में देवी को गुलाब का फूल अर्पित करें, ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करेंगे शुभ पहर में ही 16 अक्टूबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो आइए जान लेते हैं क्या है आज की गुडलक राशि।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा की स्थिति कैसी रहती है। आज की गुड लक राशि है मीन। इनकी शिक्षा उत्तम होती है, आराम से जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी राशि मीन है तो अच्छी शिक्षा के लिए आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए।
1: गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि पंडित जी आज का महा उपाय क्या है।
0: जी

0: मैं आपको बताते हैं कि अगर आप नकारात्मक ऊर्जा को, निगेटिव एनर्जी को दूर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, चांदी की दो लौंग लेकर आइए, इसको नवरात्रि की किसी भी रात को देवी को अर्पित कर दीजिएगा और अगले दिन इसको घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में बांधकर लटका दीजिएगा। आपका घर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहेगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।

0: माँ कात्यायनी जिनकी कृपा से मिलता है विवाह का वरदान। माता रानी दूर करेंगी विवाह में आने वाले सारी व्यवधान। अगर आपके भी सफल नहीं हो रहे विवाह के प्रयास, लाख ढूंढने के बाद भी पूरी नहीं हो रही सुयोग्य जीवन साथी की तलाश, ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि विवाह से जुड़ी बाधा मुख्यतः बृहस्पति और शुक्र के कारण होती है। माना जाता है कि नवरात्र में विवाह संबंधी हर अड़चन का अमोघ अस्त्र है माँ कात्यायनी की आराधना।
1: बृहस्पति शुक्र विवाह कारक ग्रह माने जाते हैं और जिनका कात्यायनी जी का संबंध बृहस्पति की पीड़ा को निवारण के लिए बहुत ही अचूक इनकी आराधना रहती है। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति कहीं से कमजोर हो तो निश्चित रूप से कात्यायनी जी की आराधना करने से बृहस्पति बलवान होता है और शीघ्र विवाह संपन्न होता है।
0: हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, मनपसंद जीवन साथी का साथ हो। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जब कुंडली के ग्रहों में दोष होता है तो शादी के शुभ योग ही नहीं बनते, साथ ही शादी तय होकर बार बार रिश्ता टूट जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि किन वजहों से शादी विवाह में बाधा आती है। कुंडली के 5 तत्वों में अग्नि या वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होने पर, चंद्रमा शुक्र या बृहस्पति की स्थिति कमजोर होने पर, मंगल दोष या ग्रहण योग होने पर, अष्टम या द्वितीय भाव में पाप ग्रह होने पर, सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति पाप क्रांत होने पर। माना जाता है कि कुंडली में ये वो दशाएं हैं जो विवाह नहीं होने देते। अगर इन वजहों से आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं तो फिर रिश्ते बनते टूटते जाते हैं, तो आपको नवरात्र में माँ कात्यायनी देवी का ध्यान करने से आपको सुयोग जीवन साथी का वरदान मिल सकता है, क्योंकि नवरात्र का समय हर दृष्टि से पवित्र है। देवी की उपासना से हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में माँ कात्यायनी की उपासना की जा सकती है, साथ ही मन चाहे विवाह के लिए माँ गौरी की उपासना की जा सकती है। नवरात्रि में अगर माँ दुर्गा की उपासना विधि विधान के साथ की जाए, इससे विवाह की बाधा का अंत होता है, साथ ही वैवाहिक जीवन की बाधा भी दूर हो जाती है। नवरात्र में माँ कात्यायनी की उपासना को अमोघ माना गया है, साथ ही माँ के एक महामंत्र का नियमित 31 या 41 बार जाप करने से विवाह के शीघ्र योग बन जाते हैं। आप भी सुनिए माता रानी का वो दिव्य महामंत्र।
1: हाँ, माँ कात्यायनी से शीघ्र विवाह के उपाय में सबसे बेहतर षष्ठी वाले दिन या किसी भी शुक्रवार वाले दिन जो कुमारी कन्या है इनके लिए कलश का स्थापन करते हुए और घी का दीपक जला के इनका एक बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इसका जप लगभग 31 दिन या 41 दिन तक किया जाता है।
0: माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में शक्ति की आराधना जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर सकती है। माँ दुर्गा की उपासना से साधक को संसार का सारा वैभव मिल सकता है और साथ ही मिल सकता है शीघ्र विवाह का वरदान। ये आदिशक्ति ही है जो असंभव को भी संभव बना दें। कष्ट क्लेश दुख विपदा भय बाधा सभी कुछ माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से दूर हो जाते हैं। तो आइए आपको परम कल्याणकारी और अचूक उपाय बताते हैं जिससे आपको मिलेगा सुयोग्य जीवन साथी का वरदान। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि हर उम्र के साधक के लिए एक अलग महा उपाय है, तो गौर से देखिए ये महा उपाय। अगर आपकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच हो तो किसी उपाय से विवाह की बाधा का अंत हो सकता है। देखिए, नवरात्रि में किसी भी दिन लाल वस्त्र धारण करें, देवी को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करें, ओम दुम दुर्गाय नमः का यथाशक्ति जप करें, पूजा के बाद
2: लौंग को अपने पास रख लें, इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहें। ज्योतिषी मानते हैं कि ये प्रयोग अचूक है, ये आपकी विवाह संबंधी हर परेशानी का रामबाण उपाय है। इन उपायों को अपनाइए और देवी को मनाइए, आपकी हर बाधा हर विपदा देवी कृपा से दूर हो जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं वो ज्योतिषीय महाप्रयोग। तब क्या करें जब आपकी उम्र 25 से 30 साल के बीच हो। नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके पूजा करें, देवी को 3 लाल फूल अर्पित करें, कात्यायनी मंत्र का यथाशक्ति जप करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन करें। माँ तो ममतामयी है, वो भक्तों की तकलीफों को क्षण में दूर कर देती हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई है और विवाह नहीं हो पाया है, तब कौन सा ज्योतिषीय उपाय करें, चलिए जानते हैं। नवरात्रि की अंतिम रात्रि को देवी के समक्ष बैठें, एक लाल रंग की चुनरी ले लें, उसमें हल्दी की 2 गांठ और चांदी का 1 सिक्का रखें, इसको देवी को समर्पित कर दें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करें, शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। पाठ के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेटकर अपने शयन कक्ष में रख लें। आगे हम आपको बताएंगे मां की कृपा से बृहस्पति की शुभता पाने के महा उपाय, साथ ही जानेंगे धर्म ग्रंथों में माता कात्यायनी की व्याख्या कैसे की गई है, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
3: देवी माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है, लेकिन अगर आपके विवाह या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या है तो इस नवरात्र में माँ कात्यायनी की उपासना से विशेष लाभ आपको मिल सकता है। और आदि शक्ति जगदम्बा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा करने से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। नवरात्र में शीघ्र विवाह से जुड़े अछूत प्रयोग और कौन से हैं, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं।

0: नवरात्र में मिलेगा मनवांछित वर का वरदान। माँ कात्यायनी की कृपा से होगा आपका कल्याण। नवरात्र में देवी की उपासना भक्त अपार श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। देवी के दरबार में भक्त कतारबद्ध हैं। माना जाता है कि आदिशक्ति के ये वो पावन दिन हैं जब माँ अम्बे अपनी करुणा का सागर भक्तों पर लौटा देती हैं। नवरात्र में आदिशक्ति का नाम ही सारे बिगड़े काम बना देता है, आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। आज हम अपनी खास पेशकश में माँ कात्यायनी की महिमा आपको बता रहे हैं। चलिए आपको पहले बताते हैं कि पौराणिक ग्रंथों में माँ कात्यायनी से कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी है।
1: कात्यायनी जी का जो उद्गम या उद्भव हुआ है उसके पीछे कात्यायन ऋषि जी की तपस्या है। ये असुरों के संहार के लिए इनके भगवान कात्यायन ने इनका माँ से वरदान मांगा था। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद माँ दुर्गा से जो वरदान मांगा उसमें कात्यायनी स्वरूप का जन्म हुआ।
0: कथा मिलती है कि कत नाम के एक महर्षि हुआ करते थे, उनके पुत्र का नाम कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि की कीर्ति तप के कारण चारों तरफ फैल गई। कथा कहती है कि ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें, इसीलिए उन्होंने कई साल तक भगवती की कठोर तपस्या की थी। कथा कहती है कि ऋषि कात्यायन की एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाएं। जबकि दूसरी कथा जुड़ी है महिषासुर के वध से। कथा है कि शक्तियों के मद में चूर होकर महिषासुर ने तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया। कथा है कि इंद्रलोक के देवताओं के सिंहासन पर महिषासुर ने अधिपत्य स्थापित कर लिया। कथा है कि तब देवताओं के अनुरोध पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने तेज से एक तेजवान देवी को उत्पन्न किया। कथा है कि देवी कात्यायनी का स्वरूप अद्भुत था। उनकी 3 आंखें और 18 भुजाएं थी और वो सूर्य की तरह चमक रही थी। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र से सुशोभित किया। कहते हैं कि तब महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की, इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना गया। कथा कहती है कि दशमी तिथि को देवी ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना गया। देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता ये भी है, ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यानी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी, इसलिए आज भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में ये उल्लेख भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के क्रोध से हुई थी। भागवत पुराण में वर्णन है कि गोकुल की युवा और विवाह योग्य कन्याओं ने मार्गशीर्ष महीने में देवी कात्यायनी का व्रत रखा, भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाई और उनकी पूजा की। ये परंपरा आज भी जारी है। दक्षिण भारत में देवी कन्याकुमारी को माँ कात्यायनी का ही रूप माना जाता है। पोंगल के दौरान माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि विवाह योग्य पुरुष भी माता से विवाह के वरदान पा सकते हैं।
1: कात्यायनी जी का स्वरूप बताया कि गौर वर्णा है और 4 भुजाएं हैं इनकी, जिसमें वर मुद्रा से लेके अस्त्र शस्त्र ये सब रहता है और इनका आकर्षण के लिए कात्यायनी जी का बहुत ज्यादा महत्व मिलता है।
0: चलिए आपको बताते हैं शास्त्रों में भगवती के स्वरूप की कैसी व्याख्या की गई है। माता कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में दिखाई देता है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना से अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग शोक संताप और भय नष्ट हो जाते हैं।
1: विशेष तो देखिए माँ का जो विषय है वो समस्त आपको चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करने वाली हैं, जिसमें धन यश मान सम्मान परिवार सबका सुख मिलता है, लेकिन विशेष रूप से वर प्राप्ति के लिए कन्या लोग इनका पूजन करती हैं और पुरुष भी इनका जप और पूजन कर सकते हैं अच्छी पत्नी प्राप्ति के लिए।
0: ज्योतिष के जानकार भी ये मानते हैं कि अगर कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा तो विवाह और वैवाहिक जीवन में शुभता बनी रहेगी। अगर आप नवरात्र में ये प्रयोग ना भी कर पाएं, तो बृहस्पति को मजबूत करके कैसे वैवाहिक जीवन सुखी बनता है, कैसे वैवाहिक जीवन सुखी बना सकते हैं, आइए जानते हैं।
1: बृहस्पति बलवान करने के लिए एक तो पीला वस्त्र का धारण करना चाहिए, दूसरी चीज माँ के जप के संग बृहस्पति का भी जप करें और पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिसमें हल्दी है, चने की दाल है, पीला वस्त्र है एवं केला फल इत्यादि में केला इत्यादि का भी दान करने से बृहस्पति की जो तकलीफ होती है वो शीघ्र दूर होती है।
0: हर रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें, कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, खान पान में सात्विकता रखें, सलाह लेकर एक ओपल या पीला पुखराज धारण करें, रात को सोने से पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर करें।
1: जब के विधान में पीले वस्त्र को धारण करें या लाल वस्त्र भी इसमें पहना जा सकता है और पीले आसन पे आसन के नीचे केले के पत्ते को रख के इस अनुष्ठान को अगर किया जाए तो ये शीघ्र ही फलीभूत होता है और अपने इच्छानुकूल वर की प्राप्ति होती है।
0: तो सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ आदि शक्ति की भक्ति में लीन हो जाइए, माता के श्री चरणों में शीश झुकाइए, फिर आप हर बाधा और परेशानी से दूर हो जाएंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे करनी है माँ कात्यायनी की आराधना और किस भोग से प्रसन्न होंगी माँ कात्यायनी। आप बने रहिए हमारे साथ।
2: तो देखा आपने नवरात्र में कितनी कल्याणकारी है माँ कात्यायनी की आराधना। अभी आपने जाना नवरात्र में शीघ्र विवाह के उपाय। आइए अब आपको हम माँ कात्यायनी की दिव्य शक्तियों से परिचित कराते हैं, कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना। आइए चलिए उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं।
0: अमोघ फलदायिनी है नवरात्र में माँ कात्यायनी की उपासना। देवी के छठे स्वरूप की उपासना से पूर्ण होगी सभी कामना। अद्भुत है माँ कात्यायनी की प्रताप, जिनकी कृपा से घरों में बजती है शहनाइयां। वर वधु के हाथ होते हैं पीले और दंपति जीवन में मधुरता का मिलता है वरदान। साथ ही कुंडली की ग्रह दशा भी हो जाती है अनुकूल, लेकिन इसके लिए सही तरीके से करनी होगी आपको माता की उपासना, क्योंकि विधिवत की गई अर्चना से शीघ्र प्रसन्न होती है माँ कात्यायनी। तो आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि कैसे मिलेगी देवी के इस दिव्य स्वरूप की कृपा।
1: कात्यायनी जी के प्रिय वस्तुओं में शहद का भोग लगता है एवं हल्दी इनको चढ़ाई जाती है और इनका मुख्य विषय जो है कन्या के विवाह इत्यादि में भी अगर विलंब बाधा आ रही हो या किसी विशेष कार्य में रुकावट पैदा हो रहा हो तो निश्चित रूप से इनकी आराधना करने से वो कार्य सहर्ष पूरा हो जाता है।
0: कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा? पूजा के स्थान को लाल कपड़े से सजाएं। देवी कात्यायनी का संबंध लाल रंग से माना गया है। गोधूली वेला में पीले या लाल कपड़े पहनाकर इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीली मिठाइयां अर्पित करें। माँ के इस स्वरूप को शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और साथ ही प्रेम से जुड़ी बाधाएं भी दूर होंगी। इसके बाद माँ के सामने उनके मंत्रों का जाप करें। तो आप भी माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के महा उपाय कीजिए और नवरात्र के इन दिव्य दिनों का लाभ उठाइए। जिससे भगवती के कृपा से आप सबका कल्याण होगा और साथ ही आने वाली बाधाओं का भी सर्वनाश होगा।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: मैदानी राज्यों में बारिश के चलते मौसम खुशनुमा है, तो वहीं पर पहाड़ियों पर बर्फबारी ने चार चांद लगा दिए हैं। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाके सीजन की पहली बर्फबारी से सफेद नजर आ रहे हैं, जहां पर गुलमर्ग, सोनमर्ग, पीर पंजाल समेत तमाम ऊंची चोटियों पर स्नोफॉल जबरदस्त देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर अगर आप देखेंगे मैदानी इलाकों को भी सीजन की पहली बर्फबारी की सौगात मिल चुकी है। मौसम का मिजाज इस बार घाटी में जोरदार सर्दी पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं।
2: धरती की जन्नत कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर सीजन की पहली बर्फबारी से ही सफेदी के सागर में समा गया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत तमाम ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, तो मैदानी इलाकों में भी सीजन की पहली बर्फबारी की सौगात मिल चुकी है। डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इसके साथ ही बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी और पीर पंजाल रेंज की प्रसिद्ध पीर की गली भी बर्फ की चादर ओढ़ चुकी है। उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी से पूरा पहाड़ी इलाका सफेद नजर आ रहा है। मैदानी क्षेत्र में करीब 2 इंच और ऊंचाई वाले इलाकों में 4 से 5 इंच बर्फ दर्ज की गई है। पीर पंजाल रेंज में सीजन की पहली बर्फबारी से ही श्रीनगर को पुंछ से मिलाने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फ से पट गई। आलम यह हुआ कि रोड को कुछ समय के लिए आवाजाही के लिए बंद करना पड़ गया, लेकिन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने तत्काल कमान संभाली और सड़कों पर बिछी बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया। कुछ घंटों के बाद आखिरकार सड़क को फिर से खोल दिया गया ताकि पुंछ और कश्मीर के बीच यातायात सुचारू रूप से चलती रहे।
3: दक्षिण कश्मीर शोपियां के पीर गली इलाके में अभी हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बर्फ ही बर्फ जो है इसमें पड़ी हुई है कल शाम से। दरअसल आपको बता दें कि ये एक बालाई इलाका माना जाता है और साथ में ही इसके जो है एक हिस्टोरिकल मगर रोड जिसको कहा जाता है वो चल रहा है। आपको बता दें कि BRO ने एहतियातन उस रोड को सुबह सवेरे कुछ जो है पल के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि पीर की गली या दर्जन इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी और जिसके कारण जो है रोड को एहतियाती तौर पर बंद करना पड़ा। लेकिन अभी जो है स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन ओवर हो चुका है, यानी बर्फ जो है इस रोड पे हटाई गई है और गाड़ियों की जो है आमद रफ्त इस पे फिर से चलने लगी। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे गुरेज हो, कुपवारा हो या गुलमर्ग हो, गुलमर्ग के साथ साथ जो है पीर गली इलाकों में भी जो है बर्फबारी हो रही है। लगभग कम से कम 5 से 6 इंच बर्फ एक्यूमुलेट की जा चुकी है।
2: बारामूला जिले में मौजूद मशहूर हिल स्टेशन गुलमर्ग का सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक हिल स्टेशन है अफरवाट। आमतौर पर अफरवाट में ऐसा बर्फीला नजारा नवंबर के आखिरी दिनों में दिखाई देता है। सर्दियों में ये इलाका दुनिया भर के स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है, लेकिन कुदरत की मेहरबानी से ये सौगात पर्यटकों को अभी मिल गई है।
4: बहुत अमेजिंग, सबको आना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगी, इंडिया में, वर्ल्ड में सबको आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। इतनी स्नो देखी, लेकिन ये अमेजिंग प्लेस, वी आर सो लकी दैट वी केम टुडे।
5: अच्छा मजा आ रहा है, मतलब सबको आना चाहिए यहाँ पे घूमने को।
6: इतनी बर्फ कभी नहीं देखी थी, आज पहली बार देखी है। काफी कम स्नोफॉल देखी थी, बर्फ होते हुए देखी थी।
2: जम्मू कश्मीर में मौसम का ये बदलाव महज चंद दिनों में ही नजर आया है। अक्टूबर की शुरुआत में मौसम कुछ हद तक गर्म था, लेकिन अक्टूबर का महीना आधा खत्म होते होते घाटी सर्दी के आगोश में लिपटने लगी है। कश्मीर, चेनाब घाटी और पीर पंजाल इलाके में दिन का तापमान भी काफी हद तक गिरने लगा है।
7: जहाँ तक जम्मू का डिवीजन की बात है, वहाँ इंटेंसिटी कम होगी, एरिया भी कम होगा इससे, और ये 2 दिन का स्पेल है। इसके बाद 16 तारीख में आइसोलेटेड प्लेसेस पर कहीं कहीं बहुत कम बारिश हो सकती है, और उसके बाद तो फिर आ गए आने वाले टाइम में 24 तारीख तक करीब करीब ड्राई ही वेदर है।
2: मौसम विभाग के मुताबिक अभी 1-2 दिन और बारिश और बर्फबारी का दौर चलेगा, उसके बाद 1 हफ्ते तक बारिश और बर्फबारी दोनों से राहत मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से भले ही थोड़े दिनों की राहत मिले, लेकिन मौसम का ये मिजाज इस बात का संकेत दे रहा है कि इस बार सर्दी जल्दी और जोरदार पड़ने के आसार हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और मीर फरीद के साथ शोपियां से एजाज डार, गुड न्यूज टुडे।
1: हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक वास्तुकला और लोक कला को सहेजने की दिशा में रिटायर शिक्षक विनय अवस्थी तन मन धन से लगे हुए हैं। विनय अवस्थी बांस और लकड़ी से हिमाचल के ऐतिहासिक मंदिरों और पारंपरिक स्लेट पूछ मकानों की आकर्षक प्रतिकृतियां तैयार कर रहे हैं, जिसे देखकर लोग तारीफ कर रहे हैं। और उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में लगाई गई है, जिसे देखकर सैलानी मंत्रमुग्ध हो रहे हैं।
8: अयोध्या का श्रीराम मंदिर, केदारनाथ महादेव मंदिर, आदि हिमानी चामुंडा मंदिर और कई प्रसिद्ध मंदिरों के रेप्लिका, ये हिमाचल की अनूठी बांस कला की देन है, जिसे साकार कर रहे हैं विनय अवस्थी। विनय अवस्थी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन लकड़ी और बांस से तैयार किए गए ये मॉडल इस बात के सबूत हैं, उनके जुनून का। उनका मानना है कि बांस की अनूठी कला को दुनिया के सामने लाना है और हिमाचल की पारंपरिक वास्तुकला और लोक कला को सहेजने की जरूरत है। इसकी कोशिश वो कर रहे हैं।
9: आर्ट जो मैं 2019 से कर रहा हूँ, और मैडम मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी कलाकृतियां हैं उनको बनाने में 15 दिन से ज्यादा समय लगता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इनको बड़ी तन्मयता के साथ बनाऊं, ताकि देखने वाला जो है वो देख करके, मतलब जो है वो उसको पसंद करे। लोकल बैम्बू यूज करता हूँ, उसको काट करके सुखा करके और अपने ही हाथों से सारा कुछ करता हूँ, और जब ये रेप्लिकास कोई अंतिम रूप दे लेती है तो मैं उसको ट्रीट करके फिर जो प्रदर्शनी में लगाता हूँ।
8: बांस और लकड़ी से हिमाचल के ऐतिहासिक मंदिरों और पारंपरिक सलेट पोशा मकानों की आकर्षक प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी आजकल धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में लगाई गई है।
10: काफी टेंपल्स के रेप्लिकास हैं, पूरे हिमाचल को इन्होंने कवर किया हुआ है। रिज शिमला का भी है इसमें, मुंडा टेंपल और ये रिज शिमला, रिज जो है शिमला पे उसका, और भीमाकाली टेंपल, 84 टेंपल, इन सब के रेप्लिकास इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं।
11: ये टेंपल्स के, ये भी काफ़ी अच्छा है, इट्स वेरी गुड। सो ओवरऑल आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस नोइंग अबाउट योर एंशियंट हिस्ट्री एंड ऑल दोस थिंग्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा।
8: हिमाचल की पारंपरिक कला और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे प्रदर्शनी का आयोजन वक्त वक्त पर किया जाता है। प्रशासन की कोशिश भी रहती है कि ऐसी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान मिल सके, ताकि हिमाचल और देश के युवा इस पारंपरिक कला को नया आयाम दे सकें।
12: ऐसे लोग हैं जो ऐसी आर्ट फॉर्म्स को जीवित रख रहे हैं, आप इनके देखेंगे जब, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी ये दिखाएं कि स्लेट पोस्ट मकान, डबल मंजिल, सिंगल मंजिल, जो हमारा शिमला का चर्च है और जो इतने सारे हिमाचल के मंदिर हैं उनके रेप्लिका जिन्होंने बनाए हैं, बहुत बारीकी से काम किया है। और कहीं ना कहीं आजकल ऐसा हो रहा है कि ये प्रतिभा जो है, ऐसी आर्ट फॉर्म जो हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, तो अगर ऐसे में कोई ऐसे आर्टिस्ट सामने आते हैं तो हमें उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानना चाहिए।
8: विनय अवस्थी ऐसी प्रतिकृतियों को बनाने में बांस काटने से लेकर कलाकृतियों को अंतिम रूप देने तक का ज्यादातर काम खुद करते हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें इस काम का कुछ सहयोग मिले तो वो इस कला को देश और दुनिया तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नवरात्र के छठे दिन आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना, श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिरों में उमड़ रहे हैं भक्त। हर रोज होता है माता का अनुपम श्रृंगार। असम के चिरांग जिले में माता की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण, स्वर्ण जयंती वर्ष पर दुर्गा पूजा समिति की भव्य तैयारियां, पंडाल में सजावट का काम जारी। शारदीय नवरात्र के मौके पर देश भर में गरबा डांडिया की धूम, चित्रकूट के सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट परिसर में भव्य आयोजन, समारोह में हजारों लोग कर रहे हैं शिरकत। नवरात्र के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के बीड़ में लगा श्रद्धालुओं का तांता, बेलगांव के रेणुका माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हजारों भक्त। अब अयोध्या में ही तैयार हो रहे हैं रामलला के वस्त्र, सूरत से मंगाया जा रहा है रेशम मखमल सहित दूसरे सामान मंदिर ट्रस्ट ने वस्त्र निर्माण के लिए किए इंतजाम। एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चैंपियंस ने शेयर किए अपने अनुभव।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात शक्ति उत्सव की। आज नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंद माता के दर्शन पूजन का विधान है। सुबह से ही देश के तमाम मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है और श्रद्धालु मां आदि शक्ति से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। मां स्कंद माता दुख और रोगों से मुक्ति प्रदान करती है। मान्यता है कि माँ के इस स्वरूप की प्रार्थना करने से शांति और सुख का अनुभव होता है। मान्यता ये भी है कि नवरात्र के दौरान शक्ति के प्रमुख स्थानों में दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। इसी के चलते जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको देवी के कुछ अनोखे धामों के दर्शन करवाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में देवी का एक ऐसा अद्भुत मंदिर मौजूद है जिसके इतिहास की डोर मराठा साम्राज्य की गौरवशाली विरासत से जुड़ी है। शक्ति उत्सव में आज चलेंगे उन देवी के धाम जो वीर शिवाजी की कुल देवी मानी जाती हैं। वो देवी जिनका आशीर्वाद वीर शिवाजी के माथे का विजय तिलक बन गया। पहाड़ों पर बना एक ऐसा अद्भुत मंदिर जिसका एक द्वार 70 किलोमीटर दूर बसे उज्जैन में खुलता है।

0: जिनके आशीर्वाद ने किया वीर शिवाजी का विजय तिलक, जिनकी कृपा से वीर शिवाजी को मिली भवानी तलवार, जिस मंदिर से जुड़ी है मराठा शौर्य की विरासत, जिस दर पर शीश झुकाते थे सम्राट विक्रमादित्य, वो मंदिर जिसे उज्जैन से जोड़ती है एक रहस्यमयी गुफा, वो मंदिर जहां तुलजा भवानी स्वरूप में विराजी हैं शक्ति, मध्य प्रदेश में उज्जैन से लगभग 70 किलोमीटर दूर आगर मालवा में पहाड़ों के बीच प्राचीन गुफा में शान से विराजी हैं माँ तुलजा भवानी। ये मंदिर मध्य प्रदेश में मौजूद देवी के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्थानों में से एक है। इस मंदिर में मौजूद माँ भवानी की मूर्ति स्वयं भू मानी जाती है। बताया जाता है कि ये मूर्ति यहाँ पहाड़ों के बीच स्वतः प्रकट हुई थी। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं।
1: मेरे पीछे जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये गुफा है यहाँ पर, और ये यहाँ भारी भरकम पत्थरों की शिलाएं हैं बड़ी बड़ी, और ये पहाड़ है। इसी पहाड़ के बीच में यहाँ पर एक गुफा आपको दिखाई दे रही है, और ये वही गुफा है जिससे कहा जाता है कि माँ तुलजा भवानी ने उज्जैन से यहाँ पर अपना स्थान लिया था और यहाँ पर प्रकट हुई थी।
0: तुलजा भवानी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये मराठा इतिहास की गौरवशाली विरासत का भी प्रतीक है। दरअसल माँ तुलजा भवानी मराठा साम्राज्य के शौर्य तिलक छत्रपति शिवाजी की कुल देवी हैं। इनका मुख्य स्थान महाराष्ट्र के तुलजापुर में मौजूद है।
2: माँ तुलजा भवानी का बहुत पुराना स्थान है। भगवती का प्रथम स्थान महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से माता रानी चले उज्जैन पधारे, उज्जैन से भद्री गुफा में प्रवेश हुए, तो यहाँ पर आगर में एक सुरंग है जो वहाँ से यहाँ तक उज्जैन जाती है। इसी गुफा द्वारा माँ आकर के यहाँ पहाड़ों में प्रकट हुई देवी।
0: छत्रपति शिवाजी माँ तुलजा भवानी के अनन्य भक्त थे। बताया जाता है कि जब शिवाजी महाराज ने मुगलों और आदिलशाही सुल्तानों के खिलाफ स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया, तब उन्होंने अपनी कुलदेवी माँ भवानी की विशेष साधना की थी। किंवदंतियों में वर्णन मिलता है कि एक बार जब शिवाजी महाराज अपने शत्रुओं से घिरे हुए थे और उनके पास कोई उपाय नहीं बचा था, तब उन्होंने माँ तुलजा भवानी का आह्वान किया। माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वे विजय प्राप्त करेंगे। बताया जाता है कि माँ भवानी के आशीर्वाद से उन्हें एक दिव्य तलवार प्राप्त हुई थी, जिसे भवानी तलवार कहा जाता है। इस तलवार के साथ शिवाजी ने कई ऐतिहासिक युद्ध जीते और मराठा साम्राज्य का किला मजबूत किया। बताया जाता है कि माँ तुलजा भवानी महाराष्ट्र से उज्जैन आई और फिर वहाँ से पहाड़ों में मौजूद सुरंग और गुफा के रास्ते इस स्थान पर प्रकट हुई थी। मंदिर में आज भी वो गुफा मौजूद है जिसके जरिए माँ तुलजा भवानी के आगर मालवा में प्रकट होने का दावा किया जाता है। इस गुफा को भृतहरी गुफा के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि ये गुफा वास्तव में पहाड़ों में मौजूद उस प्राकृतिक सुरंग का द्वार है जो आगर मालवा को उज्जैन से जोड़ती है।
2: सुरंग कहीं वर्षों से है माता रानी की, और ये राजा महाराजाओं के समय की है सुरंग भृतहरी गुफा, और इसी सुरंग का काफी राजा विक्रमादित्य जी द्वारा आवागमन हुआ, आना जाना हुआ, माँ का पूजन अर्चना करते हुए।
0: पीढ़ियों से मंदिर में सेवा पूजा करते आ रहे पुजारी परिवार के वंशज बताते हैं कि ये गुफा सीधे उज्जैन तक जाती है। बताया जाता है कि किसी दौर में सम्राट विक्रमादित्य इसी गुफा के रास्ते माँ तुलजा भवानी के दर्शन करने उज्जैन से आगर मालवा आया करते थे। मंदिर और आसपास के इलाकों से वर्षों से परिचित लोग बताते हैं कि मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ियों में मौजूद जिस गुफा से माँ तुलजा भवानी आई थी, उसी गुफा से बाद में आम लोग भी उज्जैन आया जाया करते थे, लेकिन बाद के सालों में सुरंग और गुफा में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया।
2: सुरंग तो धीरे धीरे विलुप्त हो चुकी है। करीब यहाँ से आज के 30-40 साल पहले चालू थी सुरंग, और कुछ लोग अंदर जाकर के भी देखा भी है उन्होंने, लेकिन अब विलुप्त हो चुकी है। सिर्फ यह ऐतिहासिक है कि उसको हम बता सकते हैं कि भगवती का यह मेन स्थान है जो यहाँ से पधारे।
0: मंदिर के पुजारी बताते हैं कि किसी जमाने में मंदिर के आसपास पहाड़ियों पर दुर्गम वन क्षेत्र था। मंदिर के आसपास गुफा और सुरंग तक शेर आया जाया करते थे। खास तौर पर देवी की आरती के समय वहाँ शेर मौजूद रहता था। इन शेरों को देवी की मौजूदगी का प्रतीक माना जाता था। लेकिन समय के साथ इस क्षेत्र में पहले वन कम हुए और फिर धीरे धीरे वनराज का आना भी बंद हो गया। माँ जगदम्बा के इस दरबार में पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना लेकर माँ के दरबार में पहुँचते हैं। नवरात्र के दौरान यहाँ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं जिनमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। माना जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, विशेषकर वे जो शक्ति और विजय की कामना रखते हैं। वास्तव में वीर शिवाजी की कुलदेवी माँ तुलजा भवानी का ये मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि ये शौर्य, भक्ति और मराठा गौरव का प्रतीक भी है। जो भी व्यक्ति शक्ति, साहस और सफलता की प्रार्थना लेकर यहाँ आता है, उसे माँ भवानी की कृपा जरूर मिलती है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो नवरात्र के इस मौके पर जीएनटी पर हम आपको देश के सबसे अनोखे देवी मंदिरों के दर्शन करवा रहे हैं। इसी क्रम में अब आपको लेकर चलेंगे झांसी में मौजूद एक और अद्भुत देवी मंदिर में, जहां स्वयं जगत की जननी बाल रूप में विराजमान है। संसार में मां काली का ऐसा अनोखा रूप और कहीं देखने को नहीं मिलता।

0: वो मंदिर जहां बाल रूप में विराजी हैं जगत जननी, वो मंदिर जहां इंदिरा गांधी को मिला जीत का आशीर्वाद, वो मंदिर जहां रौद्र नहीं बल्कि सौम्य रूप में विराजमान है महाकाली, वो मंदिर जहां स्वयं प्रकट हुई मां भवानी। नवरात्रि के पावन दिनों में भक्त 9 दिनों तक मां भगवती के अलग अलग रूपों की साधना करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के झांसी में मां के ऐसे अनोखे स्वरूप की आराधना होती है जिसे देखकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। झांसी के इस मंदिर में मां काली कन्या के रूप में विराजमान है। जरा सोचिए, जो स्वयं जगत जननी है, जो स्वयं चराचर जगत और संपूर्ण सृष्टि का आधार आदि शक्ति मानी जाती हैं, वो भक्तों को बाल स्वरूप में दर्शन देने को विराजी हैं।
1: ये सौम्य रूप में विराजमान, आपने महाकाली को देखा होगा कि उनकी लंबी लंबी जिह्वा होती है, बड़ा ही विकराल स्वरूप होता है, लेकिन ये सौम्य रूप है, ये कन्या रूप इनको बोलते हैं। ये दिन में आप देखेंगे, कभी भी आप आके दर्शन करेंगे, आपको दर्शन परिवर्तित होते हुए मिलेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ।
0: न केवल बाल रूप बल्कि ये दुनिया का ऐसा अनोखा मंदिर है जहां मां काली के सौम्य रूप के दर्शन होते हैं। आमतौर पर मां काली के हाथों में खड़ग, खप्पर और गले में मुंडों की माला रहती है, दुनिया में उनका यही स्वरूप पूजा जाता है, लेकिन बुंदेलखंड के इस मंदिर

0: काली जी जो है वो सौम्य रूप में है। पूरे भारतवर्ष में केवल दो ही जगह सौम्य रूप में काली जी हैं, एक तो कलकत्ता में है और एक यहाँ पर है, बाकी कहीं पर भी आप देंगे सब रौद्र रूप में रहती हैं।
1: बताया जाता है कि बुंदेलखंड के इस मंदिर का इतिहास शताब्दियों पुराना है और ये इतिहास जुड़ा है ओरछा के राज परिवार से। बताया जाता है कि कभी मंदिर के स्थान पर एक पहाड़ हुआ करता था जहाँ एक गुफा में माँ की मूर्ति इस स्वरूप में प्रकट हुई थी। बरसों तक माँ उस गुफा में गुप्त रूप से विराजमान रही, लेकिन लगभग 500 साल पहले ये रहस्य उस दिन खुला जब ओरछा वंश के शासक राजा जुदेव सिंह इस इलाके में शिकार करने आए।
0: जब यहाँ पे ओरछा के महाराज जुदेव जी शिकार खेलने आए तब उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पे कुछ है, वहाँ पे उनको कुछ बाती जलती हुई दिखाई दी। जब वो आए उन्होंने देखा यहाँ पे काली जी की प्रतिमा थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना चालू करवाई और तब से लेके आज तक हम लोग यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं हमारा पूरा परिवार।
1: बताया जाता है कि ओरछा राज परिवार ने ही मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया। समय के साथ इस मंदिर की महिमा, मान्यता और ख्याति दूर दूर तक फैल गई। 70 के दशक में इस मंदिर की चर्चा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कानों में भी पड़ी। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने जीत का आशीर्वाद पाने के लिए मां काली के इस मंदिर में अनुष्ठान करवाया था।
2: 1977 में इधर आए, तब बस प्रधानमंत्री पद पे नहीं थे, तो उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी हम पुनः प्रधानमंत्री पद कब प्राप्त करेंगे? बोले हमारी माँ जो आज्ञा देगी वो। तो बोले माँ बोलती है ये मैं कैसे मानूं? तो बोले हसत माल मुँह रत मुस्कानी। बोले जब मूर्ति बोलती है तो फूल झड़ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि माँ बोली है। बोले फिर मेरे को कैसे मालूम चलेगा? तो इतनी देर में 3 घंटे बाद उनका माई के हृदय का पुष्प गिरा। बोले आप 3 साल बाद आप जो है पुनः प्रधानमंत्री पद। तो मैं चिकमंगलूर से चुनाव जीती, चिकमंगलूर से चुनाव जीतने के बाद पुनः प्रधानमंत्री बनी, तो उनके सलाहकार फिर उनको लेके आए सन 83 में। उन्होंने कहा पंडित जी मांगिए, आपको जो मांगना है वो मांगिए। बोले हम क्या मांगे साधु बैरागी आदमी, आप क्या हम मांगे? बोले हम तो एक यज्ञ करना चाहते हैं, अगर आप सहयोग करना चाहती हैं तो करिए। बोले कौन सा यज्ञ करना है मेरे को बोलो, मैं कराता हूँ। बोले मैं लखचंडी यज्ञ करना चाहता हूँ। बोले कराइए आप संकल्प कराइए। संकल्प किया, संकल्प करने के बाद 87 में उन्होंने जो नीचे यज्ञशाला है उसमें उन्होंने लखचंडी यज्ञ कराया।
1: तो साल भर झांसी के इस मंदिर में माँ के बाल स्वरूप करने भक्त देश और दुनिया भर से पहुंचते हैं, लेकिन खास तौर पर नवरात्र के पावन दिनों में यहां मां काली के कन्या रूप को पूजने भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। नवरात्र के 9 दिनों में बाल स्वरूपा मां काली के धाम में विशेष अनुष्ठान किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस बार भी नवरात्र के दौरान माँ भगवती के लिए मन में अगाध आस्था लिए भक्त देश के कोने कोने से यहाँ पहुँच रहे हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़।
3: और अब आपको लिए चलते हैं गुजरात और दर्शन करवाते हैं मां अंबा की। गुजरात के बनासकांठा में मौजूद अंबाजी धाम में इन दिनों नवरात्र उत्सव की धूम है। अंबाजी शक्तिपीठ देश के प्रमुख शक्ति स्थलों में गिना जाता है। आज दुनिया भर के श्रद्धालु इस शक्तिपीठ में दर्शन को पहुंचते हैं, लेकिन पौराणिक इतिहास बताता है कि त्रेता युग में यहां श्री राम भी दर्शन के लिए पहुंचे थे, तो वहीं द्वापर युग में नंद बाबा और यशोदा मैया छोटे से कान्हा को लेकर अंबाजी के धाम गए थे। आखिर क्यों इतना खास है अंबाजी शक्तिपीठ और क्या है इसकी कहानी, चलिए आपको बताते हैं।

0: कहा, संसार का ये वो स्थान है जहाँ स्वयं माँ का हृदय रहता है। संसार के कोने कोने से पहुँचते हैं श्रद्धालु माँ के हृदय भाग के दर्शन करने। ये दिव्य स्थान है गुजरात का अंबाजी शक्तिपीठ। गुजरात राजस्थान सीमा पर बसे बनासकांठा में अरावली पर्वत पर शांत से विराजी है माँ अंबा। माँ अंबा का यह अद्वितीय धाम देवी के 51 शक्ति पीठों में गिना जाता है। तंत्र चूड़ामणि में उल्लेख मिलता है कि इसी स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था।
1: भगवान विष्णु जगत की सृष्टि का पालन करने हेतु उनके सुदर्शन चक्र से माँ भगवती सती का शरीर था उनके टुकड़े किए और वो जो टुकड़े थे जहाँ जहाँ पर गिरे वहाँ पर 51 शक्तिपीठ निर्माण हुई और वहाँ से ये शक्तिपीठ मानी जाती है। कारण के वहाँ जो देव टुकड़े गिरे वहाँ से जो सबसे श्रेष्ठ जो टुकड़ा था वो हृदय का जो टुकड़ा था वो हृदय का टुकड़ा जो है माँ भगवती का यहाँ अरावली पर्वत के गोद में आकर गिरा और यहाँ पर माँ भगवती की शक्तिपीठ निर्माण हुई। इसलिए यहाँ महाभारत के सभी तीर्थों में से सबसे श्रेष्ठ तीर्थ यहाँ माना जाता है।
0: आज पूरा गुजरात अम्बाजी की भक्ति में डूबा है। क्या आम क्या खास, सब पर माँ जगदम्बे के उत्सव का रंग चढ़ा है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ गर्भगृह में माँ की मूर्ति की नहीं बल्कि शक्ति के स्वरूप यंत्र की पूजा होती है। अम्बा देवी का यंत्र गुप्त रखा जाता है जिसे खुले में देखना भी निषेध है। यहाँ तक कि पुजारी भी इसकी पूजा आंखों पर पट्टी बांध कर करते हैं।
1: न मातुर पर देवता, इस जगत के अंदर माँ के समान कोई बड़ा देव नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर जो माँ भगवती का जो दिव्य स्वरूप है तो इस स्वरूप के अंदर यहाँ पर माँ भगवती के जो गर्भगृह के अंदर कोई मूर्ति या कोई ऐसा प्रतीक की पूजा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर सभी शक्तिपीठों में से सबसे श्रेष्ठ शक्तिपीठ इसलिए माना गया है कि यहाँ पर गर्भगृह के अंदर माँ भगवती के श्री यंत्र की पूजा होती है, यंत्र की पूजा होती है जिसका नाम विषा यंत्र बताया गया है। और इस यंत्र के अंदर माँ भगवती की अभूत शक्ति जो है इस यंत्र के अंदर मानी जाती है और इस यंत्र की ब्राह्मणों के द्वारा पूजा होती है। और यहाँ पर आने वाले सभी जो भक्तगण है यहाँ पर आते तो खाली हाथ आते हैं लेकिन इस यंत्र की दर्शन मात्र से, इस भक्ति के दर्शन मात्र से, इस शक्ति के दर्शन मात्र से सभी भक्तगण यहाँ से कुछ ना कुछ श्रद्धा शक्ति और नई ऊर्जा लेकर अपने घर जाते हैं।
0: आपको बता दें कि माँ अम्बा का ये दिव्य धाम लगभग 1200 साल पुराना है। कालांतर में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। आज माँ भवानी के हृदय स्थान पर बना ये मंदिर भव्य रूप को प्राप्त कर चुका है। मंदिर के शिखर को 141 किलो सोने से मढ़ा गया है। 61 फीट ऊंचे शिखर पर 358 छोटे बड़े स्वर्ण कलश लगाए गए हैं। बताया जाता है कि यहाँ मंदिर तो बेहद बाद में बना लेकिन माँ आद्याशक्ति यहाँ हमेशा से विराजमान है। कई पौराणिक कहानियों में इस दिव्य स्थान का उल्लेख मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि माँ जगदम्बा के इसी धाम में नंद बाबा और माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का मुंडन करवाया था, तो वहीं भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए यहाँ से गुजरे थे और माँ अम्बा का आशीर्वाद लिया था। इसके साथ ही मान्यता ये भी है कि वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखने की शुरुआत इसी तपोभूमि से की थी। अंबाजी धाम में मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर गब्बर नाम का पहाड़ मौजूद है जहां देवी का एक और प्राचीन मंदिर स्थापित है। अंबाजी के दर्शन के बाद श्रद्धालु गब्बर पहाड़ी पर मौजूद इस मंदिर में जरूर जाते हैं। आज माँ अम्बा का ये धाम गुजरात ही नहीं बल्कि देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु माँ अम्बा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ देवी के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्र के दिनों में मंदिर प्रांगण में गरबा करके शक्ति की आराधना की जाती है। सप्तशती के पाठ से पूरा मंदिर प्रांगण गूंज उठता है। खास तौर पर गुजरात के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले किसान मां के दर्शन के लिए यहां सब परिवार इकट्ठा होते हैं। बड़े स्तर पर मनाए जाने वाले इस समारोह में गरबा और भवाई जैसे पारंपरिक नृत्यों का आयोजन भी किया जाता है। 9 दिनों तक अम्बे धाम में भक्ति के गीत गूंजते हैं।
2: पंखीड़ा तू उड़ के जाना अम्बे धाम रे, अम्बा जी को कहना हम भी द्वारे आए हैं, अम्बा जी से कहना हम भी द्वारे आए हैं। पंखीड़ा तू उड़ी ने जाजे पावागढ़ रे, महाकाली से मिलके कह जो गर्भ रमे रे, मारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, अम्बा जी से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, अम्बा जी से मिलके कहना गरबा खेलेंगे।
0: इस बार भी नवरात्र के पावन अवसर पर माँ भवानी के इस धाम में खूब रौनक है। मन में भावना की जोत जलाए हजारों भक्त जगदम्बा के दरबार में शीश झुकाने पहुंचे हैं। बरासकाठा में अंबाजी शक्तिपीठ से शक्ति सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

माँ चाहे अपनी हो या फिर सारी जगत की, माँ का हृदय वो स्थान है जहाँ हमेशा जगह होती है उसके बच्चों के लिए। और आपकी टीवी स्क्रीन पर

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अगर चलते हैं कोलकाता के ढाकुरिया शहीद नगर दुर्गा पूजा पंडाल, जिसे महामिलन की थीम पर बनाया गया है। महामिलन थीम दो अलग अलग लेकिन बहुत खूबसूरत पहलुओं का एक अनूठा संगम है ये पंडाल। एक तरफ शरणार्थियों के ऐतिहासिक संघर्ष और उनकी एकता को दर्शाती है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक मिलन से प्रेरित है।
2: भव्य और दिव्य माँ दुर्गा की प्रतिमा है, उतना ही खूबसूरत और कलात्मक है माँ दुर्गा का ये पंडाल, जिसकी भव्य लाइटिंग और शानदार वास्तुकला श्रद्धालुओं को खूब रास आ रही है। ये पंडाल एक तरफ शरणार्थियों के ऐतिहासिक संघर्ष और उनकी एकता को दर्शाता है, तो दूसरी ओर राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक मिलन से प्रेरित है। कोलकाता के ढाकुरिया शहीद नगर सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति का ये पंडाल जहाँ मौजूद है, वो मूल रूप से भारत के विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी द्वारा बसाई गई कॉलोनी है। इस दुर्गा पंडाल की थीम महामिलन, शरणार्थियों के इतिहास और उनके संघर्षों को समर्पित की गई है। पंडाल के जरिए दिखाया गया है कि कैसे लोग अपना सब कुछ पीछे छोड़कर इस अनजान जगह पर आए और आपसी सहयोग और सद्भाव के साथ सामाजिक एकता स्थापित की।
3: रिफ्यूजी कॉलोनी है, यहाँ पे एक टाइम में ईस्ट पाकिस्तान से सब कुछ छोड़ के सब लोग जा गए थे। हम लोग का जो पूर्व पुरुष लोग थे, जो एंसेस्टर थे, जब यहाँ पे आए थे, उन लोग ऐसे ही ये छन का, ये हुगला पत्ता का, ये बांस का, बम्बू का देकर उन लोग घर बनाते थे। अभी वो लाइफ वॉर में जीत गए हैं, जीत के ये सबका बड़ा बड़ा आपका मकान हो गया है, लेकिन हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है, उन लोग को हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग का क्या जूता क्या था।
2: इस थीम को जीवंत करने के लिए पारंपरिक बंगाली शिल्प और आधुनिक सामग्री का बेहतरीन फ्यूजन इस्तेमाल किया गया है। पंडाल की दीवारें और सजावट विभाजन के दौर की यादों और आध्यात्मिक प्रतीकों को खूबसूरती से दर्शाती है। सामाजिक सद्भाव के साथ साथ महामिलन थीम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अलौकिक प्रेम से भी प्रेरित है। यह उनके अटूट प्रेम, भक्ति और मिलन के जरिए दुनिया को प्रेम, करुणा और सौहार्द का संदेश देती है। साथ ही पूरी सृष्टि की रक्षा करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप से भी प्रेरित है।
3: महामिलन अब श्री रामचंद्र और श्री राम कृष्ण के बिना नहीं होता है। श्री रामचंद्र जो अकल बोधन किए थे, तब जो सीता माता को उद्धार करने के लिए गए थे, तो उनको महामिलन करके कारबिलरी से लेके बानरसेना तक, मनुष्य से लेके देवता तक, पूरा प्रकृति उनका साथ दिया था, महामिलन घटवाया था। और सिर्फ सेम त्रेता युग में हम लोग का श्री कृष्ण एक हाथ में चक्र और एक हाथ में बांसी बजा के श्री राधा जी को लेके जो राश किए थे, जो संहार करके जो राश लीला में शामिल हुए थे, उसमें पूरा प्रकृति, पूरा जल, पूरा वायु, पूरा सब कुछ, गाय, भैर, बक्षी सब एक साथ में शामिल होके, मनुष्य सब एक साथ में शामिल होके जो महामिलन करके शांति का वार्ता दिए थे, वही हम लोग डिपिक्ट किए हैं।
2: पंडाल के केंद्र में विराजमान माँ दुर्गा की प्रतिमा को पूरी तरह से पारंपरिक साबे के रूप में तैयार किया गया है, जिसे बंगाली समुदाय पीढ़ियों से देखता और पूछता आ रहा है। ये परंपरा और आधुनिक संदेश के सुंदर संतुलन को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: नवरात्र के छठे दिन आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिरों में उमड़ रहे हैं भक्त। हर रोज होता है माता का अनुपम श्रृंगार। असम के चिरांग जिले में माता की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण। स्वर्ण जयंती वर्ष पर दुर्गा पूजा समिति की भव्य तैयारियां। पंडाल में सजावट का काम जारी। शारदीय नवरात्रि के मौके पर देश भर में गरबा डांडिया की धूम। चित्रकूट के सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट परिसर में भव्य आयोजन समारोह में हजारों लोग कर रहे हैं शिरकत। नवरात्रि के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के भीड़ में लगा श्रद्धालुओं का तांता। बेलगांव के रेणुका माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं हजारों भक्त। अयोध्या में ही तैयार हो रहे हैं रामलला के वस्त्र। सूरत से मंगाया जा रहा है रेशम मखमल सहित दूसरे सामान मंदिर ट्रस्ट ने वस्त्र निर्माण के लिए किए इंतजाम। एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चैंपियंस ने शेयर किए अपने अनुभव।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। महिषासुर का वध करने वाली माँ कात्यायनी ही है। नवरात्र के छठवें दिन माँ कात्यायनी की आराधना का विधान है। कहते हैं माँ कात्यायनी की कृपा से विवाह में आ रही बड़ी से बड़ी बाधा भी बड़ी ही आसानी से दूर हो जाती है। किसी कारणवश आपके विवाह में अड़चनें आ रही हों तो माँ कात्यायनी की विशेष पूजा उपासना करने से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मन चाहे विवाह के लिए कैसे करें माँ कात्यायनी की विशेष उपासना और कौन से हैं वो अचूक महाप्रयोग जो दिलाएंगे आपको माँ का आशीर्वाद।

0: माँ कात्यायनी जिनकी कृपा से मिलता है विवाह का वरदान, माता रानी दूर करेंगी विवाह में आने वाले सारी व्यवधान। अगर आपके भी सफल नहीं हो रहे विवाह के प्रयास, लाख ढूंढने के बाद भी पूरी नहीं हो रही सुयोग्य जीवन साथी की तलाश, ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि विवाह से जुड़ी बाधा मुख्यतः बृहस्पति और शुक्र के कारण होती है। माना जाता है कि नवरात्र में विवाह संबंधी हर अड़चन का अमोघ अस्त्र है माँ कात्यायनी की आराधना।
1: बृहस्पति शुक्र विवाह कारक ग्रह माने जाते हैं और जिनका कात्यायनी जी का संबंध बृहस्पति की पीड़ा को निवारण के लिए बहुत ही अचूक इनकी आराधना रहती है। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति कहीं से कमजोर हो तो निश्चित रूप से कात्यायनी जी की आराधना करने से बृहस्पति बलवान होता है और शीघ्र विवाह संपन्न होता है।
0: हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, मनपसंद जीवन साथी का साथ हो। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जब कुंडली के ग्रहों में दोष होता है तो शादी के शुभ योग ही नहीं बनते, साथ ही शादी तय होकर बार बार रिश्ता टूट जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि किन वजहों से शादी विवाह में बाधा आती है। कुंडली के 5 तत्वों में अग्नि या वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होने पर, चंद्रमा शुक्र या बृहस्पति की स्थिति कमजोर होने पर, मंगल दोष या ग्रहण योग होने पर, अष्टम या द्वितीय भाव में पाप ग्रह होने पर, सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति पाप क्रांत होने पर। माना जाता है कि कुंडली में ये वो दशाएं हैं जो विवाह नहीं होने देते। अगर इन वजहों से आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं तो फिर रिश्ते बनते टूटते जाते हैं, तो आपको नवरात्र में माँ कात्यायनी देवी का ध्यान करने से आपको सुयोग जीवन साथी का वरदान मिल सकता है, क्योंकि नवरात्र का समय हर दृष्टि से पवित्र है। देवी की उपासना से हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में माँ कात्यायनी की उपासना की जा सकती है, साथ ही मन चाहे विवाह के लिए माँ गौरी की उपासना की जा सकती है। नवरात्रि में अगर माँ दुर्गा की उपासना विधि विधान के साथ की जाए, इससे विवाह की बाधा का अंत होता है, साथ ही वैवाहिक जीवन की बाधा भी दूर हो जाती है। नवरात्र में माँ कात्यायनी की उपासना को अमोघ माना गया है, साथ ही माँ के एक महामंत्र का नियमित 31 या 41 बार जाप करने से विवाह के शीघ्र योग बन जाते हैं। आप भी सुनिए माता रानी का वो दिव्य महामंत्र।
1: हाँ, माँ कात्यायनी से शीघ्र विवाह के उपाय में सबसे बेहतर षष्ठी वाले दिन या किसी भी शुक्रवार वाले दिन जो कुमारी कन्या है इनके लिए कलश का स्थापन करते हुए और घी का दीपक जला के, इनका एक बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इसका जप लगभग 31 दिन या 41 दिन तक किया जाता है।
0: माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में शक्ति की आराधना जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर सकती है। माँ दुर्गा की उपासना से साधक को संसार का सारा वैभव मिल सकता है और साथ ही मिल सकता है शीघ्र विवाह का वरदान। ये आदि शक्ति ही हैं जो असंभव को भी संभव बना दें। कष्ट क्लेश दुख विपदा भय बाधा सभी कुछ माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से दूर हो जाते हैं। तो आइए आपको परम कल्याणकारी और अचूक उपाय बताते हैं जिससे आपको मिलेगा सुयोग्य जीवन साथी का वरदान। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि हर उम्र के साधक के लिए एक अलग महा उपाय है, तो गौर से देखिए ये महा उपाय। अगर आपकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच हो तो किसी उपाय से विवाह की बाधा का अंत हो सकता है। देखिए, नवरात्रि में किसी भी दिन लाल वस्त्र धारण करें, देवी को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करें, ओम दुम दुर्गाय नमः का यथाशक्ति जप करें, पूजा के बाद लौंग को अपने पास रख लें, इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहें। ज्योतिषी मानते हैं कि ये प्रयोग अचूक है, ये आपकी विवाह संबंधी हर परेशानी का रामबाण उपाय है। इन उपायों को अपनाइए और देवी को मनाइए, आपकी हर बाधा हर विपदा देवी कृपा से दूर हो जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं वो ज्योतिषीय महाप्रयोग, तब क्या करें जब आपकी उम्र 25 से 30 साल के बीच हो। नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके पूजा करें, देवी को 3 लाल फूल अर्पित करें, कात्यायनी मंत्र का यथाशक्ति जप करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन करें। माँ तो ममतामयी है, वो भक्तों की तकलीफों को क्षण में दूर कर देती हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई है और विवाह नहीं हो पाया है, तब कौन सा ज्योतिषीय उपाय करें, चलिए जानते हैं। नवरात्रि की अंतिम रात्रि को देवी के समक्ष बैठें, एक लाल रंग की चुनरी ले लें, उसमें हल्दी की 2 गांठ और चांदी का 1 सिक्का रखें, इसको देवी को समर्पित कर दें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का पाठ करें, शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। पाठ के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेटकर अपने शयन कक्ष में रख लें। आगे हम आपको बताएंगे माँ की कृपा से बृहस्पति की शुभता पाने के महा उपाय, साथ ही जानेंगे धर्म ग्रंथों में माता कात्यायनी की व्याख्या कैसे की गई है, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: देवी माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है, लेकिन अगर आपके विवाह या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या है तो इस नवरात्र में माँ कात्यायनी की उपासना से विशेष लाभ आपको मिल सकता है और आदि शक्ति जगदम्बा के 6th स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा करने से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। नवरात्र में शीघ्र विवाह से जुड़े अचूक प्रयोग और कौन से हैं, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं।

0: नवरात्र में मिलेगा मनवांछित वर का वरदान। माँ कात्यायनी की कृपा से होगा आपका कल्याण। नवरात्र में देवी की उपासना भक्त अपार श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। देवी के दरबार में भक्त कतारबद्ध हैं। माना जाता है कि आदिशक्ति के ये वो पावन दिन हैं जब माँ अम्बे अपनी करुणा का सागर भक्तों पर लौटा देती हैं। नवरात्र में आदिशक्ति का नाम ही सारे बिगड़े काम बना देता है, आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। आज हम अपनी खास पेशकश में माँ कात्यायनी की महिमा आपको बता रहे हैं। चलिए आपको पहले बताते हैं कि पौराणिक ग्रंथों में माँ कात्यायनी से कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी है।
1: कात्यायनी जी का जो उद्गम या उद्भव हुआ है उसके पीछे कात्यायन ऋषि जी की तपस्या है। ये असुरों के संहार के लिए इनके भगवान कात्यायन ने इनका माँ से वरदान मांगा था। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद माँ दुर्गा से जो वरदान मांगा उसमें कात्यायनी स्वरूप का जन्म हुआ।
0: कथा मिलती है कि कत नाम के एक महर्षि हुआ करते थे, उनके पुत्र का नाम कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि की कीर्ति तप के कारण चारों तरफ फैल गई। कथा कहती है कि ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें, इसीलिए उन्होंने कई साल तक भगवती की कठोर तपस्या की थी। कथा कहती है कि ऋषि कात्यायन की एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई, जबकि दूसरी कथा जुड़ी है महिषासुर के वध से। कथा है कि शक्तियों के मद में चूर होकर महिषासुर ने तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया। कथा है कि इंद्रलोक के देवताओं के सिंहासन पर महिषासुर ने अधिपत्य स्थापित कर लिया। कथा है कि तब देवताओं के अनुरोध पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने तेज से एक तेजवान देवी को उत्पन्न किया। कथा है कि देवी कात्यायनी का स्वरूप अद्भुत था। उनकी 3 आंखें और 18 भुजाएं थीं और वो सूर्य की तरह चमक रही थी। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र से सुशोभित किया। कहते हैं कि तब महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की, इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना गया। कथा कहती है कि दशमी तिथि को देवी ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना गया। देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता ये भी है, ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यानी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी, इसलिए आज भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में ये उल्लेख भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के क्रोध से हुई थी। भागवत पुराण में वर्णन है कि गोकुल की युवा और विवाह योग्य कन्याओं ने मार्गशीर्ष महीने में देवी कात्यायनी का व्रत रखा, भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाई और उनकी पूजा की। ये परंपरा आज भी जारी है। दक्षिण भारत में देवी कन्याकुमारी को माँ कात्यायनी का ही रूप माना जाता है। पोंगल के दौरान माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि विवाह योग्य पुरुष भी माता से विवाह के वरदान पा सकते हैं।
1: कात्यायनी जी का स्वरूप बताया कि गौर वर्णा है और 4 भुजाएं हैं इनकी, जिसमें वर मुद्रा से लेके अस्त्र शस्त्र ये सब रहता है और इनका आकर्षण के लिए कात्यायनी जी का बहुत ज्यादा महत्व मिलता है।
0: चलिए आपको बताते हैं शास्त्रों में भगवती के स्वरूप की कैसी व्याख्या की गई है। माता कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में दिखाई देता है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना से अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग शोक संताप और भय नष्ट हो जाते हैं।
1: विशेष तो देखिए माँ का जो विषय है वो समस्त आपको चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है, जिसमें धन यश मान सम्मान परिवार सबका सुख मिलता है, लेकिन विशेष रूप से वर प्राप्ति के लिए कन्या लोग इनका पूजन करती हैं और पुरुष भी इनका जप और पूजन कर सकते हैं अच्छी पत्नी प्राप्ति के लिए।
0: ज्योतिष के जानकार भी ये मानते हैं कि अगर कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा तो विवाह और वैवाहिक जीवन में शुभता बनी रहेगी। अगर आप नवरात्र में ये प्रयोग ना भी कर पाए तो बृहस्पति को मजबूत करके कैसे वैवाहिक जीवन सुखी बनता है, कैसे वैवाहिक जीवन सुखी बना सकते हैं, आइए जानते हैं।
1: बृहस्पति बलवान करने के लिए एक तो पीला वस्त्र का धारण करना चाहिए, दूसरी चीज माँ के जप के संग बृहस्पति का भी जप करें और पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिसमें हल्दी है, चने की दाल है, पीला वस्त्र है एवं केला फल इत्यादि में केला इत्यादि का भी दान करने से बृहस्पति की जो तकलीफ होती है वो शीघ्र दूर होती है।
0: हर रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें, कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, खान पान में सात्विकता रखें, सलाह लेकर एक ओपल या पीला पुखराज धारण करें, रात को सोने से पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर करें।
1: जब के विधान में पीले वस्त्र को धारण करें या लाल वस्त्र भी इसमें पहना जा सकता है और पीले आसन पे आसन के नीचे केले के पत्ते को रख के इस अनुष्ठान को अगर किया जाए तो ये शीघ्र ही फलीभूत होता है और अपने इच्छानुकूल वर की प्राप्ति होती है।
0: तो सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ आदि शक्ति की भक्ति में लीन हो जाइए, माता के श्री चरणों में शीश झुकाइए, फिर आप हर बाधा और परेशानी से दूर हो जाएंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे करनी है माँ कात्यायनी की आराधना और किस भोग से प्रसन्न होंगी माँ कात्यायनी। आप बने रहिए हमारे साथ।
2: तो देखा आपने नवरात्र में कितनी कल्याणकारी है माँ कात्यायनी की आराधना। अभी आपने जाना नवरात्र में शीघ्र विवाह के उपाय। आइए अब आपको हम माँ कात्यायनी की दिव्य शक्तियों से परिचित कराते हैं, कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना। आइए चलिए उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं।

0: अमोघ फलदायिनी है नवरात्र में माँ कात्यायनी की उपासना। देवी के छठे स्वरूप की उपासना से पूर्ण होगी सभी कामना। अद्भुत है माँ कात्यायनी की प्रताप, जिनकी कृपा से घरों में बजती है शहनाइयां। वर वधु के हाथ होते हैं पीले और दंपति जीवन में मधुरता का मिलता है वरदान। साथ ही कुंडली की ग्रह दशा भी हो जाती है अनुकूल। लेकिन इसके लिए सही तरीके से करनी होगी आपको माता की उपासना, क्योंकि विधिवत की गई अर्चना से शीघ्र प्रसन्न होती है माँ कात्यायनी। तो आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि कैसे मिलेगी देवी के इस दिव्य स्वरूप की कृपा।
1: कात्यायनी जी के प्रिय वस्तुओं में शहद का भोग लगता है एवं हल्दी इनको चढ़ाई जाती है, और इनका मुख्य विषय जो है कन्या के विवाह इत्यादि में भी अगर विलंब बाधा आ रही हो या किसी विशेष कार्य में रुकावट पैदा हो रहा हो तो निश्चित रूप से इनकी आराधना करने से वो कार्य सहर्ष पूरा हो जाता है।
0: कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा? पूजा के स्थान को लाल कपड़े से सजाएं। देवी कात्यायनी का संबंध लाल रंग से माना गया है। गोधूली वेला में पीले या लाल कपड़े पहनाकर इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीली मिठाइयां अर्पित करें। माँ के इस स्वरूप को शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और साथ ही प्रेम से जुड़ी बाधाएं भी दूर होंगी। इसके बाद माँ के सामने उनके मंत्रों का जाप करें। तो आप भी माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के महा उपाय कीजिए और नवरात्र के इन दिव्य दिनों का लाभ उठाइए, जिससे भगवती के कृपा से आप सबका कल्याण होगा और साथ ही आने वाली बाधाओं का भी सर्वनाश होगा।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: मैदानी राज्यों में बारिश के चलते मौसम खुशनुमा है, तो वहीं पर पहाड़ियों पर बर्फबारी ने चार चांद लगा दिए हैं। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाके सीजन की पहली बर्फबारी से सफेद नजर आ रहे हैं, जहां पर गुलमर्ग, सोनमर्ग, पीर पंचाल समेत तमाम ऊंची चोटियों पर स्नोफॉल जबरदस्त देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर अगर आप देखेंगे मैदानी इलाकों को भी सीजन की पहली बर्फबारी की सौगात मिल चुकी है। मौसम का मिजाज इस बार घाटी में जोरदार सर्दी पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं।
5: धरती की जन्नत कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर सीजन की पहली बर्फबारी से ही सफेदी के सागर में समा गया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत तमाम ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, तो मैदानी इलाकों में भी सीजन की पहली बर्फबारी की सौगात मिल चुकी है। डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इसके साथ ही बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी और पीर पंजाल रेंज की प्रसिद्ध पीर की गली भी बर्फ की चादर ओढ़ चुकी है। उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी से पूरा पहाड़ी इलाका सफेद नजर आ रहा है। मैदानी क्षेत्र में करीब 2 इंच और ऊंचाई वाले इलाकों में 4 से 5 इंच बर्फ दर्ज की गई है। पीर पंजाल रेंज में सीजन की पहली बर्फबारी से ही श्रीनगर को पुंछ से मिलाने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फ से पट गई। आलम यह हुआ कि रोड को कुछ समय के लिए आवाजाही के लिए बंद करना पड़ गया, लेकिन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने तत्काल कमान संभाली और सड़कों पर बिछी बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया। कुछ घंटों के बाद आखिरकार सड़क को फिर से खोल दिया गया ताकि पुंछ और कश्मीर के बीच यातायात सुचारू रूप से चलती रहे।
6: दक्षिण कश्मीर शोपियां के पीर गली इलाके में अभी हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बर्फ ही बर्फ जो है इसमें पड़ी हुई है कल शाम से। दरअसल आपको बता दें कि ये एक बालाई इलाका माना जाता है और साथ में ही इसके जो है एक हिस्टोरिकल मगर रोड जिसको कहा जाता है वो चल रहा है। आपको बता दें कि बीआरओ ने एहतियातन उस रोड को सुबह सवेरे कुछ जो है पल के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि पीर की गली या दर्जन इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी और जिसके कारण जो है रोड को एहतियाती तौर पर बंद करना पड़ा। लेकिन अभी जो है स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन ओवर हो चुका है यानी बर्फ जो है इस रोड पे हटाई गई है और गाड़ियों की जो है आमद रफ्त इस पे फिर से चलने लगी। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे गुरेज हो, कुपवारा हो या गुलमर्ग हो, गुलमर्ग के साथ साथ जो है पीर गली इलाकों में भी जो है बर्फबारी हो रही है। लगभग कम से कम 5 से 6 इंच बर्फ एक्यूमुलेट की जा चुकी है।
5: बारामूला जिले में मौजूद मशहूर हिल स्टेशन गुलमर्ग का सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक हिल स्टेशन है अफरवाट। आमतौर पर अफरवाट में ऐसा बर्फीला नजारा नवंबर के आखिरी दिनों में दिखाई देता है। सर्दियों में ये इलाका दुनिया भर के स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लेकिन कुदरत की मेहरबानी से ये सौगात पर्यटकों को अभी मिल गई है।
7: बहुत अमेजिंग, सबको आना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगी, इंडिया में, वर्ल्ड में सबको आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। इतनी स्नो देखी लेकिन ये अमेजिंग प्लेस, वी आर सो लकी दैट वी केम टुडे।
8: अच्छा मजा आ रहा है, दिस मतलब सबको आना चाहिए यहाँ पे घूमने को।
9: इतनी बर्फ कभी नहीं देखी थी, आज पहली बार देखी है। काफी कम स्नोफॉल देखी थी, बर्फ होते हुए देखी थी।
5: जम्मू कश्मीर में मौसम का ये बदलाव महज चंद दिनों में ही नजर आया है। अक्टूबर की शुरुआत में मौसम कुछ हद तक गर्म था लेकिन अक्टूबर का महीना आधा खत्म होते होते घाटी सर्दी के आगोश में लिपटने लगी है। कश्मीर, चेनाब घाटी और पीर पंजाल इलाके में दिन का तापमान भी काफी हद तक गिरने लगा है।
10: जहाँ तक जम्मू का डिवीजन की बात है वहाँ इंटेंसिटी कम होगी, एरिया भी कम होगा इससे, और ये 2 दिन का स्पेल है। इसके बाद 16 तारीख में आइसोलेटेड प्लेसेस पर कहीं कहीं बहुत कम बारिश हो सकती है और उसके बाद तो फिर आ गया आने वाले टाइम में 24 तारीख तक करीब करीब ड्राई ही वेदर है।
5: मौसम विभाग के मुताबिक अभी 1-2 दिन और बारिश और बर्फबारी का दौर चलेगा, उसके बाद 1 हफ्ते तक बारिश और बर्फबारी दोनों से राहत मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से भले ही थोड़े दिनों की राहत मिले लेकिन मौसम का ये मिजाज इस बात का संकेत दे रहा है कि इस बार सर्दी जल्दी और जोरदार पड़ने के आसार हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और मीर फरीद के साथ शोपियां से एजाज डार, गुड न्यूज टुडे।
0: हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक वास्तुकला और लोक कला को सहेजने की दिशा में रिटायर शिक्षक विनय अवस्थी तन मन धन से लगे हुए हैं। विनय अवस्थी बांस और लकड़ी से हिमाचल के ऐतिहासिक मंदिरों और पारंपरिक स्लेट पूछ मकानों की आकर्षक प्रतिकृतियां तैयार कर रहे हैं जिसे देखकर लोग तारीफ कर रहे हैं और उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में लगाई गई है जिसे देखकर सैलानी मंत्रमुग्ध हो रहे हैं।
11: अयोध्या का श्री राम मंदिर, केदारनाथ महादेव मंदिर, आदि हिमानी चामुंडा मंदिर और कई प्रसिद्ध मंदिरों के रेप्लिका, ये हिमाचल की अनूठी बांस कला की देन है जिसे साकार कर रहे हैं विनय अवस्थी। विनय अवस्थी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन लकड़ी और बांस से तैयार किए गए ये मॉडल इस बात के सबूत हैं उनके जुनून का। उनका मानना है कि बांस की अनूठी कला को दुनिया के सामने लाना है और हिमाचल की पारंपरिक वास्तुकला और लोक कला को सहेजने की जरूरत है, इसकी कोशिश वो कर रहे हैं।
12: यह आर्ट जो मैं 2019 से कर रहा हूँ और मैडम मैं आपको बता दूं ये जितनी भी कलाकृतियां हैं उनको बनाने में 15 दिन से ज्यादा समय लगता है और मैं कोशिश करता हूँ कि इनको बड़ी तन्मयता के साथ बनाऊं ताकि देखने वाला जो है वो देख करके मतलब जो है वो उसको पसंद करे। लोकल बैम्बू यूज करता हूँ, उसको काट करके सुखा करके और अपने ही हाथों से सारा कुछ करता हूँ और जब ये रेप्लिकास कोई अंतिम रूप दे लेती है तो मैं उसको ट्रीट करके फिर जो प्रदर्शनी में लगाता हूँ।
11: बांस और लकड़ी से हिमाचल के ऐतिहासिक मंदिरों और पारंपरिक सलेट पोशा मकानों की आकर्षक प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी आजकल धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में लगाई गई है।
13: अभी टेंपल्स के रेप्लिकास हैं, पूरे हिमाचल को इन्होंने कवर किया हुआ है। रिज शिमला का भी है इसमें, मुंडा टेम्पल और ये रिज शिमला, रिज जो है शिमला पे उसका, और भीमाकाली टेम्पल, चौरासी टेम्पल, इन सब के रेप्लिकास इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं।
14: ये टेम्पल्स के ये भी काफ़ी अच्छा है, इट्स वेरी गुड। सो ओवरऑल आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस नोइंग अबाउट योर एंशियंट हिस्ट्री एंड ऑल दोस थिंग्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा।
11: हिमाचल की पारंपरिक कला और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे प्रदर्शनी का आयोजन वक्त वक्त पर किया जाता है। प्रशासन की कोशिश भी रहती है कि ऐसी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान मिल सके, ताकि हिमाचल और देश के युवा इस पारंपरिक कला को नया आयाम दे सकें।
15: ऐसे लोग हैं जो ऐसी आर्ट फॉर्म्स को जीवित रख रहे हैं, आप इनके देखेंगे जब, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी ये दिखाएं कि स्लेट पोस्ट मकान, डबल मंजिल, सिंगल मंजिल, जो हमारा शिमला का चर्च है और जो इतने सारे हिमाचल के मंदिर हैं उनके रेप्लिका जिन्होंने बनाए हैं, बहुत बारीकी से काम किया है। और कहीं ना कहीं आजकल ऐसा हो रहा है कि ये प्रतिभा जो है, ऐसी आर्ट फॉर्म जो हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, तो अगर ऐसे में कोई ऐसे आर्टिस्ट सामने आते हैं तो हमें उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानना चाहिए।
11: विनय अवस्थी ऐसी प्रतिकृतियों को बनाने में बांस काटने से लेकर कलाकृतियों को अंतिम रूप देने तक का ज्यादातर काम खुद करते हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें इस काम का कुछ सहयोग मिले तो वो इस कला को देश और दुनिया तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
16: नवरात्र के छठे दिन आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिरों में उमड़ रहे हैं भक्त। हर रोज होता है माता का अनुपम श्रृंगार। असम के चिरांग जिले में माता की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण, स्वर्ण जयंती वर्ष पर दुर्गा पूजा समिति की भव्य तैयारियां, पंडाल में सजावट का काम जारी। शारदीय नवरात्र के मौके पर देश भर में गरबा डांडिया की धूम, चित्रकूट के सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट परिसर में भव्य आयोजन, समारोह में हजारों लोग कर रहे हैं शिरकत। नवरात्र के पावन अवसर पर महाराष्ट्र की भीड़ में लगा श्रद्धालुओं का तांता, बेलगांव के रेणुका माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं हजारों भक्त। अब अयोध्या में ही तैयार हो रहे हैं रामलला के वस्त्र, सूरत से मंगाया जा रहा है रेशम मखमल सहित दूसरे सामान, मंदिर ट्रस्ट ने वस्त्र निर्माण के लिए किए इंतजाम। एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चैंपियंस ने शेयर किए अपने अनुभव।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात शक्ति उत्सव की। आज नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंद माता के दर्शन पूजन का विधान है। सुबह से ही देश के तमाम मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है और श्रद्धालु मां आदि शक्ति से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। मां स्कंद माता दुख और रोगों से मुक्ति प्रदान करती है। मान्यता है कि माँ के इस स्वरूप की प्रार्थना करने से शांति और सुख का अनुभव होता है। मान्यता ये भी है कि नवरात्र के दौरान शक्ति के प्रमुख स्थानों में दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। इसी के चलते जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको देवी के कुछ अनोखे धामों के दर्शन करवाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में देवी का एक ऐसा अद्भुत मंदिर मौजूद है जिसके इतिहास की डोर मराठा साम्राज्य की गौरवशाली विरासत से जुड़ी है। शक्ति उत्सव में आज चलेंगे उन देवी के धाम जो वीर शिवाजी की कुल देवी मानी जाती हैं। वो देवी जिनका आशीर्वाद वीर शिवाजी के माथे का विजय तिलक बन गया। पहाड़ों पर बना एक ऐसा अद्भुत मंदिर जिसका एक द्वार 70 किलोमीटर दूर बसे उज्जैन में खुलता है।

0: जिनके आशीर्वाद ने किया वीर शिवाजी का विजय तिलक, जिनकी कृपा से वीर शिवाजी को मिली भवानी तलवार, जिस मंदिर से जुड़ी है मराठा शौर्य की विरासत, जिस दर पर शीश झुकाते थे सम्राट विक्रमादित्य, वो मंदिर जिसे उज्जैन से जोड़ती है एक रहस्यमयी गुफा, वो मंदिर जहां तुलजा भवानी स्वरूप में विराजी हैं शक्ति, मध्य प्रदेश में उज्जैन से लगभग 70 किलोमीटर दूर आगर मालवा में पहाड़ों के बीच प्राचीन गुफा में शान से विराजी हैं माँ तुलजा भवानी। ये मंदिर मध्य प्रदेश में मौजूद देवी के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्थानों में से एक है। इस मंदिर में मौजूद माँ भवानी की मूर्ति स्वयं भू मानी जाती है। बताया जाता है कि ये मूर्ति यहाँ पहाड़ों के बीच स्वतः प्रकट हुई थी। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं।
1: मेरे पीछे जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये गुफा है यहाँ पर, और ये यहाँ भारी भरकम पत्थरों की शिलाएं हैं बड़ी बड़ी, और ये पहाड़ है। इसी पहाड़ के बीच में यहाँ पर एक गुफा आपको दिखाई दे रही है, और ये वही गुफा है जिससे कहा जाता है कि माँ तुलजा भवानी ने उज्जैन से यहाँ पर अपना स्थान लिया था और यहाँ पर प्रकट हुई थी।
0: तुलजा भवानी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये मराठा इतिहास की गौरवशाली विरासत का भी प्रतीक है। दरअसल माँ तुलजा भवानी मराठा साम्राज्य के शौर्य तिलक छत्रपति शिवाजी की कुल देवी हैं। इनका मुख्य स्थान महाराष्ट्र के तुलजापुर में मौजूद है।
2: माँ तुलजा भवानी का बहुत पुराना स्थान है। भगवती का प्रथम स्थान महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से माता रानी चले उज्जैन पधारे, उज्जैन से भद्री गुफा में प्रवेश हुए, तो यहाँ पर आगर में एक सुरंग है जो वहाँ से यहाँ तक उज्जैन जाती है। इसी गुफा द्वारा माँ आकर के यहाँ पहाड़ों में प्रकट हुई देवी।
0: छत्रपति शिवाजी माँ तुलजा भवानी के अनन्य भक्त थे। बताया जाता है कि जब शिवाजी महाराज ने मुगलों और आदिलशाही सुल्तानों के खिलाफ स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया, तब उन्होंने अपनी कुलदेवी माँ भवानी की विशेष साधना की थी। किंवदंतियों में वर्णन मिलता है कि एक बार जब शिवाजी महाराज अपने शत्रुओं से घिरे हुए थे और उनके पास कोई उपाय नहीं बचा था, तब उन्होंने माँ तुलजा भवानी का आह्वान किया। माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वे विजय प्राप्त करेंगे। बताया जाता है कि माँ भवानी के आशीर्वाद से उन्हें एक दिव्य तलवार प्राप्त हुई थी, जिसे भवानी तलवार कहा जाता है। इस तलवार के साथ शिवाजी ने कई ऐतिहासिक युद्ध जीते और मराठा साम्राज्य का किला मजबूत किया। बताया जाता है कि माँ तुलजा भवानी महाराष्ट्र से उज्जैन आई और फिर वहाँ से पहाड़ों में मौजूद सुरंग और गुफा के रास्ते इस स्थान पर प्रकट हुई थी। मंदिर में आज भी वो गुफा मौजूद है जिसके जरिए माँ तुलजा भवानी के आगर मालवा में प्रकट होने का दावा किया जाता है। इस गुफा को भृतहरी गुफा के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि ये गुफा वास्तव में पहाड़ों में मौजूद उस प्राकृतिक सुरंग का द्वार है जो आगर मालवा को उज्जैन से जोड़ती है।
2: सुरंग कहीं बरसों से है माता रानी की, और ये राजा महाराजाओं के समय की है सुरंग भृतहरी गुफा, और इसी सुरंग का काफी राजा विक्रमादित्य जी द्वारा आवागमन हुआ, आना जाना हुआ, माँ का पूजन अर्चना करते हुए।
0: पीढ़ियों से मंदिर में सेवा पूजा करते आ रहे पुजारी परिवार के वंशज बताते हैं कि ये गुफा सीधे उज्जैन तक जाती है। बताया जाता है कि किसी दौर में सम्राट विक्रमादित्य इसी गुफा के रास्ते माँ तुलजा भवानी के दर्शन करने उज्जैन से आगर मालवा आया करते थे। मंदिर और आसपास के इलाकों से वर्षों से परिचित लोग बताते हैं कि मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ियों में मौजूद जिस गुफा से माँ तुलजा भवानी आई थी, उसी गुफा से बाद में आम लोग भी उज्जैन आया जाया करते थे, लेकिन बाद के सालों में सुरंग और गुफा में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया।
2: सुरंग तो धीरे धीरे विलुप्त तो हो चुकी है। करीब यहाँ से आज के 30-40 साल पहले चालू थी सुरंग, और कुछ लोग अंदर जाकर के भी देखा भी है उन्होंने, लेकिन अब विलुप्त तो हो चुकी है। सिर्फ यह ऐतिहासिक है कि उसको हम बता सकते हैं कि भगवती का यह मेन स्थान है जो यहाँ से पधारे।
0: मंदिर के पुजारी बताते हैं कि किसी जमाने में मंदिर के आसपास पहाड़ियों पर दुर्गम वन क्षेत्र था। मंदिर के आसपास गुफा और सुरंग तक शेर आया जाया करते थे। खास तौर पर देवी की आरती के समय वहाँ शेर मौजूद रहता था। इन शेरों को देवी की मौजूदगी का प्रतीक माना जाता था। लेकिन समय के साथ इस क्षेत्र में पहले वन कम हुए और फिर धीरे धीरे वनराज का आना भी बंद हो गया। माँ जगदम्बा के इस दरबार में पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना लेकर माँ के दरबार में पहुँचते हैं। नवरात्र के दौरान यहाँ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। माना जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, विशेषकर वे जो शक्ति और विजय की कामना रखते हैं। वास्तव में वीर शिवाजी की कुलदेवी माँ तुलजा भवानी का ये मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि ये शौर्य, भक्ति और मराठा गौरव का प्रतीक भी है। जो भी व्यक्ति शक्ति, साहस और सफलता की प्रार्थना लेकर यहाँ आता है, उसे माँ भवानी की कृपा जरूर मिलती है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो नवरात्र के इस मौके पर जीएनटी पर हम आपको देश के सबसे अनोखे देवी मंदिरों के दर्शन करवा रहे हैं। इसी क्रम में अब आपको लेकर चलेंगे झांसी में मौजूद एक और अद्भुत देवी मंदिर में, जहां स्वयं जगत की जननी बाल रूप में विराजमान है। संसार में मां काली का ऐसा अनोखा रूप और कहीं देखने को नहीं मिलता।

0: वो मंदिर जहां बाल रूप में विराजी हैं जगत जननी, वो मंदिर जहां इंदिरा गांधी को मिला जीत का आशीर्वाद, वो मंदिर जहां रौद्र नहीं बल्कि सौम्य रूप में विराजमान है महाकाली, वो मंदिर जहां स्वयं प्रकट हुई मां भवानी। नवरात्रि के पावन दिनों में भक्त 9 दिनों तक मां भगवती के अलग अलग रूपों की साधना करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के झांसी में मां के ऐसे अनोखे स्वरूप की आराधना होती है जिसे देखकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। झांसी के इस मंदिर में मां काली कन्या के रूप में विराजमान है। जरा सोचिए, जो स्वयं जगत जननी है, जो स्वयं चराचर जगत और संपूर्ण सृष्टि का आधार आदि शक्ति मानी जाती है, वो भक्तों को बाल स्वरूप में दर्शन देने को विराजी है।
1: ये सौम्य रूप में विराजमान, आपने महाकाली को देखा होगा कि उनकी लंबी लंबी जिह्वा होती है, बड़ा ही विकराल स्वरूप होता है, लेकिन ये सौम्य रूप है, ये कन्या रूप इनको बोलते हैं। ये दिन में आप देखेंगे, कभी भी आप आके दर्शन करेंगे, आपको दर्शन परिवर्तित होते हुए मिलेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ।
0: न केवल बाल रूप बल्कि ये दुनिया का ऐसा अनोखा मंदिर है जहां मां काली के सौम्य रूप के दर्शन होते हैं। आमतौर पर मां काली के हाथों में खड़ग, खप्पर और गले में मुंडों की माला रहती है, दुनिया में उनका यही स्वरूप पूजा जाता है, लेकिन बुंदेलखंड के इस मंदिर में मां काली का ये अनोखा सौम्य स्वरूप पूजा जाता है। यानी जिन महाकाली के रौद्र रूप के सामने ब्रह्मांड की समग्र आसुरी शक्तियां नतमस्तक हैं, वो मां काली यहां अपने क्रोध को त्याग भक्तों को सौम्य स्वरूप में दर्शन देती हैं।
2: काली जी जो हैं वो सौम्य रूप में हैं। पूरे भारतवर्ष में केवल 2 ही जगह सौम्य रूप में काली जी हैं, एक तो कलकत्ता में है और एक यहाँ पर है, बाकी कहीं पे भी आप देंगे सब रौद्र रूप में रहती हैं।
0: बताया जाता है कि बुंदेलखंड के इस मंदिर का इतिहास शताब्दियों पुराना है और ये इतिहास जुड़ा है ओरछा के राज परिवार से। बताया जाता

0: दिन खुला जब ओरछा वंश के शासक राजा जुदेव सिंह इस इलाके में शिकार करने आए।
1: जब यहाँ पे ओरछा के महाराज जुदेव जी शिकार खेलने आए तब उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पे कुछ है, वहाँ पे उनको कुछ बाती जलती हुई दिखाई दी। जब वो आए उन्होंने देखा यहाँ पे काली जी की प्रतिमा थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना चालू करवाई और तब से लेके आज तक हम लोग यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, हमारा पूरा परिवार।
0: बताया जाता है कि ओरछा राज परिवार ने ही मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया। समय के साथ इस मंदिर की महिमा, मान्यता और ख्याति दूर दूर तक फैल गई। 70 के दशक में इस मंदिर की चर्चा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कानों में भी पड़ी। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने जीत का आशीर्वाद पाने के लिए माँ काली के इस मंदिर में अनुष्ठान करवाया था।
2: 1977 में इधर आए, तब वह प्रधानमंत्री पद पे नहीं थे, तो उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी हम पुनः प्रधानमंत्री पद कब प्राप्त करेंगे? बोले हमारी माँ जो आज्ञा देगी वो, तो बोले माँ बोलती है ये मैं कैसे मानूं? तो बोले हसत माल मुँह रत मुस्कानी, बोले जब मूर्ति बोलती है तो फूल झड़ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि माँ बोली है। बोले फिर मेरे को कैसे मालूम चलेगा? तो इतनी देर में 3 घंटे बाद उनका माई के हृदय का पुष्प गिरा, बोले आप 3 साल बाद आप जो है पुनः प्रधानमंत्री पद। तो भाई चिकमंगलूर से चुनाव जीती, चिकमंगलूर से चुनाव जीतने के बाद पुनः प्रधानमंत्री बनी, तो उनके सलाहकार फिर उनको लेके आए 1983 में। उन्होंने कहा पंडित जी मांगी आपको जो मांगना है वो मांगिए। बोले हम क्या मांगे साधु बैरागी आदमी, आप क्या हम मांगे? बोले हम तो एक यज्ञ करना चाहते हैं, अगर आप सहयोग करना चाहती हैं तो करिए। बोले कौन सा यज्ञ करना है मेरे को बोलो, मैं कराता हूँ। बोले मैं लखचंडी यज्ञ करना चाहता हूँ। बोले कराइए आप संकल्प कराइए। संकल्प किया, संकल्प करने के बाद 1983 में उन्होंने जो नीचे यज्ञशाला है उसमें उन्होंने लखचंडी यज्ञ कराया।
0: तो साल भर झांसी के इस मंदिर में माँ के बाल स्वरूप करने भक्त देश और दुनिया भर से पहुंचते हैं, लेकिन खास तौर पर नवरात्र के पावन दिनों में यहां मां काली की कन्या रूप को पूजने भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। नवरात्र के 9 दिनों में बाल स्वरूपा मां काली के धाम में विशेष अनुष्ठान किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस बार भी नवरात्र के दौरान माँ भगवती के लिए मन में अगाध आस्था लिए भक्त देश के कोने कोने से यहां पहुंच रहे हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।
3: और अब आपको लिए चलते हैं गुजरात और दर्शन करवाते हैं मां अंबा के। गुजरात के बनासकांठा में मौजूद अंबाजी धाम में इन दिनों नवरात्र उत्सव की धूम है। अंबाजी शक्तिपीठ देश के प्रमुख शक्ति स्थलों में गिना जाता है। आज दुनिया भर के श्रद्धालु इस शक्तिपीठ में दर्शन को पहुंचते हैं, लेकिन पौराणिक इतिहास बताता है कि त्रेता युग में यहां श्री राम भी दर्शन के लिए पहुंचे थे, तो वहीं द्वापर युग में नंद बाबा और यशोदा मैया छोटे से कान्हा को लेकर अंबाजी के धाम गए थे। आखिर क्यों इतना खास है अंबाजी शक्तिपीठ और क्या है इसकी कहानी, चलिए आपको बताते हैं।

माँ चाहे अपनी हो या फिर सारे जगत की, माँ का हृदय वो स्थान है जहाँ हमेशा जगह होती है उसके बच्चों के लिए। और आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा संसार का ये वो स्थान है जहाँ स्वयं माँ का हृदय रहता है। संसार के कोने कोने से पहुँचते हैं श्रद्धालु माँ के हृदय भाग के दर्शन करने। ये दिव्य स्थान है गुजरात का अंबाजी शक्तिपीठ। गुजरात राजस्थान सीमा पर बसे बनासकांठा में अरावली पर्वत पर शांत से विराजी है माँ अंबा। माँ अंबा का यह अद्वितीय धाम देवी के 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। तंत्र

0: चूड़ामणि में उल्लेख मिलता है कि इसी स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था।
1: भगवान विष्णु जगत की सृष्टि का पालन करने हेतु उनके सुदर्शन चक्र से माँ भगवती सती का शरीर था उनके टुकड़े किए और वो जो टुकड़े थे जहां जहां पर गिरे वहां पर 51 शक्तिपीठ निर्माण हुई और वहां से ये शक्तिपीठ मानी जाती है। कारण के वहां जो टुकड़े गिरे वहां से जो सबसे श्रेष्ठ जो टुकड़ा था वो हृदय का जो टुकड़ा था वो हृदय का टुकड़ा जो है माँ भगवती का यहाँ अरावली पर्वत के गोद में आकर गिरा और यहाँ पर माँ भगवती की शक्तिपीठ निर्माण हुई। इसलिए यहाँ महाभारत के सभी तीर्थों में से सबसे श्रेष्ठ तीर्थ यहाँ माना जाता है।
0: आज पूरा गुजरात अम्बाजी की भक्ति में डूबा है। क्या आम क्या खास, सब पर माँ जगदम्बे के उत्सव का रंग चढ़ा है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ गर्भगृह में माँ की मूर्ति की नहीं बल्कि शक्ति के स्वरूप यंत्र की पूजा होती है। अम्बा देवी का यंत्र गुप्त रखा जाता है, इसे खुले में देखना भी निषेध है। यहाँ तक कि पुजारी भी इसकी पूजा आंखों पर पट्टी बांध कर करते हैं।
1: न मातुर पर देवता, इस जगत के अंदर माँ के समान कोई बड़ा देव नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर जो माँ भगवती का जो दिव्य स्वरूप है तो इस स्वरूप के अंदर यहाँ पर माँ भगवती के जो गर्भगुरु के अंदर कोई मूर्ति या कोई ऐसा प्रतीक की पूजा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर सभी शक्तिपीठों में से सबसे श्रेष्ठ शक्तिपीठ इसलिए माना गया है कि यहाँ पर गर्भगुरु के अंदर माँ भगवती के श्री यंत्र की पूजा होती है, यंत्र की पूजा होती है जिसका नाम विषा यंत्र बताया गया है। और इस यंत्र के अंदर माँ भगवती की अभूत शक्ति जो है इस यंत्र के अंदर मानी जाती है और इस यंत्र की ब्राह्मणों के द्वारा पूजा होती है। और यहाँ पर आने वाले सभी जो भक्तगण है यहाँ पर आते तो खाली हाथ आते हैं, लेकिन इस यंत्र की दर्शन मात्र से, इस भक्ति के दर्शन मात्र से, इस शक्ति के दर्शन मात्र से सभी भक्तगण यहाँ से कुछ ना कुछ श्रद्धा, शक्ति और नई ऊर्जा लेकर अपने घर जाते हैं।
0: आपको बता दें कि माँ अम्बा का ये दिव्य धाम लगभग 1200 साल पुराना है। कालांतर में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। आज माँ भवानी के हृदय स्थान पर बना ये मंदिर भव्य रूप को प्राप्त कर चुका है। मंदिर के शिखर को 141 किलो सोने से मढ़ा गया है। 61 फीट ऊंचे शिखर पर 358 छोटे बड़े स्वर्ण कलश लगाए गए हैं। बताया जाता है कि यहाँ मंदिर तो बेहद बाद में बना, लेकिन माँ आद्याशक्ति यहाँ हमेशा से विराजमान है। कई पौराणिक कहानियों में इस दिव्य स्थान का उल्लेख मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि माँ जगदम्बा के इसी धाम में नंद बाबा और माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का मुंडन करवाया था, तो वहीं भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए यहाँ से गुजरे थे और माँ अम्बा का आशीर्वाद लिया था। इसके साथ ही मान्यता ये भी है कि वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखने की शुरुआत इसी तपोभूमि से की थी। अम्बाजी धाम में मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर गब्बर नाम का पहाड़ मौजूद है, जहां देवी का एक और प्राचीन मंदिर स्थापित है। अम्बाजी के दर्शन के बाद श्रद्धालु गब्बर पहाड़ी पर मौजूद इस मंदिर में जरूर जाते हैं। आज माँ अम्बा का ये धाम गुजरात ही नहीं बल्कि देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु माँ अम्बा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ देवी के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्र के दिनों में मंदिर प्रांगण में गरबा करके शक्ति की आराधना की जाती है। सप्तशती के पाठ से पूरा मंदिर प्रांगण गूंज उठता है। खास तौर पर पर गुजरात के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले किसान माँ के दर्शन के लिए यहाँ सब परिवार इकट्ठा होते हैं। बड़े स्तर पर मनाए जाने वाले इस समारोह में गरबा और भवाई जैसे पारंपरिक नृत्यों का आयोजन भी किया जाता है। 9 दिनों तक अम्बे धाम में भक्ति के गीत गूंजते हैं।
2: पंखीड़ा तू उड़ के जाना अम्बे धाम रे, अम्बा जी को कहना हम भी द्वारे आए हैं, अम्बा जी से कहना हम भी द्वारे आए हैं। पंखीड़ा तू उड़ी ने जाजे पावागढ़ रे, महाकाली से मिलके कह जो गर्भ रमे रे, मारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, अम्बा जी से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, अम्बा जी से मिलके कहना गरबा खेलेंगे।
0: इस बार भी नवरात्र के पावन अवसर पर माँ भवानी के इस धाम में खूब रौनक है। मन में भावना की जोत जलाए हजारों भक्त जगदम्बा के दरबार में शीश झुकाने पहुंचे हैं। बरासकाठा में अंबाजी शक्तिपीठ से शक्ति सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
3: को लेकर चलते हैं कोलकाता के ढाकुरिया शहीद नगर दुर्गा पूजा पंडाल, जिसे महामिलन की थीम पर बनाया गया है। महामिलन थीम दो अलग अलग लेकिन बहुत खूबसूरत पहलुओं का एक अनूठा संगम है। ये पंडाल एक तरफ शरणार्थियों के ऐतिहासिक संघर्ष और उनकी एकता को दर्शाती है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक मिलन से प्रेरित है।
4: भव्य और दिव्य माँ दुर्गा की प्रतिमा है, उतना ही खूबसूरत और कलात्मक है माँ दुर्गा का ये पंडाल, जिसकी भव्य लाइटिंग और शानदार वास्तुकला श्रद्धालुओं को खूब रास आ रही है। ये पंडाल एक तरफ शरणार्थियों के ऐतिहासिक संघर्ष और उनकी एकता को दर्शाता है, तो दूसरी ओर राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक मिलन से प्रेरित है। कोलकाता के डकुरिया शहीद नगर सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति का ये पंडाल जहाँ मौजूद है, वो मूल रूप से भारत के विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी द्वारा बसाई गई कॉलोनी है। इस दुर्गा पंडाल की थीम महामिलन, शरणार्थियों के इतिहास और उनके संघर्षों को समर्पित की गई है। पंडाल के जरिए दिखाया गया है कि कैसे लोग अपना सब कुछ पीछे छोड़कर इस अनजान जगह पर आए और आपसी सहयोग और सद्भाव के साथ सामाजिक एकता स्थापित की।
5: रिफ्यूजी कॉलोनी है, यहाँ पे एक टाइम में ईस्ट पाकिस्तान से सब कुछ छोड़ के सब लोग जा गए थे, हम लोग का जो पूर्व पुरुष लोग थे, जो एंसेस्टर थे, जब यहाँ पे आए थे उन लोग ऐसे ही ये छन का, ये हुगला पत्ता का, ये बांस का, बम्बू का देख कर उन लोग घर बनाते थे। अभी वो लाइफ वॉर में जीत गए हैं, जीत के ये सबका बड़ा बड़ा आपका मकान हो गया है, लेकिन हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है उन लोग को हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग का क्या युद्ध था, क्या था।
4: इस थीम को जीवंत करने के लिए पारंपरिक बंगाली शिल्प और आधुनिक सामग्री का बेहतरीन फ्यूजन इस्तेमाल किया गया है। पंडाल की दीवारें और सजावट विभाजन के दौर की यादों और आध्यात्मिक प्रतीकों को खूबसूरती से दर्शाती है। सामाजिक सद्भाव के साथ साथ महामिलन थीम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अलौकिक प्रेम से भी प्रेरित है। यह उनके अटूट प्रेम, भक्ति और मिलन के जरिए दुनिया को प्रेम, करुणा और सौहार्द का संदेश देती है। साथ ही पूरी सृष्टि की रक्षा करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप से भी प्रेरित है।
5: महामिलन अब श्री रामचंद्र और श्री राम कृष्ण के बिना नहीं होता है। श्री रामचंद्र जो अकल बोधन किए थे, तब जो सीता माता को उद्धार करने के लिए गए थे, तो उनको महामिलन करके कार्बिलरी से लेके बानरसेना तक, मनुष्य से लेके देवता तक पूरा प्रकृति उनका साथ दिया था, महामिलन घटवाया था। और सिर्फ सेम त्रेता युग में हम लोग का श्री कृष्ण एक हाथ में चक्र और एक हाथ में बांसी बजा के श्री राधा जी को लेके जो रास किए थे, जो संहार करके जो रास लीला में शामिल हुए थे, उसमें पूरा प्रकृति, पूरा जल, पूरा वायु, पूरा सब कुछ, गाय, बैल, बक्षी सब एक साथ में शामिल होके, मनुष्य सब एक साथ में शामिल होके जो महामिलन करके शांति का वार्ता दिए थे, वही हम लोग डिपिक्ट किए हैं।
4: पंडाल के केंद्र में विराजमान माँ दुर्गा की प्रतिमा को
5: हम लोग डिपिक्ट किए हैं।
4: पंडाल के केंद्र में विराजमान माँ दुर्गा की प्रतिमा को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नवरात्र के छठे दिन आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिरों में उमड़ रहे हैं भक्त। हर रोज होता है माता का अनुपम श्रृंगार। असम के चिरांग जिले में माता की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण, स्वर्ण जयंती वर्ष पर दुर्गा पूजा समिति की भव्य तैयारियां, पंडाल में सजावट का काम जारी। शारदीय नवरात्र के मौके पर देश भर में गरबा डांडिया की धूम, चित्रकूट के सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट परिसर में भव्य आयोजन समारोह में हजारों लोग कर रहे हैं शिरकत। नवरात्र के पावन अवसर पर महाराष्ट्र की भीड़ में लगा श्रद्धालुओं का तांता, बेलगांव के रेणुका माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हजारों भक्त। अब अयोध्या में ही तैयार हो रहे हैं रामलला के वस्त्र, सूरत से मंगाया जा रहा है रेशम मखमल सहित दूसरे सामान, मंदिर ट्रस्ट ने वस्त्र निर्माण के लिए किए इंतजाम। एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चैंपियंस ने शेयर किए अपने अनुभव।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार, और मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। महिषासुर का वध करने वाली माँ कात्यायनी ही है। नवरात्र के छठवें दिन माँ कात्यायनी की आराधना का विधान है। कहते हैं माँ कात्यायनी की कृपा से विवाह में आ रही बड़ी से बड़ी बाधा भी बड़ी ही आसानी से दूर हो जाती है। किसी कारणवश आपके विवाह में अड़चने आ रही हों तो माँ कात्यायनी की विशेष पूजा उपासना करने से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मन चाहे विवाह के लिए कैसे करें माँ कात्यायनी की विशेष उपासना, और कौन से हैं वो अचूक महाप्रयोग जो दिलाएंगे आपको माँ का आशीर्वाद।

0: माँ कात्यायनी जिनकी कृपा से मिलता है विवाह का वरदान। माता रानी दूर करेंगी विवाह में आने वाले सारी व्यवधान। अगर आपके भी सफल नहीं हो रहे विवाह के प्रयास, लाख ढूंढने के बाद भी पूरी नहीं हो रही सुयोग्य जीवन साथी की तलाश, ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि विवाह से जुड़ी बाधा मुख्यतः बृहस्पति और शुक्र के कारण होती है। माना जाता है कि नवरात्र में विवाह संबंधी हर अड़चन का अमोघ अस्त्र है माँ कात्यायनी की आराधना।
1: बृहस्पति शुक्र विवाह कारक ग्रह माने जाते हैं और जिनका कात्यायनी जी का संबंध बृहस्पति की पीड़ा को निवारण के लिए बहुत ही अचूक इनकी आराधना रहती है। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति कहीं से कमजोर हो तो निश्चित रूप से कात्यायनी जी की आराधना करने से बृहस्पति बलवान होता है और शीघ्र विवाह संपन्न होता है।
0: हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, मनपसंद जीवन साथी का साथ हो। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जब कुंडली के ग्रहों में दोष होता है तो शादी के शुभ योग ही नहीं बनते, साथ ही शादी तय होकर बार बार रिश्ता टूट जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि किन वजहों से शादी विवाह में बाधा आती है। कुंडली के 5 तत्वों में अग्नि या वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होने पर, चंद्रमा शुक्र या बृहस्पति की स्थिति कमजोर होने पर, मंगल दोष या ग्रहण योग होने पर, अष्टम या द्वितीय भाव में पाप ग्रह होने पर, सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति पाप क्रांत होने पर। माना जाता है कि कुंडली में ये वो दशाएं हैं जो विवाह नहीं होने देते। अगर इन वजहों से आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं तो फिर रिश्ते बनते टूटते जाते हैं, तो आपको नवरात्र में माँ कात्यायनी देवी का ध्यान करने से आपको सुयोग जीवन साथी का वरदान मिल सकता है, क्योंकि नवरात्र का समय हर दृष्टि से पवित्र है। देवी की उपासना से हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में माँ कात्यायनी की उपासना की जा सकती है, साथ ही मन चाहे विवाह के लिए माँ गौरी की उपासना की जा सकती है। नवरात्रि में अगर माँ दुर्गा की उपासना विधि विधान के साथ की जाए, इससे विवाह की बाधा का अंत होता है, साथ ही वैवाहिक जीवन की बाधा भी दूर हो जाती है। नवरात्र में माँ कात्यायनी की उपासना को अमोघ माना गया है, साथ ही माँ के एक महामंत्र का नियमित 31 या 41 बार जाप करने से विवाह के शीघ्र योग बन जाते हैं। आप भी सुनिए माता रानी का वो दिव्य महामंत्र।
1: हाँ, माँ कात्यायनी से शीघ्र विवाह के उपाय में सबसे बेहतर षष्ठी वाले दिन या किसी भी शुक्रवार वाले दिन जो कुमारी कन्या है इनके लिए कलश का स्थापन करते हुए और घी का दीपक जला के इनका एक बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इसका जप लगभग 31 दिन या 41 दिन तक किया जाता है।
0: माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में शक्ति की आराधना जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर सकती है। माँ दुर्गा की उपासना से साधक को संसार का सारा वैभव मिल सकता है और साथ ही मिल सकता है शीघ्र विवाह का वरदान। ये आदिशक्ति ही है जो असंभव को भी संभव बना दें। कष्ट क्लेश दुख विपदा भय बाधा सभी कुछ माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से दूर हो जाते हैं। तो आइए आपको परम कल्याणकारी और अचूक उपाय बताते हैं जिससे आपको मिलेगा सुयोग्य जीवन साथी का वरदान। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि हर उम्र के साधक के लिए एक अलग महा उपाय है, तो गौर से देखिए ये महा उपाय। अगर आपकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच हो तो किसी उपाय से विवाह की बाधा का अंत हो सकता है। देखिए, नवरात्रि में किसी भी दिन लाल वस्त्र धारण करें, देवी को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करें, ओम दुम दुर्गाय नमः का यथाशक्ति जप करें, पूजा के बाद लौंग को अपने पास रख लें, इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहें। ज्योतिषी मानते हैं कि ये प्रयोग अचूक है, ये आपकी विवाह संबंधी हर परेशानी का रामबाण उपाय है। इन उपायों को अपनाइए और देवी को मनाइए, आपकी हर बाधा हर विपदा देवी कृपा से दूर हो जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं वो ज्योतिषीय महाप्रयोग। तब क्या करें जब आपकी उम्र 25 से 30 साल के बीच हो। नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके पूजा करें, देवी को 3 लाल फूल अर्पित करें, कात्यायनी मंत्र का यथाशक्ति जप करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन करें। माँ तो ममतामयी है, वो भक्तों की तकलीफों को क्षण में दूर कर देती हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई है और विवाह नहीं हो पाया है, तब कौन सा ज्योतिषीय उपाय करें, चलिए जानते हैं। नवरात्रि की अंतिम रात्रि को देवी के समक्ष बैठें, एक लाल रंग की चुनरी ले लें, उसमें हल्दी की 2 गांठ और चांदी का 1 सिक्का रखें, इसको देवी को समर्पित कर दें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करें, शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। पाठ के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेटकर अपने शयन कक्ष में रख लें। आगे हम आपको बताएंगे मां की कृपा से बृहस्पति की शुभता पाने के महा उपाय, साथ ही जानेंगे धर्म ग्रंथों में माता कात्यायनी की व्याख्या कैसे की गई है, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: देवी माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है, लेकिन अगर आपके विवाह या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या है तो इस नवरात्र में माँ कात्यायनी की उपासना से विशेष लाभ आपको मिल सकता है। और आदि शक्ति जगदम्बा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा करने से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। नवरात्र में शीघ्र विवाह से जुड़े अछूत प्रयोग और कौन से हैं, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं।

0: नवरात्र में मिलेगा मनवांछित वर का वरदान। माँ कात्यायनी की कृपा से होगा आपका कल्याण। नवरात्र में देवी की उपासना भक्त अपार श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। देवी के दरबार में भक्त कतारबद्ध हैं। माना जाता है कि आदिशक्ति के ये वो पावन दिन हैं जब माँ अम्बे अपनी करुणा का सागर भक्तों पर लौटा देती हैं। नवरात्र में आदिशक्ति का नाम ही सारे बिगड़े काम बना देता है, आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। आज हम अपनी खास पेशकश में माँ कात्यायनी की महिमा आपको बता रहे हैं। चलिए आपको पहले बताते हैं कि पौराणिक ग्रंथों में माँ कात्यायनी से कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी है।
1: कात्यायनी जी का जो उद्गम या उद्भव हुआ है उसके पीछे कात्यायन ऋषि जी की तपस्या है। ये असुरों के संहार के लिए इनके भगवान कात्यायन ने इनका माँ से वरदान मांगा था। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद माँ दुर्गा से जो वरदान मांगा उसमें कात्यायनी स्वरूप का जन्म हुआ।
0: कथा मिलती है कि कत नाम के एक महर्षि हुआ करते थे, उनके पुत्र का नाम कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि की कीर्ति तप के कारण चारों तरफ फैल गई। कथा कहती है कि ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें, इसीलिए उन्होंने कई साल तक भगवती की कठोर तपस्या की थी। कथा कहती है कि ऋषि कात्यायन की एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाएं। जबकि दूसरी कथा जुड़ी है महिषासुर के वध से। कथा है कि शक्तियों के मद में चूर होकर महिषासुर ने तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया। कथा है कि इंद्रलोक के देवताओं के सिंहासन पर महिषासुर ने अधिपत्य स्थापित कर लिया। कथा है कि तब देवताओं के अनुरोध पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने तेज से एक तेजवान देवी को उत्पन्न किया। कथा है कि देवी कात्यायनी का स्वरूप अद्भुत था। उनकी तीन आंखें और 18 भुजाएं थी और वो सूर्य की तरह चमक रही थी। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र से सुशोभित किया। कहते हैं कि तब महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की, इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना गया। कथा कहती है कि दशमी तिथि को देवी ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना गया। देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता ये भी है, ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यानी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी, इसलिए आज भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में ये उल्लेख भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के क्रोध से हुई थी। भागवत पुराण में वर्णन है कि गोकुल की युवा और विवाह योग्य कन्याओं ने मार्गशीर्ष महीने में देवी कात्यायनी का व्रत रखा, भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाई और उनकी पूजा की। ये परंपरा आज भी जारी है। दक्षिण भारत में देवी कन्याकुमारी को माँ कात्यायनी का ही रूप माना जाता है। पोंगल के दौरान माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि विवाह योग्य पुरुष भी माता से विवाह के वरदान पा सकते हैं।
1: कात्यायनी जी का स्वरूप बताया कि गौर वर्णा है और चार भुजाएं हैं इनकी, जिसमें वर मुद्रा से लेके अस्त्र शस्त्र ये सब रहता है और इनका आकर्षण के लिए कात्यायनी जी का बहुत ज्यादा महत्व मिलता है।
0: चलिए आपको बताते हैं शास्त्रों में भगवती के स्वरूप की कैसी व्याख्या की गई है। माता कात्यायनी की चार भुजाएं हैं। दाई तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में दिखाई देता है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना से अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग शोक संताप और भय नष्ट हो जाते हैं।
1: विशेष तो देखिए माँ का जो विषय है वो समस्त आपको चतुर्विद पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है, जिसमें धन यश मान सम्मान परिवार सबका सुख मिलता है, लेकिन विशेष रूप से वर प्राप्ति के लिए कन्या लोग इनका पूजन करती हैं और पुरुष भी इनका जप और पूजन कर सकते हैं अच्छी पत्नी प्राप्ति के लिए।
0: ज्योतिष के जानकार भी ये मानते हैं कि अगर कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा तो विवाह और वैवाहिक जीवन में शुभता बनी रहेगी। अगर आप नवरात्र में ये प्रयोग ना भी कर पाए तो बृहस्पति को मजबूत करके कैसे वैवाहिक जीवन सुखी बनता है, कैसे वैवाहिक जीवन सुखी बना सकते हैं, आइए जानते हैं।
1: बृहस्पति बलवान करने के लिए एक तो पीला वस्त्र का धारण करना चाहिए, दूसरी चीज माँ के जप के संग बृहस्पति का भी जप करें और पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिसमें हल्दी है, चने की दाल है, पीला वस्त्र है एवं केला फल इत्यादि में केला इत्यादि का भी दान करने से बृहस्पति की जो तकलीफ होती है वो शीघ्र दूर होती है।
0: हर रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें, कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, खान पान में सात्विकता रखें, सलाह लेकर एक ओपल या पीला पुखराज धारण करें, रात को सोने से पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर करें।
1: जप के विधान में पीले वस्त्र को धारण करें या लाल वस्त्र भी इसमें पहना जा सकता है और पीले आसन पे आसन के नीचे केले के पत्ते को रख के इस अनुष्ठान को अगर किया जाए तो ये शीघ्र ही फलीभूत होता है और अपने इच्छानुकूल वर की प्राप्ति होती है।
0: तो सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ आदि शक्ति की भक्ति में लीन हो जाइए, माता के श्री चरणों में शीश झुकाइए, फिर आप हर बाधा और परेशानी से दूर हो जाएंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे करनी है माँ कात्यायनी की आराधना और किस भोग से प्रसन्न होंगी माँ कात्यायनी। आप बने रहिए हमारे साथ।
2: तो देखा आपने नवरात्र में कितनी कल्याणकारी है माँ कात्यायनी की आराधना। अभी आपने जाना नवरात्र में शीघ्र विवाह के उपाय। आइए अब आपको हम माँ कात्यायनी की दिव्य शक्तियों से परिचित कराते हैं, कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना। आइए चलिए उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं।

0: अमोघ फलदायिनी है नवरात्र में माँ कात्यायनी की उपासना। देवी के छठे स्वरूप की उपासना से पूर्ण होगी सभी कामना। अद्भुत है माँ कात्यायनी की प्रताप, जिनकी कृपा से घरों में बजती है शहनाइयां। वर वधु के हाथ होते हैं पीले और दंपति जीवन में मधुरता का मिलता है वरदान। साथ ही कुंडली की ग्रह दशा भी हो जाती है अनुकूल। लेकिन इसके लिए सही तरीके से करनी होगी आपको माता की उपासना, क्योंकि विधिवत की गई अर्चना से शीघ्र प्रसन्न होती है माँ कात्यायनी। तो आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि कैसे मिलेगी देवी के इस दिव्य स्वरूप की कृपा।
1: कात्यायनी जी के प्रिय वस्तुओं में शहद का भोग लगता है एवं हल्दी इनको चढ़ाई जाती है, और इनका मुख्य विषय जो है कन्या के विवाह इत्यादि में भी अगर विलंब बाधा आ रही हो या किसी विशेष कार्य में रुकावट पैदा हो रहा हो तो निश्चित रूप से इनकी आराधना करने से वो कार्य सहर्ष पूरा हो जाता है।
0: कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा? पूजा के स्थान को लाल कपड़े से सजाएं। देवी कात्यायनी का संबंध लाल रंग से माना गया है। गोधूली वेला में पीले या लाल कपड़े पहनाकर इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीली मिठाइयां अर्पित करें। माँ के इस स्वरूप को शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और साथ ही प्रेम से जुड़ी बाधाएं भी दूर होंगी। इसके बाद माँ के सामने उनके मंत्रों का जाप करें। तो आप भी माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के महा उपाय कीजिए और नवरात्र के इन दिव्य दिनों का लाभ उठाइए, जिससे भगवती के कृपा से आप सबका कल्याण होगा और साथ ही आने वाली बाधाओं का भी सर्वनाश होगा।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: अन्य राज्यों में बारिश के चलते मौसम खुशनुमा है, तो वहीं पर पहाड़ियों पर बर्फबारी ने चार चांद लगा दिए हैं। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाके सीजन की पहली बर्फबारी से सफेद नजर आ रहे हैं, जहां पर गुलमर्ग, सोनमर्ग, पीर पंचाल समेत तमाम ऊंची चोटियों पर स्नोफॉल जबरदस्त देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर अगर आप देखेंगे मैदानी इलाकों को भी सीजन की पहली बर्फबारी की सौगात मिल चुकी है। मौसम का मिजाज इस बार घाटी में जोरदार सर्दी पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं।
5: धरती की जन्नत कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर सीजन की पहली बर्फबारी से ही सफेदी के सागर में समा गया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत तमाम ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, तो मैदानी इलाकों में भी सीजन की पहली बर्फबारी की सौगात मिल चुकी है। डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इसके साथ ही बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी और पीर पंजाल रेंज की प्रसिद्ध पीर की गली भी बर्फ की चादर ओढ़ चुकी है। उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी से पूरा पहाड़ी इलाका सफेद नजर आ रहा है। मैदानी क्षेत्र में करीब 2 इंच और ऊंचाई वाले इलाकों में 4 से 5 इंच बर्फ दर्ज की गई है। पीर पंजाल रेंज में सीजन की पहली बर्फबारी से ही श्रीनगर को पुंछ से मिलाने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फ से पट गई। आलम यह हुआ कि रोड को कुछ समय के लिए आवाजाही के लिए बंद करना पड़ गया, लेकिन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने तत्काल कमान संभाली और सड़कों पर बिछी बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया। कुछ घंटों के बाद आखिरकार सड़क को फिर से खोल दिया गया ताकि पुंछ और कश्मीर के बीच यातायात सुचारू रूप से चलती रहे।
6: दक्षिण कश्मीर शोपियां के पीर गली इलाके में अभी हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बर्फ ही बर्फ जो है इसमें पड़ी हुई है कल शाम से। दरअसल आपको बता दें कि ये एक बालाई इलाका माना जाता है और साथ में ही इसके जो है एक हिस्टोरिकल मगर रोड जिसको कहा जाता है वो चल रहा है। आपको बता दें कि बीआरओ ने एहतियातन उस रोड को सुबह सवेरे कुछ जो है पल के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि पीर की गली या दर्जन इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी और जिसके कारण जो है रोड को एहतियाती तौर पर बंद करना पड़ा। लेकिन अभी जो है स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन ओवर हो चुका है यानी बर्फ जो है इस रोड पे हटाई गई है और गाड़ियों की जो है आमद रफ्त इस पे फिर से चलने लगी। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे गुरेज हो, कुपवारा हो या गुलमर्ग हो, गुलमर्ग के साथ साथ जो है पीर गली इलाकों में भी जो है बर्फबारी हो रही है। लगभग कम से कम 5 से 6 इंच बर्फ एक्यूमुलेट की जा चुकी है।
5: बारामूला जिले में मौजूद मशहूर हिल स्टेशन गुलमर्ग का सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक हिल स्टेशन है अफरवाट। आमतौर पर अफरवाट में ऐसा बर्फीला नजारा नवंबर के आखिरी दिनों में दिखाई देता है। सर्दियों में ये इलाका दुनिया भर के स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लेकिन कुदरत की मेहरबानी से ये सौगात पर्यटकों को अभी मिल गई है।
7: बहुत अमेजिंग, सबको आना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगी। इंडिया में, वर्ल्ड में सबको आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। इतनी स्नो देखी लेकिन ये अमेजिंग प्लेस, वी आर सो लकी दैट वी केम टुडे।
8: अच्छा मजा आ रहा है, मतलब सबको आना चाहिए यहाँ पे घूमने को।
9: इतनी बर्फ कभी नहीं देखी थी, आज पहली बार देखी है। काफी कम स्नोफॉल देखी थी, बर्फ होते हुए देखी थी।
5: जम्मू कश्मीर में मौसम का ये बदलाव महज चंद दिनों में ही नजर आया है। अक्टूबर की शुरुआत में मौसम कुछ हद तक गर्म था लेकिन अक्टूबर का महीना आधा खत्म होते होते घाटी सर्दी के आगोश में लिपटने लगी है। कश्मीर, चेनाब घाटी और पीर पंजाल इलाके में दिन का तापमान भी काफी हद तक गिरने लगा है।
10: जहाँ तक जम्मू डिवीजन की बात है वहाँ इंटेंसिटी कम होगी, एरिया भी कम होगा इससे, और ये 2 दिन का स्पेल है। इसके बाद 16 तारीख में आइसोलेटेड प्लेसेस पर कहीं कहीं बहुत कम बारिश हो सकती है और उसके बाद तो फिर आ गए आने वाले टाइम में 24 तारीख तक करीब करीब ड्राई ही वेदर है।
5: मौसम विभाग के मुताबिक अभी 1-2 दिन और बारिश और बर्फबारी का दौर चलेगा, उसके बाद 1 हफ्ते तक बारिश और बर्फबारी दोनों से राहत मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से भले ही थोड़े दिनों की राहत मिले लेकिन मौसम का ये मिजाज इस बात का संकेत दे रहा है कि इस बार सर्दी जल्दी और जोरदार पड़ने के आसार हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और मीर फरीद के साथ शोपियां से एजाज डार, गुड न्यूज टुडे।
0: हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक वास्तुकला और लोक कला को सहेजने की दिशा में रिटायर शिक्षक विनय अवस्थी तन मन धन से लगे हुए हैं। विनय अवस्थी बांस और लकड़ी से हिमाचल के ऐतिहासिक मंदिरों और पारंपरिक स्लेट पूछ मकानों की आकर्षक प्रतिकृतियां तैयार कर रहे हैं जिसे देखकर लोग तारीफ कर रहे हैं और उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में लगाई गई है जिसे देखकर सैलानी मंत्रमुग्ध हो रहे हैं।
11: अयोध्या का श्री राम मंदिर, केदारनाथ महादेव मंदिर, आदि हिमानी चामुंडा मंदिर और कई प्रसिद्ध मंदिरों के रेप्लिका, ये हिमाचल की अनूठी बांस कला की देन है जिसे साकार कर रहे हैं विनय अवस्थी। विनय अवस्थी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन लकड़ी और बांस से तैयार किए गए ये मॉडल इस बात के सबूत हैं उनके जुनून का। उनका मानना है कि बांस की अनूठी कला को दुनिया के सामने लाना है और हिमाचल की पारंपरिक वास्तुकला और लोक कला को सहेजने की जरूरत है, इसकी कोशिश वो कर रहे हैं।
12: यह आर्ट जो मैं 2019 से कर रहा हूँ और मैडम मैं आपको बता दूं ये जितनी भी कलाकृतियां हैं उनको बनाने में 15 दिन से ज्यादा समय लगता है और मैं कोशिश करता हूँ कि इनको बड़ी तन्मयता के साथ बनाऊं ताकि देखने वाला जो है वो देख करके मतलब जो है वो उसको पसंद करे। लोकल बैम्बू यूज करता हूँ, उसको काट करके सुखा करके और अपने ही हाथों से सारा कुछ करता हूँ और जब ये रेप्लिकास कोई अंतिम रूप दे लेती है तो मैं उसको ट्रीट करके फिर जो प्रदर्शनी में लगाता हूँ।
11: बांस और लकड़ी से हिमाचल के ऐतिहासिक मंदिरों और पारंपरिक सलेट पोशा मकानों की आकर्षक प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी आजकल धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में लगाई गई है।
13: टेम्पल्स के रेप्लिकास हैं, पूरे हिमाचल को इन्होंने कवर किया हुआ है। रिज शिमला का भी है इसमें, मुंडा टेम्पल और ये रिज शिमला, रिज जो है शिमला पे उसका, और भीमाकाली टेम्पल, चौरासी टेम्पल, इन सब के रेप्लिकास इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं।
14: ये टेम्पल्स के ये भी काफ़ी अच्छा है, इट्स वेरी गुड। सो ओवरऑल आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस नोइंग अबाउट योर एंशियंट हिस्ट्री एंड ऑल दोस थिंग्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा।
11: हिमाचल की पारंपरिक कला और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे प्रदर्शनी का आयोजन वक्त वक्त पर किया जाता है। प्रशासन की कोशिश भी रहती है कि ऐसी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान मिल सके, ताकि हिमाचल और देश के युवा इस पारंपरिक कला को नया आयाम दे सकें।
15: ऐसे लोग हैं जो ऐसी आर्ट फॉर्म्स को जीवित रख रहे हैं, आप इनके देखेंगे जब, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी ये दिखाएं कि स्लेट पोस्ट मकान, डबल मंजिल, सिंगल मंजिल, जो हमारा शिमला का चर्च है और जो इतने सारे हिमाचल के मंदिर हैं उनके रेप्लिका जिन्होंने बनाए हैं, बहुत बारीकी से काम किया है। और कहीं ना कहीं आजकल ऐसा हो रहा है कि ये प्रतिभा जो है, ऐसी आर्ट फॉर्म जो हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, तो अगर ऐसे में कोई ऐसे आर्टिस्ट सामने आते हैं तो हमें उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानना चाहिए।
11: विनय अवस्थी ऐसी प्रतिकृतियों को बनाने में बांस काटने से लेकर कलाकृतियों को अंतिम रूप देने तक का ज्यादातर काम खुद करते हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें इस काम का कुछ सहयोग मिले तो वो इस कला को देश और दुनिया तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
16: नवरात्र के छठे दिन आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिरों में उमड़ रहे हैं भक्त। हर रोज होता है माता का अनुपम श्रृंगार। असम के चिरांग जिले में माता की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण, स्वर्ण जयंती वर्ष पर दुर्गा पूजा समिति की भव्य तैयारियां, पंडाल में सजावट का काम जारी। शारदीय नवरात्र के मौके पर देश भर में गरबा डांडिया की धूम, चित्रकूट के सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट परिसर में भव्य आयोजन समारोह में हजारों लोग कर रहे हैं शिरकत। नवरात्र के पावन अवसर पर महाराष्ट्र की भीड़ में लगा श्रद्धालुओं का तांता, बेलगांव के रेणुका माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं हजारों भक्त। अब अयोध्या में ही तैयार हो रहे हैं रामलला के वस्त्र, सूरत से मंगाया जा रहा है रेशम मखमल सहित दूसरे सामान, मंदिर ट्रस्ट ने वस्त्र निर्माण के लिए किए इंतजाम। एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चैंपियंस ने शेयर किए अपने अनुभव।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात शक्ति उत्सव की। आज नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंद माता के दर्शन पूजन का विधान है। सुबह से ही देश के तमाम मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है और श्रद्धालु मां आदि शक्ति से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। मां स्कंद माता दुख और रोगों से मुक्ति प्रदान करती है। मान्यता है कि माँ के इस स्वरूप की प्रार्थना करने से शांति और सुख का अनुभव होता है। मान्यता ये भी है कि नवरात्र के दौरान शक्ति के प्रमुख स्थानों में दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। इसी के चलते जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको देवी के कुछ अनोखे धामों के दर्शन करवाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में देवी का एक ऐसा अद्भुत मंदिर मौजूद है जिसके इतिहास की डोर मराठा साम्राज्य की गौरवशाली विरासत से जुड़ी है। शक्ति उत्सव में आज चलेंगे उन देवी के धाम जो वीर शिवाजी की कुल देवी मानी जाती हैं। वो देवी जिनका आशीर्वाद वीर शिवाजी के माथे का विजय तिलक बन गया। पहाड़ों पर बना एक ऐसा अद्भुत मंदिर जिसका एक द्वार 70 किलोमीटर दूर बसे उज्जैन में खुलता है।

0: जिनके आशीर्वाद ने किया वीर शिवाजी का विजय तिलक, जिनकी कृपा से वीर शिवाजी को मिली भवानी तलवार, जिस मंदिर से जुड़ी है मराठा शौर्य की विरासत, जिस दर पर शीश झुकाते थे सम्राट विक्रमादित्य, वो मंदिर जिसे उज्जैन से जोड़ती है एक रहस्यमयी गुफा, वो मंदिर जहां तुलजा भवानी स्वरूप में विराजी हैं शक्ति, मध्य प्रदेश में उज्जैन से लगभग 70 किलोमीटर दूर आगर मालवा में पहाड़ों के बीच प्राचीन गुफा में शान से विराजी हैं माँ तुलजा भवानी। ये मंदिर मध्य प्रदेश में मौजूद देवी के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्थानों में से एक है। इस मंदिर में मौजूद माँ भवानी की मूर्ति स्वयं भू मानी जाती है। बताया जाता है कि ये मूर्ति यहाँ पहाड़ों के बीच स्वतः प्रकट हुई थी। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं।
1: मेरे पीछे जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये गुफा है यहाँ पर, और ये यहाँ भारी भरकम पत्थरों की शिलाएं हैं बड़ी बड़ी, और ये पहाड़ है। इसी पहाड़ के बीच में यहाँ पर एक गुफा आपको दिखाई दे रही है, और ये वही गुफा है जिससे कहा जाता है कि माँ तुलजा भवानी ने उज्जैन से यहाँ पर अपना स्थान लिया था और यहाँ पर प्रकट हुई थी।
0: तुलजा भवानी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये मराठा इतिहास की गौरवशाली विरासत का भी प्रतीक है। दरअसल माँ तुलजा भवानी मराठा साम्राज्य के शौर्य तिलक छत्रपति शिवाजी की कुल देवी हैं। इनका मुख्य स्थान महाराष्ट्र के तुलजापुर में मौजूद है।
2: माँ तुलजा भवानी का बहुत पुराना स्थान है। भगवती का प्रथम स्थान महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से माता रानी चले उज्जैन पधारे, उज्जैन से भद्री गुफा में प्रवेश हुए, तो यहाँ पर आगर में एक सुरंग है जो वहाँ से यहाँ तक उज्जैन जाती है। इसी गुफा द्वारा माँ आकर के यहाँ पहाड़ों में प्रकट हुई देवी।
0: छत्रपति शिवाजी माँ तुलजा भवानी के अनन्य भक्त थे। बताया जाता है कि जब शिवाजी महाराज ने मुगलों और आदिलशाही सुल्तानों के खिलाफ स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया, तब उन्होंने अपनी कुलदेवी माँ भवानी की विशेष साधना की थी। किंवदंतियों में वर्णन मिलता है कि एक बार जब शिवाजी महाराज अपने शत्रुओं से घिरे हुए थे और उनके पास कोई उपाय नहीं बचा था, तब उन्होंने माँ तुलजा भवानी का आह्वान किया। माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वे विजय प्राप्त करेंगे। बताया जाता है कि माँ भवानी के आशीर्वाद से उन्हें दिव्य तलवार प्राप्त हुई थी, जिसे भवानी तलवार कहा जाता है। इस तलवार के साथ शिवाजी ने कई ऐतिहासिक युद्ध जीते और मराठा साम्राज्य का किला मजबूत किया। बताया जाता है कि माँ तुलजा भवानी महाराष्ट्र से उज्जैन आई और फिर वहाँ से पहाड़ों में मौजूद सुरंग और गुफा के रास्ते इस स्थान पर प्रकट हुई थी। मंदिर में आज भी वो गुफा मौजूद है जिसके जरिए माँ तुलजा भवानी के आगर मालवा में प्रकट होने का दावा किया जाता है। इस गुफा को भृतहरी गुफा के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि ये गुफा वास्तव में पहाड़ों में मौजूद उस प्राकृतिक सुरंग का द्वार है जो आगर मालवा को उज्जैन से जोड़ती है।
2: सुरंग कहीं वर्षों से है माता रानी की, और ये राजा महाराजाओं के समय की है सुरंग भृतहरी गुफा, और इसी सुरंग का काफी राजा विक्रमादित्य जी द्वारा आवागमन हुआ, आना जाना हुआ, माँ का पूजन अर्चना करते हुए।
0: पीढ़ियों से मंदिर में सेवा पूजा करते आ रहे पुजारी परिवार के वंशज बताते हैं कि ये गुफा सीधे उज्जैन तक जाती है। बताया जाता है कि किसी दौर में सम्राट विक्रमादित्य इसी गुफा के रास्ते माँ तुलजा भवानी के दर्शन करने उज्जैन से आगर मालवा आया करते थे। मंदिर और आसपास के इलाकों से वर्षों से परिचित लोग बताते हैं कि मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ियों में मौजूद जिस गुफा से माँ तुलजा भवानी आई थी, उसी गुफा से बाद में आम लोग भी उज्जैन आया जाया करते थे, लेकिन बाद के सालों में सुरंग और गुफा में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया।
2: सुरंग तो धीरे धीरे विलुप्त हो चुकी है। करीब यहाँ से आज के 30-40 साल पहले चालू थी सुरंग, और कुछ लोग अंदर जाकर के भी देखा भी है उन्होंने, लेकिन अब विलुप्त तो हो चुकी है। सिर्फ यह ऐतिहासिक है कि उसको हम बता सकते हैं कि भगवती का यह मेन स्थान है जो यहाँ से पधारे।
0: मंदिर के पुजारी बताते हैं कि किसी जमाने में मंदिर के आसपास पहाड़ियों पर दुर्गम वन क्षेत्र था। मंदिर के आसपास गुफा और सुरंग तक शेर आया जाया करते थे। खास तौर पर देवी की आरती के समय वहाँ शेर मौजूद रहता था। इन शेरों को देवी की मौजूदगी का प्रतीक माना जाता था, लेकिन समय के साथ इस क्षेत्र में पहले वन कम हुए और फिर धीरे धीरे वनराज का आना भी बंद हो गया। माँ जगदम्बा के इस दरबार में पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना लेकर माँ के दरबार में पहुँचते हैं। नवरात्र के दौरान यहाँ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। माना जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, विशेषकर वे जो शक्ति और विजय की कामना रखते हैं। वास्तव में वीर शिवाजी की कुलदेवी माँ तुलजा भवानी का ये मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि ये शौर्य, भक्ति और मराठा गौरव का प्रतीक भी है। जो भी व्यक्ति शक्ति, साहस और सफलता की प्रार्थना लेकर यहाँ आता है, उसे माँ भवानी की कृपा जरूर मिलती है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो नवरात्र के इस मौके पर जीएनटी पर हम आपको देश के सबसे अनोखे देवी मंदिरों के दर्शन करवा रहे हैं। इसी क्रम में अब आपको लेकर चलेंगे झांसी में मौजूद एक और अद्भुत देवी मंदिर में, जहां स्वयं जगत की जननी बाल रूप में विराजमान है। संसार में मां काली का ऐसा अनोखा रूप और कहीं देखने को नहीं मिलता।

0: वो मंदिर जहां बाल रूप में विराजी हैं जगत जननी, वो मंदिर जहां इंदिरा गांधी को मिला जीत का आशीर्वाद, वो मंदिर जहां रौद्र नहीं बल्कि सौम्य रूप में विराजमान है महाकाली, वो मंदिर जहां स्वयं प्रकट हुई माँ भवानी। नवरात्रि के पावन दिनों में भक्त 9 दिनों तक माँ भगवती के अलग अलग रूपों की साधना करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के झांसी में माँ के ऐसे अनोखे स्वरूप की आराधना होती है जिसे देखकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। झांसी के इस मंदिर में माँ काली कन्या के रूप में विराजमान है। जरा सोचिए, जो स्वयं जगत जननी है, जो स्वयं चराचर जगत और संपूर्ण सृष्टि का आधार आदि शक्ति मानी जाती है, वो भक्तों को बाल स्वरूप में दर्शन देने को विराजी है।
1: ये सौम्य रूप में विराजमान, आपने महाकाली को देखा होगा कि उनकी लंबी लंबी जिह्वा होती है, बड़ा ही विकराल स्वरूप होता है, लेकिन ये सौम्य रूप, ये कन्या रूप इनको बोलते हैं। ये दिन में आप देखेंगे, कभी भी आप आके दर्शन करेंगे, आपको दर्शन परिवर्तित होते हुए मिलेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ।
0: न केवल बाल रूप बल्कि ये दुनिया का ऐसा अनोखा मंदिर है जहां माँ काली के सौम्य रूप के दर्शन होते हैं। आमतौर पर माँ काली के हाथों में खड़ग, खप्पर और गले में मुंडों की माला रहती है, दुनिया में उनका यही स्वरूप पूजा जाता है, लेकिन बुंदेलखंड के इस मंदिर में माँ काली का ये अनोखा सौम्य स्वरूप पूजा जाता है। यानी जिन महाकाली के रौद्र रूप के सामने ब्रह्मांड की समग्र आसुरी शक्तियाँ नतमस्तक हैं, वो माँ काली यहाँ अपने क्रोध को त्याग भक्तों को सौम्य स्वरूप में दर्शन देती है।
2: काली जी जो है वो सौम्य रूप में है। पूरे भारतवर्ष में केवल 2 ही जगह सौम्य रूप में काली जी हैं, एक तो कलकत्ता में है और एक यहाँ पर है, बाकी कहीं पर भी आप देंगे सब रौद्र रूप में रहती हैं।
0: बताया जाता है कि बुंदेलखंड के इस मंदिर का इतिहास शताब्दियों पुराना है और ये इतिहास जुड़ा है ओरछा के राज परिवार से। बताया जाता है कि कभी मंदिर के स्थान पर एक पहाड़ हुआ करता था जहाँ एक गुफा में माँ की मूर्ति इस स्वरूप में प्रकट हुई थी। बरसों तक माँ उस गुफा में गुप्त रूप से विराजमान रही, लेकिन लगभग 500 साल पहले ये रहस्य उस दिन खुला जब ओरछा वंश के शासक राजा जुदेव सिंह इस इलाके में शिकार करने आए।
2: जब यहाँ पे ओरछा के महाराज जुदेव जी शिकार खेलने आए, तब उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पे कुछ है, वहाँ पे उनको कुछ बाती जलती हुई दिखाई दी। जब वो आए, उन्होंने देखा यहाँ पे काली जी की प्रतिमा थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना चालू करवाई।

0: बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने जीत का आशीर्वाद पाने के लिए माँ काली के इस मंदिर में अनुष्ठान करवाया था।
1: 1977 में इधर आए, तब वह प्रधानमंत्री पद पे नहीं थे, तो उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी हम पुनः प्रधानमंत्री पद कब प्राप्त करेंगे? बोले हमारी माँ जो आज्ञा देगी वो। तो बोले माँ बोलती है ये मैं कैसे मानूं? तो बोले हसत माल मुँह रत मुस्कानी। बोले जब मूर्ति बोलती है तो फूल झड़ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि माँ बोली है। बोले फिर मेरे को कैसे मालूम चलेगा? तो इतनी देर में 3 घंटे बाद उनका माई के हृदय का पुष्प गिरा। बोले आप 3 साल बाद आप जो है पुनः प्रधानमंत्री पद। तो भाई चिकमंगलूर से चुनाव जीती, चिकमंगलूर से चुनाव जीतने के बाद पुनः प्रधानमंत्री बनी। तो उनके सलाहकार फिर उनको लेके आए 1983 में। उन्होंने कहा पंडित जी मांगिए, आपको जो मांगना है वो मांगिए। बोले हम क्या मांगे साधु बैरागी आदमी, आप क्या हम मांगे? बोले हम तो एक यज्ञ करना चाहते हैं, अगर आप सहयोग करना चाहती हैं तो करिए। बोले कौन सा यज्ञ करना है, मेरे को बोलो मैं कराता हूँ। बोले मैं लक्षचंडी यज्ञ करना चाहता हूँ। बोले कराइए आप संकल्प कराइए। संकल्प किया, संकल्प करने के बाद 1983 में उन्होंने जो नीचे यज्ञशाला है उसमें उन्होंने लक्षचंडी यज्ञ कराया।
0: तो साल भर झांसी के इस मंदिर में माँ के बाल स्वरूप करने भक्त देश और दुनिया भर से पहुँचते हैं, लेकिन खास तौर पर नवरात्र के पावन दिनों में यहाँ माँ काली की कन्या रूप को पूजने भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। नवरात्र के 9 दिनों में बाल स्वरूपा माँ काली के धाम में विशेष अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस बार भी नवरात्र के दौरान माँ भगवती के लिए मन में अगाध आस्था लिए भक्त देश के कोने कोने से यहाँ पहुँच रहे हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: और अब आपको लिए चलते हैं गुजरात और दर्शन करवाते हैं मां अंबा के। गुजरात के बनासकांठा में मौजूद अंबाजी धाम में इन दिनों नवरात्र उत्सव की धूम है। अंबाजी शक्तिपीठ देश के प्रमुख शक्ति स्थलों में गिना जाता है। आज दुनिया भर के श्रद्धालु इस शक्तिपीठ में दर्शन को पहुंचते हैं, लेकिन पौराणिक इतिहास बताता है कि त्रेता युग में यहां श्री राम भी दर्शन के लिए पहुंचे थे। तो वहीं द्वापर युग में नंद बाबा और यशोदा मैया छोटे से कान्हा को लेकर अंबाजी के धाम गए थे। आखिर क्यों इतना खास है अंबाजी शक्तिपीठ और क्या है इसकी कहानी, चलिए आपको बताते हैं।

0: माँ चाहे अपनी हो या फिर सारे जगत की, माँ का हृदय वो स्थान है जहाँ हमेशा जगह होती है उसके बच्चों के लिए। और आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा संसार का ये वो स्थान है जहाँ स्वयं माँ का हृदय रहता है। संसार के कोने कोने से पहुँचते हैं श्रद्धालु माँ के हृदय भाग के दर्शन करने। ये दिव्य स्थान है गुजरात का अंबाजी शक्तिपीठ। गुजरात राजस्थान सीमा पर बसे बनासकांठा में अरावली पर्वत पर शांत से विराजी है माँ अंबा। माँ अंबा का यह अद्वितीय धाम देवी के 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। तंत्र चूड़ामणि में उल्लेख मिलता है कि इसी स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था।
1: भगवान विष्णु जगत की सृष्टि का पालन करने हेतु उनके सुदर्शन चक्र से माँ भगवती सती का शरीर था उनके टुकड़े किए और वो जो टुकड़े थे जहाँ जहाँ पर गिरे वहाँ पर 51 शक्तिपीठ निर्माण हुई और वहाँ से ये शक्तिपीठ मानी जाती है। कारण के वहाँ जो देव टुकड़े गिरे वहाँ से जो सबसे श्रेष्ठ जो टुकड़ा था वो हृदय का जो टुकड़ा था वो हृदय का टुकड़ा जो है माँ भगवती का यहाँ अरावली पर्वत के गोद में आकर गिरा और यहाँ पर माँ भगवती की शक्तिपीठ निर्माण हुई। इसलिए यहाँ महाभारत के सभी तीर्थों में से सबसे श्रेष्ठ तीर्थ

0: यहाँ माना जाता है।
1: आज पूरा गुजरात अम्बाजी की भक्ति में डूबा है। क्या आम क्या खास, सब पर माँ जगदम्बे के उत्सव का रंग चढ़ा है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ गर्भगृह में माँ की मूर्ति की नहीं बल्कि शक्ति के स्वरूप यंत्र की पूजा होती है। अम्बा देवी का यंत्र गुप्त रखा जाता है, इसे खुले में देखना भी निषेध है। यहाँ तक कि पुजारी भी इसकी पूजा आंखों पर पट्टी बांध कर करते हैं।
0: न मातुर पर देवता, इस जगत के अंदर माँ के समान कोई बड़ा देव नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर जो माँ भगवती का जो दिव्य स्वरूप है, तो ये स्वरूप के अंदर यहाँ पर माँ भगवती के जो गर्भगृह के अंदर कोई मूर्ति या कोई ऐसा प्रतीक की पूजा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर सभी शक्तिपीठों में से सबसे श्रेष्ठ शक्तिपीठ इसलिए माना गया है कि यहाँ पर गर्भगृह के अंदर माँ भगवती के श्री यंत्र की पूजा होती है, यंत्र की पूजा होती है जिसका नाम विषा यंत्र बताया गया है। और इस यंत्र के अंदर माँ भगवती की अभूत शक्ति जो है इस यंत्र के अंदर मानी जाती है, और इस यंत्र की ब्राह्मणों के द्वारा पूजा होती है। और यहाँ पर आने वाले सभी जो भक्तगण है, यहाँ पर आते तो खाली हाथ आते हैं, लेकिन इस यंत्र की दर्शन मात्र से, इस भक्ति के दर्शन मात्र से, इस शक्ति के दर्शन मात्र से सभी भक्तगण यहाँ से कुछ ना कुछ श्रद्धा, शक्ति और नई ऊर्जा लेकर अपने घर जाते हैं।
1: आपको बता दें कि माँ अम्बा का ये दिव्य धाम लगभग 1200 साल पुराना है। कालांतर में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। आज माँ भवानी के हृदय स्थान पर बना ये मंदिर भव्य रूप को प्राप्त कर चुका है। मंदिर के शिखर को 141 किलो सोने से मढ़ा गया है। 61 फीट ऊंचे शिखर पर 358 छोटे बड़े स्वर्ण कलश लगाए गए हैं। बताया जाता है कि यहाँ मंदिर तो बेहद बाद में बना, लेकिन माँ आद्या शक्ति यहाँ हमेशा से विराजमान है। कई पौराणिक कहानियों में इस दिव्य स्थान का उल्लेख मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि माँ जगदम्बा के इसी धाम में नंद बाबा और माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का मुंडन करवाया था, तो वहीं भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए यहाँ से गुजरे थे और माँ अम्बा का आशीर्वाद लिया था। इसके साथ ही मान्यता ये भी है कि वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखने की शुरुआत इसी तपोभूमि से की थी। अम्बाजी धाम में मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर गब्बर नाम का पहाड़ मौजूद है, जहां देवी का एक और प्राचीन मंदिर स्थापित है। अम्बाजी के दर्शन के बाद श्रद्धालु गब्बर पहाड़ी पर मौजूद इस मंदिर में जरूर जाते हैं। आज माँ अम्बा का ये धाम गुजरात ही नहीं बल्कि देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु माँ अम्बा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ देवी के दर्शन के लिए आते हैं। खास तौर पर गुजरात के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले किसान माँ के दर्शन के लिए यहाँ सब परिवार इकट्ठा होते हैं। बड़े स्तर पर मनाए जाने वाले इस समारोह में गरबा और भवाई जैसे पारंपरिक नृत्यों का आयोजन भी किया जाता है। 9 दिनों तक अम्बे धाम में भक्ति के गीत गूंजते हैं।
2: पंखीड़ा तू उड़ के जाना अम्बे धाम रे, अम्बा जी को कहना हम भी द्वारे आए हैं, अम्बा जी से कहना हम भी द्वारे आए हैं। पंखीड़ा तू उड़ी ने जाजे पावागढ़ रे, महाकाली से मिलके कह जो गर्भ रमे रे, मारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, अम्बा जी से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, अम्बा जी से मिलके कहना गरबा खेलेंगे।
1: इस बार भी नवरात्र के पावन अवसर पर माँ भवानी के इस धाम में खूब रौनक है। मन में भावना की जोत जलाए।

0: हजारों भक्त जगदम्बा के दरबार में शीश झुकाने पहुंचे हैं। बरासकांठा में अंबाजी शक्तिपीठ से शक्ति सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: चलते हैं कोलकाता के ढाकुरिया शहीद नगर दुर्गा पूजा पंडाल, जिसे महामिलन की थीम पर बनाया गया है। महामिलन थीम दो अलग अलग लेकिन बहुत खूबसूरत पहलुओं का एक अनूठा संगम है ये पंडाल। एक तरफ शरणार्थियों के ऐतिहासिक संघर्ष और उनकी एकता को दर्शाती है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक मिलन से प्रेरित है।
7: भव्य और दिव्य माँ दुर्गा की प्रतिमा है, उतना ही खूबसूरत और कलात्मक है माँ दुर्गा का ये पंडाल, जिसकी भव्य लाइटिंग और शानदार वास्तुकला श्रद्धालुओं को खूब रास आ रही है। ये पंडाल एक तरफ शरणार्थियों के ऐतिहासिक संघर्ष और उनकी एकता को दर्शाता है, तो दूसरी ओर राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक मिलन से प्रेरित है। कोलकाता के डकुरिया शहीद नगर सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति का ये पंडाल जहाँ मौजूद है, वो मूल रूप से भारत के विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी द्वारा बसाई गई कॉलोनी है। इस दुर्गा पंडाल की थीम महामिलन, शरणार्थियों के इतिहास और उनके संघर्षों को समर्पित की गई है। पंडाल के जरिए दिखाया गया है कि कैसे लोग अपना सब कुछ पीछे छोड़कर इस अनजान जगह पर आए और आपसी सहयोग और सद्भाव के साथ सामाजिक एकता स्थापित की।
8: रिफ्यूजी कॉलोनी है, यहाँ पे एक टाइम में ईस्ट पाकिस्तान से सब कुछ छोड़ के सब लोग जा गए थे। हम लोग का जो पूर्व पुरुष लोग थे, जो एंसेस्टर थे, जब यहाँ पे आए थे, उन लोग ऐसे ही ये छन का, ये हुगला पत्ता का, ये बांस का, बम्बू का देकर उन लोग घर बनाते थे। अभी वो लाइफ वॉर में जीत गए हैं, जीत के ये सबका बड़ा बड़ा आपका मकान हो गया है। लेकिन हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है, उन लोग को हम लोग बोलना चाहते कि हम लोग का क्या युद्ध था, क्या था।
7: इस थीम को जीवंत करने के लिए पारंपरिक बंगाली शिल्प और आधुनिक सामग्री का बेहतरीन फ्यूजन इस्तेमाल किया गया है। पंडाल की दीवारें और सजावट विभाजन के दौर की यादों और आध्यात्मिक प्रतीकों को खूबसूरती से दर्शाती है। सामाजिक सद्भाव के साथ साथ महामिलन थीम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अलौकिक प्रेम से भी प्रेरित है। यह उनके अटूट प्रेम, भक्ति और मिलन के जरिए दुनिया को प्रेम, करुणा और सौहार्द का संदेश देती है। साथ ही पूरी सृष्टि की रक्षा करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप से भी प्रेरित है।
8: महामिलन अब श्री रामचंद्र और श्री राम कृष्ण के बिना नहीं होता है। श्री रामचंद्र जो अकल बोधन किए थे, तब जो सीता माता को उद्धार करने के लिए गए थे, तो उनको महामिलन करके काटबिलरी से लेके बानरसेना तक, मनुष्य से लेके देवता तक, पूरा प्रकृति उनका साथ दिया था, महामिलन घटवाया था। और सिर्फ सेम त्रेता युग में हम लोग का श्री कृष्ण एक हाथ में चक्र और एक हाथ में बांसी बजा के श्री राधा जी को लेके जो रास किए थे, जो संहार करके जो रास लीला में शामिल हुए थे, उसमें पूरा प्रकृति, पूरा जल, पूरा वायु, पूरा सब कुछ, गाय, भैर, बक्षी सब एक साथ में शामिल होके, मनुष्य सब एक साथ में शामिल होके जो महामिलन करके शांति का वार्ता दिए थे, वही हम लोग डिपिक्ट किए हैं।
7: पंडाल के केंद्र में विराजमान माँ दुर्गा की प्रतिमा को पूरी तरह से पारंपरिक साबे के रूप में तैयार किया गया है, जिसे बंगाली समुदाय पीढ़ियों से देखता और पूछता आ रहा है। ये परंपरा और आधुनिक संदेश के सुंदर संतुलन को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: इसीलिए खबर के
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: नवरात्र के छठे दिन आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिरों में उमड़ रहे हैं भक्त। हर रोज होता है माता का अनुपम श्रृंगार। असम के चिरांग जिले में माता की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण, स्वर्ण जयंती वर्ष पर दुर्गा पूजा समिति की भव्य तैयारियां, पंडाल में सजावट का काम जारी। शारदीय नवरात्र के मौके पर देश भर में गरबा डांडिया की धूम, चित्रकूट के सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट परिसर में भव्य आयोजन समारोह में हजारों लोग कर रहे हैं शिरकत। नवरात्र के पावन अवसर पर महाराष्ट्र की भीड़ में लगा श्रद्धालुओं का तांता, बेलगांव के रेणुका माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हजारों भक्त। अब अयोध्या में ही तैयार हो रहे हैं रामलला के वस्त्र, सूरत से मंगाया जा रहा है रेशम मखमल सहित दूसरे सामान, मंदिर ट्रस्ट ने वस्त्र निर्माण के लिए किए इंतजाम। एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चैंपियंस ने शेयर किए अपने अनुभव।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। महिषासुर का वध करने वाली माँ कात्यायनी ही है। नवरात्र के छठवें दिन माँ कात्यायनी की आराधना का विधान है। कहते हैं माँ कात्यायनी की कृपा से विवाह में आ रही बड़ी से बड़ी बाधा भी बड़ी ही आसानी से दूर हो जाती है। किसी कारणवश आपके विवाह में अड़चने आ रही हो तो माँ कात्यायनी की विशेष पूजा उपासना करने से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मन चाहे विवाह के लिए कैसे करें माँ कात्यायनी की विशेष उपासना और कौन से हैं वो अचूक महाप्रयोग जो दिलाएंगे आपको माँ का आशीर्वाद।

0: माँ कात्यायनी जिनकी कृपा से मिलता है विवाह का वरदान। माता रानी दूर करेंगी विवाह में आने वाले सारी व्यवधान। अगर आपके भी सफल नहीं हो रहे विवाह के प्रयास, लाख ढूंढने के बाद भी पूरी नहीं हो रही सुयोग्य जीवन साथी की तलाश, ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि विवाह से जुड़ी बाधा मुख्यतः बृहस्पति और शुक्र के कारण होती है। माना जाता है कि नवरात्र में विवाह संबंधी हर अड़चन का अमोघ अस्त्र है माँ कात्यायनी की आराधना।
1: बृहस्पति शुक्र विवाह कारक ग्रह माने जाते हैं और जिनका कात्यायनी जी का संबंध बृहस्पति की पीड़ा को निवारण के लिए बहुत ही अचूक इनकी आराधना रहती है। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति कहीं से कमजोर हो तो निश्चित रूप से कात्यायनी जी की आराधना करने से बृहस्पति बलवान होता है और शीघ्र विवाह संपन्न होता है।
0: हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, मनपसंद जीवन साथी का साथ हो। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जब कुंडली के ग्रहों में दोष होता है तो शादी के शुभ योग ही नहीं बनते, साथ ही शादी तय होकर बार बार रिश्ता टूट जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि किन वजहों से शादी विवाह में बाधा आती है। कुंडली के 5 तत्वों में अग्नि या वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होने पर, चंद्रमा शुक्र या बृहस्पति की स्थिति कमजोर होने पर, मंगल दोष या ग्रहण योग होने पर, अष्टम या द्वितीय भाव में पाप ग्रह होने पर, सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति पाप क्रांत होने पर। माना जाता है कि कुंडली में

0: वो दशाएं हैं जो विवाह नहीं होने देते। अगर इन वजहों से आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं तो फिर रिश्ते बनते टूटते जाते हैं, तो आपको नवरात्र में माँ कात्यायनी देवी का ध्यान करने से आपको सुयोग जीवन साथी का वरदान मिल सकता है, क्योंकि नवरात्र का समय हर दृष्टि से पवित्र है। देवी की उपासना से हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में माँ कात्यायनी की उपासना की जा सकती है। साथ ही मनचाहे विवाह के लिए माँ गौरी की उपासना की जा सकती है। नवरात्रि में अगर माँ दुर्गा की उपासना विधि विधान के साथ की जाए, इससे विवाह की बाधा का अंत होता है, साथ ही वैवाहिक जीवन की बाधा भी दूर हो जाती है। नवरात्र में माँ कात्यायनी की उपासना को अमोघ माना गया है। साथ ही माँ के एक महामंत्र का नियमित 31 या 41 बार जाप करने से विवाह के शीघ्र योग बन जाते हैं। आप भी सुनिए माता रानी का वो दिव्य महामंत्र।
1: हाँ, माँ कात्यायनी से शीघ्र विवाह के उपाय में सबसे बेहतर षष्ठी वाले दिन या किसी भी शुक्रवार वाले दिन जो कुमारी कन्या है इनके लिए कलश का स्थापन करते हुए और घी का दीपक जला के इनका एक बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इसका जप लगभग 31 दिन या 41 दिन तक किया जाता है।
0: माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में शक्ति की आराधना जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर सकती है। माँ दुर्गा की उपासना से साधक को संसार का सारा वैभव मिल सकता है और साथ ही मिल सकता है शीघ्र विवाह का वरदान। ये आदिशक्ति ही है जो असंभव को भी संभव बना दे। कष्ट क्लेश दुख विपदा भय बाधा सभी कुछ माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से दूर हो जाते हैं। तो आइए आपको परम कल्याणकारी और अचूक उपाय बताते हैं जिससे आपको मिलेगा सुयोग्य जीवन साथी का वरदान। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि हर उम्र के साधक के लिए एक अलग महा उपाय है, तो गौर से देखिए ये महा उपाय। अगर आपकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच हो तो किसी उपाय से विवाह की बाधा का अंत हो सकता है। देखिए, नवरात्रि में किसी भी दिन लाल वस्त्र धारण करें, देवी को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करें, ओम दुम दुर्गाय नमः का यथाशक्ति जप करें, पूजा के बाद लौंग को अपने पास रख लें, इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहें। ज्योतिषी मानते हैं कि ये प्रयोग अचूक हैं, ये आपकी विवाह संबंधी हर परेशानी का रामबाण उपाय है। इन उपायों को अपनाइए और देवी को मनाइए, आपकी हर बाधा हर विपदा देवी कृपा से दूर हो जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं वो ज्योतिषीय महाप्रयोग। तब क्या करें जब आपकी उम्र 25 से 30 साल के बीच हो। नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके पूजा करें, देवी को 3 लाल फूल अर्पित करें, कात्यायनी मंत्र का यथाशक्ति जप करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन करें। माँ तो ममता मई है, वो भक्तों की तकलीफों को क्षण में दूर कर देती हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई है और विवाह नहीं हो पाया है तब कौन सा ज्योतिषीय उपाय करें, चलिए जानते हैं। नवरात्रि की अंतिम रात्रि को देवी के समक्ष बैठें, एक लाल रंग की चुनरी ले लें, उसमें हल्दी की 2 गांठ और चांदी का 1 सिक्का रखें, इसको देवी को समर्पित कर दें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करें, शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। पाठ के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेटकर अपने शयन कक्ष में रख लें। आगे हम आपको बताएंगे माँ की कृपा से बृहस्पति की शुभता पाने के महा उपाय। साथ ही जानेंगे धर्म ग्रंथों में माता कात्यायनी की व्याख्या कैसे की गई है, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: देवी माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है, लेकिन अगर आपके विवाह या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या है

तो इस नवरात्र में मां कात्यायनी की उपासना से विशेष लाभ आपको मिल सकता है और आदि शक्ति जगदम्बा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा करने से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। नवरात्र में शीघ्र विवाह से जुड़े अछूत प्रयोग और कौन से हैं, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं।

0: नवरात्र में मिलेगा मनवांछित वर का वरदान। माँ कात्यायनी की कृपा से होगा आपका कल्याण। नवरात्र में देवी की उपासना भक्त अपार श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। देवी के दरबार में भक्त कतारबद्ध हैं। माना जाता है कि आदिशक्ति के ये वो पावन दिन हैं जब माँ अम्बे अपनी करुणा का सागर भक्तों पर लौटा देती हैं। नवरात्र में आदिशक्ति का नाम ही सारे बिगड़े काम बना देता है, आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। आज हम अपनी खास पेशकश में माँ कात्यायनी की महिमा आपको बता रहे हैं। चलिए आपको पहले बताते हैं कि पौराणिक ग्रंथों में माँ कात्यायनी से कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी है।
1: कात्यायनी जी का जो उद्गम या उद्भव हुआ है उसके पीछे कात्यायन ऋषि जी की तपस्या है। ये असुरों के संहार के लिए इनके भगवान कात्यायन ने इनका माँ से वरदान मांगा था। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद माँ दुर्गा से जो वरदान मांगा उसमें कात्यायनी स्वरूप का जन्म हुआ।
0: कथा मिलती है कि कत नाम के एक महर्षि हुआ करते थे, उनके पुत्र का नाम कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि की कीर्ति तप के कारण चारों तरफ फैल गई। कथा कहती है कि ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें, इसीलिए उन्होंने कई साल तक भगवती की कठोर तपस्या की थी। कथा कहती है कि ऋषि कात्यायन की एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई, जबकि दूसरी कथा जुड़ी है महिषासुर के वध से। कथा है कि शक्तियों के मद में चूर होकर महिषासुर ने तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया। कथा है कि इंद्रलोक के देवताओं के सिंहासन पर महिषासुर ने अधिपत्य स्थापित कर लिया। कथा है कि तब देवताओं के अनुरोध पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने तेज से एक तेजवान देवी को उत्पन्न किया। कथा है कि देवी कात्यायनी का स्वरूप अद्भुत था। उनकी 3 आंखें और 18 भुजाएं थीं और वो सूर्य की तरह चमक रही थीं। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र से सुशोभित किया। कहते हैं कि तब महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की, इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना गया। कथा कहती है कि दशमी तिथि को देवी ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना गया। देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता ये भी है, ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यानी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी, इसलिए आज भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में ये उल्लेख भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के क्रोध से हुई थी। भागवत पुराण में वर्णन है कि गोकुल की युवा और विवाह योग्य कन्याओं ने मार्गशीर्ष महीने में देवी कात्यायनी का व्रत रखा, भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाई और उनकी पूजा की। ये परंपरा आज भी जारी है। दक्षिण भारत में देवी कन्याकुमारी को माँ कात्यायनी का ही रूप माना जाता है। पोंगल के दौरान माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि विवाह योग्य पुरुष भी माता से विवाह के वरदान पा सकते हैं।
1: कात्यायनी जी का स्वरूप बताया कि गौर वर्णा है और 4 भुजाएं हैं इनकी, जिसमें वर मुद्रा से लेके अस्त्र शस्त्र ये सब रहता है और इनका आकर्षण के लिए कात्यायनी जी का बहुत ज्यादा महत्व मिलता है।
0: चलिए आपको बताते हैं शास्त्रों में भगवती के स्वरूप की कैसी व्याख्या की गई है। माता कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में दिखाई देता है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना से अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग शोक संताप और भय नष्ट हो जाते हैं।
1: विशेष तो देखिए माँ का जो विषय है वो समस्त आपको चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है, जिसमें धन यश मान सम्मान परिवार सबका सुख मिलता है, लेकिन विशेष रूप से वर प्राप्ति के लिए कन्या लोग इनका पूजन करती हैं और पुरुष भी इनका जप और पूजन कर सकते हैं अच्छी पत्नी प्राप्ति के लिए।
0: ज्योतिष के जानकार भी ये मानते हैं कि अगर कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा तो विवाह और वैवाहिक जीवन में शुभता बनी रहेगी। अगर आप नवरात्र में ये प्रयोग ना भी कर पाए तो बृहस्पति को मजबूत करके कैसे वैवाहिक जीवन सुखी बनता है, कैसे वैवाहिक जीवन सुखी बना सकते हैं, आइए जानते हैं।
1: बृहस्पति बलवान करने के लिए एक तो पीला वस्त्र का धारण करना चाहिए, दूसरी चीज माँ के जप के संग बृहस्पति का भी जप करें और पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिसमें हल्दी है, चने की दाल है, पीला वस्त्र है एवं केला फल इत्यादि में केला इत्यादि का भी दान करने से बृहस्पति की जो तकलीफ होती है वो शीघ्र दूर होती है।
0: हर रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें, कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, खान पान में सात्विकता रखें, सलाह लेकर एक उपल या पीला पुखराज धारण करें, रात को सोने से पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर करें।
1: जब के विधान में पीले वस्त्र को धारण करें या लाल वस्त्र भी इसमें पहना जा सकता है और पीले आसन पे आसन के नीचे केले के पत्ते को रख के इस अनुष्ठान को अगर किया जाए तो ये शीघ्र ही फलीभूत होता है और अपने इच्छानुकूल वर की प्राप्ति होती है।
0: तो सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ आदि शक्ति की भक्ति में लीन हो जाइए, माता के श्री चरणों में शीश झुकाइए, फिर आप हर बाधा और परेशानी से दूर हो जाएंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे करनी है माँ कात्यायनी की आराधना और किस भोग से प्रसन्न होंगी माँ कात्यायनी। आप बने रहिए हमारे साथ।
2: तो देखा आपने नवरात्र में कितनी कल्याणकारी है माँ कात्यायनी की आराधना। अभी आपने जाना नवरात्र में शीघ्र विवाह के उपाय। आइए अब आपको हम माँ कात्यायनी की दिव्य शक्तियों से परिचित कराते हैं, कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना। आइए चलिए उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं।
0: अमोघ फलदायिनी है नवरात्र में माँ कात्यायनी की उपासना। देवी के छठे स्वरूप की उपासना से पूर्ण होगी सभी कामना। अद्भुत है माँ कात्यायनी की प्रताप, जिनकी कृपा से घरों में बजती है शहनाइयां। वर वधु के हाथ होते हैं पीले और दंपति जीवन में मधुरता का मिलता है वरदान। साथ ही कुंडली की ग्रह दशा भी हो जाती है अनुकूल, लेकिन इसके लिए सही तरीके से करनी होगी आपको माता की उपासना, क्योंकि विधिवत की गई अर्चना से शीघ्र प्रसन्न होती है माँ कात्यायनी। तो आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि कैसे मिलेगी देवी के इस दिव्य स्वरूप की कृपा।
1: कात्यायनी जी के प्रिय वस्तुओं में शहद का भोग लगता है एवं हल्दी इनको चढ़ाई जाती है और इनका मुख्य विषय जो है कन्या के विवाह इत्यादि में भी अगर विलंब बाधा आ रही हो या किसी विशेष कार्य में रुकावट पैदा हो रहा हो तो निश्चित रूप से इनकी आराधना करने से वो कार्य सहर्ष पूरा हो जाता है।
0: कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा? पूजा के स्थान को लाल कपड़े से सजाएं। देवी कात्यायनी का संबंध लाल रंग से माना गया है।

0: धूलि वेला में पीले या लाल कपड़े पहनाकर इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीली मिठाइयां अर्पित करें। माँ के इस स्वरूप को शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और साथ ही प्रेम से जुड़ी बाधाएं भी दूर होंगी। इसके बाद माँ के सामने उनके मंत्रों का जाप करें तो आप भी माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के महा उपाय कीजिए और नवरात्र के इन दिव्य दिनों का लाभ उठाइए, जिससे भगवती के कृपा से आप सबका कल्याण होगा और साथ ही आने वाली बाधाओं का भी सर्वनाश होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: मैदानी राज्यों में बारिश के चलते मौसम खुशनुमा है, तो वहीं पर पहाड़ियों पर बर्फबारी ने चार चांद लगा दिए हैं। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाके सीजन की पहली बर्फबारी से सफेद नजर आ रहे हैं, जहां पर गुलमर्ग, सोनमर्ग, पीर पंजाल समेत तमाम ऊंची चोटियों पर स्नोफॉल जबरदस्त देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर अगर आप देखेंगे मैदानी इलाकों को भी सीजन की पहली बर्फबारी की सौगात मिल चुकी है। मौसम का मिजाज इस बार घाटी में जोरदार सर्दी पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं।

0: धरती की जन्नत कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर सीजन की पहली बर्फबारी से ही सफेदी के सागर में समा गया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत तमाम ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, तो मैदानी इलाकों में भी सीजन की पहली बर्फबारी की सौगात मिल चुकी है। डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इसके साथ ही बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी और पीर पंजाल रेंज की प्रसिद्ध पीर की गली भी बर्फ की चादर ओढ़ चुकी है। उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी से पूरा पहाड़ी इलाका सफेद नजर आ रहा है। मैदानी क्षेत्र में करीब 2 इंच और ऊंचाई वाले इलाकों में 4 से 5 इंच बर्फ दर्ज की गई है। पीर पंजाल रेंज में सीजन की पहली बर्फबारी से ही श्रीनगर को पुंछ से मिलाने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फ से पट गई। आलम यह हुआ कि रोड को कुछ समय के लिए आवाजाही के लिए बंद करना पड़ गया, लेकिन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने तत्काल कमान संभाली और सड़कों पर बिछी बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया। कुछ घंटों के बाद आखिरकार सड़क को फिर से खोल दिया गया ताकि पुंछ और कश्मीर के बीच यातायात सुचारू रूप से चलती रहे।
1: दक्षिण कश्मीर शोपियां के पीर गली इलाके में अभी हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बर्फ ही बर्फ जो है इसमें पड़ी हुई है कल शाम से। दरअसल आपको बता दें कि ये एक बालाई इलाका माना जाता है और साथ में ही इसके जो है एक हिस्टोरिकल मगर रोड जिसको कहा जाता है वो चल रहा है। आपको बता दें कि BRO ने एहतियातन उस रोड को सुबह सवेरे कुछ जो है पल के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि पीर की गली या दुर्जन इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी और जिसके कारण जो है रोड को एहतियाती तौर पर बंद करना पड़ा। लेकिन अभी जो है स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन ओवर हो चुका है, यानी बर्फ जो है इस रोड पे हटाई गई है और गाड़ियों की जो है आमद रफ्त इस पे फिर से चलने लगी। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे गुरेज हो, कुपवारा हो या गुलमर्ग हो, गुलमर्ग के साथ साथ जो है पीर गली इलाकों में भी जो है बर्फबारी हो रही है। लगभग कम से कम 5 से 6 इंच बर्फ एक्यूमुलेट की जा चुकी है।
0: बारामूला जिले में मौजूद मशहूर हिल स्टेशन गुलमर्ग का सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक हिल स्टेशन है अफरवाट। आमतौर पर अफरवाट में ऐसा बर्फीला नजारा नवंबर के आखिरी दिनों में दिखाई देता है। सर्दियों में ये इलाका दुनिया भर के स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है, लेकिन कुदरत की मेहरबानी से ये सौगात पर्यटकों को अभी मिल गई है।
2: बहुत अमेजिंग

0: अमेजिंग, सबको आना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगी। इंडिया में, वर्ल्ड में सबको आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। इतनी स्नो देखी लेकिन ये अमेजिंग प्लेस, वी आर सो लकी दैट वी केम टुडे।
1: अच्छा मजा आ रहा है, मतलब सबको आना चाहिए यहाँ पे घूमने को।
2: इतनी बर्फ कभी नहीं देखी थी, आज पहली बार देखी है। काफी कम स्नोफॉल देखी थी, बर्फ होते हुए देखी थी।
3: जम्मू कश्मीर में मौसम का ये बदलाव महज चंद दिनों में ही नजर आया है। अक्टूबर की शुरुआत में मौसम कुछ हद तक गर्म था, लेकिन अक्टूबर का महीना आधा खत्म होते होते घाटी सर्दी के आगोश में लिपटने लगी है। कश्मीर, चेनाब घाटी और पीर पंजाल इलाके में दिन का तापमान भी काफी हद तक गिरने लगा है।
4: जहां तक जम्मू का डिवीजन की बात है, वहां इंटेंसिटी कम होगी, एरिया भी कम होगा इससे। और ये दो दिन का स्पेल है, इसके बाद 16 तारीख में आइसोलेटेड प्लेसेस पर कहीं कहीं बहुत कम बारिश हो सकती है, और उसके बाद तो फिर आ गए आने वाले टाइम में 24 तारीख तक करीब करीब ड्राई ही वेदर है।
3: मौसम विभाग के मुताबिक अभी एक दो दिन और बारिश और बर्फबारी का दौर चलेगा, उसके बाद एक हफ्ते तक बारिश और बर्फबारी दोनों से राहत मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से भले ही थोड़े दिनों की राहत मिले, लेकिन मौसम का ये मिजाज इस बात का संकेत दे रहा है कि इस बार सर्दी जल्दी और जोरदार पड़ने के आसार हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और मीर फरीद के साथ शोपियां से एजाज डार, गुड न्यूज टुडे।
5: हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक वास्तुकला और लोक कला को सहेजने की दिशा में रिटायर शिक्षक विनय अवस्थी तन मन धन से लगे हुए हैं। विनय अवस्थी बांस और लकड़ी से हिमाचल के ऐतिहासिक मंदिरों और पारंपरिक स्लेट पूछ मकानों की आकर्षक प्रतिकृतियां तैयार कर रहे हैं, जिसे देखकर लोग तारीफ कर रहे हैं। और उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में लगाई गई है, जिसे देखकर सैलानी मंत्रमुग्ध हो रहे हैं।
6: अयोध्या का श्री राम मंदिर, केदारनाथ महादेव मंदिर, आदि हिमानी चामुंडा मंदिर और कई प्रसिद्ध मंदिरों के रेप्लिका, ये हिमाचल की अनूठी बांस कला की देन है, जिसे साकार कर रहे हैं विनय अवस्थी। विनय अवस्थी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन लकड़ी और बांस से तैयार किए गए ये मॉडल इस बात के सबूत हैं उनके जुनून का। उनका मानना है कि बांस की अनूठी कला को दुनिया के सामने लाना है और हिमाचल की पारंपरिक वास्तुकला और लोक कला को सहेजने की जरूरत है, इसकी कोशिश वो कर रहे हैं।
7: ये आर्ट जो मैं 2019 से कर रहा हूँ, और मैडम मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी कलाकृतियां हैं उनको बनाने में 15 दिन से ज्यादा समय लगता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इनको बड़ी तन्मयता के साथ बनाऊं, ताकि देखने वाला जो है वो देख करके, मतलब जो है वो उसको पसंद करे। लोकल बैम्बू यूज करता हूँ, उसको काट करके सुखा करके और अपने ही हाथों से सारा कुछ करता हूँ, और जब ये रेप्लिकास कोई अंतिम रूप दे लेती है तो मैं उसको ट्रीट करके फिर जो प्रदर्शनी में लगाता हूँ।
6: बांस और लकड़ी से हिमाचल के ऐतिहासिक मंदिरों और पारंपरिक स्लेट पोशा मकानों की आकर्षक प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी आजकल धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में लगाई गई है।
8: काफी टेंपल्स के रेप्लिकास हैं, पूरे हिमाचल को इन्होंने कवर किया हुआ है। रिज शिमला का भी है इसमें, मुंडा टेंपल और ये रिज शिमला, रिज जो है शिमला पे उसका, और भीमाकाली टेंपल, 84 टेंपल, इन सब के रेप्लिकास इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं।
9: ये टेंपल्स के, ये भी काफ़ी अच्छा है, इट्स वेरी गुड। सो ओवरऑल आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस नोइंग अबाउट योर एंशिएंट हिस्ट्री एंड ऑल दोस थिंग्स, प्रीटी गुड, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा।
6: हिमाचल की पारंपरिक कला और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे प्रदर्शनी का आयोजन वक्त वक्त पर किया जाता है। प्रशासन की कोशिश भी रहती है कि ऐसी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान मिल सके, ताकि हिमाचल और देश के युवा इस पारंपरिक कला को नया आयाम दे सकें।
10: ऐसे लोग हैं जो ऐसी आर्ट फॉर्म्स को जीवित रख रहे हैं, आप इनके देखेंगे जब, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी ये दिखाएं कि स्लेट पोस्ट मकान, डबल मंजिल, सिंगल मंजिल, जो हमारा शिमला का चर्च है और जो इतने सारे हिमाचल के मंदिर हैं उनके रेप्लिका जिन्होंने बनाए हैं, बहुत बारीकी से काम किया है। और कहीं ना कहीं आजकल ऐसा हो रहा है कि ये प्रतिभा जो है, ऐसी आर्ट फॉर्म जो हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, तो अगर ऐसे में कोई ऐसे आर्टिस्ट सामने आते हैं तो हमें उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानना चाहिए।
6: विनय अवस्थी ऐसी प्रतिकृतियों को बनाने में बांस काटने से लेकर कलाकृतियों को अंतिम रूप देने तक का ज्यादातर काम खुद करते हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें इस काम का कुछ सहयोग मिले तो

0: इस कला को देश और दुनिया तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: नवरात्र के छठे दिन आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिरों में उमड़ रहे हैं भक्त। हर रोज होता है माता का अनुपम श्रृंगार। असम के चिरांग जिले में माता की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण। स्वर्ण जयंती वर्ष पर दुर्गा पूजा समिति की भव्य तैयारियां। पंडाल में सजावट का काम जारी। शारदीय नवरात्र के मौके पर देश भर में गरबा डांडिया की धूम। चित्रकूट के सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट परिसर में भव्य आयोजन समारोह में हजारों लोग कर रहे हैं शिरकत। नवरात्र के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के भीड़ में लगा श्रद्धालुओं का तांता। बेलगांव के रेणुका माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हजारों भक्त। अब अयोध्या में ही तैयार हो रहे हैं रामलला के वस्त्र। सूरत से मंगाया जा रहा है रेशम मखमल सहित दूसरे सामान। मंदिर ट्रस्ट ने वस्त्र निर्माण के लिए किए इंतजाम। एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चैंपियंस ने शेयर किए अपने अनुभव।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात शक्ति उत्सव की। आज नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंद माता के दर्शन पूजन का विधान है। सुबह से ही देश के तमाम मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है और श्रद्धालु मां आदि शक्ति से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। मां स्कंद माता दुख और रोगों से मुक्ति प्रदान करती है। मान्यता है कि माँ के इस स्वरूप की प्रार्थना करने से शांति और सुख का अनुभव होता है। मान्यता ये भी है कि नवरात्र के दौरान शक्ति के प्रमुख स्थानों में दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। इसी के चलते जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको देवी के कुछ अनोखे धामों के दर्शन करवाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में देवी का एक ऐसा अद्भुत मंदिर मौजूद है जिसके इतिहास की डोर मराठा साम्राज्य की गौरवशाली विरासत से जुड़ी है। शक्ति उत्सव में आज चलेंगे उन देवी के धाम जो वीर शिवाजी की कुल देवी मानी जाती हैं। वो देवी जिनका आशीर्वाद वीर शिवाजी के माथे का विजय तिलक बन गया। पहाड़ों पर बना एक ऐसा अद्भुत मंदिर जिसका एक द्वार 70 किलोमीटर दूर बसे उज्जैन में खुलता है।

जिनके आशीर्वाद ने किया वीर शिवाजी का विजय तिलक, जिनकी कृपा से वीर शिवाजी को मिली भवानी तलवार, जिस मंदिर से जुड़ी है मराठा शौर्य की विरासत, जिस दर पर शीश झुकाते थे सम्राट विक्रमादित्य, वो मंदिर जिसे उज्जैन से जोड़ती है एक रहस्यमयी गुफा, वो मंदिर जहां तुलजा भवानी स्वरूप में विराजी हैं शक्ति, मध्य प्रदेश में उज्जैन से लगभग 70 किलोमीटर दूर आगर मालवा में पहाड़ों के बीच प्राचीन गुफा में शान से विराजी हैं माँ तुलजा भवानी। ये मंदिर मध्य प्रदेश में मौजूद देवी के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्थानों में से एक है। इस मंदिर में मौजूद माँ भवानी की मूर्ति स्वयं भू मानी जाती है। बताया जाता है कि ये मूर्ति यहाँ पहाड़ों के बीच स्वतः प्रकट हुई थी। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए

0: जाते हैं।
1: मेरे पीछे जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये गुफा है यहाँ पर, और ये यहाँ भारी भरकम पत्थरों की शिलाएं हैं बड़ी बड़ी, और ये पहाड़ है। इसी पहाड़ के बीच में यहाँ पर एक गुफा आपको दिखाई दे रही है, और ये वही गुफा है जिससे कहा जाता है कि माँ तुलजा भवानी ने उज्जैन से यहाँ पर अपना स्थान लिया था और यहाँ पर प्रकट हुई थी।
2: तुलजा भवानी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि ये मराठा इतिहास की गौरवशाली विरासत का भी प्रतीक है। दरअसल माँ तुलजा भवानी मराठा साम्राज्य के शौर्य तिलक छत्रपति शिवाजी की कुल देवी हैं। इनका मुख्य स्थान महाराष्ट्र के तुलजापुर में मौजूद है।
3: माँ तुलजा भवानी का बहुत पुराना स्थान है। भगवती का प्रथम स्थान महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से माता रानी चले उज्जैन पधारे, उज्जैन से भर्तृहरि गुफा में प्रवेश हुए, तो यहाँ पर आगर में एक सुरंग है जो वहाँ से यहाँ तक उज्जैन जाती है। इसी गुफा द्वारा माँ आकर के यहाँ पहाड़ों में प्रकट हुई देवी।
2: छत्रपति शिवाजी माँ तुलजा भवानी के अनन्य भक्त थे। बताया जाता है कि जब शिवाजी महाराज ने मुगलों और आदिलशाही सुल्तानों के खिलाफ स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया, तब उन्होंने अपनी कुलदेवी माँ भवानी की विशेष साधना की थी। किंवदंतियों में वर्णन मिलता है कि एक बार जब शिवाजी महाराज अपने शत्रुओं से घिरे हुए थे और उनके पास कोई उपाय नहीं बचा था, तब उन्होंने माँ तुलजा भवानी का आह्वान किया। माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वे विजय प्राप्त करेंगे। बताया जाता है कि माँ भवानी के आशीर्वाद से उन्हें एक दिव्य तलवार प्राप्त हुई थी जिसे भवानी तलवार कहा जाता है। इस तलवार के साथ शिवाजी ने कई ऐतिहासिक युद्ध जीते और मराठा साम्राज्य का किला मजबूत किया। बताया जाता है कि माँ तुलजा भवानी महाराष्ट्र से उज्जैन आई और फिर वहाँ से पहाड़ों में मौजूद सुरंग और गुफा के रास्ते इस स्थान पर प्रकट हुई थी। मंदिर में आज भी वो गुफा मौजूद है जिसके जरिए माँ तुलजा भवानी के आगर मालवा में प्रकट होने का दावा किया जाता है। इस गुफा को भृतहरि गुफा के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि ये गुफा वास्तव में पहाड़ों में मौजूद उस प्राकृतिक सुरंग का द्वार है जो आगर मालवा को उज्जैन से जोड़ती है।
3: सुरंग कहीं वर्षों से है माता रानी की, और ये राजा महाराजाओं के समय की है सुरंग भृतहरि गुफा, और इसी सुरंग का काफी राजा विक्रमादित्य जी द्वारा आवागमन हुआ, आना जाना हुआ, माँ का पूजन अर्चना करते हुए।
2: पीढ़ियों से मंदिर में सेवा पूजा करते आ रहे पुजारी परिवार के वंशज बताते हैं कि ये गुफा सीधे उज्जैन तक जाती है। बताया जाता है कि किसी दौर में सम्राट विक्रमादित्य इसी गुफा के रास्ते माँ तुलजा भवानी के दर्शन करने उज्जैन से आगर मालवा आया करते थे। मंदिर और आसपास के इलाकों से वर्षों से परिचित लोग बताते हैं कि मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ियों में मौजूद जिस गुफा से माँ तुलजा भवानी आई थी, उसी गुफा से बाद में आम लोग भी उज्जैन आया जाया करते थे, लेकिन बाद के सालों में सुरंग और गुफा में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया।
3: सुरंग तो धीरे धीरे विलुप्त हो चुकी है। करीब यहाँ से आज के 30-40 साल पहले चालू थी सुरंग, और कुछ लोग अंदर जाकर के भी देखा भी है उन्होंने, लेकिन अब विलुप्त तो हो चुकी है। सिर्फ यह ऐतिहासिक है कि उसको हम बता सकते हैं कि भगवती का यह मेन स्थान है जो यहाँ से पधारे।
2: मंदिर के पुजारी बताते हैं कि किसी जमाने में मंदिर के आसपास पहाड़ियों पर दुर्गम वन क्षेत्र था। मंदिर के आसपास गुफा और सुरंग तक शेर आया जाया करते थे। खास तौर पर देवी की आरती के समय वहां शेर मौजूद रहता था। इन शेरों को देवी की मौजूदगी का प्रतीक माना जाता था, लेकिन समय के साथ इस क्षेत्र में पहले वन कम हुए और फिर धीरे धीरे वनराज का आना भी बंद हो गया। माँ जगदम्बा के इस दरबार में पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना लेकर माँ के दरबार में पहुँचते हैं। नवरात्र के दौरान यहाँ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं जिनमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। माना जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, विशेषकर वे जो शक्ति और विजय की कामना रखते हैं। वास्तव में वीर शिवाजी की कुलदेवी माँ तुलजा भवानी का ये मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि ये शौर्य, भक्ति और मराठा गौरव का प्रतीक भी है। जो भी व्यक्ति शक्ति, साहस और सफलता की प्रार्थना लेकर यहाँ आता है, उसे माँ भवानी की कृपा जरूर मिलती है।

0: मध्य प्रदेश के आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: तो नवरात्र के इस मौके पर जीएनटी पर हम आपको देश के सबसे अनोखे देवी मंदिरों के दर्शन करवा रहे हैं। इसी क्रम में अब आपको लेकर चलेंगे झांसी में मौजूद एक और अद्भुत देवी मंदिर में, जहां स्वयं जगत की जननी बाल रूप में विराजमान है। संसार में मां काली का ऐसा अनोखा रूप और कहीं देखने को नहीं मिलता।

0: वो मंदिर जहां बाल रूप में विराजी हैं जगत जननी, वो मंदिर जहां इंदिरा गांधी को मिला जीत का आशीर्वाद, वो मंदिर जहां रौद्र नहीं बल्कि सौम्य रूप में विराजमान है महाकाली, वो मंदिर जहां स्वयं प्रकट हुई माँ भवानी। नवरात्रि के पावन दिनों में भक्त 9 दिनों तक माँ भगवती के अलग अलग रूपों की साधना करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के झांसी में माँ के ऐसे अनोखे स्वरूप की आराधना होती है जिसे देखकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। झांसी के इस मंदिर में माँ काली कन्या के रूप में विराजमान है। जरा सोचिए, जो स्वयं जगत जननी है, जो स्वयं चराचर जगत और संपूर्ण सृष्टि का आधार आदि शक्ति मानी जाती हैं, वो भक्तों को बाल स्वरूप में दर्शन देने को विराजी हैं।
1: ये सौम्य रूप में विराजमान, आपने महाकाली को देखा होगा कि उनकी लंबी लंबी जिह्वा होती है, बड़ा ही विकराल स्वरूप होता है, लेकिन ये सौम्य रूप, ये कन्या रूप इनको बोलते हैं। ये दिन में आप देखेंगे, कभी भी आप आके दर्शन करेंगे, आपको दर्शन परिवर्तित होते हुए मिलेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ।
0: न केवल बाल रूप बल्कि ये दुनिया का ऐसा अनोखा मंदिर है जहां माँ काली के सौम्य रूप के दर्शन होते हैं। आमतौर पर माँ काली के हाथों में खड़ग, खप्पर और गले में मुंडों की माला रहती है, दुनिया में उनका यही स्वरूप पूजा जाता है, लेकिन बुंदेलखंड के इस मंदिर में माँ काली का ये अनोखा सौम्य स्वरूप पूजा जाता है। यानी जिन महाकाली के रौद्र रूप के सामने ब्रह्मांड की समग्र आसुरी शक्तियाँ नतमस्तक हैं, वो माँ काली यहाँ अपने क्रोध को त्याग भक्तों को सौम्य स्वरूप में दर्शन देती है।
2: काली जी जो है वो सौम्य रूप में है। पूरे भारतवर्ष में केवल 2 ही जगह सौम्य रूप में काली जी हैं, एक तो कलकत्ता में है और एक यहाँ पर है, बाकी कहीं पर भी आप देंगे सब रौद्र रूप में रहती हैं।
0: बताया जाता है कि बुंदेलखंड के इस मंदिर का इतिहास शताब्दियों पुराना है और ये इतिहास जुड़ा है ओरछा के राज परिवार से। बताया जाता है कि कभी मंदिर के स्थान पर एक पहाड़ हुआ करता था जहाँ एक गुफा में माँ की मूर्ति इस स्वरूप में प्रकट हुई थी। बरसों तक माँ उस गुफा में गुप्त रूप से विराजमान रही, लेकिन लगभग 500 साल पहले ये रहस्य उस दिन खुला जब ओरछा वंश के शासक राजा जुदेव सिंह इस इलाके में शिकार करने आए।
2: जब यहाँ पे ओरछा के महाराज जुदेव जी शिकार खेलने आए, तब उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पे कुछ है, वहाँ पे उनको कुछ बाती जलती हुई दिखाई दी। जब वो आए, उन्होंने देखा यहाँ पे काली जी की प्रतिमा थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना चालू करवाई और तब से लेके आज तक हम लोग यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, हमारा पूरा परिवार।
0: बताया जाता है कि ओरछा राज परिवार ने ही मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया। समय के साथ इस मंदिर की महिमा, मान्यता और ख्याति दूर दूर तक फैल गयी। 70 के दशक में इस मंदिर की चर्चा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कानों में भी पड़ी। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने जीत का आशीर्वाद पाने के लिए माँ काली के इस मंदिर में अनुष्ठान करवाया था।
1: 1977 में इधर आए, तब वह प्रधानमंत्री पद पे नहीं थे, तो उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी हम पुनः प्रधानमंत्री पद कब प्राप्त करेंगे? बोले हमारी माँ जो आज्ञा देगी वो। तो बोले माँ बोलती है ये मैं कैसे मानूं? तो बोले हसत माल मूरत मुस्कानी, बोले जब मूर्ति बोलती है तो फूल झड़ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि माँ बोली है। बोले फिर मेरे को कैसे मालूम चलेगा? तो इतनी देर में 3 घंटे बाद उनका माई के हृदय का पुष्प गिरा। बोले आप 3 साल बाद आप जो है पुनः प्रधानमंत्री पद।

0: बाद आप जो है पुनः प्रधानमंत्री पद। तो मैं चिकमंगलूर से चुनाव जीती, चिकमंगलूर से चुनाव जीतने के बाद पुनः प्रधानमंत्री बनी, तो उनके सलाहकार फिर उनको लेके आए सन 83 में। उन्होंने कहा पंडित जी मांगिए, आपको जो मांगना है वो मांगिए। बोले हम क्या मांगे साधु बैरागी आदमी, आपके क्या हम मांगे। बोले हम तो एक यज्ञ करना चाहते हैं, अगर आप सहयोग करना चाहती हैं तो करिए। बोले कौन सा यज्ञ करना है, मेरे को बोलो मैं कराता हूँ। बोले मैं लखचंडी यज्ञ करना चाहता हूँ। बोले कराइए आप संकल्प कराइए। संकल्प किया, संकल्प करने के बाद सन 83 में उन्होंने जो नीचे यज्ञशाला है उसमें उन्होंने लखचंडी यज्ञ कराया।
1: तो साल भर झांसी के इस मंदिर में माँ के बाल स्वरूप करने भक्त देश और दुनिया भर से पहुंचते हैं, लेकिन खास तौर पर नवरात्र के पावन दिनों में यहां मां काली के कन्या रूप को पूजने भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। नवरात्र के 9 दिनों में बाल स्वरूपा मां काली के धाम में विशेष अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस बार भी नवरात्र के दौरान माँ भगवती के लिए मन में अगाध आस्था लिए भक्त देश के कोने कोने से यहाँ पहुँच रहे हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।
2: और अब आपको लिए चलते हैं गुजरात और दर्शन करवाते हैं मां अंबा की। गुजरात के बनासकांठा में मौजूद अंबाजी धाम में इन दिनों नवरात्र उत्सव की धूम है। अंबाजी शक्तिपीठ देश के प्रमुख शक्ति स्थलों में गिना जाता है। आज दुनिया भर के श्रद्धालु इस शक्तिपीठ में दर्शन को पहुंचते हैं, लेकिन पौराणिक इतिहास बताता है कि त्रेता युग में यहां श्री राम भी दर्शन के लिए पहुंचे थे। तो वहीं द्वापर युग में नंद बाबा और यशोदा मैया छोटे से कान्हा को लेकर अंबाजी के धाम गए थे। आखिर क्यों इतना खास है अंबाजी शक्तिपीठ और क्या है इसकी कहानी, चलिए आपको बताते हैं।

0: माँ चाहे अपनी हो या फिर सारी जगत की, माँ का हृदय वो स्थान है जहाँ हमेशा जगह होती है उसके बच्चों के लिए। और आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा संसार का ये वो स्थान है जहाँ स्वयं माँ का हृदय रहता है। संसार के कोने कोने से पहुँचते हैं श्रद्धालु माँ के हृदय भाग के दर्शन करने। ये दिव्य स्थान है गुजरात का अंबाजी शक्तिपीठ। राजस्थान सीमा पर बसे बनासकांठा में अरावली पर्वत पर शांत से विराजी है माँ अम्बा। माँ अम्बा का यह अद्वितीय धाम देवी के 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। तंत्र चूड़ामणि में उल्लेख मिलता है कि इसी स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था।
1: भगवान विष्णु जगत की सृष्टि का पालन करने हेतु उनके सुदर्शन चक्र से माँ भगवती सती का शरीर था उनके टुकड़े किए और वो जो टुकड़े थे जहाँ जहाँ पर गिरे वहाँ पर 51 शक्तिपीठ निर्माण हुई और वहाँ से ये शक्तिपीठ मानी जाती है। कारण के वहाँ जो टुकड़े गिरे वहाँ से जो सबसे श्रेष्ठ जो टुकड़ा था वो हृदय का जो टुकड़ा था वो हृदय का टुकड़ा जो है माँ भगवती का यहाँ अरावली पर्वत के गोद में आकर गिरा और यहाँ पर माँ भगवती की शक्तिपीठ निर्माण हुई। इसलिए यहाँ महाभारत के सभी तीर्थों में से सबसे श्रेष्ठ तीर्थ यहाँ माना जाता है।
0: आज पूरा गुजरात अम्बाजी की भक्ति में डूबा है। क्या आम क्या खास सब पर माँ जगदम्बे के उत्सव का रंग चढ़ा है। इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ गर्भगृह में माँ की मूर्ति की नहीं बल्कि शक्ति के स्वरूप यंत्र की पूजा होती है। अम्बा देवी का यंत्र गुप्त रखा जाता है जिसे खुले में देखना भी निषेध है। यहाँ तक कि पुजारी भी इसकी पूजा आंखों पर

0: रस्सी बांध कर करते हैं।
1: न मातुर पर देवता, इस जगत के अंदर माँ के समान कोई बड़ा देव नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर जो माँ भगवती का जो दिव्य स्वरूप है, तो इस स्वरूप के अंदर यहाँ पर माँ भगवती के जो गर्भगुरु के अंदर कोई मूर्ति या कोई ऐसा प्रतीक की पूजा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर सभी शक्तिपीठों में से सबसे श्रेष्ठ शक्तिपीठ इसलिए माना गया है कि यहाँ पर गर्भगुरु के अंदर माँ भगवती के श्री यंत्र की पूजा होती है, यंत्र की पूजा होती है जिसका नाम विषा यंत्र बताया गया है। और इस यंत्र के अंदर माँ भगवती की अभूत शक्ति जो है इस यंत्र के अंदर मानी जाती है, और इस यंत्र की ब्राह्मणों के द्वारा पूजा होती है। और यहाँ पर आने वाले सभी जो भक्तगण है, यहाँ पर आते तो खाली हाथ आते हैं, लेकिन इस यंत्र की दर्शन मात्र से, इस भक्ति के दर्शन मात्र से, इस शक्ति के दर्शन मात्र से सभी भक्तगण यहाँ से कुछ ना कुछ श्रद्धा, शक्ति और नई ऊर्जा लेकर अपने घर जाते हैं।
0: आपको बता दें कि माँ अम्बा का ये दिव्य धाम लगभग 1200 साल पुराना है। कालांतर में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। आज माँ भवानी के हृदय स्थान पर बना ये मंदिर भव्य रूप को प्राप्त कर चुका है। मंदिर के शिखर को 141 किलो सोने से मढ़ा गया है। 61 फीट ऊंचे शिखर पर 358 छोटे बड़े स्वर्ण कलश लगाए गए हैं। बताया जाता है कि यहाँ मंदिर तो बेहद बाद में बना, लेकिन माँ आद्या शक्ति यहाँ हमेशा से विराजमान है। कई पौराणिक कहानियों में इस दिव्य स्थान का उल्लेख मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि माँ जगदम्बा के इसी धाम में नंद बाबा और माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का मुंडन करवाया था, तो वहीं भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए यहाँ से गुजरे थे और माँ अम्बा का आशीर्वाद लिया था। इसके साथ ही मान्यता ये भी है कि वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखने की शुरुआत इसी तपोभूमि से की थी। अंबाजी धाम में मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर गब्बर नाम का पहाड़ मौजूद है, जहां देवी का एक और प्राचीन मंदिर स्थापित है। अंबाजी के दर्शन के बाद श्रद्धालु गब्बर पहाड़ी पर मौजूद इस मंदिर में जरूर जाते हैं। आज माँ अम्बा का ये धाम गुजरात ही नहीं बल्कि देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु माँ अम्बा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ देवी के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्र के दिनों में मंदिर प्रांगण में गरबा करके शक्ति की आराधना की जाती है। सप्तशती के पाठ से पूरा मंदिर प्रांगण गूंज उठता है। खास तौर पर गुजरात के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले किसान माँ के दर्शन के लिए यहाँ सब परिवार इकट्ठा होते हैं। बड़े स्तर पर मनाए जाने वाले इस समारोह में गरबा और भवाई जैसे पारंपरिक नृत्यों का आयोजन भी किया जाता है। 9 दिनों तक अम्बे धाम में भक्ति के गीत गूंजते हैं।
2: पंखीड़ा तू उड़ के जाना अम्बे धाम रे, अम्बा जी को कहना हम भी द्वारे आए हैं, अम्बा जी से कहना हम भी द्वारे आए हैं। पंखीड़ा तू उड़ी ने जाजे पावागढ़ रे, महाकाली से मिलके कह जो गर्भ रमे रे, मारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, अम्बा जी से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, अम्बा जी से मिलके कहना गरबा खेलेंगे।
0: इस बार भी नवरात्र के पावन अवसर पर माँ भवानी के इस धाम में खूब रौनक है। मन में भावना की जोत जलाए हजारों भक्त जगदम्बा के दरबार में शीश झुकाने पहुँचे हैं। परासकाठा में अंबाजी शक्तिपीठ से शक्ति सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: भूल जाइए बुरी खबरें।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
6: लेकर चलते हैं। कोलकाता के ढाकुरिया शहीद नगर दुर्गा पूजा पंडाल, जिसे महामिलन की थीम पर बनाया गया है। महामिलन थीम दो अलग अलग लेकिन बहुत खूबसूरत पहलुओं का एक अनूठा संगम है। ये पंडाल एक तरफ शरणार्थियों के ऐतिहासिक संघर्ष और उनकी एकता को दर्शाती है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक मिलन से प्रेरित है।
7: भव्य और दिव्य माँ दुर्गा की प्रतिमा है, उतना ही खूबसूरत और कलात्मक है माँ दुर्गा का ये पंडाल, जिसकी भव्य लाइटिंग और शानदार वास्तुकला श्रद्धालुओं को खूब रास आ रही है। ये पंडाल एक तरफ शरणार्थियों के ऐतिहासिक संघर्ष और उनकी एकता को दर्शाता है, तो दूसरी ओर राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक मिलन से प्रेरित है। कोलकाता के ढाकुरिया शहीद नगर सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति का ये पंडाल जहाँ मौजूद है, वो मूल रूप से भारत के विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी द्वारा बसाई गई कॉलोनी है। इस दुर्गा पंडाल की थीम महामिलन, शरणार्थियों के इतिहास और उनके संघर्षों को समर्पित की गई है। पंडाल के जरिए दिखाया गया है कि कैसे लोग अपना सब कुछ पीछे छोड़कर इस अनजान जगह पर आए और आपसी सहयोग और सद्भाव के साथ सामाजिक एकता स्थापित की।
8: रिफ्यूजी कॉलोनी है, यहाँ पे एक टाइम में ईस्ट पाकिस्तान से सब कुछ छोड़ के सब लोग जा गए थे। हम लोग का जो पूर्व पुरुष लोग थे, जो एंसेस्टर थे, जब यहाँ पे आए थे, उन लोग ऐसे ही ये छन का, ये हुगला पत्ता का, ये बांस का, बम्बू का देकर उन लोग घर बनाते थे। अभी वो लाइफ वॉर में जीत गए हैं, जीत के ये सबका बड़ा बड़ा आपका मकान हो गया है, लेकिन हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है, उन लोग को हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग का क्या युद्ध था, क्या था।
7: इस थीम को जीवंत करने के लिए पारंपरिक बंगाली शिल्प और आधुनिक सामग्री का बेहतरीन फ्यूजन इस्तेमाल किया गया है। पंडाल की दीवारें और सजावट विभाजन के दौर की यादों और आध्यात्मिक प्रतीकों को खूबसूरती से दर्शाती है। सामाजिक सद्भाव के साथ साथ महामिलन थीम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अलौकिक प्रेम से भी प्रेरित है। यह उनके अटूट प्रेम, भक्ति और मिलन के जरिए दुनिया को प्रेम, करुणा और सौहार्द का संदेश देती है। साथ ही पूरी सृष्टि की रक्षा करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप से भी प्रेरित है।
8: महामिलन अब श्री रामचंद्र और श्री राम कृष्ण के बिना नहीं होता है। श्री रामचंद्र जो अकल बोधन किए थे, तब जो सीता माता को उद्धार करने के लिए गए थे, तो उनको महामिलन करके कारबिलरी से लेके बानरसेना तक, मनुष्य से लेके देवता तक, पूरा प्रकृति उनका साथ दिया था, महामिलन घटवाया था। और सिर्फ सेम त्रेता युग में हम लोग का श्री कृष्ण एक हाथ में चक्र और एक हाथ में बांसुरी बजा के श्री राधा जी को लेके जो राश किए थे, जो संहार करके जो राश लीला में शामिल हुए थे, उसमें पूरा प्रकृति, पूरा जल, पूरा वायु, पूरा सब कुछ, गाय, भैर, बक्षी सब एक साथ में शामिल होके, मनुष्य सब एक साथ में शामिल होके जो महामिलन करके शांति का वार्ता दिए थे, वही हम लोग डिपिक्ट किए हैं।
7: पंडाल के केंद्र में विराजमान माँ दुर्गा की प्रतिमा को पूरी तरह से पारंपरिक साबे के रूप में तैयार किया गया है, जिसे बंगाली समुदाय पीढ़ियों से देखता और पूछता आ रहा है। ये परंपरा और आधुनिक संदेश के सुंदर संतुलन को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
6: नवरात्र के छठे दिन आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिरों में उमड़ रहे हैं भक्त। हर रोज होता है माता का अनुपम श्रृंगार। असम के चिरांग जिले में माता की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण, स्वर्ण जयंती वर्ष पर दुर्गा पूजा समिति की भव्य तैयारियां, पंडाल में सजावट का काम जारी। शारदीय नवरात्रि के मौके पर देश भर में गरबा डांडिया की धूम, चित्रकूट के सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट परिसर में भव्य आयोजन समारोह में हजारों लोग कर रहे हैं शिरकत। नवरात्रि के पावन अवसर पर महाराष्ट्र की भीड़ में लगा श्रद्धालुओं का तांता। बेलगांव के रेणुका माता मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं हजारों भक्त। अब अयोध्या में ही तैयार हो रहे हैं रामलला के वस्त्र। सूरत से मंगाया जा रहा है रेशम मखमल सहित दूसरे सामान। मंदिर ट्रस्ट ने वस्त्र निर्माण के लिए किए इंतजाम। एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चैंपियंस ने शेयर किए अपने अनुभव।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा।
4: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। महिषासुर का वध करने वाली माँ कात्यायनी ही है। नवरात्र के छठवें दिन माँ कात्यायनी की आराधना का विधान है। कहते हैं माँ कात्यायनी की कृपा से विवाह में आ रही बड़ी से बड़ी बाधा भी बड़ी ही आसानी से दूर हो जाती है। किसी कारणवश आपके विवाह में अड़चने आ रही हों तो माँ कात्यायनी की विशेष पूजा उपासना करने से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मन चाहे विवाह के लिए कैसे करें माँ कात्यायनी की विशेष उपासना और कौन से हैं वो अचूक महाप्रयोग जो दिलाएंगे आपको मां का आशीर्वाद।

0: माँ कात्यायनी जिनकी कृपा से मिलता है विवाह का वरदान। माता रानी दूर करेंगी विवाह में आने वाले सारी व्यवधान। अगर आपके भी सफल नहीं हो रहे विवाह के प्रयास, लाख ढूंढने के बाद भी पूरी नहीं हो रही सुयोग्य जीवन साथी की तलाश, ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि विवाह से जुड़ी बाधा मुख्यतः बृहस्पति और शुक्र के कारण होती है। माना जाता है कि नवरात्र में विवाह संबंधी हर अड़चन का अमोघ अस्त्र है माँ कात्यायनी की आराधना।
1: बृहस्पति शुक्र विवाह कारक ग्रह माने जाते हैं और जिनका कात्यायनी जी का संबंध बृहस्पति की पीड़ा को निवारण के लिए बहुत ही अचूक इनकी आराधना रहती है। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति कहीं से कमजोर हो तो निश्चित रूप से कात्यायनी जी की आराधना करने से बृहस्पति बलवान होता है और शीघ्र विवाह संपन्न होता है।
0: हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, मनपसंद जीवन साथी का साथ हो। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जब कुंडली के ग्रहों में दोष होता है तो शादी के शुभ योग ही नहीं बनते, साथ ही शादी तय होकर बार बार रिश्ता टूट जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि किन वजहों से शादी विवाह में बाधा आती है। कुंडली के पांच तत्वों में अग्नि या वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होने पर, चंद्रमा शुक्र या बृहस्पति की स्थिति कमजोर होने पर, मंगल दोष या ग्रहण योग होने पर, अष्टम या द्वितीय भाव में पाप ग्रह होने पर, सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति पाप क्रांत होने पर। माना जाता है कि कुंडली में ये वो दशाएं हैं जो विवाह नहीं होने देते। अगर इन वजहों से आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं तो फिर रिश्ते बनते टूटते जाते हैं, तो आपको नवरात्र में माँ कात्यायनी देवी का ध्यान करने से आपको सुयोग जीवन साथी का वरदान मिल सकता है, क्योंकि नवरात्र का समय हर दृष्टि से पवित्र है। देवी की उपासना से हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में माँ कात्यायनी की उपासना की जा सकती है, साथ ही मनचाहे विवाह के लिए माँ गौरी की उपासना की जा सकती है। नवरात्रि में अगर माँ दुर्गा की उपासना विधि विधान के साथ की जाए, इससे विवाह की बाधा का अंत होता है, साथ ही वैवाहिक जीवन की बाधा भी दूर हो जाती है। नवरात्र में माँ कात्यायनी की उपासना को अमोघ माना गया है, साथ ही माँ के एक महामंत्र का नियमित 31 या 41 बार जाप करने से विवाह के शीघ्र योग बन जाते हैं। आप भी सुनिए माता रानी का वो दिव्य महामंत्र।
1: हाँ, माँ कात्यायनी से शीघ्र विवाह के उपाय में सबसे बेहतर षष्ठी वाले दिन या किसी भी शुक्रवार वाले दिन जो कुमारी कन्या है इनके लिए कलश का स्थापन करते हुए और घी का दीपक जला के इनका एक बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इसका जप लगभग 31 दिन या 41 दिन तक किया जाता है।
0: माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में शक्ति की आराधना जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर सकती है। माँ दुर्गा की उपासना से साधक को संसार का सारा वैभव मिल सकता है और साथ ही मिल सकता है शीघ्र विवाह का वरदान। ये आदिशक्ति ही है जो असंभव को भी संभव बना दे। कष्ट क्लेश दुख विपदा भय बाधा सभी कुछ माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से दूर हो जाते हैं। तो आइए आपको परम कल्याणकारी और अचूक उपाय बताते हैं जिससे आपको मिलेगा सुयोग्य जीवन साथी का वरदान। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि हर उम्र के साधक के लिए एक अलग महा उपाय है, तो गौर से देखिए ये महा उपाय। अगर आपकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच हो तो किसी उपाय से विवाह की बाधा का अंत हो सकता है। देखिए, नवरात्रि में किसी भी दिन लाल वस्त्र धारण करें, देवी को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करें, ओम दुम दुर्गाय नमः का यथाशक्ति जप करें, पूजा के बाद लौंग को अपने पास रख लें, इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहें। ज्योतिषी मानते हैं कि ये प्रयोग अचूक है, ये आपकी विवाह संबंधी हर परेशानी का रामबाण उपाय है। इन उपायों को अपनाइए और देवी को मनाइए, आपकी हर बाधा हर विपदा देवी कृपा से दूर हो जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं वो ज्योतिषीय महाप्रयोग। तब क्या करें जब आपकी उम्र 25 से 30 साल के बीच हो। नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके पूजा करें, देवी को 3 लाल फूल अर्पित करें, कात्यायनी मंत्र का यथाशक्ति जप करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन करें। माँ तो ममता मई है, वो भक्तों की तकलीफों को क्षण में दूर कर देती हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई है और विवाह नहीं हो पाया है, तब कौन सा ज्योतिषीय उपाय करें, चलिए जानते हैं। नवरात्रि की अंतिम रात्रि को देवी के समक्ष बैठें, एक लाल रंग की चुनरी ले लें, उसमें हल्दी की 2 गांठ और चांदी का 1 सिक्का रखें, इसको देवी को समर्पित कर दें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करें, शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। पाठ के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेट कर अपने शयन कक्ष में रख लें। आगे
2: देवी माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है, लेकिन अगर आपके विवाह या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या है तो इस नवरात्र में माँ कात्यायनी की उपासना से विशेष लाभ आपको मिल सकता है। और आदि शक्ति जगदम्बा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा करने से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। नवरात्र में शीघ्र विवाह से जुड़े अचूक प्रयोग और कौन से हैं, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं।

0: नवरात्र में मिलेगा मनवांछित वर का वरदान। माँ कात्यायनी की कृपा से होगा आपका कल्याण। नवरात्र में देवी की उपासना भक्त अपार श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। देवी के दरबार में भक्त कतारबद्ध हैं। माना जाता है कि आदिशक्ति के ये वो पावन दिन हैं जब माँ अम्बे अपनी करुणा का सागर भक्तों पर लौटा देती हैं। नवरात्र में आदिशक्ति का नाम ही सारे बिगड़े काम बना देता है, आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। आज हम अपनी खास पेशकश में माँ कात्यायनी की महिमा आपको बता रहे हैं। चलिए आपको पहले बताते हैं कि पौराणिक ग्रंथों में माँ कात्यायनी से कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी है।
1: कात्यायनी जी का जो उद्गम या उद्भव हुआ है उसके पीछे कात्यायन ऋषि जी की तपस्या है। ये असुरों के संहार के लिए इनके भगवान कात्यायन ने इनका माँ से वरदान मांगा था। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद माँ दुर्गा से जो वरदान मांगा उसमें कात्यायनी स्वरूप का जन्म हुआ।
0: कथा मिलती है कि कत नाम के एक महर्षि हुआ करते थे, उनके पुत्र का नाम कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि की कीर्ति तप के कारण चारों तरफ फैल गई। कथा कहती है कि ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें, इसीलिए उन्होंने कई साल तक भगवती की कठोर तपस्या की थी। कथा कहती है कि ऋषि कात्यायन की एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाएं। जबकि दूसरी कथा जुड़ी है महिषासुर के वध से। कथा है कि शक्तियों के मद में चूर होकर महिषासुर ने तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया। कथा है कि इंद्रलोक के देवताओं के सिंहासन पर महिषासुर ने अधिपत्य स्थापित कर लिया। कथा है कि तब देवताओं के अनुरोध पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने तेज से एक तेजवान देवी को उत्पन्न किया। कथा है कि देवी कात्यायनी का स्वरूप अद्भुत था। उनकी 3 आंखें और 18 भुजाएं थीं और वो सूर्य की तरह चमक रही थीं। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र से सुशोभित किया। कहते हैं कि तब महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की, इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना गया। कथा कहती है कि दशमी तिथि को देवी ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना गया। देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता ये भी है, ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यानी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी, इसलिए आज भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में ये उल्लेख भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के क्रोध से हुई थी। भागवत पुराण में वर्णन है कि गोकुल की युवा और विवाह योग्य कन्याओं ने मार्गशीर्ष महीने में देवी कात्यायनी का व्रत रखा, भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाई और उनकी पूजा की। ये परंपरा आज भी जारी है। दक्षिण भारत में देवी कन्याकुमारी को माँ कात्यायनी का ही रूप माना जाता है। पोंगल के दौरान माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि विवाह योग्य पुरुष भी माता से विवाह का वरदान पा सकते हैं।
1: कात्यायनी जी का स्वरूप बताया कि गौर वर्णा है और 4 भुजाएं हैं इनकी, जिसमें वर मुद्रा से लेके अस्त्र शस्त्र ये सब रहता है। और इनका आकर्षण के लिए कात्यायनी जी का बहुत ज्यादा महत्व मिलता है।
0: चलिए आपको बताते हैं शास्त्रों में भगवती के स्वरूप की कैसी व्याख्या की गई है। माता कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में दिखाई देता है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना से अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग शोक संताप और भय नष्ट हो जाते हैं।
1: विशेष तो देखिए माँ का जो विषय है वो समस्त आपको चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है, जिसमें धन यश मान सम्मान परिवार सबका सुख मिलता है, लेकिन विशेष रूप से वर प्राप्ति के लिए कन्या लोग इनका पूजन करती हैं और पुरुष भी इनका जप और पूजन कर सकते हैं अच्छी पत्नी प्राप्ति के लिए।
0: ज्योतिष के जानकार भी ये मानते हैं कि अगर कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा तो विवाह और वैवाहिक जीवन में शुभता बनी रहेगी। अगर आप नवरात्र में ये प्रयोग ना भी कर पाए तो बृहस्पति को मजबूत करके कैसे वैवाहिक जीवन सुखी बनता है, कैसे वैवाहिक जीवन सुखी बना सकते हैं, आइए जानते हैं।
1: बृहस्पति बलवान करने के लिए एक तो पीला वस्त्र का धारण करना चाहिए, दूसरी चीज माँ के जप के संग बृहस्पति का भी जप करें और पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिसमें हल्दी है, चने की दाल है, पीला वस्त्र है एवं केला फल इत्यादि में केला इत्यादि का भी दान करने से बृहस्पति की जो तकलीफ होती है वो शीघ्र दूर होती है।
0: हर रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें, कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, खान पान में सात्विकता रखें, सलाह लेकर एक उपल या पीला पुखराज धारण करें, रात को सोने से पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर करें।
1: जब के विधान में पीले वस्त्र को धारण करें या लाल वस्त्र भी इसमें पहना जा सकता है और पीले आसन पे आसन के नीचे केले के पत्ते को रख के इस अनुष्ठान को अगर किया जाए तो ये शीघ्र ही फलीभूत होता है और अपने इच्छानुकूल वर की प्राप्ति होती है।
0: तो सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ आदि शक्ति की भक्ति में लीन हो जाइए, माता के श्री चरणों में शीश झुकाइए, फिर आप हर बाधा और परेशानी से दूर हो जाएंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे करनी है माँ कात्यायनी की आराधना और किस भोग से प्रसन्न होंगी माँ कात्यायनी। आप बने रहिए हमारे साथ।
2: तो देखा आपने नवरात्र में कितनी कल्याणकारी है माँ कात्यायनी की आराधना। अभी आपने जाना नवरात्र में शीघ्र विवाह के उपाय। आइए अब आपको हम माँ कात्यायनी की दिव्य शक्तियों से परिचित कराते हैं, कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना। आइए चलिए उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं।
0: अमोघ फलदायिनी है नवरात्र में माँ कात्यायनी की उपासना। देवी के छठे स्वरूप की उपासना से पूर्ण होगी सभी कामना। अद्भुत है माँ कात्यायनी की प्रताप, जिनकी कृपा से घरों में बजती है शहनाइयां। वर वधु के हाथ होते हैं पीले और दंपति जीवन में मधुरता का मिलता है वरदान। साथ ही कुंडली की ग्रह दशा भी हो जाती है अनुकूल, लेकिन इसके लिए सही तरीके से करनी होगी आपको माता की उपासना, क्योंकि विधिवत की गई अर्चना से शीघ्र प्रसन्न होती है माँ कात्यायनी। तो आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि कैसे मिलेगी देवी के इस दिव्य स्वरूप की कृपा।
1: कात्यायनी जी के प्रिय वस्तुओं में शहद का भोग लगता है एवं हल्दी इनको चढ़ाई जाती है और इनका मुख्य विषय जो है कन्या के विवाह इत्यादि में भी अगर विलंब बाधा आ रही हो या किसी विशेष कार्य में रुकावट पैदा हो रहा हो तो निश्चित रूप से इनकी आराधना करने से वो कार्य सहर्ष पूरा हो जाता है।
0: कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा? पूजा के स्थान को लाल कपड़े से सजाएं। देवी कात्यायनी का संबंध लाल रंग से माना गया है। गोधूली वेला में पीले या लाल कपड़े पहनाकर इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीली मिठाइयां अर्पित करें। माँ के इस स्वरूप को शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और साथ ही प्रेम से जुड़ी बाधाएं भी दूर होंगी। इसके बाद माँ के सामने उनके मंत्रों का जाप करें। तो आप भी माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के महा उपाय कीजिए और नवरात्र के इन दिव्य दिनों का लाभ उठाइए। जिससे भगवती के कृपा से आप सबका कल्याण होगा और साथ ही आने वाली बाधाओं का भी सर्वनाश होगा।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती है।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: मैदानी राज्यों में बारिश के चलते मौसम खुशनुमा है, तो वहीं पर पहाड़ियों पर बर्फबारी ने चार चांद लगा दिए हैं। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाके सीजन की पहली बर्फबारी से सफेद नजर आ रहे हैं। यहां पर गुलमर्ग, सोनमर्ग, पीर पंजाल समेत तमाम ऊंची चोटियों पर स्नोफॉल जबरदस्त देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर अगर आप देखेंगे मैदानी इलाकों को भी सीजन की पहली बर्फबारी की सौगात मिल चुकी है। मौसम का मिजाज इस बार घाटी में जोरदार सर्दी पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं।
2: धरती की जन्नत कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर सीजन की पहली बर्फबारी से ही सफेदी के सागर में समा गया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत तमाम ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, तो मैदानी इलाकों में भी सीजन की पहली बर्फबारी की सौगात मिल चुकी है। डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इसके साथ ही बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी और पीर पंजाल रेंज की प्रसिद्ध पीर की गली भी बर्फ की चादर ओढ़ चुकी है। उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी से पूरा पहाड़ी इलाका सफेद नजर आ रहा है। मैदानी क्षेत्र में करीब 2 इंच और ऊंचाई वाले इलाकों में 4 से 5 इंच बर्फ दर्ज की गई है। पीर पंजाल रेंज में सीजन की पहली बर्फबारी से ही श्रीनगर को पुंछ से मिलाने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फ से पट गई। आलम यह हुआ कि रोड को कुछ समय के लिए आवाजाही के लिए बंद करना पड़ गया, लेकिन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने तत्काल कमान संभाली और सड़कों पर बिछी बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया। कुछ घंटों के बाद आखिरकार सड़क को फिर से खोल दिया गया ताकि पुंछ और कश्मीर के बीच यातायात सुचारू रूप से चलती रहे।
3: दक्षिण कश्मीर शोपियां के पीर गली इलाके में अभी हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बर्फ ही बर्फ जो है इसमें पड़ी हुई है कल शाम से। दरअसल आपको बता दें कि ये एक बालाई इलाका माना जाता है और साथ में ही इसके जो है एक हिस्टोरिकल मगर रोड जिसको कहा जाता है वो चल रहा है। आपको बता दें कि बीआरओ ने एहतियातन उस रोड को सुबह सवेरे कुछ जो है पल के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि पीर की गली या दुर्जन इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी और जिसके कारण जो है रोड को एहतियाती तौर पर बंद करना पड़ा। लेकिन अभी जो है स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन ओवर हो चुका है, यानी बर्फ जो है इस रोड पे हटाई गई है और गाड़ियों की जो है आमद रफ्त इस पे फिर से चलने लगी। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे गुरेज हो, कुपवारा हो या गुलमर्ग हो, गुलमर्ग के साथ साथ जो है पीर गली इलाकों में भी जो है बर्फबारी हो रही है। लगभग कम से कम 5 से 6 इंच बर्फ एक्यूमुलेट की जा चुकी है।
2: बारामूला जिले में मौजूद मशहूर हिल स्टेशन गुलमर्ग का सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक हिल स्टेशन है अफरवाट। आमतौर पर अफरवाट में ऐसा बर्फीला नजारा नवंबर के आखिरी दिनों में दिखाई देता है। सर्दियों में ये इलाका दुनिया भर के स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है, लेकिन कुदरत की मेहरबानी से ये सौगात पर्यटकों को अभी मिल गई है।
4: बहुत अमेजिंग, सबको आना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगी, इंडिया में, वर्ल्ड में सबको आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। इतनी स्नो देखी लेकिन ये अमेजिंग प्लेस, वी आर सो लकी दैट वी केम टुडे। अच्छा मजा आ रहा है, दिस मतलब सबको आना चाहिए यहाँ पे घूमने को।
5: इतनी बर्फ कभी नहीं देखी थी, आज पहली बार देखी है। काफी कम स्नोफॉल देखी थी, बर्फ होते हुए देखी थी।
2: जम्मू कश्मीर में मौसम का ये बदलाव महज चंद दिनों में ही नजर आया है। अक्टूबर की शुरुआत में मौसम कुछ हद तक गर्म था, लेकिन अक्टूबर का महीना आधा खत्म होते होते घाटी सर्दी के आगोश में लिपटने लगी है। कश्मीर, चेनाब घाटी और पीर पंजाल इलाके में दिन का तापमान भी काफी हद तक गिरने लगा है।
6: जहाँ तक जम्मू का डिवीजन की बात है, वहाँ इंटेंसिटी कम होगी, एरिया भी कम होगा इससे। और ये 2 दिन का स्पेल है, इसके बाद 16 तारीख में आइसोलेटेड प्लेसेस पर कहीं कहीं बहुत कम बारिश हो सकती है, और उसके बाद तो फिर आगे आने वाले टाइम में 24 तारीख तक करीब करीब ड्राई ही वेदर है।
2: मौसम विभाग के मुताबिक अभी 1-2 दिन और बारिश और बर्फबारी का दौर चलेगा, उसके बाद 1 हफ्ते तक बारिश और बर्फबारी दोनों से राहत मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से भले ही थोड़े दिनों की राहत मिले, लेकिन मौसम का ये मिजाज इस बात का संकेत दे रहा है कि इस बार सर्दी जल्दी और जोरदार पड़ने के आसार हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी और मीर फरीद के साथ शोपियां से एजाज डार, गुड न्यूज टुडे।
1: हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक वास्तुकला और लोक कला को सहेजने की दिशा में रिटायर शिक्षक विनय अवस्थी तन मन धन से लगे हुए हैं। विनय अवस्थी बांस और लकड़ी से हिमाचल के ऐतिहासिक मंदिरों और पारंपरिक स्लेट पूछ मकानों की आकर्षक प्रतिकृतियां तैयार कर रहे हैं, जिसे देखकर लोग तारीफ कर रहे हैं। और उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में लगाई गई है, जिसे देखकर सैलानी मंत्रमुग्ध हो रहे हैं।
7: अयोध्या का श्री राम मंदिर, केदारनाथ महादेव मंदिर, आदि हिमानी चामुंडा मंदिर और कई प्रसिद्ध मंदिरों के रेप्लिका, ये हिमाचल की अनूठी बांस कला की देन है, जिसे साकार कर रहे हैं विनय अवस्थी। विनय अवस्थी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन लकड़ी और बांस से तैयार किए गए ये मॉडल इस बात के सबूत हैं उनके जुनून का। उनका मानना है कि बांस की अनूठी कला को दुनिया के सामने लाना है और हिमाचल की पारंपरिक वास्तुकला और लोक कला को सहेजने की जरूरत है। इसकी कोशिश वो कर रहे हैं।
8: ये आर्ट जो मैं 2019 से कर रहा हूँ, और मैडम मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी कलाकृतियां हैं उनको बनाने में 15 दिन से ज्यादा समय लगता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इनको बड़ी तन्मयता के साथ बनाऊं, ताकि देखने वाला जो है वो देख करके मतलब जो है वो उसको पसंद करे। लोकल बैम्बू यूज करता हूँ, उसको काट करके सुखा करके और अपने ही हाथों से सारा कुछ करता हूँ, और जब ये रेप्लिकास कोई अंतिम रूप दे लेती है तो मैं उसको ट्रीट करके फिर जो प्रदर्शनी में लगाता हूँ।
7: बांस और लकड़ी से हिमाचल के ऐतिहासिक मंदिरों और पारंपरिक स्लेट पोशा मकानों की आकर्षक प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी आजकल धर्मशाला के कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में लगाई गई है।
9: अभी टेंपल्स के रेप्लिकास हैं, पूरे हिमाचल को इन्होंने कवर किया हुआ है। रिज शिमला का भी है इसमें, मुंडा टेंपल और ये रिज शिमला, रिज जो है शिमला पे उसका, और भीमा काली टेम्पल, चौरासी टेम्पल, इन सब के रेप्लिकास इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं।
10: ये टेम्पल्स के, ये भी काफ़ी अच्छा है, इट्स वेरी गुड। सो ओवरऑल आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस नोइंग अबाउट योर एंशियंट हिस्ट्री एंड ऑल दोस थिंग्स, प्रीटी गुड, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा।
7: हिमाचल की पारंपरिक कला और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे प्रदर्शनी का आयोजन वक्त वक्त पर किया जाता है। प्रशासन की कोशिश भी रहती है कि ऐसी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान मिल सके, ताकि हिमाचल और देश के युवा इस पारंपरिक कला को नया आयाम दे सकें।
11: ऐसे लोग हैं जो ऐसी आर्ट फॉर्म्स को जीवित रख रहे हैं, आप इनके देखेंगे जब, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी ये दिखाएं कि स्लेट पोस्ट मकान, डबल मंजिल, सिंगल मंजिल, जो हमारा शिमला का चर्च है और जो इतने सारे हिमाचल के मंदिर हैं, उनके रेप्लिका जिन्होंने बनाए हैं, बहुत बारीकी से काम किया है। और कहीं ना कहीं आजकल ऐसा हो रहा है कि ये प्रतिभा जो है, ऐसी आर्ट फॉर्म जो हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, तो अगर ऐसे में कोई ऐसे आर्टिस्ट सामने आते हैं तो हमें उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानना चाहिए।
7: विनय अवस्थी ऐसी प्रतिकृतियों को बनाने में बांस काटने से लेकर कलाकृतियों को अंतिम रूप देने तक का ज्यादातर काम खुद करते हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें इस काम का कुछ सहयोग मिले तो वो इस कला को देश और दुनिया तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।